0: प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था, लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं, लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है, कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं, उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बस आओ, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो।
1: खबर संसद में जारी घमासान की। शुक्रवार को संसद परिसर से एक अनोखी तस्वीर दिखाई दी। श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर विपक्ष ने नाटक किया, जहां साधु के वेश में पप्पू यादव नजर आए, जिसे लेकर राजनीति तेज हो गई।
2: संसद परिसर में अयोध्या चंदा चोरी का मुद्दा विपक्ष ने नाटक का मंचन करके उठाया, जहां पप्पू यादव साधु के भेष में दान पेटी के साथ पहुंचे, जिसमें राहुल गांधी समेत विपक्ष के नेताओं ने सांकेतिक चंदा डाला, जिसके बाद पप्पू यादव दान पेटी लेकर भागने की कोशिश करते हैं, जहां उन्हें अयोध्या से आने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद पकड़ते हैं। पप्पू यादव के इस नाटक पर लोकसभा स्पीकर ने नाराजगी जताई, पप्पू यादव के आचरण को संसदीय भावना के खिलाफ बताया।
3: नहीं, वो तो स्पीकर साहब ने कह दिया कि ये रंग बदल बदल के, कपड़े बदल बदल के प्रदर्शन करने का जगह नहीं है, थोड़ा सीरियसनेस दिखाना चाहिए। आप सांसद है तो सांसद की तरह व्यवहार करना चाहिए, नाटक करने का जगह नहीं है, स्पीकर साहब ने कह दिया है, अलग से मुझे कहने का जरूरत नहीं है।
2: वहीं बीजेपी भी पूरे मामले को लेकर विपक्ष पर हमला कर रही है।
4: वो तो काल नेमी का वेश धारण करके आए थे और पूरे सदन ने इसकी निंदा की। तो ये सवाल उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि त्रेता युग के राम को हमला है, राम राम जपियो रे सब माल हरपियो रे। आप भगवान के आस्था के साथ ही नहीं, 154 करोड़ भारत के उस आस्था के साथ खिलवाड़ किए हैं जो राम को अपने जीवन में, कर्म में, चरित्र में, चिंतन में रखते हैं।
5: हमारे देश का, इन राजनीतिक पार्टियों का, कांग्रेस हो या सपा हो, जो वोट के खातिर सनातन को बदनाम करने का काम किया है, इसका बदला सनातन लेगा।
6: आपके माध्यम से देश का आम जनमानस देखे कि आखिर अयोध्या में क्या हुआ है। हम लोग तो विपक्ष के लोग हैं, जनता की आवाज उठाते हैं, जनता को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से अयोध्या में हुआ है, क्योंकि जो लोग मौके पे नहीं थे वो नहीं देख सकते, अब तो सीसीटीवी भी डिलीट हो गए।
2: उधर संत समाज ने भी पप्पू यादव को लेकर सवाल खड़े किए हैं।
7: महामहिम राष्ट्रपति महोदया और लोकसभा अध्यक्ष दोनों से यह मांग करूंगा कि ऐसे सांसदों की संसद सदस्यता बर्खास्त होनी चाहिए।
8: इन्होंने अपराध किया है, इन्होंने पाप किया है। आप जरा बताइए कि जिन लोगों ने मंदिर में दान चोरी किया है, क्या वो भगवाधारी थे? वो तो आठों जेल गए, भगवा साधु तो थे नहीं। और यह आप जरा देखिए कितने दुर्भाग्य है। और हमें तो लगता है कि पूरे विपक्ष में एक और दो पप्पू नहीं है, पूरा विपक्ष ही पप्पू हो चुका है।
2: राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर समाजवादी पार्टी पिछले दो दिनों से दान पेटी के साथ प्रदर्शन कर रही है, जिसमें आज पप्पू यादव की एंट्री ने नया सियासी घमासान शुरू कर दिया। आज तक ब्यूरो।
1: संसद में भले ही एंटी पेपर लीक बिल पास हो गया, लेकिन हंगामा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की शिकायत लेकर पहुंचे।
9: पेपर लीक से शुरू हुआ हंगामा पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान लगे आरोपों तक पहुंच गया है। पहले अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया, जिसके बाद केसी वेणुगोपाल ने जितेंद्र सिंह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव स्पीकर को भेज दिया। अनुराग ठाकुर की ओर से दिए गए प्रस्ताव में कहा गया कि रूल 352 का उल्लंघन कर राहुल गांधी ने असंसदीय शब्दों इडियट और अंधभक्त का इस्तेमाल किया, रूल 353 का उल्लंघन कर केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ गंभीर निराधार आरोप लगाए और मोशन से हटकर टिप्पणियां की। उधर जवाब में आए कांग्रेस के प्रस्ताव में कहा गया कि कोई गोली नहीं चलने का झूठा दावा कर मंत्री ने जानबूझकर संसद को गलत जानकारी दी और सदन को गुमराह किया।
10: मनगढ़ंत एलिगेशंस लगाते हैं जो नियमों के खिलाफ है, उसके लिए भी मैंने नोटिस दिया है। रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस लोकसभा के रूल 222 को देखते हुए और रूल 223 और उसके खिलाफ मैंने स्पीकर साहब को कहा कि उसके ऊपर कार्रवाई करें।
11: तो हाउ कैन ए मिनिस्टर मिसलेड द हाउस लाइक दिस? स्टूडेंट्स नो अबाउट इट, नेशन नो अबाउट इट, नाउ ही इज टेलिंग दिस इज नॉट यूज्ड।
9: उधर संसद के दोनों सदनों में बिल पास हो गया, जिसके बाद अब राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होना बाकी है, जहां पीएम मोदी ने पोस्ट करके अब पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है।
0: फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा। दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है। अब विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में एक महत्वपूर्ण काम पूर्ण हुआ।
9: पेपर लीक बिल पास होने के बावजूद विपक्ष का संसद परिसर में एक बार फिर प्रदर्शन देखने को मिला।
12: विपक्ष के तमाम जो सांसद हैं, वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देखिए कि तस्वीरों में यहाँ पर पोस्टर बैनर लेकर के तमाम विपक्ष के जो सांसद हैं, कांग्रेस के सांसद, इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी के सांसद, ये सभी लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और इनकी तरफ से ये मांग की जा रही है कि गृह मंत्री अमित शाह सदन संसद से गायब क्यों हैं, सदन में आए, इस तरीके की बातें उनके द्वारा की जा रही है।
13: ये निश्चित तौर से दुर्भाग्य है कि भारत की इतनी बड़ी पार्लियामेंट उसका एलओपी इतना गैर जिम्मेदार व्यवहार कर रहा है। जब सारी मांगे पूरी हो गई तो आज किस बात का आंदोलन?
12: क्या राहुल,
9: संसद के अंदर भी हंगामा जारी रहा, जिसके बाद संसद की कार्यवाही बाधित हुई।
14: हंगामा करते रहेंगे और सरकार भी हंगामा के चक्कर में अगर बिल ही पारित नहीं करेंगे तो सदन क्या करेंगे? इसलिए हम तो बिल पारित करते रहेंगे। और हमने आज कहा भी है, बाद में बाहर जाके ये नहीं कहना कि बिना चर्चा के बिल पारित क्यों किया गया है।
9: बहरहाल विपक्ष अभी थमने के मूड में नहीं है, जहां वो लगातार सरकार को घेर रहा है और हंगामे के बीच अब संसद सोमवार तक के लिए स्थगित होगी। आज तक ब्यूरो।
1: संसद से एंटी पेपर लीक बिल पास हो गया, अब बिल को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलते ही यह कानून बन जाएगा। सवाल यही कि क्या पेपर लीक की लाइलाज बीमारी का पक्का इलाज फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन और कठोर कानून से होगा? क्या नया कानून काफी है या फिर अभी पेपर लीक रोकने की राह में मोदी सरकार को कई चुनौतियों से पार पाना होगा?
15: तो के पिछले प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
0: दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है।
2: एंटी पेपर लीक बिल को संसद से मंजूरी मिल गई है। वहीं पेपर लीक के मामलों की सुनवाई के लिए प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का काम भी शुरू हो गया है। लेकिन सवाल यही है, क्या स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट तारीखों के फेर में फंसे रहने वाले मामलों की बीमारी का रामबाण इलाज है? क्या कठोर कानून और फास्ट ट्रैक कोर्ट की दवा काफी है?
16: अपराध करने से लोग डरते हैं, यही तो दुष्प्रिंस है। आप देखिए, किसी ने अपराध किए, समय पे सजा मिले और जो जांच है वो भी समय पे हो और स्पीडी ट्रायल हो, यही तो ये चाह रहे हैं, यही तो डिमांड है उनकी, सजा मिले, यही इसी काम में लगे।
2: कानून के जानकार पेपर लीक जैसे मुद्दों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाने के फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन देश में पहले से काम कर रही फास्ट ट्रैक कोर्ट के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए कई आशंका भी जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट का मॉडल अभी तक बहुत कारगर साबित नहीं हुआ है। वजह है, फास्ट ट्रैक कोर्ट को भी लंबित मामलों की बढ़ती संख्या और संसाधनों की कमी जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मतलब यही है कि अभी भी फास्ट ट्रैक वाली अदालतें धीमी गति में अटकी हुई हैं।
17: पहली जो चुनौती है फास्ट ट्रैक कोर्ट के मामले में, ये न्यायाधीशों की कमी, जुडिशियल ऑफिसर्स की बहुत ही कमी है, खास करके डिस्ट्रिक्ट और तालुका लेवल पे।
2: फास्ट ट्रैक कोर्ट को लेकर कानून के जानकारों की आशंका वाजिब नजर आती है। संसद में एक सवाल के जवाब में लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट की तरफ से देश में चल रही फास्ट ट्रैक अदालतों में लंबित मामलों से लेकर निपटाए गए केसों की जानकारी साझा की है। जवाब में कहा गया है कि साल 2023 में नए केस 81,471, 2024 में 88,902, 2025 में 1,43,936। कोर्ट ने केसों का निपटारा किया साल 2023 76,319, 2024 में 85,595, 2025 में 66,500। मतलब हर साल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने जितने मामलों में फैसला सुनाया उससे ज्यादा नए केस कोर्ट में पहुंचे। यही वजह है कि 2023 में 202,175 केस लंबित थे, 2024 में 204,122 और 2025 में 245,579। ये आंकड़े बताते हैं कि इंसाफ को फास्ट ट्रैक पर लाने वाली कोर्ट में खुद लंबित मामलों की संख्या बढ़ रही है। फास्ट ट्रैक कोर्ट की धीमी रफ्तार की वजह है जजों और कोर्ट के स्टाफ की कमी। यही नहीं, स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट के सामने फंड की बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि रेगुलर जजों के जिम्मे ही फास्ट ट्रैक कोर्ट का काम भी है। अब सवाल है कि जब फास्ट ट्रैक अदालतों में जजों की कमी है तो इंसाफ फास्ट ट्रैक पर कैसे आएगा? यही सवाल आज तक संवाददाता ने देश के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से पूछा।
18: एक सवाल ये मुरा है कि क्योंकि ट्रायल कोर्ट में जजों की कमी है काफी सख्त, उसकी वजह से फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए या कुछ भी बनाए तो सुनवाई और निगाह?
16: देखिए, जो आप डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के बारे में रहते हैं, उस समय तो अधिक हाई कोर्ट ही उनके अपॉइंटमेंट कर से
18: जी।
16: कुछ जगह पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से एग्जाम होता है, उसमें भी हाई कोर्ट का समर्थित हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण बोल होता है। हमने उनको कहा भी है कि अगर डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में वैकेंसी है तो जल्दी से जल्दी बने एग्जाम लेकर।
2: केंद्रीय मंत्री ने यही भरोसा दिया कि नए जजों की नियुक्ति के लिए सरकार की तरफ से सुझाव दिए गए हैं। अब देखना यही है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट वादा बनकर रह जाएगा या फिर धरातल पर भी तस्वीर बदलेगी। इसे यूं समझिए, इंसाफ को फास्ट ट्रैक पर लाने के लिए 2000 में 11वें फाइनेंस कमीशन ने 1734 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की सिफारिश की थी। मकसद था देश की अदालतों में लंबित 2 करोड़ मामलों का निपटारा करना। फास्ट ट्रैक कोर्ट की योजना को 2005 में 5 साल के लिए बढ़ाया गया, लेकिन 5 साल बाद भी 1734 में से सिर्फ 1562 फास्ट ट्रैक कोर्ट देश में संचालित थी। साल 2010 में फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए राज्यों की फंडिंग बंद करने का फैसला कोर्ट ने लिया। 2012 में निर्भया गैंग रेप कांड के बाद एक बार फिर फास्ट ट्रैक कोर्ट चर्चा में आया। 2015 में जघन्य अपराधों के लिए 14वें फाइनेंस कमीशन ने 1800 फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रस्ताव रखा, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट की फंडिंग का जिम्मा राज्य सरकार के पाले में डाल दिया। मतलब केंद्र सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए फंड नहीं देगी। 2019 में निर्भया फंड से 1023 स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट की फंडिंग की गई, लेकिन 2025 तक देश में सिर्फ 775 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स काम कर रही हैं। सरल शब्दों में समझें तो जितनी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का लक्ष्य रखा गया था उतनी अदालतें आज तक ऑपरेशनल नहीं हो पाई। न्याय व्यवस्था की जमीनी हकीकत को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के पूरे सिस्टम को मजबूत करने की जरूरत है, तभी इंसाफ फास्ट ट्रैक पर आएगा। वहीं दूसरी तरफ परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह सुरक्षित और लीक प्रूफ बनाने के लिए टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट नंदन नीलेखनी की अगुवाई में एक हाई पावर टास्क फोर्स का गठन किया गया है। टास्क फोर्स को लीक प्रूफ सिस्टम बनाने की जिम्मेदारी दी गई है, जैसे UPSC बिना लीक के परीक्षा कराती आई है, वैसे ही नीट और दूसरी परीक्षाएं क्यों नहीं कराई जा सकती। आज तक ब्यूरो।
1: खबर दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के दौरान घायल हुए पुलिसकर्मियों की। दिल्ली में पुलिसकर्मियों के परिवार वालों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सबसे अपना दर्द बयां किया।
2: जंतर मंतर के आंदोलन में घायल पुलिस वालों की कहानी।
19: मुझे बहुत बुरा लगा और मुझे लगा कि मुझे भी जाना चाहिए अपने फादर की जस्टिस के लिए।
2: पुलिस वालों के परिवारों का दर्द, कैसे कांप उठे परिवार।
20: मेरी रूह कांप गई थी कि इसके बाद मेरा और मेरे परिवार का क्या होता।
2: पुलिस वाले की बेटी बोली, पापा की वर्दी खून से लाल थी।
19: उनकी यूनिफॉर्म पूरी खून से लाल थी, उनके सर पे चार टाके आए हुए थे जो कि छोटी मोटी चोट नहीं थी।
2: पुलिस वाले की पत्नी बोली, पत्थरों से घायल कर दिया।
20: पत्थर का टुकड़ा हेलमेट टूटने के बाद उनके सर पर लगता तो शायद वो आज इस दुनिया में नहीं रहते।
2: पुलिस वाले का बेटा बोला, पत्थर से पापा का सिर फट गया।
21: मुझे पता चला कि मेरे फादर को उनके हेड पे इंजरी आ रखी है।
2: सड़क से लेकर संसद तक अभी तक तो छात्रों और प्रदर्शनकारियों की बात हो रही थी, लेकिन अब जंतर मंतर के प्रदर्शन और CJP के संसद मार्च के दौरान घायल हुए पुलिस वालों के परिवार भी अपनी दर्द भरी दास्तान लेकर सबके सामने आ गए हैं। 20 जून से शुरू हुए और 25 जुलाई को खत्म हुए इस आंदोलन में पुलिस वालों ने अपनी ड्यूटी के दौरान क्या क्या झेला, अब पुलिस वालों के परिवार उसको बयान कर रहे हैं। जी हाँ, CJP के आंदोलन में घायल पुलिस कर्मियों के परिजन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उसमें स्क्रीन पर प्रदर्शन के दौरान कैसे पुलिस कर्मी घायल हुए उसके वीडियो दिखाए जाते हैं और फिर एक घायल पुलिस वाले की बेटी गुंजन अपना पूरा दर्द बयान करती है और बताती है कि जब उसके पापा घर लौटे तो कैसे उनकी वर्दी पूरी खून से लाल थी।
19: माय फादर वाज एट मेन प्रोटेस्ट साइट, ही वाज एट द फ्रंट लाइन नियर द बैरिकेड्स, जहां पर बहुत सारा क्राउड था। उसके अगले दिन ही 25 तारीख को माय फादर वाज पुल्ड बाय अ राउडी मॉब एंड ही वाज ऑलमोस्ट लिंच्ड नियर द स्टेज ऑफ जंतर मंतर। दिस हैपेंड ऑन 25th एंड अराउंड 2 PM ही वाज अनकॉन्शियस एट द RML हॉस्पिटल फॉर अबाउट 4 hours। रात को 10 बजे के करीब पापा के कलीग्स उन्हें घर लेके आए और उनकी यूनिफॉर्म पूरी खून से लाल थी, मतलब उनके सर पे चार टाके आए हुए थे जो कि छोटी मोटी चोट नहीं थी। वो रात हमारे लिए बहुत मुश्किल थी।
2: पुलिस कर्मियों के परिवारों का कहना है कि जब प्रदर्शनकारियों को इंसाफ देने की बात चल रही है तो ड्यूटी के दौरान पुलिस वालों और उनके परिवारों ने भी बहुत कुछ झेला है और अब 20 जुलाई को CJP के संसद चलो मार्च के दौरान घायल पुलिस कर्मी की पत्नी सीमा ने जो दर्द बयान किया वो भी सुनिए। सीमा कहती है कि इस प्रदर्शन के दौरान उनके पति का हेलमेट टूट गया था, अगर पत्थर का टुकड़ा हेलमेट टूटने के बाद लगता तो क्या होता।
20: पुलिस फोर्स ने संसद की सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग की गई थी, उसको तोड़ दिया और पुलिस फोर्स पर चप्पलों जूतों और पत्थरों से पुलिस फोर्स पर हमला किया और मेरे पति को भी जो ड्यूटी के दौरान हेलमेट दिया जाता है उनका हेलमेट भी पूरी तरह से टूट गया था और यदि कोई पत्थर का टुकड़ा हेलमेट टूटने के बाद उनके सर पर लगता तो शायद वो आज इस दुनिया में नहीं रहते। ये सोचकर और ये उनके बताए जाने पर मैं इतनी ज्यादा मतलब मेरी रूह कांप गई थी कि इसके बाद मेरा और मेरे परिवार का क्या होता।
2: अब सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल हुए एक और पुलिसकर्मी का बेटा अपना दर्द सुनाता है। लक्ष्य सिंह बिष्ट कहते हैं कि उनके पिता को बहादुरी के लिए 4 सम्मान मिल चुके हैं। उनके दादाजी भी बीएसएफ में थे, 1971 की जंग लड़ चुके हैं, लेकिन जंतर मंतर पर पिता के साथ जो हुआ वो डराने वाला था।
21: मेरे पापा भी जंतर मंतर के फ्रंट लाइन से उनकी ड्यूटी लगी थी प्रोटेस्ट में। एंड ऑन 25 May at 2 PM मुझे पता चला कि मेरे फादर को उनके हेड पे इंजरी आ रखी है उनके फिन के थ्रू। जब मैंने फोटो देखी तो उनके हेड को शेव कर रखा था और उनके हेड पे लाइक स्टिचेस लग रहे थे 4। उसको देख के आई वॉज लाइक रियली फ्रस्ट्रेटेड एंड मैं बहुत डरा हुआ था। जब मेरे पापा घर आए तो उन्होंने मुझे बताया कि जो स्टूडेंट्स की जो प्रोटेस्ट है उसमें स्टूडेंट्स नहीं है, उसमें डाउडीज, उसमें एग्रेसर्स हैं जो लाइक इस अपॉर्चुनिटी का यूज कर रहे हैं जस्ट टू क्रिएट केओस। एंड ऑन 25 May अनप्रवोक्ड उन्होंने मेरे पापा उनकी टीम के ऊपर पेल्टिंग स्टार्ट कर दी। उस टाइम मेरे पापा बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थे, वो अपने सबॉर्डिनेट्स को ब्रीफ कर रहे थे, बट एक स्टोन उनके हेड पे हिट कर गया एंड उनका सर फट गया और उन्हें इंजरी हो गई।
2: पुलिस कर्मियों के परिजनों की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आंकड़े भी दिखाए गए कि इस विरोध प्रदर्शन से दिल्ली पुलिस को कितना नुकसान हुआ है। 250 से अधिक पुलिस कर्मी घायल हुए, 110 से अधिक बैरिकेड डैमेज, 300 से ज्यादा बॉडी प्रोटेक्टर्स का नुकसान, 350 से ज्यादा हेलमेट डैमेज, 50 से ज्यादा शील्ड टूटे, 20 से ज्यादा डाउन हेलर का नुकसान, 10 HHMD और 1 एक्सरे बैगेज का नुकसान, 25 से अधिक सरकारी वाहनों में तोड़फोड़, आगजनी से नुकसान। पुलिस कर्मियों के परिवार वालों का आरोप है कि इस पूरे आंदोलन में कई असामाजिक तत्व भी शामिल थे जिन्होंने पुलिस कर्मियों को ड्यूटी के दौरान निशाना बनाया। आज तक ब्यूरो।
1: आज दिल्ली की कड़कड़नुमा कोर्ट ने आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में आरोपी पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा सुना दी। 2020 में दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की निर्मम हत्या कर दी गई थी। अदालत का निर्णय आने के बाद अंकित शर्मा के परिजनों का मानना है कि उम्र कैद नहीं बल्कि फांसी की सजा मिलनी चाहिए थी।
2: आईबी अधिकारी अंकित शर्मा के हत्या के आरोप में कड़कड़डूमा कोर्ट ने पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत दूसरे आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। 13 जुलाई को कोर्ट ने आरोपियों को हत्या और आपराधिक साजिश का दोषी ठहराया था। सुनवाई के दौरान सभी दोषियों के लिए फांसी की मांग की गई थी, लेकिन अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई। फैसला आने के बाद आज तक से बातचीत के दौरान अंकित शर्मा के भाई अंकुर शर्मा ने यही कहा कि उम्मीद थी कि दोषियों को फांसी होगी।
3: अंकुर जी नमस्कार, ये जो अदालत ने फैसला सुनाया है, ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा सुनाई है, आपका क्या रिएक्शन है, आपके परिवार का क्या रिएक्शन है?
4: सर हमारे परिवार का शुरुआत से 2020 में जब दंगा हुआ था, जब इसे हमारे परिवार की यही मांग थी कि भाई के जो दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और इस केस को, हमारे केस को, भाई के केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस में कोर्ट को देखना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से भाई के साथ जो ये इंसिडेंट हुआ था, आप सभी को पता है कितनी बुरी तरीके से, ब्रूटली तरीके से उसको मारा गया था, कितने चारों तरफ बॉडी पे उसके निशान थे चाकू के और बहुत तेजाब के, और फिर उसकी बॉडी को, भाई की बॉडी को नाले में फेंक दिया गया था जिस तरीके से, तो कोर्ट को ये रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस में देखना चाहिए था और जो भी दोषी है उन सबको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए थी, फांसी की सजा मिलनी चाहिए थी।
1: देहरादून से एक दर्दनाक खबर आई जहां शादी के 8 महीने बाद ही एक लड़की की मौत की खबर आई। ससुराल वालों ने दावा किया कि लड़की ने आत्महत्या की जबकि परिवार इसे हत्या बताता है।
22: सॉरी मम्मा, सॉरी मुझे,
2: कैमरे पर फूट फूट कर रो रही सृष्टि कंडारी अब इस दुनिया में नहीं है। जो कैमरे पर फूट फूट कर ससुराल वालों पर परेशान करने का आरोप लगा रही है।
5: अजीब सा हो गया, 6 महीने से सह रही हूँ, अब और सह ही नहीं जाता।
2: देहरादून की रहने वाली सृष्टि कंडारी की 8 महीने पहले ही शादी हुई थी। पति सौरभ खत्री सरकारी कर्मचारी हैं, जबकि सृष्टि खुद भी सरकारी टीचर थी। मौत से करीब 1 घंटे पहले सृष्टि ने ये वीडियो बनाया जिसमें वो कहती हैं कि सॉरी मम्मी, अब मैं जा रही हूँ।
5: सुनाते रहते हैं शादी के बाद हुआ, शादी के बाद हुआ, मनुष्य मनुष्य।
2: ससुराल वालों का कहना है कि सृष्टि ने आत्महत्या की, जबकि परिवार वाले ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं।
6: मैं देखा सिचुएशन तो मर्डर का सिचुएशन, क्योंकि वो कह रहे थे कि हैंग किया जो भी है वो, तो उनको इन्फॉर्मेशन करना चाहिए था पुलिस को, जो उन्होंने किया या परिवार को करना चाहिए था, पर उन्होंने कोई कॉल नहीं उठाया। वो कैलाश हॉस्पिटल ले गए थे वो।
22: और आप लोग कैसे
6: पता चला? हमें बाहर से किसी ने इन्फॉर्म किया कि आप चाचा जी वहाँ पे आ जाओ।
2: परिवार का कहना है कि 3 महीने पहले सृष्टि के ससुर की हार्ट अटैक से मौत हुई थी। शादी के बाद ससुर को कैंसर होने का पता भी चला था, जिसके बाद ससुराल वाले उसे मनहूस कहकर ताना मारते थे।
23: सर, उनको मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा था। उनको जो उनका वीडियो लास्ट में आया था उसमें दीदी ने यही बताया है कि ये लोग मुझे 6 महीने से परेशान कर रहे हैं। अपने ससुर, जो उनके ससुर हैं बीमार थे काफ़ी समय से, उनके द्वारा बोला गया कि जब से तुम आई हो यहाँ पे तब से हमारे परिवार में ये घटनाएं हो रही हैं, अनिष्ट हो रहा है, इस तरीके से प्रताड़ित करना। कभी उसको, उनने गाड़ी ली थी उसकी किस्त वो भर रही थी, हर चीज़ वो कर रही थी उनके लिए, हर चीज़ उसने मतलब पूरा चाहा कि मैं अपने परिवार के लिए करूं। पर उसके बावजूद उन लोगों के द्वारा उसको इतनी मानसिक प्रताड़ना दी गई कि उसको मजबूरन अब वो सुसाइड हम नहीं मानते, वो हत्या है।
2: पुलिस मामले की जांच कर रही है, वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। अंकित शर्मा, देहरादून आज तक।
1: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज।
24: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

सोशल मीडिया पर पीएम मोदी ने वीडियो से छात्रों को दिया संदेश, कहा गाली गलौज से किसी समस्या का समाधान नहीं, गुमराह बच्चों को करना चाहता हूं माफ, बोले मिलकर बनाए सपनों का भारत। चढ़ावा चोरी पर पप्पू यादव के अजीब गरीब प्रदर्शन पर सियासी जंग, सरकार बोली संसद नाटक करने की जगह नहीं, अखिलेश ने पोस्ट में पूछा सच बुरा लगा क्या। मोदी कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर, 5 साल के लिए बढ़ाई गई पीएम किसान योजना, तेल गैस की खोज के लिए 84,000 करोड़ की समुद्र मंथन योजना मंजूर। दिल्ली दंगे में सजा का ऐलान, आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या में पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत सभी 5 दोषियों को उम्र कैद, बीजेपी आप में सियासी भिड़ंत। और जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकी हमला, 2 गैर कश्मीरी मजदूरों को आतंकियों ने मारी गोली, 1 की मौत, 1 घायल, इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज।

0: नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ मानशु दृष्टि। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया वीडियो संदेश जारी किया और पीएम ने दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान उन्हें जो गाली दी गई थी उसके लिए बच्चों को संदेश जारी किया। पीएम ने कहा कि मुझे और मेरी मां को गाली दी गई। पीएम ने यह भी कहा कि ये गुमराह बच्चे हैं जिन्होंने गालियां दी, अब समय है इन्हें राह दिखाने का, आओ मिलकर देश को आगे बढ़ाएं। उन्होंने ये भी कहा कि ये बच्चे भी हमारे हैं, उन्हें राह दिखाना हमारा ही काम है। बच्चों को गले लगाकर राह दिखाने का समय है ये। पीएम मोदी की तरफ से आजकल वीडियो जारी किए जा रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं वो युवाओं से, इंस्टाग्राम पर आ रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि मैं उन बच्चों को माफ करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे और मेरी मां को गाली दी, गुमराह बच्चों को राह दिखाना हमारा काम है और हम उन्हें दिखाएंगे।
1: हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था, लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं, लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है, कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं, उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बस आओ, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो।
0: तो जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुई विवादित नारेबाजी पर पीएम नरेंद्र मोदी ने एक और वीडियो संदेश जारी किया। पीएम ने कहा कि गाली गलौज किसी समस्या का समाधान नहीं, और जिन बच्चों ने उन्हें और उनकी मां को अपशब्द कहे वो गुमराह हैं, जिन्हें सजा नहीं बल्कि सही राह दिखाने की जरूरत है।
1: गुमराह बच्चे, उनको राह दिखाना हमारा,
2: जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान सामने आए विवादित वीडियो के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार देर रात सोशल मीडिया पर नया वीडियो संदेश जारी किया। पीएम ने कहा कि उन्होंने वे सब देखा जो जंतर मंतर पर हुआ, और ऐसी भाषा किसी सभ्य समाज को शोभा नहीं देती।
1: जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि बचपन में गलतियां होती हैं, लेकिन वही गलतियों को सुधारने का अवसर भी होता है। उन्होंने कहा कि उनके साथ साथ उनकी मां के लिए भी अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। पीएम ने सवाल उठाया कि हमारी बेटियां ऐसी भाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकती हैं, और इसे समाज के लिए एक सांस्कृतिक झटका बताया।
1: मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था, लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं, और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं।
2: जिस छात्रा का वीडियो वायरल हुआ था, उसके खिलाफ नोएडा के एक्सप्रेसवे थाने में FIR दर्ज की गई है। शिकायत में सार्वजनिक उपद्रव, जानबूझकर अपमान और मानहानि से जुड़ी धाराएं लगाई गई हैं। वहीं इस कार्यवाही का कुछ संगठनों ने विरोध भी किया है। बीते 9 दिनों में छात्रों और पेपर लीक के मुद्दे पर प्रधानमंत्री का यह 5वां वीडियो संदेश है। एक बार फिर पीएम ने छात्रों से संयम, संवाद और सकारात्मक रास्ता अपनाने की अपील की है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बस आओ गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो।
0: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कृष्णा कॉलोनी में एक मोमबत्ती फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, और आग लगने के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग बुझाने के काम में जुटी रही। फिलहाल आग लगने के कारणों का और नुकसान की पूरी जानकारी अभी नहीं आई है, लेकिन कोशिश की जा रही है कि आग को जल्द से जल्द फैलने से रोका जा सके और बुझाया जा सके। रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर कई तस्वीरें सामने आई। फायर ब्रिगेड, पुलिस और आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। यूपी के मुरादाबाद में एक फैक्ट्री में ये आग लगी, और ये धरती हुई आग आप देख सकते हैं कि आग कितनी तेजी के साथ फैल रही थी। सटा हुआ एरिया था, सकरी गलियां थी, तो ऐसे में आग बुझाने में थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। और सबसे पहले तो ये कोशिश की जा रही थी कि आग को फैलने से रोका जा सके ताकि नुकसान का दायरा बढ़े नहीं। और अब बात संसद में जारी घमासान की करते हैं। शुक्रवार को संसद परिसर से एक अनोखी तस्वीर सामने आई। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर विपक्ष ने एक नाटक किया, जहां साधु के वेश में पप्पू यादव दिखे, जिसे लेकर अब सियासत बहुत तेज हो गई है।
3: संसद परिसर में अयोध्या चंदा चोरी का मुद्दा विपक्ष ने नाटक का मंचन करके उठाया, जहां पप्पू यादव साधु के भेष में दान पेटी के साथ पहुंचे, जिसमें राहुल गांधी समेत विपक्ष के नेताओं ने सांकेतिक चंदा डाला, जिसके बाद पप्पू यादव दान पेटी देकर भागने की कोशिश करते हैं, जहां उन्हें अयोध्या से आने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद पकड़ते हैं। पप्पू यादव के इस नाटक पर लोकसभा स्पीकर ने नाराजगी जताई। पप्पू यादव के आचरण को संसदीय भावना के खिलाफ बताया।
4: नहीं, वो तो स्पीकर साहब ने कह दिया कि ये रंग बदल बदल के, कपड़े बदल बदल के प्रदर्शन करने का जगह नहीं है, थोड़ा सीरियसनेस दिखाना चाहिए। आप सांसद है तो सांसद की तरह व्यवहार करना चाहिए, नाटक करने का जगह नहीं है। स्पीकर साहब ने कह दिया है, अलग से मुझे कहने का जरूरत नहीं है।
3: वहीं बीजेपी भी पूरे मामले को लेकर विपक्ष पर हमला कर रही है।
5: वो तो कालनेमी का वेश धारण करके आए थे और पूरे सदन ने इसकी निंदा की। तो ये सवाल उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि त्रेता युग के राम को हमला है, राम राम जपियो रे सब माल हरपियो रे,
6: आप भगवान के आस्था के साथ ही नहीं 154 करोड़ भारत के उस आस्था के साथ खिलवाड़ किए हैं जो राम के, जो राम को अपने जीवन में, कर्म में, चरित्र में, चिंतन में रखते हैं।
7: हमारे देश का, इन राजनीतिक पार्टियों का, कांग्रेस हो या सपा हो, जो वोट के खातिर सनातन को बदनाम करने का काम किया है, इसका बदला सनातन लेगा।
8: आपके माध्यम से देश का आम जनमानस देखे कि आखिर अयोध्या में क्या हुआ है। हम लोग तो विपक्ष के लोग हैं, जनता की आवाज उठाते हैं, जनता को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से अयोध्या में हुआ है, क्योंकि जो लोग मौके पे नहीं थे वो नहीं देख सकते। अब तो सीसीटीवी भी डिलीट हो गए हैं।
3: उधर संत समाज ने भी पप्पू यादव को लेकर सवाल खड़े किए हैं।
9: महामहिम राष्ट्रपति महोदया और लोकसभा अध्यक्ष दोनों से यह मांग करूंगा कि ऐसे सांसदों की संसद सदस्यता बर्खास्त होनी चाहिए।
10: इन्होंने अपराध किया है, इन्होंने पाप किया है। आप जरा बताइए कि जिन लोगों ने मंदिर में दान चोरी किया है, क्या वो भगवाधारी थे? वो तो आठों जेल गए, भगवा साधु तो थे नहीं। और यह आप जरा देखिए कितने दुर्भाग्य है। और हमें तो लगता है कि पूरे विपक्ष में एक और दो पप्पू नहीं है, पूरा विपक्ष ही पप्पू हो चुका है।
3: राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर समाजवादी पार्टी पिछले दो दिनों से दान पेटी के साथ प्रदर्शन कर रही है, जिसमें आज पप्पू यादव की एंट्री ने नया सियासी घमासान शुरू कर दिया। आज तक ब्यूरो।
0: उधर संसद में भले ही एंटी पेपर लीक बिल पास हो गया हो, लेकिन हंगामा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की शिकायत लेकर पहुंचे हैं, प्रिविलेज मोशन।
11: पेपर लीक से शुरू हुआ हंगामा पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान लगे आरोपों तक पहुंच गया है। पहले अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया, जिसके बाद केसी वेणुगोपाल ने जितेंद्र सिंह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव स्पीकर को भेज दिया। अनुराग ठाकुर की ओर से दिए गए प्रस्ताव में कहा गया कि रूल 352 का उल्लंघन कर राहुल गांधी ने असंसदीय शब्दों, इडियट और अंधभक्त का इस्तेमाल किया। रूल 353 का उल्लंघन कर केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ गंभीर निराधार आरोप लगाए और मोशन से हटकर टिप्पणियां की। उधर जवाब में आए कांग्रेस के प्रस्ताव में कहा गया कि कोई गोली नहीं चलने का झूठा दावा कर मंत्री ने जानबूझकर संसद को गलत जानकारी दी और सदन को गुमराह किया।
12: मनगढ़ंत एलिगेशंस लगाते हैं जो नियमों के खिलाफ है, उसके लिए भी मैंने नोटिस दिया है। रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस लोकसभा के रूल 222 को देखते हुए और रूल 223 और उसके खिलाफ मैंने स्पीकर साहब को कहा कि उसके ऊपर कार्रवाई करें।
13: तो हाउ कैन ए मिनिस्टर मिसलेड द हाउस लाइक दिस? स्टूडेंट्स नो अबाउट इट, नेशन नो अबाउट इट, नाउ ही इज टेलिंग दिस इज नॉट यूज्ड।
11: उधर संसद के दोनों सदनों में बिल पास हो गया, जिसके बाद अब राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होना बाकी है, जहां पीएम मोदी ने पोस्ट करके अब पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है।
14: फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा। दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है। अब विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में एक महत्वपूर्ण काम पूर्ण हुआ।
11: पेपर लीक बिल पास होने के बावजूद विपक्ष का संसद परिसर में एक बार फिर प्रदर्शन देखने को मिला।
15: विपक्ष के तमाम जो सांसद हैं वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देखिए कि तस्वीरों में यहाँ पर पोस्टर बैनर लेकर के तमाम विपक्ष के जो सांसद हैं, कांग्रेस के सांसद, इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी के सांसद, ये सभी लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और इनकी तरफ से ये मांग की जा रही है कि गृह मंत्री अमित शाह सदन, संसद से गायब क्यों है, सदन में आए, इस तरीके की बातें उनके द्वारा की जा रही है।
16: ये निश्चित तौर से दुर्भाग्य है कि भारत की इतनी बड़ी पार्लियामेंट, उसका एलओपी इतना गैर जिम्मेदार व्यवहार कर रहा है। जब सारी मांगे पूरी हो गई तो आज किस बात का आंदोलन?
15: क्या राहुल,
11: संसद के अंदर भी हंगामा जारी रहा, जिसके बाद संसद की कार्यवाही बाधित हुई।
4: हंगामा करते रहेंगे और सरकार भी हंगामा के चक्कर में अगर बिल ही पारित नहीं करेंगे तो सदन क्या करेंगे? इसलिए हम तो बिल पारित करते रहेंगे। और हमने आज कहा भी है, बाद में बाहर जाके ये नहीं कहना कि बिना चर्चा के बिल पारित क्यों किया गया है।
11: बहरहाल विपक्ष अभी थमने के मूड में नहीं है, जहां वो लगातार सरकार को घेर रहा है और हंगामे के बीच अब संसद सोमवार तक के लिए स्थगित होगी। आज तक ब्यूरो।
0: बात कर लेते हैं दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी के आंदोलन के दौरान घायल हुए पुलिस वालों की। दिल्ली में पुलिस वालों के परिवारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सबके सामने अपने परिवार का दर्द बयां किया।
3: जंतर मंतर के आंदोलन में घायल पुलिस वालों की कहानी।
17: मुझे बहुत बुरा लगा और मुझे लगा कि मुझे भी जाना चाहिए अपने फादर की जस्टिस के लिए।
3: पुलिस वालों के परिवारों का दर्द, कैसे कांप उठे परिवार।
18: मेरी रूह कांप गई थी कि इसके बाद मेरा और मेरे परिवार का क्या होगा।
3: पुलिस वाले की बेटी बोली, पापा की वर्दी खून से लाल थी।
17: उनकी यूनिफॉर्म पूरी खून से लाल थी, उनके सर पे चार टाके आए हुए थे जो कि छोटी मोटी चोट नहीं थी।
3: पुलिस वाले की पत्नी बोली, पत्थरों से घायल कर दिया।
18: पत्थर का टुकड़ा हेलमेट टूटने के बाद उनके सर पर लगता तो शायद वो आज इस दुनिया में नहीं रहते।
3: पुलिस वाले का बेटा बोला, पत्थर से पापा का सिर फट गया।
19: मुझे पता चला कि मेरे फादर को उनके हेड पे इंजरी आ रखी है।
3: सड़क से लेकर संसद तक अभी तक तो छात्रों और प्रदर्शनकारियों की बात हो रही थी, लेकिन अब जंतर मंतर के प्रदर्शन और सीजेपी के संसद मार्च के दौरान घायल हुए पुलिस वालों के परिवार भी अपनी दर्द भरी दास्तान देकर सबके सामने आ गए हैं। 20 जून से शुरू हुए और 25 जुलाई को खत्म हुए इस आंदोलन में पुलिस वालों ने अपनी ड्यूटी के दौरान क्या क्या झेला, अब पुलिस वालों के परिवार उसको बयान कर रहे हैं। जी हाँ, सीजेपी के आंदोलन में घायल पुलिस कर्मियों के परिजन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उसमें स्क्रीन पर प्रदर्शन के दौरान कैसे पुलिस कर्मी घायल हुए उसके वीडियो दिखाए जाते हैं और फिर एक घायल पुलिस वाले की बेटी गुंजन अपना पूरा दर्द बयान करती है और बताती है कि जब उसके पापा घर लौटे तो कैसे उनकी वर्दी पूरी खून से लाल थी।
17: माय फादर वाज एट मेन प्रोटेस्ट साइट, ही वाज एट द फ्रंट लाइन नियर द बैरिकेड्स, जहां पर बहुत सारा क्राउड था। उसके अगले दिन ही 25 तारीख को माय फादर वाज पुल्ड बाय अ राउडी मॉब एंड ही वाज ऑलमोस्ट लिंच्ड नियर द स्टेज ऑफ जंतर मंतर। दिस हैपेंड ऑन 25th and around 2 PM he was unconscious at the RML hospital for about 4 hours. रात को 10 बजे के करीब पापा के कलीग्स उन्हें घर लेके आए और उनकी यूनिफॉर्म पूरी खून से लाल थी, मतलब उनके सर पे चार टाके आए हुए थे जो कि छोटी मोटी चोट नहीं थी। वो रात हमारे लिए बहुत मुश्किल थी।
3: पुलिस कर्मियों के परिवारों का कहना है कि जब प्रदर्शनकारियों को इंसाफ देने की बात चल रही है तो ड्यूटी के दौरान पुलिस वालों और उनके परिवारों ने भी बहुत कुछ झेला है और अब 20 जुलाई को सीजेपी के संसद चलो मार्च के दौरान घायल पुलिस कर्मी की पत्नी सीमा ने जो दर्द बयान किया वो भी सुनिए। सीमा कहती है कि इस प्रदर्शन के दौरान उनके पति का हेलमेट टूट गया था, अगर पत्थर का टुकड़ा हेलमेट टूटने के बाद लगता तो क्या होता।
18: पुलिस फोर्स ने संसद की सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग की गई थी, उसको तोड़ दिया और पुलिस फोर्स पर चप्पलों जूतों और पत्थरों से पुलिस फोर्स पर हमला किया और मेरे पति को भी जो ड्यूटी के दौरान हेलमेट दिया जाता है उनका हेलमेट भी पूरी तरह से टूट गया था और यदि कोई पत्थर का टुकड़ा हेलमेट टूटने के बाद उनके सर पर लगता तो शायद वो आज इस दुनिया में नहीं रहते। ये सोचकर और ये उनके बताए जाने पर मैं इतनी ज्यादा मतलब मेरी रूह कांप गई थी कि इसके बाद मेरा और मेरे परिवार का क्या होता।
3: अब सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल हुए एक और पुलिसकर्मी का बेटा अपना दर्द सुनाता है। लक्ष्य सिंह बिष्ट कहते हैं कि उनके पिता को बहादुरी के लिए 4 सम्मान मिल चुके हैं। उनके दादाजी भी बीएसएफ में थे, 1971 की जंग लड़ चुके हैं, लेकिन जंतर मंतर पर पिता के साथ जो हुआ वो डराने वाला था।
19: मेरे पापा भी जंतर मंतर के फ्रंट लाइन से उनकी ड्यूटी लगी थी प्रोटेस्ट में, एंड ऑन 25 May at 2 PM मुझे पता चला कि मेरे फादर को उनके हेड पे इंजरी आ रखी है उनके फ्रेंड के थ्रू। जब मैंने फोटो देखी तो उनके हेड को शेव कर रखा था और उनके हेड पे लाइक स्टिचेस लग रहे थे 4। उसको देख के आई वॉज लाइक रियली फ्रस्ट्रेटेड एंड मैं बहुत डरा हुआ था। जब मेरे पापा घर आए तो उन्होंने मुझे बताया कि जो स्टूडेंट्स की जो प्रोटेस्ट है उसमें स्टूडेंट्स नहीं है, उसमें राउडीज, उसमें एग्रेसर्स हैं जो लाइक इस अपॉर्चुनिटी का यूज कर रहे हैं जस्ट टू क्रिएट केओस। एंड ऑन 25 May अनप्रोवोक्ड उन्होंने मेरे पापा उनकी टीम के ऊपर पेल्टिंग स्टार्ट कर दी। उस टाइम मेरे पापा बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थे, वो अपने सबॉर्डिनेट्स को ब्रीफ कर रहे थे, बट एक स्टोन उनके हेड पे हिट कर गया एंड उनका सर फट गया और उन्हें इंजरी हो गई।
3: पुलिस कर्मियों के परिजनों की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आंकड़े भी दिखाए गए कि इस विरोध प्रदर्शन से दिल्ली पुलिस को कितना नुकसान हुआ है। 250 से अधिक पुलिस कर्मी घायल हुए, 110 से अधिक बैरिकेड डैमेज, 300 से ज्यादा बॉडी प्रोटेक्टर्स का नुकसान, 350 से ज्यादा हेलमेट डैमेज, 50 से ज्यादा शील्ड टूटे, 20 से ज्यादा लाउड हेलर का नुकसान, 10 HHMD और 1 एक्सरे बैगेज का नुकसान, 25 से अधिक सरकारी वाहनों में तोड़फोड़, आगजनी से नुकसान। पुलिस कर्मियों के परिवार वालों का आरोप है कि इस पूरे आंदोलन में कई असामाजिक तत्व भी शामिल थे जिन्होंने पुलिस कर्मियों को ड्यूटी के दौरान निशाना बनाया। आज तक ब्यूरो।
0: दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में आरोपित पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा सुनाई। दिल्ली दंगा 2020 में हुआ था, उस दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की निर्मम हत्या कर दी गई थी। अदालत का फैसला आने के बाद अंकित शर्मा के परिजनों का मानना है कि उम्र कैद नहीं फांसी की सजा मिलनी चाहिए थी।
3: आईबी अधिकारी अंकित शर्मा के हत्या के आरोप में कड़कड़डूमा कोर्ट ने पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत दूसरे आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। 13 जुलाई को कोर्ट ने आरोपियों को हत्या और आपराधिक साजिश का दोषी ठहराया था। सुनवाई के दौरान सभी दोषियों के लिए फांसी की मांग की गई थी, लेकिन अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई। फैसला आने के बाद आज तक से बातचीत के दौरान अंकित शर्मा के भाई अंकुर शर्मा ने यही कहा कि उम्मीद थी कि दोषियों को फांसी होगी।
20: अंकुर जी नमस्कार, ये जो अदालत ने फैसला सुनाया है ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा सुनाई है, आपका क्या रिएक्शन है, आपके परिवार का क्या रिएक्शन है?
21: सर हमारे परिवार का शुरुआत से 2020 में जब दंगा हुआ था जब इसे हमारे परिवार की यही मांग थी कि भाई के जो दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और इस केस को हमारे केस को भाई के केस को रेअरेस्ट ऑफ रेअरेस्ट केस में कोर्ट को देखना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से भाई के साथ जो ये इंसिडेंट हुआ था आप सभी को पता है कितनी बुरी तरीके से ब्रूटली तरीके से उसको मारा गया था, कितने चारों तरफ बॉडी पे उसके निशान थे चाकू के और बहुत तेजाब के, और फिर उसकी बॉडी को भाई की बॉडी को नाले में फेंक दिया गया था जिस तरीके से, तो कोर्ट को ये रेअरेस्ट ऑफ रेअरेस्ट केस में देखना चाहिए था और जो भी दोषी है उन सबको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए थी, फांसी की सजा मिलनी चाहिए थी।
0: यहां वक्त चला बहुत छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
22: क्या सावन का शनिवार अपने आप में बहुत विशेष होता है? क्या सावन के शनिवार पर बहुत सारे लाभ हो सकते हैं? क्या है सावन के शनिवार का पूजा विधान और शनिदेव की कृपा से मिलेंगे कौन से वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।
1: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tea at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
2: Terms apply. Visit wellsfargo.com/depositdisclosures for fees and details.

सोशल मीडिया पर पीएम मोदी ने वीडियो से छात्रों को दिया संदेश, कहा गाली गलौज से किसी समस्या का समाधान नहीं, गुमराह बच्चों को करना चाहता हूं माफ, बोले मिलकर बनाए सपनों का भारत। चढ़ावा चोरी पर पप्पू यादव के अजीब गरीब प्रदर्शन पर सियासी जंग, सरकार बोली संसद नाटक करने की जगह नहीं, अखिलेश ने पोस्ट में पूछा सच बुरा लगा क्या। मोदी कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर, 5 साल के लिए बढ़ाई गई पीएम किसान योजना, तेल गैस की खोज के लिए 84,000 करोड़ की समुद्र मंथन योजना मंजूर। दिल्ली दंगे में सजा का ऐलान, आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या में पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत सभी 5 दोषियों को उम्र कैद, बीजेपी आप में सियासी भिड़ंत। और जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकी हमला, 2 गैर कश्मीरी मजदूरों को आतंकियों ने मारी गोली, 1 की मौत 1 घायल, इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज। महंगाई के बीच कारोबारियों के लिए राहत की खबर है, सूत्र के मुताबिक आज से 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कटौती की गई है, दिल्ली में इसकी कीमत 202 रुपए और कोलकाता में 209 रुपए कम हुई है। अब नई दरों के बाद कोलकाता में 19 किलो का कमर्शियल सिलेंडर 2,872 रुपए 50 पैसे में मिलेगा, हालांकि आम उपभोक्ताओं के लिए घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है, ये सिर्फ कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर में बदलाव हुआ है, 202 रुपए सस्ता हुआ है दिल्ली में और कोलकाता में 209 रुपए कमर्शियल सिलेंडर सस्ता हुआ है। ये 19 किलो वाला जो नीला सिलेंडर आप देखते हैं ना बड़ा वाला, ये उसमें बदलाव हुआ है, घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर में कोई बदलाव अभी नहीं हुआ है, सिर्फ कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर सस्ता हुआ है। और जब वेस्ट एशिया में तलाश चल रहा था उस दौरान कमर्शियल सिलेंडर बहुत तेजी के साथ बढ़े थे, महंगे हुए थे, लेकिन अब बदलाव हुआ है इनके मूल्य में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नया वीडियो जारी किया, पीएम ने दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान उन्हें गाली देने वाले बच्चों के लिए संदेश जारी किया, पीएम ने कहा कि मुझे और मेरी मां को गाली दी गई, पीएम ने यह भी कहा कि

0: गुमराह बच्चे हैं जिन्होंने गालियां दी, अब समय है इन्हें राह दिखाने का, बच्चों को गले लगाकर राह दिखाने का समय है ये। और ये भी कहा कि मैं उन बच्चों को माफ करना चाहता हूं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कई तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, शब्दों का इस्तेमाल किया गया था जंतर मंतर पर जब प्रदर्शन चल रहा था। आजकल कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। अब इस पर पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया कि हमारी बेटी ऐसी भाषा कैसे बोल सकती है, लेकिन ठीक है, बचपने में अगर ये बात कही गई है तो हमें उन्हें राह दिखाना होगा और ये हमारा काम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश जारी करते हुए कहा कि मैं उन बच्चों को माफ करना चाहता हूं।
1: हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई, न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं, लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है, कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं, उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बस आओ, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो।
0: तो जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुई विवादित नारेबाजी पर पीएम मोदी ने एक और वीडियो संदेश जारी किया, कहा कि गाली गलौज किसी समस्या का समाधान नहीं है और जिन बच्चों ने उन्हें और उनकी मां को अपशब्द कहे वो गुमराह हैं, जिन्हें सजा नहीं बल्कि सही राह दिखाने की जरूरत है।
1: गुमराह बच्चे, उनको राह दिखाना हमारा।
2: जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान सामने आए विवादित वीडियो के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार देर रात सोशल मीडिया पर नया वीडियो संदेश जारी किया। पीएम ने कहा कि उन्होंने वे सब देखा जो जंतर मंतर पर हुआ और ऐसी भाषा किसी सभ्य समाज को शोभा नहीं देती।
1: जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि बचपन में गलतियां होती हैं, लेकिन वही गलतियों को सुधारने का अवसर भी होता है। उन्होंने कहा कि उनके साथ साथ उनकी मां के लिए भी अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। पीएम ने सवाल उठाया कि हमारी बेटियां ऐसी भाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकती हैं, और इसे समाज के लिए एक सांस्कृतिक झटका बताया।
1: मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था, लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं, और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती है।
2: जिस छात्रा का वीडियो वायरल हुआ था उसके खिलाफ नोएडा के एक्सप्रेसवे थाने में FIR दर्ज की गई है। शिकायत में सार्वजनिक उपद्रव, जानबूझकर अपमान और मानहानि से जुड़ी धाराएं लगाई गई हैं। वहीं इस कार्यवाही का कुछ संगठनों ने विरोध भी किया है। बीते 9 दिनों में छात्रों और पेपर लीक के मुद्दे पर प्रधानमंत्री का यह 5वां वीडियो संदेश है। एक बार फिर पीएम ने छात्रों से संयम, संवाद और सकारात्मक रास्ता अपनाने की अपील की है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बस आओ गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो।
0: देश के मुरादाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है। कृष्णा कॉलोनी में एक मोमबत्ती फैक्ट्री में भीषण आग लगी। आग लगने के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में जुटी हुई हैं। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है और न ही ये पता चल सका है कि कितना नुकसान हुआ है, लेकिन आग बुझाने के प्रयास लगातार जारी हैं ताकि आग फैले नहीं। रेस्क्यू ऑपरेशन भी इस दौरान जारी है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक मोमबत्ती फैक्ट्री थी जहां पर ये आग लगी, लेकिन आग कैसे लगी ये पता नहीं चल पाया है। लेकिन सक्रिय गलियों की वजह से फायर फाइटर्स को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मुरादाबाद से तस्वीर आप देख रहे हैं जहां भीषण आग लगी हुई है और ये मोमबत्ती की फैक्ट्री थी, तो ऐसे में आग बहुत तेजी के साथ फैली। संसद में जारी घमासान की शुक्रवार को संसद परिसर से अनोखी तस्वीर सामने आई। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर विपक्ष ने नाटक किया जहां साधु के बीच में पप्पू यादव दिखे, जिसे लेकर अब सियासत बहुत तेज है।
3: संसद परिसर में अयोध्या चंदा चोरी का मुद्दा विपक्ष ने नाटक का मंचन करके उठाया, जहां पप्पू यादव साधु के भेष में दान पेटी के साथ पहुंचे, जिसमें राहुल गांधी समेत विपक्ष के नेताओं ने सांकेतिक चंदा डाला, जिसके बाद पप्पू यादव दान पेटी लेकर भागने की कोशिश करते हैं, जहां उन्हें अयोध्या से आने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद पकड़ते हैं। पप्पू यादव के इस नाटक पर लोकसभा स्पीकर ने नाराजगी जताई। पप्पू यादव के आचरण को संसदीय भावना के खिलाफ बताया।
4: नहीं, वो तो स्पीकर साहब ने कह दिया कि ये रंग बदल बदल के, कपड़े बदल बदल के प्रदर्शन करने का जगह नहीं है, थोड़ा सीरियसनेस दिखाना चाहिए। आप सांसद है तो सांसद की तरह व्यवहार करना चाहिए, नाटक करने का जगह नहीं है। स्पीकर साहब ने कह दिया है, अलग से मुझे कहने का जरूरत नहीं है।
3: वहीं बीजेपी भी पूरे मामले को लेकर विपक्ष पर हमला कर रही है।
5: वो तो कालनेमी का वेश धारण करके आए थे और पूरे सदन ने इसकी निंदा की। तो ये सवाल उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि त्रेता युग के राम को हमलाए, राम राम जपियो रे सब माल हरपियो रे। आप भगवान के आस्था के साथ ही नहीं, 154 करोड़ भारत के उस आस्था के साथ खिलवाड़ किए हैं जो राम के, जो राम को अपने जीवन में, कण में, चरित्र में, चिंतन में रखते हैं।
6: हमारे देश का, इन राजनीतिक पार्टियों का, कांग्रेस हो या सपा हो, जो वोट के खातिर सनातन को बदनाम करने का काम किया है, इसका बदला सनातन

0: लेगा।
1: आपके माध्यम से देश का आम जनमानस देखे कि आखिर अयोध्या में क्या हुआ है। हम लोग तो विपक्ष के लोग हैं, जनता की आवाज उठाते हैं, जनता को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से अयोध्या में हुआ है, क्योंकि जो लोग मौके पे नहीं थे वो नहीं देख सकते। अब तो सीसीटीवी भी डिलीट हो गए हैं।
2: उधर संत समाज ने भी पप्पू यादव को लेकर सवाल खड़े किए हैं।
3: महामहिम राष्ट्रपति महोदया और लोकसभा अध्यक्ष दोनों से यह मांग करूंगा कि ऐसे सांसदों की संसद सदस्यता बर्खास्त होनी चाहिए।
4: इन्होंने अपराध किया है, इन्होंने पाप किया है। आप जरा बताइए कि जिन लोगों ने मंदिर में दान चोरी किया है, क्या वो भगवाधारी थे? वो तो आठों जेल गए, भगवा साधु तो थे नहीं। और यह आप जरा देखिए कितने दुर्भाग्य है। और हमें तो लगता है कि पूरे विपक्ष में एक और दो पप्पू नहीं है, पूरा विपक्ष ही पप्पू हो चुका है।
2: राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर समाजवादी पार्टी पिछले दो दिनों से दान पेटी के साथ प्रदर्शन कर रही है, जिसमें आज पप्पू यादव की एंट्री ने नया सियासी घमासान शुरू कर दिया। आज तक ब्यूरो।
5: बाद दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के दौरान घायल हुए पुलिस वालों की दिल्ली में पुलिस वालों के परिवारों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सबके सामने अपना दर्द बयां किया, जो अभी तक किसी ने नहीं सुना था।
2: जंतर मंतर के आंदोलन में घायल पुलिस वालों की कहानी।
6: मुझे बहुत बुरा लगा और मुझे लगा कि मुझे भी जाना चाहिए अपने फादर की जस्टिस के लिए।
2: पुलिस वालों के परिवारों का दर्द कैसे कांप उठे परिवार।
7: मेरी रूह कांप गई थी कि इसके बाद मेरा और मेरे परिवार का क्या होता।
2: पुलिस वाले की बेटी बोली, पापा की वर्दी खून से लाल थी।
6: उनकी यूनिफॉर्म पूरी खून से लाल थी, उनके सर पे चार टाके आए हुए थे जो कि छोटी मोटी चोट नहीं थी।
2: पुलिस वाले की पत्नी बोली, पत्थरों से घायल कर दिया।
7: पत्थर का टुकड़ा हेलमेट टूटने के बाद उनके सर पर लगता तो शायद वो आज इस दुनिया में नहीं रहते।
2: पुलिस वाले का बेटा बोला, पत्थर से पापा का सिर फट गया।
8: मुझे पता चला कि मेरे फादर को उनके हेड पे इंजरी आ रखी है।
2: सड़क से लेकर संसद तक अभी तक तो छात्रों और प्रदर्शनकारियों की बात हो रही थी, लेकिन अब जंतर मंतर के प्रदर्शन और सीजेपी के संसद मार्च के दौरान घायल हुए पुलिस वालों के परिवार भी अपनी दर्द भरी दास्तान देकर सबके सामने आ गए हैं। 20 जून से शुरू हुए और 25 जुलाई को खत्म हुए इस आंदोलन में पुलिस वालों ने अपनी ड्यूटी के दौरान क्या क्या झेला, अब पुलिस वालों के परिवार उसको बयान कर रहे हैं। जी हाँ, सीजेपी के आंदोलन में घायल पुलिस कर्मियों के परिजन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उसमें स्क्रीन पर प्रदर्शन के दौरान कैसे पुलिस कर्मी घायल हुए उसके वीडियो दिखाए जाते हैं और फिर एक घायल पुलिस वाले की बेटी गुंजन अपना पूरा दर्द बयान करती है और बताती है कि जब उसके पापा घर लौटे तो कैसे उनकी वर्दी पूरी खून से लाल थी।
6: It was at the front line near the barricades, जहाँ पर बहुत सारा क्राउड था। उसके अगले दिन ही 25 तारीख को my father was pulled by a rowdy mob and it was almost lynched near the stage of Jantar Mantar. This happened on 25th and around 2 p.m. He was unconscious at the RML hospital for about 4 hours. रात को 10 बजे के करीब पापा के कलीग्स उन्हें घर लेके आए और उनकी यूनिफॉर्म पूरी खून से लाल थी, मतलब उनके सर पे चार टाके आए हुए थे जो कि छोटी मोटी चोट नहीं थी। वो रात हमारे लिए बहुत मुश्किल थी।
2: पुलिस कर्मियों के परिवारों का कहना है कि जब प्रदर्शनकारियों को इंसाफ देने की बात चल रही है तो ड्यूटी के दौरान पुलिस वालों और उनके परिवारों ने भी बहुत कुछ झेला है और अब 20 जुलाई को सीजेपी के संसद चलो मार्च के दौरान घायल पुलिस कर्मी की पत्नी सीमा ने जो दर्द बयान किया वो भी सुनिए। सीमा कहती है कि इस प्रदर्शन के दौरान उनके पति का हेलमेट टूट गया था, अगर पत्थर का टुकड़ा हेलमेट टूटने के बाद लगता तो क्या होता।
7: पुलिस फोर्स ने संसद की सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग की गई थी, उसको तोड़ दिया और पुलिस फोर्स पर चप्पलों जूतों और पत्थरों से

0: उन पुलिस फोर्स पर हमला किया और मेरे पति को भी जो ड्यूटी के दौरान हेलमेट दिया जाता है उनका हेलमेट भी पूरी तरह से टूट गया था और यदि कोई पत्थर का टुकड़ा हेलमेट टूटने के बाद उनके सर पर लगता तो शायद वो आज इस दुनिया में नहीं रहते। ये सोचकर और ये उनके बताए जाने पर मैं इतनी ज्यादा मतलब मेरी रूह कांप गई थी कि इसके बाद मेरा और मेरे परिवार का क्या होता।
1: अब सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल हुए एक और पुलिसकर्मी का बेटा अपना दर्द सुनाता है। लक्ष्य सिंह बिष्ट कहते हैं कि उनके पिता को बहादुरी के लिए 4 सम्मान मिल चुके हैं। उनके दादाजी भी बीएसएफ में थे, 1971 की जंग लड़ चुके हैं, लेकिन जंतर मंतर पर पिता के साथ जो हुआ वो डराने वाला था।
2: मेरे पापा भी जंतर मंतर के फ्रंट लाइन से उनकी ड्यूटी लगी थी प्रोटेस्ट में एंड ऑन 25 May at 2 PM मुझे पता चला कि मेरे फादर को उनके हेड पे इंजरी आ रखी है उनके फिन के थ्रू। जब मैंने फोटो देखी तो उनके हेड को शेव कर रखा था और उनके हेड पे लाइक स्टिचेस लग रहे थे 4। उसको देख के आई वॉज लाइक रियली फ्रस्ट्रेटेड एंड मैं बहुत डरा हुआ था। जब मेरे पापा घर आए तो उन्होंने मुझे बताया कि जो स्टूडेंट्स की जो प्रोटेस्ट है उसमें स्टूडेंट्स नहीं है, उसमें डाउडीज है, उसमें एग्रेसर्स हैं जो लाइक इस अपॉर्चुनिटी का यूज कर रहे हैं जस्ट टू क्रिएट केओस। एंड ऑन 25 May अनप्रवोक्ड उन्होंने मेरे पापा उनकी टीम के ऊपर पेल्टिंग स्टार्ट कर दी। उस टाइम मेरे पापा बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थे, वो अपने सबॉर्डिनेट्स को ब्रीफ कर रहे थे बट एक स्टोन उनके हेड पे हिट कर गया एंड उनका सर फट गया और उन्हें इंजरी हो गई।
1: पुलिस कर्मियों के परिजनों की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आंकड़े भी दिखाए गए कि इस विरोध प्रदर्शन से दिल्ली पुलिस को कितना नुकसान हुआ है। 250 से अधिक पुलिस कर्मी घायल हुए, 110 से अधिक बैरिकेड डैमेज, 300 से ज्यादा बॉडी प्रोटेक्टर्स का नुकसान, 350 से ज्यादा हेलमेट डैमेज, 50 से ज्यादा शील्ड टूटे, 20 से ज्यादा लाउड हेलर का नुकसान, 10 HHMD और 1 एक्सरे बैगेज का नुकसान, 25 से अधिक सरकारी वाहनों में तोड़फोड़, आगजनी से नुकसान। पुलिस कर्मियों के परिवार वालों का आरोप है कि इस पूरे आंदोलन में कई असामाजिक तत्व भी शामिल थे जिन्होंने पुलिस कर्मियों को ड्यूटी के दौरान निशाना बनाया। आज तक ब्यूरो।
3: दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट में आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में आरोपित पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा सुनाई। 2020 में दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की निर्मम हत्या कर दी गई थी। अदालत का फैसला आने के बाद अंकित शर्मा के परिजनों का मानना है कि उम्र कैद नहीं बल्कि फांसी की सजा मिलनी चाहिए थी।
1: आईबी अधिकारी अंकित शर्मा के हत्या के आरोप में कड़कड़डूमा कोर्ट ने पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत दूसरे आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। 13 जुलाई को कोर्ट ने आरोपियों को हत्या और आपराधिक साजिश का दोषी ठहराया था। सुनवाई के दौरान सभी दोषियों के लिए फांसी की मांग की गई थी लेकिन अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई। फैसला आने के बाद आज तक से बातचीत के दौरान अंकित शर्मा के भाई अंकुर शर्मा ने यही कहा कि उम्मीद थी कि दोषियों को फांसी होगी।
4: अंकुर जी नमस्कार, ये जो अदालत ने फैसला सुनाया है ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा सुनाई है, आपका क्या रिएक्शन है, आपके परिवार का क्या रिएक्शन है?
5: सर हमारे परिवार का शुरुआत से 2020 में जब दंगा हुआ था जब इसे हमारे परिवार की यही मांग थी कि भाई के जो दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और इस केस को हमारे केस को भाई के केस को रेअरेस्ट ऑफ रेअरेस्ट केस में कोर्ट को देखना चाहिए क्योंकि जिस तरीके से भाई के साथ जो ये इंसिडेंट हुआ था आप सभी को पता है कितनी बुरी तरीके से ब्रूटली तरीके से उसको मारा गया था, कितने चारों तरफ बॉडी पे उसके निशान थे चाकू के और बहुत तेजाब के और फिर उसकी बॉडी को भाई की बॉडी को नाले में फेंक दिया गया था जिस तरीके से, तो कोर्ट को ये रेरेस्ट ऑफ रेरेस्ट केस में देखना चाहिए था और जो भी दोषी है उन सबको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए थी, फांसी की सजा मिलनी चाहिए थी।
3: रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का।

0: much.
1: क्या सावन का शनिवार अपने आप में बहुत विशेष होता है? क्या सावन के शनिवार पर बहुत सारे लाभ हो सकते हैं? क्या है सावन के शनिवार का पूजा विधान और शनिदेव की कृपा से मिलेंगे कौन से वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।
2: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
3: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच

0: Jack FM is now streaming commercial-free on TuneIn Premium.
1: Jack, come home. It's supper time.
0: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
2: Hey, Jack, could you play that one song with the words?
0: Jack FM, playing what we want.
3: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
4: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच

सोशल मीडिया पर पीएम मोदी ने वीडियो से छात्रों को दिया संदेश, कहा गाली गलौज से किसी समस्या का समाधान नहीं, गुमराह बच्चों को करना चाहता हूं माफ, बोले मिलकर बनाए सपनों का भारत। मोदी कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर मोहर, 5 साल के लिए बढ़ाई गई पीएम किसान योजना, तेल गैस की खोज के लिए 84,000 करोड़ की समुद्र मंथन योजना मंजूर। 2020 दिल्ली दंगे में सजा का ऐलान, आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या में पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत सभी 5 दोषियों को उम्र कैद, बीजेपी आप में सियासी भिड़ंत। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकी हमला, 2 गैर कश्मीरी मजदूरों को आतंकियों ने मारी गोली, 1 की मौत 1 घायल, इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में 200 रुपए से ज्यादा की कटौती, दिल्ली से कोलकाता तक घटी कीमतें, 2,872 रुपए का मिलेगा 19 किलो का सिलेंडर।

आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। वैसे तो सावन का हर दिन अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन सावन के सोमवार और शनिवार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। आज हम बात करेंगे सावन के शनिवार की, जिसको संपत शनिवार कहा जाता है। इसकी महिमा क्या है, इसका विधान क्या है, इस दिन के लाभ क्या हैं, इन विषयों पर बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना विशेष है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग।

26 दिन शनिवार, तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि, रात के 11:07 तक। नक्षत्र है शतभिषा नक्षत्र, रात के 8:45 तक। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय प्रातः 9:10 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम आपको बता रहे हैं सावन के महीने के शनिवार की महिमा के बारे में। सावन के महीने से शनि का क्या संबंध है, पहले ये समझते हैं। देखिए, सावन का महीना जल तत्व का महीना है और इसमें बाकी तत्व कमजोर होते हैं। इस कारण से सावन में मन की, पाचन तंत्र की और स्नायु तंत्र की समस्याएं लगातार व्यक्ति को परेशान करती हैं। वायु तत्व और उसके स्वामी शनि को अगर आप सावन में मजबूत करें तो अपने स्वास्थ्य की और मन की समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। सावन में आपका स्वास्थ्य अच्छा हो, आपका मन अच्छा हो, इसके लिए कुछ मंत्रों का जप करना चाहिए और कुछ सावधानियों का पालन करना चाहिए। सावन के महीने में शनिदेव की उपासना सबसे ज्यादा लाभदायक होती है और ऐसा माना जाता है कि अगर आप सावन में शनिदेव की उपासना करें तो बाकी समय में शनिदेव की उपासना की आवश्यकता नहीं होती है। तो मुख्यतः सावन के सोमवार और सावन के शनिवार अपने आप में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। सावन के शनिवार पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और सावन का एक विशेष उपाय बताएंगे सावन सूत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि।

होगा। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। वृषभ राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा पर जा सकते हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी।

पारिवारिक समस्याएं हल होंगी, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। तो सावन का शनिवार अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब ये जानते हैं कि सावन के शनिवार की खास बातें क्या हैं। देखिए, सावन में आम तौर पर हर तरह की ऊर्जा की कमी होती है। सावन में आलस्य और शिथिलता आपको ज्यादा महसूस होगी, इसीलिए सावन में आम आदमी को स्वास्थ्य की और धन की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सावन के हर शनिवार को उपासना करने पर व्यक्ति को शनि के द्वारा अपार धन और संपत्ति मिल सकती है। सावन का शनिवार चूंकि धन और संपत्ति देता है, इसलिए सावन के शनिवार को संपत्ति शनिवार भी कहते हैं। अगर शनि के लिए केवल सावन में उपासना की जाए, केवल सावन में शनि देव की पूजा की जाए, तो साल भर शनि उपासना की जरूरत नहीं पड़ती है। जिन लोगों की शनि की साढ़े साती चल रही है, जिनकी शनि की ढैया चल रही है, या जिनकी कुंडलियों में शनि का अशुभ समय चल रहा है,

वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। सिंह राशि, ऑफिस में व्यस्तता रहेगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, किसी अतिथि का आगमन होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा।

बेहतर होता जाएगा। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें भाग्यचक्र@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न दीपिका जी ने हमें लिखा है और दीपिका जी हमें बेंगलोर से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 21 फरवरी 1990, जन्म का समय सुबह के 11 बजे, जन्म स्थान है गाजियाबाद। दीपिका कह रही हैं कि मेरे एक संतान है और मैं दूसरे संतान के लिए प्रयास करना चाहती हूँ, क्या दूसरे संतान के लिए प्रयास करना उचित होगा? दीपिका, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके स्वास्थ्य का मामला बहुत अच्छा नहीं है और कुंडली में दूसरे संतान के होने की संभावना भी इतनी प्रबल नहीं है, तो मुझे लगता है कि स्वास्थ्य और स्थितियों को देखते हुए आप दूसरे संतान के लिए प्रयास ना करें। अपने स्वास्थ्य और जीवन को बेहतर करने के लिए एक मूंगा बनवा के पहन लें, 10-12 रत्ती का मूंगा, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार को सवेरे मूंगा धारण करें और रोज सुबह एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो सावन का शनिवार कितना महत्वपूर्ण है ये आपने जान लिया। अब सामान्य रूप से सावन के शनिवार को कैसे पूजा उपासना करेंगे? आज सावन का शनिवार है तो आज शाम को पीपल के वृक्ष के निकट जाइए। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक बड़ा सा दीपक जलाइएगा। पहले दीपक जलाने के बाद शिव जी के मंत्रों का जप करिएगा, नमः शिवाय का, और फिर शनि देव के मंत्रों का जप करिएगा, ओम शं शनैश्चराय नमः। इसके बाद जब मंत्र जप कर लें तो किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन कराएं या भोजन का या अनाज का दान करें या भोजन करने के लिए धन दें। इसके बाद शिव जी और शनि देव से कृपा करने की प्रार्थना करें। आप चाहें तो आपके घर में अगर शमी का पौधा है, पीपल का वृक्ष काफी दूर है या नहीं है, तो शमी के पौधे के नीचे दीपक जलाइएगा और इसके बाद पहले आपको भगवान शिव के मंत्र का जप करना है, इसके बाद शनि देव के मंत्र का जप करिए और इसके बाद भोजन का या अन्न का दान करिएगा। अगर सावन के शनिवार को ये छोटा सा प्रयोग आप कर लेते हैं तो शनि संबंधी बाधाओं से, शनि संबंधी मुश्किलों से आपको छुटकारा जल्दी मिलेगा। चर्चा हमारी जारी है लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है
और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, रिश्तों की समस्या हल होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, चोट चपेट से बचाव करें, अनाज का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल।

तनाव बढ़ सकता है, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी। परिवार में विवादों से बचाव करें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। धनु राशि, परिवार में शुभ कार्य होंगे, करियर में लाभ के योग हैं, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। अगर आपको रोजगार की कोई समस्या है, नौकरी में दिक्कत आ रही है, व्यापार या प्रोफेशन ठीक नहीं है, रोजगार के लिए किसी समस्या से जूझ रहे हैं, तो सावन के शनिवार को रोजगार के लिए क्या उपाय करेंगे? शनिवार को एक वेला उपवास रखिएगा, बेहतर होगा दिन में, या शाम को एक समय अनाज मत खाइएगा। शाम के समय शनिदेव के मंत्र का जप करिएगा, 3 माला या 11 माला। ओम शं शनैश्चराय नमः या ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करिएगा। और इसके बाद हाथ में काला धागा लेकर के पीपल के वृक्ष की 3 बार परिक्रमा करिएगा और उसके तने में काला धागा लपेटिएगा।

आइएगा और इसके बाद प्रार्थना करिएगा कि आपको रोजगार की, नौकरी की, व्यापार की समस्याओं से मुक्ति मिले। सावन के शनिवार पर पूजा उपासना करने से धन संपत्ति प्राप्त करना आसान होता है, इसीलिए इसको संपत्ति शनिवार कहा जाता है। तो सावन के शनिवार को धन संपत्ति के लिए क्या करेंगे? सावन के शनिवार की शाम को नीम की लकड़ी जलाइए और उस पर काले तिल से हवन करिए। कुल मिलाकर नीम की लकड़ी में जो आग जल रही है उसमें 108 बार आहुति दीजिएगा और हर बार जब अग्नि में काला तिल डालेंगे तो मंत्र बोलेंगे, ओम शं शनैश्चराय स्वाहा, ओम शं शनैश्चराय स्वाहा। इस मंत्र से हवन करेंगे और हवन करने के बाद काली चीजों का दान करेंगे, जैसे काले चने का, काली उड़द की दाल का दान कर सकते हैं। अगर ये प्रयोग सावन के शनिवार की शाम को आप करें तो आपको धन और संपत्ति का लाभ होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, करियर में सफलता के योग हैं, लंबी यात्रा पर जा सकते हैं, धन के खर्चों पर ध्यान दें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की समस्या हल होगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी।

लापरवाही ना करें, सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। देखिए, कोई भी मूर्ति अगर खंडित हो जाए या टूट जाए तो उसकी पूजा नहीं करते हैं, उसे हटा देते हैं। लेकिन शिवलिंग अगर खंडित हो जाए तो भी उसकी पूजा की जा सकती है। ऐसा क्यों? देखिए, जितनी भी मूर्तियां हैं देवी देवताओं की, वो देवी देवताओं का साकार स्वरूप है। और अगर ऐसी मूर्तियां खंडित हो जाती हैं तो साकार स्वरूप नष्ट हो जाता है, उसकी ऊर्जा बिगड़ जाती है। जो शिवलिंग है वो भगवान शिव का निराकार स्वरूप है और निराकार स्वरूप खंडित नहीं हो सकता। इसीलिए चूंकि वो शिव जी का निराकार स्वरूप है, इसीलिए अगर शिवलिंग खंडित हो जाए तो भी उसे खंडित नहीं मानते और उसकी पूजा कर सकते हैं। वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 2, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 3, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 4, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 5, परिवार में व्यस्तता रहेगी। नंबर 6, वाद विवाद से बचाव करें। नंबर 7, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 8, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और नंबर 9, धन लाभ के योग बन रहे हैं। वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से

से जाना है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले। आइए जानते हैं सक्सेस।

आपकी कोई परीक्षा है तो घी खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है तो लौंग खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो हनुमान चालीसा का एक बार पाठ करिएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन भूमि भवन आभूषण, तो नीला रुमाल साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को आज बहुत सावधान।

के लिए, हर कार्य में सफलता मिलेगी, चिंताएं समाप्त होंगी। आज का दिन मंगलमय होगा वृषभ राशि वालों के लिए, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन का लाभ होगा। आज सावधान रहना होगा वृश्चिक राशि वालों को, तनाव और चिंता बढ़ सकती है, सेहत बिगड़ सकती है। अब जान लेते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। आज तृतीया तिथि है, आज लंबे समय तक चलने वाले कार्य करने चाहिए और आज धन के लेन देन में सावधानी रखनी चाहिए। सावन का पावन महीना चल रहा है, तो चलिए आपको बताते हैं सावन के महीने का अचूक उपाय सावन सूत्र में। अगर स्वास्थ्य में लगातार आपके समस्या रहती हो तो एक नियम बना लें, सावन में जितने भी शनिवार हैं हर शनिवार को निर्धनों को खाने पीने की वस्तु का दान करें, शिव जी से प्रार्थना करें, आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: जंतर मंतर विवाद पर कहा, गालियां कभी किसी समस्या का समाधान नहीं होती। वीडियो संदेश में बोले पीएम, बच्चों को अदालतों के चक्कर नहीं, अपनापन और सही मार्गदर्शन मिलना चाहिए। पीएम ने अपने वीडियो संदेश में कहा, समाज का आक्रोश समझता हूं, लेकिन सजा नहीं सुधार पर जोर देना होगा। पीएम मोदी ने निष्ठा पर दिए वीडियो संदेश में युवाओं से सुधार की बात की, बोले गलतियों से सीख कर देश के लिए मिलकर आगे बढ़ना है। आज पीएम मोदी का आंध्र प्रदेश और कर्नाटक दौरा, कई कार्यक्रम में होंगे शामिल, साथ ही कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। आंध्र प्रदेश का नया अल्लूरी एयरपोर्ट बनेगा दक्षिण का नया इकोनॉमिक पावर हाउस। भोगापुरम में अल्लूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट का पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। पीपीपी मॉडल के तहत 5,640 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार किया गया है ये ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा। पीएम मोदी ने कहा, इस एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी, व्यापार और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। पीएम मोदी ने ब्रिटेन के पीएम एंडी बर्नहैम से फोन पर की बात। एंडी बर्नहैम को यूनाइटेड किंगडम का प्रधानमंत्री पद संभालने पर दी बधाई। भारत ब्रिटेन में रणनीतिक और कारोबारी रिश्ते मजबूत करने पर जोर। मोदी कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर लगी मोहर। सरकार ने 4,50,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी दी। पीएम मोदी किसान सम्मान निधि योजना को अगले 5 सालों के लिए बढ़ाया गया। किसानों की आय को स्थिर समर्थन देना और ग्रामीण मांग को मजबूत बनाए रखना उद्देश्य। सरकार ने प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को दी मंजूरी और सूर्य ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाएगा जलाशयों का इस्तेमाल। देश में स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन को गति देना मकसद। समुद्र मंथन प्रोग्राम को भी कैबिनेट ने दी हरी झंडी। इसके तहत देश में तेल और गैस की खोज और उत्पादन पर जोर। 84,000 करोड़ का बजट मंजूर। खेलो इंडिया योजना के विस्तार को भी मिली मंजूरी। अगले 5 सालों के लिए 29,000 करोड़ रुपए का बजट किया गया आवंटित। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, 36,441 करोड़ की नई खेलो इंडिया योजना से तैयार होंगे विश्व स्तरीय खिलाड़ी। पेपर लीक पर सख्त कानून लागू। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद सार्वजनिक परीक्षा संशोधन कानून 2026 लागू। धांधली पर कड़ी कार्रवाई होगी। कुलगाम में गैर कश्मीरी मजदूरों पर आतंकी हमला। पहचान पूछने के बाद आतंकियों ने 2 मजदूरों को गोली मारी। छत्तीसगढ़ के एक श्रमिक की मौत, एक घायल। कुलगाम आतंकी हमले पर सीएम विष्णुदेव साय ने जताया दुख। बोले, छत्तीसगढ़ सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। घायल मजदूर के इलाज के निर्देश। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में सुरक्षा एजेंसी अलर्ट। गैर स्थानीय निवासियों पर हमले के बाद इलाके में व्यापक सर्च ऑपरेशन जारी। होटल रेस्टोरेंट को राहत। कमर्शियल एलपीजी के दाम घटे। दिल्ली में 202 और कोलकाता में 209 की कटौती। घरेलू एलपीजी पर कोई असर नहीं। आज पुणे में प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 से सम्मानित होंगे एनएसए अजीत डोभाल। देश की सुरक्षा आतंकवाद विरोधी अभियानों में उनके असाधारण योगदान के लिए सम्मान। 2020 दिल्ली दंगे मामले में सजा का ऐलान। आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या में आपके पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत सभी 5 दोषियों को उम्र कैद। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने अंकित शर्मा हत्याकांड में ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा के फैसले का किया स्वागत। केजरीवाल से मांगा जवाब। कैबिनेट मंत्री प्रवीण शर्मा ने पोस्ट में कहा, ताहिर समेत अन्य दोषियों को उम्र कैद होने से अंकित शर्मा को इंसाफ मिला। सजा के बाद ताहिर हुसैन का पहला बयान, कहा हाईकोर्ट से मिलेगा इंसाफ। देर है पर अंधेर नहीं। कर्नाटक बीजेपी विस्तार पर कांग्रेस में मंथन तेज। खड़गे की आवाज पर हुई बैठक में राहुल गांधी समेत कई बड़े नेता शामिल। 16-18 नामों पर चर्चा। भारत का चुनाव पर ट्रंप का फिर आया बयान। बोले, टैरिफ के दबाव से रोका युद्ध। भारत ने कहा, सीधी सैन्य बातचीत से हुआ सीज फायर। यूजेके में पाक सेना की कार्रवाई पर भारत सख्त। शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर हिंसा के आरोपों की अंतर्राष्ट्रीय जांच और जवाबदेही की मांग। यूजेके हिंसा पर भारत ने उठाई आवाज। 40 से ज्यादा मौतों के दावे के बीच पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराने की मांग। इंडिगो का बड़ा फैसला, वाइड बॉडी विमान सेवा पर रोक। बढ़ती लागत, ईंधन कीमतों और वैश्विक हालात के चलते 25 अक्टूबर से ऑपरेशन बंद करने का ऐलान। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मुद्दे पर संसद में विपक्ष के प्रदर्शन पर बरसे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। बोले, बाबरी मस्जिद बनाने के लिए जुटाए चंदे का हिसाब दें, इस तरह का राजनीतिक ड्रामा निंदनीय। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में लागू किया गया नया ड्रेस कोड। अब मंदिर में प्रवेश से पहले पीली चौबंदी और सफेद धोती धारण करेंगे पुजारी। पुजारियों के लिए निर्धारित नियमों का पालन करना अनिवार्य। राम मंदिर में कैमरों की निगरानी में होगी दानपात्र से चढ़ावे की रकम निकालने और गिनती वाली जगह तक पहुंचने की प्रक्रिया। कर्मचारी की गतिविधियों पर नजर। 2 सितंबर को होगी मंदिर ट्रस्ट की अगली बैठक। सचिव, सीईओ, प्रवक्ता की नियुक्तियों पर मोहर लग सकती है। यूपी चुनाव को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान। आकाश आनंद पर बोलते हुए कहा, उम्मीदवार मैं ही तय करूंगा, अफवाहों से दूर रहें। आगरा में सावन के दौरान कांवड़ यात्रा रूट पर शराब, मीट, मछली की दुकानें बंद कराने के लिए प्रदर्शन। राष्ट्रीय हिंदू परिषद ने डीएम को ज्ञापन सौंपा। गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा की सभी तैयारियां पूरी। पूरे जनपद को 11 जोन और 24 सेक्टर में विभाजित कर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। देवघर में चल रहे श्रावणी मेले की भव्य रौनक, बाबा साहेब वैद्यनाथ के मंदिर में की गई शानदार लाइटिंग और सजावट। सहारनपुर में कांवड़ यात्रा की हाईटेक सुरक्षा, 3,000 अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरों से होगी निगरानी, पुलिस ने एकीकृत कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया। मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब सहित देश के तमाम हिस्सों में मानसून सक्रिय, मौसम विभाग की ओर से गुजरात महाराष्ट्र में अलर्ट। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने रचा इतिहास, जूडो में अस्मिता डे ने वीमेंस 48 किलोग्राम वेट कैटेगरी के फाइनल में कनाडा की खिलाड़ी को मात दी, गोल्ड मेडल जीता। भारतीय जूडो खिलाड़ी दिल्ली के हर्ष सिंह ने भी ग्लासगो में तिरंगा लहराया, 60 किलोग्राम इवेंट में जीता गोल्ड मेडल। लवप्रीत सिंह ने वेटलिफ्टिंग में भारत को दिलाया 10वां सिल्वर मेडल, पुरुष की 110 किलो कैटेगरी में 388 किलोग्राम वजन उठाया। डिस्कस थ्रो में सीमा ने भारत को दिलाया ब्रॉन्ज मेडल, 58.5 मीटर किया थ्रो, जीता मेडल। कॉमनवेल्थ गेम्स में नीरज चोपड़ा ने जीता सिल्वर मेडल, सीजन बेस्ट थ्रो किया, यशवीर सिंह ने 85.41 मीटर थ्रो से ब्रॉन्ज पर कब्जा किया। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा गुरेज रोड पर साधेर कूट बाला में बादल फटने से भूस्खलन, कैमरे में कैद हुआ पहाड़ दरकने का लाइव वीडियो। बादल फटने के बाद अचानक बड़ा पानी का बहाव, अचानक आई फ्लैश फ्लड से रिहायशी इलाके में पानी घुसा। हिमाचल के कई जिलों में झमाझम बारिश, शिमला में बरसात के बाद मौसम सुहाना हुआ। गुजरात के 13 जिलों में 2 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट, अहमदाबाद में स्कूल कॉलेजों में छुट्टी के आदेश। सूरत में भारी बारिश से जनजीवन बेहाल हुआ, सड़कों पर जलभराव से लोगों की परेशानी बढ़ गई। सूरत में जोरदार बारिश के बीच जगह जगह बंद नालों को खोलने में कर्मचारी जुटे हैं, सड़कों पर पानी भरने से रोकने की कोशिश। गुजरात के भावनगर में कई इलाकों में तेज हवा के साथ भारी बारिश, सड़कें पूरी तरह जलमग्न, कई फीट पानी भर गया। गुजरात के खेड़ा में मूसलाधार बारिश से आम जनजीवन प्रभावित हुआ, सड़कों पर कई वाहन भी डूबे, लोगों की बड़ी परेशानी। गुजरात के भरूच में रेड अलर्ट के बीच भारी बारिश का कहर, कई इलाके पूरी तरह जलमग्न हो गए, प्रशासन अलर्ट पर है। गुजरात में भारी बारिश से बिगड़े हालात, नर्मदा छोटा उदयपुर में उफान पर नदियां, एनडीआरएफ ने एक युवक का रेस्क्यू किया। गुजरात के पाटन में बारिश बनी किसानों की मुसीबत, भाड़सर गांव की 80% कृषि भूमि जलमग्न। महाराष्ट्र के अकोला अमरावती में बारिश का कहर, कई नदियां उफान पर, 7 लोगों का रेस्क्यू किया। महाराष्ट्र में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ के हालात, गढ़चिरौली में नदियों में फंसे 3 लोगों को प्रशासन ने सुरक्षित निकाला। महाराष्ट्र के जलगांव में लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश से बाढ़ के हालात, हथनूर बांध के 36 गेट खोले गए। पुणे में भी भारी बारिश से मुथा नदी में उफान, खड़क वासला बांध से लगभग 36,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, निचले इलाकों में अलर्ट। हरिद्वार में गंगा नदी के तेज बहाव में बहे 4 कांवड़ियों की डूबने से मौत, एसडीआरएफ के जवान ने सभी के शव बरामद किए। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकी हमला, 2 गैर कश्मीरी मजदूरों को आतंकियों ने गोली मारी, 1 की मौत, 1 घायल। धनबाद के एक स्कूल में मिड डे मील तैयार करने के दौरान गैस सिलेंडर में लगी आग, ग्रामीणों ने सूझबूझ से हादसा टाल दिया। मुजफ्फरनगर में क्रोकरी गोदाम में लगी भीषण आग, प्लास्टिक और कागज के सामान से तेजी से फैली आग, कांवड़ मार्ग पर मची अफरातफरी। यूपीएसटीएफ ने एसएससी परीक्षा में हाईटेक नकल का मास्टरमाइंड अलवर से किया गिरफ्तार, टीएफटी स्क्रीन से बाहर बैठा सॉल्वर होता था पेपर, आरोपी के पास से कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बरामद। कौशाम्बी में घर पर हनुमान चालीसा बजाने पर विवाद, कोचिंग संचालक पर घर में घुसकर मारपीट का आरोप, 4 लोगों पर मुकदमा। सुपौल में भारत नेपाल सीमा पर सीमा सुरक्षा बल और बिहार पुलिस का बड़ा एक्शन, ड्रग तस्करी गैंग के 2 आरोपी गिरफ्तार, 837 किलो गांजा जब्त। अलवर में कार सवार दंपति की चोरी करते कैमरे में हुए कैद, पुलिस चौकी के पास दुकान से चुराए चीनी मिट्टी के बर्तन। गुजरात के नवसारी में जुके बिजली के तार की चपेट में आया मजदूर से भरा टेम्पो, करंट लगने से 3 की मौत, 3 गंभीर। मुंबई में रंगदारी गैंग पर क्राइम ब्रांच का शिकंजा, ठेकेदार से 25 लाख की रंगदारी लेते जुल्फिकार गैंग के सरगना समेत 12 आरोपी गिरफ्तार। टिहरी गढ़वाल में गंगोत्री नेशनल हाईवे पर 2 कारों की आमने सामने टक्कर, सभी यात्री सुरक्षित। मंडी में 15 क्विंटल मूली नाले में फेंकने का वीडियो वायरल, मामले के संज्ञान में आते ही 5 घंटे बाद प्रशासन ने खोली सड़क, 5 दिन में से बंद था मार्ग। इंदौर में बाढ़ गंगा में प्रॉपर्टी कारोबारी की संदिग्ध मौत, महिला से हो रही पूछताछ, घटना स्थल का होगा रिक्रिएशन, संदिग्ध हालत में होटल से मिले गिरे थे व्यापारी। बादलों चंदौली में मिड डे मील में मरा हुआ कीड़ा मिलने से हड़कंप मचा, बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जांच के आदेश दिए। बागपत में निर्माणाधीन मकान की छत गिरी, मलबे दबने से दो की मौत हो गई। इंदौर में शराब दुकान पर पुलिस सिपाही ने मचाया हंगामा, मुफ्त बोतल नहीं मिली तो पिस्तल दिखाकर धमकाए, वीडियो वायरल होते ही सस्पेंड। झांसी में ओवरब्रिज पर बाइक और स्कूटी की आमने सामने भिड़ंत, दो युवकों की मौके पर मौत। फरीदाबाद में सिविल लाइन काम के दौरान बड़ा हादसा, करंट लगने से दो मजदूरों की मौत हो गई। महाराष्ट्र के नंदुरबार में बड़ा हादसा टला, 3500 फीट गहरी घाटी के ऊपर जिप लाइन में फंसा टूरिस्ट। गुजरात के गिर सोमनाथ में खौफनाक नजारा, महिला की चारपाई के नीचे रात भर छिपा रहा मगरमच्छ। 4 अगस्त को मिर्जापुर द मूवी का ऑफिशियल ट्रेलर होगा जारी, एक बार फिर गुड्डू पंडित और कालीन भैया गदर मचाने को तैयार। छावा के बाद महाअवतार की तैयारी में जुटे एक्टर विक्की कौशल, फिल्म में भगवान परशुराम का किरदार निभाने के लिए 25 किलो से ज्यादा वजन बढ़ाएंगे। हॉलीवुड फिल्म स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ने ओपनिंग डे पर भारत में की बंपर कमाई, पहले ही दिन 50 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार। वेंकी अटलुरी ने लकी भास्कर 2 का किया ऐलान, दुलकर सलमान और मीनाक्षी चौधरी स्टारर लकी भास्कर 2024 में थिएटर में हुई रिलीज। हैरी पॉटर फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी, 25 साल बाद फिर रिलीज होगा हैरी पॉटर का पहला पार्ट। अप्रैल जून तिमाही में सोने की मांग 6% घटकर 131.4 टन पर लुढ़की, गोल्ड प्राइस में रिकॉर्ड उछाल से लोगों का खर्च 50% बढ़कर 1,98,000 करोड़ रुपए पर पहुंचा। सूरजमुखी तेल की सप्लाई घटने से पाम, सोयाबीन और सरसों तेल के दाम बढ़ने के आसार, खाद तेल की कीमतों में 8-12% तक इजाफे की आशंका है। एलपीजी सिलेंडर के दाम, बैंकिंग चार्ज, रेलवे में तत्काल टिकट और CKYC से जुड़े नियमों में हो सकता है बदलाव, आज से नए नियमों के लागू होने से आम आदमी की जेब और सफर पर असर पड़ेगा। आज से लागू होंगे GST के नए ई-वे बिल नियमों को सरकार ने रोक, क्रियान्वयन में आ रही दिक्कतों के चलते ई-वे बिल को 2 प्रस्तावित बदलाव फिलहाल टल गए। दिल्ली के भारत मंडपम में गिफ्ट एक्सपो 2026 में स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स और विजिटर्स जमा हुए, कई कंपनियों ने एक्सपो में नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की कार्रवाई पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान, का ICC का निशाना मैं नहीं हूं लेकिन हो भी सकता हूं। अमेरिका में वाटर सप्लाई सिस्टम पर हुए साइबर हमले पर राष्ट्रपति ट्रंप का बयान, कहा मिनेसोटा में साइबर हमलों में ईरान का हाथ नहीं है। हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान की सेना का बड़ा हमला, दो तेल टैंकरों को निशाना बनाया, 4 तेल टैंकर वापस लौटे, IRGC ने अमेरिका को चेतावनी दी, हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करें। रूस की दूसरी सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी ओजोन के पास यूक्रेनी ड्रोन से हमला, 5 लोग घायल हुए, हमले के बाद भागते दिखे कर्मचारी। अमेरिकी डेलीगेशन ने ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग ते से मुलाकात की, दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा। सेउटा में प्रवासी संकट पर यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर का बयान, कहा यूरोपीय संघ के मोरक्को के संपर्क में है ताकि प्रवासी संकट को हल किया जा सके। तुर्की में जंगल की आग से बड़ी तबाही, जान जोखिम में डालकर आग बुझाती दफ्तर कर्मी का वीडियो वायरल। अफ्रीकी देश अल्जीरिया में भयानक सड़क हादसा, सड़क से फिसलकर खाई में गिरी बस, 25 यात्रियों की मौत, 44 घायल। पाकिस्तान के ब्रॉड पीक पर हिमस्खलन में 10 पर्वतारोही लापता हुए, 4 शव बरामद। नेपाल में मशहूर पर्वतारोही निर्बल पूजा समेत 6 पर्वतारोही अब भी लापता, हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू जारी है। फीफा में मचे घमासान के बीच फीफा अध्यक्ष के वरिष्ठ सलाहकार कार्लोस क्वाड्राडो का इस्तीफा, कार्लोस ने वर्ल्ड कप में हिस्सेदारी बेचने के प्रस्ताव का विरोध किया, तो वहीं कॉनकाकैफ ने फीफा वर्ल्ड कप में हिस्सेदारी बेचने का प्रस्ताव ठुकराया।
1: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste Complete Oral Health का सच, in association with
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: TuneIn is bringing together your music, news, sports and more all in one place. Whether you love music, want to stay in the know with top news,
4: continue to face political pressure to reach a peace deal,
3: or hear your favorite teams with live sports, Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. So you'll never miss a beat. Just sit back and listen.

पीएम मोदी ने देर रात अपने स्कैंडल से जारी किया युवाओं के लिए संदेश। पीएम ने जंतर मंतर पर हुए विवाद का जिक्र करते हुए युवाओं से की मन की बात। पीएम मोदी

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
2: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
3: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
4: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबां केसरी, हिंट बड़े आराम से।
2: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
3: The Congress government in the center got rid of its own government because of a series of killings in Punjab, including many prominent people. So things had gone really bad in Punjab.
4: Congress party was trying to say that Akalis have to be defeated. You must not allow some other faction of the Akalis to prop up so that votes are divided.
5: They created this Frankenstein called Bhindranwala.
6: जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिस कहानी के बहुत अच्छे परिणाम है और बहुत दुखद परिणाम है। भारत एक राजमहल है, समृद्ध है, सोने की चिड़िया है। गहरी बात है वो ये है कि इस राजमहल के चारों तरफ झोपड़ पट्टियां हैं, झुग्गियां हैं, चुनौती वाले क्षेत्र हैं। भारत आए अंग्रेज, यहाँ के लोगों को देखा उन्होंने, जब यहाँ के ग्रंथों को ट्रांसलेट करना शुरू किया, पढ़ा उन्होंने कि ब्राह्मण का जन्म मुंह से हुआ है। ये डिपार्टमेंट बनाया ही गया था शोषण के लिए। कौन सा? पुलिस। किसने बनाया था? कॉर्नवालिस ने। और पुलिस डिपार्टमेंट की खास बात यह है कि जब उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट भारत में बनाया, तब वो डिपार्टमेंट ब्रिटेन में नहीं था। जुडिशरी, मॉडर्न जुडिशरी उन्होंने अपने फायदे के लिए बनाया। अंग्रेजी कानून, अंग्रेजी जज। तुम कल्पना कर सकते हो, आधुनिक काल से पहले LGBT सड़क पर आकर प्रदर्शन करें, इनको तोप में बांध के उड़ा दिया होता।
7: तो क्या सिर्फ अब हिस्ट्री सिर्फ जो बाहर से लोग आए थे यहाँ पे शासन करने के लिए, उनको विलन के रूप में दिखा रहे हैं? या फिर
6: जो भी सरकार सत्ता में आती है वो शिक्षा का इस्तेमाल करती है अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने। वंदे मातरम पे बहस हो रही है, हर दिन मंदिर मस्जिद पे बहस हो रही है, मुसलमान पे बहस। ये संसद बनी किस लिए? औरंगजेब जो था भैया, डेली 200 किलो जनेऊ तोलता था। कितना? 200 किलो भी, मतलब डेली वो कम से कम 10,000 ब्राह्मणों को मारता था, हिंदुओं। मैं देखता हूँ मुसलमानों को और हिंदुओं को, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ। पहले मैं सोचता था पुलिस वाले यहाँ लगा के पॉइंट ब्लैंक से क्यों मारते, क्योंकि यहाँ ताला लगा हुआ है, तो इसीलिए मारते कि यहाँ मारे तो अगले जन्म में खुला हुआ रहेगा।
8: आपको लगता है कि आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद देश फिर बट सकता है?
6: इस बात को मैं रिपीटेडली कह चुका हूँ, एक विस्फोट होगा बेटा।
9: लेकिन आपके पढ़ाने के तरीके मुझे एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट लगता है कि आप जनता को ही बोल देते हैं कि जनता बड़ी बेवकूफ़ है, और फिर आप कहते हैं कि हमारे देश का युवा पढ़ना नहीं चाहता है।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: I'm looking for some profound secret to us. I have it. The penalty is fast. You want to sit and listen? You sit and listen.
2: कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा। इस कठोर कानूनों वाले
3: देश को आशान्वित करने वाला ये पीएम मोदी का वो संदेश है जो दोनों सदनों से लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पारित होने के बाद आया है। इस बिल के पारित होने के बाद सरकार राहत में होगी, लेकिन क्या ये पेपर लीक पर चल रही राजनीति को भी विराम लगा पाएगा? इस सवाल का जवाब आपको राहुल गांधी के इस बयान से काफी हद तक मिल पाएगा।
4: मैंने तो सिर्फ ये पूछा है कि दो ही ऑप्शंस हो सकते हैं। एक ऑप्शन की होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया, दूसरा ऑप्शन की होम मिनिस्टर को मालूम नहीं था कि फायरिंग होगी। इन फर्स्ट केस ही इज कल्पेबल, इन सेकंड केस ही इज इनकॉम्पिटेंट। इट कैन ओनली बी वन ऑफ टू, तीसरा तो हो ही नहीं सकता।
3: तो राहुल गांधी रुकने वाले नहीं है और उनके इन तेवरों की वजह से पेपर लीक की लड़ाई भी थमने वाली नहीं है। बस कल और आज में फर्क ये आया है कि पहले धर्मेंद्र प्रधान निशाने पर थे, लेकिन उनके इस्तीफे के बाद गृह मंत्री अमित शाह हमलों की जद में आ गए हैं और उन पर हमलों की वजह से इस लड़ाई की रफ्तार भी बढ़ रही है। राहुल गांधी ने अमित शाह पर हमले बढ़ाए तो बीजेपी उन्हीं को टारगेट पर ले आई। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना का नोटिस दे दिया।
5: माननीय गृह मंत्री जी आएंगे,
3: यानी इस लड़ाई में अभी और ईंधन डालने की पूरी कोशिश हो रही है। अभी तो सिर्फ विशेषाधिकार हनन का नोटिस है, कोई बड़ी बात नहीं कि ये मामला राहुल गांधी पर एक्शन तक पहुंच जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि अमित शाह के इस्तीफे की मांग और जोर पकड़ने लगी है। राहुल के बाद खड़गे ने भी राज्यसभा में वही मांग दोहरा दी है।
6: अरे मेरे विद्यार्थी जो गांव-गांव से आए, स्टेट स्टेट से आए, उन बच्चों को पैलेट गन पैलेट्स का यूज करके उनको मार रहे हैं और हॉस्पिटल में गिरे हैं। किसका आंख गया, किसका कान गया, किसका हाथ गया, किसका पैर टूटा, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार आप है, होम मिनिस्टर है।
3: कांग्रेस अमित शाह से प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज का हिसाब मांग रही है, अमित शाह के सदन में आकर जवाब देने की मांग कर रही है, उनका इस्तीफा मांग रही है और उसके लिए राहत की बात यह है कि बाकी विपक्षी दलों का भी उसे साथ मिल रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि ये लड़ाई आगे किस दिशा में जाती है। पीयूष मिश्रा के साथ अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक।

0: जंतर मंतर प्रदर्शन पर प्रधानमंत्री मोदी का छात्रों के नाम वीडियो संदेश का, मुझे मेरी मां को गाली दी गई, गुमराह बच्चों को करना चाहता हूं माफ, मिलकर बनाए सपनों का भारत। मोदी कैबिनेट ने कई अहम फैसलों पर लगाई मोहर, 5 साल के लिए बढ़ाई गई पीएम किसान योजना, तेल गैस की खोज के लिए 84,000 करोड़ की समुद्र मंथन योजना मंजूर। दिल्ली दंगे में सजा का ऐलान, आईबी अफसर अंकित शर्मा की हत्या में पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत सभी 5 दोषियों को उम्र कैद, बीजेपी आप में सियासी भिड़ंत। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में 200 रुपए से ज्यादा की कटौती, दिल्ली से कोलकाता तक घटी कीमतें, दिल्ली में 2728 रुपए का मिलेगा 19 किलो का सिलेंडर। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का दमदार प्रदर्शन, जूडो में डबल गोल्ड और सिल्वर, नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में जीता सिल्वर, 5 गोल्ड समेत कुल 23 पदक, बॉक्सिंग और एथलेटिक्स में गोल्ड की उम्मीद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। सुबह की 8 बजे और वक्त उछला है खास बुलेटिन सुपर 8 का, और इस बुलेटिन में होगी देश दुनिया की बड़ी खबरें। सबसे पहले हम आपको बताएंगे पीएम मोदी के नए वीडियो संदेश की पूरी कहानी। लगातार 5वीं बार वीडियो जारी कर कहा गुमराह बच्चों को माफ करना चाहता हूं। वहीं परीक्षा संशोधन बिल अब कानून बन गया, राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकी हमला हुआ, 2 गैर कश्मीरी मजदूरों को आतंकियों ने गोली मारी जिसमें 1 की मौत हो गई। मौसम के हाल की बात करेंगे, पहाड़ से मैदान तक क्या हालात है वो हम आपको बताएंगे। वहीं रायसेन के सरकारी स्कूल में बसों की कमी से अजीब व्यवस्था लागू की गई, जहां एक दिन छात्र और दूसरे दिन छात्राएं स्कूल आएंगी, शिक्षा विभाग ने संज्ञान ले लिया इस मामले पर। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की बात करेंगे, जूडो में धमाकेदार 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मिला, नीरज चोपड़ा ने भी सिल्वर जीत लिया और सीजन का बेस्ट थ्रो से इतिहास रच दिया। वहीं कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की तेजस्विन शंकर बने डेकाथलॉन में पहले भारतीय पदक विजेता, ब्रॉन्ज मेडल की अपने नाम। और आखिर में ट्रंप की बात करेंगे, ट्रंप ने ऑपरेशन से दूर को लेकर फिर बड़ा बयान दिया जिससे सियासी हलचल तेज हो गई है। तो महंगाई के बीच कारोबारियों के लिए राहत की खबर है, सूत्रों के मुताबिक आज से 19 किलो वाला जो नीले रंग का कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर था उसकी कीमतें घट गई है, कटौती हुई है। दिल्ली में इसकी कीमत 202 रुपए और कोलकाता में 209 रुपए कम हो गई। अब नई दरों के बाद कोलकाता में 19 किलो का यह कमर्शियल सिलेंडर 2872 रुपए 50 पैसे का मिलेगा। हालांकि आम उपभोक्ताओं के लिए जो घरेलू एलपीजी सिलेंडर होता है जो लाल रंग का होता है उसकी कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। दिल्ली में 202 रुपए कम हुए हैं, 202 रुपए की कटौती हुई है और कोलकाता में 209 रुपए की कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर जिसका कमर्शियल यूज होता है। अब ये देखिए, ये इसके दाम हो गए हैं दिल्ली और कोलकाता में। कोलकाता में अभी भी थोड़ा सा महंगा है, 100 रुपए का करीब अंतर यहां पर देखा जा रहा है, 100 से ज्यादा का ही अंतर देखा जा रहा है। अब ये नई कीमतें हैं कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नया वीडियो संदेश जारी किया और पीएम ने दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान उन्हें गाली देने वाले बच्चों के लिए यह संदेश जारी किया है। पीएम ने कहा कि मुझे और मेरी मां को गाली दी गई। पीएम ने यह भी कहा कि ये गुमराह बच्चे हैं जिन्होंने गालियां दी, अब समय है इन्हें राह दिखाने का, बच्चों आओ मिलकर देश को आगे बढ़ाएं। हमारी बेटियां ऐसी भाषा कैसे बोल सकती हैं, ये भी पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया कि ऐसी उम्मीद नहीं थी बेटियों से, लेकिन बच्चे हमारे हैं तो उन्हें राह दिखाना हमारा काम है।
1: हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है, कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई, न जाने कितना बंदा स्वरूप था। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं, लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। ये गुमराह बच्चे हैं।
0: जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुई विवादित नारेबाजी पर पीएम मोदी ने एक वीडियो संदेश जारी किया, जो अभी आप देख रहे थे। पीएम ने कहा कि गाली गलौज किसी समस्या का समाधान नहीं है। जिन बच्चों ने उन्हें और उनकी मां को अपशब्द कहे वो गुमराह है, जिन्हें सजा नहीं चाहिए, जिन्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि उन्हें सही राह दिखाने की जरूरत है।
1: गुमराह बच्चे, उनको राह दिखाना हमारा काम।
2: जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान सामने आए विवादित वीडियो के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार देर रात सोशल मीडिया पर नया वीडियो संदेश जारी किया। पीएम ने कहा कि उन्होंने वे सब देखा जो जंतर मंतर पर हुआ और ऐसी भाषा किसी सभ्य समाज को शोभा नहीं देती।
1: जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि बचपन में गलतियां होती हैं, लेकिन वही गलतियों को सुधारने का अवसर भी होता है। उन्होंने कहा कि उनके साथ साथ उनकी मां के लिए भी अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। पीएम ने सवाल उठाया कि हमारी बेटियां ऐसी भाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकती हैं और इसे समाज के लिए एक सांस्कृतिक झटका बताया।
1: मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना बंदा स्वरूप था, लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं।
2: जिस छात्रा का वीडियो वायरल हुआ था उसके खिलाफ नोएडा के एक्सप्रेसवे थाने में FIR दर्ज की गई है। शिकायत में सार्वजनिक उपद्रव, जानबूझकर अपमान और मानहानि से जुड़ी धाराएं लगाई गई हैं। वहीं इस कार्यवाही का कुछ संगठनों ने विरोध भी किया है। बीते 9 दिनों में छात्रों और पेपर लीक के मुद्दे पर प्रधानमंत्री का यह 5वां वीडियो संदेश है। एक बार फिर पीएम ने छात्रों से संयम, संवाद और सकारात्मक रास्ता अपनाने की अपील की है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बस आओ गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो।
0: देखिए, उधर जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले से आतंकवाद की एक और दर्दनाक वारदात सामने आई। केलम गांव में आतंकियों ने गैर कश्मीरी मजदूरों को निशाना बनाया, फायरिंग की और शुरुआती जो खबर आई उसके मुताबिक हमलावरों ने मजदूरों की पहचान पूछी और पहचान पूछने के बाद 2 लोगों को गोली मार दी। अब इस हमले में छत्तीसगढ़ के एक मजदूर की मौत हो गई जबकि दूसरा जो मजदूर था वो गंभीर रूप से घायल हो गया है, उसका इलाज चल रहा है। घटना के बाद पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और जिन आतंकियों ने गोली मारी है उन आतंकियों की धरपकड़ की कोशिशें की जा रही है, तलाश हो रही है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है बड़े पैमाने पर और आर्मी ने बहुत स्पष्ट कह दिया कि उनको छोड़ा नहीं जाएगा, उनको ढूंढकर उनके किए की सजा जरूर दी जाएगी। एक गैर कश्मीरी मजदूर जो बाहर से कश्मीर में काम करने आया उसकी हत्या कर दी जाती है, पहले उससे पूछा जाता है उसके बारे में।
3: पाकिस्तानी आतंकवादियों ने एक बार फिर कश्मीर को लहूलुहान किया है। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के किलंग गांव में दो मजदूर साथियों पर आतंकवादियों ने गोलीबारी की है, उन्हें निशाना बनाया है। गंभीर अवस्था में घायल दोनों कामगारी मजदूर साथियों को हॉस्पिटल लाया गया, जहां एक मजदूर भाई जख्मों की ताब ना लाते हुए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, दूसरे गंभीर अवस्था में हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट किया गया है। एक बार फिर कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने यह खूनी खेल कश्मीर के अंदर खेला है।
0: मीर फरीद हमारे सहयोगी इस वक्त कश्मीर से जुड़ चुके हैं, सीधे उनसे बात करेंगे। मीर, हमने पहले भी देखा है जब इस तरह से गैर कश्मीरियों को टारगेट किया है, हालांकि पिछली बार सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया था, अब इस बार क्या खबर है, इस बार क्या तैयारी सेना की?
4: जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कुलगाम में हूं और जो लोकेशन है बिल्कुल उसके पास, जहां कल रात में टारगेटेड अटैक हुआ, जहां जैसे आपने कहा फिर एक बार नॉन लोकल जो लेबरर थे यानी कि मजदूर थे, एक जो ईंटों का कारखाना होता है वहां काम करते थे, और तकरीबन 8:30 बजे बाइक पे जो है दो आतंकी उनके करीब आए और गोलियों की बौछार कर दी। दोनों जो हैं काफी गंभीर रूप से घायल हुए, लेकिन एक की मृत्यु जो है मौके पे हुई, दूसरा उसको इवैक्यूएट किया गया हॉस्पिटल, और अभी खबर मिली है कि श्रीनगर के जो शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है वहां उनकी जो है मौत हो गई है। तो दो लेबरर अब इसमें मारे गए हैं। सुरक्षा एजेंसीज ने इसके बाद जो है पूरे इलाके को घेर के जो एसओपी रहता है तलाशी अभियान शुरू किया है, लेकिन 4 साल के बाद ऐसी जो है घटना हुई है, नई नहीं है। जैसे आपने कहा इससे पहले भी जो सॉफ्ट टारगेट्स हैं ये नॉन लोकल लेबरर्स, इनको टारगेट किया गया है, और फिर एक बार जो लश्कर का शेडो है द रेजिस्टेंस फ्रंट, उन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली है, और साफ तौर पे इसके बाद सुरक्षा जो है काफी बढ़ा दी गई। हम श्रीनगर से यहाँ की तरफ आए, जगह जगह जो है चेक पॉइंट्स लगाए गए हैं, और यहाँ भी जैसे आप देख सकते हैं सुरक्षा बलों के जवान जो है नाकाबंदी लगाई हुई है, पुलिस है, सीआरपीएफ है, जो भी गाड़ी यहां से जा रही है उसको चेक किया जा रहा है, और इंटेल बेस्ड जो है सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन अभी जगह जगह चल रहा है। लेकिन साफ तौर पर ये चिंता का विषय है सुरक्षा एजेंसीज के लिए, क्योंकि कोई ना कोई मॉड्यूल है, स्लीपर सेल है लश्कर का जो एक्टिवेट हो गया है, उनको साफ तौर पे उस तरफ से आदेश है कि आप एक्टिवेट हो जाइए, टारगेट्स को हिट कीजिए। और इससे पहले 2021-22 में एक सिलसिला चला था जहां कश्मीरी पंडित और नॉन लोकल लेबरर्स को टारगेट किया गया था, बिल्कुल इसी तरीके से ज्यादातर दक्षिणी कश्मीर में, और इस बार फिर एक बार यह सिलसिला जो है शुरू होता दिख रहा है। आगे ऐसी घटनाएं ना हो, जो ये कर रहे हैं उनको रोका जाए, और इंटेल बेस्ड ऑपरेशन से उनको जो है उनके ऑपरेशनल कैपेबिलिटी खत्म की जाए, वही जो है अभी सुरक्षा बल प्लान कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा तलाशी अभियान चल रहा है, और
0: आपने जिस तरह से जानकारी दी बहुत अच्छे से याद है कि पहले एक नॉन कश्मीरी जो गोल गप्पे का ठेला लगाता था उसको भी टारगेट किया गया था, उसको भी निशाना बनाया गया था, और भी कई मजदूरों को ऐसे टारगेट किया गया था जो बाहरी राज्यों से आए थे और जम्मू कश्मीर में काम कर रहे थे, लेकिन उस वक्त सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया था। अब यही मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस बार सेना की तरफ से क्या तैयारी है, क्योंकि एक एग्जाम्पल सेट करना बहुत जरूरी है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बाहर से आते हैं, कश्मीर में काम करते हैं, दैनिक वेतन पर काम करते हैं, उनको सुरक्षित महफूज कराना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है इस वक्त।
4: जी बिल्कुल, 2021-22 में ऐसी घटनाएं पिछली बार हुई थी, और जैसे आपने कहा श्रीनगर का ईदगाह इलाका है, वहां एक गोलगप्पे वाले को मारा गया था तब, और न सिर्फ उसको बल्कि ऐसे ही नॉन लोकल जो लेबरर हैं ज्यादातर बिहार छत्तीसगढ़ से यहां आते हैं उनको निशाना बनाया गया। हालांकि उस वक्त कश्मीरी पंडित भी, कई सारे जो कश्मीरी पंडित हैं उनको भी जो है उनकी हत्या की गई थी, लेकिन उसके बाद ये सिलसिला टूटा। सुरक्षा एजेंसीज ने काफी सारे ऑपरेशंस किए और लश्कर जैश और हिजबुल के खिलाफ बहुत ज्यादा कार्रवाई हुई, लेकिन पिछले तकरीबन 2 से 3 साल से ऐसी घटनाएं नहीं हुई हैं और ज्यादातर जो है पीस रहा है घाटी में। लेकिन अगर आपको याद होगा 10 से 12 दिन पहले जब अनंतनाग में एक पुलिस वाले की जो है टारगेटेड अटैक में किलिंग हुई तो साफ हुआ कि शायद दोबारा इस सिलसिला शुरू हो सकता है, और बिल्कुल वैसे ही इनपुट्स भी थे सुरक्षा एजेंसीज के पास। लेकिन जैसे मैंने कहा कि पहली बार ऐसी घटना नहीं हुई है तो जो रिस्पॉन्स है सुरक्षा एजेंसीज को पता है, और आर्मी पुलिस सीआरपीएफ इंटेल एजेंसीज बेल्ट फोर्सेज सभी मिलकर अभी तलाशी अभियान कर रहे हैं और कोशिश है कि इंटेल बेस्ड ऑपरेशंस हो, सटीक जो है सूचना मिले और उसी के बुनियाद पे इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन खतरा भी है क्योंकि स्लीपर सेल्स हैं, ओजीडब्ल्यू नेटवर्क जो लश्कर का है हमेशा से यहां था, हालांकि बहुत हद तक उसको जो है तबाह किया गया था, लेकिन इससे आप समझ सकते हैं कि स्लीपर सेल्स अभी भी मौजूद हैं, नॉन लोकल लोकल जो
0: और मीर अगर ये एक बार फिर से एक्टिव हो रहे हैं तो बहुत जरूरी है कि सेना इनको ऐसा जवाब दे कि इनकी सात पुश्तें याद रखें और इस पूरे नेटवर्क को खत्म किया जा सके, एक एग्जाम्पल एक उदाहरण सेट किया जाए, इन पर कड़ी कार्रवाई करते हुए। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में आरोपित पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन, नाम आपको याद होगा, उम्र कैद की सजा सुना दी है। 2020 में दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा को निर्मम हत्या उनकी कर दी गई थी। अब अदालत का फैसला आने के बाद अंकित शर्मा के परिजनों का मानना है कि उम्र कैद नहीं चाहिए बल्कि फांसी की सजा होनी चाहिए थी।
5: देखो, आईबी अधिकारी अंकित शर्मा के हत्या के आरोप में कड़कड़डूमा कोर्ट ने पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत दूसरे आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। 13 जुलाई को कोर्ट ने आरोपियों को हत्या और आपराधिक साजिश का दोषी ठहराया था। सुनवाई के दौरान सभी दोषियों के लिए फांसी की मांग की गई थी, लेकिन अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई। फैसला आने के बाद आज तक से बातचीत के दौरान अंकित शर्मा के भाई अंकुर शर्मा ने यही कहा कि उम्मीद थी कि दोषियों को फांसी होगी।
6: अंकुर जी नमस्कार, ये जो अदालत ने फैसला सुनाया है ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा सुनाई है, आपका क्या रिएक्शन है, आपके परिवार का क्या रिएक्शन है?
7: सर हमारे परिवार का शुरुआत से 2020 में जब दंगा हुआ था जब इसे हमारे परिवार की यही मांग थी कि भाई के जो दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और इस केस को, हमारे केस को, भाई के केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस में कोर्ट को देखना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से भाई के साथ जो ये इंसिडेंट हुआ था आप सभी को पता है कितनी बुरी तरीके से ब्रूटली तरीके से उसको मारा गया था, कितने चारों तरफ बॉडी पे उसके निशान थे चाकू के और बहुत तेजाब के, और फिर उसकी बॉडी को, भाई की बॉडी को नाले में फेंक दिया गया था जिस तरीके से, तो कोर्ट को ये रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस में देखना चाहिए था और जो भी दोषी है उन सबको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए थी, फांसी की सजा मिलनी चाहिए थी।
0: कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने जूडो में शानदार प्रदर्शन करते हुए इतिहास रच दिया। महिला 48 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में अस्मिता डे ने कनाडा की खिलाड़ी को हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। वहीं पुरुषों के 60 किलोग्राम में दिल्ली के हर्ष सिंह ने स्वर्ण पदक जीतकर तिरंगा बुलंद कर दिया। और यामिनी 57 किलोग्राम वर्ग में एक बहुत कड़ा मुकाबला, 7.5 मिनट तक ये मुकाबला चला और उसके बाद भारत की झोली में एक और पदक आया। हालांकि सिल्वर से यहां पर संतोष करना पड़ा, लेकिन पहली बार जूडो में 2 गोल्ड 1 सिल्वर आया, इससे पहले पदक नहीं आए थे। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने सभी खिलाड़ियों को उनकी शानदार सफलता पर बधाई दी है। अब परिवार में भी खुशी का माहौल है। ये हर्ष दिल्ली के खिलाड़ी और दिल्ली से ताल्लुक रखते हैं, 60 किलो की कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता और बहुत शानदार तरीके से अपने प्रतिद्वंदी को हराया। यास्मिन ने भी शानदार मुकाबला लड़ा और आमतौर पर जब यह मुकाबला होता है 3 से 3.5 मिनट का होता है, लेकिन 7.5 मिनट तक यह मुकाबला गया 57 किलोग्राम कैटेगरी में यामिनी ने, और उसके बाद सिल्वर अपने नाम किया। अस्मिता डे त्रिपुरा से आती हैं और आमतौर पर स्टेट की बात करें तो वहां से जूडो के खिलाड़ी कम ही निकलते हैं, लेकिन अपनी मेहनत के दम पर अस्मिता ने गोल्ड मेडल का मुकाम हासिल किया महज 23 साल की उम्र में।
8: बहुत ही अच्छा लगा कि भाई ऐसा एशियन गेम्स में हुआ था कि जेनोरी और मैंने जीता था, और काफ़ी खुशी है कि यशवीर ने ऐसी जगह पे अपना पर्सनल बेस्ट किया जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और बहुत अच्छा लग रहा है कि हम पोडियम पे हैं। बिल्कुल हमेशा खुशी रहता है कि नेशनल एंथम बजे, पर ठीक है मैंने भी अपना सीजन बेस्ट किया है और कम बैक ठीक हो रहा है, अभी बाकी कॉम्पिटिशन भी हैं तो काफ़ी खुशी है।
0: गुजरात में मानसून अब आफत बन चुका है। खेड़ा से लेकर आणंद, नवसारी, भरूच, सूरत, वडोदरा और भावनगर तक जहां आप जाएंगे मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर रखा है। कहीं बाजार और घर पानी में डूबे हैं, कहीं सड़कें नदी बन गई हैं, सड़कें टूट चुकी हैं, कहीं बारिश का पानी एक मासूम की जान ले चुका है।
2: गुजरात में आसमान से बरस रही आफत थमने का नाम नहीं ले रही। खेड़ा जिले में सिर्फ 16 घंटे में 13 इंच से ज्यादा बारिश ने पूरे इलाके को जलमग्न कर दिया। मुख्य बाजार और कई रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया है। घरों और दुकानों में पानी घुसने से कारोबार ठप पड़ गया और लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बारिश की सबसे दर्दनाक तस्वीर आनंद से सामने आई, जहां एसपी कार्यालय के सामने बारिश के पानी में खेल रहे 3 बच्चे तेज बहाव में बह गए। पुलिस और फायर ब्रिगेड ने तीनों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान मासूम की मौत हो गई। इस हादसे ने पूरे इलाके को गमगीन कर दिया। उधर नवसारी में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। नवसारी में हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया। SDRF, NDRF और सेना को अलर्ट पर रखा गया है। भरूच, सूरत, वडोदरा और भावनगर में भी लगातार बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। भरूच में कई सड़कें पानी में डूब गईं, जबकि सूरत और वडोदरा में जल भराव से जनजीवन प्रभावित है। एहतियात के तौर पर सूरत के स्कूल और कॉलेजों की छुट्टी कर दी गई है। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में भी कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी दी है। प्रशासन लोगों से निचले इलाकों, नदी नालों और जल भराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की अपील कर रहे हैं। फिलहाल गुजरात पे बारिश राहत नहीं बल्कि लगातार नई मुसीबत बनकर बरस रही है। आज तक ब्यूरो।
0: और अगर आपके आसपास भी जोरदार बारिश हो रही है, नदी नाले नजदीक हैं, तो सावधानी जरूर बरते रुकेंगे। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए देखते रहिए आज तक।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
10: भारत की अपनी
11: Hey, music lovers. Ready to take your listening to the next level? Upgrade to TuneIn Premium for curated music channels that fit every mood. Listen with less ads so you can keep the music going. So you get more of today's hits. More country roads. Classic rock. Plus, enjoy commercial-free news, ESPN Radio, and more with Premium Upgrade to TuneIn Premium. And start listening now.
12: Savari.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा। जीते हर बाजी।
3: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
4: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
5: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: New entrepreneurs came up. There was Dhirubhai Ambani. He was a rag-to-riches story. He built industries. He built, you know, the whole nylon business, the textile, and then, of course, then into petrochemical.
2: There were others like him, but he was by far the biggest and the most prominent of them all. He was also the most controversial because of his business methods. We did the stories on him as a success. We did a story of him under pressure. It was a churn that was taking place, and it led to lots of stories.
3: जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिस कहानी के बहुत अच्छे परिणाम है और बहुत दुखद परिणाम है। भारत एक राजमहल है, समृद्ध है, सोने की चिड़िया है। गहरी बात है वो ये है कि इस राजमहल के चारों तरफ झोपड़ पट्टियां हैं, झुग्गियां हैं, चुनौती वाले क्षेत्र हैं। भारत आए अंग्रेज, यहाँ के लोगों को देखा उन्होंने, जब यहाँ के ग्रंथों को ट्रांसलेट करना शुरू किया, पढ़ा उन्होंने कि ब्राह्मण का जन्म मुंह से हुआ है। ये डिपार्टमेंट बनाया ही गया था शोषण के लिए। कौन सा? पुलिस। किसने बनाया था? कॉर्नवालिस ने। और पुलिस डिपार्टमेंट की खास बात यह है कि जब उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट भारत में बनाया, तब वो डिपार्टमेंट ब्रिटेन में नहीं था। जुडिशरी, मॉडर्न जुडिशरी उन्होंने अपने फायदे के लिए बनाया। अंग्रेजी कानून, अंग्रेजी जज। तुम कल्पना कर सकते हो, आधुनिक काल से पहले LGBT सड़क पर आकर प्रदर्शन करें, इनको तोप में बांध के उड़ा दिया होता।
4: तो क्या सिर्फ अब हिस्ट्री सिर्फ जो बाहर से लोग आए थे यहाँ पे शासन करने के लिए, उनको विलन के रूप में दिखा रहे हैं? या फिर
3: जो भी सरकार सत्ता में आती है वो शिक्षे का इस्तेमाल करती है अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने। वंदे मातरम पे बहस हो रही है, हर दिन मंदिर मस्जिद पे बहस हो रही है, मुसलमान पे बहस। ये संसद बनी किस लिए? औरंगजेब जो था भैया, डेली 200 किलो जनेऊ तोलता था। कितना? 200 किलो भी, मतलब डेली वो कम से कम 10,000 ब्राह्मणों को मारता था, हिंदुओं को। मैं देखता हूँ मुसलमानों को और हिंदुओं को, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ। पहले मैं सोचता था पुलिस वाले यहाँ लगा के पॉइंट ब्लैंक से क्यों मारते हैं, क्योंकि यहाँ ताला लगा हुआ है, तो इसीलिए मारते हैं कि यहाँ मारे तो अगले जन्म में खुला हुआ रहेगा।
5: आपको लगता है कि आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद देश फिर बट सकता है?
3: इस बात को मैं रिपीटेडली कह चुका हूँ, एक विस्फोट होगा बेटा।
6: लेकिन आपके पढ़ाने के तरीके मुझे एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट लगता है कि आप जनता को ही बोल देते हैं कि जनता बड़ी बेवकूफ़ है, और फिर आप कहते हैं कि हमारे देश का युवा पढ़ना नहीं चाहता है।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: तस्वीरें अक्सर सच बोलती हैं, लेकिन कभी कभी वही तस्वीरें आंखों में धूल भी झोंक देती हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी सेनेटर जॉन फेटरमैन की इस मुलाकात को ही देख लीजिए। सूट बूट में बैठे नेतन्याहू के सामने हाफ पैंट और हुडी में अमेरिकी नेता, पैर के ऊपर पैर चढ़ाकर आराम फरमाता और लगातार फोन पर नजरें गड़ाए बैठा उसका ये अंदाज वायरल है। जिसने भी इन तस्वीरों को देखा हैरान रह गया। सोशल मीडिया पर दावा किया जाने लगा कि अमेरिकी सेनेटर ने जानबूझकर नेतन्याहू को नीचा दिखाया और उनका भारी अपमान कर दिया। लेकिन रुकिए, किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले जान लीजिए कि सच्चाई इस नैरेटिव के बिल्कुल उलट है, क्योंकि जिस तस्वीर को अपमान बताया जा रहा है उसके पीछे की हकीकत बेहद कड़वी नहीं बल्कि बेहद खास है। मिलिए पेंसिल्वेनिया के डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर सेनेटर जॉन फेटरमैन से। 6 फीट 8 इंच लंबे फेटरमैन अमेरिकी राजनीति के वो चेहरा है जो नियमों से नहीं अपनी शर्तों पर चलते हैं। जिस हुडी और हाफ पैंट को देखकर बवंडर मचा है वो उनका रोज का सिग्नेचर स्टाइल है। वो सेनेट के सबसे आधिकारिक सत्रों में भी इन्हीं साधारण कपड़ों में आते हैं। आलम यह है कि उनके कपड़ों के आगे झुकते हुए अमेरिकी सेनेट को अपना दशकों पुराना ड्रेस कोड तक बदलना पड़ा। रही बात फोन देखने और बेफिक्र होकर बैठने की, तो ये उनका सहज अंदाज है। कोई कूटनीतिक अनादर नहीं, बैठक के कैमरे में कोई कड़वाहट नहीं थी बल्कि जबरदस्त दोस्ती का माहौल था। खुद इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने फेटरमैन की पीठ थपथपाते हुए कहा,
2: Senator, it's good to see you again. You've been a stellar patriot, talking about what is good for America, what is good for our alliance, of which you've been a champion, and you've been telling it like it is, with no fear, and just an indefatigable and courageous commitment to the truth. And I want to thank you on behalf of the people of Israel. Actually, I want to thank you on behalf of free people everywhere, because I've been receiving from around the world kudos for your courage and your clarity. So thank you.
1: आपको जानकर हैरानी होगी कि फेटरमैन अपनी ही डेमोक्रेटिक पार्टी में इजराइल के सबसे बड़े और सबसे कड़े रक्षक माने जाते हैं। उन्होंने यहाँ तक ऐलान कर रखा है कि अगर उनकी पार्टी इजराइल विरोधी रुख अपनाती है तो वो पार्टी तक छोड़ देंगे। इस बैठक में भी फेटरमैन ने इजराइल विरोधियों को करारा जवाब दिया और नेतन्याहू की गिरफ्तारी की मांग करने वाले नेताओं को बेकार करार दिया। साफ है, जो हाफ पैंट और मोबाइल टीवी स्क्रीनों पर अपमान दिख रहा था असल में वो एक अनकन्वेंशनल नेता का अपना बेबाक अंदाज था। नेतन्याहू और फेटरमैन की ये मुलाकात विवाद की नहीं बल्कि राजनीति से परे गहरी दोस्ती की मिसाल निकली। आज तक ब्यूरो।

जंतर मंतर प्रदर्शन पर पीएम मोदी का छात्रों के नाम वीडियो संदेश, कहा मुझे मेरी मां को गाली दी गई, गुमराह बच्चों को करना चाहता हूं माफ, मिलकर बनाए सपनों का भारत। चढ़ावा चोरी पर पप्पू यादव के अजीबोगरीब प्रदर्शन पर सियासी जंग, सरकार बोली संसद नाटक करने की जगह नहीं। अखिलेश ने पोस्ट में पूछा सच बुरा लगा क्या, साधु संतों ने खुला मोर्चा। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में टारगेट किलिंग, दो गैर कश्मीरी मजदूरों को आतंकियों ने मारी गोली, दोनों की मौत, इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में 200 रुपए से ज्यादा की कटौती, दिल्ली से कोलकाता तक घटी कीमतें, दिल्ली में 2728 रुपए का मिलेगा 19 किलो का सिलेंडर। और कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का दमदार प्रदर्शन, जूडो में डबल गोल्ड और सिल्वर, और नीरज चोपड़ा ने अभी जेवलिन थ्रो में जीता सिल्वर, 5 गोल्ड समेत कुल 23 पदक, बॉक्सिंग और एथलेटिक्स में गोल्ड की उम्मीद। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में आतंकवादियों की एक और दर्दनाक एक कायराना करतूत सामने आई है, और बुरी खबर यह है कि दो लोगों की मौत हो गई। केलम गांव में आतंकियों ने गैर कश्मीरी मजदूरों को निशाना बनाया था, पहले खबर आई थी कि एक मजदूर की मौत हो गई, दूसरा घायल है, लेकिन अब जो खबर आ रही है कि दूसरे मजदूर की भी मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक हमलावरों ने मजदूरों की पहचान पूछी, और जब आतंकियों ने यह सुनिश्चित कर लिया कि ये कश्मीर के नहीं है, ये भारत के हैं, तो उसके बाद गोलियों से भून दिया। एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई थी, दूसरे को अस्पताल में भर्ती कराया गया, और अब खबर आ रही है कि उसने भी दम तोड़ दिया। हालांकि अब सिक्योरिटी फोर्सेस एक्टिव हैं, उन आतंकियों की तलाश की जा रही है, पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है, सुरक्षा बलों ने आतंकियों की तलाश में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। और अब आपको दिखाते हैं नॉन स्टॉप 100 प्रेजेंट

0: कुलगांव में गैर कश्मीरी मजदूरों पर आतंकी हमला, आतंकियों ने दो मजदूरों को गोली मारी, छत्तीसगढ़ के एक श्रमिक की मौत, एक घायल, दोनों की मौत हो गई। कुलगांव आतंकी हमले पर सीएम विष्णुदेव साय ने जताया दुख, बोले छत्तीसगढ़ सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है, घायल मजदूर के इलाज के निर्देश दिए गए। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में सुरक्षा एजेंसी अलर्ट पर, गैर स्थानीय निवासियों पर हमले के बाद इलाके में व्यापक सर्च ऑपरेशन जारी है। पेपर लीक पर सख्त कानून लागू, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद सार्वजनिक परीक्षा संशोधन कानून 2026 लागू, धांधली पर बड़ी कार्रवाई। होटल रेस्टोरों को राहत, कमर्शियल एलपीजी के दाम घटे, दिल्ली में 202 और कोलकाता में 209 रुपए की कटौती हुई। पीएम मोदी ने देर रात अपने इंस्टा हैंडल से जारी किया युवाओं के लिए वीडियो संदेश, पीएम ने जंतर मंतर पर हुए विवाद का जिक्र करते हुए युवाओं से की मन की बात। पीएम मोदी ने जंतर मंतर विवाद पर कहा, गालियां कभी किसी समस्या का समाधान नहीं होती। वीडियो संदेश में बोले पीएम, बच्चों को अदालतों के चक्कर नहीं, अपनापन और सही मार्गदर्शन मिलना चाहिए। वीडियो संदेश में कहा पीएम ने कि समाज का आक्रोश समझता हूं, लेकिन सजा नहीं सुधार पर जोर देना होगा। पीएम मोदी ने इंस्टा पर दिए वीडियो में संदेश में युवाओं से सुधार की बात की, बोले गलतियों से सीख कर देश के लिए मिलकर आगे बढ़ाना है। आज पीएम का आंध्र प्रदेश और कर्नाटक दौरा, कई कार्यक्रम में होंगे शामिल, साथ ही कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। आंध्र प्रदेश का नया अल्लूरी एयरपोर्ट बनेगा दक्षिण का नया इकोनॉमिक पावर हाउस, भोगापुरम में अल्लूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट का पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। पीपीपी मॉडल के तहत 5,640 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार किया गया है ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। पीएम मोदी ने ब्रिटेन के पीएम एंडी बर्नहैम से फोन पर बात की, एंडी बर्नहैम को यूनाइटेड किंगडम का प्रधानमंत्री पद संभालने पर बधाई दी है। मोदी कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर लगी मोहर, सरकार ने 4.5 लाख करोड़ से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को अगले 5 साल के लिए बढ़ाया गया, किसानों की आय को स्थिर समर्थन देना और ग्रामीण मांग को मजबूत बनाए रखना उद्देश्य। सरकार ने पीएम सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दी, सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाएगा जलाशयों का इस्तेमाल, देश में स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन को गति देना मकसद। समुद्र मंथन प्रोग्राम को भी कैबिनेट ने दी हरी झंडी, इसके तहत देश में तेल और गैस की खोज और उत्पादन पर जोर, 84,000 करोड़ का बजट मंजूर। खेलो इंडिया योजना के विस्तार को भी मिली मंजूरी, अगले 5 सालों के लिए 29,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा 36,443 करोड़ की नई खेलो इंडिया योजना से तैयार होंगे विश्व स्तरीय खिलाड़ी। आज पुणे में प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 से सम्मानित होंगे एनएसए अजीत डोभाल, देश की सुरक्षा आतंकवाद विरोधी अभियानों के उनके असाधारण योगदान के लिए सम्मान। 2020 दिल्ली दंगे मामले में सजा का ऐलान, आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या में आपके पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत सभी 5 दोषियों को उम्र कैद। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने अंकित शर्मा हत्याकांड में ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा के फैसले का स्वागत किया, केजरीवाल से जवाब मांगा। कैबिनेट मंत्री प्रवीण शर्मा ने पोस्ट में कहा ताहिर समेत अन्य दोषियों को उम्र कैद होने से अंकित शर्मा को इंसाफ मिला। सजा के बाद ताहिर हुसैन का पहला बयान, कहा हाईकोर्ट से मिलेगा इंसाफ, देर है पर देर नहीं। कर्नाटक कैबिनेट विस्तार पर कांग्रेस में मंथन तेज खड़गे की आवाज पर हुई बैठक में राहुल गांधी समेत कई बड़े नेता शामिल, 16 से 18 नामों पर चर्चा। भारत पाक तनाव पर ट्रंप का फिर आया बयान, बोले टैरिफ के दबाव से रोका युद्ध, भारत ने कहा युद्ध सीधी सैन्य बातचीत से हुआ सीज फायर। पीओजेके में पाक सेना की कार्रवाई पर भारत सख्त, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर हिंसा के आरोपों की अंतर्राष्ट्रीय जांच और जवाबदेही की मांग। पीओजे के हिंसा पर भारत ने उठाई आवाज, 40 से ज्यादा मौतों के दावे के बीच पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराने की मांग। इंडिगो का बड़ा फैसला, व्हाइट बॉडी विमान सेवा पर रोक, बढ़ती लागत, ईंधन कीमत और वैश्विक हालात के चलते 25 अक्टूबर से ऑपरेशन बंद। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मुद्दे पर संसद में विपक्षी प्रदर्शन पर बरसे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, बोले बाबरी मस्जिद बनाने के लिए जुटाए चंदे का हिसाब दे। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में लागू किया गया नया ड्रेस कोड, अब मंदिर में प्रवेश से पहले पीली चौबंदी और सफेद धोती धारण करेंगे पुजारी। राम मंदिर में कैमरों की निगरानी में होगी दान पात्र में चढ़ावे की रकम निकालने और गिनती वाली जगह तक पहुंचाने की प्रक्रिया, कर्मचारियों की हर गतिविधि पर नजर। 2 सितंबर को होगी मंदिर ट्रस्ट की अगली बैठक, सचिव सीईओ प्रवक्ता की नियुक्ति पर लग सकती है मोहर। यूपी चुनाव को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बड़ा ऐलान, आकाश आनंद पर बोलते हुए कहा उम्मीदवार मैं ही तय करूंगी, अफवाहों से दूर रहें। आगरा में सावन के दौरान कांवड़ यात्रा रूट पर शराब मीट मछली की दुकानें बंद करने के लिए प्रदर्शन, राष्ट्रीय हिंदू परिषद ने डीएम को ज्ञापन सौंपा। गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा की सभी तैयारियां पूरी, पूरे जनपद को 11 जोन और 24 सेक्टर में विभाजित कर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। देवघर में चल रहे चावड़ी मेले की भव्य रौनक, बाबा वैद्यनाथ के मंदिर में की गई शानदार लाइटिंग और सजावट। सहारनपुर में कांवड़ यात्रा की हाईटेक सुरक्षा, 3000 अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरों से निगरानी होगी, पुलिस कंट्रोल रूम का उद्घाटन। एमपी, राजस्थान, पंजाब सहित देश के तमाम हिस्सों में मानसून सक्रिय, मौसम विभाग की ओर से गुजरात महाराष्ट्र में अलर्ट। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने रचा इतिहास, जूडो में अस्मिता डे ने 48 किलोग्राम वेट कैटेगरी के फाइनल में कनाडा के खिलाड़ी को मात दी, गोल्ड मेडल जीता। भारतीय जूडो खिलाड़ी हर्ष सिंह ने भी ग्लासगो में लहराया तिरंगा, 60 किलोग्राम इवेंट में जीता गोल्ड, वहीं अस्मिता ने जीता सिल्वर। लवप्रीत सिंह ने वेट लिफ्टिंग में भारत को दिलाया 10वां सिल्वर मेडल, पुरुष के 110 किलोग्राम कैटेगरी में 388 किलोग्राम वजन उठाया। डिस्कस थ्रो में सीमा ने भारत को ब्रॉन्ज दिलाया, 58.5 मीटर थ्रो किया। नीरज चोपड़ा का सीजन बेस्ट थ्रो के साथ सिल्वर मेडल जीता, यशवीर सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा गुरेज रोड पर साधेरकूट बाला में बादल फटने से भूस्खलन, कैमरे में कैद हुआ पहाड़ झरकने का लाइव वीडियो। बादल फटने के बाद अचानक बड़ा पानी का बहाव, अचानक आई फ्लैश फ्लड से रिहायशी इलाके में घुसा पानी, कई घर जलमग्न। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में हुई झमाझम बारिश, शिमला में बरसात के बाद मौसम सुहाना। गुजरात के 13 जिलों में 2 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट, अहमदाबाद में स्कूल कॉलेजों की छुट्टी। सूरत में भारी बारिश से जनजीवन बेहाल, सड़कों पर जलभराव से लोग परेशान। सूरत में जोरदार बारिश के बीच जगह जगह बंद नालों को खोलने में जुटे कर्मचारी, सड़कों पर पानी भरने से रोकने की कोशिश। गुजरात के भावनगर के कई इलाकों में तेज हवा के साथ भारी बारिश, सड़कें पूरी तरह जलमग्न, कई फीट पानी भर गया। गुजरात के खेड़ा में मूसलाधार बारिश से आम जनजीवन प्रभावित, सड़कों पर कई वाहन डूबे, लोगों की परेशानी बढ़ी। गुजरात के भरूच में रेड अलर्ट के बीच भारी बारिश का कहर, कई इलाकों में पूरी तरह जलमग्न, प्रशासन अलर्ट पर। गुजरात में भारी बारिश से बिगड़े हालात, नर्मदा छोटा उदयपुर में उफान पर नदियां, एनडीआरएफ एक्टिव। गुजरात के पाटन में भारी बारिश से किसानों की मुसीबत बढ़ी, भाटसार गांव की 80% कृषि भूमि जलमग्न हो गई। महाराष्ट्र के अकोला अमरावती में बारिश का कहर, कई नदियां उफान पर, 7 लोगों का रेस्क्यू। महाराष्ट्र में लगातार हो रही बारिश के बाढ़ के हालात, गढ़चिरौली में नदी में फंसे 3 लोगों को प्रशासन ने सुरक्षित बाहर निकाला। महाराष्ट्र के जलगांव में लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश के बाद बाढ़ के हालात, उत्तर बांध में 36 गेट खोले गए। पुणे में भी भारी बारिश से मुदा नदी में उफान, खड़क वासला बांध के लगभग 36,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया। हरिद्वार में गंगा नदी के तेज बहाव में बहे 4 कांवड़ियों के डूबने से मौत, एसडीआरएफ ने सभी के शव बाहर निकाले। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकी हमला, 2 गैर कश्मीरी मजदूरों की आतंकियों ने गोली मारी। धनबाद के एक स्कूल में मिड डे मील तैयार करने के दौरान गैस सिलेंडर में लगी आग, ग्रामीणों की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। मुजफ्फरनगर में कोकरी गोदाम में लगी भीषण आग, प्लास्टिक और कागज के सामान में तेजी से फैली आग, कांवड़ मात्रा पर मचा अफरतफरी। यूपीएसटीएफ ने एसएससी परीक्षा में हाईटेक नकल का मास्टरमाइंड अलवर से गिरफ्तार किया, टीएफटी स्क्रीन से बाहर बैठा सॉल्वर देता था पेपर। कौशाम्बी में घर पर हनुमान चालीसा बजाने पर विवाद, कोचिंग संचालक पर घर में घुसकर मारपीट का आरोप, 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज। सुपौल में भारत नेपाल सीमा पर सीमा सुरक्षा बल और बिहार पुलिस का बड़ा एक्शन, ड्रग तस्करी गैंग के 2 आरोपी गिरफ्तार, 837 किलो गांजा जब्त। अलवर में कार सवार दंपति की चोरी करते कैमरे में हुए कैद, पुलिस चौकी के पास से चुराए चीनी मिट्टी के बर्तन। गुजरात के नवसारी में झुके बिजली के तार की चपेट में आया मजदूरों से भरा टेम्पो, 3 की मौत, 3 घायल। मुंबई में रंगदारी गैंग पर क्राइम ब्रांच का शिकंजा, ठेकेदार से 25 लाख की रंगदारी लेते जुल्फकार गैंग के सरगना समेत 12 आरोपी गिरफ्तार। टिहरी गढ़वाल में गंगोत्री नेशनल हाईवे पर 2 कारों की आमने सामने भीषण टक्कर, सभी सुरक्षित। मंडी में 15 क्विंटल बूली नाले में फेंकने का वीडियो वायरल, मामले में संज्ञान में आते ही 5 घंटे बाद प्रशासन ने खोली सड़क, 5 दिन से बंद था मार्ग। इंदौर में बाढ़गंगा में प्रॉपर्टी कारोबारी की संदिग्ध मौत, महिला से हो रही पूछताछ, घटना स्थल का रिक्रिएशन होगा। चंदौली में मिड डे मील में मरा हुआ कीड़ा मिलने से हड़कंप, बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जांच के आदेश दिए। बागपत में निर्माणाधीन मकान की छत गिरी, 2 लोगों की मौत हो गई। इंदौर में शराब दुकान पर पुलिस सिपाही ने मचाया हंगामा, मुफ्त बोतल नहीं देने पर पिस्टल दिखाकर धमकाया, सस्पेंड किया गया। झांसी में ओवरब्रिज पर बाइक और स्कूटी के आमने सामने भिड़ंत, 2 युवकों की मौत हो गई मौके पर। फरीदाबाद में सीवर लाइन काम के दौरान बड़ा हादसा, करंट लगने से दो मजदूरों की मौत। महाराष्ट्र के नंदुरबार में बड़ा हादसा चला, 3500 फीट गहरी घाटी के ऊपर जिप लाइन में फंसा टूरिस्ट। गुजरात के गिर सोमनाथ में खौफनाक नजारा, महिला की चारपाई के नीचे रात भर छिपा रहा मगरमच्छ। 11 अगस्त को मिर्जापुर द मूवी का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज होगा, एक बार फिर गुड्डू पंडित और कालीन भैया गदर मचाते दिखेंगे। छावा के बाद महाअवतार की तैयारी में जुटे एक्टर विक्की कौशल, 25 किलो वजन ज्यादा बढ़ाया परशुराम के किरदार के लिए, भगवान परशुराम के किरदार के लिए। हॉलीवुड फिल्म स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ने ओपनिंग डे पर भारत में की बंपर कमाई, फिल्म ने पहले ही दिन 50 करोड़ रुपए का कारोबार किया। वेंकी अटलुरी ने लकी भास्कर 2 का ऐलान किया, दुलकर सलमान और मीनाक्षी चौधरी स्टार लकी भास्कर 2024 में रिलीज हुई थी। हैरी पॉटर फैंस के लिए फिर से अच्छी खबर, 25 साल बाद फिर रिलीज होगी हैरी पॉटर का पहला पार्ट। अप्रैल जून तिमाही में सोने की मांग 6% घटकर 131.4 टन पर लुढ़की, गोल्ड प्राइस के रिकॉर्ड उछाल से लोगों का खर्च 50% बढ़कर 1,98,000 करोड़ रुपए पर पहुंचा। सूरजमुखी तेल की सप्लाई घटने से पाम, सोयाबीन और सरसों तेल के दाम बढ़ने के आसार, खाद तेल की कीमतों में 8-12% तक इजाफा की आशंका। एलपीजी सिलेंडर के दाम, बैंकिंग चार्ज, रेलवे के तत्काल टिकट पर, CKYC से जुड़े नियमों में हो सकता है बदलाव, आम आदमी की जेब पर पड़ सकता है असर। आज से लागू होंगे GST के नए ई वे बिल नियमों को सरकार ने रोका, क्रियान्वयन में आ रही दिक्कतों के चलते ई वे बिल के 2 प्रस्तावित बदलाव फिलहाल टल गए हैं। दिल्ली के भारत मंडपम में गिफ्ट एक्सपो 2026 में स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स और विजिटर्स जमा हुए, नई कंपनियों ने एक्सपो में नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की कार्रवाई पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान, कहा ICC का निशाना मैं नहीं हूं लेकिन हो भी सकता हूं। अमेरिका में वाटर सप्लाई सिस्टम पर हुए साइबर अटैक पर ट्रंप का बयान, कहा यह ईरान का हाथ नहीं है इसमें। हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान की सेना का बड़ा हमला, 2 तेल टैंकरों को निशाना बनाया, 4 तेल टैंकर वापस लौटाए, IRGC ने अमेरिका को चेतावनी दी, हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेंगे। रूस की दूसरी सबसे बड़ी कॉमर्स कंपनी ओजोन के पास यूक्रेनी ड्रोन ने हमला किया, 5 लोग घायल हुए, ड्रोन गिरने से हड़कंप। अमेरिकी डेलीगेशन ने ताइवान की राष्ट्रपति लाई चिंग से मुलाकात की, दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा हुई। सेउटा में प्रवासी संकट पर यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर का बयान, कहा यूरोपीय संघ मोरक्को के संपर्क में है ताकि प्रवासी संकट को हल किया जा सके। तुर्की में जंगलों की आग से बड़ी तबाही, जान जोखिम में डालकर आग बुझाते दमकल कर्मियों का वीडियो वायरल। अफ्रीकी देश अल्जीरिया में भयानक सड़क हादसा, सड़क से फिसलकर खाई में गिरी बस, 25 यात्रियों की मौत हुई, 44 घायल हुए। पाकिस्तान के ब्रॉच पीक पर हिमस्खलन से 10 पर्वतारोही लापता, 4 शव बरामद, नेपाल के मशहूर पर्वतारोही निर्मला पुर्जा समेत 6 पर्वतारोही अब भी लापता हैं, हेलीकॉप्टर से मदद ली जा रही है। फीफा में मचे घमासान के बीच फीफा अध्यक्ष के वरिष्ठ सलाहकार कार्लोस गॉटरे का इस्तीफा, कार्लोस ने वर्ल्ड कप में हिस्सेदारी बेचने के प्रस्ताव का किया था विरोध।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। In association with
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। वैसे तो सावन का हर दिन अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन सावन के सोमवार और शनिवार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। आज हम बात करेंगे सावन के शनिवार की, जिसको संपत शनिवार कहा जाता है। इसकी महिमा क्या है, इसका विधान क्या है, इस दिन के लाभ क्या हैं, इन विषयों पर बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना विशेष है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 1 अगस्त 2026, दिन शनिवार, तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि, रात के 11:07 तक। नक्षत्र है शतभिषा नक्षत्र, रात के 8:45 तक। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय 9:00 से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम आपको बता रहे हैं सावन के महीने के शनिवार की महिमा के बारे में। सावन के महीने से शनि का क्या संबंध है, पहले ये समझते हैं। देखिए, सावन का महीना जल तत्व का महीना है और इसमें बाकी तत्व कमजोर होते हैं। इस कारण से सावन में मन की, पाचन तंत्र की और स्नायु तंत्र की समस्याएं लगातार व्यक्ति को परेशान करती हैं। वायु तत्व और उसके स्वामी शनि को अगर आप सावन में मजबूत करें तो अपने स्वास्थ्य की और मन की समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। सावन में आपका स्वास्थ्य अच्छा हो, आपका मन अच्छा हो, इसके लिए कुछ मंत्रों का जप करना चाहिए और कुछ सावधानियों का पालन करना चाहिए। सावन के महीने में शनिदेव की उपासना सबसे ज्यादा लाभदायक होती है और ऐसा माना जाता है कि अगर आप सावन में शनिदेव की उपासना करें तो बाकी समय में शनिदेव की उपासना की आवश्यकता नहीं होती है। तो मुख्यतः सावन के सोमवार और सावन के शनिवार अपने आप में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। सावन के शनिवार पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और सावन का एक विशेष उपाय बताएंगे, सावन
सूत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, अचानक धन की प्राप्ति होगी, करियर में लाभ होगा। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। वृषभ राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा पर जा सकते हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। मिथुन राशि, करियर में लाभ होगा, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। तो सावन का शनिवार अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब ये जानते हैं कि सावन के शनिवार की खास बातें क्या हैं। देखिए, सावन में आम तौर पर हर तरह की ऊर्जा की कमी होती है। सावन में आलस्य और शिथिलता आपको ज्यादा महसूस होगी, इसीलिए सावन में आम आदमी को स्वास्थ्य की और धन की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सावन के हर शनिवार को उपासना करने पर व्यक्ति को शनि के द्वारा अपार धन और संपत्ति मिल सकती है। सावन का शनिवार चूंकि धन और संपत्ति देता है, इसलिए सावन के शनिवार को संपत शनिवार भी कहते हैं। अगर शनि के लिए केवल सावन में उपासना की जाए, केवल सावन में शनि देव की पूजा की जाए, तो साल भर शनि उपासना की जरूरत नहीं पड़ती है। जिन लोगों की शनि की साढ़े साती चल रही है, जिनकी शनि की ढैया चल रही है, या जिनकी कुंडलियों में शनि का अशुभ समय चल रहा है, ऐसे लोग अगर सावन के शनिवार को शनि देव की पूजा करें तो शनि संबंधी तमाम दोष दूर हो जाएंगे। सावन के शनिवार की चर्चा हमारी जारी है, लेकिन

आने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। सिंह राशि, ऑफिस में व्यस्तता रहेगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, किसी अतिथि का आगमन होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा

बेहतर होता जाएगा। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें भाग्यचक्र@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न दीपिका जी ने हमें लिखा है और दीपिका जी हमें बेंगलोर से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 21 फरवरी 1990, जन्म का समय सुबह के 11 बजे, जन्म स्थान है गाजियाबाद। दीपिका कह रही हैं कि मेरे एक संतान है और मैं दूसरे संतान के लिए प्रयास करना चाहती हूँ, क्या दूसरे संतान के लिए प्रयास करना उचित होगा? दीपिका, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके स्वास्थ्य का मामला बहुत अच्छा नहीं है और कुंडली में दूसरे संतान के होने की संभावना भी इतनी प्रबल नहीं है, तो मुझे लगता है कि स्वास्थ्य और स्थितियों को देखते हुए आप दूसरे संतान के लिए प्रयास ना करें। अपने स्वास्थ्य और जीवन को बेहतर करने के लिए एक मूंगा बनवा के पहन लें, 10-12 रत्ती का मूंगा, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को सवेरे मूंगा धारण करें और रोज सुबह एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो सावन का शनिवार कितना महत्वपूर्ण है ये आपने जान लिया। अब सामान्य रूप से सावन के शनिवार को कैसे पूजा उपासना करेंगे? आज सावन का शनिवार है तो आज शाम को पीपल के वृक्ष के निकट जाइए। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक बड़ा सा दीपक जलाइएगा। पहले दीपक जलाने के बाद शिव जी के मंत्रों का जप करिएगा, नमः शिवाय का, और फिर शनि देव के मंत्रों का जप करिएगा, ओम शं शनैश्चराय नमः। इसके बाद जब मंत्र जप कर लें तो किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन कराएं या भोजन का या अनाज का दान करें या भोजन करने के लिए धन दें। इसके बाद शिव जी और शनि देव से कृपा करने की प्रार्थना करें। आप चाहें तो आपके घर में अगर शमी का पौधा है, पीपल का वृक्ष काफी दूर है या नहीं है, तो शमी के पौधे के नीचे दीपक जलाइएगा और इसके बाद पहले आपको भगवान शिव के मंत्र का जप करना है, इसके बाद शनि देव के मंत्र का जप करिए और इसके बाद भोजन का या अन्न का दान करिएगा। अगर सावन के शनिवार को ये छोटा सा प्रयोग आप कर लेते हैं तो शनि संबंधी बाधाओं से, शनि संबंधी मुश्किलों से आपको छुटकारा जल्दी मिलेगा। चर्चा हमारी जारी है लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है
और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, रिश्तों की समस्या हल होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, चोट चपेट से बचाव करें, अनाज का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल।

तनाव बढ़ सकता है, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी। परिवार में विवादों से बचाव करें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। धनु राशि, परिवार में शुभ कार्य होंगे, करियर में लाभ के योग हैं, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। अगर आपको रोजगार की कोई समस्या है, नौकरी में दिक्कत आ रही है, व्यापार या प्रोफेशन ठीक नहीं है, रोजगार के लिए किसी समस्या से जूझ रहे हैं, तो सावन के शनिवार को रोजगार के लिए क्या उपाय करेंगे?

टॉम को एक समय अनाज मत खाइएगा, शाम के समय शनिदेव के मंत्र का जप करिएगा, 3 माला या 11 माला, ओम शं शनैश्चराय नमः या ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करिएगा, और इसके बाद हाथ में काला धागा लेकर के पीपल के वृक्ष की 3 बार परिक्रमा करिएगा और उसके तने में काला धागा लपेटिएगा।

करिएगा और इसके बाद प्रार्थना करिएगा कि आपको रोजगार की, नौकरी की, व्यापार की समस्याओं से मुक्ति मिले। सावन के शनिवार पर पूजा उपासना करने से धन संपत्ति प्राप्त करना आसान होता है, इसीलिए इसको संपत शनिवार कहा जाता है। तो सावन के शनिवार को धन संपत्ति के लिए क्या करेंगे? सावन के शनिवार की शाम को नीम की लकड़ी जलाइए और उस पर काले तिल से हवन करिए। कुल मिलाकर नीम की लकड़ी में जो आग जल रही है उसमें 108 बार आहुति दीजिएगा और हर बार जब अग्नि में काला तिल डालेंगे तो मंत्र बोलेंगे, ओम शं शनैश्चराय स्वाहा, ओम शं शनैश्चराय स्वाहा। इस मंत्र से हवन करेंगे और हवन करने के बाद काली चीजों का दान करेंगे, जैसे काले चने का, काली उड़द की दाल का दान कर सकते हैं। अगर ये प्रयोग सावन के शनिवार की शाम को आप करें तो आपको धन और संपत्ति का लाभ होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, करियर में सफलता के योग हैं, लंबी यात्रा पर जा सकते हैं, धन के खर्चों पर ध्यान दें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की समस्या हल होगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी।

लापरवाही ना करें, सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। देखिए, कोई भी मूर्ति अगर खंडित हो जाए या टूट जाए तो उसकी पूजा नहीं करते हैं, उसे हटा देते हैं। लेकिन शिवलिंग अगर खंडित हो जाए तो भी उसकी पूजा की जा सकती है। ऐसा क्यों? देखिए, जितनी भी मूर्तियां हैं देवी देवताओं की, वो देवी देवताओं का साकार स्वरूप है। और अगर ऐसी मूर्तियां खंडित हो जाती हैं तो साकार स्वरूप नष्ट हो जाता है, उसकी ऊर्जा बिगड़ जाती है। जो शिवलिंग है वो भगवान शिव का निराकार स्वरूप है और निराकार स्वरूप खंडित नहीं हो सकता। इसीलिए चूंकि वो शिव जी का निराकार स्वरूप है, इसीलिए अगर शिवलिंग खंडित हो जाए तो भी उसे खंडित नहीं मानते और उसकी पूजा कर सकते हैं। वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 2, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 3, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 4, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 5, परिवार में व्यस्तता रहेगी। नंबर 6, वाद विवाद से बचाव करें। नंबर 7, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 8, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और नंबर 9, धन लाभ के योग बन रहे हैं। वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान शिव की कपूर से आरती करिएगा। ऐसा करने से आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर होती जाएंगी। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस।

की कोई परीक्षा है तो घी खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है तो लौंग खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो हनुमान चालीसा का एक बार पाठ करिएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन भूमि भवन आभूषण, तो नीला रुमाल साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को आज बहुत सावधान रहना होगा।

के लिए, हर कार्य में सफलता मिलेगी, चिंताएं समाप्त होंगी। आज का दिन मंगलमय होगा वृषभ राशि वालों के लिए, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन का लाभ होगा। आज सावधान रहना होगा वृश्चिक राशि वालों को, तनाव और चिंता बढ़ सकती है, सेहत बिगड़ सकती है। अब जान लेते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। आज तृतीया तिथि है, आज लंबे समय तक चलने वाले कार्य करने चाहिए और आज धन के लेन देन में सावधानी रखनी चाहिए। सावन का पावन महीना चल रहा है, तो चलिए आपको बताते हैं सावन के महीने का अचूक उपाय सावन सूत्र में।

आपके समस्या रहती हो तो एक नियम बना लें, सावन में जितने भी शनिवार हैं हर शनिवार को निर्धनों को खाने पीने की वस्तु का दान करें, शिव जी से प्रार्थना करें, आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: महंगाई के बीच कारोबारियों के लिए राहत की खबर है। सूत्र के मुताबिक 819 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कटौती की गई है। दिल्ली में इसकी कीमत 202 रुपए और कोलकाता में 209 रुपए कम हुए हैं। नई दरों के बाद कोलकाता में 19 किलो का जो कमर्शियल सिलेंडर है वो 2872 रुपए 50 पैसे में मिलेगा। हालांकि आम उपभोक्ताओं की बात करें तो उनके लिए घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में फिलहाल कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। ये देखिए दिल्ली में 2728 रुपए का अब कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के नए दाम होंगे और कोलकाता में 2872 रुपए 50 पैसे। महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले से भारी बारिश के बीच लैंडस्लाइड की खबर सामने आई। चंदसैली घाट में भूस्खलन होने से सड़क पूरी तरह से मलबे से भर गई। ये देखिए अब हालांकि इसे बोल्डर कहा जाएगा, बड़ा बड़ा पत्थर जो ऊपर से अब पहाड़ों से दरकते हुए आया, पहाड़ जो दरके तो बड़े बड़े बोल्डर सड़कों पर जम गए। एहतियात के तौर पर यातायात बंद हो गया है और जेसीबी की मदद से इन बड़े बड़े बोल्डर पत्थरों को हटाने की कोशिशें जारी है। ये देखिए ये पूरा पहाड़ दरकते हुए कैसे सड़क पर आ गया है। आवाजाही के लिए जेसीबी लगातार कोशिश कर रही है, अर्थ मूवर्स कोशिश कर रही हैं कि इस रास्ते पर आवागमन दोबारा से शुरू किया जाए। लोक निर्माण विभाग की टीमें मलबा हटाने के काम में जुटी हुई हैं, लेकिन लोगों से सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील भी की गई है और बारिश के वक्त पर अगर आप किसी भी पहाड़ी क्षेत्र में जा रहे हैं तो वहां पर आपको सावधानी बरतना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि लैंडस्लाइड कभी भी हो सकता है, इसीलिए सावधानी बरतते हुए चलें। महाराष्ट्र में मानसून का कहर जारी है। कई जिलों में मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए। कहीं गांव का संपर्क टूट गया, कहीं सड़कें धस गईं। जलगांव में एक महीने के मासूम का रेस्क्यू हुआ तो गढ़चिरौली में बाढ़ के तेज बहाव में फंसे वन अधिकारी को बचाया गया। हर जगह तबाही देखने को मिल रही है। दांदेड़ से भी कुछ ऐसी तस्वीरें आई।
4: महाराष्ट्र में बारिश अब मुसीबत बन चुकी है। जलगांव में बाढ़ के पानी में फंसे एक परिवार के लिए फायर और हेल्थ स्टाफ फरिश्ता बनकर पहुंचे, जहां एक महीने के बच्चे समेत पूरा परिवार घर में फंसा हुआ था। रेस्क्यू टीम ने रस्सियों की मदद से करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद परिवार को बाहर निकाला। मासूम बच्चे को प्लास्टिक के टब में सुरक्षित रखा गया और सभी लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। उधर गढ़चिरौली में भी बारिश ने मुसीबत बढ़ा दी है। नालों का जलस्तर बढ़ने से वन अधिकारी की कार तेज बहाव में फंस गई और पेड़ में जाकर फंस जाने से सूचना मिलते ही आपदा टीम मौके पर पहुंचकर अधिकारी को सुरक्षित बाहर निकाल लेती है। नांदेड़ में बारिश का असर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। जिले के 73 मंडलों में भारी बारिश दर्ज की गई है। नदियां और नाले उफान पर है, कई गांवों का संपर्क टूट चुका है। नांदेड़ शहर में सड़क धस जाने से वहां वाहन फंस गया, जिससे प्रशासन की तैयारियों पर भी सवाल उठ रहे हैं। वाशिम और जालना में भी भारी बारिश से रास्ते बंद हो गए हैं। कहीं पुल बह गए तो कहीं सड़कों पर पानी भरने से आवाजाही प्रभावित है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि फंसे नाले और जल भराव वाले रास्तों को पार करने की कोशिश ना करें। आज तक ब्यूरो।
3: गुजरात में मानसून अब आफत बन चुका है। खेड़ा से लेकर आणंद, नवसारी, भरूच, सूरत, वड़ोदरा और भावनगर तक मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह अस्तव्यस्त कर दिया। कहीं बाजार और घर पानी में डूबे हैं, कहीं सड़कें नदी बन गई हैं, तो कहीं बारिश का पानी एक मासूम की जान ले गया।
4: गुजरात में आसमान से बरस रही आफत थमने का नाम नहीं ले रही। खेड़ा जिले में सिर्फ 16 घंटे में 13 इंच से ज्यादा बारिश ने पूरे इलाके को जलमग्न कर दिया। मुख्य बाजार और कई रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया है। घरों और दुकानों में पानी घुसने से कारोबार ठप पड़ गया और लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बारिश की सबसे दर्दनाक तस्वीर आनंद से सामने आई, जहां एसपी कार्यालय के सामने बारिश के पानी में खेल रहे तीन बच्चे तेज बहाव में बह गए। पुलिस और फायर ब्रिगेड ने तीनों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान मासूम की मौत हो गई। इस हादसे ने पूरे इलाके को गमगीन कर दिया। उधर नवसारी में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। नवसारी में हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और

0: को आतंकियों ने मारी गोली, दोनों की मौत। इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में 200 रुपए से ज्यादा की कटौती। दिल्ली से कोलकाता तक घटी कीमतें। दिल्ली में 2728 रुपए का मिलेगा 19 किलो का सिलेंडर। और कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का दमदार प्रदर्शन। जूडो में डबल गोल्ड और सिल्वर, और नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में जीता सिल्वर। 5 गोल्ड समेत कुल 23 पदक। बॉक्सिंग और एथलेटिक्स में गोल्ड की उम्मीद। आइए अब आपको दिखाते हैं 100 शहर 100 खबर।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस।
0: जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से तबाही, फ्लैश फ्लड से कई वाहन बह गए। किश्तवाड़ में भारी बारिश और फ्लैश फ्लड का कहर, नेशनल हाईवे किया गया बंद, राहत बचाव प्रशासन की नजर। गुजरात के वही सागर में मूसलाधार बारिश का कहर, भारी बारिश के चलते पूरे इलाके में पानी भर गया। गुजरात के आणंद में रेड अलर्ट के बीच प्रशासन हाई अलर्ट पर, लोगों से बेवजह घर से बाहर ना निकलने की अपील। सूरत में भारी बारिश के बीच मनीष फ्लोर मिल का शेड ढह गया, हादसे का वीडियो सामने आया। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा गुरेज रोड पर सादिर कोट बाला में बादल फटने से भूस्खलन कैमरे में कैद हुआ पहाड़ धरकने का लाइव वीडियो। बादल फटने के बाद अचानक बड़ा पानी का बहाव, अचानक आई फ्लैश फ्लड से रिहायशी इलाके में घुसा पानी, कई घर जलमग्न। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में हुई झमाझम बारिश, शिमला में बरसात के बाद मौसम सुहावना। गुजरात के 13 जिलों में 2 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट, अहमदाबाद में स्कूल कॉलेजों में छुट्टी के आदेश। सूरत में भी बारिश से जनजीवन बेहाल, सड़कों पर पानी भर गया, लोग परेशान। सूरत में जोरदार बारिश के बीच जगह जगह बंद नालों को खोलने में कर्मचारी जुटे हुए हैं ताकि पानी जमा ना हो। गुजरात के भावनगर में कई इलाकों में तेज हवा के साथ भारी बारिश, सड़कें पूरी तरह जलमग्न, कई फीट पानी भर गया। गुजरात के खेड़ा में मूसलाधार बारिश से आम जनजीवन प्रभावित, सड़कों पर वाहन डूबे, लोग परेशान। गुजरात के भरूच में रेड अलर्ट के बीच भारी बारिश का कहर, कई इलाके पूरी तरह जलमग्न, प्रशासन अलर्ट पर। गुजरात में भारी बारिश से बिगड़े हालात, नर्मदा छोटा उदयपुर में उफान पर नदियां, एनडीआरएफ ने रेस्क्यू कर युवक की जान बचाई। गुजरात के पाटन में बारिश बनी किसानों की मुसीबत, भाटसर गांव की 80% कृषि भूमि जलमग्न हो गई। महाराष्ट्र अकोला अमरावती में बारिश का कहर, कई नदियां उफान पर, 7 लोगों को रेस्क्यू किया। महाराष्ट्र में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ के हालात, गढ़चिरौली में नदी में फंसे 3 लोगों को प्रशासन ने सुरक्षित बाहर निकाला। महाराष्ट्र के जलगांव में लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश से बाढ़ के हालात हैं, हथनूर बांध के 36 गेट खोले गए, बांध से पानी छोड़ने पर छोटे जलाशयों में बाढ़ का खतरा। पुणे में भी भारी बारिश से मुथा नदी में उफान, खड़कवासला बांध से लगभग 36,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, निचले इलाकों में अलर्ट। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में टारगेट किलिंग, 2 गैर कश्मीरी मजदूरों को आतंकियों ने गोली मारी, दोनों की मौत। कुलगाम आतंकी हमले पर सीएम विष्णुदेव साय ने दुख जताया, बोले छत्तीसगढ़ सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट, गैर स्थानीय निवासियों पर हमले के बाद इलाके में व्यापक सर्च ऑपरेशन जारी। पेपर लीक पर सख्त कानून, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद सार्वजनिक परीक्षा संशोधन कानून 2026 लागू, धांधली पर कड़ी कार्रवाई होगी। होटल रेस्टोरेंट को राहत, कमर्शियल एलपीजी के दाम घटे, दिल्ली में 202 कोलकाता में 209 की कटौती हुई। पीएम ने देर रात अपने इंस्टा हैंडल से जारी किया युवाओं के लिए वीडियो संदेश। पीएम ने जंतर मंतर पर हुए विवाद का जिक्र करते हुए युवाओं से की मन की बात। पीएम ने जंतर मंतर विवाद पर कहा, गालियां किसी समस्या का समाधान नहीं होती हैं। वीडियो संदेश में बोले पीएम, बच्चों को अदालतों के चक्कर नहीं, अपनापन और सही मार्गदर्शन मिलना चाहिए। पीएम ने अपने वीडियो संदेश में कहा, समाज का आक्रोश समझता हूं लेकिन सजा नहीं, सुधार पर जोर देना होगा। पीएम मोदी ने इंस्टा पर दी वीडियो संदेश में युवाओं से सुधार की बात की, बोले गलतियों से सीखकर देश को आगे मिलकर बढ़ाना है। आज पीएम का आंध्र प्रदेश और कर्नाटक द्वारा कई कार्यक्रम में

शामिल होंगे, साथ ही कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। आंध्र प्रदेश का नया अल्लूरी एयरपोर्ट बनेगा दक्षिण का नया इकोनॉमिक पावर हाउस। भोगापुरम में अल्लूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट का पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। पीपीपी मॉडल के तहत 5,640 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार किया गया यह ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा। पीएम मोदी ने कहा इस एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी, व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। पीएम मोदी ने ब्रिटेन के पीएम एंडी बर्नहैम से फोन पर बात की। एंडी बर्नहैम को यूनाइटेड किंगडम का प्रधानमंत्री पद संभालने पर बधाई दी। कारोबार रिश्ते मजबूत करने पर जोर दिया। मोदी कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर लगी मोहर। सरकार ने 4.5 लाख करोड़ से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी दी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना को अगले 5 साल के लिए बढ़ाया गया। किसान की आय को स्थिर समर्थन देना और ग्रामीण मांग को मजबूत बनाए रखना उद्देश्य। सरकार ने पीएम सूर्य सरोवर योजना को दी मंजूरी। सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए किया गया जाएगा जलाशयों का इस्तेमाल। देशों में स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को गति देना मकसद। समुद्र मंथन प्रोग्राम को भी कैबिनेट ने दी हरी झंडी। इसके तहत देश में तेल और गैस की खोज और उत्पादन पर जोर। 84,000 करोड़ का बजट मंजूर। खेलो इंडिया योजना के विस्तार को भी मिली मंजूरी। अगले 5 सालों के लिए 29,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा 36,443 करोड़ की नई खेलो इंडिया योजना से तैयार होंगे विश्व स्तरीय खिलाड़ी। आज पुणे में प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 से सम्मानित हो गया एनएसए अजीत डोभाल। देश की सुरक्षा आतंकवाद विरोधी अभियानों के उनके असाधारण योगदान के लिए सम्मान। 2020 दिल्ली दंगे मामले में सजा का ऐलान। आईबी अफसर अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आपके पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत 5 को उम्र कैद। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने अंकित शर्मा हत्याकांड में ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा के फैसले का स्वागत किया। केजरीवाल से जवाब मांगा। कैबिनेट मंत्री प्रवीण शर्मा ने पोस्ट में कहा ताहिर समेत अन्य दोषियों को उम्र कैद होना, अंकित शर्मा को इंसाफ। सजा के बाद ताहिर हुसैन का पहला बयान, कहा हाईकोर्ट से मिलेगा इंसाफ, देर है पर अंधेर नहीं। कर्नाटक कैबिनेट विस्तार पर कांग्रेस में मंथन तेज। खड़गे की आवास पर हुई बैठक में राहुल गांधी समेत कई बड़े नेता शामिल। 16-18 नामों पर चर्चा। भारत पाक तनाव पर ट्रंप का फिर आया बयान, बोले टैरिफ के दबाव से रोका युद्ध। भारत ने कहा सीधी सैन्य बातचीत से हुआ सीज फायर। पीओजीके में पाक सेना की कार्रवाई पर भारत सख्त, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर हिंसा के आरोपों की अंतर्राष्ट्रीय जांच और जवाबदेही की मांग। पीओजीके हिंसा पर भारत ने उठाई आवाज, 40 से ज्यादा मौत के दावे के बीच पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराने की मांग। इंडिगो का बड़ा फैसला, व्हाइट बॉडी विमान सेवा पर रोक, बढ़ती लागत, ईंधन कीमतों और वैश्विक हालात के चलते 25 अक्टूबर से ऑपरेशन बंद। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मुद्दे पर संसद में विपक्षी प्रदर्शन पर बरसे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, बोले बाबरी मस्जिद बनाने के लिए जुटाए चंदे का हिसाब दें। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में लागू किया गया नया ड्रेस कोड। अब मंदिर में प्रवेश से पहले पीली चौबंदी और सफेद धोती धारण करेंगे पुजारी। राम मंदिर में कैमरों की निगरानी में होगी दान पात्र के चढ़ावे की रकम निकालने और गिनती वाली जगह तक पहुंचाने की प्रक्रिया। कर्मचारियों की हर गतिविधि पर नजर होगी। 2 सितंबर को होगी मंदिर ट्रस्ट की अगली बैठक। सचिव, सीईओ और प्रवक्ता की नियुक्ति पर लग सकती है मोहर। यूपी चुनाव को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान, आकाश आनंद पर बोलते हुए कहा उम्मीदवार मैं ही तय करूंगी, अफवाहों से दूर रहें। आगरा में सावन के दौरान कांवड़ यात्रा रूट पर शराब मीट मछली की दुकानें बंद करने के लिए प्रदर्शन। राष्ट्रीय हिंदू परिषद ने डीएम को ज्ञापन सौंपा। गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा की सभी तैयारियां पूरी। पूरे जनपद को 11 जोन और 24 सेक्टर में विभाजित कर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई। देवघर में चल रहे चावड़ी मेले की भव्य रौनक। बाबा बैद्यनाथ के मंदिर में की गई शानदार लाइटिंग। सहारनपुर में कांवड़ यात्रा की हाईटेक सुरक्षा, 3,000 अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरों से निगरानी होगी। पुलिस ने कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया। सरकार के आयुष मिशन को मिलेगी नई मजबूती। बर्नेट होम्योपैथी का राष्ट्रीय कंक्लेव। होम्योपैथी के नए रिसर्च पर विशेष मंथन। हरिद्वार में गंगा नदी के तेज बहाव में बहे 4 कांवड़ियों के डूबने से मौत। एसडीआरएफ ने सभी के शव बरामद किए। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकी हमला, 2 गैर कश्मीरी मजदूरों को आतंकियों ने गोली मारी। धनबाद के एक स्कूल में मिड डे मील तैयार करने के दौरान गैस सिलेंडर में लगी आग, ग्रामीणों की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। मुजफ्फरनगर में कोकरी गोदाम में लगी भीषण आग, प्लास्टिक और कागज के सामान तेजी से फैली आग, कांवड़ मात्रा पर मची अफरा तफरी। यूपीएससीएफ ने एसएससी परीक्षा में हाईटेक नकल का मास्टरमाइंड अलवर से किया गिरफ्तार। टीएफटी स्क्रीन से बाहर बैठा सॉल्वर देता था पेपर, आरोपी के पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बरामद। कौशाम्बी में घर पर हनुमान चालीसा बजाने पर विवाद, कोचिंग संचालक पर घर में घुसकर मारपीट का आरोप, 4 पर मुकदमा दर्ज।
सुपौल में भारत नेपाल सीमा पर सीमा सुरक्षा बल और बिहार पुलिस का बड़ा एक्शन, ड्रग तस्करी गैंग के दो आरोपी गिरफ्तार हुए, 837 किलो गांजा बरामद। अलवर में कार सवार दंपति की चोरी करते कैमरे में तस्वीरें कैद हो गई, पुलिस चौकी के पास दुकान से चुराए चीनी मिट्टी के बर्तन। गुजरात के नवसारी में झुके बिजली के तार की चपेट में आए मजदूरों से भरा टेम्पो, 3 की मौत, 3 गंभीर। मुंबई में रंगदारी गैंग पर क्राइम ब्रांच का शिकंजा, ठेकेदार से 25 लाख की रंगदारी लेते जुल्फिकार गैंग के सरगना समेत 12 गिरफ्तार। टेहरी गढ़वाल में गंगोत्री नेशनल हाईवे पर दो कारों की आमने सामने भीषण टक्कर, यात्री सुरक्षित है। मंडी में 15 क्विंटल बोली नाले में फेंकने का वीडियो वायरल, मामले के संज्ञान में आते ही 5 घंटे बाद प्रशासन ने खोली सड़क, 5 दिन से मार्ग बंद था। इंदौर में बाणगंगा में प्रॉपर्टी कारोबारी की संदिग्ध मौत, महिला से हो रही है पूछताछ, घटनास्थल का रिक्रिएशन होगा। चंदौली में मिड डे मील में मरा हुआ कीड़ा मिलने से मचा हड़कंप, बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जांच के आदेश दिए। बागपत में निर्माणाधीन मकान की छत गिरी, मलबे में दबने से 2 लोगों की मौत हो गई। इंदौर में शराब दुकान पर पुलिस सिपाही ने उत्पात मचाया, मुफ्त दारू की बोतल नहीं दी तो पिस्तल दिखाकर धमकाया, वीडियो वायरल होते ही सस्पेंड किया गया। झांसी में ओवरब्रिज पर बाइक और स्कूटी की आमने सामने से भिड़ंत, 2 की मौत। फरीदाबाद में सीवर लाइन काम के दौरान बड़ा हादसा, करंट लगने से 2 मजदूरों की मौत। महाराष्ट्र के नंदुरबार में बड़ा हादसा टला, 3500 फीट गहरी घाटी के ऊपर जिप लाइन में टूरिस्ट फंसा। गुजरात के गिर सोमनाथ में खौफनाक नजारा, महिला की चारपाई के नीचे रात भर छुपा रहा मगरमच्छ। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने रचा इतिहास, जूडो में अस्मिता डे ने वुमेन्स 48 किलोग्राम वेट कैटेगरी के फाइनल में कनाडा की खिलाड़ी को दी मात, गोल्ड जीता। भारतीय जूडो खिलाड़ी हर्ष सिंह ने भी ग्लासगो में लहराया तिरंगा, पुरुषों के 60 किलोग्राम इवेंट में जीता गोल्ड मेडल। लवप्रीत सिंह ने वेट लिफ्टिंग में भारत को दिलाया 10वां सिल्वर मेडल, पुरुषों के 110 किलो कैटेगरी में 388 किलोग्राम वजन उठाया। डिस्कस थ्रो में सीमा ने भारत को दिलाया ब्रॉन्ज मेडल, 58.5 मीटर थ्रो किया मेडल जीता। कॉमनवेल्थ गेम्स में नीरज चोपड़ा का भी जलवा दिखा, सीजन बेस्ट थ्रो के साथ जीता सिल्वर मेडल, यशवीर सिंह ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज पर कब्जा किया। 11 अगस्त को मिर्जापुर द मूवी का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हो गया, एक बार फिर गुड्डू पंडित कालीन भैया दिखेंगे। छावा के बाद महाअवतार की तैयारी में जुटे एक्टर विक्की कौशल, फिल्म में भगवान परशुराम का किरदार निभाने के लिए 25 किलो से ज्यादा वजन बढ़ाया। हॉलीवुड फिल्म स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ने ओपनिंग डे में भारत में बम्पर कमाई की, 50 करोड़ का आंकड़ा पार। वेंटी अटलूरी ने लकी भास्कर 2 का ऐलान किया, दुलकर सलमान और मीनाक्षी चौधरी स्टारर लकी भास्कर 2024 में आई थी। हैरी पॉटर फैंस के लिए गुड न्यूज, 25 साल बाद फिर रिलीज होगी हैरी पॉटर का फर्स्ट पार्ट। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की कार्रवाई पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान, का आईसीसी का निशाना मैं नहीं हूं लेकिन हो भी सकता हूं। अमेरिका में वाटर सप्लाई सिस्टम पर हुए साइबर हमले पर ट्रंप का बयान, कहा मिनेसोटा के साइबर हमलों में ईरान का हाथ नहीं है। हॉर्मन स्ट्रेट में ईरान की सेना का बड़ा हमला, दो तेल टैंकरों को निशाना बनाया, 4 तेल टैंकर वापस लौटे, आईआरजीसी ने अमेरिका को चेतावनी दी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेंगे। रूस की दूसरी सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी ओडोन के पास यूक्रेन ड्रोन से हमला, 5 लोग घायल, ड्रोन गिरने से हड़कंप मचा। अमेरिकी डेलीगेशन ने ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग ते से मुलाकात की, दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा हुई।

और मौजूदा समय में दुनिया का सबसे शक्तिशाली फाइटर जेट समझा जाने वाला अमेरिकी F-35 कैलिफोर्निया में क्रैश हो गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमेरिकी मरीन कॉर्प्स का F-35B फाइटर जेट सैन डिएगो के मरीन कॉर्प्स एयर स्टेशन मिरामार में क्रैश हो गया। अमेरिकी अधिकारियों ने हादसे की पुष्टि करते हुए इसे क्लास ए दुर्घटना बताया, जो सबसे गंभीर दुर्घटनाओं की श्रेणी है। ये विमान मरीन एयरक्राफ्ट ग्रुप 11 की तीसरी एयरक्राफ्ट विंग का हिस्सा था और अत्यधिक आधुनिक तकनीक से लैस F-35 फाइटर जेट, जिसे दुनिया का जो बेस्ट फाइटर जेट होते हैं उनमें इसका नाम शुमार है, सबसे शक्तिशाली फाइटर जेट उसमें F-35 का नाम शुमार है। और कैलिफोर्निया में क्रैश हो गया अमेरिकी मरीन कॉर्प्स का F-35B फाइटर जेट। सैन डिएगो के मरीन कॉर्प्स एयर स्टेशन मिरामार में क्रैश हुआ है और पुष्टि करते हुए अमेरिका की जो अधिकारी अमेरिकी अधिकारी उन्होंने इसे क्लास ए दुर्घटना बताया। अब क्लास ए दुर्घटना समझिए, जो गंभीर दुर्घटनाएं होती हैं वो क्लास ए की श्रेणी में आती हैं। मरीन एयरक्राफ्ट ग्रुप 11 की तीसरी एयरक्राफ्ट विंग का हिस्सा था। अब क्यों हुआ, कैसे हुआ, अब इसकी जांच की जाएगी, लेकिन जिस जगह पर एक क्रैश हुआ वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और उसके आप पास पर देखेंगे तो इमरजेंसी सर्विसेज तुरंत पहुंचती हैं और जब क्रैश हुआ उस वक्त की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और ये देखिए, काले धुएं का गुबार आसमान में बहुत दूर तक देखा जा सकता है। ये वही जगह है, वही साइट लोकेशन जहां पर F-35 क्रैश हुआ। अब जो आप पहली तस्वीर देख रहे हैं, क्रैश होने के बाद जब रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंची, इमरजेंसी सर्विसेज वहां पर पहुंची, तो उसके बाद उस आग को बुझाया गया, तो वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लेकिन जैसे ही क्रैश हुआ था उस वक्त देखिए आग भी दिखाई दे रही है, काला धुआं भी दिखाई दे रहा है, दूर से ये वीडियो बनाया गया है। F-35 फाइटर जेट, F-35B बताया जा रहा फाइटर जेट जो क्रैश हो गया है। कैलिफोर्निया में क्रैश हुआ है ये, और अब हालांकि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी कि क्या वजह रही। रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।

0: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry. TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
2: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
3: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद, लायन कश्मीर हनी।
2: असली शहद, असली स्वाद।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं?
4: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
5: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
6: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की, तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा, सफलता का शंखनाद।

0: presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिस कहानी के बहुत अच्छे परिणाम हैं और बहुत दुखद परिणाम हैं। भारत एक राजमहल है, समृद्ध है, सोने की चिड़िया है। गहरी बात है वो ये है कि इस राजमहल के चारों तरफ झोपड़ पट्टियां हैं, झुग्गियां हैं, चुनौती वाले क्षेत्र हैं। भारत आए अंग्रेज, यहाँ के लोगों को देखा उन्होंने, जब यहाँ के ग्रंथों को ट्रांसलेट करना शुरू किया, पढ़ा उन्होंने कि ब्राह्मण का जन्म मुंह से हुआ है। ये डिपार्टमेंट बनाया ही गया था शोषण के लिए। कौन सा? पुलिस। किसने बनाया था? कॉर्नवालिस ने। और पुलिस डिपार्टमेंट की खास बात यह है कि जब उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट भारत में बनाया, तब वो डिपार्टमेंट ब्रिटेन में नहीं था। जुडिशरी, मॉडर्न जुडिशरी उन्होंने अपने फायदे के लिए बनाया। अंग्रेजी कानून, अंग्रेजी जज। तुम कल्पना कर सकते हो, आधुनिक काल से पहले LGBT सड़क पर आकर प्रदर्शन करें, इनको तोप में बांध के उड़ा दिया होता।
2: तो क्या सिर्फ अब हिस्ट्री सिर्फ जो बाहर से लोग आए थे यहाँ पे शासन करने के लिए, उनको विलन के रूप में दिखा रहे हैं? या फिर
1: जो भी सरकार सत्ता में आती है वो शिक्षा का इस्तेमाल करती है अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने। वंदे मातरम पे बहस हो रही है, हर दिन मंदिर मस्जिद पे बहस हो रही है, मुसलमान पे बहस। ये संसद बनी किस लिए? औरंगजेब जो था भैया, डेली 200 किलो जनेऊ तोलता था। कितना? 200 किलो भी, मतलब डेली वो कम से कम 10,000 ब्राह्मणों को मारता था, हिंदुओं। मैं देखता हूँ मुसलमानों को और हिंदुओं को, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ। पहले मैं सोचता था पुलिस वाले यहाँ लगा के पॉइंट ब्लैंक से क्यों मारते, क्योंकि यहाँ ताला लगा हुआ है, तो इसीलिए मारते कि यहाँ मारे तो अगले जन्म में खुला हुआ रहेगा।
3: आपको लगता है कि आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद देश फिर बट सकता है?
1: इस बात को मैं रिपीटेडली कह चुका हूँ, एक विस्फोट होगा बेटा।
4: लेकिन आपके पढ़ाने के तरीके मुझे एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट लगता है कि आप जनता को ही बोल देते हैं कि जनता बड़ी बेवकूफ़ है, और फिर आप कहते हैं कि हमारे देश का युवा पढ़ना नहीं चाहता है।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

जंतर मंतर प्रदर्शन पर पीएम मोदी का छात्रों के नाम वीडियो संदेश का, मुझे मेरी माँ को गाली दी गई, गुमराह बच्चों को करना चाहता हूँ माफ, मिलकर बनाए सपनों का भारत। चढ़ावा चोरी पर पप्पू यादव के अजीबोगरीब प्रदर्शन पर सियासी जंग, सरकार बोली संसद नाटक करने की जगह नहीं, अखिलेश ने पोस्ट में पूछा सच बुरा लगा क्या, साधु संतों ने खुला मोर्चा। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में टारगेट किलिंग, दो गैर कश्मीरी मजदूरों को आतंकियों ने मारी गोली, दोनों की हुई मौत, इलाके में सर्च ऑपरेशन हुआ तेज। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में 200 रुपए से ज्यादा की कटौती, दिल्ली से कोलकाता तक घटी कीमतें, दिल्ली में 2728 रुपए का मिलेगा 19 किलो का सिलेंडर। और कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का दमदार प्रदर्शन, जूडो में डबल गोल्ड और सिल्वर, नीरज चोपड़ा ने भी जेवलिन थ्रो में जीता सिल्वर, 5 गोल्ड समेत कुल 23 पदक, अब बॉक्सिंग और एथलेटिक्स में गोल्ड की उम्मीद।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ शुभांशु दीक्षित। सुबह के 10 बज गए हैं और सुबह 10 बजे के बुलेटिन में बात चार बड़ी खबरों की करेंगे। पहली खबर दिल्ली में छात्रों के विरोध प्रदर्शन से जुड़ी हुई होगी, जिसे लेकर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया वीडियो जारी किया। अब इस वीडियो में पीएम मोदी ने जेन ज़ी को संबोधित करते हुए कहा कि बचपन में गलतियां होती हैं और उन्हें माफ किया जाना चाहिए। अपने वीडियो संदेश में पीएम मोदी ने बच्चों की जो भाषा है उस पर चिंता जताई। इसके साथ हम बात करेंगे चढ़ावा चोरी पर, जो आप यहां देख रहे हैं। सियासत हुई, कल क्या तस्वीरें हैं वो आपने देखा। संसद में सांसद पप्पू यादव के विरोध हुआ और उनके विरोध को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। पप्पू यादव के विरोध के बहाने बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर हमलावर हो गई। बात करेंगे दिल्ली दंगा मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को मिली उम्र कैद की सजा की, अब इसे लेकर सियासी तकरार जारी है। इसके साथ बात जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले की करेंगे, जिसमें दो गैर कश्मीरी मजदूरों की मौत हो गई है, टारगेट किलिंग की गई है। तो सबसे पहले बात पीएम मोदी के नए वीडियो संदेश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार देर रात एक बार फिर से जेन ज़ी को बड़ा मैसेज दिया। रात तकरीबन 11 बजे के बाद पीएम मोदी इंस्टाग्राम पर लाइव आए, जेन ज़ी को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि मैं बच्चों को माफ करना चाहता हूं। छात्र आंदोलन के बीच ये पीएम मोदी का पांचवा वीडियो संदेश है, जिसमें उन्होंने युवाओं से सही दिशा पर बढ़ते हुए सपनों के भारत के निर्माण की अपील की। और वो कह रहे हैं ये बच्चे भी हमारे हैं, उन्हें राह दिखाना हमारा ही काम है और इसीलिए मैं इन बच्चों को माफ करता हूं। लेकिन जो भाषा, खासतौर पर बेटियों की जो भाषा थी, ऐसे कैसे बोल सकती हैं? पीएम मोदी ने इसको लेकर बड़ा अचंभा जताया कि बेटियों की भाषा कैसे हो सकती है। एक समृद्ध भारत, नए भारत को मिलकर बनाने की बात कही है, जिसमें युवा भी हैं, अनुभव भी हैं, इन सबको मिलकर भारत को आगे बढ़ाना है। प्रदर्शन करने वाले युवाओं को पीएम मोदी ने संदेश दिया और खासतौर पर यह उन युवाओं के लिए संदेश था जिन्होंने अपशब्दों की सीमा को पार कर दिया।
1: हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था, लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती है, लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं,
0: इनको वापस ट्रैक पर लाना हम लोगों का काम है, एक सही राह दिखाना हम लोगों का काम है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ था, अब शब्दों की पराकाष्ठा कुछ युवाओं की तरफ से पार कर दी गई थी, अब उसको लेकर पीएम मोदी की तरफ से ये संदेश है। क्या संदेश देने की कोशिश की है पीएम मोदी ने, एक रिपोर्ट आप देखिए।
2: नीट पेपर लीक पर छात्रों का प्रदर्शन, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और सियासत के बीच पीएम मोदी लगातार जेन ज़ी से संवाद कर रहे हैं। नए कानून के तहत लगातार शिक्षा व्यवस्था में सुधार का भरोसा दे रहे हैं और अब इस कड़ी में पीएम मोदी ने जेन ज़ी से संवाद में उस मुद्दे का जिक्र किया, जिसने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पूरे देश को शर्मसार कर दिया। शुक्रवार देर रात पीएम मोदी एक बार फिर इंस्टाग्राम पर लाइव आए, जंतर मंतर पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर बात की और युवाओं की भाषा पर चिंता जताई।
1: जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया।
2: पीएम मोदी ने नई पीढ़ी की ऐसी भाषा पर दुख जताया, इसे समाज के लिए चिंताजनक बताया, सुधार की अपील की और गाली देने वाले छात्रों को माफ करने की बात कही।
1: हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती है, लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं।
2: बीते 9 दिनों में छात्रों और पेपर लीक के मुद्दे पर पीएम का ये 5वां वीडियो संदेश है। एक बार फिर पीएम ने छात्रों से संयम, संवाद और सकारात्मक रास्ता अपनाने की अपील की।
1: मैं इन बच्चों को कहता हूँ, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है।
2: नीट पेपर लीक के बाद छात्रों को जबरदस्त गुस्सा था, जिसका असर जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन में साफ दिखा। पुलिस छात्रों में झड़प के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई, लेकिन इस प्रदर्शन के बीच सरकार ने एक्शन में तेजी की। नया बिल आया, कानून बना, पेपर लीक रोकने के खाके तैयार हुए। अब पीएम मोदी उन छात्रों को सही दिशा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने आंदोलन के दौरान भाषा की सीमा पार की। आज तक ब्यूरो।
0: हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, हिमांशु मिश्रा भी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ में राहुल गौतम भी जुड़े हुए हैं। हिमांशु, सोशल मीडिया पर 5वां इंटरेक्शन था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का युवाओं के साथ में, और अब जिस तरह से जो जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी छात्रों ने अब शब्दों की पराकाष्ठा को पार कर दिया होगा, पीएम नरेंद्र मोदी के संदेश से उनको भी लग रहा होगा कि बहुत गलत शब्दों का चयन उनकी तरफ से किया गया था, और उनको भी लज्जा आ रही होगी।
3: देखिए, बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरीके से पहले 4 वीडियो आए और अब 5वें वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, हिमांशु, उन बातों का जिक्र किया जो पोस्टर बैनर लेकर जिस तरीके की भाषा का प्रयोग जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए किया गया, जिसमें गाली गलौज भी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा ये बच्चे राह भटक गए हैं, आओ इन्हें गले लगाएं, इनकी जो गलती है उसे माफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देश भी आगे बढ़ रहा है, अब भी आगे बढ़िए, यही मेरी इच्छा है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये संदेश देना चाहते हैं, जो कुछ हुआ वो भावनावेश में हुआ है, अब आप अपनी जो भी सही चीजें हैं उस पर आगे आइए, सही रास्ते को चुनिए और आगे बढ़िए, पीछे मुड़कर मत देखिए। जो जिस तरीके की भद्दी भद्दी गालियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उनकी माता जी को दी गई है, उस पर उन्होंने कहा कि गलतियां बच्चों से हो गई हैं, इसको माफ करिए, गले लगा लेते हैं आके और आगे बढ़ना चाहिए, पीछे मुड़कर ना देखिए। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये इस चीज से थोड़े आहत जरूर हुए होंगे जब बच्चों की तरफ से इस तरीके की भाषा का प्रयोग किया गया, इन शब्दों का प्रयोग किया गया, लेकिन क्योंकि वो एक बड़े व्यक्तित्व के धनी भी है, उसी क्रम में देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन सभी बच्चों को माफ कर दिया और कहा आप गले मिलिए, ये गलतियां हो जाती हैं, आगे बढ़ जाइए, अब पीछे मुड़कर मत देखिए, लेकिन आप गुमराह हुए थे, अब जो है हमारा काम है आपको रास्ता दिखाना, आपकी गलतियों को गिनाना नहीं।
0: अच्छा हिमांशु, ये भी देखा जा रहा था कि जिन छात्रों में बहुत ज्यादा नाराजगी थी या फिर जो युवा वर्ग में ये बताया जा रहा था कि युवा वर्ग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुत ज्यादा नाराज है, लेकिन अब पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी जब लगातार युवाओं से बात कर रहे हैं, लाइव आ रहे हैं सोशल मीडिया पर, तो ये माना जाए कि आने वाले वक्त के लिए उन युवाओं को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है।
3: कोई दो राय नहीं है। आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5वें वीडियो का एक टाइमिंग देखिए, उन्होंने खुद से जो है हमारे सोर्सेस से हमको पता चला था, जो इस सप्ताह से पिछले सप्ताह कैबिनेट की बैठक में हुई थी उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी साफ किया था कि इंस्टाग्राम एक ऐसा सोशल मीडिया टूल है जिस पर यूथ जो है आज ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करता है, इसके साथ इंटरेक्शन करना चाहिए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 5 वीडियो जारी कर चुके, जो पहले 3 वीडियो थे उसमें 80 मिलियन व्यूज थे हिमांशु, यानी 800 मिलियन व्यूज थे और 80 करोड़ लोगों ने जो है उस उन 3 वीडियो को देखा। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चीज को बहुत भली बात ही जानते हैं कि युवाओं के साथ कैसे कनेक्ट किया जा सकता है, उनको कैसे जो है समझाया जा सकता है, उन्हीं की शब्दों में आप देखें पांचों वीडियो में बड़े अच्छे तरीके से जो है उन्होंने जो है बच्चों को हाई फ्रेंड्स करके बात की। और आप देखिए टाइमिंग उनकी जो लेट नाइट है, जो 9:30 बजे के बाद जो है इन वीडियोस को उन्होंने जारी किया, क्योंकि जेंजी जो है वो इस समय पर ही जो है वो इंस्टाग्राम को एक्टिव भी रहता है और कॉल भी ज्यादा करता है। तो इन सब चीजों का इम्पैक्ट कैसे हो सकता है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कम्युनिकेशन को जो है बहुत अच्छी तरीके से भली भांति जानते हैं। और इसीलिए लगातार जो है पांच वीडियो, पहले पांच वीडियो में सरकार क्या कर रही है, क्या कदम उठाएगी, और अब चार वीडियो में और पांचवें वीडियो में ये कहना कि जो कुछ हुआ उसको भूलकर आगे
0: अब जो है कहा जा रहा है कि बड़ा दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाया है, तो छात्रों का मन भी कुछ बदल रहा होगा जिन्होंने अब शब्दों की पराकाष्ठा को पार किया है। राहुल गौतम भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। राहुल, जेंजी पर फोकस है और ये साफ दिख रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी वो भी कोशिश कर रही है, कांग्रेस तो लगातार कोशिश कर रही है, राहुल गांधी भी लगातार जेंजी को लेकर ही बात कह रहे थे और कह रहे थे कि जेंजी अब इस सरकार से उनका मन भटक चुका है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से तो यह भी कहा जा रहा है कि विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है, कांग्रेस कैसे देखती है इसे?
4: देखिए, कल राहुल गांधी ने दरअसल एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने ये कहा था या एक तरीके से आरोप लगाया था कि जो सरकार है वो जेंजी को डरा रही है। दरअसल वो उनका ये कथन इस कॉन्टेक्स्ट में था कि कुछ मुकदमे दर्ज किए गए हैं कुछ लड़कियों के खिलाफ जिन्होंने अपशब्दों का इस्तेमाल किया था, और उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उनके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनको भी बंद किया जा रहा है। दरअसल कांग्रेस को कम से कम ये लगता है कि इस पूरे मामले पर सरकार बैकफुट पर है और वो लगातार दबाव की राजनीति कर रही है। आपको याद होगा कि राहुल गांधी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मीडिया बाइट्स दे रहे हैं, धरना हो, प्रदर्शन हो, तमाम चीजें जो नेता विपक्ष कर सकते हैं, साथ में पूरा विपक्ष को जोड़कर वो तमाम चीजें कर रहे हैं, और कोशिश यही है कि सरकार को कोई एस्केप रूट ना दिया जाए इस पूरे मामले के अंदर। उनको ऐसा लगता है, राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को, कि सरकार के पास अभी फिलहाल ऑफर करने के लिए बहुत कम चीजें हैं जेंजी को, यूथ को, और एक गुस्सा है उनके अंदर, तो जाहिर है वो उसको इनकैश करने की कोशिश भी कर रहे हैं और साथ साथ सरकार को भी बैकफुट पर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट के अंदर लगातार दबाव की राजनीति चलती रही। आने वाले दिनों में भी आप देखिएगा विपक्ष लगातार इन तमाम चीजों को लेकर आगे बढ़ेगा
0: और उसके सेंटर में जेंजी ही रहेगा, ये बात भी तय है, और वो भी कब तक, 27 तक 29 तक, अब तो जेंजी की ही बात होगी। आप दोनों हमारे साथ बने रहे, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी का वो बयान एक बार फिर से आपको सुनवा देते, जो उन्होंने एक संदेश दिया जेंजी के नाम, छात्रों के नाम, प्रदर्शनकारी छात्रों के नाम सोशल मीडिया पर, सुनिए एक बार।
1: हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई, न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं, लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं।
0: और देखिए, एक दूसरे पर आरोप भी लगाए जा रहे हैं, आमना सामना भी किया जा रहा है, और जेंजी को लेकर एक दूसरे को कटघरे में भी खड़ा किया जा रहा है। देखिए,
5: प्रधानमंत्री जी का एक वीडियो आया जिसमें फिर से वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि उनको गालियां दी गई, मां की गालियां दी गई। बिल्कुल नहीं देना चाहिए किसी की भी मां की गाली देना, इससे बड़ा अपराध कोई नहीं हो सकता, वाकई नहीं देना चाहिए। इसके साथ कहना चाहता हूं, हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, एक दिन मेरा मोबाइल अपने पास रखिए आप, एक दिन। प्रधानमंत्री जी, सुबह से लेकर शाम तक मुझे मां की गालियों के कई फोन आपके समर्थक करते हैं। कोई कहता है इसको समझा लो, पेट्रोल से जलाकर इसको मार देंगे। कोई मां की गाली देता है, कोई बहन की गाली देता है। एक दिन मेरा फोन रखिए ना, निवेदन कर रहा हूं आपसे, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, शर्म आएगी आपको। कैसा समाज आपने बनाया प्रधानमंत्री जी, पूरे देश की मानसिकता को आपने दूषित कर दिया है।
6: देखिए प्रधानमंत्री जी का हृदय कितना बड़ा है, कल के उनके वीडियो संदेश में फिर से स्पष्ट हो गया। प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ बच्चों ने जंतर मंतर से बहुत ही गलत भाषा का प्रयोग किया, अभद्र भाषा का प्रयोग किया, गालियां थी प्रधानमंत्री जी को, मां तक की गालियां थी। लेकिन कहते हैं प्रधानमंत्री जी की यही बचपना होता है जब आप कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, और कोई दूसरा अभी शासक होता या प्रधानमंत्री होता तो कड़ी कार्रवाई कराता। भाई आपको याद है छात्र विद्यार्थियों के आंदोलन जब चल रहा था 74 में, तो 75 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी। लेकिन देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी का बड़ा हृदय और बच्चों के प्रति प्यार कि उन्होंने सबको माफ करते हुए कहा कि आइए बच्चों देश के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दें, देश के लिए विकास में अपना सहयोग दें और देश को और मजबूत बनाए। गर्व है मुझे अपने प्रधानमंत्री पर।
0: पीएम मोदी ने छात्र आंदोलन के दौरान युवाओं की भाषा पर चिंता जताई, तो एक चिंता उस हिंसा को लेकर भी है जिसमें प्रदर्शन के बीच पुलिस वालों को निशाना बनाया गया, जिनकी बात बहुत कम लोगों ने की। एक दिन पहले दिल्ली पुलिस के परिजनों ने वो दर्द साझा किया जिससे साफ है कि कैसे आंदोलन की आड़ में पुलिस वालों को टारगेट किया गया।
7: पथराव हो रहा है भाई,
8: बीस जुलाई का वो वाकया जब दिल्ली की सड़कों पर तूफान मचा था। देश की संसद के सामने प्रदर्शनकारियों की भीड़ खड़ी थी, खतरा था संसद की सुरक्षा पर, आशंका थी हजारों प्रदर्शनकारियों के संसद में घुस जाने की। संसदीय इतिहास में पहली बार संसद पर ऐसा खतरा मंडराया था। जोखिम की उस घड़ी में दिल्ली पुलिस का प्रदर्शनकारियों से आमना सामना होता है, सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के क्रम में प्रदर्शनकारियों पर एक्शन होता है तो जवाब दूसरी तरफ से भी होता है। छात्र घायल होते हैं तो खून पुलिस कर्मियों का भी बहता है, लेकिन कहानी सबके जहन में दर्ज होती है और दूसरी कहानी अनकही रह जाती है। अनकहा रह जाता है एक पत्नी का दर्द।
9: जब तक भी घर नहीं आए तो मेरी प्रतिक्रिया बहुत ही ज्यादा, मेरे लिए बहुत पेनफुल थी।
8: उनके अनदेखा रह जाता है एक बेटे का जख्म।
10: उनके हेड पे लाइक स्टिचेस लग रहे थे 4, उसको देख के आई वाज लाइक रियली फ्रस्ट्रेटेड एंड मैं बहुत डरा हुआ था।
8: और अनजानी रह जाती है एक बिटिया की पीड़ा।
11: और उनकी यूनिफॉर्म पूरी खून से लाल थी, उन्हें ऐसे देख के हमें, हमारे लिए बहुत पेनफुल था।
9: कोई पत्थर का टुकड़ा हेलमेट टूटने के बाद उनके सर पर लगता तो शायद वो आज इस दुनिया में नहीं रहते।
8: दिल्ली पुलिस के ये परिजन सवाल पूछ रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस को विलेन क्यों बनाया जा रहा है, संसद में दिल्ली पुलिस पर शब्द बाण क्यों चल रहे हैं, कानून व्यवस्था बनाए रखना क्या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं। इन परिजनों ने जो कहानियां सुनाई वो भी कम दिल दहलाने वाली नहीं है। एसीपी के बेटे लक्ष्य कह रहे हैं कि वो भी एक स्टूडेंट हैं और उनके पिता कभी छात्रों के खिलाफ नहीं रहे, लेकिन उंगलियां उठी तो सिर्फ दिल्ली पुलिस की तरफ, आखिर क्यों। और दिल्ली पुलिस में एएसआई की बेटियां गुंजन पूछ रही हैं कि संसद में पुलिस वालों को क्रिमिनल क्यों कहा जा रहा है।
11: जब मैंने सोशल मीडिया खोल के देखा तो सोशल मीडिया पे मेरे ही पापा को क्रिमिनल बता रहे थे, और उसके अगले दिन ही जब मुझे पता चला कि जिन लोगों ने मेरे फादर पे अटैक किया था वो लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं अपना क्राइम वर्कशॉप करने।
8: और फिर सीमा का ये सवाल भी सुना जाना चाहिए।
9: 20 तारीख के बाद से आज तक यही नैरेटिव चलाया जा रहा है कि जो छात्र थे, जो छात्रों का प्रोटेस्ट था उसको कि पुलिस के द्वारा बर्बरता से छात्रों को पीटा गया, लेकिन ऐसा नहीं है, ये अलग एक प्रोटेस्ट का एक हिस्सा दिखाया जा रहा है।
8: दिल्ली पुलिस के इन परिजनों की अपनी आप बीती है, अपनी कहानी है और अपने सवाल है, जिन्हें भी समान शिद्दत और संजीदगी से सुना जाना चाहिए, यही इनकी अपील है। आज तक ब्यूरो।
0: पीएम नरेंद्र मोदी के आंध्र प्रदेश और कर्नाटक दौरे की बात करते हैं। पीएम मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के दौरे पर आएंगे और इस दौरान पीएम इंफ्रास्ट्रक्चर, सेमीकंडक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी और रोड कनेक्टिविटी से जुड़े करीब 18,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे। सुबह करीब 11 बजे आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के भोगपुरम स्थित अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के यात्री टर्मिनल भवन का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद वो हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे और भोगपुरम में करीब 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। आंध्र प्रदेश के बाद पीएम मोदी कर्नाटक जाएंगे, जहां वो मैसूर के श्री रामकृष्ण आश्रम में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। बात जम्मू कश्मीर की करते हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम से आई एक बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर के कुलगाम के केल्लम इलाके में कल शाम आतंकियों ने 2 गैर कश्मीरी मजदूरों को गोली मार दी। आतंकी हमले में एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। दोनों ही मजदूर छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। इस हमले के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। पहले आतंकियों की तरफ से इनके बारे में पूछा जाता है और जब यह पता चलता है कि ये कश्मीर के नहीं है, बाहर के हैं, तो फिर गोलियां मार दी जाती हैं। एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो जाती है, दूसरा घायल हो जाता है और उसके बाद वो अस्पताल में दम तोड़ देता है। मीर फरीद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मीर, सर्च ऑपरेशन अभी तक कहां तक पहुंचा है और क्या कुछ अभी तक जानकारी आ पाई है इस पूरे मामले से जुड़ी?
12: जी, कुलगाम में ही हैं हम, ग्राउंड जीरो केलम ये इलाका है। और जैसे आपने कहा, कल तकरीबन शाम के 8:30 बजे गोलियां सुनी स्थानीय लोगों ने, कम से कम 10 से 12 गनशॉट्स। और जब वो बाहर देखने आए क्या हुआ, तो 2 मजदूर जो कि एक ईंटों का जो कारखाना होता है वहां काम करते थे इसी केलम इलाके में, वो खून में लथपथ पाए गए और दोनों को अस्पताल ले जाने की कोशिश की। पुलिस और बाकी सुरक्षा एजेंसीज मौके पर पहुंची, एक की मौके पे ही डेथ हो गई थी और दूसरा जो है जीएमसी अनंतनाग और फिर श्रीनगर उसको रेफर किया गया। सीने पे गोलियां उनके लगी थी, भूपेंद्र उनका नाम था। और अभी कुछ देर पहले खबर आई कि वो भी जो है अस्पताल में चल बसे, क्योंकि काफी ज्यादा ब्लड लॉस था। और उसके बाद जो है 2 हो गया है जो संख्या है इसमें मारे जाने वाले जो नॉन लोकल मजदूर हैं। इस वक्त कुलगाम में हूं, थोड़ा आपको दिखा देंगे कि अभी जैसे आपने पूछा कि जो सुरक्षा एजेंसीज हैं अभी पूरा इलाका घेरे में है, जगह जगह सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जैसे आप देख सकते हैं सेना के जवान भी यहां तैनात हैं और अभी अंदरूनी इलाके जो हैं चप्पे चप्पे पे सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और खुफिया एजेंसीज के जो इनपुट हैं उसी मुताबिक सुरक्षा एजेंसीज अभी सर्च ऑपरेशन कर रही हैं। कम से कम 2 हथियारे थे, 2 ये जो है टीआरएफ से बताए जाते हैं। इससे पहले भी 3-4 साल पहले टीआरएफ ने ही ऐसी घटनाएं की थी दक्षिणी कश्मीर श्रीनगर में, जहां सॉफ्ट टारगेट्स को ऐसे हिट किया था। और अभी मैं आपको बता सकता हूं कि रेड अलर्ट पे हैं सुरक्षा एजेंसीज, क्योंकि ऐसी घटनाएं और हो सकती हैं। और जब तक ये हथियारे जो है खुले में है, ये प्लान कर रहे हैं, तब तक खतरा जो है टला नहीं है। कोई स्लीपर मॉड्यूल है वो एक्टिवेट हुआ है और खुफिया एजेंसीज के पास इनपुट्स थे कि जो उनके हैंडलर हैं पीओके में, वो लगातार इनपुट्स जो है इनको दे रहे थे।
0: मीर, बहुत ज्यादा जरूरी है इस मॉड्यूल को ध्वस्त किया जाए और जो बाहर से आकर कश्मीर में काम करते हैं उनको सुरक्षित एहसास कराया जाए, बहुत जरूरी है ये। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
14: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
15: दिस इज द साउंड ऑफ क्लेयर कुकिंग डिनर एट होम एंड दैट्स द साउंड ऑफ अ फ्रॉड अलर्ट फ्रॉम वेल्स फार्गो फ्लैगिंग अ चार्ज फॉर अ प्राइसी रेस्टोरेंट इन पेरिस। कंसीडरिंग क्लेयर इजंट इन पेरिस राइट नाउ, दैट सीम्ड ऑड टू द बैंक एंड टू क्लेयर। 2 taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
16: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
17: All sports, all the time, right here on TuneIn. Catch live sports talk, expert analysis, and nonstop discussion from your favorite stations, like ESPN Radio.
18: Not missed out on one player that the Yankees wanted.
17: Big 12 Radio.
19: Today is Big 12 Insiders game day. We're breaking
17: down. And talk sports.
20: I just can't see a turnaround in the way that we're going to perform and result.
17: And much more. Get your head in the game and never miss a minute of the action. Just search sports or ask your device to play your favorite sports talk station on TuneIn.
21: Sokudo,

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
3: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद, लायन कश्मीर हनी।
2: असली शहद, असली स्वाद।
4: जब बात हो फसलों के बेहतर पोषण की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का न्यूट्रिजन। न्यूट्रिजन संपूर्ण पोषण का वादा, फसल मिले ज्यादा ज्यादा और ज्यादा।
5: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
6: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील TMT से बना।
7: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
8: जहां खबर वहां न्यूज तक, ग्राउंड रिपोर्ट से लेकर एक्सक्लूसिव कवरेज तक, खबरों का सच तथ्यों के साथ, जनता के सवालों से लेकर सत्ता के जवाबों तक, देश दुनिया की हर बड़ी खबर सिर्फ न्यूज तक पर।
9: His two biggest blunders have defined Indian politics since he responded to the Shahbano judgment.
10: He didn't quite understand the interplay between judiciary, society, Muslims, personal law. Shahbano was a disastrous decision.
9: That made the Hindus very angry. Then he made other mistakes with the unlocking of the doors at Ayodhya, the Shilanyas, and that's how the BJP rolled.

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: Some mysteries lie beneath the ocean, others beyond the stars. Explore Earth's wildest places on Earth Day 365. Uncover nature's greatest mysteries and experience breathtaking IMAX theatre documentary films. Watch Earth Day 365 free now on the Roku channel, LG channels, Amazon Fire, and more.
1: I'm Pamela Anderson. Explore your world every day on Earth Day 365.
2: जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिस कहानी के बहुत अच्छे परिणाम है और बहुत दुखद परिणाम है। भारत एक राजमहल है, समृद्ध है, सोने की चिड़िया है। गहरी बात है वो ये है कि इस राजमहल के चारों तरफ झोपड़पट्टियां हैं, झुग्गियां हैं, चुनौती वाले क्षेत्र हैं। भारत आए अंग्रेज, यहाँ के लोगों को देखा उन्होंने, जब यहाँ के ग्रंथों को ट्रांसलेट करना शुरू किया, पढ़ा उन्होंने कि ब्राह्मण का जन्म मुंह से हुआ है। ये डिपार्टमेंट बनाया ही गया था शोषण के लिए। कौन सा? पुलिस। किसने बनाया था? कॉर्नवालिस ने। और पुलिस डिपार्टमेंट की खास बात यह है कि जब उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट भारत में बनाया, तब वो डिपार्टमेंट ब्रिटेन में नहीं था। जुडिशरी, मॉडर्न जुडिशरी उन्होंने अपने फायदे के लिए बनाया। अंग्रेजी कानून, अंग्रेजी जज। तुम कल्पना कर सकते हो, आधुनिक काल से पहले

जंतर मंतर प्रदर्शन पर पीएम मोदी का छात्रों के नाम वीडियो संदेश, कहा मुझे मेरी मां को गाली दी गई, गुमराह बच्चों को करना चाहता हूं माफ, मिलकर बनाएं सपनों का भारत। चढ़ावा चोरी पर पप्पू यादव के अजीबोगरीब प्रदर्शन पर सियासी जंग, सरकार बोली संसद नाटक करने की जगह नहीं। अखिलेश ने पोस्ट में पूछा सच बुरा लगा क्या, साधु संतों ने खोला मोर्चा। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में टारगेट किलिंग, दो गैर कश्मीरी मजदूरों को आतंकियों ने मारी गोली, दोनों की हुई मौत, इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में 200 रुपए से ज्यादा की कटौती, दिल्ली से कोलकाता तक घटी कीमतें, दिल्ली में 2728 रुपए का मिलेगा 19 किलो का सिलेंडर। और कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का दमदार प्रदर्शन, जूडो में डबल गोल्ड और सिल्वर, और नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में जीता सिल्वर, 5 गोल्ड समेत कुल 23 पदक, बॉक्सिंग और एथलेटिक्स में गोल्ड की उम्मीद।

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। बुलेटिन के इस हिस्से में हम बात करेंगे बारिश और बाढ़ की। इस समय देश के कई हिस्सों पर मॉनसून सक्रिय है, वो तो आप देख ही रहे हैं, समझ ही रहे हैं। कुछ राज्यों में भारी बारिश से फ्लैश फ्लड जैसे हालात हो गए हैं, कहीं पहाड़ टूट रहे हैं तो कहीं पर नदियां पुल के आर पार बहने लगी हैं। तस्वीरें देखिए, नवसारी, खेड़ा, भरूच, हालात बहुत खराब है। खेड़ा में तो कुछ जगहों पर 4 फीट से अधिक पानी भर गया है। अब बांदीपोरा देख लीजिए आप, हालात वहां पर और ज्यादा बेकार हो गए हैं। गुजरात के खेड़ा में गलियों में पानी भर गया, महाराष्ट्र का जालना हो चाहे मध्य प्रदेश का बुरहानपुर हो, छात्राएं फंस गई बीच में, स्कूल भी जाना जरूरी है लेकिन कैसे वो देखिए। गुजरात का भरूच हो, गुजरात का भावनगर, महाराष्ट्र का नांदेड़, सब जगह आपको सड़कों पर लबालब पानी दिखाई देगा, तेज बहाव दिखाई देगा, रेस्क्यू ऑपरेशन दिखाई देगा। ये 10 तस्वीरें हमने आपको दिखाई ताकि आप हालात समझ सके, क्योंकि सब जगह कुछ ऐसी ही तस्वीरें आ रही हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित गुजरात है, महाराष्ट्र है, जम्मू कश्मीर है, और इन राज्यों में पिछले 24 से 36 घंटे में झमाझम मूसलाधार बारिश हुई, जिससे जिंदगी की रफ्तार पर एकदम से ब्रेक लग गया है। प्रशासन और राहत बचाव की टीमें अलर्ट हैं, लोगों को हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, शासन दिन रात जुटा हुआ है।
1: गुजरात में फिर मूसलाधार बरसात, नवसारी, सूरत, भरूच, आणंद में मुसीबत।

0: नवसारी में पूर्णा नदी की लहरें डरा रही हैं, पानी सड़क के आर पार बह रहा है। खेड़ा की कॉलोनियां पानी में डूब गई हैं, घरों की दहलीज तक पानी भरा है। खेड़ा के नाडियाड में अस्पताल में पानी भरा, अस्पताल आने जाने के रास्ते पर 5 से 6 फीट तक जल भरा।
1: ये जो पूरा इलाका है वो यहाँ पर 5 से 6 फीट तक जो है वो जल भरा हुआ है।
0: महाराष्ट्र का जालना और नांदेड़ भी आसमानी आफत से पानी पानी हो गया। नांदेड़ में छोटे छोटे नाले नदियां उफान पर हैं, रिहायशी इलाकों तक पानी पहुँच गया।

जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई, कुछ जगहों पर फ्लैश फ्लड जैसे हालात हो गए। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में टूटे पहाड़, पानी की तेज धार के साथ घरों तक आया मलबा। कश्मीर से महाराष्ट्र, गुजरात तक बारिश का विस्फोट। ये तस्वीरें आपने देखी हो, आपको गुजरात लिए चलेंगे जहां एक बार फिर से भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। अभी कुछ दिन पहले ही साउथ गुजरात के बहुत से जिले प्रभावित हुए, कई शहरों में बाढ़ आ गई थी और एक बार फिर वही हालात है, वही तस्वीर है, वही सूरत है। सूरत तो पूछिए नहीं, सूरत, नवसारी, डांग, खेड़ा, भरूच जैसे जिलों में हाल बेहाल हो गया।

0: गुजरात में एक बार फिर से भारी बारिश के बाद कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं और फिर से दक्षिण गुजरात के ही जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। नवसारी और डांग जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण अंबिका और पूर्णा नदी उफान पर है। डांग के सुबीर तालुका में करीब 8 इंच बारिश दर्ज होने के बाद पूर्णा नदी समेत अन्य नदी नालों में बहुत ज्यादा पानी भर गया, तो पूर्णा नदी का जलस्तर बढ़ने से गोदड़िया पुल के ऊपर से पानी बहता दिखाई दे रहा है। यह हालात बहुत खतरनाक हैं। आसपास के इलाकों में बाढ़ की आशंका बढ़ गई। नवसारी में प्रशासन अलर्ट पर है क्योंकि पूर्णा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। नवसारी शहर में लगातार बारिश के कारण कई इलाकों में जल भराव की स्थिति बन गई। इधर भावनगर में भी हालात बिगड़ने लगे हैं। यहां जिले के पालीताना, जेसर, तलाजा, सीहोर, बगदाना, सोनगढ़, गोघा, अलंग और अन्य इलाकों में बारिश हुई। पालीताना में भारी बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया। सूरत शहर में भी शुक्रवार तड़के से ही मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। लगातार हो रही तेज बारिश के कारण शहर के कई निचले हिस्सों में जलभराव की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई। शहर के कई निचले इलाकों में सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया। गुजरात के खेड़ा जिले की सभी तहसीलों में भी शुक्रवार को सुबह से ही मूसलाधार बारिश जारी रही। नादियाद में भारी तबाही हुई। पूरा नादियाद शहर जलमग्न हो चुका है। सड़कें समंदर बन चुकी हैं और निचले इलाकों में जलभराव से इलाके टापू में तब्दील हो गए। सिर्फ 6 घंटे में ही 133 से 191 मिलीमीटर की बारिश दर्ज की गई।
1: जिस तरह से दो दिन पूरे गुजरात में हाई अलर्ट जारी किया गया है, हम अभी खेड़ा जिले के नड़ियाद में है। नड़ियाद में अब तक तकरीबन 7 इंच से ज्यादा जो है वो बारिश दर्ज की गई है, जिसके चलते जो निचले इलाके हैं वो प्रभावित हुए हैं। निचले इलाके में जिस तरह से जल भरा हुआ है, प्रशासन पहले से अलर्ट था, जिसके चलते पूरी व्यवस्था है जो की गई है, जिसके यहाँ पर जिस तरह से निचले इलाके में अस्पतालें आई हुई है, अस्पताल में आने जाने के लिए दर्दी जो है उनके लिए जो ट्रैक्टर ट्रॉली की जो है वो व्यवस्था की गई है, जिससे लोगों को आसानी रहे। साथ ही प्रशासन ने पहले से ही अपील कर दी थी कि लोग काम के अलावा बाहर न निकले। साथ ही जिस तरह से पूरे जो हालात है देख सकते हैं, निचले इलाके में जल भरा हुआ है।
0: चिंता इस बात की है कि मौसम विभाग ने अभी भी बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। प्रशासन कह रहा है कि जब तक कोई बेहद जरूरी काम ना हो घर से बाहर ना निकले। इधर भरूच में भी बारिश का रेड अलर्ट है। आसमान से जैसे आफत बरस रही है। शुक्रवार की सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है। निचले इलाके और मार्गों को बारिश के पानी ने जलमग्न कर दिया। भरूच, अंकलेश्वर, नेत्रंग, हासौट, जगड़िया, वालिया तहसील पानी पानी हो गई। जिले में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ एक्टिव है।
2: रेड अलर्ट के चलते सुबह से ही भारी बारिश के कारण आसमान से आफत रूपी बारिश ने पूरे जिले को पानी से लबालब कर दिया है। पिछले 10 घंटों में सबसे ज़्यादा नेत्रंग तहसील में 10.5 इंच बारिश बरस चुकी है, जिसके कारण मुख्य मार्ग और सभी जगह पे फिलहाल पानी ही पानी नजर आ रहा है। जनजीवन और यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है।
0: गुजरात के नर्मदा जिले में भी बुरा हाल है। यहाँ इतनी बारिश हुई कि करजन डैम से 50,000 क्यूसेक से भी ज्यादा पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से बाढ़ के हालात पैदा हो गए। भारी बारिश के कारण नर्मदा जिले के 28 गांवों को अलर्ट किया गया और 50 से ज्यादा लोग सुरक्षित स्थान पर लाए गए हैं। जिले के गरुड़ेश्वर तहसील में 5 इंच जितनी बारिश की वजह से गांवों को जोड़ने वाले कई रास्ते टूट चुके हैं। छोटा उदयपुर में अश्विन नदी में फंसे एक युवक को एनडीआरएफ टीम ने बचाया। युवक अपनी जान जोखिम में डालकर 4 घंटे तक 1.5 फुट की दीवार पर बैठा रहा था। पानी बढ़ता रहा लेकिन टीम ने आखिरकार युवक को बचा लिया।
3: हवामान विभाग की जो आगाही थी उसके अनुसार नर्मदा और छोटा दीपुर में मूसलाधार बारिश हुई। आप तस्वीरों में देख पा रहे ये जो करजन नदी है, करजन नदी उफान हुए है क्योंकि जो करजन डैम है वहां से 50,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। इसके कारण नदी का फ्लो काफी बढ़ चुका है। साथ में छोटा दीपुर जिले के अंदर जो अश्विनी नदी है वहां पे एक आदमी का रेस्क्यू किया गया था जहां पे वो पानी में फंस गया था। नर्मदा और छोटा दीपुर जिले में भारी बारिश के कारण गांवों के अंदर जो नदियां उफान पे है और खास तौर पे जो आदिवासी इलाके हैं उनको रेस्क्यू करके बाहर लाया जा रहा है।
0: आज तक ब्यूरो।
4: अब हम आपको गुजरात के महीसागर की तस्वीरें दिखाते हैं। भारी बारिश की वजह से शहर में सैलाब जैसी हालत दिख रही है, जहां नजर वहां सैलाब। जिले के कुल 8 तहसीलों में से 6 तहसीलों में भारी बारिश होने से निचले इलाकों में पानी भर गया, जैसा आप देख ही रहे हैं। समुद्र की लहरें दिखी आपने, बिल्कुल वैसा ही यहां पर महीसागर, जैसे नाम भी है सागर। लुनावड़ा शहर में भारी बारिश के नेशनल हाईवे पानी में डूब गया। यहां पर देखिए लोग अपनी गाड़ियों को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। गाड़ियां डूब चुकी हैं, हालात ऐसे हो गए हैं। मही सागर में से अगर आप मही हटा दें तो सागर रह जाता है और बिल्कुल अभी हालात ऐसे ही हो गया यहाँ की सड़कों का। और ये देखिए गाड़ी निकल रही है तो लहरें उठ रही हैं। तो जो हाल मही सागर का था वही हाल महाराष्ट्र के कई जिलों का भी है। महाराष्ट्र का एक हिस्सा ऐसा रहा है जहां बारिश कम हुई थी लेकिन अब इन जिलों में भी ठीक ठाक बारिश हो रही है। नांदेड़ हुआ, जलगांव हुआ, अकोला हुआ, अमरावती जैसे जिलों में अच्छी बारिश है। किसान भी बहुत खुश हो रहे हैं लेकिन बहुत सी जगहों पर अभी भी आप मानिए कि बाढ़ जैसे हालात हैं।

0: ये महाराष्ट्र के नांदेड़ की तस्वीर है जहां भारी बारिश हुई, नदियां उफान पर है। यहां किनवट तहसील के कांचली गांव में इस बीच एक बड़ी घटना हो गई। 32 साल का ग्राम पंचायत सेवक राजू रेड्डी डंडेलू बाढ़ के पानी में बह गया। पुलिस, राजस्व विभाग और स्थानीय ग्रामीणों ने कई घंटों तक संयुक्त रूप से रेस्क्यू अभियान चलाया और तब जाकर इस युवक का शव बरामद हुआ। बताया जा रहा है कि यह शख्स बाइक से जा रहा था, तभी बाढ़ का पानी पुल पर आ गया और राजू बह गया। नांदेड़ जिले में गुरुवार से ही बहुत बारिश हो रही है। सभी तहसीलों में एवरेज 35 से 40 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। ये भी नांदेड़ की तस्वीरें हैं। यहाँ 73 मंडलों में अतिवृष्टि हुई। सबसे ज्यादा बुरा किनवट और माहूर तहसील में हुआ है। शहर से गांव तक तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है, तो बाढ़ से कई गांव का संपर्क टूट गया है। लोगों के घरों में, गलियों में, कस्बों में पानी घुस गया है। कई जगह सड़कें धस गईं, कई जगह बड़े गड्ढे हो गए जहां लोगों की गाड़ियां फंस गईं। नांदेड़ शहर में अचानक सड़क धसने से एक कार गहरे गड्ढे में जा गिरी। कार चालक प्रोफेसर चंद्रशेखर येगड़े ने किसी तरह अपनी जान बचाई। प्रशासन भी अब अलर्ट मोड पर है और ये है जलगांव, जहां 50 से ज्यादा घंटे हो गए और लगातार बारिश हो रही है। इसकी वजह से हथनूर बांध के 36 गेट खोलने पड़े। डैम से एक साथ पानी छूटा तो आसपास के कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। इस डैम से 78,823 मीटर क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। ये डैम भूसावल तहसील में तापी नदी पर बना है। बारिश इतनी हो रही है कि डैम के 36 गेट खोलने पड़े। अब प्रशासन सतर्कता बरतने की अपील कर रहा है। उधर अकोला और अमरावती में भी पिछले 30 घंटों से लगातार मूसलाधार बारिश जारी है। नदियां उफान पर आ गईं, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए, कई गांव और घरों में पानी घुस गया। अमरावती के नांदगांव में मोखर नदी में अचानक बाढ़ आई, जिसमें 7 लोग फंस गए थे। जिला आपदा प्रबंधन की रेस्क्यू टीम ने करीब 30 मिनट के ऑपरेशन के बाद सुरक्षित बाहर निकाला। किसानों की हजारों हेक्टेयर में कपास, तुअर और सोयाबीन की फसलें पानी में डूब गईं। उधर अकोला के बालापुर में मन, महेश और भिकुंडी नदी उफान पर है। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और नदी से दूर रहने की अपील की है।
1: विदर्भ के पश्चिम इलाके में जो है, अमरावती डिवीजन में जो है, पिछले 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश के चलते जो है वो कई नदियां जो है उफान पर हुई है। कई नदियों का जलस्तर बढ़ा है। हम फिलहाल है अकोला के बालापुर तहसील के भीकुंड नदी पर, जहां आप देख सकते हो कि इसका जलस्तर जो है तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है।
0: आज तक ब्यूरो।
2: गुजरात देख लिया, महाराष्ट्र देख लिया, जम्मू कश्मीर आपके लिए चलते हैं। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा, शोपिया, अनंतनाग, बारिश से यहां पर भी तबाही है। सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है बांदीपोरा और शोपिया के लोगों को, जहां फ्लैश फ्लड से हालात बिगड़ गए। कहीं पर पहाड़ टूट रहे हैं तो कहीं पर कुछ ऐसे ही है, बरसाती नाले बस्तियों के बीच बहते चले जा रहे हैं।
3: जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बारिश से पहाड़ दरक रहे हैं। पानी के प्रहार से चट्टान टूट रही है और साथ ला रही है मुसीबत। पिछले 48 घंटे में जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में बारिश हुई और जब पानी पहाड़ों से नीचे उतरा तो अपने साथ कई बड़े बड़े बोल्डर पत्थर लेकर आया। ये बांदीपोरा है जहां भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हुआ और फिर कुछ जगहों पर फ्लैश फ्लड की घटना हुई। बांदीपोरा के केनूसा और सदरकोट इलाके में फ्लैश फ्लड की वजह से सड़कों पर सैलाब आ गया। बांदीपोरा में कई घर फ्लैश फ्लड की चपेट में आ गए। तेजी से पानी आया और सब कुछ अपने साथ बहा ले गया।
4: अरे पानी आ गया, भागो अरे भागो।
3: भारी बारिश की वजह से अमरनाथ की गुफा के पास भी फ्लैश फ्लड आ गया। बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा के आसपास के इलाकों में पहले से मौसम खराब था। ऊंचाई वाले इलाकों में हुई अचानक बारिश के बाद पानी की तेज धारा सीढ़ियों के साथ नीचे की तरफ बहने लगी, जिससे अफरा तफरी मच गई।
5: कश्मीर के साथ साथ जम्मू के अधिकतर पहाड़ी इलाकों में कल शाम से तेज बारिशें हो रही है। कश्मीर में जहां एक तरफ अमरनाथ यात्रा के आसपास भारी बारिश और नदियों की जलधारा बढ़ने के साथ आज की अमरनाथ यात्रा स्थगित कर दी गई है, उसी तरह दक्षिणी और उत्तरी कश्मीर में भी जो है कई नदी नाले उफान पर हैं। सोपोर और बांडीपोरा में भी कई जगहों पर तेज बारिश और क्लाउड बर्स्ट के कारण नदियों में जल स्तर बढ़ गया है।
3: शोपिया में कई जगह बादल फटने की घटनाएं हुई। मूसलाधार बारिश से शोपिया में कई गाँव में अचानक बाढ़ आ गई, जिसकी वजह से कई लोग अपने घरों में कैद हो गए। कड़ी मशक्कत के बाद एसडीआरएफ की टीमों ने लोगों को उनके घरों से बाहर निकाला और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए, चारों तरफ मलबा बिखरा है, पानी जिस ओर निकला सब कुछ बहा ले गया। अशरफ वानी के साथ मीर फरीद, श्रीनगर आज तक।
2: यहां पर तो चला बहुत छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। In association with
7: Bharat ki apni electric sawari.
8: Die hard music fan? Quello Concerts brings you thousands of full-length concert films and behind-the-scenes music documentaries. From today's icons to yesterday's legends, we have it all. Quello Concerts by Stingray. Now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.
9: Sokudo.

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: No ticket, no line, just showtime. Qwello Concerts is the destination for music lovers. With thousands of electrifying concerts and music documentaries. Try Qwello Concerts, that's Q-E-L-L-O, for free on Amazon Prime Video today.
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: रसोई के बजट पर महंगाई की एक और मार पड़ी है। खाने की थाली का स्वाद बढ़ाने वाला खाद्य तेल अब आम आदमी की जेब पर भारी पड़ने लगा है। त्योहारों का सीजन करीब आते ही सरसों, सोयाबीन और मूंगफली तेल के दामों में तेज उछाल देखने को मिल रहा है। घरों से लेकर होटल और स्ट्रीट फूड कारोबार तक हर जगह इस्तेमाल होने वाले इन तेल की कीमतों में बढ़ोतरी चिंता बढ़ा रही है। आंकड़ों के मुताबिक खाने के तेल की कीमतों में 10 से 15 रुपए प्रति किलो तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसकी वजह त्योहारों की बढ़ती मांग और बरसात के मौसम में सरसों की खपत बढ़ाना है। इसके साथ ही रुपए की कमजोरी से आयातित खाद्य तेल महंगे हो गए हैं, जबकि पाम और पामोलिन पर बढ़ी ड्यूटी का असर भी बाजार में दिख रहा है। बाजार के जानकारों के मुताबिक इस तेजी की सबसे बड़ी वजह तिलहन की कम आवक है। किसानों को पहले बेहतर भाव मिल चुके हैं, इसलिए वो कम कीमत पर बिक्री से बच रहे हैं। नतीजा ये हुआ कि मंडियों में सोयाबीन और सरसों की उपलब्धता घट गई है, जबकि मांग लगातार बनी हुई है। डेटा के मुताबिक सोयाबीन की रोजाना मांग करीब 2.5 से 3 लाख बोरी है, लेकिन मंडी में इसकी आवक घटकर करीब 10,000 बोरी रह गई है। किसानों को आकर्षित करने के लिए लातूर के बड़े प्लांट्स ने खरीद भाव बढ़ाकर 8,100 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। वहीं बिनौला तेल की कमी की वजह से मूंगफली तेल की मांग भी बढ़ गई है। डिमांड और सप्लाई के इस असंतुलन का असर थोक बाजारों में भी साफ दिखाई दे रहा है। बीते हफ्ते सरसों, सोयाबीन और मूंगफली तेल तिलहन के भाव में काफी तेजी दर्ज की गई है। कई उत्पादों में कीमतें एक ही हफ्ते में सैकड़ों रुपए तक बढ़ गई हैं, जिसमें सरसों दाना 8,075 से बढ़कर 8,100 रुपए प्रति क्विंटल, सरसों तेल का भाव 16,550 रुपए प्रति क्विंटल, सरसों कच्ची और पक्की घानी का 15 किलो टिन 2,705 से 2,855 रुपए और सोयाबीन दाना बढ़कर 7,550 से 7,600 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। अगर तिलहन की आवक में जल्द सुधार नहीं हुआ तो त्योहारी मांग इसी तरह बनी रही तो आने वाले दिनों में खाद्य तेल की कीमतों पर दबाव बना रह सकता है। इसका सीधा असर घर की रसोई पर पड़ेगा और त्योहारों के दौरान खाने पीने का खर्च और बढ़ सकता है। आज तक ब्यूरो।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

जंतर मंतर प्रदर्शन पर प्रधानमंत्री मोदी का छात्रों के नाम वीडियो संदेश, कहा मुझे मेरी माँ को गाली दी गई, गुमराह बच्चों को करना चाहता हूँ माफ, मिलकर बनाए सपनों का भारत। चढ़ावा चोरी पर पप्पू यादव का अजीब गरीब प्रदर्शन पर सियासी जंग, सरकार बोली संसद नाटक करने की जगह नहीं। अखिलेश ने पोस्ट में पूछा सच बुरा लगा क्या, साधु संतों ने खुला मोर्चा। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में टारगेट किलिंग, दो गैर कश्मीरी मजदूरों को आतंकियों ने मारी गोली, दोनों की मौत, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में 200 रुपए से ज्यादा की कटौती, दिल्ली से कोलकाता तक घटी कीमतें, दिल्ली में 2728 रुपए का मिलेगा 19 किलो का सिलेंडर। और कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का दमदार प्रदर्शन, जूडो में डबल गोल्ड और सिल्वर, तो नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में जीता सिल्वर मेडल, 5 गोल्ड समेत कुल 23 पदक, बॉक्सिंग और एथलेटिक्स में गोल्ड की उम्मीद।

0: पथन मथिट्टा में भारी बारिश का असर, जल स्तर बढ़ने से आसपास के इलाकों में बड़ी चिंता। रंडी टाउन में बाढ़ जैसे हालात, पंबा नदी का पानी बढ़ने से कई इलाकों में जलभराव हुए। केरल में भारी बारिश के अलर्ट, 8 जिलों में रेड अलर्ट जारी, कई इलाकों में मूसलाधार बारिश से हालात बिगड़ गए। केरल में दुग्गी में भारी बारिश के बाद कई जगह लैंडस्लाइड, पहाड़ी इलाकों में परेशानी बढ़ी। केरल के कोट्टायम में भारी बारिश का असर हुआ, कई इलाकों में पानी का ओवरफ्लो, जनजीवन प्रभावित हुआ। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से तबाही, फ्लैश फ्लड से कई वाहन बह गए। किश्तवाड़ में भारी बारिश और फ्लैश फ्लड का कहर, नेशनल हाईवे बंद किया गया, राहत बचाव पर प्रशासन की नजर। गुजरात के महीसागर बारिश का कहर, भारी बारिश के चलते पूरे इलाके में पानी भर गया। गुजरात के आणंद में रेड अलर्ट, बीच प्रशासन हाई अलर्ट पर, लोगों से बेवजह घर से बाहर ना निकलने की अपील की गई। सूरत में भारी बारिश के बीच मनीष फ्लोर मिल का शेड ढह गया, हादसे का वीडियो सामने आया। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा गुरेज रोड पर सादरकूट बाला में बादल फटने से भूस्खलन, कैमरे में कैद हुआ वीडियो। बादल फटने के बाद अचानक पानी का बहाव बढ़ गया, अचानक आई फ्लैश फ्लड से रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश, शिमला में बरसात के बाद मौसम सुहाना। गुजरात के 13 जिलों में 2 दिनों तक भारी बारिश के अलर्ट, अहमदाबाद में स्कूल कॉलेज छुट्टी के आदेश। सूरत में भारी बारिश से जनजीवन बेहाल हुआ, सड़कों पर जलभराव से लोगों को दैनिक दिनचर्या में परेशानी। सूरत में जोरदार बारिश के बीच जगह जगह बंद नालों को खोलने में जुटे कर्मचारी, सड़कों पर पानी भरने से रोकने की कोशिश। गुजरात के भावनगर में कई इलाकों में तेज हुआ बारिश की वजह से लोग परेशान, सड़कें जलमग्न। गुजरात के खेड़ा में मूसलाधार बारिश से लोग परेशान हैं, सड़कों पर कई वाहन डूब गए। गुजरात के भरूच पर रेड अलर्ट के बीच भारी बारिश का कहर, कई इलाके पूरी तरह से जलमग्न। गुजरात में भारी बारिश से बिगड़े हालात, नर्मदा छोटा उदयपुर में उफान पर नदियां, एनडीआरएफ ने रेस्क्यू कर युवक की जान बचाई। गुजरात के पाटन में बारिश बनी किसानों की मुसीबत, भाटसर गांव की 80% कृषि भूमि जलमग्न। महाराष्ट्र के कुला अमरावती में बारिश का कहर, कई नदियां उफान पर, 7 लोगों का रेस्क्यू। महाराष्ट्र में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ के हालात, गढ़चिरौली में नदी में फंसे 3 लोगों को प्रशासन ने सुरक्षित निकाला बाहर। महाराष्ट्र के जलगांव में लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश से बाढ़ के हालात, हथनूर बांध के 36 गेट खोले गए, बांध से पानी छोड़ने पर छोटे जलाशयों में भी बाढ़ का खतरा बढ़ा। पुणे में भी भारी बारिश से मुथा नदी में उफान, खड़क वासला बांध के लगभग 36,000 क्यूसेक पानी वहां से छोड़ा गया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में टारगेट के लिए 2 गैर कश्मीरी मजदूरों को आतंकियों ने मारी गोली, दोनों की मौत हो गई। कुलगाम आतंकी हमले पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने दुख जताया, बोले छत्तीसगढ़ सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा एजेंसी अलर्ट पर, गैर स्थानीय निवासियों पर हमले के बाद इलाके में व्यापक सर्च ऑपरेशन। पेपर लीक पर सख्त कानून लागू, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद सार्वजनिक परीक्षा संशोधन कानून 2026 लागू, धांधली पर कड़ी कार्रवाई होगी। होटल रेस्टोरेंट को राहत, कमर्शियल एलपीजी के दाम घटे, दिल्ली में 202 और कोलकाता में 209 रुपए की कटौती। पीएम मोदी ने देर रात अपने इंस्टा हैंडल से जारी किया युवाओं के लिए वीडियो संदेश, पीएम ने जंतर मंतर पर हुए विवाद का जिक्र करते हुए युवाओं से मन की बात की। पीएम मोदी ने जंतर मंतर विवाद पर कहा, गालियां कभी किसी समस्या का समाधान नहीं होती हैं। वीडियो संदेश में बोले पीएम, बच्चों को अदालतों के चक्कर नहीं, अपनापन और सही मार्गदर्शन मिलना चाहिए। पीएम ने अपने वीडियो संदेश में कहा, समाज का आक्रोश समझता हूं लेकिन सजा नहीं, सुधार पर जोर देना होगा। पीएम मोदी ने इंस्टा पर दिए वीडियो संदेश में युवाओं से सुधार की बात की, बोले गलतियों से सीखकर देश के लिए मिलकर आगे बढ़ना है। आज पीएम मोदी का आंध्र प्रदेश और कर्नाटक दौरा, कई कार्यक्रम में होंगे शामिल, साथ ही कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। आंध्र प्रदेश का नया अल्लूरी एयरपोर्ट बनेगा, दक्षिण का नया इकोनॉमिक पावर हाउस भोगापुरम में अल्लूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट का पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। पीपीपी मॉडल के तहत 5,640 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार किया गया है ये ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। पीएम मोदी ने कहा, इस एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी, व्यापार, पर्यटन बढ़ेगा। पीएम मोदी ने ब्रिटेन के पीएम एंडी बर्नहम से फोन पर बात की। एंडी बर्नहम को यूनाइटेड किंगडम का पीएम बनाया गया है। भारत ब्रिटेन में रणनीतिक और कारोबारी रिश्ते मजबूत करने पर जोर दे रहा है। मोदी कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर मोहर। सरकार ने 4.5 लाख करोड़ से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी दी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना को अगले 5 साल के लिए बढ़ाया गया। किसानों की आय को स्थिर समर्थन देना और ग्रामीण मांग को मजबूत बनाए रखना उद्देश्य है। सरकार ने पीएम सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दी। सौर सूर्य ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाएगा जलाशयों का इस्तेमाल। देश में स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन को गति देना मकसद है। समुद्र मंथन प्रोग्राम को भी कैबिनेट ने हरी झंडी दी। इसके तहत देश में तेल और गैस की खोज और उत्पादन पर जोर। 84,000 करोड़ रुपए का बजट मंजूर। खेलो इंडिया योजना के विस्तार को भी मंजूरी मिली। अगले 5 सालों के लिए 29,000 करोड़ रुपए का बजट किया गया आवंटित। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा 36,441 करोड़ की नई खेलो इंडिया योजना से तैयार होंगे विश्व स्तरीय खिलाड़ी। आज पुणे में प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 से सम्मानित होंगे एनएसए अजीत डोभाल। देश की सुरक्षा आतंकवाद विरोधी अभियानों में उनके असाधारण योगदान के लिए सम्मान। 2020 दिल्ली दंगे मामले में सजा का ऐलान। आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आपके पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत सभी 5 दोषियों को उम्र कैद। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने अंकित शर्मा हत्याकांड में ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा के फैसले का स्वागत किया। केजरीवाल पर सवाल उठाए। कैबिनेट मंत्री प्रवीण शर्मा ने पोस्ट में कहा ताहिर सहित अन्य दोषियों को उम्र कैद होने से अंकित शर्मा को इंसाफ मिला। सजा के बाद ताहिर हुसैन का पहला बयान। कहा हाईकोर्ट से मिलेगा इंसाफ। देर है पर अंधेर नहीं। कर्नाटक कैबिनेट विस्तार पर कांग्रेस में मंथन तेज हुआ। खड़गे के आवास पर हुई बैठक में राहुल गांधी समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। भारत पाक चुनाव पर ट्रंप का फिर आया बयान। बोले टैरिफ के दबाव से रोका युद्ध। भारत ने कहा सीधी सैन्य बातचीत से सीज फायर हुआ। पीओजीके में पाक सेना की कार्रवाई पर भारत सख्त। शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर हिंसा के आरोपों की अंतर्राष्ट्रीय जांच और जवाबदेही की मांग की। पीओजीके हिंसा पर भारत ने उठाई आवाज। 40 से ज्यादा मौतों के दावे के बीच पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराने की मांग। इंडिगो का बड़ा फैसला। वाइड बॉडी विमान सेवा पर रोक। बढ़ती लागत ईंधन कीमतों वैश्विक हालात के चलते 25 अक्टूबर से ऑपरेशन बंद। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मुद्दे पर संसद में विपक्ष के प्रदर्शन पर बरसे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। बोले बाबरी मस्जिद बनाने के लिए जुटाए चंदे का हिसाब दें। इस तरह का राजनीतिक ड्रामा निंदनीय है। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में लागू किया गया नया ड्रेस कोड। अब मंदिर में प्रवेश से पहले पीली चौबंदी और सफेद धोती धारण करेंगे पुजारी। राम मंदिर में कैमरों की निगरानी में होगी। दान पात्र में चढ़ावे की रकम निकालने और गिनती वाली जगह तक पहुंचाने की प्रक्रिया। कर्मचारियों की हर गतिविधि पर नजर। 2 सितंबर को होगी मंदिर ट्रस्ट की अगली बैठक। सीईओ सचिव और प्रवक्ता की नियुक्ति पर मोहर लग सकती है। यूपी चुनाव को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान। आकाश आनंद पर बोलते हुए कहा उम्मीदवार मैं ही तय करूंगी, अफवाहों पर ना जाएं। आगरा में सावन के दौरान कांवड़ यात्रा रूट पर शराब मीट मछली की दुकानें बंद कराने के लिए प्रदर्शन। राष्ट्रीय हिंदू परिषद ने डीएम को ज्ञापन सौंपा। गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा की सभी तैयारियां पूरी। पूरे जनपद को 11 जोन 24 सेक्टर में विभाजित किया गया। देवघर में चल रहे श्रावणी मेले की भव्य रौनक। बाबा वैद्यनाथ के मंदिर में की गई शानदार लाइटिंग सजावट। सहारनपुर में कांवड़ यात्रा की हाईटेक सुरक्षा। 3,000 अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरों से होगी निगरानी। पुलिस ने एकीकृत कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया। गांधीनगर में सावन पर भक्ति का रंग। बाकी बिहारी मंत्रिमंडल में मित्र मंडल में फेस्टिवल में सजाया गया फूलों का बंगला। 56 भोग भी लगाया। कौशाम्बी में घर पर हनुमान चालीसा बजाने पर विवाद। कोचिंग संचालक पर घर में घुसकर मारपीट का आरोप। 4 पर मुकदमा। सुपौल में भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी और बिहार पुलिस का बड़ा एक्शन। ड्रग तस्करी गैंग के 2 आरोपी गिरफ्तार। 837 किलो गांजा जब्त। अलवर में कार सवार दंपति की चोरी करते समय कैमरे में वो कैद हो गए। पुलिस चौकी के पास दुकान से चीनी मिट्टी के बर्तन चुरा रहे थे। गुजरात के नवसारी में झुके बिजली के तार की चपेट में आया मजदूर से भरा टेम्पो। करंट लगने से 3 की मौत 3 की हालत गंभीर। मुंबई में रंगदारी गैंग पर क्राइम ब्रांच का शिकंजा। ठेकेदार से 25 लाख की रंगदारी लेते दुल्फिकार गैंग के सरगना समेत 12 आरोपी गिरफ्तार हुए। टिहरी गढ़वाल में गंगोत्री नेशनल हाईवे पर 2 कारों की आमने सामने से टक्कर। सभी सुरक्षित है। मंडी में 15 क्विंटल मूली नाले में फेंकने का वीडियो वायरल। मामले में संज्ञान में आते ही 5 घंटे बाद प्रशासन ने खोली सड़क। 5 दिन से बंद था मार्ग। इंदौर में बाणगंगा में प्रॉपर्टी कारोबारी की संदिग्ध मौत, महिला से हो रही है पूछताछ, घटना स्थल का रिक्रिएशन होगा। चंदौली में मिड डे मील में मरा हुआ कीड़ा मिलने से अड़कम, बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जांच के आदेश दिए। बागपत में निर्माणाधीन मकान की छत गिरी, मलबे में दबने से दो की मौत। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने रचा इतिहास, जूडो में अस्मिता डे ने विमेंस 48 किलोग्राम वेट कैटेगरी का फाइनल में गोल्ड जीत लिया। भारतीय जूडो खिलाड़ी हर्ष सिंह ने भी ग्लासगो में लहराया तिरंगा, पुरुषों के 60 किलोग्राम इवेंट में जीता गोल्ड मेडल, अस्मिता ने भी जीता सिल्वर। लवप्रीत सिंह ने वेट लिफ्टिंग में भारत को दिलाया 10वां सिल्वर मेडल, पुरुष के 110 किलो वेट कैटेगरी में 388 किलोग्राम वजन उठाया। डिस्कस थ्रो में सीमा ने भारत को दिलाया ब्रॉन्ज मेडल, 58.5 मीटर किया थ्रो, जीता मेडल। नीरज चोपड़ा ने सीजन बेस्ट थ्रो के साथ जीता सिल्वर मेडल, यशवीर सिंह ने 85.41 मीटर थ्रो से ब्रॉन्ज पर कब्जा जमाया। NCR T20 लीग का भव्य आगाज, नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया में ट्रॉफी और 8 टीमों की जर्सी लॉन्च, 26 सितंबर से 4 अक्टूबर तक चलेगा मुकाबला। छावा के बाद महाअवतार की तैयारी में जुटे एक्टर विक्की कौशल, फिल्म में भगवान परशुराम का किरदार निभाने के लिए 25 किलो से ज्यादा वजन बढ़ाएंगे एक्टर। हॉलीवुड फिल्म स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ने ओपनिंग डे पर भारत में की बंपर कमाई, 50 करोड़ रुपए का पार किया आंकड़ा। वेंकी अटलुरी ने लकी भास्कर 2 का ऐलान किया, दुलकर सलमान और मीनाक्षी चौधरी की फिल्म लकी भास्कर 2024 में रिलीज हुई थी। हैरी पॉटर फैंस के लिए अच्छी खबर, फर्स्ट पार्ट एक बार फिर से लॉन्च होगा 25 तारीख को। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की कार्रवाई पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान, कहा आईसीसी का निशाना मैं नहीं हूं और हो भी सकता हूं। अमेरिका में वाटर सप्लाई सिस्टम पर हुए साइबर हमले पर ट्रंप का बयान, मिनेसोटा में साइबर अटैक ईरान ने नहीं किया। हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान की सेना का बड़ा हमला, 2 तेल टैंकरों को निशाना बनाया, 4 तेल टैंकर वापस लौटे, IRGC ने अमेरिका को चेतावनी दी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं। रूस की दूसरी सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी ओजोन के पास यूक्रेनी ड्रोन ने हमला किया, 5 लोग घायल हुए। अमेरिकी डेलीगेशन ने ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग ते से मुलाकात की, दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत करने पर चर्चा। स्वेच्छा में प्रवासी संकट पर यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन जेर का बयान, कहा यूरोपीय संघ मोरक्को के संपर्क में है ताकि प्रवासी संकट को जल्द हल किया जा सके। तुर्की में जंगलों की आग से भरी बहुत बड़ी तबाही, जान जोखिम में डालकर आग बुझाते दमकल कर्मी अब दिखाई दे रहे हैं। अफ्रीकी देश अल्जीरिया में भयानक सड़क हादसा, सड़क से फिसलकर खाई में गिरी बस, 25 यात्रियों की मौत, 44 घायल। पाकिस्तान के ब्रॉड पीक पर हिमस्खलन से 10 पर्वतारोही लापता, 4 शव बरामद। नेपाल के मशहूर पर्वतारोही निर्मला पुर्जा समेत 6 पर्वतारोही अब भी लापता, हेलीकॉप्टर की मदद से पाकिस्तान की सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। फीफा में मचे घमासान के बीच फीफा अध्यक्ष के वरिष्ठ सलाहकार कार्लोस कार्ड्रोई का इस्तीफा, कार्लोस ने वर्ल्ड कप में हिस्सेदारी बेचने के प्रस्ताव का विरोध किया था।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर मां का भरोसा प्यार से परोस।
0: बात अब राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर, संसद में छिड़े नए सियासी संग्राम की करते हैं। शुक्रवार को संसद परिसर से अनोखी तस्वीर सामने आई, आप सभी ने देखी जो अभी आप देख रहे हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर सांसद पप्पू यादव साधु के भेष में दिखे, इस विरोध में कुछ विपक्षी सांसद भी थे, राहुल गांधी भी थे। अब सियासत तेज हो गई है इस पूरे मुद्दे को लेकर।
2: संसद परिसर में अयोध्या चंदा चोरी का मुद्दा विपक्ष ने नाटक का मंचन करके उठाया, जहां पप्पू यादव साधु के भेष में दान पेटी के साथ पहुंचे, जिसमें राहुल गांधी समेत विपक्ष के नेताओं ने सांकेतिक चंदा डाला, जिसके बाद पप्पू यादव दान पेटी लेकर भागने की कोशिश करते हैं, जहां उन्हें अयोध्या से आने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद पकड़ते हैं। पप्पू यादव के इस नाटक पर लोकसभा स्पीकर ने नाराजगी जताई, पप्पू यादव के आचरण को संसदीय भावना के खिलाफ बताया।
3: नहीं, वो तो स्पीकर साहब ने कह दिया कि ये रंग बदल बदल के कपड़े बदल बदल के प्रदर्शन करने का जगह नहीं है, थोड़ा सीरियसनेस दिखाना चाहिए। आप सांसद है तो सांसद की तरह व्यवहार करना चाहिए, नाटक करने का जगह नहीं है, स्पीकर साहब ने कह दिया है, अलग से मुझे कहने का जरूरत नहीं है।
2: वहीं बीजेपी भी पूरे मामले को लेकर विपक्ष पर हमला कर रही है।
4: वो तो काले नेमी का वेश धारण करके आए थे और पूरे सदन ने इसकी निंदा की। तो ये सवाल उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि त्रेता युग के राम को हम लाए, राम राम जपियो रे सब माल हरपियो रे। आप भगवान के आस्था के साथ ही नहीं 154 करोड़ भारत के उस आस्था के साथ खिलवाड़ किए हैं जो राम के, जो राम को अपने जीवन में, कन में, चरित्र में, चिंतन में रखते हैं।
5: हमारे देश का, इन राजनीतिक पार्टियों का, कांग्रेस हो या सपा हो, जो वोट के खातिर सनातन को बदनाम करने का काम किया है, इसका बदला सनातन लेगा।
6: आपके माध्यम से देश का हम जनमानस देखे कि आखिर अयोध्या में क्या हुआ है। हम लोग तो विपक्ष के लोग हैं, जनता की आवाज उठाते हैं, जनता को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से अयोध्या में हुआ है, क्योंकि जो लोग मौके पे नहीं थे वो नहीं देख सकते। अब तो सीसीटीवी भी डिलीट हो गए हैं।
2: उधर संत समाज ने भी पप्पू यादव को लेकर सवाल खड़े किए हैं।
7: महामहिम राष्ट्रपति महोदया और लोकसभा अध्यक्ष दोनों से यह मांग करूंगा कि ऐसे सांसदों की संसद सदस्यता बर्खास्त होनी चाहिए।
8: इन्होंने अपराध किया है, इन्होंने पाप किया है। आप जरा बताइए कि जिन लोगों ने मंदिर में दान चोरी किया है, क्या वो भगवाधारी थे? वो तो आठों जेल गए, भगवा साधु तो थे नहीं। और यह आप जरा देखिए कितने दुर्भाग्य है। और हमें तो लगता है कि पूरे विपक्ष में एक और दो पप्पू नहीं है, पूरा विपक्ष ही पप्पू हो चुका है।
2: राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर समाजवादी पार्टी पिछले दो दिनों से दान पेटी के साथ प्रदर्शन कर रही है, जिसमें आज पप्पू यादव की एंट्री ने नया सियासी घमासान शुरू कर दिया। आज तक ब्यूरो।
0: तो पहली बार भारतीय रेलवे के जरिए लाइव हार्ट ट्रांसपोर्ट करने की तस्वीर सामने आई। वंदे भारत ट्रेन के जरिए मेडिकल टीम एक जिंदा दिल लेकर यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर पहुंची। मुंबई सेंट्रल से गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन के बीच का ये सफर यादगार रहा। ट्रांसप्लांट के लिए दिल वक्त पर पहुंच जाए, इसके लिए पूरी तैयारी की गई थी। ट्रेन के अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद आरपीएफ और गुजरात पुलिस ने प्लेटफॉर्म नंबर 1 से यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया था। और जैसा कि आज आपको बताया था, पीएम नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश के दौरे पर हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश पहुंच चुके हैं। अब यहां पर देखिए, बहुत सी सौगातें देंगे, हजारों करोड़ की सौगात आज आंध्र प्रदेश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। और अभी आप जो देख रहे हैं, ये एयरपोर्ट टर्मिनल का शिलान्यास करने जा रहे हैं और ये देखिए, ये उद्घाटन करने जा रहे हैं। ये देखिए, आंध्र प्रदेश को अब नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिल गया है। विजयनगरम के भोगपुरम में ये नया एयरपोर्ट बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया, रिबन काटकर चंद्रबाबू नायडू उनके साथ में हैं। और अब उस एयरपोर्ट की खासियत को भी देख रहे हैं, कैसे इस एयरपोर्ट को सजाया गया है, यात्रियों के लिए क्या सुविधाएं दी गई हैं। ऐसे में आपको मुख्यमंत्री तो नजर आएंगे ही आंध्र के। और ये देखिए, ये वो तस्वीरें जब इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया रिबन काटते हुए। और अब यात्रियों के लिए ये शुरू हो जाएगा, यात्री यहां से उड़ान भर सकते हैं। भोगपुरम में 18,000 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ आज किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन हो चुका है, ये नया एयरपोर्ट भोगपुरम में बना है विजयनगर के। कुछ खास इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाया गया है, यात्रियों की सभी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इस एयरपोर्ट को बनाया गया है, ताकि यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो। अब यहां से अंतर्राष्ट्रीय सफर आसान हो जाएगा। अनन मंत्रालय के मंत्री भी यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं। और रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस।
9: इन एसोसिएशन विद
10: भारत।
11: दिस इज द साउंड ऑफ लूसी स्टेइंग ऑन टॉप ऑफ हर स्पेंडिंग। यू सी, इवन दो शी इज बाइंग अ न्यू पेयर ऑफ जींस, शी नोज दैट इट फिट्स विद इन हर मंथली बजट। because Wells Fargo will send an alert if her balance drops below her set amount. Yep, nothing gets past Lucy, or Wells Fargo for that matter. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
9: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
10: Some mysteries lie beneath the ocean. Others, beyond the stars. Explore Earth's wildest places on Earth Day 365. Uncover nature's greatest mysteries and experience breathtaking IMAX theater documentary films. Watch Earth Day 365 free now on the Roku channel, LG channels, Amazon Fire, and more.
12: I'm Pamela Anderson. Explore your world every day on Earth Day 365.
13: अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।
3: यानी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
4: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
5: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy nonstop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
1: जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिस कहानी के बहुत अच्छे परिणाम हैं और बहुत दुखद परिणाम हैं। भारत एक राजमहल है, समृद्ध है, सोने की चिड़िया है। गहरी बात है वो ये है कि इस राजमहल के चारों तरफ झोपड़ पट्टियां हैं, झुग्गियां हैं, चुनौती वाले क्षेत्र हैं। भारत आए अंग्रेज, यहाँ के लोगों को देखा उन्होंने, जब यहाँ के ग्रंथों को ट्रांसलेट करना शुरू किया, पढ़ा उन्होंने कि ब्राह्मण का जन्म मुंह से हुआ है। ये डिपार्टमेंट बनाया ही गया था शोषण के लिए। कौन सा? पुलिस। किसने बनाया था? कॉर्नवालिस ने। और पुलिस डिपार्टमेंट की खास बात यह है कि जब उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट भारत में बनाया, तब वो डिपार्टमेंट ब्रिटेन में नहीं था। जुडिशरी, मॉडर्न जुडिशरी उन्होंने अपने फायदे के लिए बनाया। अंग्रेजी कानून, अंग्रेजी जज। तुम कल्पना कर सकते हो, आधुनिक काल से पहले LGBT सड़क पर आकर प्रदर्शन करें, इनको तोप में बांध के उड़ा दिया होता।
2: तो क्या सिर्फ अब हिस्ट्री सिर्फ जो बाहर से लोग आए थे यहाँ पे शासन करने के लिए, उनको विलन के रूप में दिखा रहे हैं? या फिर
1: जो भी सरकार सत्ता में आती है वो शिक्षा का इस्तेमाल करती है अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने। वंदे मातरम पे बहस हो रही है, हर दिन मंदिर मस्जिद पे बहस हो रही है, मुसलमान पे बहस। ये संसद बनी किस लिए? औरंगजेब जो था भैया, डेली 200 किलो जनेऊ तोलता था। कितना? 200 किलो भैया, मतलब डेली वो कम से कम 10,000 ब्राह्मणों को मारता था, हिंदुओं।

जम्मू कश्मीर के कुलगाम में टारगेट किलिंग, दो गैर कश्मीरी मजदूरों को आतंकियों ने मारी गोली, दोनों की हुई मौत, इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में 200 रुपए से ज्यादा की कटौती, दिल्ली से कोलकाता तक घटी कीमतें, दिल्ली में 2728 रुपए का मिलेगा 19 किलो का सिलेंडर। और कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का दमदार प्रदर्शन, जूडो में डबल गोल्ड और सिल्वर, नीरज चोपड़ा ने भी जेवलिन में जीता सिल्वर, 5 गोल्ड समेत कुल 23 पदक भारत के, बॉक्सिंग और एथलेटिक्स में आज कई गोल्ड की उम्मीद।

आइए आपको सीधे लिए चलते हैं आंध्र प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त रोड शो कर रहे हैं और ये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की। आंध्र प्रदेश में इस वक्त पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं, चंद्रबाबू नायडू उनके साथ में मौजूद हैं उस रथ में। और यहां पर आप देखिए कि कैसे लोग कलाकार हैं, छात्र छात्राएं सांस्कृतिक जो कला है उसका प्रदर्शन यहां पर करते हुए। विजयनगर में पीएम मोदी का रोड शो आप देख रहे हैं।

0: पीयूष मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। पीयूष, एक शानदार रोड शो विजयनगरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के दौरे पे आज पीएम।
1: ये बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण दिन है और प्रधानमंत्री इस वक्त आंध्र प्रदेश में है, जहां पर वो अल्लूरी सीतारामा राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो भोगापुरम में है उसमें उसका इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं। और उससे पहले जब प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं वहां पर तो फिर उनका स्वागत किया जा रहा है और आप देख सकते हैं कि तरह सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है वो रास्ते में पूरा हो रहा है और प्रधानमंत्री का स्वागत जो है वो जोरों शोरों से आंध्र प्रदेश में हो रहा है। आज प्रधानमंत्री अल्लूरी सीतारामा राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसको 5,000 करोड़ की लागत से बनाया गया है उसका इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं। और इसी के साथ साथ अब आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो लगभग 18,000 करोड़ की जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है उनको भी लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें सेमीकंडक्टर, पावर ट्रांसमिशन और नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट शामिल है। और प्रधानमंत्री का ये दौरा आंध्र प्रदेश को लेकर काफी दिनों के बाद हुआ है और इससे पहले हमने वो तस्वीरें भी देखी थी संसद भवन के अंदर जब जो चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू वो पहुंचे थे संसद भवन में और पूरे कैबिनेट के साथ उन्होंने प्रधानमंत्री को इस प्रोग्राम में आने का न्योता दिया था। इस वक्त प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, लगभग 11 बजे के आसपास वो पहुंचे थे और उनका स्वागत गवर्नर और चीफ मिनिस्टर ने किया था। और उसके बाद प्रधानमंत्री जो है वो अब एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं, इसका इनॉग्रेशन होगा। एक पब्लिक मीटिंग वेन्यू भी है, वहां तक पहुंचने के लिए ओपन व्हीकल का इसका इंतजाम है वहां पर, जहां पर ये जो जानकारी हमको मिल रही है उसके हिसाब से लगभग 13,000 से ज्यादा ट्राइबल महिलाएं और छात्र प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। और इस स्वागत में जो डांस फॉर्म है उस डांस फॉर्म का नाम है झिमसा, जो इस वक्त आप देख पा रहे होंगे अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, तो आप देख सकते हैं कैसे प्रधानमंत्री का स्वागत हो रहा है। और कुछ दिन में प्रधानमंत्री उस एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और वहां जाकर लगभग 5,000 करोड़ की लागत से बना अल्लूरी सीतारामा राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इनॉग्रेट करेंगे।
0: नहीं, इनॉग्रेट तो वो हो गया, उद्घाटन तो उन्होंने कर दिया। और अब ये बताया जा रहा है कि पीयूष अब थोड़ी ही देर में जनसभा को भी संबोधित करेंगे, और जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर होंगे तो क्या उम्मीद उनसे की जा रही है कि किन मुद्दों पर वो अपनी बात रख सकते हैं?
1: देखिए, 18,000 करोड़ से ज्यादा के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, इसमें सेमीकंडक्टर, पावर ट्रांसमिशन और नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट है। इन सभी प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी प्रधानमंत्री के द्वारा दी जाएगी और कहीं ना कहीं बेहद ही महत्वपूर्ण ये प्रोजेक्ट है आंध्र प्रदेश के विकास को लेकर। और जब से एनडीए की सरकार बनी है और चंद्रबाबू नायडू का समर्थन एनडीए की सरकार को रहा है, बीजेपी को रहा है, तब से ही हम देख रहे हैं लगातार आंध्र प्रदेश में विकास के काम केंद्र और राज्य सरकार दोनों में कर रही है। प्रधानमंत्री का स्पेशल फोकस सदर स्टेट पर भी रहा है, आंध्र प्रदेश में कई सारे प्रदेश जिनको लेकर टीडीपी के सांसद लगातार प्रधानमंत्री से मिलते रहे हैं। तो ना सिर्फ 5,000 करोड़ का अल्लूरी सीतारामा राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट इनॉग्रेट किया गया, इसी के साथ साथ

0: सेमीकंडक्टर की बड़ी बात कही गई थी, और इससे पहले कुछ जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी आंध्र प्रदेश गए थे और सेमीकंडक्टर का जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में जानकारी दी गई थी। और इसी के साथ साथ साथ पावर ट्रांसमिशन और हाईवे नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट भी आज आंध्र प्रदेश को समर्पित होने जा रहे हैं। इन्हीं सब चीजों को लेकर प्रधानमंत्री अपनी बात रखेंगे। और जिस तरह से
1: अच्छा पीयूष, इसमें ये भी हम क्या कह सकते हैं कि जो पांच राज्य मिशन साउथ की बात की जाती है जिसमें आंध्र, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल है, 129 लोकसभा सीटें हैं, वहां पर मजबूत पकड़ अपनी करने के लिए ये सारे प्रयासों के तौर पर इसे देखा जा सकता है, क्योंकि पार्टी का लक्ष्य पैन इंडिया पार्टी बनना है।
0: जी बिल्कुल, इसमें बिल्कुल दोहराई नहीं है। और प्रधानमंत्री का फोकस सदर्न स्टेट पर काफी ज्यादा रहा है, और चाहे वो आंध्र प्रदेश हो और कर्नाटक में तो अब चुनाव भी होने वाले हैं, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं पार्टी का फोकस रहेगा। और इसलिए प्रधानमंत्री के दौरे आप देखेंगे कि कुछ दिनों में इन राज्यों में और बढ़ेंगे। हालांकि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में गतिविधियां, राजनीतिक गतिविधियां संसद भवन के अंदर देखने को मिली, उसके बाद प्रधानमंत्री का पहला एक दौरा आंध्र प्रदेश राज्य को लेकर है, और संभवतः अपनी बात जरूर रखेंगे प्रधानमंत्री। जिस तरह से छात्रों के लिए काम किए गए हैं, नीट परीक्षा को लेकर बिल भी लाए गए सरकार के द्वारा, और जो कदम उठाए गए हैं मोदी सरकार के द्वारा, इन सभी चीजों को लेकर जरूर अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन इन सभी चीजों के बीच में महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर आज एक बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसको लेकर काफी दिनों से चर्चाएं चल रही थी, उसके बारे उसको आंध्र प्रदेश को समर्पित किया गया। इसी के साथ साथ 18,000 करोड़ की जो परियोजनाएं हैं उनको लेकर भी आज प्रधानमंत्री अपनी बात रखने जा रहे हैं,
1: और आंध्र प्रदेश को एक मॉडल के तौर पर यहां प्रदर्शित करने की एक योजना है। बीजेपी आंध्र प्रदेश के मॉडल को सफलता के उदाहरण के तौर पर बाकी जो दक्षिणी राज्य उनके सामने प्रस्तुत भी करना चाहती है, और इसीलिए आंध्र प्रदेश के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते, ये भी इन सौगातों से दिख रहा है जो 18,000 करोड़ की हैं।
0: जी बिल्कुल, इसको इस नजरिए से हम देख सकते हैं कि जो राज्य सरकार है वो एक ट्रांसफॉर्मेशनल मोड की तरह आगे बढ़ रही है, ताकि जो आगे आने वाली पीढ़ी है उनको बेहतर सुविधाएं मिल सके। और मेन फोकस जो है वो न सिर्फ एयरपोर्ट बल्कि हाईवे कनेक्टिविटी के साथ भी की जा रही है। इस एयरपोर्ट की अगर हम बात करें तो जो जानकारी हासिल हुई है उसके हिसाब से सिर्फ और सिर्फ इस एयरपोर्ट से नॉर्थ आंध्र रीजन में इंडस्ट्रियल ग्रोथ के साथ साथ जो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज है वो वहां पर मिलने जा रही है। एक्सपोर्ट का जो एक बड़ा सेक्टर है नॉर्थ आंध्र रीजन में, उसको बहुत बल मिलेगा, साथ साथ स्किल डेवलपमेंट और रिसर्च इन सभी क्षेत्रों को लेकर भी ज्यादा बेहतर चीजें आप उस इलाके में देखेंगे। तो इस एयरपोर्ट से ही काफी फायदा होने वाला है, और इसी के साथ साथ जो नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की बात भी कही गई है, उन प्रोजेक्ट से भी नॉर्दर्न आंध्रा को काफी ज्यादा बल मिलेगा, और उससे राज्य की तरक्की में काफी फायदा होगा। और इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण दौरा प्रधानमंत्री का है। और अगर स्पेशल इसी एयरपोर्ट की अगर हम बात करें तो इसमें AI टेक्नोलॉजी के माध्यम से कई सारी चीजें हैं वहां पर, टेक्नोलॉजी की एडवांस वहां पे।
1: अच्छा, आप पीयूष हमारे साथ बने रहिए, और ये तस्वीरें हम यहां पर दिखा रहे हैं कि मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। देखिए,
2: अपना सपना है विश्व पटल पर भारत का मान बढ़ाने वाले आप, नए भारत की नई पहचान बनाने वाले आप, करोड़ों दिलों की प्रेरणा, जन जन की आशा और भारत की आवाज। जोरदार तालियों के साथ और सम्मान के साथ हम स्वागत करते हैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। ओक्कसारी झंडा एत्ति अंदरम, भारत माता की जय। थैंक यू वेरी मच।
1: मंच पर आते हैं तो चंद्रबाबू नायडू जो मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पर दिखाई देते हैं, उनके पास में बैठे, और ठीक उनके पास में आप देखेंगे तो उप मुख्यमंत्री यानी पवन कल्याण भी वहाँ मौजूद हैं। उससे पहले आपने वो तस्वीर देखी जब भोगपुरम में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया, नए टर्मिनल का, और जब मंच तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे थे, रथ आप इसे कह सकते हैं, जिसको बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया है, तो वहां पर चंद्रबाबू नायडू भी, तो और ये देखिए अब चंद्रबाबू नायडू पीएम मोदी का सम्मान करते हैं।
2: प्रधान श्री नरेंद्र मोदी गारी की जरूरत आत्मीय सत्कार, अलागे प्रत्येकिंची आंध्र प्रदेश संगीत वारसत्वा की चिरुनामा శతాబ్దాల చరిత్ర తనలో నిక్షిప్తం చేసుకున్నటువంటి అపురూపమైన బొబ్బిలి.
1: तो पीएम नरेंद्र मोदी ने सौगात दी केरल को 18,000 माफ कीजिएगा आंध्र प्रदेश को 18,000 करोड़ की, नया एयरपोर्ट टर्मिनल उसका उद्घाटन किया और उसके बाद कला संस्कृति को बढ़ावा देते हुए ये तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और साथ में आप देखेंगे मुख्यमंत्री तो हैं, उप मुख्यमंत्री भी हैं, पवन कल्याण भी हैं और अब कुछ ही देर में पीएम नरेंद्र मोदी अपनी बात रखेंगे.
2: అలాగే కార్యక్రమాన్ని ముందుకు తీసుకువెళ్తూ స్వాగతోపన్యాసం ఇవ్వవలసిందిగా ఆనరబుల్ యూనియన్ మినిస్టర్ ఫర్ హెవీ ఇండస్ట్రీస్ అండ్ స్టీల్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా శ్రీ భూపతిరాజు శ్రీనివాస్ వర్మ గారిని మనవి చేసుకుంటూ ఉన్నాము.
1: అలాగే పిఎం నరేంద్ర మోదీకి సాత్ క్యాబినెట్ మంత్రి జో హై రామ్మోహన్ నాయుడు భీ యహాన్ పర్ దిఖాయి దియే థే కేంద్రీయ మంత్రి రుకేంగే యహాన్ పర్ ఏక్ బహుత్ ఛోటే సే బ్రేక్ కే లియే ఆప్ దేఖ్తే రహియే ఆజ్ తక్.
3: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
4: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
5: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
6: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen. And you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
7: सर, आप जो भगवा कपड़े पहन करके आए हैं, यहाँ सत्ता पक्ष के सांसदों के द्वारा ये कहा गया कि भगवा का मजाक एक तरीके से उनके द्वारा उड़ाया जा रहा है.
8: अच्छा, भगवा के आस्था के साथ खिलवाड़ कौन कर रहा है? हम किसी का नाम तो ले नहीं रहे. ये जो दुराचारी व्यभिचारी बलात्कारी बाबा है, पर्ची निकालने वाले जिन पर आरोप है, वो सारे गेरुआ के आस्था को खतरे में डाला है. सारे रियल संत जो है उसको खतरे में डाला है, रियल बाबा को खतरे में डाला है. तो ये सवाल उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि त्रेता युग के राम को हम लाए, राम राम जपियो रे सब माल हड़पियो रे. आप भगवान के आस्था के साथ ही नहीं, 154 करोड़ भारत के उस आस्था के साथ खिलवाड़ किए हैं जो राम के, जो राम को अपने जीवन में, कर्म में, चरित्र में, चिंतन में रखते हैं, जो शिव को अपना आराध समझते हैं, शिव जीवन में है, शिव विचारों में है.
7: लेकिन स्पीकर स्पीकर साहब ने भी टिप्पणी किया है आपकी.
8: निश्चित रूप से विरोध का क्या तरीका होगा? लाठी गोली तो हम इन लोगों की तरह नहीं चला सकते. तो जो और राम के आस्था के साथ ठेस पहुंचाया, सनातन पर हमला बोला, तो क्या अन्य लोग जितने लोग हैं वो लोग गेरुआ पहन के नहीं आते हैं? हमने गेरुआ पहन करके आस्था की बात की. और जो लोग गेरुआ पहन के आते हैं और नाटक करते हैं और भारत में उन्माद पैदा करते हैं और भगवान को राजनीति में बेचते हैं.
7: लेकिन आप सर जो दान पत्र लेकर के इधर भाग रहे थे पूरा, तो वो एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है इस चोरी करने का, भगवान राम की आस्था को लेकर के.
8: भगवान राम की आस्था की ही ना चोरी हुई है, देखने रहे सब चोरी कर लिए, देखने रहे तो भागेगा. जो भाग रहा है ले करके तो उसको तो लेके भागना पड़ेगा ना.
9: हम लोगों ने प्रदर्शन किया कि कैसे अयोध्या में डकैती पड़ रही है 2020 से, जब से प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण का ट्रस्ट बना है तब से डकैती पड़ रही है. और तभी से नहीं पड़ रही है, जो 90 के आंदोलन के समय भी लगभग 1400 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ था उसका भी हिसाब किताब पता नहीं है. और ये 100% बीजेपी आरएसएस विश्व हिंदू परिषद के लोगों की जेबों में और खातों में जाने लगा है। और इस बात को लेकर हम विपक्ष के लोग लगातार मांग कर रहे हैं स्पीकर साहब से भी कि हमको चर्चा का मौका दीजिए, और जब तक चर्चा का मौका नहीं देंगे सदन को हम लोग व्यवस्थित नहीं चलने देंगे।
10: चंदा लूट तो यहाँ भी हुआ।
9: आपके माध्यम से देश का हम जनमानस देखे कि आखिर अयोध्या में क्या हुआ है। हम लोग तो विपक्ष के लोग हैं, जनता की आवाज उठाते हैं, जनता को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से अयोध्या में हुआ है, क्योंकि जो लोग मौके पे नहीं थे वो नहीं देख सकते। अब तो सीसीटीवी भी डिलीट हो गए हैं।
11: पहाड़ों पर कुदरत का कहर जारी। उत्तराखंड में दरक रहे हैं पहाड़। सड़कों पर मलबा ही मलबा। देवभूमि उत्तराखंड में मानसूनी आफत का सिलसिला जारी है। लगातार हो रही बारिश के चलते लगातार लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं। ये तस्वीर चमोली के किमाना गांव की है, जहां पहाड़ों से भारी मात्रा में मलबा नीचे आ रहा है, जिसके चलते लोगों में दहशत का माहौल है। मलबे से रास्ते बंद हो गए हैं। पहाड़ी से आ रहे मलबे से खेतों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। सारी फसल बर्बाद हो चुकी है। चमोली ही नहीं, उत्तराखंड के बाकी इलाकों में भी हालात ठीक नहीं हैं। रुद्रप्रयाग में लैंडस्लाइड के चलते केदारनाथ हाईवे पर आवाजाही बंद हो गई। पहाड़ों से भारी मात्रा पर मलबा सड़क पर आ गया, जिसको हटाने का काम जारी है। हरिद्वार की ये तस्वीर देखें, जहां लगातार हो रही बारिश के बाद सूखी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया, जिसके चपेट में पार्किंग में खड़ी कई गाड़ियां आ गईं। पानी के बहाव में गाड़ियां काफी दूर तक बहती चली गईं, जिसके बाद क्रेन की मदद से उन्हें बाहर निकाला गया। चमोली से प्रवीण सेमवाल के साथ आज तक ब्यूरो।

0: follow him with my profound repertoire.
1: The idea of it, the building is fast.
2: You want to sit and listen, you sit and listen.
3: कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा। इस कठोर कानूनों वाले
4: देश को आशान्वित करने वाला ये पीएम मोदी का वो संदेश है जो दोनों सदनों से लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पारित होने के बाद आया है। इस बिल के पारित होने के बाद सरकार राहत में होगी, लेकिन क्या ये पेपर लीक पर चल रही राजनीति को भी विराम लगा पाएगा? इस सवाल का जवाब आपको राहुल गांधी के इस बयान से काफी हद तक मिल पाएगा।
5: मैंने तो सिर्फ ये पूछा है कि दो ही ऑप्शंस हो सकते हैं। एक ऑप्शन की होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया, दूसरा ऑप्शन की होम मिनिस्टर को मालूम नहीं था कि फायरिंग होगी। इन फर्स्ट केस ही इज कल्पेबल, इन सेकंड केस ही इज इनकॉम्पिटेंट। इट कैन ओनली बी वन ऑफ टू, तीसरा तो हो ही नहीं सकता।
4: तो राहुल गांधी रुकने वाले नहीं और उनके इन तेवरों की वजह से पेपर लीक की लड़ाई भी थमने वाली नहीं है। बस कल और आज में फर्क ये आया है कि पहले धर्मेंद्र प्रधान निशाने पर थे, लेकिन उनके इस्तीफे के बाद गृह मंत्री अमित शाह हमलों की जद में आ गए हैं और उन पर हमलों की वजह से इस लड़ाई की रफ्तार भी बढ़ रही है। राहुल गांधी ने अमित शाह पर हमले बढ़ाए तो बीजेपी उन्हीं को टारगेट पर ले आई। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना का नोटिस दे दिया।
0: माननीय गृह मंत्री जी आएंगे,
4: यानी इस लड़ाई में अभी और ईंधन डालने की पूरी कोशिश हो रही है। अभी तो सिर्फ विशेषाधिकार हनन का नोटिस है, कोई बड़ी बात नहीं कि ये मामला राहुल गांधी पर एक्शन तक पहुंच जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि अमित शाह के इस्तीफे की मांग और जोर पकड़ने लगी। राहुल के बाद खड़गे ने भी राज्यसभा में वही मांग दोहरा दी है।
6: अरे मेरे विद्यार्थी जो गांव-गांव से आए, स्टेट स्टेट से आए, उन बच्चों को पैलेट्स का यूज करके उनको मार रहे हैं और हॉस्पिटल में गिरे हैं। किसका आंख गया, किसका कान गया, किसका हाथ गया, किसका पैर टूटा, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार आप है, होम मिनिस्टर है।
4: कांग्रेस अमित शाह से प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज का हिसाब मांग रही है, अमित शाह के सदन में आकर जवाब देने की मांग कर रही है, उनका इस्तीफा मांग रही है और उसके लिए राहत की बात यह है कि बाकी विपक्षी दलों का भी उसे साथ मिल रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि ये लड़ाई आगे किस दिशा में जाती है। पीयूष मिश्रा के साथ अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: पीएम मोदी ने एक नया वीडियो संदेश जारी किया। शुक्रवार देर रात एक बार फिर जेन जी को एक बड़ा मैसेज दिया। रात तकरीबन 11 बजे के बाद पीएम मोदी इंस्टाग्राम पर लाइव आए और जेन जी को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मैं बच्चों को माफ करना चाहता हूं। छात्र आंदोलन के बीच ये पीएम मोदी का पांचवा वीडियो संदेश है, जिसमें उन्होंने युवाओं से सही दिशा पर बढ़ते हुए सपनों के भारत के निर्माण की अपील की। उन्होंने कहा ये बच्चे हमारे हैं और ऐसी भाषा जो उन्होंने इस्तेमाल की थी ये सभी समाज में सही नहीं है। बेटियां हमारी ऐसी भाषा कैसे बोल सकती हैं? मैं गाली देने वाले बच्चों को माफ करता हूं। तो पिछले 9 दिनों में यानी जब से जंतर मंतर का ये आंदोलन हुआ उसके बाद से 5 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना संदेश जारी कर चुके हैं। इंस्टाग्राम पर आते हैं, सोशल मीडिया पर आते हैं, पेपर लीक बिल पर एक्शन की बात उन्होंने कई सुझाव के लिए, फिर शुक्रिया दिया एक छोटा सा 24 जुलाई को आया, फिर उसके बाद 26 जुलाई को हाई पावर टास्क फोर्स के गठन की उन्होंने बात कही, बिल पास होने पर संदेश उन्होंने दिया 30 जुलाई 2026 को, और अब 31 तारीख को यानी कल रात 11 बजे के करीब पीएम मोदी एक बार फिर आते हैं और अपनी बात रखते हैं।

0: नीट पेपर लीक पर छात्रों का प्रदर्शन, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और सियासत के बीच पीएम मोदी लगातार जेंजी से संवाद कर रहे हैं। नए कानून के तहत लगातार शिक्षा व्यवस्था में सुधार का भरोसा दे रहे हैं और अब इस कड़ी में पीएम मोदी ने जेंजी से संवाद में उस मुद्दे का जिक्र किया जिसने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पूरे देश को शर्मसार कर दिया। शुक्रवार देर रात पीएम मोदी एक बार फिर इंस्टाग्राम पर लाइव आए, जंतर मंतर पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर बात की और युवाओं की भाषा पर चिंता जताई।
1: जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया।
0: पीएम मोदी ने नई पीढ़ी की ऐसी भाषा पर दुख जताया, इसे समाज के लिए चिंताजनक बताया, सुधार की अपील की और गाली देने वाले छात्रों को माफ करने की बात कही।
1: हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती है, लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं।
0: बीते 9 दिनों में छात्रों और पेपर लीक के मुद्दे पर पीएम का ये 5वां वीडियो संदेश है। एक बार फिर पीएम ने छात्रों से संयम, संवाद और सकारात्मक रास्ता अपनाने की अपील की।
1: मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है।
0: नीट पेपर लीक के बाद छात्रों को जबरदस्त गुस्सा था जिसका असर जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन में साफ दिखा। पुलिस छात्रों में झड़प के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई, लेकिन इस प्रदर्शन के बीच सरकार ने एक्शन में तेजी की। नया बिल आया, कानून बना, पेपर लीक रोकने के खाके तैयार हुए। अब पीएम मोदी उन छात्रों को सही दिशा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने आंदोलन के दौरान भाषा की सीमा पार की। आज तक ब्यूरो। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर संसद में छिड़े नए सियासी संग्राम की बात करते हैं। शुक्रवार को संसद परिसर से अनोखी तस्वीरें आपने भी देखी होगी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर सांसद पप्पू यादव साधु के वेश में थे, विरोध किया, कुछ विपक्षी सांसद भी शामिल हुए, राहुल गांधी भी थे उसमें। अब इस पर सियासत बहुत तेज हो गई।
2: संसद परिसर में अयोध्या चंदा चोरी का मुद्दा विपक्ष ने नाटक का मंचन करके उठाया, जहां पप्पू यादव साधु के भेष में दान पेटी के साथ पहुंचे, जिसमें राहुल गांधी समेत विपक्ष के नेताओं ने सांकेतिक चंदा डाला, जिसके बाद पप्पू यादव दान पेटी लेकर भागने की कोशिश करते हैं, जहां उन्हें अयोध्या से आने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद पकड़ते हैं। पप्पू यादव के इस नाटक पर लोकसभा स्पीकर ने नाराजगी जताई, पप्पू यादव के आचरण को संसदीय भावना के खिलाफ बताया।
3: नहीं, वो तो स्पीकर साहब ने कह दिया कि ये रंग बदल बदल के, कपड़े बदल बदल के प्रदर्शन करने का जगह नहीं है, थोड़ा सीरियसनेस दिखाना चाहिए। आप सांसद है तो सांसद की तरह व्यवहार करना चाहिए, नाटक करने का जगह नहीं है। स्पीकर साहब ने कह दिया है, अलग से मुझे कहने का जरूरत नहीं है।
2: वहीं बीजेपी भी पूरे मामले को लेकर विपक्ष पर हमला कर रही है।
4: वो तो काले नेमी का वेश धारण करके आए थे और पूरे सदन ने इसकी निंदा की। तो ये सवाल उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि त्रेता युग के राम को हमला है, राम राम जपियो रे सब माल हरपियो रे, आप भगवान के आस्था के साथ ही नहीं 154 करोड़ भारत के उस आस्था के साथ खिलवाड़ किए हैं जो राम के, जो राम को अपने जीवन में, कर्म में, चरित्र में, चिंतन में रखते हैं।
5: हमारे देश का, इन राजनीतिक पार्टियों का, कांग्रेस हो या सपा हो, जो वोट के खातिर सनातन को बदनाम करने का काम किया है, इसका बदला सनातन लेगा।
6: आपके माध्यम से देश का आम जनमानस देखे कि आखिर अयोध्या में क्या हुआ है। हम लोग तो विपक्ष के लोग हैं, जनता की आवाज उठाते हैं, जनता को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से अयोध्या में हुआ है, क्योंकि जो लोग मौके पे नहीं थे वो नहीं देख सकते, अब तो सीसीटीवी भी डिलीट हो गए हैं।
2: उधर संत समाज ने भी पप्पू यादव को लेकर सवाल खड़े किए हैं।
7: महामहिम राष्ट्रपति महोदया और लोकसभा अध्यक्ष दोनों से यह मांग करूंगा कि ऐसे सांसदों की संसद सदस्यता बर्खास्त होनी चाहिए।
8: इन्होंने अपराध किया है, इन्होंने पाप किया है। आप जरा बताइए कि जिन लोगों ने मंदिर में दान चोरी किया है, क्या वो भगवाधारी थे? वो तो आठों जेल गए, भगवा साधु तो थे नहीं। और यह आप जरा देखिए कितने दुर्भाग्य है। और हमें तो लगता है कि पूरे विपक्ष में एक और दो पप्पू नहीं है, पूरा विपक्ष ही पप्पू हो चुका है।
2: राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर समाजवादी पार्टी पिछले दो दिनों से दान पेटी के साथ प्रदर्शन कर रही है, जिसमें आज पप्पू यादव की एंट्री ने नया सियासी घमासान शुरू कर दिया। आज तक ब्यूरो।
9: वक्त अब हेडलाइंस का,
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
11: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: जंतर मंतर प्रदर्शन पर पीएम मोदी का छात्रों के नाम वीडियो संदेश, कहा मुझे मेरी मां को गाली दी गई, गुमराह बच्चों को करना चाहता हूं माफ, मिलकर बनाएं सपनों का भारत। प्रधानमंत्री मोदी का मिशन आंध्र प्रदेश, भोगपुरम में एयरपोर्ट का उद्घाटन, 18,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में टारगेट किलिंग, दो गैर कश्मीरी मजदूरों को आतंकियों ने गोली मारी, दोनों की मौत, इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में 200 रुपए से ज्यादा की कटौती, दिल्ली से कोलकाता तक घटी कीमतें, दिल्ली में 2728 रुपए का मिलेगा 19 किलो का सिलेंडर। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का दमदार प्रदर्शन, जूडो में डबल गोल्ड और नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में जीता सिल्वर, 5 गोल्ड समेत कुल 23 पदक, बॉक्सिंग और एथलेटिक्स में गोल्ड की उम्मीद।
1: होम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री डज नॉट हैव द करेज टू कम एंड सिट हियर।
2: कि कहीं भी गोली चलाने का आदेश कोई मंत्री नहीं देता, वो मैजिस्ट्रेट देता है, एसडीएम देता है, डीएम देता है।
3: एंड AK-47 यूज्ड इन
4: भ्रम पैदा करने के लिए सदन का दुरुपयोग किया गया। राहुल गांधी जी को गृह मंत्री नहीं, देश से भी माफी मांगनी चाहिए।
5: बेसिकली वो मिसलेड द हाउस, यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह मिसलेड द हाउस। वी आर गोइंग टू मूव ए प्रिविलेज मोशन अगेंस्ट हिम।
6: आपको 10 बजे के करीब पापा के कलीग्स उन्हें घर लेके आए और उनकी यूनिफॉर्म पूरी खून से लाल थी।
7: प्रोटेस्ट में छात्रों के साथ साथ कुछ शरारती तत्व और असामाजिक तत्व भी थे।
8: जब मैंने फोटो देखी तो उनके हेड को शेव कर रखा था और उनके हेड पे लाइक स्टिचेस लग रहे थे 4।
9: छात्रों के साथ और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का या उससे समझौता करने का मौका नहीं दिया जाएगा।
10: फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा।
11: नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। पेपर लीक का बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के पास हो चुका है, लेकिन संसद की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। कांग्रेस महासचिव और सांसद केसी वेणुगोपाल ने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह पर संसद को गलत जानकारी देने का आरोप लगाकर विशेषाधिकार हनन का मुद्दा उठाया है। इसे बीजेपी के दाव का जवाब माना जा रहा है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी की लोकसभा की स्पीच में गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ कहे गए शब्दों और दो असंसदीय शब्दों का आरोप लगाकर स्पीकर को विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने की चिट्ठी लिखी है। सवाल यह है कि पेपर लीक के मुद्दे पर सियासत का कौन सा चैप्टर अब खुलने वाला है। इस बीच सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान घायल पुलिस वालों के परिवार वालों ने संसद से पूछा है कि हमारा मुद्दा क्यों नहीं उठाया जाता है। मेरे देश की संसद हमारी चोटों पर, हमारे परिवार वालों की चोट पर मौन क्यों है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में घायल पुलिस अफसर की पत्नी, एक एसीपी का बेटा, एक और पुलिस अफसर की बेटी ने अपना दर्द बयां किया। सवाल यह है कि क्या राजनीति ने कॉकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट पर सिर्फ एक पक्ष देखा है। ड्यूटी कर रहे घायल पुलिस वालों के गुनहगारों पर बात क्यों नहीं हो रही है। संसद में विशेषाधिकार पर लड़ाई, घायल पुलिस पर चुप्पी, यही आज हल्ला बोल का विषय। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सांसद बीजेपी के आलोक शर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ गए हैं, आशुतोष जी हमारे साथ जुड़ गए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, और रोहित सिंह राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ गए। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, ये रिपोर्ट, विशेषाधिकार पर लड़ाई, घायल पुलिस पर चुप्पी।
12: द यूज ऑफ फोर्स कैन ओनली बी ऑथराइज्ड बाय द होम मिनिस्टर।
13: के गोली चली ही नहीं, गैस, टीयर गैस का इस्तेमाल हुआ।
11: पेपर लीक के खिलाफ नए बिल ने संसद की परीक्षा तो पास कर ली।
12: द करेज टू कम एंड सिट हियर।
11: लेकिन लोकसभा में राहुल गांधी और जितेंद्र सिंह की स्पीच के हिस्से सियासत का नया सवाल बन गए। पहले अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया, तो अब के सी वेणुगोपाल ने जितेंद्र सिंह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव स्पीकर को भेजा है। अनुराग ठाकुर के प्रस्ताव में कहा गया है, रूल 352 का उल्लंघन कर राहुल गांधी ने असंसदीय शब्दों इडियट और अंधभक्त का इस्तेमाल किया। रूल 353 का उल्लंघन कर केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ गंभीर निराधार आरोप लगाए और मोशन से हटकर टिप्पणियां की। राहुल गांधी के खिलाफ आए प्रस्ताव का जवाब माने जा रहे केसी वेणुगोपाल के प्रस्ताव में कहा गया, कोई गोली नहीं चलने का झूठा दावा कर मंत्री ने जानबूझकर संसद को गलत जानकारी दी और सदन को गुमराह किया।
14: मनगढ़ंत एलिगेशंस लगाते हैं जो नियमों के खिलाफ है, उसके लिए भी मैंने नोटिस दिया है। रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस लोकसभा के रूल 222 को देखते हुए और रूल 223 और उसके खिलाफ मैंने स्पीकर साहब को कहा कि उसके ऊपर कार्रवाई करें।
5: तो हाउ कैन ए मिनिस्टर मिसलेड द हाउस लाइक दिस? स्टूडेंट्स नो अबाउट इट, नेशन नो अबाउट इट, नाउ ही इज टेलिंग दिस इज नॉट यूज्ड।
11: पेपर लीक के मुद्दे पर सीजेपी के प्रदर्शन से लेकर संसद तक का संग्राम छिड़ गया, तो उधर अब सीजेपी प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिस वालों के परिवार वालों ने अपनी आवाज उठाई है। परिवार वालों का आरोप है कि छात्रों के बीच अपराधी भी थे, पुलिस सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रही थी। परिवार वालों ने सवाल किया कि घायल पुलिस वालों पर संसद मौन क्यों है।
6: He was unconscious at the RML hospital for about 4 hours. रात को 10 बजे के करीब पापा के कलीग्स उन्हें घर लेके आए और उनकी यूनिफॉर्म पूरी खून से लाल थी। उन्हें ऐसे देख के हमें हमारे लिए बहुत पेनफुल था।
15: 20 जुलाई की रात देर रात जब वो घर पहुंचे चोटिल हालत में, वो क्षण मेरी और मेरी बेटी 2 साल की बेटी के लिए बहुत ही दर्दनाक बहुत ही ट्रॉमेटिक था।
16: जो पुलिस कर्मी है और उनके जो परिवार हैं उनके बारे में भी संसद में कुछ मतलब उनके राइट के बारे में या उनकी ड्यूटी पे जो उन पर हमले होते हैं उनके बारे में संज्ञान लिया जाए।
11: पुलिस वालों के परिवार ने गंभीर मुद्दा खड़ा किया है, लेकिन राहुल गांधी से जब इस पर पूछा गया तो उनकी प्रतिक्रिया ये रही।
17: राहुल, जो पुलिस वाले घायल हुए थे उनके परिवारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए।
18: बीजेपी के हो गया?
17: नहीं, बीजेपी का नहीं, पुलिस वाले की जो परिवार वाले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए।
18: राहुल जी, जो पुलिस वालों के परिवार वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, पुलिस वालों की आवाज तो उठाई है सर। जो पुलिस वाले बोले वो तो सुनिए सर, एक बार बता दीजिए। पुलिस वाले भी घायल हुए राहुल जी, जो मार्च हुआ था 20 जुलाई को। आप चुप है, आप
11: पेपर लीक के आक्रोश पर राजनीति के पाले खींच गए हैं, ये साफ नजर आ रहा है।
19: देखिए, पुलिस वाले भी इंसान हैं, उनका परिवार भी इंसान है।
11: पेपर लीक के मुद्दे और उसके बाद प्रदर्शन और सियासत ने एक नई बहस खड़ी की है। उधर नए पेपर लीक बिल को संसद की मंजूरी के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने जेएनजी से एक और सीधा संवाद किया।
10: फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा।
11: पेपर लीक की समस्या गंभीर है और सरकार तक ये बात पहुंच गई है। आज तक ब्यूरो। तो सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आलोक शर्मा जी जुड़ गए हैं, आशुतोष जी जुड़ गए हैं और हमारे साथ रोहित सिंह जी जुड़ गए हैं। लेकिन शुरुआत सांसद जी आपके साथ कर रहे हैं, क्योंकि आपने राज्यसभा में इस पर बोला भी और बहुत पैशनेट तरीके से बोला, लेकिन ये नोटिस वर्सेस नोटिस की लड़ाई बन गई है। ऐसा लग रहा है बच्चे पीछे छूट गए हैं और आज घायल पुलिस वाले आए हैं, उनके परिवार वाले आए हैं। पुलिस वाले तो खुद वर्दी की वजह से नहीं सामने आ सकते, लेकिन परिवार वाले आए हैं, वो बता रहे कितने टाके सिर में लगे हैं। संसद इस पर मौन क्यों है?
20: देखिए, बच्चे कांग्रेस की स्कीम ऑफ थिंग्स में थे ही कब, जब अनशन चल रहा था 20 दिनों तक, राहुल गांधी जी धरती के किसी अज्ञात कोने पे आनंद मंगल करते हुए विचरण कर रहे थे। एक भी कंसर्न का एक स्टेटमेंट था नहीं। अचानक संसद शुरू होने से 2-3 दिन पहले धरती पे अवतरण करते हैं और प्रधानमंत्री आवास पे जाके लोटपोट होने लगते हैं। छात्रों ने कहा भी कि आइए, जंतर मंतर गए क्या? नहीं गए। कभी प्रधानमंत्री आवास पे गए, कभी गांधी स्मृति में गए, कभी इंदिरा भवन में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनको अपना फुटेज खींचना था, वो बच्चों से कंपटीशन में थे। कि कैसे इन्होंने इनको ज्यादा फोकस मिल गया है, तो मैं अपनी तरफ फोकस कर लूं, बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है। इसीलिए उन्होंने कभी इस कंसर्न को नहीं उठाया। दूसरा उदाहरण देखिए, दूसरी तरफ हमारी सरकार पूरी संवेदनशीलता से काम कर रही थी। सोनम वांगचुक जी का अनशन समाप्त कराने के लिए नड्डा जी, जितेंद्र सिंह जी गए, उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा की, देर रात्रि में बच्चों के लिए अपना संदेश किया, फिर बिल पास किया कैबिनेट ने, और हमने संसद में प्रस्ताव पारित कर दिया, संसद में विधेयक बना दिया। तो अगर देखें तो हमारी अप्रोच अलग थी। इनकी क्या है, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो गया तो ऐसे बच्चे मचल जाते हैं ना, कोई बराबर बोला अरे नहीं नहीं इतना क्रेडिट उनको, तो मैं थोड़ी और बड़ी बात करूं, तो अमित शाह जी के बारे में अनाप शनाप अपशब्द करना शुरू कर दिया। अब आप ये बताइए, इडियट शब्द उन्हें स्पष्ट करना चाहिए किसके लिए है। अगर वो कहते हैं कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया, तो मैं पूछना चाहूंगा हमारे कांग्रेस के मित्र से कि बाल बुद्धि शब्द को छत्तीसगढ़ विधानसभा ने असंसदीय घोषित कर दिया था। अब छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्य तो राहुल गांधी जी थे नहीं, न वहां भी नाम लिया गया था, तो किस कैपेसिटी में क्या मान के छत्तीसगढ़ विधानसभा ने बाल बुद्धि को असंसदीय घोषित कर दिया था। दूसरी बात, आपने कहा कि गृह मंत्री जी ने बच्चों को मारने के लिए फायरिंग ऑर्डर किया, शूटिंग करवाई। अब शूटिंग का मतलब क्या है, सीधे की मतलब आपने गोली चलवाई, अरे ये तो आप सदन को सीधे मिसलीड कर रहे हैं, इसका कोई आधार होना चाहिए। अब जो कांग्रेस ने दिया विशेषाधिकार, उस पर सोचिए क्या मजाक की बात है। वो कह रहे हैं पैलेट गन अगर चली है तो ये शूटिंग है और इसका ऑर्डर उन्होंने दिया था। मैं पूछना चाहता हूं आपके लाखों दर्शकों से, जब शूट एट साइट कहा जाता है उसका मीनिंग क्या होता है, दिखते ही गोली मारो, ये नहीं होता है कि दिखते ही कैमरा देख के शूटिंग कर दो। इस ढंग के बचकाने आधार के ऊपर अगर कोई बचाव करना चाहे, इसका मतलब छात्र हितों से उसका कोई संबंध नहीं है और इसके ऊपर केवल अपना फ्रस्ट्रेशन, अपना नजला उतार रहा है। मैं अंत में अंजना जी अभी कहना चाहूंगा, हाँ बहुत वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं, पुराने सबको ध्यान होगा, आशुतोष जी तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, युवाओं की एक क्रांति जेपी के नेतृत्व में भी हुई थी, तो ये बताइए तब युवाओं को भरोसा था ना इस देश के नेतृत्व पे, तो युवा किसके पास गए थे, जयप्रकाश नारायण के पास, जॉर्ज फर्नांडिस, अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंह, ये सब नेतृत्व कर रहे थे, चंद्रशेखर जी, और इन्होंने विषय उठाया था, और एक तोड़फोड़ की घटना हुई हो कहीं बताइए, एक गाली गलौज की घटना हुई हो तो कहीं बताइए। आज वास्तविकता यह है कि छात्रों को विश्वास नहीं है विपक्ष पे, इसलिए वो अपनी राह चल रहे हैं, और चूंकि अपनी राह चलते हुए उन्हें दिख रहा है, इनको लग रहा है कि सरकार का विरोध ज्यादा प्रबल दिख रहा है, तो केवल माइलेज पाने के लिए छटपटाहट में, बौखलाहट में और खिसियाहट में इस ढंग की चीजें दिखा रहे हैं। हमारी सरकार संवेदनशीलता के साथ समाधान की ओर बढ़ रही है और ये लोग कुटिलता के साथ घमासान की ओर बढ़ रहे हैं।
11: चलिए ठीक है आलोक जी, अब आप आइए जवाब दीजिए। बात सवाल ये भी पूछा है उन लोगों ने कि संसद में हमारा मुद्दा क्यों नहीं उठ रहा है। देखिए विपक्ष घायल छात्रों का तो मुद्दा उठा रहा है, लेकिन ये पुलिस वाले जिनको चोटें आई हैं उस पर क्यों चुप्पी है।
0: देखिए मुझे लगता है कि इसके ऊपर तो गृह मंत्रालय को सबसे पहले बयान देना चाहिए। गृह मंत्रालय ने आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी भी रूप में नहीं की, गृह मंत्रालय को भी सबसे पहले आवाज उठानी चाहिए। गृहमंत्री तो स्वयं संसद से भागे हुए हैं, सारी जिम्मेदारी विपक्ष की है, संवेदनशीलता भी विपक्ष दिखाए, विपक्षी सबकी आवाज भी उठाए, ये मंत्री तो पता नहीं किस काम के लिए बने हुए हैं। संवेदनशीलता ये है इनकी कि जब तक पूरी लाठीचार्ज और सब कुछ नहीं हो गया, जब तक जितेंद्र सिंह अपने घर से नहीं निकले थे, उसके बाद सब जागे थे कि अरे ये क्या हो गया। इनको अंदाजा नहीं था कि बच्चे इतने नाराज हैं, जिस तरह से बच्चों की अभिव्यक्ति आई और पुलिस का रिएक्शन और पुलिस ने जिस तरह से तुड़ाई की। अरे वो डीसीपी था, वो थप्पड़ मार रहा है महिलाओं को, क्या वो भी कांग्रेस की वजह से मांग मार रहा है भाई। 2 महीने से इस्तीफे की डिमांड हो रही थी, क्या वो भी बच्चों की तरफ से नहीं थी। क्या 2 महीने से कांग्रेस पार्टी तमाम मोर्चों पर डिमांड नहीं कर रही थी छात्र की गूंज के माध्यम से। समाधान अगर आपको निकालना होता तो 2024 में जो पेपर लीक हुआ था उनके जो कल्प्रिट थे उनको जेल में डाल देते। आप लोग तो केवल पीआर करने में बिजी रहते हैं। अब आनंद मंगल विदेशों में जाके कौन करता है ये तो पूरा देश जानता है। विदेशों में लोटपोट कौन होता है और खी खी कौन करता है ये भी पूरा देश जानता है। और मेलोडी कौन खेलता है ये भी पूरा देश जानता है। लेकिन आज का वो विषय नहीं, एक निरर्थक बिल लेकर आए हैं आप सरकार को और आरएसएस को बचाने के लिए, जिस बिल में कहीं पर ऐसा प्रोविजन नहीं है कि पेपर लीक कैसे रुकेगा। उसके अंदर हमें तो कहीं दिखानी है भाई, पेपर लीक हो जाएगा तो हम इतनी सजा दे देंगे। अरे भाई पेपर लीक हो ही जाएगा तो आप फिर 2 करोड़ की पेनल्टी लगाएं, 10 की लगाएं, 5 की लगाएं, उससे कितना फर्क पड़ेगा। आप किसी को 7 साल जेल में रख दिए, किसी को 5 साल जेल में रख दीजिए, लेकिन पेपर लीक कैसे रुकेगा एनटीए की कार्य प्रणाली के ऊपर, एनटीए को भंग करने के ऊपर आप उस बिल के अंदर कुछ भी नहीं लेके आए, क्योंकि एनटीए मतलब आरएसएस, एनटीए में सारे वो लोग दागी भरे हुए हैं जो आरएसएस के मुखपत्र के अंदर काम करते हैं, पूरी तरह से आरएसएस के मुखपत्र है। आप उसके ऊपर एक शब्द नहीं बोले, जो जिस तरह से सीक्रेसी और बायोमेट्रिक्स और तमाम जो काम करती एजेंसी है उसकी कार्यप्रणाली पर एक शब्द नहीं है। हमने तो कहा था जिस समय पर 2013 में प्रपोज हुआ था कि इस तरह की एक ऑर्गेनाइजेशन बने, आप चार साल तक उस पर बैठे रहे, 13 से लेकर 17 तक, और 17 में आपने एक एनजीओ को सारा कुछ दे दिया। अरे भैया, पार्लियामेंट से एक पास करते कि हम यूपीएससी की तरह, एसएससी की तरह, सीबीएसई की तरह एक टेस्टिंग एजेंसी अलग से बनाते हैं और इसमें इस तरह के लोग होंगे, ये चयन की प्रक्रिया होगी और ये हमारा मॉडल्स अप्रेंडी होगा, इस तरह से पेपर सेट होगा, इस तरह से हम टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, इस तरह से एआई का यूज करेंगे, एक दिन पहले 12 घंटे पहले पेपर फाइनलाइज होगा, उसके ऊपर तो सब कुछ खामोश है, मौन है, और उल्टा आप धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत करवा रहे हैं। मतलब निर्लज्जता देखिए, आज 20 तारीख से 31 तारीख हो गई, 12 दिन हो गए, आज 12 दिन तक ये नहीं पता चला कि वो पायलट गन किसके आदेश पर चली। गृह मंत्रालय की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, ट्विटर
11: सुधांशु जी तीन बड़ी बातें हैं जो आलोक जी पूछ रहे हैं। रुकिए आलोक जी आप ही की बात पूछ रहे हैं। एक तो पैलेट गन पे क्लैरिटी, चली किसके आदेश पर, चली कहां चली। दूसरी बात जो वो कह रहे हैं कि भाई गृह मंत्रालय भी तो पुलिस वालों का एक खाका देना भी कि ये हुआ है, इनको चोट लगी है। वो कह रहे हैं दिल्ली पुलिस तो ट्विटर पर जवाब देती है। हालांकि आलोक जी अगले राउंड में आऊंगी तो बताइएगा, राहुल जी से दो बार सवाल पूछा गया, एक बार तो उन्होंने पत्रकार को कह दिया कि बीजेपी वाले हो, नेक्स्ट राउंड में जवाब दीजिएगा। लेकिन तीन पैलेट गन पर सवाल और जो अन्य दो सवाल है उसका जवाब दीजिए सुधांशु जी।
20: हाँ देखिए, पहली बात, कितनी मूर्खतापूर्ण बात कांग्रेस के लोग करते हैं कि रोकने का प्रावधान कानून में। अरे कानून में रोकने का प्रावधान क्यों होता है? कल के दिन आप कहेंगे हत्या के लिए कड़ा कानून होता है, आजीवन कारावास या फांसी, आप कहेंगे आप चाहे फांसी दे दो चाहे आजीवन कारावास दे दो, हत्या तो हो गई। इस ढंग के हल्के बचकाने हास्यास्पद तर्क वही दे सकता है जो राहुल गांधी जी के प्रभाव में हो। अब पैलेट गन पे आता हूं। पैलेट गन के विषय में सबको पता होना चाहिए, पैलेट गन छर्रे की तरह निकलती है, बाराबोर के छर्रे की तरह छितरा के निकलते हैं। अगर पैलेट गन चार फायर भी हुआ होता तो एक व्यक्ति घायल नहीं हो सकता था, कम से कम दर्जनों लोग घायल होते, क्योंकि जब वो छर्रे छितरा के जाते हैं और वो होते तो वो कम से कम उस भीड़ में, जैसी डेंस भीड़ दिख रही थी,
11: तो
20: 10-15-20-25
11: सुधांशु जी मेडिकल रिपोर्ट में
20: 4-6 राउंड भी फायर हो गए।
11: सुधांशु जी आपको टोक रही हूँ, मेडिकल रिपोर्ट हमने दिखाई आज तक, पर हमारे रिपोर्टर की स्टोरी थी, मेडिकल रिपोर्ट में फिर कैसे लिखा हुआ है पैलेट इंजरी?
20: हाँ, मैंने ये बात बिल्कुल, हो सकता है कहीं पर किसी के पास रखी हो और उस पर्टिकुलर जगह चल गई हो। मैं आप मेडिकल रिपोर्ट कह रही, मैं फिजिक्स की रिपोर्ट बोल रहा हूं। कोई बता दे कि कोई चीज जो छितरा के वाटर कैनन की तरह जाती हो और उस भीड़ में, और वो वाटर कैनन का पानी एक ही व्यक्ति को लगेगा, बाकी किसी को नहीं लगेगा। मेडिकल रिपोर्ट कहेगी कि ये गीला हुआ है। तो हो सकता है कोई किसी के बगल में खड़ा हो, किसी से बगल में कोई मान लिया ट्रिगर दब गया हो, किसी पर्टिकुलर को लगा हो, वो वहां पे था, किस
11: तो
20: जगह पे था, क्या था, वो
11: एक अलग जांच बताएगा।
20: तो एक सिंपल सी बात कह रहा
11: हूं, ये कौन बताएगा, ये कौन बताएगा?
20: तो आप सुनिए, इसमें आप बताने की बात तो कह रहे हैं, दिल्ली पुलिस ने तो कहा कि पैलेट गन तो उनके पास है ही नहीं, वो तो स्पष्ट कह दिया गया। मगर मैं एक और बात कहता हूं अंजना जी, सवाल पुलिस से ही पूछेंगे ये, और इसलिए यहां पर जो बच्चे हैं वो तो भले ही इमेच्योर थे, उनको उतनी व्यवस्था नहीं थी कि उनके सिस्टम में किस ढंग से अपराधी घुस गए। अगर पॉलिटिकल पार्टी का होता है तो वहां पे व्यवस्था रहती कि वो ना आए, और बच्चों की मैच्योरिटी देखिए, उनका एक प्रवक्ता बेचारा बर्गर खाते पकड़ लिया गया तो उसके लिए हटा दिया गए। सोनम वाकचुंग ने कहा कि मैं भूख हड़ताल में बैठा था, मेरे सामने बैठे लोग पूरी सब्जी खा रहे थे। मगर इनको छोड़िए, ये पुलिस के प्रति असंवेदनशील है वो तो सामान्य है अंजना जी, ये तो भारत की सेना अध्यक्ष को सड़क छाप गुंडा बोल चुके हैं।
11: अब आप जवाब दीजिए आलोक जी, और जो सवाल इसके हाथ में आशुतोष जी और रोहित जी आप दोनों के पास आऊंगे। आलोक जी आप जवाब दीजिए और मेरी बात कभी दीजिएगा। आपने कहा कि सारा ओनस विपक्ष पे नहीं हो सकता, लेकिन आप तो हाई मॉरल ग्राउंड क्लेम कर रहे हैं ना, ऐसे में आप सिर्फ एक तरफा बात क्यों कर सकते हैं? और जब आज पूछा गया राहुल जी से, दो बार पूछा गया, उन्होंने जवाब नहीं दिया इस पर।
0: अंजना जी होने को तो मैं सीधी बात यही कहना चाहूंगा कि आज की हालात क्यों बनी, उसके लिए जिम्मेदार भी क्या विपक्ष है? क्या पेपर लीक के लिए भी विपक्ष है? क्या पेपर लीक के बाद जो बच्चे इकट्ठे हुए वो विपक्ष ने बुलाए थे? एक भी तो चीज विपक्ष के ऊपर नहीं है। विपक्ष तो बार बार कह रहा है भाई इसकी कौन जिम्मेदारी लेगा, अकाउंटेबिलिटी किसकी है। अगर अकाउंटेबिलिटी पहले ले ली गई होती तो हमारे पुलिस के नौजवानों को भी ये दिन नहीं देखना पड़ता, उनको भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी पड़ती। दुर्भाग्य यह है कि पैलेट गन एक सांसद कह रहे हैं टीवी पर बैठ के, हो सकता है चल गई हो, ट्रिगर चल गया हो सकता है। मतलब इतनी संवेदनहीनता एक सांसद आज तक पे बैठ के कर रहा है, ये तो केवल बैल बुद्धि का ही प्रभाव हो सकता है, कोई बैल बुद्धि के प्रभाव में ही हो।
11: रोहित जी जल्दी से कमेंट उनकी बात पर, वो कह रहे हैं कि पुलिस वालों के लिए नहीं आएगी इस तरह की संवेदनाएं क्योंकि उधर से निर्मम व्यवहार हुआ है छात्रों के साथ।
1: देखिए मैं बड़ी जिम्मेवारी और जवाबदेही के साथ देश के जनमानस के मन में जो बातें आ रही हैं उसको आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता ने यह कहा कि पुलिस के वेश में संघ के कार्यकर्ताओं के बारे में इन्होंने चर्चा की, देश ये मान रहा है कि 20 दिनों तक श्रीमान राहुल गांधी जी जो लोकसभा में सम्मानित नेता प्रतिपक्ष हैं वो गायब थे भारत के पटल से, श्रीमान अखिलेश यादव जी नदारद थे, तेजस्वी यादव तो गोविंद गौन का सर्टिफिकेट लेकर घूम रहे थे, आदरणीय सोनम वांगचुक जी से और विद्यार्थियों से मिलने कोई नहीं गया, पार्लियामेंट के 24 घंटे पहले इमरजेंसी लैंडिंग होती है और पूरा प्रपंच रचा जाता है। देश का मानना है कि कांग्रेस पार्टी ने देश की स्थिर सरकार को, लोकप्रिय सरकार को अस्थिर करने के लिए विदेश के लोगों के सहयोग से, या यूं कहें तो सोरोस जैसे लोगों के सहयोग से, देश के अंदर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को पुलिस के बीच में भेजकर इस प्रकार के कुकृत्य को अंजाम दिया है। और जो पैलेट गन की बात आ रही है, मैं जिम्मेवारी से यह आरोप लगा रहा हूं कांग्रेस के ऊपर, मैं देश की सरकार से अपील करता हूं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना और झारखंड के पुलिस ट्रेजरी को चेक कराना चाहिए जहां हथियार रखा जाता है, कहीं वहां से या उसके संबंध से कोई पैलेट गन वहां से तो लाकर कांग्रेस ने यह चक्रव्यूह तो नहीं रचा, क्योंकि कांग्रेस का इतिहास इमरजेंसी में रहा है, कांग्रेस का इतिहास सिख दंगों में रहा है, कांग्रेस के हाथ हमारे यहाँ बिहार के भागलपुर के दंगे में सने हुए हैं, ये लोग खून की होली और दिवाली खेलते हैं, कैसे कैसे लोग को आप सर्टिफिकेट दीजिएगा, कैसे लोग को, आप कैसे लोग हैं, आपके नेता कैसे लोग हैं, सर्टिफिकेट मत बांटिए, आप भारत के चरित्र प्रमाण पत्र के पदाधिकारी नहीं है कि आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट निर्गत कीजिएगा और देश का चौथा स्तंभ आपके चरित्र प्रमाण पत्र निर्गत करने के उपरांत निर्णय लेकर तय करेगा कि कौन बैठेगा कौन नहीं।
11: कह रहे कि एक स्थिर सरकार को किसी ना किसी तरीके से अनरेस्ट कॉज करने के लिए ये सब पॉलिटिकल पार्टीज ने फ्यूल किया है, इसको कराया है इस तरह से, और पुलिस वालों का जो आज दर्द आया है उस पर मैं चाहती हूं आप भी बोले।
21: सॉरी मैं ये रोहित सिंह जी राजनीतिक विश्लेषक है ना, अच्छा हाँ ठीक है सॉरी, मैं तो समझा था कुछ और। देखिए पहले तो सरकार ने यह कहा कि पेपर लीक नहीं हुआ, बाद में मंत्री का इस्तीफा देना पड़ा, अब सरकार कह रही कि पायलट गन का इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन पुलिस की जीडी एंट्री में तो साफ तौर पर लिखा हुआ है कि 1:26:22 को पायलट गन का इस्तेमाल हुआ और डीसीपी की मौजूदगी में हुआ। असल सवाल यह नहीं है, असल सवाल यह है, ये हम लोगों को आपस से पूछना चाहिए कि कब सरकार पुलिस और सेना की मदद लेने लगती है और कब वो नागरिकों से दूर हटती चली जाती है। वो जो मासूम बच्चे थे सड़कों के ऊपर, अगर वो इतने ही अराजकतावादी थे, इतने ही एंटी सोशल एलिमेंट्स थे, इतने ही धर्म विरुद्ध थे, इतने ही गालीबाज थे, पाकिस्तान परस्त थे, गुंडे मवाली थे, तो सरकार ने उसके सामने सरेंडर क्यों किया? सरकार ने तो सरेंडर किया ना, उनके सामने इस्तीफा दिया। अब चूंकि मामला फंस गया है कि धर्मेंद्र प्रधान के बाद अमित शाह के इस्तीफे की मांग होने लगी है, छात्र गंभीरता के साथ इस्तीफा मांग रहे हैं और अमित शाह के साथ अब जिंदगी भर यह लगा रहेगा कि आपने दिल्ली में छात्रों के ऊपर बर्बरता पूर्वक व्यवहार करने वाली सरकार में गृहमंत्री थे, ये उनका साथ छोड़ने वाला नहीं है। तो इसलिए अब नैरेटिव को बदलने की कोशिश की जा रही है। मेरा स्पष्ट तौर पर मानना है कि जब कोई सरकार नागरिक अधिकारों से हटके और उनके लोग ये कहने लगे कि जो आंखों के सामने दिखाई पड़ रहा है कि पायलट गन का इस्तेमाल हुआ, बच्चों की आंखें जा रही हैं, हाथ पैर टूटे हैं और उसमें इलेक्ट्रिक शेल्स का इस्तेमाल हुआ है, लकड़ी में लाठी में कीलों का इस्तेमाल हुआ है और सरकार प्रायोजित कार्यक्रम करवा रही है, तो ठीक है, करने दीजिए ना, देश की जनता इसको देख रही होगी अच्छी तरीके से।
11: सुधांशु जी जवाब।
21: और वैसे भी देखिए, मैं तो साफ तौर पर मानता हूं, इसमें कोई दो राय है नहीं, कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी कुछ भी गलत नहीं करती है। वो उसके सांसद संसद के अंदर गाली नहीं बकते हैं, उनके प्रवक्ता आज तक पर आकर खुलेआम गाली नहीं बकते हैं।
11: सुधांशु जी जवाब दीजिए, अचानक से ही आशुतोष जी रुक गया।
20: जवाब दे दो
11: आशुतोष जी। हाँ सुधांशु जी, लेकिन देखिए ना, पेलेट गन पर एक स्पेसिफिक जवाब दीजिए।
20: अब मैं बता,
11: देखिए लगातार किसी दिन कोई प्रवक्ता आता है कहता है पेलेट गन चला ही नहीं, आपने आज कहा कि हो सकता है चला हो। 22 तारीख को डीडी एंट्री में ये एंट्री की गई है कि भाई चला,
20: ऐसा करिए ना।
11: तो 20 तारीख जी एक सवाल इसे पूछ रही हूँ सर, 20 तारीख के इंसिडेंट का 22 तारीख को एंट्री, इसका क्या मतलब है?
20: हाँ तो आप सुनिए ना, अगर आपको स्पेसिफिक सवाल पूछना है तो दिल्ली पुलिस ने तो कहा कि उसके पास पैलेट गन है नहीं, तो आप रैपिड एक्शन फोर्स के प्रवक्ता को बुला लीजिए, क्योंकि आप तो बहुत टेक्निकल स्पेसिफिक बात करें, टेक्निकल स्पेसिफिक पूछ लीजिए। जो एक जनरल कॉमन सेंस से होता, वो मैंने बताया कि पैलेट गन में छर्रे छितरा के जाते हैं, जैसे वाटर कैनन यूज आती है। आप कोई कहे वाटर कैनन इतनी भयानक चली कि एक ही व्यक्ति गीला हुआ, अगल बगल वाले सब बच गए, तो कुछ लगता है कि हो सकता कोई बगल में फवारा छूट गया हो तो अलग बात है, अन्यथा ये समझ में आने वाली बात नहीं है, तो कॉमन सेंस की बात है। स्पेसिफिक पूछना है तो उनसे स्पेसिफिक पूछ लीजिए। मगर ये जो हमारे विरोधी लोग बहुत कहते हैं ना, आज राहुल गांधी बोले बीजेपी वाले हो क्या, तो मैं बताना चाहता हूं आशुतोष जी को भी, आलोक शर्मा जी को भी, इनके जो लोग वो रियल में बायस्ड हैं, अंधभक्त वो हैं, और इनकी पार्टी की तरह सोरस की गोद में बैठे। मैं तीन उदाहरण देता हूं। अंजना जी याद करिए, मणिपुर का विषय आया जहां वो एक महिला के साथ इतना अमानवीय व्यवहार हुआ, यह प्रश्न आप सब लोगों ने उठाया, नेशनल मीडिया ने उठाया, सबने भाजपा सवाल किया, मगर जब संदेश खाली आया चुप। राम मंदिर के ऊपर अभी पिछले एक महीने से लगातार हम लोग से सवाल किए गए, ये लोग भी चढ़ चढ़ के बोले, मगर वक्त बोर्ड पे इनके सारे लोग चुप। अब आइए आज के इस मुद्दे पे, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ, नीट के ऊपर विषय पे सारा मीडिया हमसे पूछ रहा है, मगर इन लोगों से पूछिए पंजाब पेपर लीक पे चुप, झारखंड पे चुप, कर्नाटक में चुप। बस ये तीन उदाहरण काफी है बताने के लिए असली अंधभक्त कौन है, और असली कौन है जो शहजादा की आंख का इशारा देख के बोलता है बोलो, बोलने लगे चुप रहो चुप हो जाए, बैठ जा बैठ गई, खड़ी हो जा खड़ी हो गई। और मैंने दूसरा उदाहरण दे दिया, यहां सबसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो कौन इंडिपेंडेंट है और कौन क्या है पूरी तरीके से समझा जा सकता।
21: महत्वपूर्ण सवाल क्या है? ठीक, महत्वपूर्ण सवाल है, क्या इस सरकार में किसी भी एक आदमी ने, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक और सुधांशु त्रिवेदी ने, जो बच्चा अंधा हो रहा होने वाला है उसके पक्ष में एक शब्द बोला है क्या? एक शब्द अगर बोला हो तो मैं मान जाऊंगा। और इस देश का संसदीय प्रणाली की हालत यह है कि देश में संसद चल रही है और गृहमंत्री जी गायब हैं, दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, और कह रहे हैं कि हम देश के अंदर बड़ा रिफॉर्म कर रहे हैं, प्रधानमंत्री गायब हैं। क्या कारण है कि इस देश के गृहमंत्री अमित शाह आज संसद के अंदर सदन में नहीं आ पा रहे हैं? क्यों? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि जब छात्रों के संबंधित इतनी बड़ी परीक्षा पर एक बिल पेश हो रहा हो तो वो उस बिल को फ्रंट इन करें, वो उस बिल में लीड करें, देश को बताएं कि जो वहां पे और जिन लोग और कह रहे हैं कि वहां 100 लोग 200 लोग आए थे, आपकी सरकार बैठ के वहां क्या पकौड़े तल रही थी क्या कि जब वहां एंटी सोशल एलिमेंट्स थे? कितने लोगों को आपने गिरफ्तार किया? सबने देखा कि एक सत्यम पंडित नाम का लड़का मासूम बच्चों को थप्पड़ मार रहा था, आपकी पुलिस तो गिरफ्तार नहीं कर पाई उसको। वो आदमी गदा लेके वहां घूम रहे थे जो मां बहन के वहां गालियां दे रहे थे, आपकी पुलिस तो गिरफ्तार नहीं कर पाई। सिर्फ स्टोरी प्लांट कर रहे हैं, सिर्फ स्टोरी प्लांट कर रहे हैं सुबह से शाम तक, और आपके मन में डर बैठ गया है कि अगर यह माहौल ऐसे ही बना रहा तो आप लोगों के लिए बहुत दिक्कत आने वाली है।
11: आलोक जी, आलोक जी
0: देखिए, मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को अचानक बदल देना, शायद उस दिन पहले वाले दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने हो सकता है कि इनके आदेश का पालन ना किया हो, दूसरा कमिश्नर आता है और अगले दिन लाठी चार्ज और सब कुछ हो जाता है, डीडी एंट्री को भी डिनाई कर देते हैं, एम्स की रिपोर्ट को भी डिनाई कर देते हैं, कह देते हैं हो साहब हो सकता है चला हो। महिलाओं की बात कर रहा था अभी हमारा एक साथी, अरे कंगना रनावत ने जो बोला है उसके

0: शायद हो सकता है अपने घर में करके भेज दिया हो। आप सोच समझ के तो बोलिए, देश की जनता देख रही है आपको, और जितना आप मना करेंगे, जितना डिनाई करेंगे, जितना डिले करेंगे, उतना आपकी सरकार को नुकसान होगा, बच्चों का नुकसान होगा। बच्चों के घर तो नोएडा तक FIR करने पुलिस पहुंच गई, लेकिन जिन पुलिस वालों ने सरेआम गुंडागर्दी की वहां पर, जिनके तमाम फोटो आ गए, तमाम लोगों ने फैक्ट चेक कर दिया, उनके ऊपर आज तक आप खामोश हैं, क्योंकि वो RSS के गुंडे हैं। और RSS के गुंडे इसी तरह से, यही ऑपरेशन जो है जिस तरह के गुजरात में होता था, मुझे बताइए, केरला का नाम लिया, एक पेपर अगर केरला में आउट हुआ तो मुझे बताइए, अगर कर्नाटक में आपने नाम लिया, हिस्ट्री MA के सेकंड पेपर में पेपर क्वेश्चन डुप्लीकेट क्वेश्चन था, और एक पेपर में डुप्लीकेट क्वेश्चन था, इसलिए सेकंड पेपर रोक दिया गया। पेपर लीक की कोई से राज्यों में घटना नहीं है। इवन मैं कहूंगा पंजाब में हमने पूरा विरोध किया, पंजाब में मास चीटिंग हुई है, मास चीटिंग का हमने खूब विरोध किया, लेकिन भाई अगर कहीं पर भी कुछ हुआ है उसका विरोध हम भी करेंगे, आप भी कीजिए, किसी ने नहीं रोका है। लेकिन CBI को अकाउंटेबल कौन ठहराएगा? ये CBI का वही डायरेक्टर है जिसको आपने एक्सटेंशन दिया, जिस 2024 में भी यही था, 40 लोगों को अरेस्ट किया गया, 48 लोगों को 90 दिन में चार्जशीट फाइल नहीं हुई CBI के निकम्मे डायरेक्टर से, उसी को आप एक्सटेंशन देते रहते हैं, क्योंकि आपके इशारे पर काम करता है, आपकी कठपुतली की तरह से काम करता है। दुर्भाग्य यह है कि NTA हो, CBI हो, ED हो, सब आपने अपने लोग बैठा दिए, वो आपके लिए काम करते हैं, देश के लिए नहीं काम करते।
1: लेकिन केरला का जो PSC पेपर है ना, पब्लिक सर्विस कमीशन, वो एग्जाम कैंसिल किया गया था गलत पेपर डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, तो ये भी आलोक जी नहीं होना चाहिए, और ये भी एक मुद्दा है वहां पर भी कई जगह। हाँ
0: देखिए दोनों चीजें अलग हैं, देखिए दोनों चीजें अलग हैं,
1: अलग है। पेपर झारखंड में भी बच्चों को लेट से पता चला
0: पेपर था, और पेपर शुरू होने से पहले,
1: लेकिन लेकिन
0: एक अंजना जी,
1: हाँ, लेकिन जहां भी घपला हो बच्चों को दिक्कत होती है ना,
0: वो भी गलत है।
1: ठीक है, ठीक है, अब आइए रोहित जी के पास चलते हैं। रोहित जी, एक तरफ गाली गलौच पर सवाल उठ रहे हैं कि भाई क्यों वहां प्रदर्शन में गाली गलौच की गई, एक्शन भी हो रहा है, 0 FIR ये वो, फिर एक सांसद आती हैं और वो गाली गलौच कर देती हैं। भाई किसी भी जेनरेशन को गटर जेनरेशन कहना, ऐसी अगली लड़कियां हैं, शादी नहीं होंगी, मतलब ये कौन स्वीकार कर सकता है? ये जानबूझ के सरकार के ही खिलाफ सरकार का बेड़ा गर्क करने के लिए आती है क्या ये?
2: अंजना जी, मैं कंगना रनौत जी के बयान से अपने आप को संबंध नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस प्रकार से वामपंथी विचारधारा से जुड़े हुए लोग और विदेश परस्ती की वकालत करने वाले लोगों ने जंतर मंतर पर बैठकर देश के अभिभावक और देश के प्रधानमंत्री, 140 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि नरेंद्र मोदी जी के बारे में अनपार्लियामेंट्री बात कहा, क्या उस पर कांग्रेस पार्टी ने कोई आपत्ति व्यक्त की? क्यों नहीं व्यक्त की? और जिस प्रकार से लीडर ऑपोजिशन इन लोकसभा राहुल गांधी ने देश के नौजवानों को इडियट कहा, क्या उस पर कांग्रेस पार्टी ने माफी मांगी? अरे आप बोल क्यों रहे हैं, चुप रहिए ना, आप बोल रहे थे तो हम बोल रहे थे। और अंजना जी एक महत्वपूर्ण बात, अभी एक वरिष्ठ पत्रकार जो कल तक आम आदमी पार्टी के नेता होते थे, वो देश के गृह मंत्री के संदर्भ में बोल रहे थे। मैं बता देना चाहता हूं, जब नए मॉडर्न इंडिया का इतिहास लिखा जाएगा तो ये लिखा जाएगा, धारा 370 किसने समाप्त कराया? अमित शाह जी ने। नक्सलवाद को किसने खत्म किया? अमित शाह जी ने। कश्मीर में स्थिरता किसने लाई? अमित शाह जी ने। क्या बात करेंगे ये लोग, इन लोगों को एक फोबिया हो गया है, सिंड्रोम हो गया है, नरेंद्र मोदी फोबिया, अमित शाह फोबिया। देश की जनता नरेंद्र मोदी और अमित शाह की क्षमता को जानती है। नौजवानों की आर में देश के अंदर दंगा नहीं भड़काने दिया जाएगा। कांग्रेस का इतिहास इमरजेंसी में नसबंदी कर रहा है, और कांग्रेस का इतिहास याद किया जाएगा छात्र आंदोलन में दंगा भड़काने के लिए।
1: इसलिए आज प्रदर्शन में लाठी थोड़ी चला दीजिएगा
2: सरकार को अस्थिर कराने के लिए।
1: एक ही जगह आपका रिकॉर्ड बार बार घूम रहा है, एक ही जगह रिकॉर्ड घूम रहा है बार बार, मतलब अरे सवाल है, सवाल है कि उसकी वजह से आज ऐसी हैंडलिंग क्यों हुई, आज ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई? क्या स्थिति को आंकने में समझने में गलती, उस पर भी तो फोकस करिए कुछ। कांग्रेस का तो हो गया हिस्ट्री सर, जनता ने बाहर कर दिया है, 12-13 साल हो गए। रोहित जी आपका ऑडियो नहीं जा रहा है, रुकिए अब, रुकिए अब। आशुतोष जी जल्दी से कमेंट, वो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के तो नेता थे ये।
3: देखिए मैं इंदिरा गांधी के जमाने में एक नारा था दिव्या देवकांत बरुआ का, अब तो मुझे हर जगह देवकांत बरुआ ही दिखाई पड़ते हैं भाई। इतना पतन तो नहीं होना चाहिए, कम से कम इतना पतन तो नहीं होना चाहिए। और ये लोग जो संघ और बजरंग दल के मेंबर हैं, राजनीतिक विश्लेषक करके यहाँ आते हैं और इनका विश्लेषण क्या ये दुनिया देख रही है। अरे कुछ तो कम से कम कुछ तो लाख लोक लिहाज होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए भाई, कुछ तो पढ़ लिख

0: आया करिए, क्यों इस तरीके से ज्ञान देते हैं आके? जनता हंसती है आप लोगों की बातों को सुन के। सवाल पूछा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी पे, जवाब दिया जा रहा है उस पे। अरे सवाल का जवाब दीजिए ना। अमित शाह जी क्यों संसद में नहीं आ पा रहे हैं? क्या कारण है नहीं आ रहे संसद के अंदर? किससे किससे उनको डर है?
1: का
0: किससे
1: झूठा
0: डर है?
1: फैलाते हैं,
0: क्यों नहीं अपना
1: देश
0: मुंह
1: के
0: दिखाते
1: करोड़ों
0: वहां पे? हैं,
1: विद्यार्थियों को
0: क्यों
1: अलगाव
0: गायब हैं
1: में
0: वो? ये
1: राज्यसभा की
0: सवाल नहीं
1: आसन
0: पूछा
1: छुड़वाने के
0: जाएगा?
1: लिए आम
0: हैं,
1: आदमी पार्टी पे अरविंद केजरीवाल की वकालत करते थे और बड़ी बड़ी बातें आप कर रहे हैं। जो मन में आएगा बोलिएगा, लोकतंत्र में बोलने का अधिकार। अगर आप
0: ना
1: कॉन्स्टिट्यू
0: ना
1: है,
0: ना,
1: मनुष्य थोड़ी है,
0: मैं तो आपकी
1: लेकिन अपने
0: पूजा
1: धर्म
0: करना
1: के
0: चाहता
1: अनुसार
0: हूं।
1: देश के हर नागरिक को दिया है। गलत
0: आपको पूजा,
1: होगा
0: मैं
1: तो
0: आपकी
1: उनसे
0: पूजा
1: बोलो।
0: करना चाहता हूं।
1: सुधांशु
0: कहां
1: जी,
0: हैं आप?
1: सुधांशु जी,
0: आपका आदर
1: सुधांशु जी, देखिए ये आंदोलन हुआ, पेपर लीक सबसे बड़ा मुद्दा था। पेपर लीक के बाद छात्र सड़कों पर उतरे, ये एक सच्चाई है कि बहुत जगह पर पुलिस वालों को भी पत्थरबाजी में मारा गया, पुलिस वाले भी कई जगहों पर घायल हुए हैं, लेकिन छात्रों पर भी खूब लाठियां चलाई गई हैं, उनको जगह जगह पर चोटें आई, बहुत सारे छात्रों पर भी इस तरह से ज्यादतियों की खबर आई। अब आपकी सरकार को ट्रस्ट जो खोया हुआ था उस डेफिसिट को दूर करने के लिए दो दो मंत्रियों को लगातार भेजना पड़ा, आपको इनसे बात करनी पड़ी, कॉकरोच जनता पार्टी से है। उसके बाद आती है कंगना रनौत, ऐसे ही पहले खालिस्तानी ये वो कर करके नुकसान पहुंचाया, और उसके बाद से पूरा एकदम मतलब ऐसी बातें जिसका कोई सिर पैर नहीं है, गटर जेनरेशन कह देना, लड़कियां हैं, मतलब अगली जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना उनके लिए कैसे स्वीकार्य हो सकता है सर
2: हाँ, वो
1: ये?
2: आप बिल्कुल, आपने बात सही कही, बिल्कुल आपने जो बात कही है। तो अंजना जी, ये
1: हाँ,
2: मंडी में क्या भाव चल रहा है ये स्वीकार्य था? ये
1: अगर वो
2: कंगना
1: गलत है
2: रनावत
1: तो
2: के
1: ये
2: लिए
1: भी तो
2: ऑफिशियल
1: गलत है
2: पोस्ट
1: ना।
2: था, और उसके बाद बचाव लिया गया कि वो हैक हो गया था। हैक की दिखाएं, कब रिपोर्ट की थी कि मेरा अकाउंट हैक हो गया? और क्या क्या भाषा शब्द प्रयोग नहीं की गई? प्रधानमंत्री जी के लिए बिहार चुनाव में मां की गाली बोली गई और कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे ज्यादा कुछ हो सकता है? चुनावी सभा में मां की गाली, और बाकी सब तो कब्र खुदेगी, ये होगा वो होगा, वो तो बहुत सारा होता रहा, अलग बात है। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं, अभी आलोक जी ने कहा कि कैसे बैल बुद्धि है भाई रोहित सिंह के लिए, कि ये कह रहे कांग्रेस के लोग थे। भाई साहब, आपके पास क्या सबूत है कि आरएसएस के लोग थे? वो जैसी बुद्धि उनकी वैसे आप, वैसे आपकी, आप भी अपना हवा में लंतरानी फेंक रहे हैं कि आरएसएस के लोग थे। और आशुतोष जी गंभीर व्यक्ति हैं, ये कह रहे हैं मीडिया की बात पे, जो मैंने 3 प्रश्न पूछे थे। आशुतोष जी, आप ही अपने वक्तव्य बता दीजिए, वक्फ बोर्ड पे कितनी आलोचना की थी, संदेश खाली पे कितनी आलोचना की थी, पंजाब और उस पर। और देखिए, यह भी ध्यान रखिए, रोहित क्या है इनकी बैकग्राउंड के बारे में, तो आप अपना विचार रख सकते हैं, पर आप तो आम आदमी पार्टी का ऑफिशियल रहे, और आप तो उस भीड़ में भी शामिल थे जो मार्च 2014 में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पे हमला करने के लिए आई थी। अब खैर छोड़िए, मीडिया पे वो क्या होती, भक्ति क्या होती। खुशवंत सिंह को कोट कर रहा हूं, जिन्होंने कहा कि मेरे गांधी परिवार की मैंने बहुत सेवा की, इस कारण से मुझे हिंदुस्तान टाइम्स का एडिटर बनाया गया और उसके बाद राज्यसभा दी गई। अरे ये तो साहब इंडिपेंडेंट मीडिया था, क्या गजब था साहब। अब आइए, राजीव गांधी जी क्या लेके आए थे? एक वो पोस्ट एंड टेलीग्राफ बिल लेके आए थे, ताकि आपकी हर चिट्ठी खोलकर सरकार पढ़ सकती है और कार्रवाई कर सकती है। आज कोई कहे आपका एसएमएस, व्हाट्सएप, ईमेल सब खोल के पढ़ सकती है और वो कार्रवाई कर सकती है। अरे ये तो सब अंग्रेज की स्वतंत्रता के अलंबरदार थे। अरे ऐसा कौन सा मीडिया होता था? और आज तो जी, आप तो बहुत वरिष्ठ हैं, मित्रों किस आर्काइव में एक कोट किया गया है, और यूरी बाजुन 70,000 से अधिक आर्टिकल्स 70 के दशक में, 70,000 से अधिक आर्टिकल केजीबी ने लिखवाए उन पत्रकारों से जो पैरोल पर थे,
1: मतलब
2: और उसने कहा है कि पूरी सरकार के मिनिस्टर पैरोल पर थे, और उन्होंने यह आरोप लगाया है कि इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी को भी पैसे दिए बोलकर रिपोर्ट। छोड़िए उन सब बातों को, वो सारी बातें क्या, इसलिए जब इंडिपेंडेंट की बात की जाए तो ईमानदारी से, खुले
0: मेरा
2: दिल से
1: नाम नहीं
2: बात होनी
1: इसलिए
2: चाहिए।
1: जवाब
2: और
1: देना।
2: बात
1: आर यू
2: करूंगा,
1: आर
2: आप
1: यू
2: मणिपुर के लिए कह रहे हैं ऐसा वैसा, ये बताइए मणिपुर को लेकर आलोक जी से पूछता हूं, आप मणिपुर को लेकर अविश्वास प्रस्ताव लाए थे केंद्र में, मैं चैलेंज करता हूं कोई जाके डिजिटल जमाना देख ले, 5% मणिपुर पर नहीं बोले,
1: आलोक
2: राहुल
1: जी,
2: गांधी अभी इस विषय के
1: आलोक
2: ऊपर
1: जी,
2: बोले, मैं चैलेंज करता हूं, बताइए राहुल गांधी के इस पूरे बयान में बिल का कहां
1: ठीक
2: उल्लेख है?
1: ठीक ठीक है। आप सुधांशु जी जवाब
2: मुझे
1: दीजिए,
2: आज,
1: आलोक जी की और आशुतोष जी।
3: मुझे अंजना जी,
1: आलोक जी, आलोक जी,
3: मैं सुधांशु भाई को बड़ा मजबूत सांसद और विद्वान समझता हूं, लेकिन दुर्भाग्य है कि पूरी बीजेपी कंगना रनावत के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकती। क्या कारण है? मोदी जी का डर है क्या इन लोगों को सबको? कल मैंने एक सांसद से पूछा, पूर्व सांसद से, महिला थी वो, एक शब्द नहीं बोल पाई उनके खिलाफ। कोई अपने आप को दूर कर ले रहा है उनके वक्तव्य से, कोई रिप्लाई नहीं देना चाहता है, कोई दूसरी जगह भाग जा रहा है। हमने तो मंडी के जब भाव की बात आई थी माफी भी मांगी थी, पुलिस में कंप्लेंट भी की थी, लेकिन उसके बाद भी मैं पूछना चाहता हूं, मां की गाली जिसने दी थी बिहार में, वो बच्चा बीजेपी से रिलेटेड था, कांग्रेस से रिलेटेड नहीं था, और उसकी जेल हुई, वो जेल में रहा। आप कहते हैं कि उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, वो तो जेल में रहा, लेकिन आपका व्यक्ति था इसलिए आपने चुनाव तक उसको किसी से मिलने नहीं दिया। हाँ। आज तो तमाम लोगों ने गालियां दी हैं मोदी जी को, अब लोग आप बजाव में नहीं उतर रहे, अब आप लोग भाजपा ही खामोश बैठ गई है पूरी की पूरी चुपचाप। क्या कर रहे हैं क्या भाई,
1: टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी
3: मुझे लगता है, मुझे लगता है कि मुद्दों को कैसे मुद्दों को भटकाया जाए, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, अरे एक शब्द बोलो, कंगना रनौत ने गलत बोला, एक सांसद हो क्या आपके अंदर हिम्मत नहीं हो रहे सुधांशु भाई,
1: ठीक है,
3: ऐसे क्या फायदा है आपके संसद में बैठने का, पूरे देश की बच्चियों को आप जनरेशन गटर बुलवाते हैं और उसके बाद आप कहते हैं कि साहब नहीं ऐसा है लेफ्ट है राइट है, ये मत करिए, आपको ये बहुत नुकसान देगा, कहिए गलत कहा उसने, कहिए।
0: देखिए सुधांशु जी एक फर्जी किताब का बार बार जिक्र करते हैं, मैं सुधांशु जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जनसंघ के बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी थी जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि CIA इनको फंड करती जनसंघ के बारे में, और ज्यादा नहीं, बलराज मधु की किताब उठा के देख लीजिए, आपको अंदाजा लग जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में उन्होंने क्या कहा था, अगर कहिए तो मैं कोट कर दूं वर्बेटिम,
1: अगर
0: मैं आपको चुनौती देता हूं,
1: सिर्फ दो लाइन का कमेंट जल्दी से।
2: देखिए मेरे किसी प्रश्न का उत्तर दिया, मैं कहता हूं आज सोचिए, कान खोलिए सुनिए, जनरल ग्रिना एल्बर्टस की किताब में 1985 में KGB का चीफ विक्टर चेरबोकोव का लेटर नंबर कोटेड है कि गांधी परिवार ने डिमांड किया कि मुझे जो पैसा मिल रहा है वो US डॉलर्स में दिया जाए, तो KGB के पावर से बाहर था, क्रेमलिन से अप्रूवल दिया गया, फिर अप्रूवल का लेटर नंबर कोटेड है, क्यों नहीं आज तक जाके किसी ने मानहानि का मुकदमा दायर किया, जाइए किताब स्टेट विद इन स्टेट जिसमें
1: सबकी अपनी अपनी किताब, सबकी अपनी अपनी विचारधारा और सबका अपना अपना तरीका, लेकिन 2026 आज जुलाई का ये महीना और आज की तारीख पर यही मुश्किल है आज की बहस में। लेकिन जिन तस्वीरों की हम बात कर रहे थे, एक बार तस्वीरें दिखा दीजिए, इन पर चर्चा हो रही थी और ये सवाल बड़ा है, कई जगहों पर पुलिस वालों पर जो कि ये चूज कर रहे थे कि वो लाठी नहीं चलाए छात्रों पर, उन पर जिस तरह से अलग अलग जगहों पर हमले हुए हैं, उनको चोटें पहुंची है, उसको लेकर भी सवाल आज उनके परिवार वाले, ये देखिए पीछे घूम घूम कर ये करना, इस तरह से करना, हमला करना, इन्हीं तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जाते हैं, देखते रहिए आज तक। लेकिन जिन तस्वीरों की हम बात कर रहे थे, एक बार तस्वीरें दिखा दीजिए, इन पर चर्चा हो रही थी और ये सवाल बड़ा है, कई जगहों पर पुलिस वालों पर जो कि ये चूज कर रहे थे कि वो लाठी नहीं चलाए छात्रों पर, उन पर जिस तरह से अलग अलग जगहों पर हमले हुए हैं, उनको चोटें पहुंची है, उसको लेकर भी सवाल आज उनके परिवार वाले, ये देखिए पीछे घूम घूम कर ये करना, इस तरह से करना, हमला करना, इन्हीं तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जाते हैं, देखते रहिए आज तक।
4: It's Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
5: Third period comes to an end. Game two headed to overtime.
4: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a second of the action.
5: They score!
4: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा, जीते हर बाजी।
2: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
3: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील टीएमटी से बना।
4: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील टीएमटी बार एकदम सॉलिड।
5: The Congress government in the center got rid of its own government because of a series of killings in Punjab, including many prominent people. So things had gone really bad in Punjab.
6: Congress party was trying to say that Akalis have to be defeated. You must not allow some other faction of the Akalis to prop up so that votes are divided.
7: They created this Frankenstein called Bhindranwala.
8: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. In association with
9: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
10: This is the sound of Lucy staying on top of her spending. You see, even though she's buying a new pair of jeans, she knows that it fits within her monthly budget. Because Wells Fargo will send an alert if her balance drops below her set amount. Yep, nothing gets past Lucy, or Wells Fargo for that matter. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
11: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
12: TuneIn's how-to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
13: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed. Whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest, you can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
14: जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिस कहानी के बहुत अच्छे परिणाम हैं और बहुत दुखद परिणाम हैं। भारत एक राजमहल है, समृद्ध है, सोने की चिड़िया है। गहरी बात है वो ये है कि इस राजमहल के चारों तरफ झोपड़ पट्टियां हैं, झुग्गियां हैं, चुनौती वाले क्षेत्र हैं। भारत आए अंग्रेज, यहाँ के लोगों को देखा उन्होंने, जब यहाँ के ग्रंथों को ट्रांसलेट करना शुरू किया, पढ़ा उन्होंने कि ब्राह्मण का जन्म मुंह से हुआ है। ये डिपार्टमेंट बनाया ही गया था शोषण के लिए। कौन सा? पुलिस। किसने बनाया था? कॉर्नवालिस ने। और पुलिस डिपार्टमेंट की खास बात यह है कि जब उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट भारत में बनाया, तब वो डिपार्टमेंट ब्रिटेन में नहीं था। जुडिशरी, मॉडर्न जुडिशरी उन्होंने अपने फायदे के लिए बनाया। अंग्रेजी कानून, अंग्रेजी जज। तुम कल्पना कर सकते हो, आधुनिक काल से पहले LGBT सड़क पर आकर प्रदर्शन करें, इनको तोप में बांध के उड़ा दिया होता।
15: तो क्या सिर्फ अब हिस्ट्री सिर्फ जो बाहर से लोग आए थे यहाँ पे शासन करने के लिए, उनको विलन के रूप में दिखा रहे हैं? या फिर
14: जो भी सरकार सत्ता में आती है वो शिक्षा का इस्तेमाल करती है अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने। वंदे मातरम पे बहस हो रही है, हर दिन मंदिर मस्जिद पे बहस हो रही है, मुसलमान पे बहस। ये संसद बनी किस लिए? औरंगजेब जो था भैया, डेली 200 किलो जनेऊ तोलता था। कितना? 200 किलो भी, मतलब डेली वो कम से कम 10,000 ब्राह्मणों को मारता था, हिंदुओं को। मैं देखता हूँ मुसलमानों को और हिंदुओं को, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ। पहले मैं सोचता था पुलिस वाले यहाँ लगा के पॉइंट ब्लैंक से क्यों मारते, क्योंकि यहाँ ताला लगा हुआ है, तो इसीलिए मारते कि यहाँ मारे तो अगले जन्म में खुला हुआ रहेगा।
16: आपको लगता है कि आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद देश फिर बट सकता है?
14: इस बात को मैं रिपीटेडली कह चुका हूँ, एक विस्फोट होगा बेटा।
17: लेकिन आपके पढ़ाने के तरीके मुझे एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट लगता है कि आप जनता को ही बोल देते हैं कि जनता बड़ी बेवकूफ़ है, और फिर आप कहते हैं कि हमारे देश का युवा पढ़ना नहीं चाहता है।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: Hear what the world is listening to. Global Hits brings together music in motion. From pop to K-pop, Latin dance, and Afrobeats. Chart-topping tracks to hidden gems. Whatever the globe is listening to, it's all right here. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Today's Global Hits to start listening now.
1: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
5: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
6: Third period comes to an end. Game two headed to overtime.
5: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a section of action.
6: They score!
5: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
2: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
3: Hey, it's Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
4: Third period comes to an end. Game two headed to overtime.
3: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a second of the action.
4: They score!
3: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
5: सही क्या है, गलत क्या है, आज आप इस रिपोर्ट को देखिए, खुद बताइए। 100 पद की मान लीजिए सरकारी भर्ती नीति, 100 लोग चुने गए, 50 लोग को वेटिंग लिस्ट में डाला गया। चुने गए 100 लोगों में से अगर 30 ने नौकरी एक साल में छोड़ दी तो वेटिंग लिस्ट वाले 50 में से उन्हें नौकरी देना सही है या फिर दोबारा जनता का पैसा खर्च करके पूरी भर्ती प्रक्रिया को फिर से करना सही? फैसला आप ही करिए और राजस्थान की भजन लाल शर्मा सरकार को इन युवाओं के प्रदर्शन की आवाज से आवाज मिलाकर जगाइए जो बेरोजगार राजस्थान सरकार के मंत्रियों के घर धरना देने के बाद अब जयपुर के शहीद स्मारक पर बैठे। लेकिन सरकार तो इन्हें धरना देने के लिए भी एक दिन का ही मौका देती है। कपड़े खोलकर अपना दर्द बयां करने वाले ये वो बेरोजगार जो राजस्थान की सबसे बड़ी चपरासी भर्ती में कुछ पॉइंट से फाइनल लिस्ट से रह गए और वेटिंग लिस्ट में शामिल कर दिए गए। हुआ ये कि एमए, एमबीए, पीएचडी करने वाले जो बेरोजगार चपरासी भर्ती में चुने गए वो ज्वाइन करने की बजाय दूसरी नौकरियों की तैयारी करने लगे। कई चयनित हुए लोग दूसरी नौकरियों का रिजल्ट आते ही चपरासी की नौकरी छोड़ने भी लगे। ऐसे में प्रदर्शनकारियों की मांग है कि वेटिंग लिस्ट में आए लोगों को उन खाली पदों पर रख दिया जाए। लेकिन चुनौती ये कि सरकार का ही बनाया वेटिंग लिस्ट का नियम इस चपरासी भर्ती में लागू नहीं हो रहा। इस भर्ती का जिम्मा संभाल रहे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा है कि प्रयास किया था, बात नहीं बनी, टेक्निकल इश्यू है, सरकार भी चाहेगी लागू हो, प्रयास कर रहे हैं, आगे ईश्वर की मर्जी। लेकिन बेरोजगारों को भगवान के भरोसे छोड़ना कैसे सही माने जबकि एक साल में खाली हुए पद पर वेटिंग लिस्ट से भर्ती देने के नियम पर सरकार ही अपनी वाहवाही करती है।
6: एक वर्ष के भीतर कर्मचारियों द्वारा पद त्यागने की स्थिति में उस पद की प्रतीक्षा सूची से भरा जाएगा।
5: बेरोजगारों के आंदोलन के बाद अब मंत्री कहते हैं सरकार कोशिश कर रही है।
7: मैंने उचित स्थान पर उस बात को पहुंचाया है, परीक्षण उसका किया जा रहा है, परीक्षण के बाद जो नियमों में प्रावधान है उसके अनुरूप चर्चा करके कुछ किया जा सकता है।
5: इस धरने में दिव्यांग भी है जो इशारों से अपनी बात कहते हैं। इनके इशारों को क्या सरकार तब सुनेगी जब बेरोजगारों की ऊंची आवाज और उनके नारे तक सरकार के कान में नहीं पहुंच पा रहे हैं?
8: 54,000 में से करीब करीब 25,000 तक पद बेकार हो सकते हैं। ऐसे में सरकार वेटिंग रूल को लागू करे जिसकी घोषणा विधानसभा में की गई है और इन बेरोजगारों को राहत दे क्योंकि छोटी नौकरियों में जो कम शिक्षित लोग हैं और जिनकी उम्र बीती जा रही है उन्हें नौकरी की ज्यादा जरूरत है। मगर ये कह रहे हैं कि तमाम मंत्रियों से मिलने के बावजूद अभी तक कोई रास्ता खुला नहीं है। कैमरा मनीष के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
3: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
4: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
5: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा सफलता का शंखनाद।
6: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
7: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
8: इन एसोसिएशन विद
9: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
3: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
4: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बाय एकदम सॉलिड।
5: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा सफलता का शंखनाद।
6: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
7: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
8: इन एसोसिएशन विद
9: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
8: विमल बोलो जुबा केसरी। हिंट बड़े आराम से।
10: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी। वेयर आर यू?
11: वेट, लाइफस्टाइल के लिए 10 अलग पेजेस क्यों फॉलो करना? हेल्थ, फिटनेस, योगा, मेंटल वेलनेस, सब कुछ एक ही जगह। फिट तक सिंपल टिप्स, एक्सपर्ट इनसाइट्स, रियल कॉन्वर्सेशंस। लाइफ अपग्रेड करो इजी वे। वॉच ओनली ऑन फिट तक यूट्यूब।
12: New entrepreneurs came up. There was Dhirubhai Ambani. He was a rag to riches story. He built industries. He built, you know, the whole nylon business, the textile, and then, of course, then into petrochemical.
13: There were others like him, but he was by far the biggest and the most prominent of them all. He was also the most controversial because of his business methods. We did the stories on him as a success. We did a story of him under pressure. It was a churn that was taking place and it led to lots of stories.
14: जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिस कहानी के बहुत अच्छे परिणाम हैं और बहुत दुखद परिणाम हैं। भारत एक राजमहल है, समृद्ध है, सोने की चिड़िया है। गहरी बात है वो ये है कि इस राजमहल के चारों तरफ झोपड़ पट्टियां हैं, झुग्गियां हैं, चुनौती वाले क्षेत्र हैं। भारत आए अंग्रेज, यहाँ के लोगों को देखा उन्होंने, जब यहाँ के ग्रंथों को ट्रांसलेट करना शुरू किया, पढ़ा उन्होंने कि ब्राह्मण का जन्म मुंह से हुआ है। ये डिपार्टमेंट बनाया ही गया था शोषण के लिए। कौन सा? पुलिस। किसने बनाया था? कॉर्नवालिस ने। और पुलिस डिपार्टमेंट की खास बात यह है कि जब उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट भारत में बनाया तब वो डिपार्टमेंट ब्रिटेन में नहीं था। जुडिशरी, मॉडर्न जुडिशरी उन्होंने अपने फायदे के लिए बनाया। अंग्रेजी कानून, अंग्रेजी जज। तुम कल्पना कर सकते हो आधुनिक काल से पहले LGBT सड़क पर आकर प्रदर्शन करें, इनको तोप में बांध के उड़ा दिया होता।
15: तो क्या सिर्फ अब हिस्ट्री सिर्फ जो बाहर से लोग आए थे यहाँ पे शासन करने के लिए उनको विलन के रूप में दिखा रहे हैं? या फिर
14: जो भी सरकार सत्ता में आती है वो शिक्षे का इस्तेमाल करती है अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने। वंदे मातरम पे बहस हो रही है, हर दिन मंदिर मस्जिद पे बहस हो रही है, मुसलमान पे बहस। ये संसद बनी किस लिए? औरंगजेब जो था भैया डेली 200 किलो जनेऊ तोलता था। कितना? 200 किलो भी, मतलब डेली वो कम से कम 10,000 ब्राह्मणों को मारता था, हिंदुओं को। मैं देखता हूँ मुसलमानों को और हिंदुओं को, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ। पहले मैं सोचता था पुलिस वाले यहाँ लगा के पॉइंट ब्लैंक से क्यों मारते, क्योंकि यहाँ ताला लगा हुआ है, तो इसीलिए मारते कि यहाँ मारे तो अगले जन्म में खुला हुआ रहेगा।
16: आपको लगता है कि आज से 5 साल बाद 10 साल बाद देश फिर बट सकता है?
14: इस बात को मैं रिपीटेडली कह चुका हूँ, एक विस्फोट होगा बेटा।
17: लेकिन आपके पढ़ाने के तरीके मुझे एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट लगता है कि आप जनता को ही बोल देते हैं कि जनता बड़ी बेवकूफ़ है, और फिर आप कहते हैं कि हमारे देश का युवा पढ़ना नहीं चाहता है।

0: बात अब करेंगे बारिश और बाढ़ की। इस समय देश के कई हिस्सों पर मानसून सक्रिय है। कुछ राज्यों में भारी बारिश से फ्लैश फ्लड जैसे हालात हो गए। कहीं पहाड़ टूटा तो कहीं नदियां पुल के आर पार बहने लगी। नवसारी, खेड़ा, भरूच में हालात खराब हैं। खेड़ा में तो कुछ जगहों पर 4 फीट से अधिक पानी भर गया है। बांदीपोरा, जालना, बुरहानपुर, भरूच, जहां भी आप देखेंगे कुछ ऐसे ही हालात है। कहीं सड़कों पर पानी भरा हुआ है। भावनगर, नांदेड़ कहीं रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और इन सब रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच सबसे ज्यादा प्रभावित गुजरात, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर है। इन राज्यों में पिछले 24 से 36 घंटे में झमाझम बारिश हुई, मूसलाधार बारिश आप कह सकते हैं, जिससे जिंदगी की रफ्तार पर मानो ब्रेक सा लग गया। प्रशासन और राहत बचाव की टीमें अलर्ट है। लोगों को हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिश शासन कर रहा है।
1: गुजरात में फिर मूसलाधार बरसात। नवसारी, सूरत, भरूच, आणंद में मुसीबत।

0: नवसारी में पूर्णा नदी की लहरें डरा रही हैं, पानी सड़क के आर पार बह रहा है। खेड़ा की कॉलोनियां पानी में डूब गई हैं, घरों की दहलीज तक पानी भरा है। खेड़ा के नाडियाड में अस्पताल में पानी भरा, अस्पताल आने जाने के रास्ते पर 5 से 6 फीट तक जल भरा।
1: ये जो पूरा इलाका है वो यहाँ पर 5 से 6 फीट तक जो है वो जल भरा हुआ है।
0: महाराष्ट्र का जालना और नांदेड़ भी आसमानी आफत से पानी पानी हो गया। नांदेड़ में छोटे छोटे नाले नदियाँ उफान पर हैं, रिहायशी इलाकों तक पानी पहुँच गया। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई, कुछ जगहों पर फ्लैश फ्लड जैसे हालात हो गए। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में टूटे पहाड़, पानी की तेज धार के साथ घरों तक आया मलबा। कश्मीर से महाराष्ट्र, गुजरात तक बारिश का विस्फोट।
2: सबसे पहले बात अब जम्मू कश्मीर की करेंगे। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा, शोपिया, अनंतनाग में बारिश से तबाही हुई है। सबसे ज्यादा परेशानी बांदीपोरा और शोपिया में हुई, जहां फ्लैश फ्लड से हालात बिगड़ गए। कहीं पहाड़ टूट रहे हैं, कहीं बरसाती नाले बस्तियों के बीच बह रहे हैं।
0: जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बारिश से पहाड़ दरक रहे हैं। पानी के प्रहार से चट्टान टूट रही है और साथ ला रही है मुसीबत। पिछले 48 घंटे में जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में बारिश हुई और जब पानी पहाड़ों से नीचे उतरा तो अपने साथ कई बड़े बड़े बोल्डर पत्थर लेकर आया। ये बांदीपोरा है जहां भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हुआ और फिर कुछ जगहों पर फ्लैश फ्लड की घटना हुई। बांदीपोरा के केनूसा और सदरकोट इलाके में फ्लैश फ्लड की वजह से सड़कों पर सैलाब आ गया। बांदीपोरा में कई घर फ्लैश फ्लड की चपेट में आ गए। तेजी से पानी आया और सब कुछ अपने साथ बहा ले गया। भारी बारिश की वजह से अमरनाथ की गुफा के पास भी फ्लैश फ्लड आ गया। बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा के आसपास के इलाकों में पहले से मौसम खराब था। ऊंचाई वाले इलाकों में हुई अचानक बारिश के बाद पानी की तेज धारा सीढ़ियों के साथ नीचे की तरफ बहने लगी, जिससे अफरा तफरी मच गई।
3: कश्मीर के साथ साथ जम्मू के अधिकतर पहाड़ी इलाकों में कल शाम से तेज बारिशें हो रही है। कश्मीर में जहां एक तरफ अमरनाथ यात्रा के आसपास भारी बारिश और नदियों की जलधारा बढ़ने के साथ आज की अमरनाथ यात्रा स्थगित कर दी गई है, उसी तरह दक्षिणी और उत्तरी कश्मीर में भी जो है कई नदी नाले उफान पर हैं। सोपोर और बांडीपोरा में भी कई जगहों पर तेज बारिश और क्लाउड बर्स्ट के कारण नदियों में जल स्तर बढ़ गया है।
0: शोपिया में कई जगह बादल फटने की घटनाएं हुई। मूसलाधार बारिश से शोपिया में कई गांव में अचानक बाढ़ आ गई, जिसकी वजह से कई लोग अपने घरों में कैद हो गए। कड़ी मशक्कत के बाद एसडीआरएफ की टीमों ने लोगों को उनके घरों से बाहर निकाला और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए, चारों तरफ मलबा बिखरा है, पानी जिस ओर निकला सब कुछ बहा ले गया। अशरफ वानी के साथ मीर फरीद, श्रीनगर आज तक।
2: और अब गुजरात की बात करेंगे, जहां एक बार फिर से भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। अभी कुछ दिन पहले ही साउथ गुजरात के बहुत से जिले प्रभावित हुए थे, कई शहरों में बाढ़ आ गई थी। अब एक बार फिर से वही हालात हैं। सूरत की तो सूरत बदल गई, नवसारी, डांग, खेड़ा, भरूच, ये सभी जिलों में हाल बेहाल है।

0: गुजरात में एक बार फिर से भारी बारिश के बाद कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं और फिर से दक्षिण गुजरात के ही जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। नवसारी और डांग जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण अंबिका और पूर्णा नदी उफान पर है। डांग के सुबीर तालुका में करीब 8 इंच बारिश दर्ज होने के बाद पूर्णा नदी समेत अन्य नदी नालों में बहुत ज्यादा पानी भर गया, तो पूर्णा नदी का जलस्तर बढ़ने से गोदड़िया पुल के ऊपर से पानी बहता दिखाई दे रहा है। ये हालात बहुत खतरनाक हैं। आसपास के इलाकों में बाढ़ की आशंका बढ़ गई। नवसारी में प्रशासन अलर्ट पर है क्योंकि पूर्णा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। नवसारी शहर में लगातार बारिश के कारण कई इलाकों में जल भराव की स्थिति बन गई। इधर भावनगर में भी हालात बिगड़ने लगे हैं। यहां जिले के पालीताना, जेसर, तलाजा, सीहोर, बगदाना, सोनगढ़, गोघा, अलंग और अन्य इलाकों में बारिश हुई। पालीताना में भारी बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया। सूरत शहर में भी शुक्रवार तड़के से ही मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। लगातार हो रही तेज बारिश के कारण शहर के कई निचले हिस्सों में जलभराव की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई। शहर के कई निचले इलाकों में सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया। गुजरात के खेड़ा जिले की सभी तहसीलों में भी शुक्रवार को सुबह से ही मूसलाधार बारिश जारी रही। नादियाद में भारी तबाही हुई। पूरा नादियाद शहर जलमग्न हो चुका है। सड़कें समंदर बन चुकी हैं और निचले इलाकों में जलभराव से इलाके टापू में तब्दील हो गए। सिर्फ 6 घंटे में ही 133 से 191 मिलीमीटर की बारिश दर्ज की गई।
1: जिस तरह से दो दिन पूरे गुजरात में हाई अलर्ट जारी किया गया है, हम अभी खेड़ा जिले के नड़ियाद में है। नड़ियाद में अब तक तकरीबन 7 इंच से ज्यादा जो है वो बारिश दर्ज की गई है, जिसके चलते जो निचले इलाके हैं वो प्रभावित हुए हैं। निचले इलाके में जिस तरह से जल भरा हुआ है, प्रशासन पहले से अलर्ट था, जिसके चलते पूरी व्यवस्था है जो की गई है। जिसके यहाँ पर जिस तरह से निचले इलाके में अस्पतालें आई हुई, अस्पताल में आने जाने के लिए दर्दी जो है उनके लिए जो ट्रैक्टर ट्रॉली की जो है वो व्यवस्था की गई है, जिससे लोगों को आसानी रहे। साथ ही प्रशासन ने पहले से ही अपील कर दी थी कि लोग काम के अलावा बाहर न निकले। साथ ही जिस तरह से पूरे जो हालात है, देख सकते हैं निचले इलाके में जल भरा हुआ है।
0: चिंता इस बात की है कि मौसम विभाग ने अभी भी बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। प्रशासन कह रहा है कि जब तक कोई बेहद जरूरी काम ना हो, घर से बाहर ना निकले। इधर भरूच में भी बारिश का रेड अलर्ट है। आसमान से जैसे आफत बरस रही है। शुक्रवार की सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है। निचले इलाके और मार्गों को बारिश के पानी ने जलमग्न कर दिया। भरूच, अंकलेश्वर, नेत्रंग, हासौट, झगड़िया, वालिया तहसील पानी पानी हो गई। जिले में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ एक्टिव है।
2: रेड अलर्ट के चलते सुबह से ही भारी बारिश के कारण आसमान से आफत रूपी बारिश ने पूरे जिले को पानी से लबालब कर दिया है। पिछले 10 घंटों में सबसे ज़्यादा नेत्रंग तहसील में 10.5 इंच बारिश बरस चुकी है, जिसके कारण मुख्य मार्ग और सभी जगह पे फिलहाल पानी ही पानी नज़र आ रहा है। जनजीवन और यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है।
0: गुजरात के नर्मदा जिले में भी बुरा हाल है। यहाँ इतनी बारिश हुई कि करचन डैम से 50,000 क्यूसेक से भी ज्यादा पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से बाढ़ के हालात पैदा हो गए। भारी बारिश के कारण नर्मदा जिले के 28 गांवों को अलर्ट किया गया और 50 से ज्यादा लोग सुरक्षित स्थान पर लाए गए हैं। जिले के गरुड़ेश्वर तहसील में 5 इंच जितनी बारिश की वजह से गांवों को जोड़ने वाले कई रास्ते टूट चुके हैं। छोटा उदयपुर में अश्विन नदी में फंसे एक युवक को एनडीआरएफ टीम ने बचाया। युवक अपनी जान जोखिम में डालकर 4 घंटे तक 1.5 फुट की दीवार पर बैठा रहा था। पानी बढ़ता रहा लेकिन टीम ने आखिरकार युवक को बचा लिया।
3: हवामान विभाग की जो आगाही थी उसके अनुसार नर्मदा और छोटा उदयपुर में मूसलाधार बारिश हुई। आप तस्वीरों में देख पा रहे ये जो करजन नदी है, करजन नदी उफान हुए है क्योंकि जो करजन डैम है वहां से 50,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। इसके कारण नदी का फ्लो काफी बढ़ चुका है। साथ में छोटा उदयपुर जिले के अंदर जो अश्विनी नदी है वहां पे एक आदमी का रेस्क्यू किया गया था जहां पे वो पानी में फंस गया था। नर्मदा और छोटा उदयपुर जिले में भारी बारिश के कारण गांवों के अंदर जो नदियां उफान पे है और खास तौर पे जो आदिवासी इलाके हैं उनको रेस्क्यू करके बाहर लाया जा रहा है।
0: आज तक ब्यूरो। अब आपको गुजरात के मही सागर से आई कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जहां भारी बारिश की वजह से शहर से सैलाब जैसी स्थिति आ गई। जिले के कुल 8 तहसीलों में से 6 तहसीलों में भारी बारिश होने से निचले इलाकों में पानी भर गया। लूनावाड़ा शहर में भारी बारिश के नेशनल हाईवे भी पानी में डूब गया। देखिए इस जगह का नाम है मही सागर, लेकिन यहाँ की सड़कें भी सागर जैसी ही दिखाई दे रही हैं और अगर कोई गाड़ी निकलती है तो सागर जैसी तेज लहरें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। मूसलाधार बरसात से शहर में हर जगह लोगों की परेशानी बढ़ गई है। अब ये देखिए गाड़ी निकल रही है तो उसके बाद आप लहरें देखिए और ज्यादातर रास्तों का ऐसा ही हाल है क्योंकि बारिश लगातार हो रही है और बारिश लगातार होने से सड़कें सागर में तब्दील हो गई। वक्त हो गया है बहुत छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: You hear it once and remember everything.
1: Too sexy for your party. Too sexy for your party.
0: One Hit Wonders brings back the songs that hit fast but stay forever. They owned the moment, ruled the charts, and live forever in our hearts every time they play. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search One Hit Wonders to start listening now.
2: शादी का किचन महके जहां गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश
4: आम आलू के पकवान पर पाउस रिपोर्टवा द बिल इज फास्ट यू वांट टू सिट एंड लिसन यू सिट एंड लिसन
5: कोई पेपर माफिया पेपर लीक करने वाली गैंग देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग उनको बख्शा नहीं जाएगा इस कठोर कानूनों वाले
6: देश को आशान्वित करने वाला ये पीएम मोदी का वो संदेश है जो दोनों सदनों से लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पारित होने के बाद आया है इस बिल के पारित होने के बाद सरकार राहत में होगी लेकिन क्या ये पेपर लीक पर चल रही राजनीति को भी विराम लगा पाएगा इस सवाल का जवाब आपको राहुल गांधी के इस बयान से काफी हद तक मिल पाएगा
7: मैंने तो सिर्फ ये पूछा है कि दो ही ऑप्शंस हो सकते हैं एक ऑप्शन की होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया दूसरा ऑप्शन की होम मिनिस्टर को मालूम नहीं था कि फायरिंग होगी इन फर्स्ट केस ही इज कल्पेबल In second case, he is incompetent. It can only be one of two. तीसरा तो हो ही नहीं सकता।
6: तो राहुल गांधी रुकने वाले नहीं हैं और उनके इन तेवरों की वजह से पेपर लीक की लड़ाई भी थमने वाली नहीं है बस कल और आज में फर्क ये आया है कि पहले धर्मेंद्र प्रधान निशाने पर थे लेकिन उनके इस्तीफे के बाद गृह मंत्री अमित शाह हमलों की जद में आ गए हैं और उन पर हमलों की वजह से इस लड़ाई की रफ्तार भी बढ़ रही है राहुल गांधी ने अमित शाह पर हमले बढ़ाए तो बीजेपी उन्हीं को टारगेट पर ले आई बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना का नोटिस दे दिया
8: माननीय गृह मंत्री जी आएंगे
6: यानी इस लड़ाई में अभी और ईंधन डालने की पूरी कोशिश हो रही है अभी तो सिर्फ विशेषाधिकार हनन का नोटिस है कोई बड़ी बात नहीं कि ये मामला राहुल गांधी पर एक्शन तक पहुंच जाए ऐसा इसलिए क्योंकि अमित शाह के इस्तीफे की मांग और जोर पकड़ने लगी है राहुल के बाद खड़गे ने भी राज्यसभा में वही मांग दोहरा दी है
9: अरे पैलेट गन पैलेट्स का यूज करके उनको मार रहे हैं और हॉस्पिटल में गिरे हैं किसका आंख गया किसका कान गया किसका हाथ गया किसका पैर टूटा इसका जिम्मेदार कौन है इसका जिम्मेदार आप है होम मिनिस्टर है
6: कांग्रेस अमित शाह से प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज का हिसाब मांग रही है अमित शाह के सदन में आकर जवाब देने की मांग कर रही है उनका इस्तीफा मांग रही है और उसके लिए राहत की बात यह है कि बाकी विपक्षी दलों का भी उसे साथ मिल रहा है अब देखने वाली बात यह है कि ये लड़ाई आगे किस दिशा में जाती है पीयूष मिश्रा के साथ अमित भारद्वाज दिल्ली आज तक

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

जेनजी से संवाद के बाद पीएम मोदी ने की विकास की बात। आंध्र प्रदेश में एयरपोर्ट का उद्घाटन, कहा पहले एक परिवार के नाम पर होते थे एयरपोर्ट, अब विभूतियों को सम्मान। जंतर मंतर प्रदर्शन पर प्रधानमंत्री मोदी का छात्रों के नाम वीडियो संदेश, कहा मुझे मेरी मां को गाली दी गई, गुमराह बच्चों को करना चाहता हूं माफ, मिलकर बनाएं सपनों का भारत। चढ़ावा चोरी को लेकर पप्पू यादव के प्रदर्शन पर बीजेपी, वीएचपी और साधु संतों ने मोर्चा खोला, जंतर मंतर से लखनऊ तक विरोध, आस्था के अपमान का आरोप। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में टारगेट किलिंग, दो गैर कश्मीरी मजदूरों को आतंकियों ने मारी गोली, दोनों की हुई मौत, इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज। और बाढ़ से मैदान तक, बाढ़ बारिश का आतंक, जम्मू कश्मीर में भारी आफत, पानी पानी हुआ गुजरात, असम में सैलाब से अब तक 82 लोगों की मौत।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। दो बज चुके हैं और दो बजे के बुलेटिन में बात उन दो खबरों की जो लोगों की आस्था से जुड़ी हैं और जिस पर सियासत जमकर हो रही है। पहली खबर राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़ी हुई है। एक दिन पहले संसद परिसर में क्या हुआ आपने देखा। सांसद पप्पू यादव आए थे, भेष साधु का रखा था भगवा, विरोध प्रदर्शन किया था तो बीजेपी की ओर से हम लोग की बौछार शुरू हो गई। साधु संतों ने भी पप्पू यादव को निशाने पर लिया और कहा कि भाई ये तो अपमान है साधु संतों का। पप्पू यादव ने सोशल मीडिया पर नया वीडियो पोस्ट कर खुद को सनातन का सम्मान करने वाला बताया। अब इधर यूपी में क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश में बटेश्वर कॉरिडोर निर्माण को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया। आगरा की बात की जा रही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। साथ ही दावा यह भी है कि शिकायतकर्ताओं को धमकाया जा रहा है। तो इन दो खबरों के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर संसद में छिड़े नए सियासी संग्राम की, जिसे लेकर उठे सियासी विवाद के बीच सांसद पप्पू यादव डैमेज कंट्रोल करते अब दिखाई दे रहे हैं। कल तो जो किया सो किया पप्पू यादव ने, अब आज पप्पू यादव ने सोशल मीडिया पर शिवलिंग की पूजा करते हुए वीडियो जारी किया। पप्पू यादव ने इस वीडियो के साथ लिखा, मेरा विरोध आस्था से नहीं है, आस्था के नाम पर चल रही लूट से है। मेरा विरोध भगवा, हिंदू, हिंदुत्व, सनातन, पूजा पाठ और साधु संतों से नहीं है। इन सबका तो मैं सम्मान करता हूं। मेरा विरोध सिर्फ उन चंद चोरों से है जो धर्म और आस्था की आड़ में जनता की भावनाओं का शोषण करते हैं। आस्था का सम्मान हमेशा रहेगा, लेकिन चंदा चोरों के खिलाफ हमारी आवाज भी हमेशा बुलंद रहेगी। अब ये देखिए, वेशभूषा वही है पप्पू यादव की जो कल संसद के बाहर थी मकर द्वार पर, लेकिन आज अपने दफ्तर में कुर्सी पे बैठ के ये देखिए शिवलिंग पर दूध अर्पित कर रहे हैं। अब इसी बीच दिल्ली में वीएचपी कार्यकर्ता पप्पू यादव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते दिखाई दिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वीएचपी विश्व हिंदू परिषद ने पप्पू यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अब ये देखिए प्रदर्शन की तस्वीरें हैं कल जो हुआ मकर द्वार पर। साधु के वेश में पप्पू यादव जो एक नाटक कर रहे थे, आप नाटक उसे कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एक तरह से ये दिखाने की कोशिश की कि आखिर हुआ क्या। साथ में और भी कई सांसद थे विपक्ष के, राहुल गांधी भी उनके साथ में शामिल थे।
1: समय मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर हूं, जहां मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि यहां पर एक सांकेतिक सद्बुद्धि हवन जो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा यहां पर रखा गया, तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूंगा कि दिल्ली भर से जो संत लोग हैं यहां पर पहुंचे हैं, क्योंकि कल संसद में देखा गया था कि पप्पू यादव राम मंदिर चंदा घोटाले को लेकर एक स्किट कर रहे थे, एक नुक्कड़ नाटक कर रहे थे, जिसमें देखा गया कि नेता पक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे, समाजवादी पार्टी के और बड़े नेता जो है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें पहुंचते हैं और इस मामले को लेकर देखा जा रहा है कि अब जो राजनीति है वो भी गर्म हो गई है। पप्पू यादव के खिलाफ एक कंप्लेंट भी जो है दर्ज करा दी गई है। वहीं विश्व हिंदू परिषद ने भी यहां दिल्ली के जंतर मंतर पर एक सांकेतिक जो धरना प्रदर्शन है बुलाया, सद्बुद्धि जो हवन है वो रखा रहा। पप्पू यादव समेत कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जो अन्य विपक्षी दल कल देखा गया कि उस किट में शामिल थे, उस धरना प्रदर्शन में शामिल थे, जिसमें देखा गया पप्पू यादव भगवा रंग के कपड़े पहनते हैं, कहीं ना कहीं संत के वेश में नजर आते हैं। उस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी भी आक्रामक होकर विपक्षी दलों पर निशाना साध रही, विश्व हिंदू परिषद ने भी सांकेतिक जो धरना प्रदर्शन बोली है या इसे एक यज्ञ के तौर पर जो प्रदर्शन किया जा रहा है यहां पर, सद्बुद्धि यज्ञ जो विश्व हिंदू परिषद इसे बता रहा है, वो यहां पर दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहा है। इस मामले को लेकर देखा जा रहा है कि राजनीति भी गर्म हो गई है। दिल्ली पुलिस में इस मामले को लेकर एक कंप्लेंट भी दर्ज कराई गई है पप्पू यादव द्वारा, और वहीं पप्पू यादव का कहना है कि उनका जो मकसद था किसी धर्म को आहत करने का नहीं था, उनका जो मकसद था एक राजनीतिक पार्टी पर वो निशाना साध रहे थे, जिन पर एक बड़े आरोप जो राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर, कथित चोरी को लेकर लगे हैं, कहीं ना कहीं उनका कहना है कि वो उस पर निशाना साध रहे थे। पर वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद और अन्य संगठन इस समय ओपोजिशन पार्टीज के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कैमरामैन लोकेंद्र पांडे के साथ अनमोल नाथ बाली की दिल्ली से रिपोर्ट।
0: अनमोल बाली हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए, सीधे उनसे बात करेंगे। अनमोल, विश्व हिंदू परिषद बीजेपी के प्रदर्शन का नतीजा तो नहीं है कि पप्पू यादव वही कल वाली वेशभूषा में अपने दफ्तर में परात लेकर शिवलिंग पर दूध अर्पित करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या हुआ आज, किस तरह से विरोध जताया गया पप्पू यादव का?
1: हिमांशु, जैसे कल के दृश्य सोशल मीडिया पर वायरल हैं, वैसे आज देखा जा रहा है कि देश भर में विश्व हिंदू परिषद द्वारा इस मामले को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और उस धरना प्रदर्शन के बीच पप्पू यादव कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल मोड में नजर आए। उन्होंने एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया जिसमें फिर वो जो भगवा कपड़े में दिखे, कहीं ना कहीं शिवलिंग को जल और दूध चढ़ाते दिखे। पर साथ ही उन्होंने कहा कि जो उनका ये धरना प्रदर्शन था, जो ये सांकेतिक स्किट उन्होंने कर पार्लियामेंट में की, किसी समाज या किसी धर्म या किसी संप्रदाय के खिलाफ नहीं था, उन लोगों के खिलाफ था जिन पर चंदा चोरी के बड़े आरोप लगे हैं। पर कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर बीजेपी के साथ विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन है वो भी अब सड़कों पर उतरा है। इसी बीच मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर हूं, जहां कुछ देर पहले ही देखा गया कि एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया, सद्बुद्धि यज्ञ है वो रखा गया। इसी बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए विनोद बंसल है विश्व हिंदू परिषद से। तो सर, पप्पू यादव एक वीडियो अभी जारी करते हैं, वो कहते हैं कि जो उनकी मंशा थी किसी धर्म को आहत करने की नहीं थी, पर उन लोगों पर वो निशाना साध रहे थे जिन पर बड़े आरोप लगे हैं।
2: देखिए, जो खुद अपराधी वृत्ति के लोग हैं, जिन्होंने जाने कितनी लोगों की घरों में चोरियां की, चोरी में कहूंगा डकैतियां डाली, ये तो वो आपराधिक वृत्ति के लोग हैं जो जमानत पर रिहा हैं, जो सजायाफ्ता हैं। ये पप्पू यादव कितना ही अपने आप को निर्दोष साबित करे, और ये जो जिस तरह से भगवान भोले का जो अपमान कर रहा है, घर में बैठ करके शिवलिंग के ऊपर जो जल चढ़ाने का जो ड्रामा कर रहा है, बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि एक ईसाई माँ का बेटा और एक उसका जो बापू है जिनके मजार पर कभी नहीं गया नहीं है, और उसका जो पुत्र है वो आज जनेऊधारी ब्राह्मण बना करता है।
0: विनोद बंसल, और जो जितने भी प्रदर्शनकारी हैं इनकी नाराजगी यहाँ पर साफ दिखाई दे रही है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अनमोल वाली ने बताया जंतर मंतर दिल्ली में कैसे प्रदर्शन हुआ, तो लखनऊ में भी हुआ। लखनऊ में भी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने पप्पू यादव का पुतला जलाया, विरोध किया। अब ये देखिए, यहाँ तो आरती बना दी और लिखा है उस पर मैं हूं पप्पू यादव। और अलग तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है, अलग अलग तरीके, नाटकीय तरीके से। कल पप्पू यादव एक एक्ट करते हैं, अब यहां पर देखिए बहुत सारे लोग अखिलेश यादव का मुखौटा लगाए हुए हैं और अर्थी निकाल दी गई है। यहां पर लखनऊ में पप्पू यादव का विरोध हुआ, और क्यों हुआ ये तो आप समझ ही गए होंगे। वो तस्वीर तो हम आपको कल से दिखा ही रहे हैं कि संसद के मकर द्वार पर कल क्या किया था पप्पू यादव ने। तो दिल्ली और लखनऊ में ये हो क्यों रहा है? शुक्रवार को संसद परिसर में राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर सांसद पप्पू यादव साधु के भेष में आए थे, कुछ विपक्षी सांसद भी शामिल हुए थे, राहुल गांधी भी थे, और अब सियासत तेज हो रही है और उसी का ये रिजल्ट है।
3: संसद परिसर में अयोध्या चंदा चोरी का मुद्दा विपक्ष ने नाटक का मंचन करके उठाया, जहां पप्पू यादव साधु के भेष में दान पेटी के साथ पहुंचे, जिसमें राहुल गांधी समेत विपक्ष के नेताओं ने सांकेतिक चंदा डाला, जिसके बाद पप्पू यादव दान पेटी लेकर भागने की कोशिश करते हैं, जहां उन्हें अयोध्या से आने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद पकड़ते हैं। पप्पू यादव के इस नाटक पर लोकसभा स्पीकर ने नाराजगी जताई, पप्पू यादव के आचरण को संसदीय भावना के खिलाफ बताया।
4: नहीं, वो तो स्पीकर साहब ने कह दिया कि ये रंग बदल बदल के, कपड़े बदल बदल के प्रदर्शन करने का जगह नहीं है, थोड़ा सीरियसनेस दिखाना चाहिए। आप सांसद है तो सांसद की तरह व्यवहार करना चाहिए, नाटक करने का जगह नहीं है। स्पीकर साहब ने कह दिया है, अलग से मुझे कहने का जरूरत नहीं है।
3: वहीं बीजेपी भी पूरे मामले को लेकर विपक्ष पर हमला कर रही है।
5: वो तो कालनेमी का वेश धारण करके आए थे और पूरे सदन ने इसकी निंदा की। तो ये सवाल उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि त्रेता युग के राम को हम लाए, राम राम जपियो रे सब माल हरपियो रे। आप भगवान के आस्था के साथ ही ने 154 करोड़ भारत के उस आस्था के साथ खिलवाड़ किए हैं जो राम को अपने जीवन में, कर्म में, चरित्र में, चिंतन में रखते हैं।
6: हमारे देश का, इन राजनीतिक पार्टियों का, कांग्रेस हो या सपा हो, जो वोट के खातिर सनातन को बदनाम करने का काम किया है, इसका बदला सनातन लेगा।
7: आपके माध्यम से देश का आम जनमानस देखे कि आखिर अयोध्या में क्या हुआ है। हम लोग तो विपक्ष के लोग हैं, जनता की आवाज उठाते हैं, जनता को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से अयोध्या में हुआ है, क्योंकि जो लोग मौके पे नहीं थे वो नहीं देख सकते, अब तो सीसीटीवी भी डिलीट हो गए हैं।
3: उधर संत समाज ने भी पप्पू यादव को लेकर सवाल खड़े किए हैं।
8: महामहिम राष्ट्रपति महोदया और लोकसभा अध्यक्ष दोनों से यह मांग करूंगा कि ऐसे सांसदों की संसद सदस्यता बर्खास्त होनी चाहिए।
9: इन्होंने अपराध किया है, इन्होंने पाप किया है। आप जरा बताइए कि जिन लोगों ने मंदिर में दान चोरी किया है, क्या वो भगवाधारी थे? वो तो आठों जेल गए, भगवा साधु तो थे नहीं। और यह आप जरा देखिए कितने दुर्भाग्य है। और हमें तो लगता है कि पूरे विपक्ष में एक और दो पप्पू नहीं है, पूरा विपक्ष ही पप्पू हो चुका है।
3: राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर समाजवादी पार्टी पिछले दो दिनों से दान पेटी के साथ प्रदर्शन कर रही है, जिसमें आज पप्पू यादव की एंट्री ने नया सियासी घमासान शुरू कर दिया। आज तक ब्यूरो।
0: अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में बन रहे बटेश्वर कॉरिडोर के, जिसके निर्माण में समाजवादी पार्टी ने आरोप लगा दिया है भ्रष्टाचार का। अब राजनीति गर्मा गई, बीजेपी ने विपक्षी दलों के हमले पर पलटवार कर दिया। अभी राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा उत्तर प्रदेश की सियासत में गूंज ही रहा है कि अब एक और धार्मिक स्थल पर सियासी विवाद छिड़ गया। ये तस्वीरें आगरा में बन रहे बटेश्वर कॉरिडोर की है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इन तस्वीरों को साझा किया और कॉरिडोर के निर्माण में भारी अनियमितता, गड़बड़ी और भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया। साथ ही दावा ये भी किया कि शिकायतकर्ताओं को धमकाया जा रहा है।
10: समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने बटेश्वर महादेव का एक वीडियो जारी करके सोशल मीडिया पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी पर साफ तरीके से कहा है कि बिना बेस के निर्माण के पीवीसी वहां पर सीमेंटेड की जा रही है, यानी कि खामियों की बात की है। राम मंदिर के बाद बटेश्वर महादेव पर यह समाजवादी पार्टी का सीधा निशाना है और कहना है कि कई शिकायतों के बावजूद भी वहां पर बीजेपी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। सरकार पर सीधे आरोप हैं कि अनियमितताएं हो रही हैं, ऐसे कॉरिडोर के निर्माण हो रहे हैं जहां पर सीधे सीधे अनियमितताओं के साथ लापरवाही की जा रही है, हालांकि जांच की बात कही जा रही है। हालांकि बीजेपी इस पूरे मामले पर कह रही है कि बेबुनियाद इस तरीके के आरोप समाजवादी पार्टी लगाती रहती है, जिनके पास कोई भी साक्ष्य मौजूद नहीं होता है और वो बरगाने का काम कर रही है।
0: यूपी में राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर पहले ही संग्राम जारी है। संसद तक इसे लेकर जंग छिड़ी है। इस बीच समाजवादी पार्टी ने धर्म आस्था से जुड़े एक और मुद्दे को उठाकर यूपी सरकार को घेरने की कोशिश की, तो उसे और भी विपक्षी पार्टियों का साथ मिल गया।
11: देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार वैसे तो ऊपर से लेकर नीचे तक जो भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, लेकिन अब इन्होंने भगवानों को भी नहीं छोड़ा, इन्होंने मंदिरों को भी नहीं छोड़ा। आज जिस तरीके से बटेश्वर कॉरिडोर में जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है, जिस तरीके से मिलावट हो रहा है, जिस तरीके से निर्माण में अनियमितता हो रही है, उसको माने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने अपने पोस्ट में दर्शाने का काम किया। वीडियो फुटेजेस के साथ उन्होंने दर्शाने का काम किया लगातार, चाहे उज्जैन का कॉरिडोर हो, चाहे काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर हो, चाहे आप प्रभु श्री राम के मंदिर अयोध्या का देख लीजिए, जिस तरीके से वहां पे भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो ये सरकार देखिए सिर्फ मंदिर नहीं, लोगों की भावनाएं हैं, लोगों की आस्था है। ये सरकार लोगों की भावनाओं से, लोगों की आस्था से भी खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं।
12: भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में पहले भ्रष्टाचार होता है, फिर शिकायतकर्ताओं को धमकाया जाता है। बटेश्वर कॉरिडोर में भी यही हो रहा है, राम मंदिर के निर्माण में भी यही हो रहा है, चंदा चोरी में भी यही हो रहा है। जिस तरीके से एक्सप्रेस वे धस रहे हैं, उन सारी जगहों पर शिकायतकर्ताओं को तो धमकाया जा रहा है। बटेश्वर कॉरिडोर में जो शिकायतकर्ता है, जो विसिल ब्लोअर है, उसी के खिलाफ बातें की जा रही, उसी को पुलिस प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी का तंत्र धमकाने में लगा।
0: उधर इन हमलों के बीच बीजेपी ने सभी आरोपों को गलत बताया और कहा कि बिना तथ्य झूठे आरोप लगाकर विकास कार्यों में अड़ंगा लगाया जा रहा है।
13: अखिलेश यादव जी की राजनीति अब केवल अफवाहों पर और आरोप पर तक सीमित रह गई है। बिना किसी ठोस प्रमाण के वे कुछ भी कहते रहते हैं। अगर उनके पास कोई ठोस प्रमाण है तो निश्चित रूप से जांच एजेंसी को दें। हमारी सरकार हर विषय पर जांच कराने के लिए तैयार है।
0: विपक्ष के हमलों और बीजेपी के पलटवार के बीच बटेश्वर कॉरिडोर पर नई राजनीति शुरू हो गई। एक और धार्मिक क्षेत्र को लेकर विपक्ष और बीजेपी अब आमने सामने आ गए हैं। आशीष श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। अब एक दिन पहले देर रात पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी किया, आंदोलन में शामिल छात्रों को नसीहत दी और आज आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री विकास योजनाओं की बड़ी सौगात देते दिखे। जेनजी को वीडियो संदेश में पीएम ने कहा कि बचपन में गलतियां होती हैं और उन्हें माफ किया जाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। अपने वीडियो संदेश में पीएम मोदी ने बच्चों की भाषा पर चिंता जताई। वहीं आज आंध्र प्रदेश में पीएम मोदी ने नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कॉरिडोर का उद्घाटन किया। पीएम मोदी के नए वीडियो संदेश की बात करते हैं, जिसके बारे में अभी हमने आपको बताया। शुक्रवार देर रात करीब 11 बजे की बात है जब जेनजी को एक संदेश दिया पीएम ने और इंस्टाग्राम पर लाइव आए, जेनजी को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि मैं बच्चों को माफ करना चाहता हूं। छात्र आंदोलन के बीच ये पीएम मोदी का पांचवा वीडियो संदेश है, जिसमें उन्होंने युवाओं से सही दिशा पर बढ़ते हुए सपनों के भारत के निर्माण की अपील की है।

0: नीट पेपर लीक पर छात्रों का प्रदर्शन, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और सियासत के बीच पीएम मोदी लगातार जेंजी से संवाद कर रहे हैं। नए कानून के तहत लगातार शिक्षा व्यवस्था में सुधार का भरोसा दे रहे हैं और अब इस कड़ी में पीएम मोदी ने जेंजी से संवाद में उस मुद्दे का जिक्र किया जिसने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पूरे देश को शर्मसार कर दिया। शुक्रवार देर रात पीएम मोदी एक बार फिर इंस्टाग्राम पर लाइव आए, जंतर मंतर पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर बात की और युवाओं की भाषा पर चिंता जताई।
1: जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया।
0: पीएम मोदी ने नई पीढ़ी की ऐसी भाषा पर दुख जताया, इसे समाज के लिए चिंताजनक बताया, सुधार की अपील की और गाली देने वाले छात्रों को माफ करने की बात कही।
1: हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं? लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं।
0: बीते 9 दिनों में छात्रों और पेपर लीक के मुद्दे पर पीएम का ये 5वां वीडियो संदेश है। एक बार फिर पीएम ने छात्रों से संयम, संवाद और सकारात्मक रास्ता अपनाने की अपील की।
1: मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है।
0: नीट पेपर लीक के बाद छात्रों को जबरदस्त गुस्सा था जिसका असर जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन में साफ दिखा। पुलिस छात्रों में झड़प के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई, लेकिन इस प्रदर्शन के बीच सरकार ने एक्शन में तेजी की। नया बिल आया, कानून बना, पेपर लीक रोकने के खाके तैयार हुए। अब पीएम मोदी उन छात्रों को सही दिशा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने आंदोलन के दौरान भाषा की सीमा पार की। आज तक ब्यूरो। और रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो।
3: इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक।
5: नीड अ गुड लैप? वी नो अ प्लेस जस्ट फॉर लैप्स। रेडियो ब्रिंग्स यू नॉनस्टॉप स्टैंड अप बिट्स बाय द बेस्ट कॉमिक्स इन द गेम, फ्रॉम ऑल टाइमर्स टू राइजिंग स्टार्स, एंड द पंचलाइन, इट्स ऑल वेटिंग फॉर यू ऑन TuneIn। हेड ऑन ओवर टू जस्ट फॉर लैप्स रेडियो टुडे।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
3: इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: TuneIn is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
2: शादी का किचन महके जहां गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
4: जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिस कहानी के बहुत अच्छे परिणाम हैं और बहुत दुखद परिणाम हैं। भारत एक राजमहल है, समृद्ध है, सोने की चिड़िया है। गहरी बात है वो ये है कि इस राजमहल के चारों तरफ झोपड़ पट्टियां हैं, झुग्गियां हैं, चुनौती वाले क्षेत्र हैं। भारत आए अंग्रेज, यहाँ के लोगों को देखा उन्होंने, जब यहाँ के ग्रंथों को ट्रांसलेट करना शुरू किया, पढ़ा उन्होंने कि ब्राह्मण का जन्म मुंह से हुआ है। ये डिपार्टमेंट बनाया ही गया था शोषण के लिए। कौन सा? पुलिस। किसने बनाया था? कॉर्नवालिस ने। और पुलिस डिपार्टमेंट की खास बात यह है कि जब उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट भारत में बनाया, तब वो डिपार्टमेंट ब्रिटेन में नहीं था। जुडिशरी, मॉडर्न जुडिशरी उन्होंने अपने फायदे के लिए बनाया। अंग्रेजी कानून, अंग्रेजी जज। तुम कल्पना कर सकते हो, आधुनिक काल से पहले LGBT सड़क पर आकर प्रदर्शन करें, इनको तोप में बांध के उड़ा दिया होता।
5: तो क्या सिर्फ अब हिस्ट्री सिर्फ जो बाहर से लोग आए थे यहाँ पे शासन करने के लिए, उनको विलन के रूप में दिखा रहे हैं? या फिर
4: जो भी सरकार सत्ता में आती है वो शिक्षा का इस्तेमाल करती है अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने। वंदे मातरम पे बहस हो रही है, हर दिन मंदिर मस्जिद पे बहस हो रही है, मुसलमान पे बहस। ये संसद बनी किस लिए? औरंगजेब जो था भैया, डेली 200 किलो जनेऊ तोलता था। कितना? 200 किलो भी, मतलब डेली वो कम से कम 10,000 ब्राह्मणों को मारता था, हिंदुओं को। मैं देखता हूँ मुसलमानों को और हिंदुओं को, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ। पहले मैं सोचता था पुलिस वाले यहाँ लगा के पॉइंट ब्लैंक से क्यों मारते, क्योंकि यहाँ ताला लगा हुआ है, तो इसीलिए मारते कि यहाँ मारे तो अगले जन्म में खुला हुआ रहेगा।
6: आपको लगता है कि आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद देश फिर बट सकता है?
4: इस बात को मैं रिपीटेडली कह चुका हूँ, एक विस्फोट होगा बेटा।
7: लेकिन आपके पढ़ाने के तरीके मुझे एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट लगता है कि आप जनता को ही बोल देते हैं कि जनता बड़ी बेवकूफ है, और फिर आप कहते हैं कि हमारे देश का युवा पढ़ना नहीं चाहता है।
8: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

जिनजी से संवाद के बाद पीएम मोदी ने की विकास की बात। आंध्र प्रदेश में एयरपोर्ट का उद्घाटन, कहा पहले एक परिवार के नाम पर होते थे एयरपोर्ट, अब विभूतियों को सम्मान। जंतर मंतर प्रदर्शन पर पीएम मोदी का छात्रों के नाम वीडियो संदेश, कहा मुझे मेरी मां को गाली दी गई, गुमराह बच्चों को करना चाहता हूं माफ, मिलकर बनाए सपनों का भारत। चढ़ावा चोरी को लेकर पप्पू यादव के प्रदर्शन पर बीजेपी वीएचपी और साधु संतों ने खुला मोर्चा, जंतर मंतर से लखनऊ तक विरोध, आस्था के अपमान का आरोप। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में टारगेट किलिंग, दो गैर कश्मीरी मजदूरों को आतंकियों ने मारी गोली, दोनों की मौत, इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज। और पहाड़ से मैदान तक बाढ़ बारिश का आतंक, जम्मू कश्मीर में भारी आफत, पानी पानी हुआ गुजरात, असम में सैलाब से अब तक 82 की मौत।

0: नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। आप देख रहे हैं आज तक। देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर एक जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। जेन जी वहां सड़कों पर आए और उसके बाद से देश में हर व्यक्ति जो जेन जी नहीं है वो ये जानना चाह रहा है कि आखिर ये टर्म जेन जी है क्या, ये कैसे लोग हैं, मतलब ये धारा के विपरीत दौड़ते भागते हुए चलते हुए नजर आते हैं। समाज क्या है, समाज की हमारी तमाम तरह की चीजें हैं, समाज एक जिस तरीके से जिस पैटर्न पर चलता है, जिस पैटर्न को फॉलो करता है, ये उसको फॉलो करते नहीं दिखाई देते हैं। इनकी भाषा वैसी नहीं दिखाई देती है जैसे शायद इनके पेरेंट्स या उससे पहले की पीढ़ी बोलती रही हो। तो क्या ये अलग हैं, या जैसे हिंदी में एक अपभ्रंश शब्द होता है, या बदल गया है हमारा समाज, पूरी तरह से बदल गया है। हम जेन जीज को जो समझते थे, मतलब आपने सोशल मीडिया पे बहुत तरह की बहस देखी होगी कि ये शायद इस तरह के टर्म्स का प्रयोग किया गया, समझदार कम है, जानते नहीं है, समझते नहीं है, सोशल मीडिया तक इनकी दुनिया सीमित रहती है। लेकिन जब इन्होंने जंतर मंतर पर अपनी प्रेजेंस दिखाई और इन्होंने सरकार को झुकने पर मजबूर भी किया, तो अब क्या वाकई हम सब गलत थे जो हम जेंजीज को समझ नहीं पाए थे? और जेंजीज को समझने के लिए, आज के थॉट प्रोसेस को समझने के लिए खास मेहमान भी हमारे साथ हैं, और एक ही करके उन मेहमानों से मैं आपको मिलवाता हूं। हमारे साथ फाउंडर MWNTAI डॉक्टर संदीप वोरा जुड़े हैं, जो कि साइकियाट्रिस्ट हैं। हमारे साथ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर मनीषा सिंघल हमारे साथ हैं। एजुकेशनिस्ट हमारे साथ डॉक्टर मनीष गौतम जी हैं, और हमारे साथ करियर काउंसलर जितिन चावला जी हैं। डॉक्टर संदीप, आज चर्चा की शुरुआत आपसे, हम आपसे समझना चाह रहे कि ये जेन जी, आपकी नज़र में जेन जी क्या है? क्या आपका भी जेन जी को लेकर नज़रिया पहले अलग था और दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन के बाद वो नज़रिया बदल गया?
1: देखिए, मेरे हिसाब से मैं जिस ब्रांच में हूँ, मैं डेली अपने क्लिनिक में हर तरह के मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, तो जेंजी को मैं बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ लास्ट कई सालों से, उनकी प्रॉब्लम्स को, उनके चैलेंजेस को। ये जनरेशन काफ़ी डिफरेंट है। उसका रीज़न है कि ये वो जनरेशन है जिसने पैदा होते सार जिसके हाथ में इंटरनेट था, जिसके पास सहूलियत थी, जिसके पास कनेक्टिविटी थी, वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी थी, और उनका अपना थॉट प्रोसेस उसके हिसाब से धीरे धीरे मोल्ड होता गया। हाँ, मैंने ये नहीं एक्सपेक्ट किया था कि ये इस तरह से एक जॉइंट तरीके से एक अपनी आवाज़ को उठा पाएंगे, तरीका जो भी रहा हो, बट डेफिनेटली जनरेशन डिफरेंट है और इस जनरेशन का थॉट प्रोसेस मैं कहूँगा अलग है बाकी प्रीवियस जनरेशन से। और प्रीवियस जनरेशन जो थी, इंक्लूडिंग अवर्स एंड अदर्स अराउंड बिफोर और आफ्टर मी, उनके पास शुरू से एक हमारे को सोशल नॉर्म्स में बताया जाता था कि आप अपने से बड़े को क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, आपको ओबीडियंट रहना है, तो इंट्रोड्यूस किया जाता सिंसियर एंड ओबीडियंट सन, यू नो। तो वो जो चीज़ है वो

0: और आपके सामने जब रुकावटें आ जाती हैं जो अनएक्सपेक्टेड होती हैं, तो डेफिनेटली टर्बुलेंस आएगी माइंड के अंदर, डेफिनेटली आपके अंदर जो आप एक्सपेक्ट करें अगर नहीं होगा तो फ्रस्ट्रेशन ग्रो करेगी। तो मेरे हिसाब से ये जनरेशन डिफरेंट है और हम सबको उनके हिसाब से समझना चाहिए, और हाँ जहां वो गड़बड़ कर रहे हैं उनको बताना चाहिए कि ये जो रास्ता है इसमें ये चीज गलत है, बाकी आप जो एक्सप्रेस कर रहे हो वो सही है बट कुछ गार्डरेल्स के साथ,
1: कहां से बचकर चलना है कहां जाना जरूरी
0: है।
1: मनीषा जी, ये जनरेशन गैप है कि हम लोग इनको समझ नहीं पाए, मतलब हम इन्हें कहते कि ये शालीन नहीं है, व्यवहार कुशल नहीं है।
2: देखिए जो जेन जी है वो डिजिटल जनरेशन है, ये बच्चे रील्स देखते हुए बड़े हुए हैं, ठीक है। सो इस चीज को हमें बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए। जनरेशन गैप वैसे भी होता है लेकिन जेन जी और जो हमारी जनरेशन जेन एक्स उसमें काफ़ी ज़्यादा गैप है, और उसके रीजंस हैं। अब जो ये जो डेवलपमेंट हुई है करंट, इसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहती हूँ कि किस तरह से ये जेंजी के जो ट्रेट्स हैं जिनके बारे में हम जनरली बात करते हैं वो क्यों आए हैं, कुछ रीजंस हैं उसके पीछे। और रीजंस डेफिनेटली जहाँ पे भी रियरिंग होती है, अपब्रिंगिंग उनकी किस तरह से हुई है, क्या उन्हें एक्सपोजर मिला है, ये बहुत मायने रखता है। तो जो रील एडिक्शन इसमें एक हो गया, या फिर कंटेंट, सोशल मीडिया का एक्सपोजर, और सोशल मीडिया से क्या चीज़ें उनको इन्फ्लुएंस करती हैं। सोशल मीडिया मतलब बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, केवल कुछ एक ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी हैं जो जेन ज़ी के बीच में काफ़ी कॉमन है, और जो शायद जेन एक्स तक मुझे लगता है उनको आइडिया भी ना हो, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको नहीं पता होगा। तो ये रीजंस एक है जिसकी वजह से क्यों वो यहाँ तक पहुँचे हैं। अब उनकी अगर ट्रेट्स की बात करें, उनकी नेचर, उनकी एक कॉमन नेचर की अगर हम बात करते हैं, पर्सनालिटी की बात करते हैं, तो उसमें दे आर वेरी पावरफुल बट एट द सेम टाइम दे आर वेरी सेंसिटिव, वेरी इमोशनल। तो उनका जो इमोशन पे एक कंट्रोल है वो थोड़ा सा वीक है, उसका भी रीजन है क्यों वीक होता है इमोशंस पे कंट्रोल। अब रील अगर हम देख रहे हैं, डिजिटल कोई भी अगर किसी भी स्क्रीन हम देख रहे हैं, सो मैक्सिमम टाइम अगर हमारा उस पे जा रहा है, स्पेशली कोविड का टाइम आया उसमें हम सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ही यूज़ कर रहे थे, तो वहाँ पे थोड़ा सा अटेंशन स्पैन कम हो जाता है। अब अटेंशन स्पैन कम हुआ तो कुछ चीज़ इमिडिएटली अगर नहीं मिलती है, डेफिनेटली आप रेस्टलेस हो जाते हो, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, और उस समय उनकी रिएक्शन और रिस्पॉन्स क्या होता है वो उनके कंट्रोल में नहीं होता है। इसके लिए एक अगर कंडीशनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग अगर रहे सो थोड़ा सा बेटर होता है।
1: मनीष जी, मतलब मैं जिस शेर का मैंने एक अंतिम मिसरा कहा था, पूरा शेर यह था कि नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए, कहाँ से बच के चलना है, कहाँ जाना जरूरी है। क्या ये जेन ज़ी सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं?
3: देखिए, इसमें सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये जो जनरेशन है, अभी जैसे कि हमारे साइकोलॉजिस्ट सर ने बताया कि इट्स अ डिफरेंट जनरेशन, लेकिन इट्स अ डिफरेंट जनरेशन विच इज फेसिंग इनकाउंटरिंग डिफरेंट नेचर चैलेंजेस। उस चैलेंजेस का स्रोत क्या है इसको समझना होगा। मैं अभी जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ, प्रोटेस्ट का फॉर्मेट को जस्टिफाई तो नहीं करता हूं, लेकिन निश्चित तौर पे इस प्रोटेस्ट ने इस कंट्री में एक नैरेटिव, एक डायरेक्टिव की पेपर ली की जे बिग इशू एंड सम बहुत कठोर और बड़े कदम उठाने चाहिए कि पेपर लीक को रोका जा सके। अगर समस्या को समझना है तो पहले आपको थोड़ा सा इतिहास में जाना होगा। हमारे यहाँ देश में क्या हुआ कि इंटरनेट पेनिट्रेशन, सोशल मीडिया पॉपुलेशन ग्रोथ अनप्रेसिडेंटेड रेट पे हुआ, इसकी तैयारी करनी चाहिए थी। जितने भी विकसित देश हैं वहाँ पे आप देखेंगे कि कोई भी चीज जो पहले होना है उसको फोर्सी किया जाता है, उसके लिए प्रिपेयर्डनेस किया जाता है। आज हमारे देश के समाज के स्तर पे, शिक्षा व्यवस्था के स्तर पे तैयारी होनी थी कि कैसे हम इंटरनेट वाइज यूज को प्रमोट करेंगे, वो हम कर नहीं पाए। हमारा अचानक से इंटरनेट पॉपुलेशन जो है अनप्रेसिडेंटेड रेट पे ग्रो किया, और जब आज उस माहौल में हम अभी बात हो रही थी हमारी एक समाज शास्त्री से, उन्होंने बहुत अच्छा कहा कि अभी जो पेरेंटिंग हो रहा है, नीदर दैट पेरेंटिंग इज बीइंग डन एट होम नॉर इट इज बीइंग डन बाय सोसाइटी, इट इज बीइंग डन बाय सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया पे जो पेरेंटिंग होगा वो आप समझ सकते हैं कि उसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों होंगे। अब वो कॉन्स को हम कैसे मिनिमाइज कर

0: सकते हैं, उसके लिए हर स्तर पे तैयारी करनी चाहिए थी जहां हम विफल रहे।
1: जो नकारात्मक प्रभाव आप बात करें, थोड़ा उनको विस्तार से बताएं कि किस तरह के नेगेटिव इंपैक्ट है उसका।
0: देखिए मींस 10 साल पहले आपका जो सार्वजनिक जीवन में व्यवहार व्हाट वाज नॉट ओके इज वेरी मच ओके टुडे, और ये जो माहौल निर्मित हुआ है उसमें सोशल मीडिया का रोल है। पहले भी छात्र आंदोलन हुए हैं, पहले भी जो है युवा सड़कों पर अपनी मांगों को लेकर आई है, लेकिन क्या उन मांगों को जब वो लेकर आई है तो उसका आचरण व्यवहार शब्दों का चयन उनका ऐसा था? तो आज हमें कंप्लेन नहीं करना चाहिए, अपने विफलताओं को स्वयं देखना चाहिए कि हमने वो तैयारी क्यों नहीं की।
1: जितेंद्र जी, आप इसे उनकी सामाजिक समझ की कमी समझते हैं जो उनका मतलब उनके व्यक्तित्व में मतलब उनकी जो खराब भाषा है, तो ये सामाजिक समझ की उनकी सोसाइटी में किस तरह से रहना है उसकी कमी है, या इनको समाज की परवाह ही नहीं है?
2: सबसे पहले तो मुझे, मैं वैसे टीवी कम देखता हूँ, पिछले कई दिनों से रोज रात को मीम्स देख के बहुत खुश होता हूँ मैं मेरे को बड़ा मजा आता है। एंड ये मैं ही नहीं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, तो आई थिंक इन द फेस करने की जो बात है, और शायद मैं अपने टाइम में भी कहीं कहीं पार्टिसिपेट किया, मैं हंसराज कॉलेज से पढ़ाई कर रहा था, MBA FMS से किया, तो उस टाइम पर भी हम लोगों ने भी जैसे किया, तो एक थिंग, एक तो ये है कि अच्छी बात है कि आप खड़े हो पा रहे हो अच्छे मुद्दों पे और उसके क्या कर पा रहे हो। मैं एज अ पर्सन प्रॉब्ली मैं उसको जज नहीं करूँगा कि ऐसे हुआ या वैसे हुआ, लेकिन मेरा तो खैर ज़्यादा ये है कि अभी स्टूडेंट्स क्या देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं पता हमारे लिए आगे किस तरह से सरकार सिस्टम स्कूल्स कॉलेजेस अच्छी जॉब्स मुहैया करा सकते हैं, सक्सेसफुल बना सकते हैं, तो क्या चीज़ अवेलेबल है, तो उसमें काफ़ी कमी है, पूरे सिस्टम में काफ़ी कमी है। मैं एज अ करियर काउंसलर देखता हूँ अगर चीज़ों को, तो क्या ज़रूरत है सबसे पहले इतने सारे लोगों को नीट, क्योंकि नीट हो गया, JEE हो गया, सिविल सर्विसेज हो गया, इसका इतना ज़्यादा रश भी इसीलिए है क्योंकि देर इज़ लैक ऑफ करियर काउंसलिंग। क्योंकि आपको, आपने शुरू में ही, अगर मैं प्रिंसिपल से भी पूछूं, मैं भी कुछ करियर्स बोलूँगा लोगों ने सुने भी नहीं होंगे। कोई मेरे को यहाँ बता सकता है कि BSc लॉ कहाँ से कर सकते हैं? एज अ साइंस स्टूडेंट मैं BSc और लॉ का कॉम्बिनेशन कर सकता हूँ। आई कैन बी अ काइनेसियोलॉजिस्ट, US और कनाडा में बहुत अच्छा चलता है ये करियर। आई कैन बी अ पोडियाट्रिस्ट एंड सो ऑन, मतलब मैं इतने सारे करियर्स अभी बोल सकता हूँ। लेकिन दिक्कत क्या है कि ना गवर्नमेंट सिस्टम में समझ है, ना प्रिंसिपल्स को समझ है, एक्सेप्ट एक जो सोशियो इकोनॉमिक क्लास बिल्कुल टॉप वाला हो गया वो लोग रिसर्च कर पा रहे हैं। आप बल्कि हैरानी होगी जब मैं अगर दिल्ली NCR के टॉप स्कूल्स में देखूंगा तो उसमें बायो का सिलेक्शन ही कम हो गया है, लेकिन अगर मैं सोनीपत जाता हूँ, फरीदाबाद जाता हूँ, गाजियाबाद जाता हूँ या कहीं मेरठ जाता हूँ तो बहुत ज़्यादा है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोगों को समझ में आ गया कि मैं IIM इंदौर जाके, IIM रोहतक जाके 5 साल में एक अच्छा करियर बिल्डअप कर लूँगा, लेकिन इधर वालों को आसपास समाज में, पेरेंट्स को, जितने एडल्ट्स बच्चों के पास हैं, उन्होंने कुछ रिसर्च ही नहीं किया। कई बारी बच्चों ने भी, मतलब दिस इज़ अ स्मार्ट जनरेशन, लेकिन ChatGPT Perplexity यूज़ करके रिसर्च तो करो कि भाई क्या नया चीज़ आ रही है। तो जैसे ही आप ऑप्शन देंगे तो आप चेंज हो जाएगा। या अगर मैं गवर्नमेंट सिस्टम की बात करूँ तो बहुत कायदे से एक डिटेल्ड स्टैटिस्टिकल रिसर्च होनी चाहिए कि अगला प्रोजेक्शन, जैसे CII, McKinsey ये सब प्रोजेक्ट करते हैं कि कौन सी जॉब्स आएंगी, तो अगला प्रोजेक्शन जॉब्स का 2 साल बाद इतना है, 5 साल बाद ये एरिया ग्रो कर रहा है, इसीलिए इस एरिया में पढ़ाई करने से इस टाइप की जॉब्स मिलेंगी, रादर देन कि सब लोग एक बिल्कुल भेड़ चाल में एक ही साइड चले जा रहे हैं जो कि आज की डेट में है। सो द प्रॉब्लम इज दैट मैचिंग इज नॉट हैपनिंग, इसलिए बहुत सारे लोग एक साइड में गए, रिजल्ट इन, और फिर करप्शन इन द सोसाइटी, क्योंकि सब लोग सेम चीज़ चाह रहे हैं, तो देर आर पीपल इन द सिस्टम विल मेक मनी। इसी का कोई कॉरस्पॉन्डिंग एक मॉडल है चाइना में, गोकाओ करके टेस्ट होता है जो कि 1,20,00,000 से ज़्यादा लोग देते हैं हर साल। तो उस वाले टेस्ट में चाइना ने गवर्नमेंट को ही नहीं, कम से कम 8 और मतलब आर्मी भी उसमें इन्वॉल्व है, बाकी लोग भी इन्वॉल्व है, जो कि इंडिया में बहुत लेट स्टेज में हुआ। तो गवर्नमेंट को ये वाली चीज़ पकड़ के चलनी चाहिए अगर वो टेस्ट वैसा है, लेकिन दूसरी साइड से हमें भी एज स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, स्कूल्स, एजुकेशन सिस्टम, जो गवर्नमेंट में सिविल सर्वेंट देख रहे हैं इस चीज़ को, उनको पहले से ये चीज़ प्लानिंग करनी है कि भाई, क्योंकि अल्टीमेटली अगर मैं स्टूडेंट, मैं इनकी जगह मैं कहूँगा यार ये सब ठीक है, चलो ये भी हुआ, ये भी हुआ, लेकिन मुझे, मैं सक्सेसफुल कैसे हो सकता हूँ, किस साइड में जाके मेरे को क्या रास्ते दे पा रहे हैं मेरा स्कूल कॉलेज या मेरी या मेरा पूरी मेरी सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, एजुकेशन बोर्ड्स मेरे को कैसे सक्सेसफुल बनाएंगे।
1: आप रिमार्क फिर मैम,
0: राजीव जी आपने कहा कि अगर बच्चों ने तैयारी की है और उनको अगर दोबारा एग्जाम लिखने को कहा जाए तो उसमें क्या, मैंने बहुत बड़ी बात नहीं है। सिर्फ आप व्यक्तिगत तौर पे इसको सोचिए, अगर हम आपको कहे कि इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड करने के बाद एक घंटे बाद कल अभी फिर से इसको रिकॉर्ड कर लीजिए और इसकी तैयारी आपने आधे घंटे में की है, ठीक है, वो एक साल से तैयारी कर रहे हैं और तब उनको कहा जाए, और वो उम्र और वो उनकी जो मानसिक स्थिति है, पूरा परिवार उनके साथ तैयारी कर रहा है, उनके इर्द गिर्द के लोग तैयारी कर रहे हैं, और उससे भी ज्यादा जब वो देखते हैं कि मेहनत करने के बाद अगर लीक नहीं पता चला, और मेहनत करने के बाद अगर एक डिजर्विंग कैंडिडेट को लगता है कि मेरा नहीं हुआ, आपको पता नहीं है कि आप इस कंट्री को व्हाट काइंड ऑफ जनरेशन यू आर गिफ्टिंग इन डीप एंगर फ्रस्ट्रेशन, एक्सप्रेस करे या ना करे।
1: मनीष जो सर प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं कि कितनी परेशानियों से गुजरता है कोई भी व्यक्ति, और अब जनरेशन जो है जेंजी की बात हो रही है, लेकिन इन्हीं परेशानियों से तो जेंजी से पहले की पीढ़ी भी गुजरी, लेकिन वो इतने एग्रेसिवली उन्होंने अपनी बात कभी नहीं रखे, ये उनकी कमी थी या इनकी अच्छाई या इनकी जागरूकता।
3: कमी या अच्छाई के बारे में मैं नहीं कमेंट करूंगी, लेकिन जो अपब्रिंगिंग है, एक यूनिवर्सल अपब्रिंगिंग जनरेशन की, एक सर्टेन जनरेशन की, और अभी जो जेंजी के बात हम कर रहे हैं, तो उनकी जिस भी तरह से उनका पालन पोषण हुआ है, तो उसमें कुछ ना कुछ यूनिफॉर्मिटी तो है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। और अगर ऐसा हो रहा है तो अगर हम वन टू वन, हम अगर मेरा ये एक मैसेज है हमारे सिस्टम के लिए, एजुकेशन सिस्टम, हमारा गवर्नमेंट सिस्टम, अगर हम वन ऑन वन बात करें तो हम उनको समझने की कोशिश कर सकते हैं। सो किस मिडिल ग्राउंड पे आके उनके क्या क्वेरीज हैं, उनके क्या क्या चीज़ें हैं जो उनको सही नहीं लग रही हैं, तो एक वो कम्युनिकेशन होना चाहिए।
1: सवाल ये भी है कि क्या जेंजीज का ब्रेन वॉश करना बहुत इजी है, बहुत आसान है?
4: मैं इसको ब्रेन वॉश तो नहीं कहूंगा, बट मैं कहूंगा हमारा जो अदर जनरेशन है उनका उनके साथ रेगुलर एंगेजमेंट जरूरी है, और अगर उन्होंने बचपन से यही देखा है कि उनके लिए ये डिजिटल माध्यम है, तो हम लोगों को डिजिटली उनसे कनेक्ट करके उनके साथ कम्युनिकेशन और टू वे डायलॉग करना जरूरी है फॉर देम, फॉर अस टू एक्सप्लेन देम। तो अब मैं सोच, जब आपने क्वेश्चन किया तो मैं सोचा था अगर मेरे समय पे पेपर लीक हुआ तो मैं क्या करता और अब मैं क्या करता, फर्क है। अगर मेरे समय में पेपर लीक किया होता तो मैं क्या करता, जाता माताजी पिताजी के पास, सिर पकड़ के बैठ जाता, रोता, वो कहते बेटा देखिए हमारे हाथ में नहीं है, बात खत्म हो जाती है, मैं दोबारा ट्राई करता, क्योंकि उस वक्त कोई चैनल था नहीं, उस वक्त सिर्फ हमारे पेरेंट्स या हमारे एल्डरली हमारे साथ होते थे। अब मेरे पास मल्टीपल चैनल्स हैं, तो मैं सीधा इंस्टा पे पहले अपना एंग्विश एक फ्रेंड से शेयर करूंगा, फिर दूसरे से करूंगा, दूसरा करेगा ऐसी कम तैसी, यू नो व्हाट द वे वी टॉक। तो जो इंस्टा के रूप में अगर सारी जनरेशन एक दूसरे कम्युनिकेट कर रही है, हमारे को एज सीनियर्स वी मस्ट रेसिप्रोकेट इट बाय कम्युनिकेटिंग विद देम इन द सेम वे थ्रू इंस्टा और अदरवेज। इसका मतलब यह है कि जब आपका ये लीक हुआ था, आपके जो भी वे से जिस तरीके से सीरियसली गवर्नमेंट उसको हैंडल कर रही थी, एक एक पॉइंट इंस्टा के थ्रू या बाकी जेंस के थ्रू जेंजी तक जाना चाहिए था कि देखो हम ये कर रहे हैं, इन लोगों को हटाएं, लोग दैट वुड हैव चेंज द होल थिंग।
1: अब तो शुरू कर दिया,
4: अब कर दिया, ऑफकोर्स अब कर दिया, बेटर लेट देन नेवर। तो उस हिसाब से जेंजी को एंगेज करने के लिए गवर्नमेंट के, मेरा सजेशन है गवर्नमेंट के हर डिपार्टमेंट के साथ इनके साथ डिजिटली कनेक्ट होना जरूरी है फॉर अस टू सी टू इट कि इस तरह का क्योस फ्यूचर में ना हो।
3: यहाँ पर एक पॉइंट और एड करना चाहूंगी, यहाँ पे हमारे टाइम में या प्रीवियस जनरेशन के टाइम में इतना कॉम्पिटिशन नहीं होता था, होता था लेकिन बहुत डिफरेंट लेवल था वो। आज के टाइम में पीयर प्रेशर, कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है, और बुलिंग बुलिंग के केसेस इतने नहीं होते थे. अब आज किस चीज को लेके बच्चे ही बच्चे आपस में एक दूसरे को बुली करते हैं. सो यू नेवर नो, रिलेशनशिप है तो बुलिंग, नहीं है तो बुलिंग, कितने एक्स हैं तो बुलिंग, नहीं है तो बुलिंग.
1: ठीक है,
3: सो इट्स एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट.
1: टाइम बहुत कम है तो मैं 30-30 सेकंड में आप दोनों का रिएक्शन लेना चाहूंगा कि सब सिस्टम से लड़ाई करते हुए हमने देखा जितिन जी, लेकिन जब ये जॉब में आ जाते हैं तो क्या वो जैसे मिलेनियल्स या पहले की पीढ़ी कर रही थी उतना पेशेंस उतना धैर्य है जेन जी में?
2: सो दो चीज़ें, एक तो काफ़ी सिलेक्शन जो जॉब्स का करते हैं वो देखते हैं कि हाँ मैं मैच किससे कर रहा हूँ.
1: हाँ.
2: तो मेरे को आजकल इंजीनियर्स मिल रहे हैं जो पब्लिक पॉलिसी में काम कर रहे हैं, BBA जो साइकोलॉजी में चले गए बाद में शिफ्ट कर लिया, तो एक तो इनके लिए एवेन्यूज भी बढ़ गए हैं और एक्सप्लोरेशन ऑनलाइन करना आसान है. तो जेन जी मतलब शिफ्ट करके और एक ही दो करियर में ही नहीं, मेरा ये मानना है कि ये लोग कम से कम 6-9 करियर ऑप्शंस में रहेंगे, पहले की तरह नहीं कि आप ही एक ही करियर में. दूसरी बात क्या है कि स्किल्स के ऊपर ध्यान करना चाहिए, स्कूल कॉलेजेस गवर्नमेंट को, इट इज़ ऑल अबाउट स्किल्स, नॉट अबाउट पेपर डिग्रीज, नॉट अबाउट कि ये चीज़ करोगे. बहुत सारे जो वर्ल्ड की टॉप जॉब्स हैं जैसे कंसल्टिंग हो गई, जैसे टेक मैनेजमेंट होगी, वो कोई भी करता है. आपने मेरा एक स्टूडेंट है जिसने पॉल साइंस किया है लेकिन वो भी एक कंसल्टिंग कंपनी में काम कर रहे हैं, जिसने IIT से पढ़ा है वो भी कंसल्टिंग में कर रहे हैं, मेरा एक स्टूडेंट है जिसने MBBS करके आगे मैनेजमेंट किया, उसने आके एक कोवर्किंग स्पेस कंपनी स्टार्ट करी, 230 करोड़ में कंपनी बेच दी, तो उसका ही बिल्कुल एक अलग ही करियर वो चीज चल गया. तो अपॉर्चुनिटीज आजकल बहुत हैं, जस्ट ओपन अप योर माइंड एंड बी सक्सेसफुल.
1: क्या नई क्रांति का नाम है जेन जी?
0: नहीं, देखिए जेन जी को आप केवल वो जिस अवस्था में है उसी के आधार पे मत जज करिए. मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि अगर एक बार वो जब तैयारी कर रहे हैं और उसके बाद जब उनका सिलेक्शन होता है तो उनका एक्सपीरियंस मैच्योरिटी लेवल आगे बढ़ता है और उसके अनुसार उनके अंदर भी धैर्य भी आता है, उनके व्यवहार में आचरण में बदलाव भी आता है, रूपांतरण भी आता है. हम सबको ये सोचना है कि 15-20 साल पहले जैसे हम थे वैसे हम आज नहीं हैं. वो भी आज जैसे हैं सिलेक्शन के बाद वो अलग होंगे, क्योंकि एक्सपीरियंशियल लर्निंग बेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग होता है और वो लर्न करने के लिए वो ज्यादा हमसे ओपन है.
1: एक बार फिर से तमाम एक्सपर्ट्स के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं. एक्सपर्ट्स के माध्यम से हमने जेन जी को समझने की कोशिश की. थैंक यू सो मच आप सभी आज तक के साथ जुड़े. अब रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक.
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी.
7: टेक इट इजी विद सॉफ्ट हिट्स. Soft Hits brings together relaxing pop favorites from the 70s, 80s, and 90s. Familiar songs, easy melodies, and a sound that lets you slow down. Perfect for stepping back and catching your breath. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Soft Hits to start listening now. Time after time.
8: Sokudo.
9: शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ.
10: गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश.

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. In association with
1: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
2: Tune in's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.
4: शादी का किचन महके जहां गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां
5: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
6: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: नीट पेपर लीक पर छात्रों का प्रदर्शन, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और सियासत के बीच पीएम मोदी लगातार जेंजी से संवाद कर रहे हैं। नए कानून के तहत लगातार शिक्षा व्यवस्था में सुधार का भरोसा दे रहे हैं और अब इस कड़ी में पीएम मोदी ने जेंजी से संवाद में उस मुद्दे का जिक्र किया जिसने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पूरे देश को शर्मसार कर दिया। शुक्रवार देर रात पीएम मोदी एक बार फिर इंस्टाग्राम पर लाइव आए, जंतर मंतर पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर बात की और युवाओं की भाषा पर चिंता जताई।
1: जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया।
0: पीएम मोदी ने नई पीढ़ी की ऐसी भाषा पर दुख जताया, इसे समाज के लिए चिंताजनक बताया, सुधार की अपील की और गाली देने वाले छात्रों को माफ करने की बात कही।
1: हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती है, लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं।
0: बीते 9 दिनों में छात्रों और पेपर लीक के मुद्दे पर पीएम का ये 5वां वीडियो संदेश है। एक बार फिर पीएम ने छात्रों से संयम, संवाद और सकारात्मक रास्ता अपनाने की अपील की।
1: मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है।
0: नीट पेपर लीक के बाद छात्रों को जबरदस्त गुस्सा था जिसका असर जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन में साफ दिखा। पुलिस छात्रों में झड़प के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई, लेकिन इस प्रदर्शन के बीच सरकार ने एक्शन में तेजी की। नया बिल आया, कानून बना, पेपर लीक रोकने के खाके तैयार हुए। अब पीएम मोदी उन छात्रों को सही दिशा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने आंदोलन के दौरान भाषा की सीमा पार की। आज तक ब्यूरो।
2: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

जेन जी से संवाद के बाद पीएम मोदी ने किए विकास की बात। आंध्र प्रदेश में एयरपोर्ट का उद्घाटन, कहा पहले एक परिवार के नाम होते थे एयरपोर्ट, अब विभूतियों को सम्मान। जंतर मंतर प्रदर्शन पर प्रधानमंत्री मोदी का छात्रों के नाम वीडियो संदेश, कहा मुझे मेरी मां को गाली दी गई, गुमराह बच्चों को माफ करना चाहता हूं, मिलकर बनाए सपनों का भारत। चढ़ावा चोरी को लेकर पप्पू यादव के प्रदर्शन पर बीजेपी, वीएचपी और साधु संतों ने खोला मोर्चा, जंतर मंतर से लखनऊ तक प्रदर्शन, आस्था के अपमान का आरोप। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में टारगेट किलिंग, दो गैर कश्मीरी मजदूरों को आतंकियों ने मारी गोली, दोनों की मौत, इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज। और पहाड़ से मैदान तक बाढ़, बारिश का आतंक, जम्मू कश्मीर में भारी आफत, पानी पानी गुजरात, असम में सैलाब से अब तक 82 की मौत।

0: नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं आज तक। एक शब्द जिसकी चर्चा आजकल सबसे ज्यादा है वो है जेनरेशन जी, जेन जी। मुझे लगता है कि जब तक जेन जी शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ था, किसी ने यह पता लगाने की कोशिश भी नहीं की थी कि भाई मैं किस जेनरेशन का हूं। स्वामी रामदेव हमारे साथ हैं क्योंकि उनके विचार हर ऐसे मुद्दे के साथ होते हैं जिसका सरोकार समाज से होता है। स्वामी जी, बहुत स्वागत है आपका।
1: मेरी ज्यादा हो गई लेकिन मैं भी जेन जी ही हूं। माने हर समय हमारे भीतर उत्साह होना चाहिए, पराक्रम होना चाहिए, कुछ नया करने का जज्बा होना चाहिए, शौर्य वीरता होनी चाहिए, सोल्यूशन को खोजने के लिए एक हमारी सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच होनी चाहिए। तो जिस तरह से लेकिन पिछले दिनों सड़कों से लेकर के संसद तक जो हंगामा बरप रहा है और उसमें दिख रहा है कि हाँ, अपने हितों की रक्षा के लिए हेल्थ, एजुकेशन, माने शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी और बहुत सारे हमारे सामने संघर्ष हैं, चुनौतियां हैं, समस्याएं, लेकिन उनका समाधान खाली बगावत, विद्रोह या गाली गलौज करके तो नहीं निकलेगा। इसलिए मैं कहूँगा युवाओं से, गालीबाज नहीं, हुनरबाज बनो। अपने भीतर वो शौर्य, वो पराक्रम, वो वीरता, वो ज्ञान, वो विज्ञान, वो दृष्टि, वो दक्षता, वो शोध, वो बोध, वो विरासत, वो विकास, और इस तरह का अपना सर्वांगीण प्रयास करो कि आप कुछ इतना बन पाए कि आपके ऊपर आपका परिवार, ये समाज, ये राष्ट्र और पूरा विश्व भारत के युवाओं को देख रहा है, वो गौरव की अनुभूति करे कि भाई यूथ हो तो भारत जैसा, जेन जी जो तो भारत जैसी। लेकिन पिछले दिनों जो हुआ उसमें एक पक्ष तो है कि भाई आप अपने हकों के लिए लड़ सकते और कुछ चेंज भी ला सकते हैं। वैसे मैं खाली शिक्षा मंत्री बदल दिया इसको को चेंज नहीं मानता हूं, वो व्यक्ति बदला है, व्यवस्था बदलनी पड़ेगी। और खाली राजनीतिक व्यवस्था बदलने से बात नहीं बनेगी, अपने आप को भी बदलना पड़ेगा। और इस दिशा में यदि पुरुषार्थ करेंगे तो पढ़े लिखे, नशेड़ी, गंजेड़ी, भंगेड़ी, गालीबाज नहीं, हुनरबाज और अच्छे बच्चे तैयार होंगे जो अपना और भारत का भविष्य बनाए।
0: स्वामी जी, जब भी जो देश की किसी भी दुनिया में कहीं पर भी जो सबसे नई पीढ़ी होती है वो वही उस पीढ़ी की जेन जी होती है, मतलब जेन एक्स ले लें हम, उसके बाद मिलेनियल्स को ले लें हम, जेन जी को ले लें, आने वाले समय में अल्फा, जो कि अभी से ही विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, मैं उनका प्रतिनिधित्व करते हुए आपसे सवाल पूछती हूं क्योंकि जेन जी ऐसे ही पूछता है कि अब आप बताएंगे कि हमें विरोध कैसे करना है।
1: नहीं, विरोध का एक तरीका देश में निर्धारित होता है, डेमोक्रेटिक, कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक, लोकतांत्रिक, मानवीय और हमारी सामाजिक सरोकार के साथ विरोध होता है ना। माने विरोध का विरोध नहीं है, विरोध करो लेकिन संवैधानिक, लोकतांत्रिक, मानवीय, नैतिक मूल्यों पर केंद्रित हमारा विरोध होना चाहिए। बड़ी दुनिया में बड़े बड़े आंदोलन हुए और वो उस विरोध से कुछ निकलना चाहिए ना। विरोध माने खाली बगावत, हंगामा, देखो क्रांति होनी चाहिए, बगावत, विद्रोह, हंगामा और गाली गलौज, इसमें फर्क है ना। तो विरोध होना चाहिए लोकतांत्रिक, संवैधानिक तरीके से। और दूसरी बात, ये जो गाली गलौज तो पूरी दुनिया में, पहले तो हमारे यहां पर किसी को मूर्ख बोल दिया जाता उतनी बहुत बड़ी गाली होती थी, आजकल तो माने माँ बहन बेटी से शुरू होकर के इतनी भद्दी गालियां हमने तो पूरी जिंदगी में, हम लगभग अब 60 पार गए कर गए, जितनी गाली हमने 60 साल में नहीं सुनी उतनी गाली तो हमने 6 दिन में सुन ली। माने गालियों के नए नए वर्जन हो सकते हैं। तो रिसर्च और इनोवेशन जमीन और आसमान पर और दुनिया में छा जाने के लिए नहीं, बल्कि गालियों के नए क्रिएटिव क्या तौर तरीके हो सकते हैं, ये कौन सा विकास है।
0: आपने खुद विरोध किया था, आपने खुद विरोध प्रदर्शन किया काला धन के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ आप बैठे, बहुत सारी चीजों को लेकर स्वामी जी आपके भी ऊपर सवाल उठे। आप उस समय का विरोध अच्छा और आज का विरोध प्रदर्शन बुरा, उस समय भी तो लोगों ने कहा था ना ये क्या तरीका है।
1: नहीं देखो, हमने किसी को गाली नहीं दी, हमने कोई राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया, हमने पुलिस वालों को नहीं मारा बल्कि उन्होंने खूब मारा, वो भी गलत था। आज भी जो निर्दोष बच्चों को मारा है हम उसकी घनघोर भर्त्सना करते हैं, और उन पुलिस वालों को भी दंडित किया जाना चाहिए जिन्होंने निर्दोष छात्रों को पीटा है। लेकिन जिन्होंने पुलिस वालों को पीटा, जिन्होंने हमारे पैरामिलिट्री को पीटा, घसीटा, और मोब लिंचिंग जैसी स्थितियां भी बनी और देखा है तो उस और विरोध प्रदर्शन के नाम पर उसमें मर्डर किए हुए, रेप किए हुए और बहुत सारे अपराधी भी आकर के घुस गए। तो बच्चों को सामने रख करके और ये जो शिखंडी जैसा प्रयास किया अपराधियों ने, उन आपराधिक वृत्ति वालों पर, उन एक तरह से आतंकवादी सोच वाले जो लोग हैं उनके ऊपर तो कार्यवाही होनी चाहिए। जो छात्र है उनसे भूल चूक होगी, प्रधानमंत्री जी ने भी कह दिया भाई मैं माफ करता हूं उनकी गाली गलौज से, लेकिन भाई ये हमारी संस्कृति सभ्यता हमारा संस्कार नहीं है। लेकिन विरोध प्रदर्शन के नाम पर जो अपराधी किस्म के लोग, आतंकवादी किस्म के लोग, रैपिस्ट और क्रिमिनल जो लोग आ गए थे उन पर तो कार्रवाई होनी ही चाहिए। ये सारा देश इस बात पर सहमत।
0: कंगना रनौत ने जो कहा उस पर भी काफी लोग आक्रोशित हुए, उनका भाव और उनकी भाषा, आपकी टिप्पणी।
1: नहीं, मैं तो उसके ऊपर कुछ भी बोलना नहीं चाहता, क्योंकि कंगना रनौत के पीछे तीन चीजें हैं। एक तो जो उनका अतीत है ना, वो उनका पीछा नहीं छोड़ता।
0: मतलब फिल्म,
1: मतलब वो जिस सभ्यता की बात कर रही हूँ, उन्होंने जब जेंजी थे तब क्या क्या किया हुआ है, इसलिए वो जेंजीज को अभी शिक्षा देने लायक नहीं है। एक दूसरा जो है उनको भी अपनी बात कहने का एक सभ्य तरीका अपनाना चाहिए। और तीसरी बात ये है कि आप कहते हैं ना, जब कुछ कहते हैं तो आपका चरित्र लोग देखते हैं, तो उनको अभी और बहुत कुछ देश के लिए कंट्रीब्यूशन देने की जरूरत है, उसके बाद उनको लोग सीरियसली लेंगे।
0: मुझे लगता है कि क्योंकि हम बात जेंजी की कर रहे हैं, अगर आप लोगों को कोई सवाल है तो अपना हाथ उठाइएगा, क्योंकि आप सीधे अपनी मन की बात, आप हो सकता है आपको उनकी बातें पसंद ही नहीं आ रही हो। ये गाली गलौज की बात अगर पहले दिन से उठी, क्या ये सामान्य है, क्या बहुत नॉर्मल है गाली देना बातचीत में, या दोस्तों के बीच या पब्लिक प्लेटफॉर्म? एक होता है ना, एक प्राइवेट लाइफ में आप करते हैं, सबके चेहरे पे मैं मुस्कान देख रही हूं।
1: प्राइवेट लाइफ में भी नहीं करनी चाहिए श्वेता जी, प्राइवेट लाइफ में भी पति पत्नी हस्बैंड वाइफ के बीच,
0: मैं दोस्तों के बीच की
1: गाली गलौज अच्छी बात नहीं होती।
0: सब हंस रहे हैं,
1: सन्नाटा क्यों है भाई, बोलते क्यों नहीं बच्चों? क्या गाली देना अच्छी बात है? जोर से बोलो ना, गाली देना अच्छी बात है क्या? तो बस
0: कौन कौन गाली देता है, अगला सवाल पूछ लूं मैं।
1: मैं कतई गाली नहीं देता हूं।
0: हाँ।
1: हमारी ज्यादा से ज्यादा बड़ी गाली होती है बावड़ा। मतलब तो हमारे पास बहुत, देखो एक बात बताना चाहता हूं श्वेता जी, हमारे यहां शास्त्रों में विधान है कि जब आप गाली देते हैं तो बहुत बड़ी नेगेटिव एनर्जी आपका पीछा करती है, आपके ब्रेन के 86 ब्रेन न्यूरॉन से 37 ट्रिलियन सेल से एक नेगेटिव एनर्जी रिलीज होती है जो आपके बहुत बड़े डिस्ट्रक्शन में आपको धकेल देती है। और जब आप पॉजिटिव होते हैं और जब आप उत्साह से, शौर्य से, वीरता से, पराक्रम से भरे हुए होते हैं, मैं कहता हूं ना, वीरों का वीरत्व, देवों का देवत्व, राम का रामत्व, कृष्ण का कृष्णत्व, शिव का शिवत्व, भगवती की भगवत्ता और भवानी का शौर्य हमारे भीतर होना चाहिए। यह हमारा स्वभाव है, यह हमारी प्रकृति है, यह हमारी संस्कृति है। शौर्य वीरता पराक्रम का विरोध नहीं है, लेकिन राम ने कोई रावण को मारने से पहले उसको गाली दी थी क्या? उसका सीधा मोक्ष कर दिया। कृष्ण ने 100 गालियां माफ की, फिर से दर्शन चलाया। तो अपने को अपनी प्रकृति, अपनी संस्कृति, अपनी विरासत भी देखनी है, विरोध भी करना है तहजीब के साथ।
0: लेकिन स्वामी जी, ये वही पीढ़ी है जिसकी इतनी तारीफ हुई थी इस बात के लिए। मैं देखिए, तारीफ अभी प्रोटेस्ट के लिए भी हो रहा है कि नहीं, मैं बता रही हूं
1: प्रोटेस्ट के लिए,
0: मैं बता रही हूं क्यों। जब महाकुंभ में सबने कहा, देखिए युवा पीढ़ी कितनी बढ़ चढ़ कर जा रही है, अपनी संस्कृति को पहचानती है, उस समय वो प्रसन्नता, ये कोई दो अलग अलग लोग तो होंगे नहीं।
1: नहीं देखिए, बात विरोध का विरोध करने की है ही नहीं, जम करके विरोध होना चाहिए। और मैं तो कहता हूं एक शिक्षा मंत्रालय में ही क्यों, खामियां तो चारों तरफ भरी पड़ी है। क्या इस देश का कृषि मंत्रालय में कोई दोष नहीं है क्या? क्या इस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय में दोष नहीं है क्या? क्या प्रकृति और पर्यावरण के नाम पर जो मंत्रालय है वहां पर गड़बड़ियां नहीं है क्या? गड़बड़ियां तो सड़क से लेकर के और जो एविएशन जो हमारा इंडस्ट्री है सब जगह मिलेंगी और खामियां दूर होनी चाहिए और बिना विरोध करके बिना विरोध के भी खामियां दूर होनी चाहिए। मिनिस्ट्री किसी बात के लिए, सरकारी किस बात के लिए बनी होती है? मैं कहता हूं सुधार सब जगह होना चाहिए और उस सुधार की शुरुआत पहले स्वयं से होनी चाहिए, पहले हमें सुधरना चाहिए। हमारे एक आचार्य श्याम शर्मा हुए, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, हम बदलेंगे जग बदलेगा। पहला परिवर्तन खुद से, फिर परिवर्तन अपने समाज में, फिर सरकार में भी, माने वैयक्तिक जीवन से लेकर के आत्मतंत्र से लेकर के शिक्षा चिकित्सा तंत्र कृषि तंत्र राजतंत्र सब जगह षड्यंत्र है, वो खत्म होना चाहिए।
0: क्योंकि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी जिसने अगुवाई की जेंजी आंदोलन की, एक कॉकरोच जनता पार्टी उसका उसके कुछ स्पोक्स पर्सन नेतृत्व, लेकिन उन लोगों ने कॉल दिया तो जेंजी जो था, जो लोग शिक्षा में बदलाव चाहते थे, जो लोग रोजगार चाहते थे, क्योंकि कल ही अभिजीत दिपके से हमारे संवाददाता ने इंटरव्यू किया और उन्होंने कहा कि केवल ऐसा नहीं है कि एक एज ग्रुप के, बल्कि 25 टू 35 के भी बहुत लोग वहां आए थे क्योंकि उनको रोजगार की समस्या है। तो उनके कहने पे वो सब बाहर निकले थे और वो कहते हैं कि कहीं पर भी कोई भी वैसी समस्या होगी मैं आवाज दूंगा, सब निकलेंगे फिर।
1: अच्छा, मैं किसी व्यक्ति पर नहीं जाना चाहता। जेंजीज के नाम पर आंदोलन करने का हक उनको है, पहले तो खुद को जिन्होंने बहुत अच्छा बनाया, मुझे लगता है इस पूरे जेंजीज को लीड करने का उनका अधिकार है। जो नीट है, जी है, सिविल सर्विसेज की कंपटीशन है, अलग अलग जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल के कॉलेज लेवल के जो कॉम्पिटिशन्स को बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं, जिन्होंने जीवन में कुछ करके दिखाया, अभी पढ़ रहे हैं तो पढ़ने में जो टॉप के, उसके बाद में एंटरप्रेन्योरशिप जिन्होंने खड़ी की है, कुछ चाहे वो जॉब हो, प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, जिन्होंने बड़े काम किए ना, आदर्श तो हमारे सामने होने चाहिए। केवल डिस्ट्रैक्शन से, केवल फ्रस्ट्रेशन से बात नहीं बनेगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि जेंजीज का नेतृत्व करने वाले भी ऐसे करेक्टर हमारे सामने होने चाहिए कि जिनमें कुछ कंस्ट्रक्टिव इनकी जिनकी लाइफ हो। तो भारत ने आदर्शों को पूजा है और आदर्शों नहीं के हैं जिनका जीवन, जिन्होंने कुछ करके दिखाया, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, उसके लिए अपने आप को खपाना पड़ता है। गाली देने में तो कुछ लगता ही नहीं है ना। बगावत, विद्रोह, आगजनी और ये जो डिस्ट्रैक्शन है, और इसमें भी मुझे तो आश्चर्य हुआ, लोग नारे लगा रहे थे ब्राह्मणवाद से आज़ादी, आरएसएस से आज़ादी, जातिवाद से आजादी, और फिर अब नया शिक्षा मंत्री जो बना वो कौन बना है? वो तो ब्राह्मण कुल उत्पन्न और आरएसएस का पक्का प्रचारक बना है, तो आजादी कहाँ आ गई? और आजादी के नारे लगाए और 8 से 16 घंटा गुलामी सोशल मीडिया की, फेसबुक की, ट्विटर की, इंस्टा की और एक्स की, पढ़ाई पर ध्यान है ही नहीं। आजादी के नारे लगा रहे और गुलाम बने में बर्गर के पिज्जा के, आजादी के नारे लगे, आजादी के
0: तालियां बजा रहे हो, खुद तालियां बजा रहे हैं सब,
1: ना ठीक है बजा रहे तालियां, हो ऐसे ही रहा है। आजादी के नारे लगा रहे और गुलाम है गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के। अरे भैया, आजाद जीवन जियो तो स्वामी रामदेव की तरह जियो, ना कोई गर्लफ्रेंड है ना कोई बॉयफ्रेंड है और सारा देश फ्रेंड है। तो ये जो हमारे भीतर जो सोच है ना, हम नारे कुछ लगाते हैं, होते कुछ है, करते कुछ है। देखिए ये जो मामला है, इनके जरा प्रश्न लो, इनके भीतर क्या बुलबुले फूट रहे हैं, जरा इनके भी दिल की जान।
0: हाँ, नहीं कोई सवाल पूछना नहीं चाह रहा ना, अपने बैकफुट पर डाल दिया पहले ही।
1: नहीं नहीं, ये बैकफुट
0: पूछना नहीं। हाँ नहीं, पूछना तो सबसे बड़ी आजादी है।
1: सवाल पूछो, प्रश्न सवाल हमारे यहाँ वेदों से लेकर के दर्शन उपनिषदों श्रीमद् भगवद गीता क्या भगवान कृष्ण और अर्जुन का संवाद ही तो है। तो सवाल, प्रश्न, क्वेश्चन और आंदोलन, ये तो सृष्टि के आदिकाल से होता रहा है।
0: स्वामी जी, एक चीज मैं बताती हूँ, जैसे अब अगर मैं अपनी पीढ़ी की बात करूं तो हम लोग नकल के विरोध में, शिक्षा में हमेशा सुधार चाहिए आपको, नकल कैसे खत्म हो उसको लेकर इतना बड़ा, अब पेपर लीक नया समस्या। आप लोगों में से कोई है जिसको ऐसा लगता है कि अभी जो प्रोटेस्ट हुआ है उससे पेपर लीक की समस्या अब दूर हो जाएगी? नहीं, नहीं। कैसे दूर होगी, किसी के पास है इसको लेकर कोई?
1: अच्छा, मैं आप सबसे पूछता हूं, ये बताओ इस आंदोलन से क्या निकला कि भाई इस आंदोलन की बहुत बड़ी सफलता हो गई? भाई बताओ ना, कि भाई इस आंदोलन से ये निकला कि शिक्षा बदल जाएगी, इस आंदोलन से अब जो है नकल रुक जाएगी, इस आंदोलन से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, इस आंदोलन के बाद अब देश की सारी राजनीतिक व्यवस्था सुचितापूर्ण हो जाएगी, अब इसमें राम राज्य आ जाएगा।
2: इस आंदोलन से स्टूडेंट की पावर का तो पता चला।
1: पावर तो बेटा पहले से बहुत थी आपकी, आज भी बहुत है, आगे भी रहेगी, लेकिन वो पावर जो है कंस्ट्रक्टिव अर्थ में लगे, ये इसको परिणाम कहते हैं। अभी वो जो पावर लगी उसमें डिस्ट्रक्शन ज्यादा हुआ, कंस्ट्रक्टिव काम में मुझे तो कुछ दिखा नहीं अभी तक, बार इतना ही दिखा कि भाई एक बात कई लोगों ने कि 12 साल में इस देश में जो सत्तारूढ़ पार्टी उसमें किसी मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ था, हमने एक आदमी का इस्तीफा ले लिया, तो एक व्यक्ति के इस्तीफे के लिए हजारों लोगों का समय शक्ति ऊर्जा बर्बाद करना और लोगों को के भीतर एक तरह से एक बगावत का ही भाव पैदा हो गया ना, परिणाम जिसको कहते हैं ना कंस्ट्रक्टिव परिणाम क्या निकला, यू हैव पावर। आप अपने माँ बाप को रोज झुकाते हो जैन जीज लोगों, आप अपने माँ बाप को झुकाते हो, आप समाज को भी झुका सकते हो, आप सरकारों को भी झुका सकते हो। स्वामी रामदेव अभी आपके सामने दंडवत प्रणाम कर लेता है, लो मुझे झुका दिया, अब परिणाम क्या निकला, मैं झुक गया, इसलिए झुका हूं कि मैं आपके भीतर वो देखना चाहता हूं कि एक एक बच्चा 100 200 500 को रोजगार देने वाला बने, एक एक बच्चा देश का नाम ऊंचा करने वाला बने, एक एक बच्चा अपने माता पिता का, अपने कुल वंश का, अपने भारत का नाम ऊंचा करने वाले बने, हेल्थ में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, इनोवेशन में, इन्वेंशन में, जहां पर भी आप रहे वहां कुछ ऐसा करे ना। मैं भी एक अनपढ़ माँ बाप के घर में पैदा हुआ, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाऊं, गुरुकुल में पढ़ाऊं, और आज 5 लाख लोगों को रोजगार दे रहा हूं, 5 लाख लोगों को रोजगार देने की तैयारी है, और 1 लाख करोड़ की आगे कंपनी बनाने की तैयारी है, करीब 50,000 करोड़ के पास पहुंच गए, और उससे जो कुछ अर्जित किया कि सारा अर्थ परमार्थ के लिए फॉर चैरिटी, मेरे पास जो कुछ है वो सारा कुछ मेरा मेरे देश के लिए, मेरे समाज के लिए है, इस ग्रुप में हम आगे कुछ देश के लिए करें, इसके लिए मैं आपको सिर झुका रहा हूं ना, तो आप परिणाम निकलना चाहिए ना।
0: लेकिन स्वामी जी इसकी जो उसने कहा कि अपनी अपना पावर दिख गया, इसको मैं इस हिसाब से अगर देखूं कि एक सरकार की जवाबदेही, देखिए अभी सिंबॉलिक एक इस्तीफा सिंबॉलिक है, उनको भी मालूम है कि उससे सीधे तौर पर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, उसके लिए आपको बहुत सारी और कोशिशें चाहिए, लेकिन अगर एक सरकार देख लेती है कि ये जो लोग हैं जिनके साथ पेपर लीक हो रहा है या फिर रोजगार की जो भी समस्या, जो भर्तियां लटकाई जा रही हैं, वो सारी चीजें हो रही हैं, इनको आप लाइटली नहीं ले सकते हैं।
1: जवाबदेही इस आंदोलन की एक उपलब्धि अवश्य है
0: जी,
1: और वो होनी ही चाहिए, और जो सत्ता जवाबदेह ना हो उसको शासन में रहने का अधिकार भी नहीं है, क्योंकि सत्ता कभी भी जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। भगवान राम को हम देश का सबसे बड़ा चरित्र मानते हैं, यद्यपि राम के नाम पर भी बहुत उल्टा पुल्टा चल रहा है, लेकिन राम का चरित्र क्या है, रामो विग्रहवान धर्मः साधु सत्य पराक्रम है, राम धर्म के विग्रहवान स्वरूप है, उनको एक आदर्श पिता, एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श राजा, एक आदर्श इंसान और एक अवतारी सत्ता के रूप में एक भगवान कैसा होता है, उन्होंने उस चरित्र को जिया, और वो साधु, उनके स्वभाव में साधुता है, दिव्यता है, पवित्रता है, और सत्य पराक्रम है, सत्ता का पराक्रम नहीं, सत्य का पराक्रम है। तो इस आंदोलन की एक उपलब्धि इस रूप में हम कह सकते हैं कि सत्ताओं को झुकाया जा सकता है और सत्ता को जवाबदेह बनाया जा सकता है, वो एक आंशिक उपलब्धि है। कोई अभी सत्ता एक आंदोलन से पूरी सत्ता जवाबदेह हो जाएगी और सारे देश की स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और सारे ब्यूरोक्रेट्स माने विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और सारा का सारा समाज अब एक सही दिशा में आगे बढ़ने लग जाएगा, कुछ बच्चे सड़कों पर उतर गए, अब इस एक उपलब्धि के पीछे 100 इसके दाग और लग गए, वो भी तो गलत है ना। तो निष्कलंक हो करके हमें आंदोलन करना चाहिए,
0: नहीं तो आपको डर है कि इस्तेमाल किया जाएगा राजनीतिक रूप से, विरोधी दलों ने तो ये भी तो देखा ना कि वो इतने दिनों से वो कोशिश कर रहे थे, उनसे नहीं हो पाया।
1: हाँ, इसमें विपक्ष कामयाब हुआ और ये जो आंदोलन है ये इसमें कामयाब हुआ आंशिक रूप से, लेकिन बात वही, अब चलो बात असली मुद्दों की वापस करते हैं। क्या देश के अंदर जो मैकाली की शिक्षा चल रही है 1835 में, ये गुलामी की शिक्षा व्यवस्था, गुलामी की चिकित्सा व्यवस्था, हमारे देश में जो कंटेंट पढ़ाया जाता है बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के और यूनिवर्सिटी तक, उसका जो पूरा थॉट प्रोसेस है, मैंने कहा ना आइडियोलॉजी और टेक्नोलॉजी दोनों में कोई फर्क नहीं, गुलामी की है दोनों की दोनों। तो भाई आप गुलामी की शिक्षा चला रहे हो देश में, गुलामी की चिकित्सा चला रहे हो, वही इंजेक्शन ठोके जा रहे हो, सिंथेटिक दवाइयां सब खा खा करके ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, लिवर किडनी फेल, कैंसर, ऑटोमेटिक डिजीज होकर के लोग मर रहे हैं। गुलामी की शिक्षा, गुलामी की चिकित्सा, गुलामी की अर्थव्यवस्था, गुलामी के संस्कार, गुलामी का सारा हमने लबादा ओढ़ रखा है और हम आजादी के नारे लगा रहे। तो मूलभूत परिवर्तन ऐसा होना चाहिए कि कम से कम बच्चा जब स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से निकले तो 100 से ज्यादा स्किल्स उसको आने चाहिए और वो उतना समर्थ होना चाहिए, उसको अपने ऊपर इतना गर्व, इतना उसको अपने ऊपर अभिमान होना चाहिए, स्वाभिमान होना चाहिए उसको कि मैं देश और दुनिया में एक बहुत बड़ा सृजन कर सकता हूं। जैसे बेटी ने कहा ना कि उसको अपनी ताकत का बोध, ताकत तो हमारे भीतर है ना, हम एक व्यक्ति नहीं है, हम इस संपूर्ण राष्ट्र की शक्ति, अभिव्यक्ति, अपने अतीत की विरासत और वर्तमान की चुनौतियों के से लड़ते हुए एक स्वर्णिम भविष्य का निर्माण करने का सामर्थ्य रखते हैं, ये तो हमारी ताकत है ही ना। कोई आंदोलन हमारी अपनी ताकत थोड़ी बनाएगा, कोई रामदेव का जन्म आंदोलन से हुआ था कि स्वामी रामदेव की मां ने और बाप ने आंदोलन किया, रामदेव पैदा हो गया। शक्ति तो हमारे भीतर है और उसके द्वारा हमें राष्ट्र के लिए सृजन करना है, अपने सामर्थ्य को कंस्ट्रक्टिव वे में लगाना है, प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं, सॉल्यूशन ओरिएंटेड हमारी अप्रोच होनी चाहिए।
0: स्वामी जी दो चीजें, एक विपक्ष ये आरोप लगा ही रहा है कि देखिए सारे जो वीसीज हैं वो किस तरीके से आरएसएस से संबंधित हैं, क्या फोकस इस बात पर ही रहे कि खाली हम अपनी उस स्वदेशी व्यवस्था को वापस लाते जाएं, या फिर इस बात पर फोकस हो कि जो पेपर लीक बार बार, हर एक पेपर और एक एक बार नहीं, दो दो
1: पेपर लीक, महापाप महा अपराध, और पेपर लीक करने वालों को जेल ही नहीं, मैं तो कहता हूं फांसी की सजा का प्रावधान होना चाहिए, ये होना चाहिए ना, और उसका निर्णय त्वरित होना चाहिए, उसमें कोई लाग लपेट नहीं होनी चाहिए, और व्यवस्था ऐसी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए कि पेपर लीक ही ना हो, और फिर भी कोई इस व्यवस्था को तोड़ने के लिए कोई दुस्साहस करे तो उसको इतना कठोर दंड दो ना, चाहे पेपर लीक का मामला हो या मंदिर में चोरी का मामला हो। और मंदिर में चोरी क्यों, हर डिपार्टमेंट में चोरियां हैं, कौन सा डिपार्टमेंट है, क्या इस देश में पुलिस प्रशासन में सुधार की जरूरत है कि नहीं है बच्चों बोलो, क्या न्याय व्यवस्था में भी सुधार की जरूरत है कि नहीं है, चारों तरफ सुधार की जरूरत है। तो जहां जहां गड़बड़ियां हैं वहां वहां, वैसे लोकतंत्र में चेक एंड बैलेंस और पूरा एक सिस्टम बनाया हुआ है जवाबदेह बनाने के लिए, लेकिन लोग हैं कि सबसे बड़ी बात है, मैं श्वेता जी एक बड़ी बात कहकर के फिर इनसे ही पूछूंगा कि भाई आप भी अपनी सलाह दो, नहीं तो हम अपने अपनी बात यहां पर बोलते रहे तो कोई इसका मतलब ही नहीं रह जाएगा। सबसे बड़ा तत्व है कोई लोकतंत्र में या देश में व्यक्ति है, जब तक एक बहुत ही बुद्धिमान, प्रज्ञावान, विवेकशील, इनोवेटिव, क्रिएटिव व्यक्तित्व का निर्माण नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है एक अच्छे इंसान का निर्माण, और उस अच्छे इंसान का अच्छा इंसान बने रहना, और व्यक्ति निर्माण से फिर राष्ट्र निर्माण और युग निर्माण के लिए अपनी भूमिका निभाना। तो इस पर फोकस होना चाहिए ना, यदि व्यक्ति अच्छा नहीं होगा तो व्यवस्था कितनी अच्छी हो तो वो उसमें से कहीं ना कहीं से गड़बड़ कर देगा, और यदि व्यवस्था इतनी मजबूत हो कि गड़बड़ी से गड़बड़ी करने वालों को भी ठोक करके ठीक कर सके, तो हमें दोनों तरफ काम करने की जरूरत है, एक तरफ बहुत अच्छे इंसान बनने चाहिए और दूसरी तरफ बहुत अच्छी व्यवस्था भी बननी चाहिए।
0: तो आपको आंदोलन से कोई दिक्कत नहीं थी, आंदोलन की मंशा, आंदोलन का उद्देश्य
1: और तरीके,
0: बस तरीके और भाषा, इस पर आपको आपत्ति,
1: इसी पर आपत्ति, मुझे क्या सारे देश को ही ऐसा लग रहा है कि जो है विरोध होना चाहिए, आंदोलन होने चाहिए और किसी बड़े मकसद के लिए खड़ा होना चाहिए, बच्चों को भी खड़ा होना चाहिए, सारे समाज को खड़ा होना चाहिए, लेकिन उसमें विभाजन नहीं होना चाहिए समाज में, गाली गलौच नहीं होना चाहिए। अब ये जो विभाजन चल रहा है, क्या चल रहा है, मैंने एक ही तो बात कही थी, सबके पूर्वज एक है, सबका डीएनए एक है, सब हम सबका कुलवंश एक है, हम सबके पूर्वज एक है, अब विभाजन किस बात का। बच्चों एक बात मैं आपसे कह रहा हूं, क्या किसी दलित, शोषित, वंचित, आदिवासी, वनवासी, गरीब को गाली देना अच्छी बात है क्या? अच्छा, दलित, शोषित, वंचित, गरीब को, आदिवासी, वनवासी को, एससी एसटी को गाली देना अपराध है, पाप है, वो एक तरह से अमानवीयता है, अलोकतांत्रिक असंवैधानिक भी है, तो क्या किसी ब्राह्मण को गाली देना अच्छी बात है क्या? किसी क्षत्रिय को, किसी वैश्य को गाली देना अच्छी बात है क्या? अपने देवी देवताओं को गाली देना अच्छी बात है क्या? भगवा को गाली देना अच्छी बात है क्या? किसी देश के चुने हुए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को गाली देना अच्छी बात है क्या? दोनों तरह से सोचना चाहिए ना। और विभाजन किस बात का? ये जो लोग जो है अलग अलग प्रकार से, और सारी राजनीतिक पार्टियां एक पाप कर रही है, ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये वैश्य, ये एससी, ये एसटी, मैं तो कहता हूं सबका डीएनए एक है, सबके भीतर आत्मा एक जैसा है, सबका शरीर एक जैसा है, सबके भीतर ज्ञान प्रतिभा एक जैसी है, अपना अपना पुरुषार्थ करो और आगे बढ़ो। ये जो विभाजन है, डिस्ट्रैक्शन है, और जो समाज में बंटवारा है, ये बड़ा खतरनाक है। और इसमें भी फिर और अलग अलग तरह के विचारधाराओं के नाम पर बंटवारा, हम तो इस पार्टी के हैं, इस संगठन के हैं, हम लेनिनवादी, मार्क्सवादी, माओवादी, हम समाजवादी हैं, हम कांग्रेसी हैं, हम भाजपाइया हैं, हम भगवा हैं, हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, किसी भी जाति वर्ग समुदाय के नाम पर मैं तो बंटवारा नहीं देखना चाहता। और ये जिस दिन आ जाएगा ना, हम सब एक है, और हम सबका एक ही फोकस होना चाहिए कि 2047 तक भारत दुनिया की महाशक्ति कैसे बने, रुपए की करेंसी की वैल्यू डॉलर पाउंड के बराबर कैसे हो, केंद्र इस बात पर होना चाहिए ना। भारत के पासपोर्ट की वैल्यू इतनी हो कि 150 देशों में, 200 देशों में जाने के लिए हमें वीजा नहीं लेना पड़े, इसके लिए फोकस होना। इस तरह की ताकत हो कि भारत टेक्नोलॉजी में भी सबसे एडवांस हो, करेक्टर में भी सबसे एडवांस हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सबसे एडवांस हो, ताकत में, हुनर में भी सबसे एडवांस हो, और जब कोई खेल खेले जाए तो सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल भी भारत के आने चाहिए, ऐसा हम भारत बने।
0: लेकिन अभी कॉमनवेल्थ गेम्स में बड़ा अच्छा प्रदर्शन हमारे एथलीट्स का चल रहा है, पैरा में भी और कॉमनवेल्थ गेम्स में भी, और इसीलिए इस पीढ़ी को लेकर संवेदनशीलता सबसे ज्यादा किसी की भी, चाहे वो आम जनमानस हो या फिर सरकारें हो, होती है और होनी चाहिए, क्योंकि यही वो पीढ़ी है जो आपका भविष्य है, आपके देश को। अगर 2047 सोच रहे हैं अगर हम, तो कौन करेगा, यही करेंगे।
1: श्वेता जी, अभी पूरी वर्ल्ड का सर्वे हुआ, पिछली पीढ़ी से उसकी आगे वाली पीढ़ी बहुत एडवांस होती थी बौद्धिक दृष्टि से, उसका आईक्यू, उसके अंदर क्रिएटिव सोच और ये सारी चीजों में। पिछले 50 सालों से पूरी दुनिया की एक त्रासदी है कि पिछली पीढ़ी से जो ये पीढ़ी है ये थोड़ी कमजोर पड़ रही है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है, बौद्धिक दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से, वैचारिक दृष्टि से। पहले वाली पीढ़ी को, 50 साल पहले में जिन लोगों को देखता था, किसी को बीपी, शुगर, थायराइड, लिवर, किडनी फेलियर, कैंसर ऐसे थोक में नहीं था, पूरे इलाके में, पूरे गांव गोहांड में, पूरे जिले में ढूंढने से 10-20 रोगी कोई बीपी, शुगर, थायराइड।
0: स्वामी जी, इसकी एक वजह तो प्रदूषण भी है ना, जो पुरानी पीढ़ियों ने छोड़ दिया।
1: कह रहा हूं ना, शारीरिक दृष्टि से ह्रास हुआ है, फोकस में कमी आई है, जो इंटेलेक्चुअल जो लेवल है वो भी कम हो गया है, और आज यदि बात इम्यूनिटी की कहें और फिजिकल ताकत की करें, तो अब मैं 60 का होकर के 30 साल के लोग ढूंढने पड़ेंगे मुझे जो मेरा मुकाबला कर सके। क्या मतलब हुआ, हम में ह्रास भी हो रहा है, हमें यह भी देखना है कि पिछली पीढ़ी को से अगली वाली पीढ़ी को शारीरिक दृष्टि से, बौद्धिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, वैश्विक दृष्टि से अपग्रेड होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए।
0: एक रिसर्च है स्वामी जी, मैं इंतजार करूंगी कि और रिसर्च और स्टडीज इस बात पर हो, क्योंकि एक रिसर्च है जो जिसने ये कहा, और मुझे लगता है कि इस पर और अभी आगे कुछ और काम करने की जरूरत है, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए बहुत सारी चीजें, इंफॉर्मेशन भी रहती है इस पीढ़ी को, इन डेप्थ यानी कि बहुत गहराई से, या फिर सिर्फ जानकारी, उसको लेकर भले एक चर्चा, एक तर्क हो सकता है।
1: देखो, इंफॉर्मेशन और ट्रांसफॉर्मेशन में अंतर आता है। हमारे ऊपर सूचनाओं का इतना बोध है, हम खुद से अनजान है, और सारी दुनिया का, सारी जानकारियों का बोझ अपने सिर पर लेकर के घूमते रहते हैं और नींद नहीं आती। ये कौन सा ज्ञान है, ये कौन सा बोध है? तो हमें यह भी देखना है कि जो इंफॉर्मेशन ले रहे हैं हम, उससे हमारे जीवन में क्या सकारात्मक उत्पादक परिवर्तन आ रहा है, या हम खाली सूचनाओं का बोझ लेकर के घूम रहे बूथ के नाम पर, ये भी तो सोचने की बात है।
0: अच्छा, कोई एक ऐसी चीज जो आपको लगता है जेन जी से आज की सरकार को सीखने की जरूरत है?
1: जेन जी से एक बात तो ये सीखने की जरूरत है कि एक शिक्षा मंत्रालय को नहीं, सारे मंत्रालयों को अलर्ट हो जाना चाहिए। और एक सरकार को ही क्यों, पूरे शासन प्रशासन को, आईएएस आईपीएस माने सारी जो व्यवस्था है, विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका और मीडिया को भी सीखने की जरूरत है। कंटेंट क्रिएटर के नाम पर, इन्फ्लुएंसर्स के नाम पर, नायकों के नाम पर, खलनायक, ऐसे एक्टर एक्टर्स जिनका कोई करैक्टर नहीं, ऐसे यूट्यूबर्स, ऐसे इन्फ्लुएंस, मैं कहता हूं किसी के इन्फ्लुएंस में मत जियो, ना किसी के दबाव में, ना किसी के अभाव में और ना किसी के प्रभाव में जियो, अपने स्वभाव में जियो। हम हमेशा कहीं ना कहीं जो है किसी का आलंबन ढूंढते रहते हैं। अरे स्वावलंबी बनो, आत्मनिर्भर बनो, अपनी जिंदगी खुद तय करना सीखो। अपना भगवान ने दो दिमाग दे रखे हैं, एक लॉजिकल ब्रेन दे रखा है, एक इमोशनल ब्रेन दे रखा है। अपने अंतर्द्वंद्वों से थोड़ा बाहर निकलो, अपने भीतर की रस्साकसी से, खींचातान से बाहर निकलो, अपने निर्णय खुद लेना सीखो। तो ये जो सोशल मीडिया की जो क्रांति हुई है, मैंने कहा ना एक सोशल मीडिया में भी जो अच्छे लोग हैं, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा, अच्छा क्रिएटर भी, अच्छा वो अच्छे क्रिएटर्स भी हैं, अच्छे इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, उनके लिए अभिनंदन है। और मेन स्ट्रीम मीडिया में, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया, उसमें अच्छे वाले भी हैं, और मीडिया के भेस में कुछ भेड़िए, मीडिया के भेस में कुछ योग विरोधी, आयुर्वेद विरोधी, सनातन विरोधी, भारत विरोधी, हर चीज में उनको बुराई दिखती है, उनको अपने माँ बाप में भी बुराई दिखती है। वो तो मतलब ऐसे लोगों का तो मुझे लगता है रीमैन्युफैक्चरिंग करना चाहिए।
0: देखिए स्वामी जी, आप कई सारी चीजें ऐसी आज कंट्रोवर्शियल बोल रहे हैं, मुझे लगता है
1: मैंने कौन सी कंट्रोवर्शियल बात बोली है? मेरे को सामने बैठा करके आप तो हमारी फजीहत कर रहे हैं। आप बताओ मैंने क्या ऐसी गलत बात बोली, मैं अभी सुधा

0: ये मेरी प्रतिज्ञा है, ये मेरा संकल्प है देश के लिए।
1: अच्छा, प्रधानमंत्री जी ने एक नई चीज सीख ली जेन जी से, वो है कि वो इंस्टा वीडियोस बनाते हैं और वर्टिकल बनाते हैं। वो पहले उनका कैमरा अलग दिशा से था वो, और मुझे लगता है
0: वर्टिकल में आ गया।
1: वर्टिकल में आ
0: गया। ये काम तो हम रोज ही कर रहे हैं
1: तो इसी जनरेशन से सीख कर किया ना ये तो तस्वीर भी ऐसे नहीं खींचते, तस्वीर भी ऐसे ही खींची जाती है। आप नई पीढ़ी के दिखना चाहते हैं तो आप सीधी तस्वीर खींच लीजिए।
0: देखिए, चौचलेबाजी से नया नहीं दिखा जाता चौचलेबाजी सोसेबाजी, आपको कुछ बड़ा बनना पड़ेगा। देखो, खबर में आना कोई बड़ी बात नहीं है, खबर में तो राम के साथ रावण भी रहता है, खबर में तो कृष्ण के साथ कंस भी रहता है, खबर में तो हर देवता के साथ एक दानव भी रहता है। तो खबर में रहने मात्र से कहीं आपको कितने लाइक्स आ गए, कितने आपके ऊपर अच्छे कमेंट आ गए, कितने आपके फॉलोवर हो गए। मैंने कभी इस बात की चिंता नहीं की कि कितने लोग मेरे फॉलोवर हैं, कितने लोग मेरे को लाइक करते हैं, कितने लोग डिसलाइक करते हैं, कितने लोग मेरे ऊपर कमेंट करते हैं। मैंने तो एक ही चीज़ सोची है, मुझे सुबह 3 बजे से लेकर के रात को 10, 11, 12 बजे तक ऐसा काम करना है कि आने वाली पीढ़ियाँ कुछ सीखें कि भाई योग में, आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में, राष्ट्र के निर्माण में, लीवर किडनी की प्रॉब्लम्स हो, चाहे लीवर किडनी फेलियर हो, चाहे टाइप 1 डायबिटीज हो, कैंसर जैसे रोग हो, उसके संदर्भ में जो बड़े बड़े साइंटिस्ट नहीं कर पाए वो एक सन्यासी हमारे लिए करके गया। यही मेरे लिए तो बड़ी उपलब्धि है।
1: प्रधानमंत्री ने जो बात कही है अपने सबसे लेटेस्ट वीडियो में, जिसमें वो अपनी माँ को और खुद को दी हुई गालियों का जिक्र करते हैं, लेकिन कहते हैं माफ करना चाहूंगा, क्योंकि अगर कानून के और कोर्टों के चक्कर उनके लगवाए तो उससे कुछ सीखेंगे नहीं। तो अगर आप भी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि भाषा अच्छी होनी चाहिए, संस्कार अच्छे दिखने चाहिए, तो वो परिवर्तन कैसे आए?
0: मैं ये तो कहता ही हूं कि गालीबाज नहीं, हुनरबाज बनो, शौर्यवान बनो, पराक्रमी बनो, अपने भीतर वीरत्व, देवत्व, शिवत्व, रामत्व पैदा करो। ये तो एक बात हुई ना, मैं तो व्यापक अर्थ में कह रहा हूं कि खाली भाषा और गाली की बात नहीं है। बात यह है कि हमारा जो युवा है आज स्कूल से पढ़ के कर क्या रहा है। मैं तो चाहता हूं कि कॉलेज पास होने के बाद, यूनिवर्सिटी के पूरी एजुकेशन पूरी होने के बाद देश के 100% बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए, 100% बच्चों को कुछ ऐसे क्रिएटिव काम करने चाहिए, तभी तो विकसित भारत बनेगा ना। खाली प्रोटेस्ट करने से और खाली भारत माता की जय और वंदे मातरम कहने से तो भारत विश्वगुरु नहीं बन जाएगा ना। वर्ल्ड की जो है, यदि हम सुपर पावर भारत को देखना चाहते हैं, इकोनॉमिक पावर देखना चाहते हैं, सोशल पॉलिटिकल पावर देखना चाहते हैं, हम साइंस और टेक्नोलॉजी में हर क्षेत्र में भारत को सबसे ऊपर दर्जे पर देखना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो टोटलिटी में हमारी अप्रोच कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए।
1: आखिरी चांस है सवाल पूछने का, आप पूछना चाहते हैं?
0: एक तो थोड़े ज्यादा ही गंभीर हो गया आप बच्चों, थोड़ा मुस्कुराओ, कोई बात अच्छी लगे तो ताली बजाओ, कोई बात अच्छी ना लगे तो थोड़ा गुस्सा दिखाओ, कुछ आप प्रश्न भी पूछ सकते हो।
1: पूछे, बोलिए।
2: स्वामी जी, मेरा सवाल आपसे है, चूंकि आप आध्यात्मिक को भी देखते हैं, आप हेल्थ के उस मैकेनिज्म को समझते हैं, आप योग भी कराते हैं, मेरा सवाल चूंकि डिबेट पूरा एजुकेशन पे है, तो जो बंगाल सरकार का नया फैसला आया है मिड डे मील को लेकर के, और जिस तरह से अंडा पे राजनीति हो रही है, आप बखूबी उनसे वाकिफ होंगे, तो क्या आपको लगता है कि ऐसे समय में जिस राज्य का बॉडी मास इंडेक्स सबसे कम हो, जहाँ के बच्चों में सबसे कम न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हों, वहाँ इस तरह का फैसला लेना अचानक से कि अंडा को पूरी तरह से मिड डे मील से सेपरेट कर दिया जाए, इसको आप बॉडी मास इंडेक्स से कैसे देखते हैं, स्वास्थ्य के नजरिए से, योग के नजरिए से?
0: देखिए, शाकाहार, मांसाहार, वीगन, तीन भागों में आहार के नाम पर दुनिया बटी हुई है, और मैं किसी भी प्रकार के विभाजन को पसंद नहीं करता हूं। अपने अपनी चॉइस हो सकती है आहार की, मैं स्वयं विशुद्ध रूप से शाकाहारी और शाक में भी शाक सब्जियां खाने वाला व्यक्ति हूं, और मैं मानता हूं कि पोषण एक बड़ी समस्या है भारत की, कुपोषण बहुत बड़ा है, और कुपोषण में भी मेलट्यूट्रिशन, कुछ लोग शरीर के मांसपेशियां या आकार प्रकार देख करके अपने आप को पोषित न मान ले, आप में भी आप चेक कराओगे तो 50% बच्चों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी मिलेगी। करीब 80% बच्चों में विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी मिलेगी, काफी में आयरन की और कैल्शियम आदि की डेफिशिएंसी मिलेगी। और मैं दुबला पतला आपके सामने खड़ा हूँ, मेरे अंदर कोई डेफिशिएंसी नहीं है, और खाता हूँ कितना 100-200 ग्राम, और जो है पेट हिलाता हूँ।

0: دنيا. इसका मतलब ये हुआ कि आहार में किसी प्रकार की बाध्यता का मैं समर्थक नहीं हूं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे तो जानते नहीं, सबको जो है एक तरफ आपने अंडा परोस दिया सब बच्चे खा रहे, एक तरफ आपने मीट परोस दी सब बच्चे मीट भी खा रहे। तो आहार में हमें जो है ये जो तीनों धाराएं हैं इनका सम्मान करना चाहिए। संन्यास की दृष्टि से मैं शाकाहार और वेगन का ही पक्षधर हूं, लेकिन मैं आहार के नाम पर अत्याचार या हिंसा इसका समर्थक नहीं हूं।
1: मुझे लगा आप जवाब से बचेंगे, लेकिन आपने जवाब दिया। और कोई सवाल पूछना चाहता है आप? अच्छा, उनके पास है माइक।
2: नमस्ते बाबा जी। राजनीति है उससे तो मेरा इतना कोई वो नहीं है, जितना अभी आपने बोला है उसके बेस पे मैं बोलना चाहूंगी। आप कह रहे हैं जेंजी में संयम होना चाहिए, सब्र होना चाहिए, ठीक है। आप कह रहे हैं कि हमें अपना हुनर दिखाना चाहिए, कहाँ दिखाए हुनर? हर जगह तो करप्शन है, हर जगह तो घूस लेकर के पैसा दे करके सीट बुक हो जा रही है, हुनर के बेस पे हो कहाँ रहा है आजकल?
0: ये बात एकदम ठीक है आपकी, मैं तो इसका समर्थन कर रहा हूँ ना। मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि सब जगह जो करप्शन है वो व्यवस्था बदलनी चाहिए। मैं इस बात को अभी भी वापस दोहरा हूँ मेरी बिटिया, तो इसलिए मैं
2: तो व्यवस्था कौन बदलेगा? हम तो बदलेंगे नहीं, हम क्या कर सकते? हम सदियों से सुनते आ रहे कभी ये पेपर लीक, वो 100 सीटें होती हैं, 3000-4000 करोड़ों में लोग होते हैं तो हमें सीट मिलती नहीं है। सालों साल बच्चा बेचारा मेहनत करता है उन 100 सीटों के लिए, उसमें भी पता चले पेपर लीक है, करप्शन है, तो कहीं तो हम विरोध निकालेंगे ना।
0: हजार और पाने वाले लाख नहीं करोड़। हाँ। और उसके पीछे आगे घपला, रिश्वतखोरी, ये सब बातें एकदम आपने जो कही वो वाजिब है, लेकिन ये बात सही है कि किसी भी प्रकार के पेपर लीक से लेकर के किसी भी प्रकार की रिश्वतखोरी, किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार, और ये अभी भी समाज में है। मैं इस बात को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। कोई सरकार, किसी सरकार का मैं
1: उन्होंने विरोध का विरोध नहीं किया है,
0: और मैं कह रहा हूँ ये भ्रष्टाचार है।
1: हाँ।
0: और ये खत्म होना चाहिए सब जगह, और इसलिए मैंने कहा
1: इसके लिए विरोध की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ये जिम्मेदारी है एक सरकार की,
0: सभी डिपार्टमेंटों को सजग होना चाहिए, और यदि नहीं होंगे तो विरोध तो और प्रखर भी हो सकता है।
3: अले कि आपने अभी बोला था हेल्थ से रिलेटेड कि जो आगे वाली जनरेशन है और ये जो जनरेशन है उनकी हेल्थ बहुत, इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, पर जैसे कि आप जान सकते हो कि शुरू से जैसे ही जन्म लेता है बच्चा, ना हवा अच्छी है, ना पानी अच्छा है, खाने में मिलावट है, दूध में मिलावट है, और फिर उसके बाद मेंटल हेल्थ भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है।
0: हवाएं जहरीली है बेटा, हवाएं जहरीली, दवाइयां जहरीली,
3: तो
0: पानी जहरीला, वातावरण जहरीला, संसद से सड़क तक पूरा जहरीला वातावरण है ना। तो ये बात तो एकदम ठीक कही। ये बहुत बड़ा प्रश्न है वैसे, किसी भी देश की सरकार की सबसे बड़ी ये जिम्मेदारी होती है लोगों को खाना शुद्ध मिले, हवा शुद्ध मिले, पानी शुद्ध मिले। विदेशों में जो नहाने का पानी आता है ना उसको आप पी सकते हैं, और यहां पीने का जो पानी आता है उसे नहा लिए तो एलर्जी हो जाती है। ये बहुत ज्यादा माने चारों तरफ देश में तबाही का खतरनाक मंजर है, इसलिए सुधार, आमूल चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। मैं इस बात को मान,
1: दिक्कत तो यही ना, पर्यावरण कोई मुद्दा ही नहीं रहे आज किसी के लिए, ना तो वोटर के लिए, ना सरकार के लिए।
0: तो आगे आने वाले समय में मुझे याद है आज से करीब 10 साल पहले मैं जेटली साहब से मिला, उन्होंने कहा कि अब ये जो मुद्दे है ना, राशन का मुद्दा और तमाम तरह के
1: फ्री बिजली,
0: बिजली और ये सब पानी मुद्दे, इससे आने वाले समय में प्रकृति, पर्यावरण और जो हमारी जीवनीय दो तत्व हैं जिससे जिंदगी, हमारी लाइफ ड्राइव होती है, हम जिंदा रहते हैं, वो भी जिंदगी के मुद्दे, राजनीतिक मुद्दे बनेंगे। तो ये वक्त आ गया है। मैंने एक दिन बोला तो लोगों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया। मैंने कहा भैया राजनीतिक पार्टियों को ना अपना अलग अलग मैनिफेस्टो छोड़ देना चाहिए, उनको देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसी को अपना घोषणा पत्र बना देना चाहिए कि जो संविधान में लिखा है वैसे हम करके दिखाएंगे। राजनीतिक पार्टियों को अपने एजेंडे में यह रखना चाहिए, सबके लिए फ्री शिक्षा, सबके लिए फ्री चिकित्सा, और सबके लिए अच्छी हवा, अच्छा पानी, अच्छा आहार, अच्छा वातावरण और भयमुक्त समाज, ये हम देंगे।
1: एक आखिरी सवाल,
2: आपने जब गुलामी और शिक्षा की बात की थी तब आपने कहा था कि गुलामी की शिक्षा में हैं हम लोग, तो किस तरह की शिक्षा को आप गुलामी की शिक्षा कहते हैं और कैसे बाहर निकल सकते हैं इससे अगर हम इसमें हैं तो?
0: 1835 में मैकाले आया था बेटा, उसने इंडियन एजुकेशन एक्ट बना करके और ऐसा तंत्र बना दिया कि हमको केवल शब्द पढ़ने, केवल कुछ विषय पढ़ने हैं और उससे बस हमको नौकरी पानी है। ये जो थॉट प्रोसेस है 99% अभी वही चल रहा है, इसको कहते हैं मैकाले शिक्षा। और शिक्षा के साथ संस्कार हों, शिक्षा के साथ हम हुनर सीखें, दक्षताएं सीखें, अलग अलग प्रकार की कुशलताएं सीखें और शिक्षा में कुछ ऐसा बन जाए कि हमारे व्यक्तित्व इस तरह से विकसित हो जाए, शारीरिक मानसिक बौद्धिक रूप से हम इतने विकसित हों कि एक व्यक्ति चले तो उसके पीछे सारा संसार चल पड़े, इतना बड़ा उसका व्यक्तित्व घड़ा जाए। तो व्यक्तित्व निर्माण पर जो शिक्षा है उसको भारतीय शिक्षा कहते हैं और वो हम भारतीय शिक्षा बोर्ड से भी कर रहे हैं, वो हमने खुद करके दिखाया है। आज आपके सामने मैं बैठा हूं तो मैंने, यदि शिक्षा की दृष्टि से बोला जाए तो मैंने शब्द शास्त्र पढ़ा और शब्द शास्त्र पढ़ करके और आज इतना बड़ा काम भगवान ने करवाया कि आज स्वामी रामदेव दुनिया के 200 देशों के करीब 200 करोड़ लोगों के लिए प्रेरणा बना, इसको कहते हैं भारतीय शिक्षा व्यवस्था। ये है गुलामी की शिक्षा में और अपनी भारतीय शिक्षा व्यवस्था में फर्क।
1: स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ये बड़ा संवेदनशील मुद्दे पर अपनी बातें रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
0: आप युवाओं का भी धन्यवाद, आपने बहुत सब्र से सुना, मैं देख रहा था 99% बच्चे जो हम बातें कह रहे थे उस पर फोकस जरूर कर रहे थे, हो सकता है किसी बात से गुस्सा भी आ रहा हो तो आप गाली नहीं दे रहे थे, थैंक यू।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।
4: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
5: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
6: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबां केसरी, हिंट बड़े आराम से।
2: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
3: जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिस कहानी के बहुत अच्छे परिणाम है और बहुत दुखद परिणाम है। भारत एक राजमहल है, समृद्ध है, सोने की चिड़िया है। गहरी बात है वो ये है कि इस राजमहल के चारों तरफ झोपड़ पट्टियां हैं, झुग्गियां हैं, चुनौती वाले क्षेत्र हैं। भारत आए अंग्रेज, यहाँ के लोगों को देखा उन्होंने, जब यहाँ के ग्रंथों को ट्रांसलेट करना शुरू किया, पढ़ा उन्होंने कि ब्राह्मण का जन्म मुंह से हुआ है। ये डिपार्टमेंट बनाया ही गया था शोषण के लिए। कौन सा? पुलिस। किसने बनाया था? कॉर्नवालिस ने। और पुलिस डिपार्टमेंट की खास बात यह है कि जब उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट भारत में बनाया, तब वो डिपार्टमेंट ब्रिटेन में नहीं था। जुडिशरी, मॉडर्न जुडिशरी उन्होंने अपने फायदे के लिए बनाया। अंग्रेजी कानून, अंग्रेजी जज। तुम कल्पना कर सकते हो, आधुनिक काल से पहले LGBT सड़क पर आकर प्रदर्शन करें, इनको तोप में बांध के उड़ा दिया होता।
4: तो क्या सिर्फ अब हिस्ट्री सिर्फ जो बाहर से लोग आए थे यहाँ पे शासन करने के लिए, उनको विलन के रूप में दिखा रहे हैं? या फिर
3: जो भी सरकार सत्ता में आती है वो शिक्षे का इस्तेमाल करती है अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने। वंदे मातरम पे बहस हो रही है, हर दिन मंदिर मस्जिद पे बहस हो रही है, मुसलमान पे बहस। ये संसद बनी किस लिए है? औरंगजेब जो था भैया, डेली 200 किलो जनेऊ तोलता था। कितना? 200 किलो भी, मतलब डेली वो कम से कम 10,000 ब्राह्मणों को मारता था, हिंदुओं को। मैं देखता हूँ मुसलमानों को और हिंदुओं को, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ। पहले मैं सोचता था पुलिस वाले यहाँ लगा के पॉइंट ब्लैंक से क्यों मारते हैं, क्योंकि यहाँ ताला लगा हुआ है, तो इसीलिए मारते हैं कि यहाँ मारे तो अगले जन्म में खुला हुआ रहेगा।
5: आपको लगता है कि आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद देश फिर बट सकता है?
3: इस बात को मैं रिपीटेडली कह चुका हूँ, एक विस्फोट होगा बेटा।
6: लेकिन आपके पढ़ाने के तरीके मुझे एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट लगता है कि आप जनता को ही बोल देते हैं कि जनता बड़ी बेवकूफ़ है, और फिर आप कहते हैं कि हमारे देश का युवा पढ़ना नहीं चाहता है।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: Less interruption, more listening. With TuneIn Premium, get less ads on all music, news, and sports so you can get back to what really matters. Listen to all your favorite stations on over 200 devices so you never miss a second of airtime. Plus, enjoy commercial-free news, ESPN Radio, and more with Premium Upgrade to TuneIn Premium and start listening now.
3: स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट पे थे, पीसफुल प्रोटेस्ट, नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट, प्यार से रेजिस्ट कर रहे थे। उन पर पुलिस अट्रोसिटी हुई, उन पर पेलेट गन चलाया गया। ये आप फोटो देख रहे हैं। एक युवा से तो मैं मिला जिसके शरीर में पैलेट से एक आंख में पैलेट गई, उसको दिखता नहीं है, शायद कभी ना दिखे।
4: नेता प्रतिपक्ष को सार्वजनिक जीवन और प्रशासनिक प्रणाली की जो बुनियादी बिंदु है उनकी जानकारी का भी अभाव है। सबसे पहली बात तो ये कि जब वो कहते हैं कि गृह मंत्री जी ने गोली चलाने का आदेश दिया और उसे ऑथेंटिकेट करने में नाकाम है, तो सबसे पहली बुनियादी बात कि कहीं भी गोली चलाने का आदेश कोई मंत्री नहीं देता, वो मैजिस्ट्रेट देता है, एसडीएम देता है, डीएम देता है। हम सब विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, हमारे अनुभव में है। इसका अर्थ ये हुआ कि उन्हें सार्वजनिक जीवन का भी अनुभव में अभाव है। दूसरी बात, ये बार बार स्पष्ट किया गया कि गोली चली ही नहीं, अश्रु गैस, टीयर गैस का इस्तेमाल हुआ। लेकिन जब गोली चली ही नहीं तो आदेश देने का सवाल ही नहीं पैदा होता, और आदेश देने का अधिकार मैजिस्ट्रेट के पास रहता है, मंत्री के पास नहीं।
5: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
0: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
6: इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
7: Tune in's how to a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
8: TuneIn has got your favorite podcast. From sports to special interests, did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
9: संसद परिसर में अयोध्या चंदा चोरी का मुद्दा विपक्ष ने नाटक का मंचन करके उठाया, जहां पप्पू यादव साधु के भेष में दान पेटी के साथ पहुंचे, जिसमें राहुल गांधी समेत विपक्ष के नेताओं ने सांकेतिक चंदा डाला, जिसके बाद पप्पू यादव दान पेटी लेकर भागने की कोशिश करते हैं, जहां उन्हें अयोध्या से आने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद पकड़ते हैं। पप्पू यादव के इस नाटक पर लोकसभा स्पीकर ने नाराजगी जताई, पप्पू यादव के आचरण को संसदीय भावना के खिलाफ बताया।
10: नहीं, वो तो स्पीकर साहब ने कह दिया कि ये रंग बदल बदल के, कपड़े बदल बदल के प्रदर्शन करने का जगह नहीं है, थोड़ा सीरियसनेस दिखाना चाहिए। आप सांसद है तो सांसद की तरह व्यवहार करना चाहिए, कोई नाटक करने का जगह नहीं है। स्पीकर साहब ने कह दिया है, अलग से मुझे कहने का जरूरत नहीं है।
9: वहीं बीजेपी भी पूरे मामले को लेकर विपक्ष पर हमला कर रही है।
11: वो तो काल नेमी का वेश धारण करके आए थे और पूरे सदन ने इसकी निंदा की।
12: तो ये सवाल उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि त्रेता युग के राम को हम लाए, राम राम जपियो रे सब माल हड़पियो रे। आप भगवान के आस्था के साथ ही नहीं, 154 करोड़ भारत के उस आस्था के साथ खिलवाड़ किए हैं जो राम को अपने जीवन में, कर्म में, चरित्र में, चिंतन में रखते हैं।
13: हमारे देश का, इन राजनीतिक पार्टियों का, कांग्रेस हो या सपा हो, जो वोट के खातिर सनातन को बदनाम करने का काम किया है, इसका बदला सनातन लेगा।
14: आपके माध्यम से देश का आम जनमानस देखे कि आखिर अयोध्या में क्या हुआ है। हम लोग तो विपक्ष के लोग हैं, जनता की आवाज उठाते हैं, जनता को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से अयोध्या में हुआ है, क्योंकि जो लोग मौके पे नहीं थे वो नहीं देख सकते। अब तो सीसीटीवी भी डिलीट हो गए हैं।
9: उधर संत समाज ने भी पप्पू यादव को लेकर सवाल खड़े किए हैं।
15: महामहिम राष्ट्रपति महोदया और लोकसभा अध्यक्ष दोनों से यह मांग करूंगा कि ऐसे सांसदों की संसद सदस्यता बर्खास्त होनी चाहिए।
16: इन्होंने अपराध किया है, इन्होंने पाप किया है। आप जरा बताइए कि जिन लोगों ने मंदिर में दान चोरी किया है, क्या वो भगवाधारी थे? वो तो आठों जेल गए, भगवा साधु तो थे नहीं। और यह आप जरा देखिए कितने दुर्भाग्य है। और हमें तो लगता है कि पूरे विपक्ष में एक और दो पप्पू नहीं है, पूरा विपक्ष ही पप्पू हो चुका है।
9: राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर समाजवादी पार्टी पिछले दो दिनों से दान पेटी के साथ प्रदर्शन कर रही है, जिसमें आज पप्पू यादव की एंट्री ने नया सियासी घमासान शुरू कर दिया। आज तक ब्यूरो।
5: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

जेनजी से संवाद के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने की विकास की बात। आंध्र प्रदेश में एयरपोर्ट का किया उद्घाटन। कहा पहले एक परिवार के नाम से होते थे एयरपोर्ट, अब विभूतियों को मिलता है सम्मान। जंतर मंतर प्रदर्शन पर प्रधानमंत्री मोदी का छात्रों के नाम वीडियो संदेश। कहा मुझे मेरी मां को गाली दी गई, गुमराह बच्चों को करना चाहता हूं माफ, मिलकर बनाए सपनों का भारत। चढ़ावा चोरी को लेकर पप्पू यादव के प्रदर्शन पर बीजेपी, वीएचपी और साधु संतों ने खोला है मोर्चा। जंतर मंतर से लखनऊ तक विरोध और आस्था के अपमान का आरोप। एनएसए अजीत डोभाल को लोकमान्य तिलक अवार्ड। पुणे में गृहमंत्री ने किया सम्मानित। एनएसए बोले मोदी और शाह जैसे नेताओं का मिलना हमारा लिए सौभाग्य। युवाओं से बोले आजादी का मतलब मनमानी नहीं। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को एक और गोल्ड मेडल। महिलाओं के 54 किलो वर्ग बॉक्सर प्रीति पवार बनी चैंपियन। भारत के खाते में कुल 6 गोल्ड।

नमस्कार, रणभूमि स्पेशल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। 155 दिनों के अंदर जब जब ईरान और अमेरिका के युद्ध में ऐसा लगा कि शांति वार्ता अब बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, उसी बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का अमेरिका दौरा ने सब कुछ बदल दिया। माना यह जा रहा है कि इस बार 72 घंटे पहले हुई डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की मीटिंग एक ऐसे समय पर हुई जब अमेरिका ईरान के साथ शांति चाहता था, लेकिन एक बार फिर से अब ये युद्ध भीषण होने का आशंका लगातार बढ़ती जा रही है। आज रणभूमि का स्पेशल का एपिसोड आपके लिए बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि फिलहाल खाड़ी में दिखती हुई शांति बहुत ज्यादा लंबी चलती हुई नहीं दिख रही। रणभूमि स्पेशल में पहली खबर आपको बताएंगे कि कैसे शांति के दौरान पश्चिमी एशिया में आने वाले बड़े तूफान के तौर पर इशारा कर रहे हैं। क्या अमेरिका ने बड़े हमलों की प्लानिंग कर ली है? रणभूमि स्पेशल में दूसरी खबर, हम आपको बताएंगे कि कैसे ट्रंप अब तेहरान पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। आखिर क्यों ट्रंप इस वक्त झल्ला पड़े हैं? और रणभूमि स्पेशल में तीसरी बड़ी खबर आपको बताएंगे कि और सुनाएंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में तेल टैंकरों को कैसे ईरान की नेवी धमका रही है, कैसे लगातार उनको चेतावनी दी जा रही। रणभूमि स्पेशल में चौथी खबर, हम आपको बताएंगे युद्ध के एक और पुराने मोर्चे में आपको लिए चलेंगे, जहां पर आपको बताएंगे रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर कैसे मौत बरसाई, जिसमें कई लोगों की मौत की खबरें भी सामने आ रही। रणभूमि स्पेशल में आखिरी बड़ी खबर, हम आपको बताएंगे नेपाल से, जहां पर हालात बहुत ज्यादा खराब बताए जा रहे हैं और जहां पर सांप्रदायिक हिंसा ने कई जिलों को अपनी आग में झुलसा दिया है। आज रणभूमि स्पेशल में हमारे साथ दो खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े होंगे। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी सर हमारे साथ जुड़े होंगे, साथ ही मेजर जनरल रिटायर्ड ए के शिवा सर भी हमारे साथ जुड़े होंगे। लेकिन सबसे पहले रुख करते हैं पश्चिमी एशिया का, जहां पर आखिर ऐसा क्या हो गया है कि अमेरिका अब इसराइल के साथ मिलकर ईरान पर नए और बड़े हमले की तैयारी में जुट गया है, और ये हमले पहले से भी ज्यादा भीषण और ज्यादा घातक होने वाले हैं और ऐसे ठिकानों पर होंगे जिसे ईरान की एनर्जी सप्लाई ठप कर दी जाएगी। क्या बातचीत की तमाम संभावनाएं खत्म होती जा रही? कैबिनेट मीटिंग में जिस अंदाज में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कैबिनेट को ब्रीफ किया, उससे तो ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं कि वो बेहद गुस्से में और अब ईरान को पूरी तरीके से और पूरी ताकत के साथ बर्बाद कर देना चाहते हैं।

0: ईरान पर भयंकर हमले की तैयारी, एनर्जी सेंटरों पर होगी जबरदस्त बमबारी। ट्रंप ने निकाली भड़ास, बोले अब नहीं ईरान से आग। मिसाइलें एक बार फिर गरज रही है, मेल मुलाकातों की डोर एक बार फिर टूटती दिख रही है। अमेरिका ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों को बम बरसाकर ध्वस्त करने का दावा किया है। इसके अलावा ईरान के किशम इलाके की ये तस्वीरें भी अमेरिका के ताजा हमलों से हुई तबाही की गवाह हैं। रिहायशी इलाके में मिसाइल के हमले से ये पूरा घर तबाह हो गया। धमाका इतना जबरदस्त था कि उससे काफी बड़ा गड्ढा भी हो गया। उधर ईरान भी जॉर्डन, बहरीन, कुवैत और मिस्र में अमेरिकी सैन्य बेस पर लगातार हमले कर रहा है। कुवैत पर उसने कई ड्रोन हमले किए, हालांकि कुवैत का दावा है कि इन्हें नाकाम कर दिया गया। इस बीच ओमान के तट के पास एक तेल टैंकर के बेहद करीब जोरदार धमाका हुआ है। हालांकि जहाज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन पूरे इलाके में अलर्ट जारी कर जांच शुरू कर दी गई है। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक ये हमला ओमान के खासाब से करीब 39 किलोमीटर दूर हुआ। लेकिन ट्रंप की मौजूदगी में हुई कैबिनेट की मीटिंग से जो खबरें आ रही हैं, वो ईरान की चिंता बढ़ाने वाली हैं। अमेरिकी मीडिया का दावा है कि अमेरिका और इजराइल ईरान के ऊर्जा ढांचे पर बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। आज या फिर कल ईरान के बिजली संयंत्रों और तेल रिफाइनरियों को बड़े पैमाने पर निशाना बनाया जा सकता है। ऐसे तमाम ठिकानों की सूची बना ली गई है। इस मीटिंग में ट्रंप बेहद गुस्से में थे। उनका साफ कहना था कि परमाणु हथियारों से जुड़ी डील के लिए घंटों खराब करने का कोई मतलब नहीं है।
1: We have great people talking. Marco's involved.
2: They're all involved. Talks aren't happening.
1: Very good people. We have the best people. But and they'll make a deal. As an example, we'll talk about nuclear. And we'll be in there talking about nuclear for 7 hours. I say, why do you need 7? You can take 10 minutes. You have 5 minutes. You should solve it. But 7 hours. And then they'll go out. And I'll say, they discuss nuclear. And they'll go out and they'll say, we never discussed nuclear. And I say, why do they say that? All they do is make me angry.
0: तो क्या ईरान के इस रवैये से सीज फायर की संभावनाएं खत्म होती जा रही हैं? इस सवाल के जवाब में ट्रंप का साफ कहना था कि ईरान ने बातचीत को ईमानदारी से आगे नहीं बढ़ाया और भरोसा तोड़ा है।
1: Iran now. Iran is doing very poorly. Just in case you read incorrect stories, they're doing very, very poorly. They're having a hard time. They've been very dishonest. They've been very dishonorable to deal with. But that makes no difference. They're doing very, very poorly. I'm losing faith in them because they do lie and they do misrepresent.
0: इस अहम बैठक में जिस मूड में ट्रंप दिख रहे थे, उससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि इजराइल के साथ मिलकर अगले कुछ घंटों में अमेरिका ईरान पर ताबड़तोड़ हमले करने की तैयारी में जुटा है। ये हमले इस बार सिर्फ सैन्य ठिकानों पर नहीं होंगे, बल्कि अहम एनर्जी सेंटर तबाह किए जाएंगे। उधर ईरान ने दो टूक कह दिया है कि अगर अमेरिका ने एनर्जी सेंटरों पर हमले किए तो उसके सैन्य ठिकानों को तबाह करने में ईरान कोई कसर नहीं छोड़ेगा। आज तक ब्यूरो।
3: दरअसल 72 घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की एक मीटिंग हुई और उसी के बाद से अमेरिका के तेवर बदले हुए नजर आ रहे हैं और इसकी पुष्टि अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के दावों में भी होती है। ट्रंप ने ईरान पर नए हमलों के आदेश दिए दिए हैं, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से खबर मिली। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान के खिलाफ नए सिरे से सैन्य हमले का आदेश दे दिया है और माना जा रहा है कि ये ऑपरेशन अगले 24 से 48 घंटे में शुरू हो सकते हैं। अखबार का यह भी दावा है कि इन हमलों का मकसद तेहरान को घुटने पर लाना है और मजबूर करना है कि वो बातचीत की टेबल पर आए, लेकिन अमेरिकी शर्तों पर। ईरान को बातचीत की मेज पर वापस लाने के लिए सैन्य दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है और इनका मकसद है ईरान के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ उनके पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी टारगेट करना। और देखिए, ऐसे नहीं है कि अमेरिका की तैयारियों का की खबर ईरान को नहीं है। ईरान की तरफ से भी खबरें लगातार मिल रही है कि अमेरिकी हमलों की आशंका को देखते हुए ईरान भी पलटवार करने की तैयारियां कर रहा है। ईरान सुरक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने तस्नीम न्यूज को यह बताया है कि अमेरिका की किसी भी संभावित आक्रमकता का जवाब दिया जाएगा और इसको लेकर बड़ी योजना भी ईरान की तरफ से तैयार की जा रही है। जानकारी के मुताबिक ईरान इसराइल के साथ साथ अमेरिका के इस इलाकों के अंदर उसके बुनियादी ढांचों और ऊर्जा संयंत्रों को निशाना बना सकता है। ईरान की सेना का मानना है कि 40 दिनों के युद्ध के दौरान उसने साबित कर दिया कि उसने ऐसी कार्रवाई की है जिसने अमेरिका और इसराइल की दोनों की क्षमताओं को नुकसान पहुंचा, और ऐसे में अगर अमेरिका कोई भी हमला करता है तो फिर ईरान भी जो ऊर्जा संयंत्र है या फिर उनके बुनियादी ढांचे हैं पूरे रीजन पे उनको टारगेट करेगा। और इस वक्त एक और बड़ा अपडेट मिल रहा है जहां पर पश्चिमी एशिया से, जहां पर ओमान के लीमा से लगभग 19 मील दूर उत्तर पूर्व में एक ऑयल टैंकर को फिर से निशाना बनाया गया है। इस हमले में जहाज के इंजन को भारी नुकसान पहुंचा है जिसके बाद टैंकर नियंत्रण से बाहर हो गया। किसी के हताहत होने की खबर इसमें नहीं मिल रही है, हालांकि अभी तक यह जानकारी के मुताबिक यह हमला किसी अज्ञात ड्रोन से किया गया है और कहा जा रहा है कि इसके पीछे ईरान हो सकता है। इसके बाद जहाजों को सतर्क रहने और क्षेत्र में किसी भी संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने की सलाह दी गई है। देखिए, गल्फ ऑफ ओमान के अंदर भी कहा जा रहा है कि ओमान की सीमा से बेहद करीब एक ऑयल टैंकर को निशाना बनाया गया। ऐसे ही आपको याद होगा कि इजिप्ट में भी एक ऑयल टैंकर को निशाना बनाया गया था जिसको लेकर कहा गया कि इसके पीछे ईरान है। हालांकि ईरान ने उसके बाद उसको नकार दिया था, लेकिन अब गल्फ ऑफ ओमान के आसपास भी ओमान की सीमा से 19 मील दूर एक ऑयल टैंकर को ड्रोन से अटैक करने की खबरें लगातार मिल रही। और एक और बड़ा अपडेट बहरीन से भी मिल रहा है जहां पर बहरीन में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर ईरान के हमलों के ताजा तस्वीरें सामने आई है। इन हमलों में अमेरिकी अड्डों पर धमाके की तस्वीरें भी मिली और जानकारी मिली है जिसमें बड़े धमाके होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह हमला एक ड्रोन से किया गया था और बताया जा रहा है कि बहरीन के अंदर भी अमेरिका के ठिकानों पर, सैन्य ठिकानों के ऊपर लगातार अटैक किए जा रहे हैं। ड्रोन और मिसाइलों से अटैक किए गए हैं और ये जवाबी कार्रवाई ईरान की तरफ से भी इसकी पुष्टि की गई कि वो बहरीन में मौजूद अमेरिका के सैन्य बेड़ों पर लगातार हमले कर रहा है। इन तमाम खबरों के बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के हालात क्या हैं यह भी आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करते हैं। पिछले एक हफ्ते में कितने टैंकर वहां से पास किए हैं यह आपको समझाना और दिखाना बहुत जरूरी है। दरअसल अगर आप 25 जुलाई से बात करें, 25 जुलाई को 14 टैंकर वहां से पास किए गए थे और ईरान का मानना है कि वो टैंकर है जो IRGC की अनुमति के हवाले से या उनकी अनुमति के हिसाब से ही आगे जा रहे हैं। 26 जुलाई को 9 टैंकर और 27 जुलाई को ये 11 टैंकर्स निकले थे। यानी लगातार कोशिश ये की जा रही है कि जितने भी टैंकर निकले या जितनी भी चीजें निकले वो ईरान के अप्रूवल के साथ ही निकले। अब 25, 26, 27 जुलाई का आंकड़ा आपने देखा, अब 28, 29, 30 जुलाई का आंकड़ा भी आपको बताते हैं। 28 जुलाई को 19 टैंकर, 29 जुलाई को 31 टैंकर और 30 जुलाई को 19 टैंकर वहां से गुजरे थे। दरअसल इस सभी आंकड़ों के पीछे ईरान का तर्क यह रहता है कि जो टैंकर ईरान से अप्रूवल लेकर वहां से गुजरते हैं उनको जाने की इजाजत दी जाती है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ये मानता है कि ये ब्लॉकेट का ही नजारा है, ब्लॉकेट की मदद से ही इन टैंकर्स को वहां से निकाला जा रहा है। दरअसल आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अगर आप ऊपर देख रहे हो तो यह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये है वो इलाका साउथ, जिसे हम साउथ ब्लॉकेट कहते हैं, जो अमेरिका ने लगाया हुआ है। साउथ का इलाका अमेरिका कहता है कि टैंकर्स यहां से निकले और नॉर्थ का इलाका यानी ऊपरी इलाका जो है ईरान ये कहता है कि जो भी टैंकर निकले वो ईरान की रजामंदी से ऊपर वाले इलाकों से निकले। यानी अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज 35 किलोमीटर का ये छोटा सा गलियारा दो भागों में बट गया है, जो है साउथ और वो एक है नॉर्थ। और इन्हीं गलियारों के हिसाब से यानी नॉर्थ के ऊपर ईरान अपनी पकड़ बनाए रखता है, उसको अपना इलाका बताता है कि यहां से जो भी निकलेगा वो इन इलाकों से निकलेगा। और ये रास्ता साउथ का जो है वो अमेरिका मानता है कि जो भी अब टैंकर्स निकले वो इन इलाकों से निकले। तो यानी स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर भी अपनी अपनी अपनी अपनी पकड़, अपने अपने दावे लगातार ईरान और अमेरिका की तरफ से किए जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख भी कर लेते हैं। कुलकर्णी सर, सबसे पहले अगर मैं आपसे जानूं कि ये हम तमाम बातें हम कर रहे हैं कि देखिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे इतने टैंकर निकले, लेकिन देखा जाए तो अभी वो फ्लो नहीं आ पाया, वो रिस्ट्रिक्शन नहीं हट पाई है जिसका दावा अमेरिका कर रहा था कि देखिए अब पूरी तरीके से ब्लॉकेट लग गया है, तमाम टैंकर्स वहां से गुजर सकते हैं, हमने IRGC की क्षमताओं को खत्म कर दिया। क्या आपको लगता है कि वो फ्लो, वो आवाजाही दोबारा से स्थापित हो पाएगी?
4: बहुत बहुत धन्यवाद सुमित। मुझे लगता है बहुत मुश्किल है क्योंकि जिस प्रकार से अब यूएस रिडायरेक्ट भी कर रहा है वहां से आवाजाही को, नंबर वन, नंबर टू, जिस प्रकार से ईरान जानता है कि यही एक उसके पास वेपनाइज और वेपनाइजेशन ऑफ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जो है वही उसका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है अभी के तौर पर। और तीसरी बड़ी बात जो ईरान जानता है कि कितना भी अमेरिका कर ले बूट्स ऑन ग्राउंड रखने में उसको दिक्कत आ रही है और वो शायद ईरान उसका पूरा कैपिटलाइज करना चाहता है। इन सबको देखते हुए जिस प्रकार से अमेरिका अब धीरे धीरे करके जो इनके प्रॉक्सीज हैं चाहे वो हमास हो या हिजबुल्ला हो उन दोनों को डिफाइन करने में लगा है। हुदी जो है आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हुदी लगातार बबल मंदेब और रेड सी के अंदर इस प्रकार से वो सऊदी अरेबिया के ऊपर दबाव डाल रहा है। इतना ही नहीं इजिप्ट के भी टैंकर को अब उन्होंने बर्बाद करने की कोशिश की है। साथ ही साथ इराक से भी जिस प्रकार से पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स जो है वो सऊदी अरेबिया के जो ऑयल इंस्टॉलेशन है उनके ऊपर हमला करने की कोशिश। तो पूरे अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो है सिचुएशन दिन पर दिन और खराब होती जा रही है।
3: बिल्कुल,
4: इसके कारण जो जिस प्रकार से कार्रवाई हो रही है IRGC जो है वो अपना जो पकड़ है इसके पूरे इसमें छोड़ना नहीं चाहती। चाहे वहां के पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट जो ईरान की है वो सोचती है कि जो जिस प्रकार से 14 वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में पांचों उंगलियां ईरान की घी में थी उसको फायदा हो रहा था, कहीं ना कहीं IRGC को लगता है कि उसकी जो पकड़ है ईरान के ऊपर अगर वो ढीली पड़ गई तो दिक्कत होगी। जैसे आपने ठीक कहा सुमित, ये जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है नॉर्दर्न पार्ट ईरान कंट्रोल करना चाहता है और सदर्न पार्ट यूएस ओमान के द्वारा कंट्रोल करना चाहता है। और अब आपने कहा कि ओमान के नजदीक भी एक टैंकर के चोट लगी है तो ये बहुत दर्शाता है ये आने वाले दिन बहुत नाजुक बहुत ही मुझे लगता है मुश्किल वाले दिन। और जिस प्रकार से ट्रंप का जो गुस्सा देखने को मिल रहा है मुझे लगता है ईरान अगले 48 घंटे में शायद परेशानी में हो सकता है।
3: बिल्कुल जनरल सिवाज, एक बात बताइए, इन 155 दिनों से जब से 28 फरवरी से इस युद्ध की शुरुआत हुई इन 155 दिनों के अंदर हमने देखा कि जब जब बातचीत की प्रोग्रेस आगे बढ़ती है इसराइल के प्रधानमंत्री का वॉशिंगटन का दौरा तब तब आ जाता है और जैसे ही वो दौरा करते हैं परिस्थितियां दोबारा से वर्सेटाइल दोबारा से बढ़ती बिगड़ती चली जाती है। और ये माना जा रहा है कि इस बार भी जब उनकी 72 घंटे पहले एक मीटिंग हुई थी उसके बाद से ही अमेरिकी राष्ट्रपति के सुर बदल गए, वो लगातार अब और बड़े अग्रेसिव ऑपरेशन चाहते हैं, वो चाहते हैं कि देखिए ईरान पर और बड़े हमले किए जाएं। आखिरकार ये मजबूरी है या कुछ ऐसा है जो इसराइल की तरफ से सुनिश्चित किया जाता है कि देखिए अगर हमने दोबारा से हमले किए तो हम ये अचीव कर सकते हैं?
5: हाँ देखो सुबह एक चीज देखनी पड़ेगी, ये लड़ाई बढ़ इसलिए नहीं जाएगी कि अभी इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू आए सिचुएशन ऐसी बिल्डअप हो रही है क्योंकि इस जो राउंड अभी जो स्टार्ट हो रखा है इसके अंदर इसराइल हिस्सा नहीं ले रहा और क्योंकि इसराइल को मालूम है कि उसके हथियारों की कमी है, उसने अपना बचाव, उसको ये भी मालूम था कि अगर वो लड़ाई में आता है तो ईरान भी उसके ऊपर हमले करेगा और उसको नुकसान होगा। उसके बाद खाड़ी के देश में नहीं चाहते कि इसराइल आए क्योंकि फिर बातचीत कभी भी नहीं हो सकती, फिर बातचीत का दौर कभी बंद हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि अब जो ये ईरान मान ही नहीं रहा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर रहा है बार बार, देखो ईरान का बड़ा सीधा मकसद है, वो एक एसमेट्रिक लड़ाई लड़ रहा है, उसको पता है कि मिलिट्री पावर बहुत ज्यादा है अमेरिका की और इसराइल की। उसने दो चीजें की हैं, एक तो उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे अपना जो कब्जा है उसको बनाए रखा है, दूसरा वो जो भी मिडल ईस्ट के अंदर मिलिट्री इंस्टॉलेशन हैं अमेरिका की चाहे वो कुवैत में बहरान जॉर्डन वहां हमले करता है। अब जो सिचुएशन बिल्डअप हो रही है कहीं ना कहीं ईरान और अभी अमेरिका के बीच में जो बातचीत का दौर चला था उसमें कोई सक्सेस नहीं मिल रही। अब जिस प्रकार से नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत हुई है ऐसा लगता है इस वीकेंड में इस सैटरडे संडे तक ऐसा लगता है दोबारा स्टार्ट लड़ाई हो जाएगी और इस बार अमेरिका और इसराइल कि जो स्ट्रेटेजी थोड़ी सी अलग है उनकी, अभी जो स्ट्रेटेजी वो एनर्जी सेक्टर के ऊपर अटैक करेंगे, वो ऑयल सेक्टर जो है खर्क आइलैंड है कैसम आइलैंड है और जो आपका एक प्रकार से अब्बास है बंदर अब्बास उस पर हमले होंगे। मगर दूसरी बात हमें समझनी पड़ेगी, मैं इस बात से सहमत हूँ हमास को डिफेंग हो रहा है कहीं से, हिजबुल्ला भी कहीं ना कहीं बात लेबनान से हो रही है मगर होती रिवर बहुत सक्रिय होने रेड सी के अंदर और जिस प्रकार से वो बब अल मंदेब को बंद कर रहे हैं तो जो सऊदी जो ऑयल भेज पा रहा था ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन से यानबू में वो बंद हो गया। तो ये सच्चाई है कि इकोनॉमिक प्रेशर तो पड़ेगा क्योंकि एक तरीके से 15-20% ही खुला हुआ है, आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, आपका बाब अल मंदेब भी बंद हो गया, ऊपर से ये लड़ाई का भी बोझ पड़ेगा, फूड फ्यूल फर्टिलाइजर बढ़ेंगे। और मुझे लगता है कि ईरान ने बहुत बड़ी गलती की है क्योंकि ये एमओयू जो था ये काफी पक्ष में था ईरान के, और ईरान को इसको ले लेना चाहिए था, मगर आईआरजीसी नहीं चाहता बातचीत का दौर चले, उनके जो डिप्लोमेट्स हैं उनकी बात नहीं चलती। मुझे लगता है ये युद्ध भयानक होगा, इसका एक प्रकार से इंटेंसिटी बढ़ेगी और इसका दायरा भी बढ़ेगा।
3: बिल्कुल जनरल सिवाज, देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ हुती कम मजबूत हो रहे हैं, बल्कि इराक के अंदर भी जो मिलिशिया है जो ईरान को समर्थित होते हैं वो भी मजबूत हो रहे हैं। शायद इसी वजह से अमेरिका ने और सऊदी ने मिलकर वहां पर ज्वाइंट ऑपरेशन चलाए थे, क्योंकि अब उनको लगता है कि हमास और हिजबुल्ला के बाद अब ये दोनों प्रॉक्सीज बहुत ज्यादा एक्टिवेट किए जाएंगे। अब आपको बताते हैं कि हॉर्मूज को लेकर भी ईरान और अमेरिका में तनातनी कितनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि हमारे पास एक ऑडियो क्लिप है जिसमें साफ सुनाई दे रहा है कि आईआरजीसी की नेवी खुलेआम सऊदी अरब के एक ऑयल टैंकर को वहां से वापस जाने की धमकी देती है। आइए आपको वो भी सुनाते हैं।
6: मीनवांगेलोरी, दिस इज सेपाह नेवी वार्निंग यू, alter your course and turn back. You are running to danger. If you keep proceeding, you will be destroyed. Do not try to cross the strait from Southern Corridor and do not cross without permission. This is Sepah Navy. You are not allowed to cross the strait. Alter your course and turn back. Otherwise, you will be destroyed. Don't put your life into danger, Captain.
7: What is your intention? You are drop anchor.
6: Minuan Gelori, Morovessel, Minuan Gelori, you are proceeding in Southern Corridor, Mani territorial waters. You have no permission to cross the Strait of Hormuz. This is Sepah Navy warning you to alter your course and turn back. You are not allowed to cross the Strait of Hormuz. If you keep proceeding, you will be destroyed. This is my last warning to you. If you keep proceeding, you will be destroyed. Alter your course and turn back. I'm preparing to open fire at you. And I'm waiting to see your action. Alter your course and turn back.
3: तो देखा आपने कि किस तरीके से लगातार आईआरजीसी वहां से गुजरने वाले टैंकरों को चेतावनी देती है, उन्हें रोकती है और कोशिश ये कर रही है लगातार आईआरजीसी की तरफ से कि जहां वहां से जो भी टैंकर गुजरे वो बिना आईआरजीसी की अनुमति के वहां से ना गुजरे। जनरल कुलकर्णी, जब हम बात करते हैं इस नेवल ब्लॉकेट की, जब हम बात करते हैं कि कैसे लगातार प्रॉक्सीज को दोबारा से नए प्रॉक्सीज को एक्टिवेट किया जा रहा है, चाहे वो हुती हो चाहे वो इराक में मौजूद मिलिशिया हो, क्या आपको लगता है, और हमने हाल ही में देखा कि इजिप्ट के पोर्ट्स के आसपास भी लगातार ड्रोन से अटैक किए गए, क्या आपको लगता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और रेड सी के बाद अब ये जंग का दायरा मेडिटेरेनियन सी में या दूसरे मुल्कों में दूसरे इलाकों में भी फैलेगा?
4: सुमित, उसको बचाने के लिए ही अगले 72 घंटे में जैसे श्रीवास्तव बता रहे हैं जबरदस्त हमला होगा ईरान पे, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और रेड सी के ऊपर किसी प्रकार से अब जो रोक डाली जा रही है, जैसे आपने सुना किस प्रकार से वो कह रहे हैं कि आप सदर्न साइड से ना जाएं, क्योंकि वो ओमान की तरफ से ये पूरे इसके जो बीच में है तीन है, एक इनवर्ड बाउंड, आउटवर्ड बाउंड और बीच का बफर है, हर एक का 3-3 किलोमीटर का पूरा स्ट्रेट है वो इसमें से गुजरते हैं। अब वो बार बार वो अनाउंस कर रहा है कि आप सदर्न यानी कि ओमान की तरफ से गुजरने की कोशिश कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं ईरान जो है लगातार स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर अपना जो पकड़ है वो छोड़ना नहीं चाहता। यही कारण है आईआरजीसी का जो मैं कहूंगा अस्तित्व तब तक ही है जब तक स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर उसकी पकड़ है। जैसे ही स्टेट ऑफ हॉर्मुज की पकड़ खत्म, आईआरजीसी भी खत्म, इसमें भी कोई शक नहीं है। इसको देखते हुए जो अपना बबल मंदेब है जहाँ पे उदित है, मुझे लगता है वहां पे
3: जनरल कुलकर्णी, देखिए यही तो हम बात कर रहे हैं कि देखिए अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही लगातार दो भागों में बट गया है, यानी एक तरफ नॉर्थ का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, एक तरफ साउथ का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और दोनों तरफ से एक तरफ ईरान उसको क्लेम करता है, दूसरी तरफ साउथ के अंदर उस पर अमेरिका क्लेम करने लग गया, यानी अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर भी दो रास्ते निकलेंगे जो दोनों तरफ से अपने तरफ से उन्हें उसे टैक्स को लागू या फिर आप कह सकते हैं कि उसमें पैसे उगाही का काम दोनों तरफ से किया जाएगा। चलिए अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन रणभूमि में आपको बात करेंगे कैसे अमेरिका भी अपने नागरिकों को लगातार मिडिल ईस्ट में रहने के लिए अलर्ट जारी कर रहा है और वहां से निकलने का आदेश भी दे रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परो
9: इन एसोसिएशन विद
10: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक
11: सम मिस्ट्रीज लाई बीनीथ द ओशन अदर्स बियॉन्ड द स्टार्स एक्सप्लोर अर्थ्स वाइल्डेस्ट प्लेसेस ऑन अर्थ डे 365 अनकवर नेचर्स ग्रेटेस्ट मिस्ट्रीज एंड एक्सपीरियंस ब्रेथटेकिंग आईमैक्स थिएटर डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स Watch Earth Day 365 free now on the Roku channel, LG channels, Amazon Fire, and more.
12: I'm Pamela Anderson. Explore your world every day on Earth Day 365.

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

जेनजी से संवाद के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने की विकास की बात। आंध्र प्रदेश में एयरपोर्ट का किया उद्घाटन। कर्नाटक के मैसूर में विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र का भी इनॉग्रेशन किया। जंतर मंतर प्रदर्शन पर प्रधानमंत्री मोदी का छात्रों के नाम वीडियो संदेश। कहा, मुझे मेरी मां को गाली दी गई, गुमराह बच्चों को करना चाहता हूं माफ, मिलकर बनाए सपनों का भारत। चढ़ावा चोरी को लेकर पप्पू यादव के प्रदर्शन पर बीजेपी, वीएचपी और साधु संतों ने खोला मोर्चा। जंतर मंतर से लखनऊ तक विरोध, आस्था के अपमान का आरोप। एनएसए अजीत डोभाल को लोकमान्य तिलक अवार्ड। पुणे में गृह मंत्री अमित शाह ने किया सम्मानित। कहा, मोदी और शाह जैसे नेताओं का मिलना हमारे लिए सौभाग्य। युवाओं से कहा, आजादी का मतलब मनमानी नहीं। कॉमनवेल्थ गेम्स में आज भारत की महिला बॉक्सरों ने किया कमाल। प्रीति पवार और जैस्मिन बनी चैंपियन। भारत के खाते में कुल 7 गोल्ड।

ब्रेक के बाद रणभूमि में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। रणभूमि स्पेशल में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको प्रधानमंत्री मोदी के कर्नाटक दौरे पर आपको एक खबर बताते हैं। आंध्र प्रदेश दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी कर्नाटक के मैसूर में, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र का उद्घाटन भी किया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन करते हुए और स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र का उद्घाटन के दौरान। प्रधानमंत्री मोदी इस समय मैसूर में मौजूद हैं।

बड़ी खबर की, जहां पर कहा जा रहा है कि जिसमें कुवैती सेना का कहना है कि उसने शनिवार सुबह से ही कुवैत के हवाई क्षेत्र में दुश्मन के ड्रोनों का पता लगाकर उन्हें इंटरसेप्ट कर उन्हें नष्ट कर दिया है। जहां कुवैत के मुताबिक ईरान ने आज फिर से उस पर हमला किया था। कुवैत की सेना का कहना है कि ईरानी हमले में उत्तरी कुवैत में सरकारी ठिकानों और बुनियादी ढांचों को पर एक प्राइवेट कंपनी की गाड़ियों को निशाना भी बनाया गया। हालांकि हमले को नाकाम कर दिया गया। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें ईरान की तरफ से दावा किया जा रहा था कि ईरान ने कई मल्टीपल रॉकेट्स और ड्रोन्स के हमलों से कुवैत बहरीन पर हमले किए थे, और अब कुवैत की तरफ से कहा जा रहा है कि उसने इन सभी हमलों को निष्क्रिय कर दिया है।

0: और एक बड़ी खबर हूती के हवाले से भी आ रही है, जहां पर यमन की सेना और खासतौर पर हूतियों की तरफ से कहा गया उन्होंने सऊदी अरब के 8 टैंकरों को, ऑयल टैंकर्स को अपने रास्ता बदलने के लिए मजबूर किया, उनको टारगेट किया। यमन की सेना का बयान आया जिसमें कहा है कि घेरेबंदी के बदले में घेराबंदी की जा रही है, कि नीति के हवाले से उन्होंने कहा कि जैसी घेराबंदी, जैसा ब्लॉकेट लगातार अमेरिका की तरफ से लगाया जा रहा है, वैसा ही ब्लॉकेट अब वो भी स्थापित कर रहे हैं। और उन्होंने सऊदी अरब के तेल टैंकरों पर समुद्री प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि उन्होंने सऊदी अरब के 8 ऑयल टैंकर्स को अपना रास्ता बदलने के लिए मजबूर कर दिया, दूसरी तरफ जाने के लिए उनसे कहा गया। इसे ईरान समर्थन में उठाया गया कदम के तौर पर देखा जा रहा है। हमने आपको कुवैत, बहरेन और हूती के हवाले से खबर बताई, लेकिन अब जॉर्डन से भी एक बड़ा अपडेट मिल रहा है। कहा जा रहा है कि अमेरिका ने एक बार फिर से एक फ्रेश एडवाइजरी जारी किया, जिसमें जॉर्डन में मौजूद अमेरिका के लोगों को आग्रह किया गया, उनको अलर्ट किया गया है। और अमेरिकी दूतावास की तरफ से कहा गया कि अमेरिकी नागरिकों के लिए चेतावनी जारी की गई है। जॉर्डन में अमेरिकी दूतावास ने मिडल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी नागरिकों को सलाह दी है कि वो बढ़ते तनाव को देखते हुए इस इलाके से निकल जाएं, इसको लेकर लगातार अल्टरनेटिव रूट्स को ऑप्शन रखें। इसके साथ ही माना यह जा रहा है कि जॉर्डन पर ईरान कभी भी बड़े पलटवार या हमले कर सकता है, इसी के बेसिस पर यह नई एडवाइजरी जारी की गई है। हमारे साथ हमारे दोनों एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं। जनरल सिवाज, ये बात हम जो पहले भी कर रहे थे, देखिए हूती किस तरीके से एक्टिवेट हो रहे हैं, यहां तक कि इराक के अंदर भी जो मिलिशिया एक्टिवेट हो रहा है, ऐसा लगता है कि हमास हिजबुल्ला के बाद अब ईरान का फोकस है हूती, और जो ईरान में इराक में मौजूद मिलिशिया है उनको और ताकतवर बनाए रखना।
1: हाँ बिल्कुल, देखो ये आपने बिल्कुल ठीक बोला सुमित, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। होती रेबल जैसे आपने बार बार बताया कि वो अगर बब अलमंदेब को बंद कर देते हैं, 10-12% पूरे वर्ल्ड का ऑयल और बाकी सामान जो है एशिया से यूरोप वहीं से जाता है, और सबसे ज्यादा उन्होंने टारगेट सऊदी को किया है, क्योंकि जो पहला राउंड हुआ था तो सऊदी अरेबिया अपना ऑयल भेज पा रहा था, ईस्ट वेस्ट जो पाइपलाइन है उसके माध्यम से यानबू जो पोर्ट है रेड सी पे, मगर अब उसने पूरा ब्लॉकेट लगा दिया होती रेबल ने। और वो हुआ है जब साना के इंटरनेशनल एयरपोर्ट में हमला किया था, जो कि एक प्रकार सऊदी की एयरफोर्स ने, तो अब सिचुएशन बहुत बदल चुकी है। अब मुझे लगता है दोनों ही बंद हो जाएंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी और अब बब अल मंदेब भी। और अब अमेरिका चाहता है कि किसी तरीके से इतना बड़ा हमला किया जाए कि पूरा का पूरा जो ईरान की एक प्रकार मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ उसका एनर्जी सेक्टर भी बर्बाद हो। और ईरान क्या चाहता है, ईरान जो है पलटवार करेगा, और ईरान जो मिलिशिया है जो कि स्पेशली इराक के अंदर ईरान की मिलिशिया वो भी, और सीरिया के अंदर जो मिलिशिया वो भी अभी सक्रिय होंगे, उनके पास भी हथियार काफी हैं, और अभी वो हथियार दिखाएंगे वो भी इस लड़ाई के अंदर शामिल हो जाएंगे। अब ये लड़ाई का दायरा कैसे बढ़ेगा, अभी तक जो हमला कर रहा है ईरान वो कर रहा है बेसिकली कुवैत, बहरैन और जॉर्डन पे, अब वो देखना सऊदी में भी करेगा, यूएई पे भी हमले होंगे, कतार पे भी हमले होंगे, इजिप्ट का भी सुनने में आया कि कहीं ना कहीं ड्रोन हमले हुए हैं। तो ये देखो एक तो दायरा बढ़ेगा, इंटेंसिटी इसलिए बढ़ेगी क्योंकि इस बार जो हमले करेगा अमेरिका, इसराइल बहुत भयंकर हमले करने वाला है, इसमें कोई नहीं, क्योंकि इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम काफी अच्छा नहीं है, ना उसके पास एक प्रकार से एयर पावर है, तो ये हमले होंगे और बहुत जबरदस्त होंगे। ईरान क्या करेगा, देखो ईरान वही स्ट्रेटेजी अपनाएगा जो पहले राउंड में की थी, वो मिसाइल रॉकेट ड्रोन से इन जो मिलिट्री बेसिस है उन पर हमले करेगा, इसराइल पर डायरेक्ट हमले करेगा, मगर इस बार मुझे लगता है अमेरिका थोड़ा बेटर प्रिपेयर्ड है, उसने जो थर्ड और जो पेट्रॉयड मिसाइल सिस्टम है उसको उसने अभी रिनोवेट किया है, जहां नहीं था वहां पर लाया गया है, और हो सकता है कि जिस प्रकार

0: इसराइल ने अपने आयरन डोम को के अंदर भी जो गैप थे उसको बंद किया है।
1: पूरा
0: मुझे
1: किया।
0: लगता है लड़ाई का दायरा जो है बढ़ने वाला है, इंटेंसिटी बढ़ेगी, और ऐसा लगता है कि आने वाले जो समय के अंदर आपके दोनों के दोनों जो मेन जो ब्लॉक हो जाएंगे, जो कि रस्ते हैं, उससे फूड फ्यूल फर्टिलाइजर पूरे वर्ल्ड के अंदर बढ़ेंगे। जो आप एक पॉइंट बार बार कर रहे हैं कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो खुला हुआ है, तो 15 से 20 शिप क्यों जा रही है? शिप डरती है क्योंकि उनको लगता है कि वो गई तो उनके ऊपर हमला होगा। जो इंश्योरेंस है वो 500 गुना ज्यादा हो गया,
1: बिल्कुल
0: इंश्योर करने वाला नहीं है। दूसरी बात, वो यही प्रेशर डाल रहे हैं, आप जो नदर रूट से जाएंगे जो ईरान का है, और वो लेने को शिप्स तैयार नहीं। तो ये सच्चाई है, फ्लूइडिटी है, कॉम्प्लेक्स
1: और
0: सिचुएशन
1: सर
0: होगी
1: सच्चाई तो
0: दोनों तरफ
1: सच्चाई
0: से।
1: सर बिल्कुल आपने ठीक कहा। सच्चाई तो ये भी है कि देखिए परिस्थितियां कैसे बदल रही है कि अब ये दायरा जो था हमने देखा कि पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तक सीमित था 40 दिनों की जंग में, उसके बाद ये रेड सी में गया और अब ये मेडिटेरियन सी की तरफ भी जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन अब रुक करते हैं एक और जंग की भूमि का, एक और रणभूमि का, जहां पर रूस यूक्रेन युद्ध पिछले 4.5 साल से चल रहा है। रूस और यूक्रेन का युद्ध अब और भीषण होता जा रहा है, खासतौर पर अब रूस हर मोर्चे पर और आक्रामक और अग्रेसिव होता जा रहा है। उसने यूक्रेन की राजधानी कीव के साथ साथ 4 और बड़े शहरों पर भयानक बमबारी कर तबाही मचाई है। इन हमलों में अब तक करीबन 9 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोगों के घायल होने की खबर भी मिल रही है। आखिर मिसाइल हमलों को रोकने में यूक्रेन लगातार नाकाम क्यों हो रहा है और कीव के मौजूदा हालात क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में।

0: रूसी मिसाइलों और ड्रोन के हमलों से थर्राया कीव। ताबड़तोड़ हमलों में 9 की मौत, कई घायल। टूटी हुई इमारतें, जली हुई कारें और आग बुझाते बचाव दल। तबाही की ये तस्वीरें यूक्रेन की राजधानी कीव की हैं, जहां रूस के हमलों से भारी नुकसान हुआ है। इन हमलों के बाद रात भर अलग अलग इलाकों से धमाकों की आवाजें आती रही। बमों की बरसात से कई इमारतों में आग लग गई और लोग फंस गए। मिसाइल और ड्रोन हमले में 9 लोग मारे गए, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। सबसे ज्यादा 6 लोग ड्निप्रो में मारे गए हैं, इनमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। रूस ने 35 मिसाइलें दागी, जिनमें 27 बैलिस्टिक मिसाइलें भी शामिल हैं। इन हमलों में 185 ड्रोन का इस्तेमाल भी किया गया। कीव के अलावा जिन इलाकों में तबाही ज्यादा हुई, उनमें सूमी, खारकीव और पोल्तावा भी शामिल हैं। रूस के निशाने पर यूक्रेन के ड्रोन बनाने वाले ठिकाने थे। ड्रोन यूक्रेन की ताकत रहे हैं और इनके जरिए उसने रूस को काफी नुकसान पहुंचाया है। अब रूस किसी भी सूरत में इन्हें तबाह करने के अभियान में जुट गया है। रूस ने यह हमला यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के अमेरिकी दौरे के 2 दिन बाद किया। जेलेंस्की ने राष्ट्रपति ट्रंप और हथियार बनाने वाली कंपनियों से मिलकर एंटी मिसाइल सिस्टम की मांग की थी। हालांकि यूक्रेन का दावा है कि रूस ने 10 इलाकों पर हमले कर रिहायशी इमारतों और कारोबार को नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन की सेना रूस के इन हमलों के सामने बिल्कुल बेबस नजर आई। दुश्मन की मिसाइलों को हवा में ही नष्ट करने के लिए अब उसके पास कुछ नहीं बचा है। जेलेंस्की इसके लिए अमेरिका और यूरोप से कई बार गुहार भी लगा चुके हैं। उनकी ये बेबसी, मायूसी और निराशा एक बार इन हमलों के बाद फिर से दुनिया के सामने आ गई, जब सोशल मीडिया पर उन्होंने ये स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं दिखाई कि यूक्रेनी सेना सिर्फ एक मिसाइल के हमले को ही नाकाम कर पाई, क्योंकि उसके पास एंटी मिसाइल सिस्टम नहीं है। खैर, इन हमलों के जवाब में यूक्रेन को कुछ तो करना ही था। उसने रूसी शहर उफा में ड्रोन के जरिए एक ऑयल रिफाइनरी पर हमला बोल दिया। आज तक ब्यूरो।
1: और हमारे साथ हमारे दोनों एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं। कुलकर्णी सर, इस समय अमेरिका लगातार ईरान के साथ भी फंसा हुआ है और वहां पर दूसरी तरफ वो चीन के खिलाफ भी अपनी कार्रवाई कर रहा है। लगातार ये भी खबरें मिल रही हैं कि देखिए उसके पास आर्म्स एंड एम्युनिशंस का भंडार कम होता जा रहा है। तो ऐसे में यूक्रेन को संरक्षण या फिर उसको हेल्प करेगा कौन, क्योंकि जिस तरीके के हमले हम रूस के देख रहे हैं, ऐसा लगता नहीं कि रूस रुकने वाला है और रूस अभी ये चाहता है कि वो कोई भी नेगोशिएशंस में यूक्रेन के साथ बैठे।
2: बिल्कुल सुमित, यही इसमें कोई शक ही नहीं है कि रूस चाहता है लड़ाई जल्दी से जल्दी खत्म हो। और आज जब यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल मिलने में मुश्किल हो रही है, इंटरसेप्टर नहीं मिल पा रहे हैं, ज़ेलेंस्की मिले जरूर है ट्रंप के बाद, तो उसके बावजूद भी जो सामान, जो सामग्री यूक्रेन को आज की जरूरत है, बहुत मुश्किल हो रहा है। रूस ने जिस प्रकार से ब्लैक सी में कब्जा किया है, आप देखेंगे कि यूक्रेन को बिल्कुल लैंड लॉक बना के रख दिया, यानी कि ना उसके कोई एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं, ना कुछ यूक्रेन के अंदर रेड सी के पोर्ट्स के द्वारा जा रहा है। इतना ही नहीं, लगातार जिस प्रकार से जरूर यूक्रेन ने जिस प्रकार से मिसाइल, क्रूज मिसाइल खासकर जो रूस ने बरसाए या फिर ड्रोन बरसाए, उसके काफी 90% तक यूक्रेन ने जरूर उसको इंटरसेप्ट करने की कोशिश की, तो उसके बावजूद भी यूक्रेन को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि ज़ेलेंस्की अब जब अपने देश को संबोधित कर रहे, वो नर्वस नजर आ रहे हैं। उन्हें लगने लगा है कि कहीं ना कहीं वो प्लॉट खो पाए बैठेंगे। और जिस प्रकार से अमेरिका लगातार ईरान के साथ लगा हुआ है, मिडिल ईस्ट में लगा हुआ है, तो वहां से भी वो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। इस कारण से ज़ेलेंस्की ने आप देखेंगे कि ईरान के एक शिप को भी डिस्ट्रॉय करने किया, इसी के लिए दिखाने के लिए कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ और मेरी मदद आप करो।
1: लेकिन सर बिल्कुल बात तो यही है कि देखिए कैसे अब ये मैनेज करेंगे, क्योंकि देखिए अभी सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ी दिक्कत यूक्रेन के सामने ये है कि यूरोप पहले से ही मदद नहीं करता और अब अमेरिका भी कई मल्टीपल लोकेशन पे, मल्टीपल फ्रंट्स पर अब फंसता नजर आ रहा। तो ऐसे में यूक्रेन के लिए बहुत मुश्किल होगा इस जंग को लंबा खींचना। अब अगली खबर का रुख करते हैं जो नेपाल से। नेपाल में बवाल पर इस कदर बढ़ गया है कि कई जिलों में कर्फ्यू लगाना पड़ गया और सेना को सड़कों पर उतारना मजबूरी बन गया। जगह जगह हुए हिंसक झड़पों में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। इस मामले में भारत ने भी चिंता जताई है और सतर्कता की जरूरत भी है, इसलिए क्योंकि उसकी सीमा भारत के साथ लंबे इलाकों में लगती है और ये वो इलाके हैं जहां पर माहौल तेजी से बिगड़ता जा रहा है। नेपाल से लगे हुए बिहार के इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है।
0: सांप्रदायिक हिंसा में जल रहा नेपाल, तीन की मौत, सड़कों पर बवाल, कई जिलों में कर्फ्यू, भारत नेपाल सीमा पर कड़ी चौकसी, सूनी सड़कें, संगीनों का साया, आम आदमी परेशान। ये ताजा तस्वीरें नेपाल के जनकपुर की हैं। कुछ दिन पहले तक यहाँ रौनक लगी रहती थी, लेकिन अब पुलिस के पहरे में सन्नाटा पसरा हुआ है। धनुषा जिले में उपद्रवियों से निपटने के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है और सुरक्षा बलों को सड़कों पर उतार दिया गया है। पड़ोसी देश नेपाल के कई जिलों में यही हालात है। खास तौर पर बिहार की सीमा से लगे इलाकों में माहौल बेहद तनावपूर्ण है। नेपाल के कई इलाके सांप्रदायिक हिंसा में झुलस रहे हैं। कहीं आगजनी हो रही है, कहीं तोड़फोड़, तो कहीं सड़कों पर उबाल नजर आ रहा है। पांच दिन पहले नेपाल में भड़की हिंसा धीरे धीरे कई जिलों तक फैल गई और माहौल लगातार खराब होता चला गया। सबसे ज्यादा हालात बिगड़े भारत की सीमा से सटे कोशी और मधेस प्रांतों में। हिंसा के चलते यहां तीन लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि घायल लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है।
1: चलिए वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: This is radio reimagined. With TuneIn, you get music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. Hear from stations like today's hits. Talk sport.
6: Oh, I think we still can win the World Cup with this squad.
5: The Daily and more. Available on over 200 devices, so you can enjoy TuneIn Radio anytime, anywhere.

0: संसद परिसर में अयोध्या चंदा चोरी का मुद्दा विपक्ष ने नाटक का मंचन करके उठाया, जहां पप्पू यादव साधु के भेष में दान पेटी के साथ पहुंचे, जिसमें राहुल गांधी समेत विपक्ष के नेताओं ने सांकेतिक चंदा डाला, जिसके बाद पप्पू यादव दान पेटी लेकर भागने की कोशिश करते हैं, जहां उन्हें अयोध्या से आने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद पकड़ते हैं। पप्पू यादव के इस नाटक पर लोकसभा स्पीकर ने नाराजगी जताई, पप्पू यादव के आचरण को संसदीय भावना के खिलाफ बताया।
1: नहीं, वो तो स्पीकर साहब ने कह दिया कि ये रंग बदल बदल के कपड़े बदल बदल के प्रदर्शन करने का जगह नहीं है, थोड़ा सीरियसनेस दिखाना चाहिए। आप सांसद है तो सांसद की तरह व्यवहार करना चाहिए, नाटक करने का जगह नहीं है। स्पीकर साहब ने कह दिया है, अलग से मुझे कहने का जरूरत नहीं है।
0: वही बीजेपी भी पूरे मामले को लेकर विपक्ष पर हमला कर रही है।
2: वो तो कालनेमी का वेश धारण करके आए थे और पूरे सदन ने इसकी निंदा की।
3: तो ये सवाल उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि त्रेता युग के राम को हमला है, राम राम जपियो रे सब माल हरपियो रे। आप भगवान के आस्था के साथ ही नहीं, 154 करोड़ भारत के उस आस्था के साथ खिलवाड़ किए हैं जो राम के, जो राम को अपने जीवन में, कर्म में, चरित्र में, चिंतन में रखते हैं।
4: हमारे देश का, इन राजनीतिक पार्टियों का, कांग्रेस हो या सपा हो, जो वोट के खातिर सनातन को बदनाम करने का काम किया है, इसका बदला सनातन लेगा।
5: आपके माध्यम से देश का आम जनमानस देखे कि आखिर अयोध्या में क्या हुआ है। हम लोग तो विपक्ष के लोग हैं, जनता की आवाज उठाते हैं, जनता को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से अयोध्या में हुआ है, क्योंकि जो लोग मौके पे नहीं थे वो नहीं देख सकते। अब तो सीसीटीवी भी डिलीट हो गए।
0: उधर संत समाज ने भी पप्पू यादव को लेकर सवाल खड़े किए हैं।
6: महामहिम राष्ट्रपति महोदया और लोकसभा अध्यक्ष दोनों से यह मांग करूंगा कि ऐसे सांसदों की संसद सदस्यता बर्खास्त होनी चाहिए।
7: इन्होंने अपराध किया है, इन्होंने पाप किया है। आप जरा बताइए कि जिन लोगों ने मंदिर में दान चोरी किया है, क्या वो भगवाधारी थे? वो तो आठों जेल गए, भगवा साधु तो थे नहीं। और यह आप जरा देखिए कितने दुर्भाग्य है। और हमें तो लगता है कि पूरे विपक्ष में एक और दो पप्पू नहीं है, पूरा विपक्ष ही पप्पू हो चुका है।
0: राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर समाजवादी पार्टी पिछले दो दिनों से दान पेटी के साथ प्रदर्शन कर रही है, जिसमें आज पप्पू यादव की एंट्री ने नया सियासी घमासान शुरू कर दिया। आज तक ब्यूरो।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: TuneIn's how-to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: TuneIn has got your favorite podcast. From sports to special interests. Did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
2: सही क्या है, गलत क्या है, आज आप इस रिपोर्ट को देखिए, खुद बताइए। 100 पद की मान लीजिए सरकारी भर्ती नीति, 100 लोग चुने गए, 50 लोग को वेटिंग लिस्ट में डाला गया। चुने गए 100 लोगों में से अगर 30 ने नौकरी एक साल में छोड़ दी तो वेटिंग लिस्ट वाले 50 में से उन्हें नौकरी देना सही है या फिर दोबारा जनता का पैसा खर्च करके पूरी भर्ती प्रक्रिया को फिर से करना सही? फैसला आप ही करिए और राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार को इन युवाओं के प्रदर्शन की आवाज से आवाज मिलाकर जगाइए, जो बेरोजगार राजस्थान सरकार के मंत्रियों के घर धरना देने के बाद अब जयपुर के शहीद स्मारक पर बैठे। लेकिन सरकार तो इन्हें धरना देने के लिए भी एक दिन का ही मौका देती है। कपड़े खोलकर अपना दर्द बयां करने वाले ये वो बेरोजगार जो राजस्थान की सबसे बड़ी चपरासी भर्ती में कुछ पॉइंट से फाइनल लिस्ट से रह गए और वेटिंग लिस्ट में शामिल कर दिए गए। हुआ ये कि एमए, एमबीए, पीएचडी करने वाले जो बेरोजगार चपरासी भर्ती में चुने गए वो ज्वाइन करने की बजाय दूसरी नौकरियों की तैयारी करने लगे। कई चयनित हुए लोग दूसरी नौकरियों का रिजल्ट आते ही चपरासी की नौकरी छोड़ने भी लग गए। ऐसे में प्रदर्शनकारियों की मांग है कि वेटिंग लिस्ट में आए लोगों को उन खाली पदों पर रख दिया जाए। लेकिन चुनौती ये कि सरकार का ही बनाया वेटिंग लिस्ट का नियम इस चपरासी भर्ती में लागू नहीं हो रहा। इस भर्ती का जिम्मा संभाल रहे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा है कि प्रयास किया था, बात नहीं बनी, टेक्निकल इशू है, सरकार भी चाहेगी लागू हो, प्रयास कर रहे हैं, आगे ईश्वर की मर्जी। लेकिन बेरोजगारों को भगवान के भरोसे छोड़ना कैसे सही माने, जबकि एक साल में खाली हुए पद पर वेटिंग लिस्ट से भर्ती देने के नियम पर सरकार ही अपनी वाहवाही करती है।
3: एक वर्ष के भीतर कर्मचारियों द्वारा पद त्यागने की स्थिति में उस पद की प्रतीक्षा सूची से भरा जाएगा।
2: बेरोजगारों के आंदोलन के बाद अब मंत्री कहते हैं सरकार कोशिश कर रही है।
4: मैंने उचित स्थान पर उस बात को पहुंचाया है, परीक्षण उसका किया जा रहा है, परीक्षण के बाद जो नियमों में प्रावधान है उसके अनुरूप चर्चा करके कुछ किया जा सकता है।
2: इस धरने में दिव्यांग भी हैं जो इशारों से अपनी बात कहते हैं। इनके इशारों को क्या सरकार तब सुनेगी जब बेरोजगारों की ऊंची आवाज और उनके नारे तक सरकार के कान में नहीं पहुंच पा रहे हैं?
5: 54,000 में से करीब करीब 25,000 तक पद बेकार हो सकते हैं। ऐसे में सरकार वेटिंग रूल को लागू करे जिसकी घोषणा विधानसभा में की गई है और इन बेरोजगारों को राहत दे, क्योंकि छोटी नौकरियों में जो कम शिक्षित लोग हैं और जिनकी उम्र बीती जा रही है उन्हें नौकरी की ज्यादा जरूरत है। मगर ये कह रहे हैं कि तमाम मंत्रियों से मिलने के बावजूद अभी तक कोई रास्ता खुला नहीं है। कैमरा मनीष के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: चढ़ावा चोरी को लेकर पप्पू यादव के प्रदर्शन पर बीजेपी, वीएचपी और साधु संतों ने खोला मोर्चा। जंतर मंतर से लखनऊ तक विरोध, आस्था के अपमान का आरोप। अजीत डोभाल को लोकमान्य तिलक अवार्ड। पुणे में गृहमंत्री ने किया सम्मानित, कहा मोदी और शाह जैसे नेता का मिलना हमारा सौभाग्य। युवाओं से कहा आजादी का मतलब मनमानी नहीं। कॉमनवेल्थ गेम्स में आज भारत की महिला बॉक्सर ने किया कमाल, प्रीति पवार और जैस्मीन लंबोरिया बनी चैंपियन। भारत के खाते में कुल 7 गोल्ड।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। देश की राजधानी दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हुआ, उस प्रोटेस्ट के बाद छात्र राजनीति कितनी बदली है, देश की राजनीति पर उस प्रोटेस्ट का कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। खास मेहमान भी इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। हम चर्चा करेंगे, उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।

0: possibility number one is he gave the order.
1: कांग्रेस जनता पार्टी के पेपर लीक के खिलाफ हुए आंदोलन में पीएम मोदी के खिलाफ कई युवाओं ने अपशब्द का इस्तेमाल किया था, जिनकी पहचान कर पुलिस कार्रवाई की तैयारी कर रही थी। लेकिन 31 जुलाई की रात पीएम मोदी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट कर युवाओं को माफ कर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि ये भटके हुए युवा हैं, लेकिन हैं तो हमारे बच्चे ही, इसलिए मैं उन्हें अपशब्दों के लिए माफ करता हूं।
2: जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है।
1: हालांकि पीएम मोदी ने लड़कियों की भाषा पर हैरानी जताते हुए कहा कि जिस तरह कुछ बेटियों के मेरी माँ को गाली देते हुए वीडियो वायरल हुए, उससे उन्हें कल्चरल शॉक लगा।
2: एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है।
1: पीएम मोदी ने कहा कि अगर इन युवाओं पर कार्रवाई होगी तो इनका करियर प्रभावित होगा, इसलिए उन्होंने ऐसे युवाओं से अपील करते हुए कहा कि नए भारत के निर्माण में हमारे साथ आइए।
2: बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं।
1: आज पीएम मोदी जब आंध्र प्रदेश के दौरे पर भोगपुरम में थे, इस दौरान वो आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू से मंच पर काफी देर चर्चा करते नजर आए। इस दौरान आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने पीएम मोदी के माफी वाले वीडियो पर उन्हें बड़े दिल वाला बताया।
3: అమ్మను మా కోసం కష్టపడ్డావు, నాన్నను మా కోసం కష్టపడ్డావు, అలాగే ఈ దేశ ప్రధానికి సెలవు తీసుకోకుండా పనిచేస్తున్న ఈ దేశ ప్రధానికి మనం ఇవ్వగలిగేది మీరు మా కోసం ఎంత కష్టపడ్డారు, మీరు మా కోసం నిరంతరం ఎంత శ్రమ తీసుకున్నారని చెప్పడమే మనందరి కర్తవ్యం. అలాంటి గౌరవ ప్రధానమంత్రి గారికి మనస్ఫూర్తిగా మీరు అనుకున్నంత కాలం।
1: हालांकि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और शिवसेना यूबीटी जैसे दल गाली देने वाले युवाओं को माफ कर देने वाले वीडियो पर भी हमलावर दिखे।
4: उनको ये पूछना चाहिए क्या इस देश के छात्र उनको माफ करेंगे? उनकी वजह से 35 दिन छात्रों को परेशान होना पड़ा, खुले छत के नीचे सोना पड़ा, लाठियां खानी पड़ी, पैलेट गन झेलनी पड़ी। प्रधानमंत्री जी को छात्र माफ करेंगे या नहीं, उनको देश के छात्रों से पूछना।
5: बच्चों ने आपको माफ कर दिया है, उनको क्या माफ करोगे? दिल बड़ा रखो भैया।
6: छात्र जो झुक के सलाम करते थे, आज उनकी जुबान पे कांटे क्यों आए? ये सोचना हाकिमों का काम है। और मुख्यमंत्री और रामजी जी को चाहिए था कि पहले तो वो देश से माफी मांगते, बच्चों से माफी मांगते कि आपका जो करियर बर्बाद हुआ भारतीय जनता पार्टी की वजह से, मैं उसके लिए शर्मिंदा हूं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी तो मैंने पैलेट गन में छोड़ दिया है, माफ कर दिया है, प्लानिंग तो कुछ और थी, आप ये कहना चाह रहे हैं?
7: वाइट पद्धति ने पुरुष पोलिसांकडनं त्यांचे कपड़े फाड़े गेले, ज्या पद्धति ने तो वीडियो मी पाहिला, एक ती मुलगी पुढे जाते आणि तो पोलीस पाठवून कसा तो मला बोलायला सुद्धा लाज वाटते। ज्या मुलांनी नीटच्या परीक्षेचा पेपर फुटला म्हणून आत्महत्या केली, त्यांची पहिली माफी यांनी मागायला पाहिजे।
1: जहाँ बीजेपी कह रही है कि पीएम मोदी को 25 सालों में न जाने कितनी गालियां दी गई, फिर भी वो विचलित नहीं हुए, वहीं आम आदमी पार्टी बोली बीजेपी और पीएम मोदी को विक्टिम कार्ड खेलकर उसका सियासी फायदा उठाना बखूबी आता है।
8: देखो मोदी जी बहुत बड़े हृदय के व्यक्ति हैं और तभी शायद यहाँ तक पहुंचे हैं, और जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं पिछले 12 साल में, 12 साल क्या बल्कि पिछले 25 साल में मोदी जी जब से मुख्यमंत्री रहे, प्रधानमंत्री रहे, जिस प्रकार से उन्होंने उनके ऊपर विपक्ष के द्वारा जो निजी हमले हुए, कभी उनको मौत का सौदागर कहा गया, कभी चौकीदार चोर है, कभी किस प्रकार से घृणित आरोप उनके ऊपर लगाए गए, निश्चित रूप से एक ये नई शुरुआत है। और मोदी जी ने जिस प्रकार का आह्वान किया है कि हम लोग देश के एक साथ लेकर देश को आगे बढ़े,
9: पूरे देश की मानसिकता को आपने दूषित कर दिया है। मैं कोई ट्वीट करता हूं उसके नीचे इतनी भद्दी भद्दी टिप्पणियां, लाखों गालियां। आज तक अगर मेरे सारे ट्वीट उठा लिए जाएं और उसके नीचे की गालियां उठा ली जाएं जो आपके समर्थक आपके लोगों ने दी हैं, लाखों लाख गालियां दी हैं, मां की बहन की गालियां। मेरी आदत नहीं है रोने धोने की, आपकी आदत है। आपको कुछ भी होता है आप उसको कैश कराने के चक्कर में लग जाते हैं।
10: फिलहाल पीएम मोदी के माफी वाले वीडियो पर सियासी महाभारत थमती नहीं दिख रही। आज तक ब्यूरो।
11: तो जेन जी की बात हो रही है और जेन जी के प्रदर्शन के बाद जेन जी की बहुत चर्चा, लेकिन अब हम जेन जी से आगे बात छात्र संगठनों के करेंगे। यूनिवर्सिटी के लेवल पर इस प्रदर्शन का क्या इम्पैक्ट होगा और उस प्रदर्शन का देश की राजनीति में किस तरह का इम्पैक्ट होगा, और स्टूडेंट लीडर्स आज हमारे साथ में मौजूद हैं, उन्हीं के साथ इस विषय पर चर्चा करेंगे। जोरदार तालियां हो जाए। हमारे साथ एबीवीपी का पक्ष रखेंगे सार्थक शर्मा, हमारे साथ जामिया मिलिया इस्लामी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट तौकीर आलम है, तालियां इनके लिए भी। अखिलेश यादव हमारे साथ हैं, स्टूडेंट हैं जेएनयू से, तालियां अभिषेक कुमार के लिए भी हो जाएं जो कि एएसएपी से जुड़े हुए वाइस प्रेसिडेंट हैं। हमारे साथ नेशनल कन्वीनर युवा चेतना के रोहित कुमार सिंह हैं और हितेश गुलिया हमारे साथ डूसू प्रेसिडेंट एनएसयूआई। सार्थक, आज चर्चा की शुरुआत आपसे करते हैं कि भाई आपका जो संगठन है वो माना जाता है कि सत्ता से जुड़ा हुआ संगठन है। देश की राजधानी दिल्ली में इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो गया जहां पर अलग अलग यूनिवर्सिटी से इतने छात्र आ गए, आप लोगों को पता ही नहीं चला कि छात्रों में इतना गुस्सा है, इतना आक्रोश है, और आपको भी जंतर मंतर पर पता चला।
12: सबसे पहले यहां उपस्थित सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो आपने पूछा हमें पता नहीं चला, नीट का पेपर हुआ 3 मई को, नीट के पेपर लीक होने की सूचना प्राप्त हुई 12 मई को, और 13 मई को एनटीए के दफ्तर के बाहर अगर कोई पहला छात्र संगठन था जो प्रदर्शन कर रहा था, जो एनटीए के डीजी का इस्तीफा मांग रहा था, वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद था। और उसका प्रूफ आज जिस स्टूडियो में हम बैठे हैं उस इंडिया टुडे की मैगजीन ने हमें कवर पेज पे कवर किया है, तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि हमने प्रदर्शन किया या नहीं किया। हमने प्रदर्शन किया, हमने एजुकेशनल रिफॉर्म्स की बात करी, हमने इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात करी, हमने सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड करी अपने 13 मई वाले ज्ञापन में, जिसमें सीबीआई इंक्वायरी हुई, 14 लोग उसमें गिरफ्तार हुए। हमारी मांग थी कि निशुल्क दोबारा से बिना रजिस्ट्रेशन फीस के वो पेपर कराया जाए, ताकि जिन छात्रों के भविष्य के साथ नुकसान हुआ है, जिनका नुकसान हुआ है, उनको दोबारा एग्जाम देने के लिए एक फेयर चांस मिले। और नीट का ये पेपर लीक हुआ ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था, पर इसके दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, सभी छात्रों को फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट सिस्टम मिले और एक अकाउंटेबल इंस्टीट्यूशन मिले, उसके लिए हमने मांग करी।
11: लेकिन छात्रों की अशांति, मतलब आपने, आप कह रहे हैं कि प्रयास किया उनको शांत करने के, लेकिन वो शांत तो हुए नहीं, वो शांत तो तब हुए जब उन्होंने सरकार को झुकाया।
12: ये तो एक नेक्सस था जी, 15 मई को बयान आता है, 16 मई को पेपर लीक हो जाता है, 3 मई को, 13 मई को प्रोटेस्ट होता है, सीबीआई इंक्वायरी होती है। जिस आप पार्टी की बात करना चाह रहे हैं या जिसका नाम मेरे मुंह से निकलवाना चाह रहे हैं, वो बनती है 16 मई को एक पूरे एल्गोरिदम के साथ। स्टूडेंट्स डिमांड करे नीट की अकाउंटेबिलिटी, हमारी भी वही मांग है कि नीट का पेपर लीक हुआ है उस पर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। छात्रों की मांग जायज है, लेकिन उन छात्रों की मांगों के अंदर जिस प्रकार का, मतलब छात्रों के कंधे पे बंदूक रख के नैरेटिव गढ़ा जा रहा था, वो गलत है। एबीवीपी छात्रों के साथ है, एबीवीपी छात्रों की ही बात करती है। आप हमारी प्रेस रिलीजेस देखिए, आप हमारे प्रदर्शन देखिए,
11: ठीक है,
12: हमने फ्रॉम द फर्स्ट डे नीट स्टूडेंट्स के लिए बात करी।
11: अखिलेश, क्या एबीवीपी एक छात्र संगठन के रूप में अपने काम को सही से कर पाया, निभा पाया? वो नेक्सस भी कर रहे हैं, तमाम दूसरी तरह की अकाउंटेबिलिटी की बात भी कर रहे हैं, और सरकार ने उन्हीं तमाम बातों को तो फिर लास्ट में माना ही है।
13: इसका जवाब हम जो ऑडियंस बैठी है उस पर हम छोड़ देते हैं। दूसरा यह है कि जैसा कि हमारे विद्यार्थी परिषद के भाई सार्थक जी ने कहा, इनका इस आंदोलन में उतना ही योगदान था जितना योगदान स्वतंत्रता संघर्ष के दरमियान आरएसएस का था, नाखून कटाने बराबर। एक दूसरा यह चीज है कि यह जो आंदोलन था यह स्वतः स्फूर्त था। युवाओं की बेबसी है, युवाओं की लाचारी है, छात्र जो इस सिस्टम से बिल्कुल ही इसके उदासीन रवैये से पीड़ित था। आपको हम बताना चाहेंगे कि बसों में, ट्रेनों में जेब में 200 रुपए हैं, 300 रुपए हैं, कोई इलाहाबाद से आ रहा है, कोई बेंगलोर से आ रहा है, कोई पटना से आ रहा है, कोई उदयपुर से आ रहा है, बैरिकेडों पे सो रहा है, जमीनों पे सो रहा है। आखिरकार उसकी क्या मांग थी? भाई ने बोला अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का हम समर्थन कर रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। इतने 89 से ऊपर पेपर लीक हो चुके हैं, किसकी अकाउंटेबिलिटी तय होगी? धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन उससे क्या? इस सड़ा गला सिस्टम है जो एक कंप्रोमाइज्ड तरीके से काम कर रहा है, जो एनटीए जो कि प्राइवेट संस्थान है, लगातार आप देख रहे हैं कि पेपर लीक पे लीक, लीक पे लीक, लीक पे लीक हो रहे हैं, लेकिन उसकी जवाबदेही नहीं तय हो रही है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। छोटी मछलियों को आप पकड़ करके थोड़ा बहुत कार्रवाई कर दिए, उसके बाद आप पुनः ढाक के तीन पात आ गए। सवाल यह है कि आप देखेंगे कि लगातार छात्र राजनीति का जिस हिसाब से वर्तमान सरकार गला घोट रही है, लगभग छात्र संघ के चुनाव बंद हैं, चुनाव नहीं हो रहे हैं, कोई स्टेज नहीं प्रोवाइड कराया जा रहा है, ऐसे दौर में जब जैसे गांव में एक ढिबरी होती है, कई साथी हमारे ग्रामीण परिवेश के होंगे, जब लास्ट में जब उसका तेल खत्म होने को रहता है तो डब डब डब डब लुप लुप आती है, तो छात्र राजनीति का इन्होंने यह हसर करने का प्रयास किया। और ऐसे दौर में इतना बड़ा छात्र आंदोलन हुआ, यह सभी के समझ से परे। और आजकल हमारे देश के जो महामानव हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आजकल जेंजी आ गए हैं, आजकल इंस्टा पे रील बना रहे हैं, हेलो फ्रांड्स कर करके आ रहे हैं। तो ये जो हेलो फ्रांड्स है, ये बच्चों की नैतिक जीत है कि आपको आकर के जवाब देना पड़ा। जो राजनाथ सिंह कहते थे कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते हैं, तो ये जेंजीज की, ये छात्र आंदोलनों की ताकत हुई कि इस्तीफा भी हुआ और आने वाले समय में अकाउंटेबिलिटी भी तय की जाएगी।
11: रोहित, मैं इस पर चाहता हूँ कि आप जवाब दें कि भाई वो कह रहे हैं कि छात्र आंदोलनों को सरकार कुचलने का प्रयास लगातार करते रहे है, चुनाव नहीं होने दे रही है सरकार।
14: देखिए, 1974 के जेपी मूवमेंट के गर्भ से निकले हुए उस समय के तत्कालीन सभी वरिष्ठ राजनेता, जो बाद में उत्तर प्रदेश, बिहार और देश के विभिन्न प्रदेशों में मुख्यमंत्री के पद को सुशोभित जिन लोगों ने किया, उन लोगों ने ही अपने कालखंड में विद्यार्थियों की राजनीति का गला घोंट कर षड्यंत्रकारी तरीके से पताछेप करने का पूरा प्रयास किया, दुर्साहस किया। जिस सीढ़ी से ये लोग छत पर गए, उसको बुलेट लगाकर, बम लगाकर, डायनामाइट लगाकर उड़ाने का काम किया। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन में शामिल स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी हों, या बिहार में हमारे सजा याफ्ता श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी हों, इन तमाम इन तरह के सभी बड़े नेता जेपी के स्टूडेंट मूवमेंट से निकले, कांग्रेस के दमनकारी हिटलरशाही परिवारवादी नीतियों के खिलाफ निकले, और इन लोगों ने जब सत्ता के शिखर की प्राप्ति की, तो सत्ता के शिखर की प्राप्ति के उपरांत देश के जो आम नौजवानों का मनोभाव था, जिन आम नौजवानों और विद्यार्थियों के समर्थन से ये मंत्री बने, सांसद बने, मुख्यमंत्री बने, सबसे पहले अपने परिवार के व्यक्तियों को राजनीति में स्थापित करने के लिए इन्होंने देश के आम नौजवान, जिनको आप सूत पुत्र भी कह सकते हैं, सूत पुत्र कहने का अभिप्राय है जिनके माता पिता सियासत में न हो, जो गांव की पगडंडियों पर चलता हो, जो किसान का बेटा हो, मजदूर का बेटा हो, वंचित का बेटा हो, समाज के अंतिम व्यक्ति का बेटा बेटी हो, उसकी चिंता इन लोगों ने नहीं की। अब आइए जो समकालीन छात्र आंदोलन अभी देश में हुआ नीट के सवाल पर, भाई देश के प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों की बातों को समझा, सुना और एक कुशल अभिभावक के रूप में मध्य रात्रि देश के विद्यार्थियों के साथ उनके प्लेटफॉर्म पर आकर उनसे संवाद किया, जहां विपक्ष के सभी बड़े राजनेता रात को 12 बजे मोबाइल में इंटरनेट का सदुपयोग करके अभी तो पार्टी शुरू हुई है गाने पर थिरक रहे थे, नृत्य कर रहे थे। उस समय देश के प्रधानमंत्री ने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए, देश के विद्यार्थियों के मनोभाव को समझते हुए, उनके नर्व्स को समझते हुए उनके साथ संपर्क किया, उनसे संवाद किया और आप सभी विद्यार्थियों की जो जेन्युइन समस्या थी उन समस्याओं को स्वीकार करते हुए, एक सेकंड और 10-20 सेकंड और दे दीजिए, गंभीर विषय पर हम बात कर रहे हैं, उन विषयों को समझते हुए उन्होंने तत्कालीन आगे आकर देश के विद्यार्थियों के हर प्रश्न के उत्तर देने का प्रयास किया और ये कहा कि हम स्थापित करते हैं सब चीजों को जो आप मांग कर रहे हैं। इसके बदले में क्या हुआ, 20 दिनों तक जंतर मंतर पर आदरणीय सोनम वांगचुक जी अहिंसात्मक तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, देश की सरकार उनकी सुरक्षा में खड़ी थी, सरकार चाहती तो उनको परमिशन नहीं मिलता जंतर मंतर पे प्रदर्शन करने के लिए, जो कांग्रेस के जमाने में होता रहता था, डेमोक्रेसी का वध होता था, सरकार ने परमिशन दिया। क्या हुआ, विपक्ष के बड़े नेता राहुल गांधी यूरोप में, अखिलेश जी का पता नहीं 20 दिनों तक, हमारे बिहार के नौजवान नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी लंबे समय तक अता पता लापता रहे और सरकार ने हाईकोर्ट का निर्देश आने के उपरांत आदरणीय सोनम जी के इलाज को भी सुनिश्चित कराया और सोनम जी के साथ संवाद स्थापित करके उनकी जो मांगे विद्यार्थियों के संदर्भ में थी उसका समाधान किया।
15: हितेश, मैं चाहता हूं इस पर आप जवाब दें, वो कह रहे हैं कि सरकार ने तत्काल माना, ठीक है सर, हो गया, मैं आता हूँ आपके पास, लेकिन हितेश क्या वाकई तत्काल माना, क्योंकि इतने दिन बीते और उसके बाद ऐसा लगता है कि सरकार ने ही उस आंदोलन को बहुत बड़ा होने दिया, क्योंकि बाद में जो जनसमूह उसके साथ जुड़ा, पहले स्टार्टिंग के लगभग 19 दिन तक तो नहीं दिख रहा था, तो जैसे ये कह रहे हैं कि वाकई तत्काल सरकार ने एक्शन लिया या बहुत देर की?
16: देखिए ये ना बीजेपी, एक तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि आज जेन जी पीढ़ी हमारे बीच आ गई है, लेकिन ये कांग्रेस के जमाने से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं, 15 साल इनको राज करते हुए हो गए हैं, लेकिन ये कभी इंदिरा जी पे चले जाते हैं, कभी नेहरू जी पे चले जाते हैं। हम जेन जी हैं, हम मिलेनियल्स हैं, हमने इमरजेंसी नहीं देखी, लेकिन हमने अघोषित आपातकाल अब जरूर मोदी जी के नेतृत्व में देख लिया। आप जब देखते हैं, ये कह रहे हैं कि तत्काल इन्होंने मोदी जी ने संवेदनशील होके एक्शन लिया, चाहे बात किसान आंदोलन की हो चाहे छात्र आंदोलन की हो, जब तक 700 शहादतें नहीं हो जाती हैं तब तक इनकी संवेदनशीलता जागती नहीं है। ये कंडीशन हमारे प्रधानमंत्री की है, जब उन्हें पूछना चाहिए कि छात्र किस परेशानियों से जूझ रहे हैं, वो पूछते हैं कि मेलेडी इतनी चॉकलेटी क्यों है। ये लेवल हमारे देश के प्रधानमंत्री का आज हो गया है, शर्म आनी चाहिए हमारे देश के प्रधानमंत्री को। वो आज इंस्टा की रील्स बना रहे हैं, उन्हें ये फिक्र होनी चाहिए कि हमारे देश का युवा आज इंस्टा पर क्यों आ गया है, वो अपने भविष्य के बारे में क्यों नहीं कुछ कर पा रहा है, ना देश में रोजगार है, बस इनके आका ने 2 GB डेटा फ्री दे दिया है युवा, ताकि इनसे सवाल पूछे ना, युवा को ये गुमराह कर रहे हैं, और इसलिए हर रात को उन्हें एक नई चेतना जाग जाती है। अगर आप कह रहे हैं 12 बजे वो जागे हैं, तो हमारे छोटे छोटे बच्चे आपने देखा होगा, एक छोटी सी बच्ची मोदी जी को सिखा रही है, मोदी जी कैमरा ऐसे नहीं पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ते हैं। तो आप मोदी जी थोड़े ज़्यादा जेन जी होना चाह रहे हैं, उनको ही इज़ अ गुड पर्सन टू बी ऑन सोशल मीडिया, पर उनकी एक बहुत बड़ी
15: दिक्कत है, अगर समय के साथ वो अपने आप में कुछ बदलाव कर रहे हैं, वो इंस्टाग्राम की ताकत अब समझ रहे हैं, और आप मतलब आपके जो स्टेटमेंट उस पर मेरा प्रश्न ये भी है कि उसी इंस्टाग्राम से तो सड़कों पर उतरे ना लोग, जिस मतलब जिसे आप कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहे थे।
16: देखिए मजबूरी में आए हैं, वो प्रधान इन्फ्लुएंसर नहीं है, वो प्रधानमंत्री हैं, तो इस पद के साथ 140 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी भी आती है। उन्होंने इंस्टा पे रील बनाना तो उचित समझा, लेकिन 21 बच्चों की जान चली गई थी, और ना जाने कितने करोड़ों बच्चों के सपनों का कत्ल हुआ था। इतना समय लगा हमारे देश के युवाओं को मेलेडी तक जाना पड़ा, मेलेनी तक जाना पड़ा, उनके अकाउंट पे अगर आप कमेंट सेक्शन देखेंगे तो अच्छा होता, हमें भी अच्छा लगता कि जिस दिन पहले बच्चे ने खुदकुशी की थी उसी दिन हमारे प्रधानमंत्री जी इंस्टा पर आते और कहते कि ये गलत हुआ है और गुनहगारों को सजा मिलेगी और नैतिकता के तौर पर हमारे शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, तो ना इतने बच्चों की जाने जाती और तब हम मानते कि हमारे देश का प्रधानमंत्री संवेदनशील है।
15: क्या छात्र आंदोलनों को जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के बाद से और ज्यादा बल मिलेगा, अब आवाज और जोरदार तरीके से बुलंद होती रहेगी?
17: जी सर, देखिए आवाज़ तो तब बुलंद होती है ना जब वो चीज़ें चल रही होती, जब आप किसी के इस्तीफे को ही आप अपनी जीत मान लें तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। जिस दिन से इस्तीफा हुआ है धर्मेंद्र प्रधान जी का, उसके बाद से सीजेपी कहाँ इस चीज़ को ज़रा देखने की ज़रूरत है। और मैं पूछना चाहता हूँ अपने अपोजिट पैनलिस्ट से जो संवेदनशीलता के अलमबरदार बने बैठे हैं, सर आप जब बात करते हैं इन लोगों, ये वही लोग हैं सर राजीव सर, इन लोगों को एक तरफ महंगाई की मार का रोना भी रोना है और दुनिया का सबसे सस्ता डेटा मिल रहा है उसका भी रोना रोना है इन लोगों को। मैं इनको ये कहना चाहता हूँ कि आपने आंदोलन को जिस तरह से बदनाम करने की कोशिश की, आंदोलन हुआ, आपके इस्तीफे जायज थे, आपने इस्तीफा करवा लिया, क्या सिर्फ जिम्मेदारियां वहीं पे खत्म हो गई? क्या उसके बाद आपकी जिम्मेदारियां ये नहीं थी कि जिन 21 नौनिहालों के बच्चे जो कभी उनके माँ बाप अब उनसे नहीं मिलेंगे, क्या उनके घरों पर आपने जाने की कोशिश की? आप कहां गए? आप अपने घर चले गए। और घर जाते हुए उन्होंने पहला बयान क्या दिया राजीव जी? अब मुझे मीडिया परेशान ना करे क्योंकि मैं दो दिन से आराम करना चाहता हूं। एक तरफ आपको मीडिया की जरूरत थी ताकि अपनी आवाज सत्ता तक पहुंचा सके, और जैसे ही आपने इस्तीफा ले लिया आपको आप मीडिया से दूरी बनाए। क्यों? क्योंकि आप महत्वाकांक्षा की राजनीति करते हैं, आप एक ऐसी राजनीति लेकर के आए हैं जिसको इंस्टा की राजनीति कहा जाता है, ना कि आपको कोई संस्था की राजनीति कहा जाता है। दूसरी चीज, जैसे ही नीट की बात हो रही है, बिल्कुल मोरालिटी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन ये सर ज्योग्राफिकल फैक्टर्स पे नहीं होनी चाहिए। ये जब पैन इंडिया एक क्राइसिस है, पेपर लीक पैन इंडिया क्राइसिस है, इसमें सिर्फ बच्चे पेपर नहीं लिखते, इसमें सिर्फ तैयारियां सिर्फ अपने आप के लिए नहीं करते, ये अपने भविष्य के लिए करते हैं, आने वाले कल के लिए करते हैं, अपने मां बाप के सहारा होने के लिए करते हैं। लेकिन उसका लीक एक जगह का लीक आपको लीक लग रहा है, लेकिन मैं सर लिस्ट लेके आया हूँ विद ऑल रेफरेंस। मैं आपको बता देता हूँ, 19 जुलाई 2026 फार्मेसी ऑफिसर रिक्रूटमेंट पंजाब का पेपर लीक हुआ, मैसिव इरेगुलरिटीज देखी गई, उसमें ब्लूटूथ के जरिए 13 लाख रुपए पर पेपर बेचा गया। नायब तहसीलदार का पेपर लीक हुआ, पंजाब बोर्ड इंग्लिश पेपर का लीक हुआ, पीएसटी टीईटी का पेपर लीक हुआ, मतलब एक लंबी फहरिस्त, एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट का पेपर लीक हुआ। लेकिन उस पर अगर आप सवाल पूछेंगे तो ये कहेंगे कि मीडिया मुझे परेशान न करे, तो ये आपकी कहीं ना कहीं हीनता का नजरिया आपका पेश आता है। और यह भी समझ में आता है कि आप किस तरह की राजनीति कर रहे हैं, जहां ज्योग्राफिकल फैक्टर पे पेपर लीक को एक जगह पेपर लीक मान रहे हैं, दूसरा जगह पेपर लॉक मान रहे हैं।
15: ठीक है अभिषेक, क्या ये भी सच्चाई है कि जो छात्र राजनीति कर रहे हैं, जिनको स्टूडेंट पॉलिटिक्स एक्चुअली करनी चाहिए थी, लेकिन वो दलों की पॉलिटिक्स करने लग गए हैं? मतलब पंजाब में क्या आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं?
18: मैं इसका आपके माध्यम से एक जवाब देना चाहता हूं। जब देश का युवा छात्र जंतर मंतर पर बैठा हुआ था, तब ना तो तौफिक जी दिखे, ना तो एनएसयूआई दिखी, ना तो एवीपी दिखी। वहाँ पे एकमात्र छात्र संगठन दिखा एएसएपी, वहाँ पे छात्र संगठन वो दिखा आईसा, वहाँ पे छात्र संगठन दिखा लेफ्ट। आप लोग कहाँ पे थे? आप लोग सो रहे थे उस वक्त?
17: सर मैं जंतर मंतर पे था।
18: नहीं थे आप लोग?
15: आप
18: नहीं
15: थे आप से भी ना।
18: बेसिकली इन्होंने जो पंजाब का सवाल उठाया, मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ कि पेपर लीक में और पेपर चीट में फर्क होता है। पहले लीक का जानिए और लीक चीट में फर्क जानिए। चीट में क्या होता है, जस्ट फॉर एग्जांपल ब्लूटूथ का पेपर किसी ने बच्चों ने लगाया तो वो चीट में आएगा, ना कि लीक में आएगा। लीक में सिस्टम के थ्रू अगर कोई लीक होता है पेपर, तो उसमें माना जाएगा उसको। आप पहले जस्टिफाई इसलिए करना पड़ रहा है आपको, बकायदा इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि आप जो जजमेंटल हो रहे हैं ना, उसको पहले जानिए, इंक्वायरी को पहले जानिए कि पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ एक्चुअल में। और जितने भी लोगों ने वहां पर प्रोटेस्ट किया, वो लोग एबीपी के छात्र संगठन से थे, वो अपनी लॉबी को बचाने के लिए, अपनी लॉबी को दिखाने के लिए कि हम लोग जागरूक हैं। तब वो जंतर मंतर पे कहां थे एबीपी के छात्र संगठन वाले लोग? कहां पे एब्सेंट थे उस वक्त? उस वक्त तो कोई छात्र संगठन नहीं आया, उस वक्त तो कोई एनएसयूआई नहीं आई। कहां थे वो लोग जब छात्र सड़कों पर लाठियां खा रहा था? तब तो कोई नहीं दिखा आप में से।
17: मैं जवाब दे देता हूं आपको
18: अभी, एक मिनट, पहले मैं बोल रहा हूं। जब आप इतने एब्सेंट माइंडेड हो सकते हैं, जब आप यहां पर बैठ के राजनीति कर सकते हैं, तब आपको यह भी पता होना चाहिए, जब छात्र संगठन अलग अलग तरीके के, अलग अलग लाखों लोग छात्र रोडों पे थे, तो आप में से सारे के सारे अपने घरों में बैठकर रीले बना रहे थे कि गलत हो रहा है छात्रों के साथ। क्यों आप लोग क्यों एब्सेंट थे? क्यों नहीं बोल रहे थे आप लोग? आप लोगों की तरफ से जवाबदेही क्यों नहीं थी? आपके पार्टी के नेता बड़े बड़े हम लोगों को आतंकवादी बता रहे थे। क्या ये जेन ज़ी जितने भी बैठे हुए क्या आतंकवादी दिखते हैं आपको? आतंकवादी अगर दिखते हैं, तो अगर आपको आतंकवादी दिखते हैं, तो आपने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों करवा दिया? क्यों मानी आखिरकार बातें? अगर बातें मानी तो 30 दिन तक हमें हड़ताल पे क्यों बैठाया गया? भूख हड़ताल पे सोनम वांगचुक जी, जिनको कह रहे हैं आदरणीय सोनम वांगचुक जी, अगर वो हड़ताल पे बैठे तो आपने उनको बैठने क्यों दिया? आपने बोला परमिशन की बात, आप परमिशन की बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि परमिशन दिया आपने। हमारा मौलिक अधिकार है, हमारा संवैधानिक अधिकार है, ये आप नहीं रोक सकते हमारे को।
15: इधर से मुझे पता है कि जवाब आप देना चाहते हैं, लेकिन आपके प्रश्न तो बगल वालों के लिए।
18: मैं बात कंप्लीट कर लेता हूं। अगर हमारे को अधिकार है, अगर छात्रों को अधिकार है अपनी बातें रखना, अपनी मूलभूत सुविधाओं की बात करना, तो ये हमारा देश का अधिकार है और इस देश के हम लोग मूल निवासी है और हमें पता है हमें क्या बात रखनी है और किस तरीके से रखनी है। सभी लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से किया, बट छात्रों के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया वो पूरा देश देखता रहा और पूरे देश शर्मसार हुआ।
15: ठीक है, छात्र संगठनों में तो एकता ही नहीं, आपके बगल वाले आप पर तंज कस रहे हैं। हितेश,
16: ये मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा, जो जंतर मंतर का ऐतिहासिक छात्र आंदोलन हुआ वो किसी संगठन के ठेकेदारी के पीछे नहीं हुआ। वहां छात्र आए, अपने जेन्युइन मुद्दों से आए, छात्रों ने उस लड़ाई को लड़ा और उसमें विभिन्न विभिन्न संगठनों ने साथ सहयोग दिया। लेकिन मैं इनको कहना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी क्या इतनी कमजोर हो गई है कि अपने बलबूते पे एक भी ये लड़ाई नहीं लड़ पाए और उन छात्रों के कंधे पे चढ़ के कि लाठियां छात्र खाएंगे और उसकी लाइमलाइट हम लेंगे। ये पूछ रहे हैं कि एनएसयूआई कहां थी। एनएसयूआई जब आप लोग घरों से निकले भी नहीं थे उससे पहले देश के हर राज्य में एनएसयूआई ने नीट के मुद्दे को उठाकर हर हर राज्य में अपनी रैलियां की, अपने प्रदर्शन किए। राहुल गांधी जी हमारे देश के एलओपी, वो कोटा जाते हैं, वहां कोई राजनीतिक बात नहीं करते हैं, छात्रों के मुद्दे उठाते हैं। हमारे एलओपी जगह जगह जाते हैं, एनएसयूआई जगह जगह प्रदर्शन करती है, यूथ कांग्रेस जगह जगह प्रदर्शन करती है और एसएप सिर्फ छात्रों पर। वहां जिस हिसाब से आपका ये, मैं साथी कहना चाहूंगा, ये हक नहीं बनता है कि आप सवाल करें एनएसयूआई कहां थी। एनएसयूआई सड़कों पे संघर्ष कर रही थी, एनएसयूआई सड़कों पे लाठियां खा रही थी, हमारे साथी जेल जा रहे थे।
17: एक सेकंड, हम लोग पहले आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि आप लोग किन
15: एक ही करके आप एक एक 30 सेकंड बोले, फिर थोड़ा स्टूडेंट्स के भी सवाल।
17: आपने कोटा राजस्थान की बात की थी, राजस्थान का एक वाक्य हमें याद आता है, शायद आप लोग भी जानेंगे। सचिन पायलट ने एक यात्रा निकाली थी, वो यात्रा जयपुर से लेकर के अजमेर तक निकला था। किस लिए था वो? जेन्युइन मुद्दे पे था, पेपर लीक के मुद्दे पे था। उसका आरोप लगाते हुए आपके तथाकथित मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा? मैं जादूगर हूं, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। कैसे जादूगर थे कि पेपर लॉक लगा हुआ था, उसको पेपर लीक कर दिया। तो यही थी आपकी जादूगरी राजस्थान में। मैं फिर से कहना चाहता हूं सर, आंदोलन के नाम पे जो आप लोगों ने बखेड़ा मचाया है, ये आपको भारतीय इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि आंदोलन के चीरहरण पर जो चुप पाए जाएंगे इतिहास के कालखंड में सब कायर कहलाएंगे।
15: माइक स्टूडेंट्स के पास भी आ जाए।
19: एक तो ये है कि आंदोलन को बखेड़ा बताने वाले आप होते कौन है? एरिक हॉब्स्वाम ने बोला है कि जो स्टूडेंट होता है वह एंटी स्टेटस को होता है। विश्वविद्यालयों में जाता है तो रैशनैलिटी सीखता है, सवाल जवाब करता है और जवाब मांगता है। सवाल यह है कि जब पेपर लीक हुए राजस्थान में तो बच्चों ने वहां की सरकार बदल दी और वहां पर आज के दौर में दूसरी सरकार है। अब सवाल यह है कि 12 सालों से आप है, 89 से ऊपर पेपर लीक हो गए, इधर उधर की बात न कर बता कारवां क्यों लूटा। सवाल यह है कि आखिरकार कब आपकी अकाउंटेबिलिटी तय होगी। आखिरकार सवाल यह है कि जो महिलाओं के ऊपर जो पुलिस वाले लाठी चार्ज कर रहे थे उनकी अकाउंटेबिलिटी कब तय होगी?
15: कांग्रेस शासित राज्यों पर, मतलब आपके ये प्रश्न कहां चले गए?
20: केरल के अंदर नीट का प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों पर आपके मुख्यमंत्री ने वाटर कैनन चलवाया, लाठी चार्ज किया, कब मांग रहे हैं इस्तीफा? रेवंत रेड्डी कल तेलंगाना में ये बयान देते हैं इनके सीएम कि जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं मेरे राज्य के, उन लोगों को एप्लीकेशन तक लिखना नहीं आता। क्यों देते हैं ऐसा जवाब? क्योंकि उन्हें 12,500 करोड़ रुपया जो छात्रों की फीस का रीइंबर्समेंट होता है वो ना देना पड़े।
15: ठीक है,
20: मापदंड मत चलाइए।
15: आप ऐड करिए फिर मैं
20: एक बार उनके प्रश्न का जवाब देना चाहता।
14: आज हम सब विद्यार्थियों के बीच बैठे हैं, किसने आंदोलन कर लिया, कौन आंदोलन का हीरो हो गया, किस छात्र संगठन या किन नौजवान नेताओं ने बहुत बड़ा मेडल प्राप्त कर लिया इस आंदोलन में, इसकी चर्चा करने के लिए नहीं। देश आज उस चौराहे पर खड़ा है जहां देश को इस बात का मूल्यांकन और विश्लेषण करना होगा। आप सभी नई पीढ़ी के लोगों के गरिमामयी मौजूदगी में हमें अभिमन्यु को हीरो मानना है या अजमल कसाब को, दोनों जेनजी के उदाहरण हैं। हमें प्रहलाद को हीरो मानना है या अजमल कसाब को? शुरू नहीं कर दिए, धैर्य रखिए। आप बोल रहे थे तो हम व्याकुल नहीं हो रहे थे, थोड़ा गंभीरता का परिचय दीजिए। अभिमन्यु ने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और
17: पाकिस्तान में पैदा लेने वाला पाकिस्तानी जंजी अजमल कसाब ने भारत में आकर हंगामा किया। देखिए जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री को जंतर मंतर पर खड़ा होकर लगातार गालियां देने का काम किया गया और कल देश के प्रधानमंत्री ने अभिभावक के रूप में आगे आकर सभी बच्चियों को बहनों को बच्चों को क्षमा करने का काम किया, इस बात को समझना होगा। श्रवण कुमार को मानता है ये बड़ी लड़ाई है, श्रवण कुमार बनाम कसाब की है, ये लड़ाई अभिमन्यु बनाम कसाब की है, आपको समझना होगा।
15: अभिमन्यु बनाम कसाब
17: माता के ऊपर हमला है, सत्ता की प्राप्ति के लिए व्याकुल राहुल गांधी और अखिलेश यादव इतने व्यग्र हैं कि भारत के नौजवानों के मन मस्तिष्क में प्रवेश कर गलत बातों को पिच करना चाहते हैं। भारत माता के भगत सिंह अशफाकुल्लाह खान शहादत को साक्षी मानकर हमको आगे बढ़ना होगा।
15: अगर सबके हाथ में माइक है
17: राहुल गांधी कल भी थे आज इन लोग हो गया
15: रोहित आपकी बात आ गई।
17: अरे भाई त्रेता काल में रावण पैदा हुआ ठीक है, आज भी उस पर चर्चा होता है, कंस पर आज भी चर्चा।
15: फेडर डाउन हो सकता है क्या? क्या यहाँ फेडर डाउन? रोहित हो गया रोहित रोहित हेलो क्या मुझे उठना पड़ेगा क्या? नहीं प्लीज रोहित आप ऐसे प्रो करें,
0: हमारे बीच नए फ्रेंड्स आ चुके हैं।
15: एक मिनट रोहित रोहित मुझे उठकर आना पड़ेगा प्लीज। रोहित रोहित हो गया रोहित जी हो गया। हेलो रोहित आपका फेडर डाउन है, आवाज नहीं जा रही है, आपका आवाज नहीं जा रही, रुक जाओ आपके आपकी भी नहीं जा रही आवाज, रुक जाइए। देखिए मतलब आप लोग मुझे याद है ना, आप लोग मीडिया का मजाक बनाते हैं कि मीडिया कैसे डिबेट करता है। अब आप देखिए आप पैनल का हिस्सा है, आप पैनल का हिस्सा और पैनल का हिस्सा रहते हुए आपका व्यवहार कैसा है? मतलब आपको यहाँ से स्टूडेंट भी देख रहे हैं ना कि आप क्या गंभीरता से अपनी बात रख रहे हैं, क्या लॉजिक है ये तरीका सही नहीं ना। अब अखिलेश
20: राहुल गांधी करते हैं उस प्रकार की कॉपी करने का प्रयास।
15: मैं चाहता हूँ कि तार्किक रूप में बात करता हूँ, जेएनयू से आते हैं, आपको मैं समय दे रहा हूँ, मैं आपको मैं उनको भी कह रहा हूँ। मतलब आप एक तरीके से अपनी बात रखिए, अब आपको आज तक ने मंच दिया है, बिल्कुल बिल्कुल जेएनसी की बात रखिए। माइक अब आप माइक हाथ में लीजिए।
17: अरे भाई अच्छा बताइए ना अजमल कसाब की आयु क्या थी? पाकिस्तानी जंजी नहीं था क्या?
15: अजमल
17: कसाब इस देश का
15: जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने आए हो आतंकवादी, इस व्यक्ति को दिख रहे भाई अपने चश्मे का नंबर बदलो।
17: एक बोलने से होगा,
15: दूसरा है
17: अखिलेश यादव से बड़ा जो उत्तर प्रदेश के
15: पूर्व मुख्यमंत्री आप दोनों ही बोल रहे हैं। राहुल गांधी आपकी आवाज नहीं जा रही है, माइक आपका ऑडियो डाउन है, आपका फेडर डाउन है। नहीं मिनट प्लीज एक मिनट, अभी मैं चूंकि इनकी तरफ सवाल थे और लेकिन मैं चाहता हूँ 40 सेकंड में फिर माइक जो है कुछ स्टूडेंट्स के भी हम सवाल सुनेंगे ठीक है, आप इसका जवाब दीजिएगा। हाँ दूंगा, देंगे देंगे देंगे सारे, यहाँ प्रॉपर सबको समय मिलता, बहुत ज्यादा समय मिला है रोहित, आप ऐसा नहीं कह सकते, मैं सबको समय बढ़ा दूंगा।
19: हेलो, सवाल थोड़ा गंभीरता में आते हैं, हेलो फ्रांस पे नहीं जाएंगे, बात आती है जिस विचारधारा की ये हिमाकत कर रहे हैं। हमारे बगल में सार्थक जी भी बैठे हुए हैं, इनका इतिहास यह है आजादी के आंदोलन में जब महात्मा गांधी जी के ऊपर नथुराम गोडसे ने गोलियां चलाई तो ये वही लोग हैं जिन्होंने मिठाइयां बांटी।
15: नहीं इतिहास में नहीं जाना मुझे, मैं इतिहास में नहीं जाना चाहते, वापस आइए,
17: मिठाइयां
15: वापस आइए।
17: एबीपी का निर्माण कैसे हुआ?
15: एक मिनट,
17: मैं खिलाफ लड़ने वाले
15: अखिलेश अखिलेश रोहित रोहित अखिलेश सबका फेर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ की देखिये उन्होंने भी कहा था की नेहरू वगैरह के बाद, मैं चाहता हूँ की इतिहास में ना जाए, वो भी ना जाए, आप भी ना जाए। अरे सामने आपके पीढ़ी बैठे हुए हैं, सामने आपके स्टूडेंट्स बैठे हुए, जेंजी बैठे हुए, उनकी बात करिए ना, उनकी बात करिए ना भाई, नहीं उनकी बात करिए, आप उनकी बात करिए।
20: मैं इनके कागज लेके आया हूँ, ये बेचारे बड़े जोर शोर से अभी हेलो फ्रेंड्स कर रहे हैं, इनसे पूछो केरल में इस्तीफा ले रहे हैं हाँ या ना, रेवंत रेड्डी से माफी मंगवा रहे हैं हाँ या ना, छात्रों की गूंज का भी जिक्र आया, छात्रों की गूंज का पोस्टर बॉय कौन? राहुल गांधी। उसी छात्रों की गूंज में भोपाल में इन्हीं का कार्यकर्ता
15: ठीक है
20: अपनी कार्यकर्ता एसटी छात्रा का रेप करता है,
17: सुनिए ना
20: इनका बयान आया नहीं आया
17: पार्लियामेंट में,
20: इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष 2015 में राजस्थान में FIR है, खुद चीटिंग का सरगना है।
2: सरकार का
20: इनका वर्तमान का राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर एफआईआर है राजस्थान यूनिवर्सिटी में,
15: ठीक है,
20: पेपर अंदर कोई और दे रहा था, चीटिंग की एफआईआर है। अरे भाई साहब, ये देश के अंदर ये सरकार तो 14 में आई है, उससे पहले के ये ही लोग हैं जो परीक्षा प्रणाली में लीक करते हैं। मैं तो सरकार से आग्रह करता हूँ एनएसयूआई वालों की छानबीन करो, इन्हीं के अध्यक्ष और यही लोग चोर मिलेंगे।
15: स्टूडेंट के सवाल प्लीज, मैं इशारा कर रहा हूं, आपका क्या सवाल है, आपका नाम बताओ,
20: तो एफआईआर नंबर दिखाऊं।
15: स्टूडेंट के सवाल।
21: सर मेरा नाम कीर्ति सिंह है, तो मेरा ये क्वेश्चन है कि मतलब
15: किससे आपका सवाल
21: ये मेरा

0: दिन बाद
1: देखिए
0: 30 दिन बाद जवाब दे रहे हो।
2: समस्या है,
3: एक मिनट प्लीज,
2: ये सरकार बोलने नहीं देती है।
3: मुझे लगता है कि
0: मुझे
3: मुझे खड़ा होना प्लीज प्लीज प्लीज फेडर डाउन नहीं जा रही आवाज यहाँ चिल्ला के सार्थक प्लीज देखो देखो मैं एक मिनट प्लीज अभिषेक प्लीज अभिषेक समय बर्बाद कर रहे हैं ऐसे लड़के समय बर्बाद ना करें प्लीज। आपकी आवाज वैसे भी नहीं जा रही
0: राजमैन
3: एक मिनट नहीं मैं कह रहा हूँ देखो आप सबके साथ सबके हाथ में माइक है इसका अर्थ ये नहीं ना
0: पेपर लीक हो चुका है अभी तक सर
3: प्लीज नहीं जा रही आवाज नहीं जा रही अभिषेक अभी नहीं जा रही है। जब आपका टर्न आएगा मैं आपको समय दूंगा उसी समय बुलर कोई इंटरप्ट ना करे प्लीज मतलब यही तरीका सही है इंटरप्ट कोई मैं किसी को रोक रहा हूँ टोक नहीं रहा हूँ पूरा बोलने दे रहा हूँ मैं वही कह रहा हूँ मैं आपको भी कह रहा हूँ कोई किसी के बीच में टोके ना एक स्टूडेंट का सवाल ले लेते हैं।
4: गुड आफ्टरनून मेरा नाम साहिबा है मेरा क्वेश्चन सर से है
3: रोहित जी से है क्या
4: जो बच्चे अपने हक के लिए ये जो जंतर मंतर प्रोटेस्ट हो रहा है वो अपने हक के लिए लड़ रहे थे फिर उनको क्यों आतंकवादी बोला जा रहा था अगर उनको आतंकवादी बोला जा रहा था ये पाकिस्तान बीच में क्यों आ रहा है जंतर मंतर इंडिया का है इंडिया में हो रहा है ये पाकिस्तान में पाकिस्तान की बात क्यों आ रही है यहाँ पे।
3: ठीक है आपने पाकिस्तानियों आतंकियों की बात सुन ली आपने इस्तीफा ले लिया सरकार
5: बहन बताना बहन साहिबा जी मैं अब देखिए मैं आपके बात से 100% इत्तेफाक रखता हूँ सुन लीजिए कोई आतंकवादी उनको नहीं मानता है इस देश में जो लोकतंत्र में विश्वास रखेगा उसको प्रश्न करने का अधिकार है और उत्तर प्राप्त करने का भी अधिकार है। जब विद्यार्थियों ने एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया तो देश के प्रधानमंत्री ने सीधा संवाद किया और विद्यार्थियों के आंदोलन को अगर प्रधानमंत्री जी राष्ट्रवादी नहीं मानते तो जवाब क्यों देते किसने आतंकवादी कहा आतंकवादी कहने का दुस्साहस अगर किसी ने किया तो राहुल गांधी ने किया पार्लियामेंट में खड़ा होकर विद्यार्थियों को इज्जत कहने का काम किया अखिलेश यादव 20 दिनों तक उस आंदोलन से जुड़े नहीं रहे अचानक लॉन्च हुए और चले गए हाथ धोने के लिए। एक बात और रुकिए राजीव जी आप बताइए
3: ना भी सवाल है ना
5: पिछले 15 सालों में अखिलेश यादव और राहुल गांधी को कोई आंदोलन में शामिल होते आपने देखा है इस देश में एक ऑर्गेनिक मूवमेंट हुआ छात्रों का उसमें राहुल और अखिलेश बिन बुलाए बारात में शामिल हो गए ये झूठे लोग हैं इनसे बचना है।
3: समय चूंकि बहुत कम है तो मैं चाहता हूँ कि जितने ज्यादा हो सके सवाल आप लोगों के लिए लूं
5: के साथ
0: हेलो हेलो
3: एक मिनट हाँ वो सवाल प्लीज
5: धन्यवाद बहन साहिबा अच्छा प्रश्न किया आपने।
6: मेरा नाम नेहा है
3: हाँ।
6: और मेरा सवाल हितेश भाई से और जो बोल रहे हैं हेलो फ्रेंड्स करके
3: ठीक है
6: इन्होंने ये बोला इनका कंसर्न है हितेश भाई से कि नीट के प्रोटेस्ट के बारे में ये बोल रहे हैं इनका कंसर्न है स्टूडेंट्स पर इनका डायरेक्ट जो इनका है वो पीएम मोदी से जुड़ रहा है इन्होंने ये बोला इनका जो लैंग्वेज है मेलोडी से लेकर के ये मतलब ये कह रहे हैं कि जो बच्चे जो स्टूडेंट हैं वो गालियां दे रहे हैं पीएम को वो जायज है और वो इसका फुल सपोर्ट कर रहे हैं और ऊपर से जो ये हेलो फ्रेंड्स कर रहे हैं
3: हाँ।
6: मैं ये पूछना चाहती हूँ जो ये बोल रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो मतलब टेररिस्ट नहीं है
3: ठीक है मैं
6: पर जो बच्चे
3: ठीक है पॉइंट आपका सवाल आ गया है मैं दोनों 30-30 सेकंड में प्लीज अपनी बात रखें फिर एक कमेंट लूंगा फिर सवाल लूंगा।
7: देखिए NSUI किसी भी तरह की अभद्र भाषा को सपोर्ट नहीं करता है लेकिन इसके साथ साथ मैंने ये नहीं कहा इसके साथ साथ NSUI छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की भी कड़ी निंदा करता है जिस प्रकार का रवैया इस सरकार ने 18-18 साल के 20-20 साल के छात्रों के साथ किया ऐसा रवैया तो सरकार को किसी क्रिमिनल के साथ भी नहीं करना चाहिए यही मैं कहूंगा।
3: अखिलेश मतलब आप पीएम का मजाक क्यों उड़ा रहे हैं
8: पहले बोल लेते हैं हेलो
3: वही सवाल उसका जवाब मजाक क्यों उड़ा रहे हैं पीएम का और वहां जो गालियां दी गई उसको उसका समर्थन करते हैं।
8: हेलो फ्रेंड्स कहना यदि मोदी जी को गाली देना है तो हमें नहीं लगता कि
3: नहीं, आप उनके उच्चारण का मजाक उड़ा रहे हैं।
8: दूसरा ये चीज है
9: सर
8: नहीं एक सेकंड यहाँ पर
3: टॉपिक 30 सेकंड्स में कंप्लीट। मैं इधर
8: जब नीट का पेपर लिख हुआ तो हमने एक आर्टिकल लिखा था वायर में भी वह छपा था आप देख सकते हैं कि सवाल सिर्फ एक परीक्षा का नहीं बल्कि सड़ चुकी पूरी व्यवस्था का है। हम गंभीरता से इस मुद्दे पे आते हैं कि आप देखेंगे ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है संगठित लूट है जो NTA आप देख रहे हैं लगातार पेपर लीक पर लीक कराते जा रहा है
3: हाँ।
8: ये जो बच्चे भी जंतर मंतर आए थे तो उनको इस आंदोलन ने एक आशा दी होप दी
3: हाँ।
8: लोग आशा से जुड़ करके आए थे लोग आप समझ सकते हैं कि ट्रेनों में आ रहे हैं बसों में आ रहे हैं सड़कों पे सो रहे हैं और इस आंदोलन को हमने जो इस आंदोलन का नेचर देखा तमाम छात्र संगठन को हटा दीजिए

0: स्वतः स्फूर्त, वो जो एनर्जी थी वो अलग एनर्जी थी कि 30-30, 35-35, 50-50 बच्चों का ग्रुप रहा तो पांचों हाथ लगाए झाड़ू भी लगा रहे हैं, कोई यदि कुछ बोल रहा है तो उसको शांत भी करा रहे हैं, यदि कोई पुलिस आकर के लाठी चलाने आ रही है तो उसको गुलाब का फूल भी दे रहे हैं। तो आपको जो है वह नेचर छात्रों का नहीं दिख रहा, और उस एनर्जी है। यदि उस एनर्जी को लोग नहीं पहचाने तो वह एनर्जी सबको बंगाल की खाड़ी के
1: उस प्रोटेस्ट में बहुत सारी पॉजिटिव चीजें दिखाई दे रही, लेकिन आपको उसमें सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव क्यों दिखाई दे?
2: नहीं सर, सवाल नेगेटिव का नहीं है, सवाल यह है कि जो आपने कुंठा क्लब के जो लोग वहां पर गालियां जिस तरह से आपत्तिजनक शब्द यूज कर रहे थे, हो सकता है आपका आपकी कुंठा पर्सनल हो सकती है, आप डीजे आप लोग संस्था को गाली देते आए ये आपका कोई नया नहीं है, ये बस ऐसा पहली बार हुआ है कि इस बार आपने ऑन कैमरा गाली दी है। आप लोग का गाली देना सिस्टम को ये शुरू से रहा, खास करके जो अभी सत्ताधीश लोग हैं उनको आप लोग गाली देते आए हैं। सवाल लेकिन उनका है सर कि आप चलिए आप प्रधानमंत्री को गाली दे दीजिए, जिन तरह जैसे आपने शब्दों का चयन किया है वो हमारे घर की बहन बेटियों को तो इस तरह का इजाजत नहीं देता।
3: दूसरी चीज सर, प्लीज
2: इट्स माय टर्न, प्लीज सर आप गाली दे दीजिए, लेकिन आप जब देश के जवान को गाली देते हैं, देश के उस लोगों को गाली देते हैं जो सुरक्षा के लिए आपके लिए खड़े होते हैं, तो आप सिर्फ ऐसा नहीं करते हैं और आप आकर के माफी मांगते हैं। बिल्कुल आपकी माफी जायज है, लेकिन माफी आप क्यों मांगते हैं? क्योंकि वही गालियां जब आपको पड़ रही होती है तब आपको लगता है कि ये गालियां एक्चुअली क्या थी। सवाल ये नहीं है सर, क्लोजिंग कमेंट है, इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि हमारी सेना जो है वो मजबूत नहीं है, बस वो मजबूर नहीं है, आप लोग उसको मजबूत मानिए। वो आएगी तो अपने दमन, अगर आ गई तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। जिस तरह से आप लोगों ने गालियों का शब्द यूज किया है वो कहीं से आप लोग का जस्टिफाई नहीं करता है।
4: एनएसयूआई को तो सबसे पहले राहुल गांधी ने मान्यता नहीं दी। आप राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखो, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को किसी को बुलाया ही नहीं एनएसयूआई से, अन्य छात्र संगठन के लोगों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो हितेश जी प्लीज, एनएसयूआई का तो कई राहुल गांधी ने डिनाई कर दिया कि ये हमारा नहीं है। दूसरा विषय जंतर मंतर के ऊपर, यहां बहन बैठी है मेरी सभी, प्रधानमंत्री मोदी जी की फोटो और नीचे लेडीज अंडरगारमेंट्स लगा के उसको दिखा रहे हैं, चित्रित कर रहे हैं। क्या भारत की महिला इतनी कमजोर है कि उसके अंडरगारमेंट से किसी को चित्रित करेंगे? क्या भारत की महिला इतनी कमजोर है कि उसकी जो फेक फेमिनिज्म वाले लोग कि आज एक महिला के अंडरगारमेंट्स को यूज करके इन्हें दिखाना पड़ रहा है कि इस देश का प्रधानमंत्री क्या है?
0: जो पुलिस वाला उस बहन को लाठियों से पीछे मार रहा है, जो पुरुष पुलिस वाला उस महिला के कपड़े तक फाड़ रहा है, तो उस पे आपका जवाब नहीं है। जो व्यक्ति एक दिनों तक आंदोलन में नहीं आया, जो व्यक्ति लगातार टेररिस्ट बोल रहा है,
5: राजीव जी
0: मतलब इतना झूठ कहां से बोल लेते हो भाई? कहां से इतना कन्विक्शन लाते हो झूठ बोलने का? एक खून नहीं खोलता
4: तुम्हारा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ही झूठा है,
0: खून नहीं खोलता है तुम्हारा जब
1: राजीव जी 20 seconds प्लीज।
6: मैं सार्थक जी का जवाब देना चाहता हूँ। जो गारमेंट वाली इन्होंने बात कही, पहली बात कि आप जो बात कह रहे हैं पहली बात उसकी पुष्टि कीजिए, और दूसरी बात
4: देश ने इंस्टाग्राम पे देखा
6: है राजीव जी, रील पे तो आप कर क्या रहे हो, रील पे प्रोपेगेंडा तुम्हारे बीजेपी, इसलिए सरकार तो आ रही है
3: तुम्हारे कांग्रेस और अपोजिशन ने उपद्रवियों को समय इतनी इजाजत दे रहा है।
7: मुझे आप सबको इसी शोर के बीच में रोकना पड़ेगा। आप सभी जुड़े आज तक के साथ, थैंक यू सो मच रोहित जी, हो गया, थैंक यू सो मच। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
8: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy nonstop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.

आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा सफलता का शंखनाद।

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबा केसरी, हिंट बड़े आराम से।
2: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
3: जहां जुर्म वहीं कहानी, जहां कहानी वहीं साजिश, जहां साजिश वहां क्राइम। जुर्म चाहे कितना ही उलझा हो, उसकी परतें हम सुलझाते हैं। देखिए क्राइम तक यूट्यूब पर और बचिए हर क्राइम से।
4: The Congress government in the center got rid of its own government because of a series of killings in Punjab, including many prominent people. So things had gone really bad in Punjab.
5: Congress party was trying to say that Akalis have to be defeated. You must not allow some other faction of the Akalis to prop up so that votes are divided.
6: They created this Frankenstein called Bhindranwala.

0: नीट पेपर लीक पर छात्रों का प्रदर्शन, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और सियासत के बीच पीएम मोदी लगातार जेंजी से संवाद कर रहे हैं। नए कानून के तहत लगातार शिक्षा व्यवस्था में सुधार का भरोसा दे रहे हैं और अब इस कड़ी में पीएम मोदी ने जेंजी से संवाद में उस मुद्दे का जिक्र किया जिसने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पूरे देश को शर्मसार कर दिया। शुक्रवार देर रात पीएम मोदी एक बार फिर इंस्टाग्राम पर लाइव आए, जंतर मंतर पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर बात की और युवाओं की भाषा पर चिंता जताई।
1: जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया।
0: पीएम मोदी ने नई पीढ़ी की ऐसी भाषा पर दुख जताया, इसे समाज के लिए चिंताजनक बताया, सुधार की अपील की और गाली देने वाले छात्रों को माफ करने की बात कही।
1: हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं? लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं।
0: बीते 9 दिनों में छात्रों और पेपर लीक के मुद्दे पर पीएम का ये 5वां वीडियो संदेश है। एक बार फिर पीएम ने छात्रों से संयम, संवाद और सकारात्मक रास्ता अपनाने की अपील की।
1: मैं इन बच्चों को कहता हूँ, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है।
0: नीट पेपर लीक के बाद छात्रों को जबरदस्त गुस्सा था जिसका असर जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन में साफ दिखा। पुलिस छात्रों में झड़प के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई, लेकिन इस प्रदर्शन के बीच सरकार ने एक्शन में तेजी की। नया बिल आया, कानून बना, पेपर लीक रोकने के खाके तैयार हुए। अब पीएम मोदी उन छात्रों को सही दिशा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने आंदोलन के दौरान भाषा की सीमा पार की। आज तक ब्यूरो।
2: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
3: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
4: इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: नीट पेपर लीक पर छात्रों का प्रदर्शन, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और सियासत के बीच पीएम मोदी लगातार जेंजी से संवाद कर रहे हैं। नए कानून के तहत लगातार शिक्षा व्यवस्था में सुधार का भरोसा दे रहे हैं और अब इस कड़ी में पीएम मोदी ने जेंजी से संवाद में उस मुद्दे का जिक्र किया जिसने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पूरे देश को शर्मसार कर दिया। शुक्रवार देर रात पीएम मोदी एक बार फिर इंस्टाग्राम पर लाइव आए, जंतर मंतर पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर बात की और युवाओं की भाषा पर चिंता जताई।
1: जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया।
0: पीएम मोदी ने नई पीढ़ी की ऐसी भाषा पर दुख जताया, इसे समाज के लिए चिंताजनक बताया, सुधार की अपील की और गाली देने वाले छात्रों को माफ करने की बात कही।
1: हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं? लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं।
0: बीते 9 दिनों में छात्रों और पेपर लीक के मुद्दे पर पीएम का ये 5वां वीडियो संदेश है। एक बार फिर पीएम ने छात्रों से संयम, संवाद और सकारात्मक रास्ता अपनाने की अपील की।
1: मैं इन बच्चों को कहता हूँ, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है।
0: नीट पेपर लीक के बाद छात्रों को जबरदस्त गुस्सा था जिसका असर जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन में साफ दिखा। पुलिस छात्रों में झड़प के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई, लेकिन इस प्रदर्शन के बीच सरकार ने एक्शन में तेजी की। नया बिल आया, कानून बना, पेपर लीक रोकने के खाके तैयार हुए। अब पीएम मोदी उन छात्रों को सही दिशा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने आंदोलन के दौरान भाषा की सीमा पार की। आज तक ब्यूरो।
2: अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक वीडियो आया जिसमें फिर से वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि उनको गालियां दी गई, मां की गालियां दी गई। बिल्कुल नहीं देना चाहिए, किसी की भी मां की गाली देना इससे बड़ा अपराध कोई नहीं हो सकता, वाकई नहीं देना चाहिए। साथ कहना चाहता हूं, हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, एक दिन मेरा मोबाइल अपने पास रखिए आप, एक दिन प्रधानमंत्री जी, सुबह से लेकर शाम तक मुझे मां की गालियों के कई फोन आपके समर्थक करते हैं। कोई कहता है इसको समझा लो, पेट्रोल से जलाकर इसको मार देंगे, कोई मां की गाली देता है, कोई बहन की गाली देता है। एक दिन मेरा फोन रखिए ना, निवेदन कर रहा हूं आपसे, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, शर्म आएगी आपको। कैसा समाज आपने बनाया प्रधानमंत्री जी, पूरे देश की मानसिकता को आपने दूषित कर दिया है।
3: देखिए प्रधानमंत्री जी का हृदय कितना बड़ा है, कल के उनके वीडियो संदेश में फिर से स्पष्ट हो गया। प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ बच्चों ने जंतर मंतर से बहुत ही गलत भाषा का प्रयोग किया, अभद्र भाषा का प्रयोग किया, गालियां दी प्रधानमंत्री जी को, मां तक की गालियां दी। लेकिन कहते हैं प्रधानमंत्री जी की यही बचपना होता है जब आप कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, और कोई दूसरा अभी शासक होता या प्रधानमंत्री होता तो कड़ी कार्रवाई कराता। भाई आपको याद है छात्र विद्यार्थियों के आंदोलन जब चल रहा था 74 में, तो 75 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी। लेकिन देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी का बड़ा हृदय और बच्चों के प्रति प्यार कि उन्होंने सबको माफ करते हुए कहा कि आइए बच्चों देश के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दें, देश के लिए विकास में अपना सहयोग दें और देश को और मजबूत बनाएं। गर्व है मुझे अपने प्रधानमंत्री।
4: आम आदमी के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, बिल इज पास। यू वांट टू सिट एंड लिसन, यू सिट एंड लिसन।
1: कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा। इस कठोर कानूनों वाले
5: देश को आशान्वित करने वाला ये पीएम मोदी का वो संदेश है जो दोनों सदनों से लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पारित होने के बाद आया है। इस बिल के पारित होने के बाद सरकार राहत में होगी, लेकिन क्या ये पेपर लीक पर चल रही राजनीति को भी विराम लगा पाएगा? इस सवाल का जवाब आपको राहुल गांधी के इस बयान से काफी हद तक मिल पाएगा।
6: मैंने तो सिर्फ ये पूछा है कि दो ही ऑप्शंस हो सकते हैं। एक ऑप्शन की होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया, दूसरा ऑप्शन की होम मिनिस्टर को मालूम नहीं था कि फायरिंग होगी। इन फर्स्ट केस ही इज कल्पेबल, इन सेकंड केस ही इज इनकॉम्पिटेंट। इट कैन ओनली बी वन ऑफ टू, तीसरा तो हो ही नहीं सकता।
5: तो राहुल गांधी रुकने वाले नहीं है और उनके इन तेवरों की वजह से पेपर लीक की लड़ाई भी थमने वाली नहीं है। बस कल और आज में फर्क ये आया है कि पहले धर्मेंद्र प्रधान निशाने पर थे, लेकिन उनके इस्तीफे के बाद गृह मंत्री अमित शाह हमलों की जद में आ गए हैं और उन पर हमलों की वजह से इस लड़ाई की रफ्तार भी बढ़ रही है। राहुल गांधी ने अमित शाह पर हमले बढ़ाए तो बीजेपी उन्हीं को टारगेट पर ले आई। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना का नोटिस दे दिया।
7: माननीय गृह मंत्री जी आएंगे,
5: यानी इस लड़ाई में अभी और ईंधन डालने की पूरी कोशिश हो रही है। अभी तो सिर्फ विशेषाधिकार हनन का नोटिस है, कोई बड़ी बात नहीं कि ये मामला राहुल गांधी पर एक्शन तक पहुंच जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि अमित शाह के इस्तीफे की मांग और जोर पकड़ने लगी। राहुल के बाद खड़गे ने भी राज्यसभा में वही मांग दोहरा दी है।
8: अरे मेरे विद्यार्थी जो गांव-गांव से आए, स्टेट स्टेट से आए, उन बच्चों को पैलेट्स का यूज करके उनको मार रहे हैं और हॉस्पिटल में गिरे हैं। किसका आंख गया, किसका कान गया, किसका हाथ गया, किसका पैर टूटा, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार आप है, होम मिनिस्टर है।
5: कांग्रेस अमित शाह से प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज का हिसाब मांग रही है, अमित शाह के सदन में आकर जवाब देने की मांग कर रही है, उनका इस्तीफा मांग रही है और उसके लिए राहत की बात यह है कि बाकी विपक्षी दलों का भी उसे साथ मिल रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि ये लड़ाई आगे किस दिशा में जाती है। पीयूष मिश्रा के साथ अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक।

0: जेनजी से संवाद के बाद पीएम मोदी ने की विकास की बात। आंध्र प्रदेश में एयरपोर्ट का उद्घाटन। कर्नाटक के मैसूर में कहा युवा सामर्थ्य का देश की तरक्की में योगदान। चढ़ावा चोरी को लेकर पप्पू यादव के प्रदर्शन पर बीजेपी, वीएचपी और साधु संतों ने खोला मोर्चा। वाराणसी में पप्पू यादव, राहुल, अवधेश पर केस दर्ज। दिल्ली में भी एफआईआर दर्ज करने की मांग। परिसीमन को लेकर केंद्र पर बरसे राहुल, बोले ये बीजेपी की बड़ी साजिश, तमिलनाडु के लोगों के साथ विश्वासघात। पहाड़ से मैदान तक बाढ़, बारिश का आतंक। जम्मू कश्मीर में भारी आफत, पानी पानी गुजरात। असम में सैलाब से अब तक 82 की मौत। और कॉमनवेल्थ गेम्स में आज भारत की महिला बॉक्सर्स ने किया कमाल। प्रीति पवार और जैस्मीन लंबोरिया बनी चैंपियन। भारत के खाते में कुल 7 मेडल।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। पेपर लीक के मुद्दे पर छात्रों का आक्रोश पूरे देश में देखा, उसी का नतीजा था कि बीती 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी के संसद चलो प्रदर्शन में भारी भीड़ जुटी। इसके बाद बिहार से लेकर महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन जगह जगह पर हुए। पेपर लीक पर सरकार से विपक्ष के सवाल भी शुरू से लगे रहे और लोकतंत्र में ये जरूरी भी है। सवाल है कि क्या छात्रों के आंदोलन पर राजनीतिक रोटियां भी सेकने की कोशिश हुई? क्या प्रधानमंत्री आवास से लेकर संसद को राजनीतिक अखाड़ा बनाने की कोशिश हुई? क्या संसद में राहुल गांधी बनाम अमित शाह का हंगामा सिर्फ छात्रों के हितों पर लड़ाई कही जा सकती है? आंदोलन छात्रों ने किया, लेकिन छात्रों को फिर मिला क्या? क्या छात्र आंदोलन को राजनीति ने हाईजैक किया? यही आज हल्ला बोल का विषय। पहले ये रिपोर्ट देखिए।
1: थम गया छात्र आंदोलन, शुरू हो गई राजनीति।
2: इट्स अ सिस्टम दैट हैज बीन कैप्चर्ड, द सोल ऑफ द सिस्टम हैज बीन कैप्चर्ड बाय द आरएसएस। एवरी सिंगल यूनिवर्सिटी इन इंडिया, द स्टूडेंट शुड नो दिस एंड आई एम सेइंग दिस फॉर देम। एवरी सिंगल यूनिवर्सिटी इन इंडिया टुडे हैज अ वाइस चांसलर फ्रॉम द आरएसएस। Pradhan is a symbol. Your real enemy is the RSS. Keep it in mind. They are the people who are not letting you be students. They are the people who want you to be unbhakts.
1: छात्र आंदोलन पर क्रेडिट लेने की मची हो,
3: ऐसा नहीं है कि हमारे लिए कोई और रूल्स है और दूसरों के बच्चों के लिए कोई और रूल्स है। अपने घर की बेटियों को, अपने घर के बेटों को हम वही कहते हैं जो सब कैमरा पे कह रहे हैं। और अगर इससे आपको आपत्ति है तो आप करिए, जो आपको करना, फिर देखते हैं आप कहाँ पहुँचते हैं जिंदगी में।
1: मान गई सरकार, लेकिन संसद में जारी तकरार।
4: आखिरकार फोर्स को आदेश किसने दिया? शिक्षा मंत्री तो आदेश नहीं दे सकते, आखिर आदेश किसने दिया? ये तो सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार बताए।
1: सीजेपी के प्रदर्शन से शिक्षा व्यवस्था में आएगा बदलाव।
5: हम नौजवानों का सम्मान करते हैं, उनके आंदोलन के पीछे अगर अपराधी खड़े होते हैं और इस तरह से सजायाफ्ता लोग या अपराध, मर्डर के आरोप, रेप के आरोप और बाद में पुलिस वाले पिटते हैं, तो गंभीर सवाल तो ही।
1: क्या छात्रों के प्रदर्शन पर सियासत का लगा ग्रहण?
0: आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। अजय आलोक जी प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं, आलोक शर्मा जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ गए हैं, अनुराग भदौरिया जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, मलुक नागर महासचिव आरएलडी के मलुक नागर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय आलोक जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं। क्या छात्र आंदोलन को राजनीति ने हाईजैक किया? अब सवाल है कि इस मुद्दे पर अगर छात्रों का दबाव नहीं होता, ये सवाल तो पूछा ही जाएगा, छात्रों का ऐसा दबाव नहीं होता, अगर इस मुद्दे पर इस तरह से आप देखते नहीं कि जो राजनीतिक पार्टियां वो लगातार दबाव रखती, तो आपको नहीं लगता है कि आपने तो बस नीट का एग्जाम सेकेंड टाइम ठीक से करा दिया और आपने टेलीग्राम को वो कर दिया, बैन कर दिया, आपको लगा कि हो गया, आप तो आगे की कोई तैयारी करने के मूड में आप नहीं थे?
6: नहीं, अंजना जी, ये बात बिल्कुल गलत है। छात्रों के दबाव से ज्यादा हमें छात्रों के भविष्य की चिंता थी। उन मेघावी छात्रों का भविष्य सुनिश्चित करना था जो इस लीक के चक्कर में आके कहीं अपनी मेघावी होने के बावजूद अपनी जगह को सुनिश्चित नहीं कर पाते, और इसीलिए जैसे ही ये पेपर लीक की पुष्टि हुई, तुरंत प्रधानमंत्री जी के स्तर पे पेपर को रद्द करके दोबारा रीनीट करवाने का फैसला किया गया, टेलीग्राम को बंद किया गया। हमारे लिए पहली प्रायोरिटी 21 जून को हर हालत में पेपर को दोबारा टेस्ट करवाने की पहली प्रायोरिटी थी कि इसको हम किसी तरह से करें। उसके बाद तमाम मीट में कैसे सुधार किए जाएं, एनटीए में कैसे सुधार किए जाएं, कैसे दोबारा रीटेस्टिंग न हो, कंप्यूटर मोड में कैसे हो, ये सब लगातार प्लानिंग चल रही थी। निश्चित तौर पे इस हमें हाईजैक इसलिए कहूंगा कि इस मुद्दे को किया गया, ये राजनीतिक रूप से प्लान्ड एक मुद्दा था, आंदोलन था, जिसे स्वफूर्त छात्रों का समर्थन मिला, इसमें मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं। एक मुख्य न्यायाधीश की तंज पर कॉकरोच पे अमेरिका में कॉकरोच जनता पार्टी बन जाती है। जो व्यक्ति लुप्त रहता है, अचानक सुप्तावस्था से उठता है, वो रातों रात हीरो बन जाता है, उसके टेन मिलियन फॉलोअर बन जाते हैं, 1 करोड़ से ऊपर, वो इंडिया में लॉन्च होता है। हमने उसको परमिशन तुरंत दे दी कि ठीक है, आप प्रदर्शन करिए। परमिशन के बावजूद वो 20 दिन तक प्रदर्शन करता है, 500 से 700 लोग नहीं जुटते हैं, लेकिन एन मौके पे जिस दिन संसद का सत्र शुरू होना होता है, चंद्रशेखर आजाद से लेके बाकी लोग से लेके जितने पार्टीज हैं उनका समर्थन मिलता है, पूरे छात्र संसद कूच कर देते हैं, एक अराजकता की स्थिति बनती है। और निश्चित तौर पे उसमें छात्र भी थे सिर्फ और अराजक तत्व भी थे, ये सबने देखा। हमें इस सब चीज से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, छात्रों के हित में जितने कदम हमने उठाए किसी ने नहीं उठाए। आप ये बताइए कांग्रेस पार्टी को या किसी भी पार्टी को आज से 70 साल पहले तक इस परीक्षा लीक कानून बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। 2010 में बात हुई, कभी नहीं काम बना। 2024 में हम ही कानून लेके आए, लेकिन उस कानून में हमें फिर लगा ये 26 के लीक होने के बाद कि ये काफी नहीं है, इसमें और संशोधन करने चाहिए। पेपर लीक के बाद क्या है, जो आज अभिजीत दिपके ने कहा कि पेपर लीक के बाद क्या क्या कड़ी कार्रवाई क्यों होती है, ताकि ये डेटरेंट हो कि पेपर लीक करने वाला 100 बार सोचे कि मेरी पूरी खानदान मेरी साथ पूछते बिक जाएगी अगर मैं ये करूंगा तो। ये एक डेटरेंट है, लेकिन पेपर लीक ना हो इसके लिए भी कार्रवाई हो रही है।
0: क्या
6: ये 7 पॉइंट टास्क फोर्स कमेटी बनाई गई जिसका संसद में मजाक उड़ाया गया, गौमूत्र विशेषज्ञ बता दिया गया उन्हें, नंदन नीलकेनी जिन्होंने आधार बनाया, कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े, दलीय व्यवस्था को दूर करते हुए नंदन नीलकेनी की प्रतिभा का सम्मान करते हुए उनको हमने हेड बनाया तो उनको कॉर्पोरेट प्रमुख बना दिया गया। आपके हिसाब से चले तो नंदन नीलकेनी बड़े अच्छे कैंडिडेट थे, हमारे कुमार मंगलम के खिलाफ चुनाव में लड़वा दिया कांग्रेस पार्टी ने और आज उनको कॉर्पोरेट बना दिया। इससे बड़ी स्वार्थ की राजनीति और अवसरवादिता की राजनीति क्या होती है? इस पूरे आंदोलन से अपने आप को दूर रखा क्योंकि आम आदमी पार्टी के अभिजीत दिपके थे, और देखा कि आंदोलन उठने लगा तो जाके बैठ गए प्रधानमंत्री के आवास के आगे धरने पे। ये सारा का सारा आंदोलन छात्र राजनीति से प्रेरित नहीं है तो क्या है? क्योंकि मुद्दा विहीन हो चुका है।
0: अरे तो अन्ना आंदोलन भी तो हुआ, अन्ना आंदोलन भी तो हुआ, असर हुआ, आपकी सरकार बनी, अन्ना आंदोलन को किसकी राजनीतिक बैकिंग थी?
6: हमारी सरकार कोई अन्ना आंदोलन से नहीं बनी, गलतफहमी में मत रहिए। अन्ना आंदोलन से एक ही नेता का उदय हुआ, वो था अरविंद कपटीवाल। हमारी सरकार इसलिए बनी क्योंकि लोग यूपीए से उप चुके थे, पक चुके थे, थक चुके थे, यूपीए सरकार की नाकामी।
0: आलोक जी, लेकिन ये भी एक सच्चाई है आलोक जी, ये भी एक सच्चाई है कि इसको लेकर ईमानदारी से बात होनी चाहिए। भाई अब कानून आ रहा है तो भाई आप निर्भया के बाद आप लोग भी तो कानून ही लेकर आए ना, कौन सा ऐसा मतलब बड़ा परिवर्तन हो गया जिससे घटनाएं पूरी तरह से रुक गई? कानून सख्त लाना भी तो सरकार के ही कामकाज का हिस्सा है या नहीं, और इम्प्लीमेंटेशन भी?
7: कल ही कानून आया और कल ही दो पेपर लीक हो गए, एक महाराष्ट्र में और एक उड़ीसा में। कितना मजबूत कानून आया होगा आप समझ सकती हैं। कल ही दो पेपर आउट हुए और दोनों जगह डबल इंजन की सरकार है। केवल कानून ला देने से कि हम इसके ऊपर पेनल्टी लगा देंगे 10 करोड़ की 5 करोड़ की, उससे पेपर लीक रुक जाएगा, तो मैं समझता हूं ये बैल बुद्धि है, इससे आगे कुछ नहीं। आप कानून लाइए ना कि पेपर को किस तरह से हम इसको फुल प्रूफ बनाएं, क्या ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम होगा, किस तरह से जाएगा, कौन डिजाइन करेगा, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होगी, उसके ऊपर तो एक शब्द नहीं बोलता है कानून। केवल कानून आप आरएसएस और मोदी जी को बचाने के लिए लेकर आए। सुप्रीम कोर्ट में इसी एनटीए ने कहा अभी 3 महीने 2 महीने पहले कि पेपर लीक नहीं हुआ है, राइटिंग में एफिडेविट दिया है, और ये कहते हैं कि साहब हम तो पता नहीं क्या कर रहे हैं। 2024 में जो पेपर लीक हुआ उसके बारे में आज तक कोई नहीं बोलता है। एनटीए के अंदर एक आदमी, एक क्लर्क को भी आपने जिम्मेदार नहीं ठहराया। 21 जून को नीट का दोबारा पेपर हुआ अंजना जी, महाराष्ट्र और बिहार में मास स्केल पर चीटिंग हुई, मास स्केल पर दूसरे लड़के बैठे गए, तमाम रिपोर्ट आई, एफआईआर हुई, एयरफोर्स करते रह गए और तमाम जो एजेंसीज एनटीए की लगी थी वो अपना कांड करके फिर दोबारा 21 जून को भी चली गई, एफआईआर हुई है और उसके अंदर जांच नहीं हो रही है। दुर्भाग्य यह है कि जिस एनटीए को पहले ही भंग कर देना चाहिए था वो भंग नहीं किया गया। 152 पेपर लीक होने के बाद आपने कानून बनाया और पूरी छाती थपथपाई, हमने पता नहीं क्या कर दिया है। उसके बाद फिर दोबारा आपको 2 साल में उस कानून को बदलने की जरूरत पड़ गई, क्योंकि पहले भी आधा अधूरा कानून था और इस बार एक बोगस कानून है। इस बार केवल और केवल बच्चों को दिखाने के लिए, जनता को दिखाने के लिए एक बोगस कानून बना है, और उसका असर यह है कि कल ही कानून पास हुआ और कल ही बीजेपी शासित राज्यों में 2 पेपर आउट हो गए। अब सवाल आपका आज तक का है कि छात्रों को क्या मिला
0: आलोक जी
7: इस आंदोलन करने से?
0: एक सेकंड, आपको टोक रही हूँ, आप आ रही हूँ, उसी पर आएंगे। लेकिन कानून कल पास हुआ और उसी दिन चोरी हो गया का कोरिलेशन नहीं बैठाया जा सकता है, क्योंकि अभी कानून लागू तो नहीं हुआ है ना, अभी तो पास हुआ है। लेकिन ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, जांच ठीक नहीं होगी, तब तक कुछ नहीं होगा। छात्रों को क्या मिला, जल्दी से एक रिस्पॉन्स, फिर अनुराग जी के पास जाएंगे।
7: अंजना जी तीन दिन से चार दिन से उसी कानून के ऊपर बात हो रही थी, लेकिन उसका भी डर नहीं था। अब बात आती है छात्रों को क्या मिला, मैं पूछता हूं कौन दे सकता था? दे तो सरकार सकती थी, केंद्र की सरकार दे सकती थी। केंद्र की सरकार ने एक झुनझुना दिया, इसके अलावा कुछ नहीं दिया। केंद्र की सरकार अगर चाहती तो पहले दिन ही कहती एनटीए भंग है, हम 10 लोगों की 5 लोगों की कमेटी बनाते हैं और उसमें एक्सपर्ट्स को रखते हैं, गोमूत्र विशेषज्ञों को भी रख लेते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आपने ये सारा काम जब किया जब सैकड़ों बच्चे घायल हो गए, जब आपको पैलेट गन चलानी पड़ी, जब आपको पता है 5 बार एक एनटीए से एक ही पेपर लीक हो रहा है, तो उसको बचाने का काम क्यों किया गया? क्योंकि उसमें बीजेपी और आरएसएस के लोग हैं, आपके वेस्टर्न इंटरेस्ट हैं। 2024 में तो क्रिस्टल क्लियर हो गया था कि भाजपाइयों और संघियों के बच्चों को एडमिशन दिलाया गया है, भाजपाइयों और संघियों के स्कूल में एग्जाम लीक हुआ है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अगर पहले ही हो जाता तो ये
0: आरोप सीधा है,
7: अच्छे से चलता।
0: अजय आलोक जी, उनका आरोप सीधा है, लेकिन आप जवाब दें। उससे पहले मैं एक बार अनुराग भदौरिया जी के पास जा रही हूं। अनुराग भदौरिया जी, हम पप्पू यादव जी की तस्वीरें दिखा रहे हैं और समाजवादी पार्टी के ज्यादातर जो प्रदर्शन है दूसरे तीसरे दिन से, अब राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर आ गए हैं। छात्रों को पूरा न्याय तो मिल जाए?
8: देखिए, सवाल ये नहीं है, छात्रों ने तो साफ सत्ताधीशों को ये बागी संदेश दे दिया है कि देश मनमानी से नहीं संविधान से चलता है। अगर ये सत्ताधीशों को अब तक नहीं खबर लगी है तो ये चिंता का विषय है। छात्रों के लिए अभी हमारे साथी बीजेपी प्रवक्ता कह रहे थे कि सरकार उनके भविष्य की चिंता कर रही थी। क्या भविष्य की चिंता की है आपने? आंख फोड़ के, सर फोड़ के, हाथ तोड़ के, पैर तोड़ के, पीठ लाल करके, आंसू गैस छोड़ के ये भविष्य की चिंता करते हो? ऐसे तो पहली बार सरकार देखी है जो छात्रों के भविष्य की चिंता बैलेट गन से करती है। क्या बात है भाई, सर फोड़ के चिंता करती है, वाह वाह वाह, क्या ऐसी सरकार किसको चाहिए भाई? ऐसी चिंता भी किसी को नहीं चाहिए। चिंता चाहिए थी जब वो धरने पे बैठे थे, तब सरकार को चिंता और चिंतन करना चाहिए था कि हमारे घर के छात्र, हमारे अपने बच्चे बैठे हैं, हम जाके उनसे बात कर ले, 2 कदम की दूरी पे हैं, उनसे बात कर ले तो उनकी समस्या का समाधान निकालते। तब तो लगता है छात्रों के भविष्य की चिंता कर रहे हैं। छात्रों की भविष्य की चिंता लगती तब जब आप छात्रों की बात करते। आप छात्रों के साथ क्या कह रहे हो कि जो विपक्ष की पार्टियां राजनीति कर रही हैं? आपको तो अपने भाई बहन की चिंता होती नहीं है, हमें तो होती है भाई। अगर आपके घर के आलोक जी दिल पे हाथ रख के देख कहना, आपकी घर की बेटी और आपकी बहन पे अगर लाठियों से वार हुआ होता तो क्या आप सरकार का बचाव कर रहे होते? लेकिन हम उनको अपना समझते हैं, पूरे देश की बहन बेटियों, क्योंकि विपक्ष होने के नाते मेरी जिम्मेदारी भी बनती है, क्योंकि कोई भी बच्चा अगर परेशान है, मांग रहा है, तो हमें उसके कंधे से कंधा मिलाना है, सरकार को जगाना है कि सरकार जगिए, आपकी जिम्मेदारी बनती है, मेरी जिम्मेदारी। सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही थी, लेकिन हम भी विपक्षी नेता, हम समाजवादी लोग अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागे, क्योंकि हमारे घर
0: का वीडियो डालिएगा। अनुराग जी, अनुराग जी, एक काउंटर क्वेश्चन आपसे भी है। ये तस्वीरें एक बार दिखा दीजिए, जो पुलिस वाली तस्वीरें हम लोग दिखा रहे थे, जो ऐसे पुलिस वाले जिनके पास लाठी डंडा होने के बावजूद, ये तो पुलिस वाले लाठी चलाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन पुलिस ने भी एक वीडियो जारी किया है और उस वीडियो में जो 6 बजे में हमने चलाया था, वो दिखा रहे हैं कि कैसे पुलिस वाले लाठी नहीं चला रहे, उनको भी घेर घेर कर जो बच्चे हैं, ये देखिए उन्होंने 20 जुलाई का वीडियो है, अब मतलब बहुत भद्दे इशारे कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं उनके मुंह में जाके, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया, फिर दौड़ाकर मारते हैं उनको, पत्थर तोड़ तोड़ कर जमीन से उठाकर मार रहे हैं। कुछ उन परिवारों के लिए भी बोल दीजिए, उनके भी बच्चे आए थे।
8: मैं बोल रहा हूं, मेरा सीधा सा सवाल है, सिविल ड्रेस में वो कौन थे जो लाठी लेके घूम रहे थे? पुलिस वालों ने क्यों नहीं पकड़ के उनको जेल में डाला? कौन थे वो लोग? कौन वो ज्यादा वहां पे दादा की गिरी कर रहे थे? कौन है वहां पत्थर लेके आगे, ट्रक भरा पत्थर जिस तरह से सुबह से दिखाया जा रहा था, हम लोगों ने देखा सोशल मीडिया पे, ट्रक भरा पत्थर आया है, कहां से आया था वो, कैसे आ गया था वो, कैसे सैनिटाइज आपने किया था? आपके बच्चे, आपके हजारों की संख्या में बच्चे बैठे हैं, पुलिस के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? अगर कोई गलत व्यक्ति वहां आ भी रहा है, अगर घुसने की कोशिश कर रहा है, कोई उपद्रवी है भी, तो उस जगह आ कैसे गए? ये पुलिस अपनी जिम्मेदारी से भागेगी क्या? क्योंकि आप सब अपनी जिम्मेदारी से भाग जाएंगे, किसी कोई जिम्मेदारी नहीं बनेगी अभी तो। जिम्मेदारी तो आपको पुलिस को भी लेनी पड़ेगी ना अंजना जी, ऐसे थोड़ी होगा कि सारी जिम्मेदारी छात्रों की हो जाएगी, पुलिस की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। पुलिस अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है, पुलिस को वहां सैनिटाइज करना था, पुलिस सरकार को जिम्मेदारी लेनी थी कि हमारे बच्चे बैठे हुए हैं उनको कोई नुकसान ना हो जाए, कोई पदवी ना आ जाए, कोई असामाजिक तत्व ना घुस जाए, कोई पत्थरबाज ना घुस जाए, कोई लाठीबाज ना घुस जाए, कोई बंदूकबाज ना घुस जाए, कोई हत्यारा हुआ ना घुस जाए, कोई गुंडे माफिया ना घुस जाए। ये जिम्मेदारी किसकी थी? सरकार की या पुलिस सिस्टम की जिम्मेदारी नहीं थी अंजना जी? आप बता दीजिए मुझे, मैंने सारी जिम्मेदारी छात्रों की बेचारा पढ़ने लिखने वाले छात्र।
0: अनुराग जी की बातों का जवाब दीजिए अजय जी,
8: असामाजिक तत्व
0: पुलिस। उसके बाद मलुक जी फौरन आ रही हूं। अजय जी, अगर ऐसे लोग वहां घुसे थे तो फिर ये भी तो जिम्मेदारी है ना कि भाई इसको संभालने में किसकी चूक है? फिर
6: देखिए अंजना जी, संभाल तो हमने लिया ही। इनकी मंशा क्या थी? जितने अराजक तत्व घुसे थे, इनकी मंशा थी सुजद रूप से हिंसा फैलाना, अराजकता फैलाना, बिना एक भी गन फायर किए हुए। पुलिस ने आराम से मामला संभाला, उसमें 118 पुलिसकर्मी घायल हुए। जहां तक मेरी जानकारी ठीक है, अगर मेरी बेटी होती या मेरा बेटा होता उसको लाठी पड़ती तो मुझे कैसा लगता? सही बात है, मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन अनुराग जी के तो अपने भाई साहब आईपीएस ऑफिसर हैं, अगर कल को उनका सर फूट के आता तो अनुराग जी को कैसा लगता? अनुराग जी के परिवार को कैसा लगता? बड़ा आसान है कह देना, नहीं कि आपकी बेटी होती अपने भाई होती, अपने भाई से पूछिए कि कैसे लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल किया जाता है जब क्राउड आउट ऑफ कंट्रोल होता है, तब समझ में आएगा। टीवी पर बैठ के ज्ञान देने से समझ में नहीं आएगा। दूसरी बात, आलोक शर्मा जी ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस तो राहुल गांधी जी को हुआ था रफेल के समय में, अब आप लोग को पूरी कांग्रेस पार्टी को हो गया क्या कोलंबियन इफेक्ट, जो हर बात में आरएसएस बीजेपी, आरएसएस बीजेपी, आरएसएस बीजेपी, एनटीए भंग कर देते, ये कर देते, वो कर देते। अरे आप तो बैठ के मूंग दलते रहे 33 साल तक, आपने कुछ किया नहीं, और हम कुछ कर रहे थे, आप कहते हैं
0: ये राहुल गांधी जी का सीधा आरोप है कि पूरी शिक्षा व्यवस्था में संघ से जुड़े लोगों को उच्चतम स्तर पर पहुंचाने के लिए और वहां पर ज्यादा से ज्यादा एडमिशंस संघ से जुड़े लोगों को कराने के लिए ही ये पूरी व्यवस्था शिक्षा की ऐसे लचर और लीक हो रहे हैं, ये सीधा आरोप है। इस पर जवाब दीजिए आप, उसके बाद आ रही हूं अनुराग जी और मलुक जी।
6: राहुल गांधी जी की आईक्यू पे मैं प्रश्न खड़ा करने वाला कोई नहीं हूं, पूरा देश जानता है आईक्यू कितनी है। आउट ऑफ सिलेबस सवाल पूछिएगा, एक चीज का जवाब नहीं देते हैं। तो जो कान में कम्युनिस्टों ने और लेफ्टिस्टों ने कहा होगा या भारत विरोधियों ने कहा होगा वही कह दिया। कौन से अपने मेरिट से जितने छात्र आज गए हैं, पिछले 12 साल से हम हैं, ये कह रहे हैं कि पिछले 12 साल में जितने आईटीएन, जितने मेडिकल कॉलेज, जितने यूपीएससी के लोग, जितने बीपीएससी के लोग, जितने स्टेट सर्विस कमीशन के लोग, ये जितने गए सब पेपर लीक से गए हैं, सब संघ के लोग हैं, ये विचारधारा है इनकी। पिछले 12 साल से जितने क्वालिफाई किए हुए डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, सिविल सर्विसेज सर्वेंट्स हैं, वो सब क्या संघ के लोग पेपर लीक करके गए? ये क्या रद्दी आदमी की बात सुन के अंजना जी इस क्वेश्चन को आप डिबेट में ला रही हैं? ये पूरे देश की प्रतिभा पर सवाल कर रहा है ये आदमी, और इसकी बात हम लोग सुने?
9: मैं बताता हूँ कौन
6: बात सुनने लायक है, ये बात सुनने लायक है
9: अभी बताता।
6: आप ये सोचिए गौमूत्र विशेषज्ञ, इन्होंने फिर बोला, शर्म नहीं आती है, आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर को गौमूत्र विशेषज्ञ कहते हैं। 250 से ज्यादा शिक्षाविदों ने प्रियंका गांधी जी को चिट्ठी लिखी कि मैडम अपनी शिक्षा का स्तर देखिए, क्या बोल रही हैं आप, किसके बारे में, कामकोटी साहब के बारे में, शर्म नहीं आती है इन लोग को। और दूसरी बात, ये आरएसएस और बीजेपी जो बार बार कहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम आरएसएस की विचारधारा को विश्वास रखते हैं, ये राष्ट्र धर्म की विचारधारा है, राष्ट्र को आगे बढ़ाने की विचारधारा है। तो इस सरकार में अगर आदमी हम अपने नहीं रखेंगे तो क्या हम कांग्रेस पार्टी के रखेंगे, या हम इटली से लाके आदमी रखेंगे?
0: आलोक जी जल्दी से सीधा चलेंगे मलुक जी के पास,
6: चाइना से चंदा नहीं मिलता है।
9: देखिए मैं आलोक जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, उन्होंने बता दिया कि राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं कि अपनी विचारधारा के लोग सब जगह भर्ती कर दिए हैं। आलोक जी ने मान लिया है, आज तक पे धन्यवाद इनका। अब हम तो सीधा पूछ रहे हैं भाई,
6: तो क्यों नहीं करेंगे भाई,
9: एग्जाम
6: क्यों नहीं करेंगे, व्हाई आई शुड बी अपोलोजेटिक अबाउट इट,
9: कैबिनेट का अप्रूवल था,
6: व्हाई आई शुड बी अपोलोजेटिक अबाउट इट।
9: आपके बीच में नहीं बोला, प्लीज आप रुकिए,
0: बीच में
9: सुनो, क्योंकि आरएसएस के लोग ज्यादातर अनपढ़ होते, क्योंकि ज्यादातर आरएसएस के लोग एक ही तरह की विचारधारा के होते हैं, उनको देश का नहीं पता होता, वो केवल अपनी विचारधारा थोपना चाहते हैं, और ज्यादातर आरएसएस के लोग अनपढ़ भी होते हैं। वापस आता हूँ, प्रदीप जोशी एनपीए के चेयरमैन, देखिए अंजना जी कैसे
0: कैसे नहीं होता,
9: देखिए मैं पूछना चाहता था सीधा, एनजीओ को, एक एनजीओ को जिसका नाम एनटीए है, एक एनजीओ को किसने ठेका दिया कि आप सारे बच्चों के भविष्य को खराब कर दो, और उसमें किसने आरएसएस के प्रदीप जोशी जैसे लोगों को भरा, जिनके खिलाफ मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में जांच हुई, और मध्य प्रदेश में बीजेपी के लोगों ने कहा कि इनके खिलाफ सीबीआई की जांच होनी चाहिए और एसआईटी होनी चाहिए, और कोई गौमूत्र विशेषज्ञ है तो कहना पड़ेगा भाई क्या प्रॉब्लम है उसमें। दूसरी चीज, वांगचुक के लिए भी इन लोगों ने कहा है चाइनीज एजेंट है ये, उसके खिलाफ तमाम तरह के केस ठोक के जोधपुर जेल में डाल दिया था, आज वांगचुक जी हो गए हैं, आज सम्मानित वांगचुक जी हो गए हैं, उन्हीं के सांसद और तमाम लोग कह रहे थे कि चाइना के एजेंट है। दुर्भाग्य यह है कि इनको वास्तव में, मैं फिर कह रहा हूं, बिल्कुल बोला गया था कि चाइना के बिल्कुल एजेंट बोला गया
0: ठीक है, उसके बाद जो अभी आपने बोला बचिए,
9: क्या जोधपुर जेल में नहीं ले जाया गया था,
0: लाल लाल किया,
9: मैं समझता हूं कि जिस तरह से आज के हालात हैं, पूरी तरह से मैं बिल्कुल देखिए जो हुआ है वो तो अब हुआ ही है, अब क्या कर सकते हैं, मैं अपने शब्द वापस भी ले लेता हूं, लेकिन दुर्भाग्य ये है
0: लेकिन अब तो आपके लिए अपमानित हो गए जब से उन्होंने अब लेकिन आलोक जी आप लोगों के लिए अपमानित हो गए ना, जिनके नाम पर ये पूरा आंदोलन हुआ, जिनके भूख हड़ताल की वजह से इतने सारे बच्चे देश भर से आए, अब आप लोग कह रहे हैं कि उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया।
9: उनकी भूख हड़ताल से नहीं हुआ था, नहीं केवल मैंने नहीं कहा, मैंने कहा कि उनके आंदोलन बच्चों ने किया, आंदोलन वांगचुक जी ने नहीं किया। वांगचुक जी भूख हड़ताल पे बैठे, हम उनका सम्मान करते हैं वहां तक, और कोई चीज होगी तो आलोचना भी कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं। आंदोलन बच्चों ने किया, बच्चों का आंदोलन था, वांगचुक जी का आंदोलन नहीं था। लेकिन बात यह है कि एनटीए में कैसे सुधार हो, एनटीए में सुधार कैसे किया जाए, इस पर भाजपा खामोश है।
0: मालूक जी
9: एक शब्द नहीं बोल रहा है कोई।
0: अब आप रुक जाइए आलोक जी, मालूक जी बोलेंगे उसका सर। मालूक जी आज सवाल तो यही है ना कि जो सरकार है उस पर जिम्मेदारी है, अगर ऐसा मौका नहीं आता, बच्चों का भरोसा नहीं टूटता, तो फिर थोड़ा ना विपक्ष को या किसी को भी मौका मिलता।
10: देखिए जिम्मेदारी सरकार की है ये सच है, जो एनडीए के कार्यकाल में हुआ नहीं होना चाहिए था, पर क्या 65 साल कांग्रेस के राज में जो हुआ, दशकों से जो माफिया चला आ रहा था उसको 2024 में बिल लेके आए और अब सख्त बिल लेके आए, तो क्या 1 करोड़ की 10 करोड़ पेनल्टी करना जुर्म है? विपक्षी क्या ये चाहते हैं ना बढ़ाया जाए? 1 साल 3 साल की सजा 10 साल की सजा करी जाए तो क्या विपक्षी ये चाहते थे? अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कानून बोगस है, तो कानून पे जब चर्चा हो रही थी तुम इधर की उधर की बात कर रहे थे, सनातन धर्म के खिलाफ बोल रहे थे, कहां कहां की बातें मनुवाद कहां कहां की बात आ रहे थे। जो विपक्ष का काम होता है देश की संसद में 193 की चर्चा पे ऐसी बातें रखें जो मिनिस्टर वहां बैठ करके नोट करे और फिर क्लेरिफिकेशन में हर पॉइंट का जवाब दे, और विपक्ष ने अगर कुछ बोला है उसमें से उठा के उस बिल में अमेंडमेंट करा जा सके। तो अगर बोकस है तो क्या बोला है? अंजना जी तीन चीजें होती है, एक तो जो जिस पे चर्चा हो रही है वो है। और एक लेफ्ट पे होती है कि उसमें क्या क्या खामियां हैं, राइट में होती है कि उसका सॉल्यूशन क्या है। क्या एक भी किसी सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की कांग्रेस और किसी की पार्टी ने उस तरीके से संसद में विचार रखे जो युवाओं के लिए,
0: अनुराग जी कानून में क्या शामिल हो सकता है ताकि छात्रों को ऐसा ना लगे कि भाई उनको क्या मिला? ऐसा कुछ भी आप लोगों ने अगर सुझाया आपकी पार्टी के नेताओं ने तो बताइए, कानून में कुछ बदलाव की बात की हो। कानून तो ध्वनि मत से इन्होंने पास कर लिया।
8: देखिए सरकार किस बात का एहसास है वो सरकार जानती है कि जहां युवा और छात्र खड़े हो जाते हैं वहीं से नया दौर शुरू होता है, और उन्हें पता है नया दौर आने वाला है। नया दौर जब आएगा तब उनका इस बात का आभास है कि नए दौर में भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति नहीं चलेगी। अब राजनीति होगी विकास की और शिक्षा पे, राजनीति होगी देश को आगे ले जाने पे, राजनीति देश को पीछे ले जाने पे नहीं होगी। अभी जो आपने कानून की बात की, निर्भया कांड हुआ था, बहुत मजबूत कानून बना उसके बाद। तो मैं पूछता हूं अंजना जी, क्या उसके बाद महिलाओं पर अत्याचार कम हो गए क्या? कानून बनाना एक बात है, कानून का पालन कराना, उसका डिलीवरी सिस्टम मजबूत करना, वो फेलियर है इस भारतीय जनता पार्टी सरकार में। उसमें भ्रष्टाचार सिस्टम है, भ्रष्टाचारी लोग हैं, चोर हैं, तो आप जानते हो इस सरकार में तो हर जगह चोर पाए जाते हैं ना। जैसे आपने देखा चढ़ावा चोर, वहां भी चोर पाए जा रहे हैं, यहां सरकारें चोरी हो जाती हैं, कहां कहां चोर नहीं, एमपी एमएलए चोरी हो जा रहे हैं, यहां खाद चोरी हो जाती है, सड़क खड़ंजा रोड चोरी हो जा रहे हैं, पुल चोरी हो जा रहे हैं, बताइए आप। तो यहां पे तो ऐसा है कि सरकार में चोर हर जगह है, इन चोरों को कैसे हटाएगी सरकार? इस पे सरकार चिंतन करे कि जो सिस्टम में चोर घुसे हुए हैं और जो सिस्टम में उसको दीमक की तरह खोखला कर रहे हैं और सिस्टम को खा गए हैं, चाहे कितना मजबूत कानून बना दीजिए। 2024 में यही कानून था ना, और ये बोला गया था पार्लियामेंट के अंदर में, सदन में, मैंने आपने भी सुना होगा कि हम इसका नकल विरोधी कानून और जो पर्चा लीक होता है इतना मजबूत बना दिया गया है, अब यहां पर्चा लीक नहीं होगा। लेकिन 2026 में फिर हो गया, अब कहा कि नहीं अब सजा और ज्यादा हो जाएगी। अरे जब 1 करोड़ था 10 करोड़ हो गए, 3 साल से 10 साल हो गई, फिर तो आप पर्चा लीक होगा, तो क्या गारंटी कि नहीं होगा, जरा बता दीजिए। पर्चा लीक होने से बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाता है। 20 बच्चों ने, 25 बच्चों ने सुसाइड किया अंजना जी, क्या उस बच्चों को वापस, वो बच्चे वापस मिल जाएंगे उस माँ बाप को? मैं पूछना चाहता हूं। कानून तो आप बना देंगे, कानून से भी मजबूत बन जाएगा, बच्चे वापस आ जाएंगे तो बताइए मुझे, ऐसा कोई कानून है क्या? इसलिए आपको सिस्टम को सुधारने की जरूरत है। जो आप आके यहां वकालत करते ना, जिस तरह सबको पता है सिस्टम में किस तरह की भर्ती हो रही है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में देखिए, हर जगह देखिए कैसे कैसे प्रोफेसर आ रहे हैं। बताइए, आपके ही टीवी चैनल में कई प्रोफेसर को मैं देखता हूं, वो आते हैं यहां बात करने के लिए, शिक्षा पे बात करते हैं यहां, कह रहे विपक्षी पार्टियों के बारे में, शिक्षा पे कब बात करते हैं? आप नहीं तो डिबेट उठा के देख लीजिए, कितने प्रोफेसर आते हैं आपके चैनल पे, कभी वो शिक्षा की बात करते हैं, कभी शिक्षा सुधार की बात करते हैं, कभी वो न्यूट्रल होकर बोलते हैं कि देश में शिक्षा पद्धति कैसी होनी चाहिए, वो आके यहां बीजेपी की बैटिंग करने आते हैं, सोचिए आप, और नफरत की बात करने आते हैं। जब यहां पे शिक्षक हिंदू मुस्लिम की बात करने लग जाए, यहां पे धर्म के नाम पे राजनीति, यहां पे नफरत की बात फैलाने लग जाए, एक दूसरे के विरोध में बोलने लगे, तो काहे का शिक्षक है? इसके मतलब शिक्षक बदलने की जरूरत है, शिक्षा प्रणाली बदलने की जरूरत है, और जो सिस्टम है, जो सिस्टम उसके अंदर स्वच्छ और ट्रांसपेरेंसी लाने की जरूरत है, जिससे कि शिक्षा पद्धति सही हो और जो पेपर बनते हो वो यहां ट्रांसपेरेंट हो और चोरी की कोई गुंजाइश नहीं हो। इसलिए चोरों को हटाइए, और ये पार्टी, ये मेरे, अब हमारी सरकार आ गई तो हम अपने आदमी भर देंगे, आरएसएस के भर देंगे, कल किसी और की सरकार आएगी वो अपने आदमी भर देगा। इसके मतलब शिक्षा के बारे में तो सोच ही नहीं रहे हो आप, कब्जा करने के बारे में सोच रहे हो आप, सोचते हैं मैं यूनिवर्सिटी पे कब्जा कर लूं, मैं शिक्षा की जो मंदिर है उनमें कब्जा कर लूं। तो जब कब्जा वाली आपके अंदर भावनाएं रहेगी ना, तो कभी शिक्षा पद्धति ठीक नहीं हो पाएगी। एक कब्जे की भावना, जो यूनिवर्सिटीज में कब्जा
11: हमारे खुद ही स्वीकारा है,
8: वीसी चुनेंगे
11: हमारी हर जगह। अनुराग जी जो बोल, अनुराग जी आप ही की बात का जवाब ले रही हूँ, अनुराग जी की बात का जवाब दीजिए। अजय जी वो खुद ही कह रहे हैं, आपने खुद ही स्वीकारा है ना अभी, कि हम क्यों ना भरे संघ से जुड़े लोगों को, संघ की विचारधारा। पूरी लड़ाई इसी की रहती है क्या, कि अपनी सरकार आई तो अब अपने लोगों को भरो, वो जब थे तो उनकी विचारधारा के लोग भरे हुए थे, और शिक्षा जाए जहां जाना है पानी में।
6: सबसे पहली बात मैंने पहले भी बोल दिया कि आई एम नॉट एंड वी आर नॉट अपोलोजेटिक अबाउट इट, क्योंकि सही लोग सही जगह पे पहुंचे हैं। NEP इसका उदाहरण है, जो 2019 में पास हुआ, 20 में कार्यान्वित हुआ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। 26 भाषाओं में पढ़ाई करवा रहे हैं, एंट्रेंस एग्जामिनेशन 26 भाषाओं में ली जा रही है, पहले क्यों नहीं ली जाती थी? आज एक गरीब का बच्चा गांव में, झोपड़ी का उठा तमिलनाडु का बच्चा, अपनी भाषा में नीट बनकर डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, पहले क्यों नहीं सोचा? केरला के बच्चों के बारे में क्यों नहीं सोचा? मणिपुरी अपनी भाषा में दे सकता है एग्जाम, श्रीलंका में बैठ के क्यों नहीं सोचा? ये हमारी सोच। आज अगर मैं क्लास ट्वेल्थ में, जब मैं था तो मुझे PSMB के अलावा कोई और सब्जेक्ट लेने का अधिकार नहीं था। मैं चाहता आज मैं चाहूं तो मैं PPCM और के साथ इकोनॉमिक्स ले सकता हूं, ये मेरा अधिकार है, ये मेरी नई एजुकेशन पॉलिसी है, मेरी सोच है, मेरी चाहत है, मेरी स्वतंत्रता है। इस सोच का कोई विरोध करता है तो मुझे आश्चर्य लगता है। लेकिन हाँ, भदौरिया जी की बात कई बात कहूंगा, मेरे मित्र हैं, लेकिन कसम खाई हुई है इनकी पार्टी ने भी, ये भी, कि न पार्टी सुधरेगी न ये सुधरेंगे, न पार्टी सीखेगी न ये सीखेंगे। 2 साल से मैं सिखाते तंग हो गया, शिक्षा, विपक्ष तक बोल नहीं पाते हैं, वही ज्ञान यहां पर बैठने लगे। और किस आदमी का ज्ञान सुन रहे, किस पार्टी के प्रवक्ता का, जो कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में प्रपोजल बकायदा विधेयक लेके आए कि नकल विरोधी कानून हम वापस लेते हैं, और ये व्यक्ति नकल विरोधी कानून पे इनका ज्ञान सुन रही है पूरे देश की जनता। हम ऐसे पार्टी के प्रवक्ता का प्रवचन सुन रहे हैं जिसके नेता कहते थे रेप करने पे लड़कों से तो गलती हो जाती है, फांसी पे चढ़ा दें, कहां से इनको सख्त कानून चाहिए होगा भाई?
11: अनुराग जी,
6: किसकी बात है हम लोग सुन रहे हैं? आज क्या जरूरत नहीं है कि पूरा का पूरा चीज बदले? वो बदल रहा है, ये बदलाव इनको नहीं है, क्योंकि गुलामी की मानसिकता से जकड़ी हुई कांग्रेस पार्टी कभी नहीं चाहती थी कि भारत का अपना शिक्षा नीति हो। अंग्रेजों से दी गई शिक्षा नीति हम लेके चलते रहे। कोई एक मिनट मैं खत्म कर लूं, उसका
11: खत्म
6: अंग्रेजों की दी हुई शिक्षा नीति, गुलामी की नीति से प्रभावित हम आज तक,
8: आपका खत्म होगा नहीं ना,
6: नीति से प्रभावित होकर मैं आज तक चलते रहे। एक अपनी स्वतंत्र शिक्षा नीति हो जिसमें हर बच्चा पढ़ सके, हर बच्चा आगे बढ़ सके, गरीब का बच्चा आगे निकल सके, शिक्षा लोन वितरित हो सके, क्या दिक्कत है आपको भाई? आपको हरेक लोग से दिक्कत हो गई है, ये देश 10 साल में पूरे सिस्टम को बदल रहा है, ये दिक्कत है। ऊपर से नीचे तक ढांचा बदल गया, ये दिक्कत है। अंग्रेजों के चंगुल से निकल गए, विदेशी शक्तियों के चंगुल से निकल गए,
11: जवाब सुनिए। अब जवाब
6: आज हमारे देश के
11: अनुराग जी को बहुत बोला है समाजवादी पार्टी पे, एक बार वो जवाब दे।
8: जब भारत, अरे सुनिए जवाब भाई, देखिए इन्होंने सवाल पूछा तो आलोक जी सुन लीजिए कान खोल के। भारत माता के जन जन की चीख पुकार आप नहीं सुनते हो ना, तो इनकलाब आता है। इनकलाब पैदा होता है। आप आदरणीय नेताजी की बात कर रहे हो, नेताजी ने इस आप उसको तोड़ मरोड़ के बोल रहे हो, उन्होंने दूसरे तरीके से बोला था, उनका बोलने का संदर्भ अलग था, उनका मतलब अलग था, तरीका अलग था, आप दूसरी तरह से पेश करते हो, यही तो आपकी आदत है, यही तो आप करते आए हो अभी तक। आप बोली चलाने का ऑर्डर देते नहीं हो कि आपने सदन में बोला ना कि नहीं हमारे गृह मंत्री जी ने ऑर्डर नहीं दिया था गोली चलाने का, लेकिन जब वहां पे अयोध्या में गोली चली तब कहोगे मुख्यमंत्री उस समय थे आदरणीय नेताजी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने गोली चलाने का आदेश दे दिया था। आपके यहाँ पुलिस चलाती है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन चलाता है, हमारे यहाँ मुख्यमंत्री चलाने पहुंच जाते हैं। आदरणीय नेताजी गोली लेके चलाने गए थे, उनका चिट्ठी आपने देखी थी, चिट्ठी पढ़ी थी, नृपेन मिश्रा जी ने खुद बोला था कि वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के बोले पे अयोध्या में गोली चली थी। जिस तरह से आपके यहाँ पे नेता कह रहे थे कि जिस छात्रों के आंदोलन में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के बोलने से ब्लड गेंद चली या आंसू गेंद छोड़े गए या लाठी डंडे चले या गोली चली, ये तो आपके नेता खुद बोल रहे हैं सदन में खड़े होकर। तो अपने समय में आप सही हो जाते हो, दूसरे के समय में आप गलत हो जाते, मैंने कमाल है, दूसरे को तो आप बोलते हो नहीं नहीं मुख्यमंत्री चले गए थे वहां गोली चलाने के लिए, और अपने समय में तो बोलते हो नहीं नहीं हमारे तो मंत्रालय ने ऑर्डर नहीं दिया था। इसलिए आप कम से कम एक बात पे टिकिए, हर बात को तोड़िए मरोड़िए मत, देश की जनता देख रही है। आप छात्रों को युवाओं के भविष्य की बात कीजिए, आप इतिहास की बात कर करके उनका वर्तमान और भविष्य दोनों चौपट करना चाहते हो, इसलिए छात्र रोड पे आंदोलित थे, इसलिए छात्र आज रोड पे आप भी डरे हो सरकार बैकफुट पे, क्यों? क्योंकि सरकार उस बात का एहसास हो चुका है कि यूथ और छात्र आपके साथ नहीं है, क्योंकि आप उनके भविष्य की बात नहीं कर रहे हो, उनके भविष्य की चिंता नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप सिर्फ अपनी चिंता करके उन पे दमनकारी नीति अपनाना चाहते हो, इसलिए वो आपके विरोध में आगे खड़े हुए। अब आप कहोगे यहां से आगे वहां से आगे, देखिए मैं आपको सीधी सी राय दे रहा हूं और मेरी राय मान लीजिए, राय यह है कि देश के विकास की बात कीजिए, फ्यूचर के जो हमारा युवा उसके फ्यूचर की बात कीजिए, छात्रों के एजुकेशन के बारे में आप अच्छी शिक्षा नीति लेके आइए, कैसे देश मजबूत हो इस पे बात कीजिए, धर्म के नाम पे राजनीति बंद कर दीजिए, झूठ और जुमलेबाजी बंद कर दीजिए और ड्रामाबाजी बंद कर दीजिए, देश को आगे जाने दीजिए, बहुत हो गया आरएसएस आरएसएस आरएसएस।
11: उत्तर प्रदेश का चुनाव भी आ गया है सिर पर,
10: रोको ना इनकी बात को,
11: अंजना
10: जी रोको,
11: बोलिए बोलिए
10: अंजना जी, एक चीज तो क्लियर हो गई, हमारे जो साथी बोल रहे हैं कि उस समय माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने गोली नहीं चलवाई थी, तो पूरा विपक्ष सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन सोशलिस्ट पार्टी कांग्रेस और उसकी साथी पार्टियां सुन लें कि ये जो मांग कर रहे हैं अमित शाह जवाब दें, अमित शाह जी ने गोलियां चलाई, तो इनकी बात के अनुसार अमित शाह जी ने कोई आदेश नहीं दिया, कोई गोलियां नहीं चलाई, एक तो ये। दूसरा जो चंदा चोरी की बात करी, आज ये क्लियर हो गया कि सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस उसके नेता जो अयोध्या नहीं गए, आज जहां वो मंदिर में चंदा चढ़ा रहे थे, संसद में नाटक कर रहे थे, जो जूते पहन करके चढ़ाए, तो उनकी आस्था सनातन या मंदिर नहीं है, जूते पहन के कोई भी मंदिर में नहीं चढ़ाता। दूसरा, जो पप्पू यादव केसरिया रंग के कपड़े पहन के बैठे और जो उन्होंने नाटक और ड्रामा करा, जो उन्होंने कहा हम नाटक कर रहे हैं ड्रामा कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, तो क्या करोड़ों लोग इस देश में जो साधु सन्यासी और सनातन धर्म से आस्था रखते हैं, जो साध्वीय साधु, उन सबका अपमान करा है इन्होंने? तीसरा, ये संसद में जाके ड्रामा करने जाते हैं तो फिर देश का संविधान, देश की संसद और ये ड्रामा, फिर चुनाव क्यों लड़ते हैं? 20 लाख लोग जो अधिकृत करके भेजते हैं, जाओ हमारे लिए काम करो, गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, कमजोर युवा स्टूडेंट जैन जी के लिए, तो क्या ये वहां भी ड्रामा करना चाहते हैं? तो क्या ये देश के संविधान को कुछ समझते ही नहीं? देश के संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, संसद में जाके ड्रामा करेंगे, अंदर बिल पे बोलते नहीं है, चर्चा बस की नहीं है, 193 पे ये चलने

0: के लिए, और अगर कोई अच्छा सुझाव देते तो मिनिस्टर उसमें अमेंडमेंट करने में एडिशन कर सकते थे। वहां कुछ बोल नहीं रहे, वहां कुछ का कुछ गा रहे, कहां की ईंट, कहां का रोड़ा, भानुमती का कुनवा जोड़ा, वहां सनातन के खिलाफ बोल रहे हैं, वहां मनु और पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं, वहां इनके बस की नहीं है, और यहां ज्ञान बांट रहे टेलीविजन में बैठ करके।
1: अंजना जी,
2: अब आप आलोक जी जवाब दीजिए और उसके बाद से मैं अजय जी आपके पास आ रही हूं।
1: मैं
3: नौजवानों के भविष्य के साथ जिसने खिलवाड़ किया है, ऐसे पेपर लीक माफिया को छोड़ा नहीं जाएगा, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए,
4: कड़ी से कड़ी सजा मिले।
1: ये 2024 का मोदी जी का भाषण है नीट पेपर के बाद का, कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, छोड़ा नहीं जाएगा, और 3 महीने बाद सबको छोड़ दिया। दुर्भाग्य यह है कि आज भी मुद्दे को इधर से इधर भटका रहे हैं। मेरे सीधे सीधे 3 सवाल हैं। सीबीआई की 2 बार जांच हुई, क्या एनटीए के एक भी अधिकारी से सीबीआई पूछने गई सवाल? इनोवेटिव व्यू कंपनी जो पूरी तरह से सीक्रेसी बायोमेट्रिक्स की जिम्मेदार है, क्या उससे एक भी अधिकारी से किसी ने पूछा? विनीत जोशी जो एचआरडी के सेक्रेटरी थे, जिनको चुपचाप रातों रात हटा दिया, क्या सीबीआई ने एक बार भी उनसे जाकर पूछताछ की? पहला सवाल। दूसरा सवाल, 4.6% जीडीपी का बजट का हमारा एजुकेशन में था 2014 में, घटकर 2.6 रह गया, 2% जीडीपी का बजट घट गया, ये मतलब किसके इशारे पर हुआ और क्यों हुआ? गृह मंत्री जी, तीसरा सवाल, कहां पर गायब हैं वो बता दें जरा हमें, तो हम तो जानना चाहते हैं। चंदा चोरी नहीं हुई थी, चंदा डकैती हुई थी, और भाजपाइयों और आरएसएस के लोगों ने मिलकर की थी। जो वहां पर एसआईटी बनी उसके तमाम डॉक्यूमेंट उत्तर प्रदेश सरकार के पास हैं, उस रिपोर्ट को आप सार्वजनिक करवा दीजिए, पता चल जाएगा माल कहां कहां गया है, नागपुर कितना गया, दिल्ली कितना गया है और कर्नाटक कितना गया है, उसको सार्वजनिक करा दीजिए। सुना योगी जी के पास काफी माल हाथ लग गया है उनके आरएसएस के खिलाफ, और वो अब कह रहे हैं कि अब आरएसएस मुझे छू नहीं सकती, ऐसा हम तो सूत्रों से सुन रहे हैं। आप उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करा दीजिए, उसके बाद सनातन की बात कीजिएगा। चंदा चोरी से लेकर और जिस तरह से आप लोगों ने शंकराचार्य के साथ जो बिहेव किया था वो पूरे देश ने देखा है, महामानव साहब ने क्या क्या किया है वो भी पूरे देश ने देखा है। गलत समय पे मुहूर्त, आधे मंदिर का इनॉग्रेशन, चोरी तो होनी थी, गलत समय पे मुहूर्त आप कर रहे थे। अरे जिन लोगों ने प्रभु राम के मर्यादा पुरुषोत्तम राम के घर को डकैती डालने से नहीं छोड़ा, वो पेपर लीक और वोट चोरी नहीं करेंगे क्या? वोट चोरी की सरकार है, इनसे कोई उम्मीद नहीं है, इस सरकार को जाना होगा, गृहमंत्री को इस्तीफा देना होगा।
2: मैं अजय आलोक जी जवाब दीजिए, क्योंकि अब विपक्ष लगातार जो पुलिस एक्शन है उस पर हमलावर हो रहा है,
5: तो
2: और आपको इन सब के बीच अपनी सरकार को भी बचाते हुए आगे ले जाना है, लेकिन उससे भी बड़ा चैलेंज है छात्रों का विश्वास जीतना, ये डेफिसिट आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है।
5: देखिए, सबसे पहले तो आलोक जी को कहूंगा कि आलोक जी, एक कहावत है, कसाई के छाने से गाय नहीं मरती है, ठीक है ना? तो ये सरकार जानी होगी, इनको जाना होगा, आप मनाते रहिए, हम कहीं नहीं जाने वाले हैं, हम यही रहेंगे अगले 20-25 साल तक, चिंता मत कीजिए। विकसित भारत बनाने के पहले
1: भाजपाइयों ने गाय काटने की परमिशन दे दी।
5: दूसरी बात, मुझे आश्चर्य लगता है, जो जीवन भर सनातन विरोध करते रहे, जो जीवन भर सनातन को कोरोना कहते रहे, हिंदू धर्म का विरोध करते रहे, भगवा आतंकवाद कहते रहे, जो जिन्होंने अयोध्या को कभी प्रभु श्रीराम की नगरी नहीं कहा, वो आज मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्रीराम, जिन्होंने प्रभु श्रीराम की 80 रुपए एफिडेविट दिया, वो आज प्रभु श्रीराम मर्यादा आपके कानून से मुंह से सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन आज जो आप लोगों ने संसद में, जो आप लोगों ने कल किया है ना, जो हरकत, जो पप्पू यादव के साथ बैठ के देश के करोड़ों
1: भाजपा वाले
5: जो आपने सीधे चोट पहुंचाई, अगर औकात है, औकात है आलोक शर्मा, तो राहुल गांधी जी को बोलिए मस्जिदों में भी चोरी होती है, जरा मौलवी का ड्रेस धारण करके बैठ जाए और इसी तरह करें,
1: तुम्हारी औकात
5: मौलवी चोर होता है, और इसी तरह पप्पू यादव की तरह बोले कि मेरे खून में, मेरे धर्म में औकात है, तो किसी पादरी को बैठाइए, चर्च में भी चोरी होती है, कोई पादरी बोले कि हाँ मेरे खून में, मेरे धर्म में, सनातन का जो मजाक उड़ाया ना आलोक शर्मा, राहुल गांधी जी ने पप्पू यादव के साथ क्या औकात है तो ये करके दिखाओ, और नहीं तो कोई औकात नहीं है तुम लोगों की, ठीक है ना? 2009 से ये ड्रामा चल रहा है।
2: चलिए, हो गया, और ऐसे शब्द मत बोलिए अजय जी, आप भी मत बोलिए, आलोक जी आप भी मत बोलिए, अब इसको यहीं खत्म कीजिए, क्योंकि वैसे ही अब लोग ये पूछते हैं कि भाई इस तरह की भाषा कब तक टीवी डिबेट में चलती रहेगी। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, देखते रहिए आज।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के मैसूर के दौरे पर थे, जहां पर उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने श्री रामकृष्ण आश्रम में स्वामी विवेकानंद यूथ सेंटर विवेक स्मारक का उद्घाटन किया, साथ

0: उन्होंने स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद जनसभा को संबोधित किया और रोड शो में भी भाग लिया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग जमा हुए। मैसूरू के अपने संबोधन में पीएम मोदी ने युवा सामर्थ्य का जमकर गुणगान किया।
1: इसलिए राष्ट्र प्रथम ही सर्वोपरि मंत्र हो, मां भारती की सेवा ही जिनका जीवन लक्ष्य हो। साथियों, स्वामी विवेकानंद जी युवाओं की शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का मजबूत आधार मानते थे। उन्होंने स्वयं ये देखा था कि कैसे दुनिया के देश अपने युवाओं को शिक्षित बना रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से तब भारत गुलाम था। भारत के युवा भी गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। उस दौर से लेकर अब तक भारत के युवा ने एक लंबी यात्रा तय की है। भारत का जो युवा कभी जंजीरों में था, आज वो युवा दुनिया के विकास को गति दे रहा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है। किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से। आज भारत में दुनिया की तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन चुका है। किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से। आज भारत से बने डिजिटल सॉल्यूशंस दुनिया के अनेक देशों के लिए प्रेरणा बन रहे हैं। किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से। आज भारत सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की नई यात्रा पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। किसकी वजह से? भारत के युवा के सामर्थ्य से। आज भारत एआई, डीपटेक, स्पेस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के नए अध्याय लिख रहा है। किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से। अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है, भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है।
0: और अब रुकें छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
3: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद, लायन कश्मीर हनी।
2: असली शहद, असली स्वाद।
4: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: जब बात हो फसलों के बेहतर पोषण की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का न्यूट्रिजन। न्यूट्रिजन संपूर्ण पोषण का वादा, फसल मिले ज्यादा ज्यादा और ज्यादा।
2: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
3: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील टीएमटी से बना।
4: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील टीएमटी बार एकदम सॉलिड।
5: तक डिजिटल फर्स्ट चैनल्स, 11 बिलियन व्यूज, 85 मिलियन यूनिक व्यूअर्स, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर ब्रांड, रीजनल और हाइपर लोकल रीच। हर शहर हर कस्बे तक एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल करें।
6: न्यू एंटरप्रेन्योर्स केम अप, देयर वाज धीरूभाई अंबानी। He was a rag to riches story. He built industries. He built, you know, the whole nylon business, the textile, and then, of course, then into petrochemical.
7: There were others like him, but he was by far the biggest and the most prominent of them all. He was also the most controversial because of his business methods. We did the stories on him as a success. We did a story of him under pressure. It was a churn that was taking place, and it led to lots of stories.

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: बीस जुलाई का वो वाकया जब दिल्ली की सड़कों पर तूफान मचा था, देश की संसद के सामने प्रदर्शनकारियों की भीड़ खड़ी थी, खतरा था संसद की सुरक्षा पर, आशंका थी हजारों प्रदर्शनकारियों के संसद में घुस जाने की। संसदीय इतिहास में पहली बार संसद पर ऐसा खतरा मंडराया था। जोखिम की उस घड़ी में दिल्ली पुलिस का प्रदर्शनकारियों से आमना सामना होता है, सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के क्रम में प्रदर्शनकारियों पर एक्शन होता है तो जवाब दूसरी तरफ से भी होता है। छात्र घायल होते हैं तो खून पुलिस कर्मियों का भी बहता है, लेकिन कहानी सबके जहन में दर्ज होती है और दूसरी कहानी अनकही रह जाती है। अनकहा रह जाता है एक पत्नी का दर्द।
2: जब तक भी घर नहीं आए तो मेरी प्रतिक्रिया बहुत ही ज्यादा, मेरे लिए बहुत पेनफुल थी।
1: अनदेखा रह जाता है एक बेटे का जख्म।
3: उनके हेड पे लाइक स्टिचेस लग रहे थे 4। उसको देख के आई वाज लाइक रियली फ्रस्ट्रेटेड एंड मैं बहुत डरा हुआ था।
1: और अनजानी रह जाती है एक बिटिया की पीड़ा।
4: और उनकी यूनिफॉर्म पूरी खून से लाल थी, उन्हें ऐसे देख के हमें, हमारे लिए बहुत पेनफुल था।
2: कोई पत्थर का टुकड़ा हेलमेट टूटने के बाद उनके सर पर लगता तो शायद वो आज इस दुनिया में नहीं रहते।
1: दिल्ली पुलिस के ये परिजन सवाल पूछ रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस को विलेन क्यों बनाया जा रहा है, संसद में दिल्ली पुलिस पर शब्द बाण क्यों चल रहे हैं, कानून व्यवस्था बनाए रखना क्या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं। इन परिजनों ने जो कहानियां सुनाई वो भी कम दिल दहलाने वाली नहीं है। एसीपी के बेटे लक्ष्य कह रहे हैं कि वो भी एक स्टूडेंट हैं और उनके पिता कभी छात्रों के खिलाफ नहीं रहे, लेकिन उंगलियां उठी तो सिर्फ दिल्ली पुलिस की तरफ, आखिर क्यों। और दिल्ली पुलिस में एएसआई की बेटियां गुंजन पूछ रही हैं कि संसद में पुलिस वालों को क्रिमिनल क्यों कहा जा रहा है।
4: जब मैंने सोशल मीडिया खोल के देखा तो सोशल मीडिया पे मेरे ही पापा को क्रिमिनल बता रहे थे, और उसके अगले दिन ही जब मुझे पता चला कि जिन लोगों ने मेरे फादर पे अटैक किया था वो लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं अपना क्राइम वर्कशॉप करने।
1: और फिर सीमा का ये सवाल भी सुना जाना चाहिए।
2: 20 तारीख के बाद से आज तक यही नैरेटिव चलाया जा रहा है कि जो छात्र थे, जो छात्रों का प्रोटेस्ट था उसको कि पुलिस के द्वारा बर्बरता से छात्रों को पीटा गया, लेकिन ऐसा नहीं है, ये अलग एक प्रोटेस्ट का एक हिस्सा दिखाया जा रहा है।
1: दिल्ली पुलिस के इन परिजनों की अपनी आप बीती है, अपनी कहानी है और अपने सवाल हैं, जिन्हें भी समान शिद्दत और संजीदगी से सुना जाना चाहिए, यही इनकी अपील है। आज तक ब्यूरो।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
0: aajtak.com
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: नमस्कार, मैं हूं राजीव ढौंडियाल। शाम के 7 बजने वाले हैं आज तक के इस खास शो में। अगले आधे घंटे में दिन भर की सभी बड़ी खबरें होंगी। हम खबरों की शुरुआत करें उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। जेन जी को संदेश के बाद पीएम मोदी ने युवा शक्ति की बात की। मैसूर में कहा कि देश की तरक्की में इनका योगदान छात्रों को 21वीं सदी के लिए तैयार कर रही है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। चढ़ावा चोरों को लेकर पप्पू यादव के प्रदर्शन पर बीजेपी और साधु संतों ने खोला मोर्चा। वाराणसी में पप्पू, राहुल गांधी और अवधेश प्रसाद पर केस दर्ज। दिल्ली में भी एफआईआर की मांग। चेन्नई में परिसीमन को लेकर केंद्र पर बरसे राहुल गांधी। कहा यह बीजेपी की बड़ी साजिश, तमिलनाडु के लोगों के साथ विश्वासघात। पंजाब कांग्रेस में घमासान जारी। संगरूर में प्रदेश अध्यक्ष वड़िंग के सामने चन्नी समर्थकों ने जमकर की नारेबाजी। राज्य प्रभारी भूपेश बघेल की मौजूदगी में हंगामा। कॉमनवेल्थ गेम्स में आज भारत के महिला बॉक्सरों का कमाल। प्रीति पवार और जैस्मीन लंबोरिया बनी चैंपियन। भारत के खाते में कुल 8 गोल्ड। शो की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। दिल्ली में पप्पू यादव के खिलाफ बीजेपी ने शिकायत दर्ज करवाई है। साधु के वेश में प्रदर्शन करने को लेकर यह एफआईआर दर्ज करवाई गई और शिकायत में सांसद पप्पू यादव, विपक्ष नेता राहुल गांधी और अयोध्या से सांसद अवधेश सिंह का इसमें नाम है। हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के खिलाफ बांसुरी स्वराज के नेतृत्व में बीजेपी डेलीगेशन नई दिल्ली डीसीपी को कंप्लेंट देने के लिए पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में पहुंचा।
1: कल प्रोटेस्ट के नाम पे जो स्मांग माननीय सांसद पप्पू यादव जी, अवधेश प्रसाद जी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने जो स्मांग रचा है संसद के परिसर में, वो विरोध नहीं है, वो प्रोटेस्ट नहीं है, वो सनातन संस्कृति का उपहास है, वो संत समाज का परिहास है और वो भारत की परंपराओं पर अट्टहास है। और इसीलिए हम आज एफआईआर की मांग, दर्ज करने की मांग लेकर यहां पर पुलिस थाने आए हैं और हमने शीघ्र अतिशीघ्र इस मामले की जांच की रिक्वेस्ट भी करी।
0: संसद में साधु संतों के वेश में पप्पू यादव ने चंदा चोरी पर तंज वाला नाटक किया जिसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता शामिल हुए। अब पप्पू यादव के इस अभिनय पर संत समाज और हिंदू संगठन भड़के हुए हैं, जिसे लेकर कई जगहों पर प्रदर्शन भी जारी है।
2: ये गुस्सा है पप्पू यादव के उस तमाशे के खिलाफ जो संसद में उन्होंने साधु के भेष में किया। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं, जहां पप्पू यादव के पुतले फूंके जा रहे हैं, नारेबाजी की जा रही है।
3: हमारे समाज को, हमारे सनातन समाज को जो कर रहा है, हम माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि इसके ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एक्ट के अंतर्गत मुकदमा कायम करके जेल भेजें और इनके खिलाफ जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, संसद की सदस्यता भी समाप्त होना चाहिए।
2: दिल्ली के जंतर मंतर में विश्व हिंदू परिषद ने पप्पू यादव को लेकर सद्बुद्धि हवन किया।
4: तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर एक सांकेतिक सद्बुद्धि हवन जो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा यहाँ पर रखा गया, तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूंगा कि दिल्ली भर से जो संत लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हैं।
2: भोपाल में भी भारी संख्या में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, जहाँ पप्पू यादव के साथ राहुल गांधी और अखिलेश यादव का विरोध किया गया, पुतला जलाया गया।
5: कई वर्षों तक राम मंदिर का विरोध करते रहे, सफल नहीं हो पाए। जब कोर्ट से सफल नहीं हुए तो लोकतंत्र के मंदिर के बाहर राम मंदिर को, राम जी को बदनाम करने की जिन्होंने कोशिश करी, चाहे राहुल गांधी हो, पप्पू यादव हो या अखिलेश यादव हो, इस प्रकार से ड्रामा करके राम जी को जिन्होंने बदनाम किया, ये उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया जा रहा है।
2: उधर दिल्ली के जहांगीरपुरी थाने में सांसद पप्पू यादव के खिलाफ शिकायत दी। वहीं वाराणसी में भी संत समाज की ओर से पप्पू यादव पर एक मुकदमा दर्ज कराया गया है।
6: इसमें बीजेपी को घेरने के कहां से आ गई? इसमें बीजेपी का गेरुआ वस्त्र पहनने करके बाबा बन के घूमती है बीजेपी। आप बीजेपी को घेरो ना, किसने मना किया? आप बीजेपी से सवाल करो, बीजेपी के विपक्ष में आप बैठ जाओ, आप तमाम जो चीज़ें हैं उन पर, क्योंकि इनके पास तो कोई मुद्दे बचे नहीं हैं। तो अब यही मुद्दे उल्टे सीधे बचे हैं कि संतों का अपमान करेंगे। इन लोगों को ही लगता है कि संत समाज बीजेपी का समर्थन करती है, पर सत्य यह है कि संत समाज उसी का समर्थन करती है जो राम का समर्थन करती है, जो कृष्ण का समर्थन करती है, जो सनातन धर्म की रक्षा करती है।
2: इस बीच पप्पू यादव ने हंगामे के बीच इंस्टा पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो उन्हीं कपड़ों में पूजा करते नजर आ रहे हैं। वहीं पूरे मामले में पप्पू यादव की सफाई भी आई है। मेरा विरोध आस्था से नहीं, आस्था के नाम पर चल रही लूट से है। मेरा विरोध भगवा, हिंदू, हिंदुत्व, सनातन, पूजा पाठ और साधु संतों से नहीं है। इन सब का मैं सम्मान करता हूँ। मेरा विरोध सिर्फ उन चंदा चोरों से है जो धर्म और आस्था की आड़ में जनता की भावनाओं का शोषण करते हैं। आस्था का सम्मान हमेशा रहेगा, लेकिन चंदा चोरों के खिलाफ हमारी आवाज भी हमेशा बुलंद रहेगी। बहरहाल संसद में चंदा चोरी पर पप्पू यादव के नाटक ने नया सियासी घमासान शुरू कर दिया है। आज तक ब्यूरो।
0: जब इस पर बवाल मचा तो पप्पू की तरफ से इस पर सफाई भी आई है। क्या कुछ कहा है पप्पू यादव ने, सुनाते हैं आपको।
7: मेरे साथ बेचारे प्रखंड अध्यक्ष थे, बधाई उनको, मंत्री हो गया, अच्छा काम करे। नौटंकी वाले थे तो फिर मेरे साथ भी कभी थे, उनसे पूछ।
8: आपको नहीं लगता कि आपने कुछ गलत किया है इस पूरे?
7: हम कुछ गलत किए? मतलब सनातन और मंदिर के सारे पैसे को लुटेरे को उजागर करना और उसके खिलाफ लड़ना गलत है। मंदिर की रक्षा करना गलत है, मंदिर के पैसे की रक्षा करना गलत है। देश के 100 करोड़ का जो आस्था है मंदिर के प्रति, उसकी रक्षा करना गलत है। हनुमान जी को नचाना सही है, गुड्डी में राम को उड़ाना सही है। धन्यवाद।
0: अब बात पीएम मोदी के नए वीडियो संदेश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार देर रात एक बार फिर से जेन जी को बड़ा मैसेज दिया। रात तकरीबन 11 बजे के बाद पीएम मोदी ने इंस्टाग्राम पर वो लाइव आए जहां पर उन्होंने अभद्र टिप्पणी करने वाले बच्चों को माफ करने की बात कही।

0: 31 जुलाई की रात पीएम मोदी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट कर युवाओं को माफ कर दिया।
1: जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है।
0: हालांकि पीएम मोदी ने लड़कियों की भाषा पर हैरानी जताते हुए कहा कि जिस तरह कुछ बेटियों के मेरी माँ को गाली देते हुए वीडियो वायरल हुए उससे उन्हें कल्चरल शॉक लगा।
1: एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है।
0: हालांकि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और शिवसेना यूबीटी जैसे दल गाली देने वाले युवाओं को माफ कर देने वाले वीडियो पर भी हमलावर दिखे।
2: उनको ये पूछना चाहिए क्या इस देश के छात्र उनको माफ करेंगे? उनकी वजह से 35 दिन छात्रों को परेशान होना पड़ा, खुले छत के नीचे सोना पड़ा, लाठियां खानी पड़ी, पैलेट गन झेलनी पड़ी। प्रधानमंत्री जी को छात्र माफ करेंगे या नहीं, उनको देश के छात्रों से पूछना।
3: वाइट पद्धति ने पुरुष पोलिसांकडनं त्यांचे कपडे फाडले गेले, ज्या पद्धतीने तो व्हिडिओ मी पाहिला, एक ती मुलगी पुढे जाते आणि तो पोलीस पाठवून कसं तो मला बोलायला सुद्धा लाज वाटते। ज्या मुलांनी नीटच्या परीक्षेचा पेपर फुटला म्हणून आत्महत्या केली त्यांची पहिली माफी यांनी मागायला पाहिजे।
0: जहां बीजेपी कह रही है कि पीएम मोदी को 25 सालों में न जाने कितनी गालियां दी गई फिर भी वो विचलित नहीं हुए, वहीं आम आदमी पार्टी बोली बीजेपी और पीएम मोदी को विक्टिम कार्ड खेलकर उसका सियासी फायदा उठाना बखूबी आता है।
4: देखो मोदी जी बहुत बड़े हृदय के व्यक्ति हैं और तभी शायद यहां तक पहुंचे हैं। और जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं पिछले 25 साल में मोदी जी जब से मुख्यमंत्री रहे, प्रधानमंत्री रहे, जिस प्रकार से उन्होंने उनके ऊपर विपक्ष के द्वारा जो निजी हमले हुए, कभी उनको मौत का सौदागर कहा गया, कभी चौकीदार चोर है, कभी किस प्रकार से घृणित आरोप उनके ऊपर लगाए गए, निश्चित रूप से एक ये नई शुरुआत है। और मोदी जी ने जिस प्रकार का आह्वान किया है कि हम लोग देश के एक साथ लेकर देश को आगे बढ़े,
5: पूरे देश की मानसिकता को आपने दूषित कर दिया है। मैं कोई ट्वीट करता हूं उसके नीचे इतनी भद्दी भद्दी टिप्पणियां, लाखों गालियां। आज तक अगर मेरे सारे ट्वीट उठा लिए जाए और उसके नीचे की गालियां उठा ली जाए जो आपके समर्थक आपके लोगों ने दी है, लाखों लाख गालियां दी है, मां की बहन की गालियां। मेरी आदत नहीं है रोने धोने की, आपकी आदत है। आपको कुछ भी होता है आप उसको कैश कराने के चक्कर में लग जाते हैं।
0: फिलहाल पीएम मोदी के माफी वाले वीडियो पर सियासी महाभारत थमती नहीं दिख रही। आज तक ब्यूरो।
6: पीएम मोदी आज आंध्र प्रदेश के दौरे पर पहुंचे जहां उन्होंने विजयनगरम जिले के भोगपुरम में अल्लूरी सीताराम राजु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इसके बाद आयोजित जनसभा में पीएम मोदी ने कांग्रेस पार्टी को निशाने पर लिया। पीएम मोदी ने कहा कि पहले के एयरपोर्ट एक परिवार के नाम पर होते थे।
7: पहले जब एयरपोर्ट बनते थे तो एयरपोर्ट के नाम एक ही परिवार के नाम पर चढ़ जाते थे। हमने इस परंपरा को बदला। हमने अयोध्या में एयरपोर्ट का नाम वाल्मीकि के नाम से जोड़ा। हमने पंजाब में संत रविदास जी के नाम से एयरपोर्ट का नाम जोड़ा। और साथियों, केंद्र की एनडीए सरकार ने निर्णय किया है कि इस नए एयरपोर्ट का नाम श्री अल्लूरी सीताराम राजू के नाम पर होगा। आंध्र प्रदेश का जो भी नागरिक इस एयरपोर्ट से यात्रा करेगा, देश और दुनिया का जो भी नागरिक इस एयरपोर्ट से यात्रा करेगा उसे अल्लूरी सीताराम राजू जी के नाम से जनसेवा और राष्ट्र सेवा की प्रेरणा मिलेगी।
6: अब एक बड़ी खबर इसे मैं आपको पंजाब से देते हैं। पंजाब कांग्रेस में मची खींचतान थमने का नाम नहीं ले रहे और खींचतान की अब एक तस्वीर सामने आई जहां पंजाब कांग्रेस प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा वडिंग और चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थक आमने सामने आ गए। संगरूर में हर बूथ कांग्रेस मजबूत कैंपेन चल रहा था, इसी के तहत पंजाब कांग्रेस के कार्यक्रम में यह हंगामा हो गया जहां पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल भी मौजूद थे जिनके खिलाफ भी चन्नी समर्थकों ने नारेबाजी की। पिछले काफी समय से राजा वर्डिंग और चन्नी के समर्थकों के बीच में खींचतान चल रही है, नाराजगी है जिसे दिल्ली में आला कमान भी सुलझाने की कोशिशों में लगा हुआ है, लेकिन अभी तक इस तस्वीर से दिखाई देता है कि अभी तक आला कमान भी सफल नहीं हुआ है क्योंकि हंगामा नाराजगी दिखाई दे रही है और सार्वजनिक जगहों पर अब दिख रही है।
8: ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਕਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਵੋਟਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੇ ਫਿਰ ਵਰਕਰ ਸੋਚਦਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਲੰਘਣ ਜਾਣ।
9: ਨਾਲੇ ਚੁਣਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਬਟਾਲੀਅਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀ ਚੁਣਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣਨਾ ਸੀਐਮ ਨੂੰ। ਸੀਐਮ ਚਿਹਰਾ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤੂਗੀ, ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤੂਗੀ ਨਹੀਂ।
8: ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਉਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰਾ ਚੰਨੀ
10: ਚਾਹੀਦਾ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਐਲਰਜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
6: अब बात यूपी में बन रहे बटेश्वर कॉरिडोर की जिसके निर्माण में समाजवादी पार्टी ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया तो राजनीति गर्मा गई। बीजेपी ने विपक्षी दलों के हमले पर पलटवार किया।
11: ये तस्वीरें आगरा में बन रहे बटेश्वर कॉरिडोर की है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इन तस्वीरों को साझा किया और कॉरिडोर के निर्माण में भारी अनियमितता, गड़बड़ी और भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया। साथ ही दावा यह भी किया कि शिकायतकर्ताओं को धमकाया जा रहा है।
12: समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने बटेश्वर महादेव का एक वीडियो जारी करके सोशल मीडिया पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी पर साफ तरीके से कहा है कि बिना बेस के निर्माण के पीवीसी वहां पर सीमेंटेड की जा रही है, यानी कि खामियों की बात की है।
11: यूपी में राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर पहले ही संग्राम जारी है। संसद तक इसे लेकर जंग छिड़ी है। इस बीच समाजवादी पार्टी ने धर्म आस्था से जुड़े एक और मुद्दे को उठाकर यूपी सरकार को घेरने की कोशिश की।
13: देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार वैसे तो ऊपर से लेकर नीचे तक जो भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, लेकिन अब इन्होंने भगवानों को भी नहीं छोड़ा, इन्होंने मंदिरों को भी नहीं छोड़ा। आज जिस तरीके से बटेश्वर कॉरिडोर में जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है, जिस तरीके से मिलावट हो रहा है, जिस तरीके से निर्माण में अनियमितता हो रही है, उसको माने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने अपने पोस्ट में दर्शाने का काम किया। वीडियो फुटेजेस के साथ उन्होंने दर्शाने का काम किया।
14: भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में पहले भ्रष्टाचार होता है, फिर शिकायतकर्ताओं को धमकाया जाता है। बटेश्वर कॉरिडोर में भी यही हो रहा है, राम मंदिर के निर्माण में भी यही हो रहा है, चंदा चोरी में भी यही हो रहा है। जिस तरीके से एक्सप्रेस वे धस रहे हैं, उन सारी जगहों पर शिकायतकर्ताओं को धमकाया जा रहा है।
15: अखिलेश यादव जी की राजनीति अब केवल अफवाहों पर और आरोप पर तक सीमित रह गई। बिना किसी ठोस प्रमाण के वे कुछ भी कहते रहते हैं। अगर उनके पास कोई ठोस प्रमाण है तो निश्चित रूप से जांच एजेंसी को दें। हमारी सरकार हर विषय पर जांच कराने के लिए तैयार है।
11: विपक्ष के हमलों और बीजेपी के पलटवार के बीच बटेश्वर कॉरिडोर पर नई राजनीति शुरू हो गई। एक और धार्मिक क्षेत्र को लेकर विपक्ष और बीजेपी अब आमने सामने आ गए हैं। आशीष श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
6: अब आज जम्मू कश्मीर के कुलगाम से आई बड़ी खबर की। जम्मू कश्मीर के कुलगाम के केलाम इलाके में कल शाम को आतंकवादियों ने दो गैर कश्मीरी मजदूरों को गोली मार दी। आतंकी हमले में एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरे ने इलाज के दौरान दम तोड़ा। दोनों ही मजदूर छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। इस हमले के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है, सर्च ऑपरेशन भी जारी है।
16: एक बार फिर जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने मजदूरों को टारगेट किया। एक बार फिर गैर कश्मीरी मजदूरों को निशाना बनाकर आतंकी हमला हुआ। ये वारदात कुलगाम के केल्लाम इलाके में हुई जहां ईंट भट्टे पर काम करने वाले दो मजदूर आतंकी हमले में मारे गए।
17: रात में ये टारगेटेड अटैक हुआ जहां, जैसे आपने कहा, फिर एक बार नॉन लोकल जो लेबरर थे यानी कि मजदूर थे, एक जो ईंटों का कारखाना होता है वहां काम करते थे, और तकरीबन 8:30 बजे बाइक पे जो है दो आतंकी उनके करीब आए और गोलियों की बौछार कर दी। दोनों जो हैं काफी गंभीर रूप से घायल हुए, लेकिन एक की मृत्यु जो है मौके पे हुई, दूसरा उसको इवैक्यूएट किया गया हॉस्पिटल, और अभी खबर मिली है कि श्रीनगर के जो शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है वहां उनकी जो है मौत हो गई है। तो दो लेबरर अब इसमें मारे गए हैं। सुरक्षा एजेंसीज ने इसके बाद जो है पूरे इलाके को घेर के जो एसओपी रहता है तलाशी अभियान शुरू किया है, लेकिन 4 साल के बाद ऐसी जो है घटना हुई है, नई नहीं है। जैसे आपने कहा इससे पहले भी जो सॉफ्ट टारगेट्स हैं ये नॉन लोकल लेबरर्स, इनको टारगेट किया गया है।
16: वारदात की खबर मिलते ही सुरक्षा बल एक्शन में आए, पूरे इलाके की घेराबंदी दी और हमलावर आतंकियों की तलाश में चप्पे चप्पे की जांच शुरू हो गई। मजदूरों को टारगेट कर जम्मू कश्मीर में हुआ यह हमला इसलिए बेहद गंभीर और चिंताजनक है क्योंकि ऐसी आतंकी वारदात करीब 4 साल बाद दोहराई गई है, जिसके बाद से सुरक्षा एजेंसियां भी काफी चौकन्ना हो गई हैं। आतंकी संगठन लश्कर से जुड़े संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF कुलगाम में हुए हमले की जिम्मेदारी ली है, जिससे साफ है कि इस हमले की साजिश सीमा पार से रची गई।
17: फिर एक बार जो लश्कर का शेडो है द रेजिस्टेंस फ्रंट, उन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली है और साफ तौर पे इसके बाद सुरक्षा जो है काफी बढ़ा दी गई। हम श्रीनगर से यहाँ की तरफ आए, जगह जगह जो है चेक पॉइंट्स लगाए गए हैं और यहाँ भी जैसे आप देख सकते हैं सुरक्षा बलों के जवान जो है नाकाबंदी लगाई हुई है, पुलिस है, CRPF है, जो भी गाड़ी यहां से जा रही है उसको चेक किया जा रहा है और इंटेल बेस जो है सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन अभी जगह जगह चल रहा है। लेकिन साफ तौर पर ये चिंता का विषय है सुरक्षा एजेंसीज के लिए क्योंकि कोई ना कोई मॉड्यूल है, स्लीपर सेल है लश्कर का जो एक्टिवेट हो गया है, उनको साफ तौर पे उस तरफ से आदेश है कि आप एक्टिवेट हो जाइए, टारगेट्स को हिट कीजिए। और इससे पहले 2021-22 में एक सिलसिला चला था जहां कश्मीरी पंडित और नॉन लोकल लेबरर्स को टारगेट किया गया था, बिल्कुल इसी तरीके से ज्यादातर दक्षिणी कश्मीर में, और इस बार फिर एक बार ये सिलसिला जो है शुरू होता दिख रहा है।
16: जम्मू कश्मीर में जो दो मजदूर आतंकी हमले में मारे गए वो दोनों ही छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। छत्तीसगढ़ के CM विष्णुदेव साय ने इसे कायराना हमला करार करते हुए मजदूरों की मौत पर शोक जताया है। उधर सुरक्षा बल लगातार आतंकियों की तलाश में लगे हैं ताकि टारगेट किलिंग करने वाले आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। कुलगाम से मीर फरीद आज तक।
6: दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए लक्ष्मी योजना की शुरुआत कर दी है। आज से योजना के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है और पहले दिन 1000 से ज्यादा महिलाओं ने इसके लिए आवेदन किया है।
18: दिल्ली सरकार की महत्वाकांक्षी योजना दिल्ली लक्ष्मी योजना की आज से शुरुआत होने जा रही है और आज से रजिस्ट्रेशन जो है वो दिल्ली के तमाम इलाकों के अंदर आज से शुरू होंगे, जिसकी शुरुआत दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने की है। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये DM ऑफिस ईस्ट दिल्ली है, जहां पर इस तरीके के काउंटर्स जो है वो बनाए गए हैं ताकि दिल्ली की महिलाएं आकर के अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू कर सके। मैं आपसे जानना चाहूंगा मैम, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो है वो आप सबमिट कर रहे हैं और क्या
19: इसमें एज रिलैक्सेशन है, जो 21 साल से 60 साल के बीच में महिला जो है उस फॉर्म को फिल कर सकती है और इसमें मेन ये है कि वो 10 साल तक दिल्ली की निवासी हो और दिल्ली में वो रहती हो, किसी भी गवर्नमेंट या कॉन्ट्रेक्चुअल ये उसमें वो वर्किंग ना हो या उनके परिवार में कोई ऐसा बंदा नहीं हो वर्किंग, तो वो इसको अप्लाई कर सकती है।
20: आज दिल्ली में सभी 13 जिलों में हमारा जो रजिस्ट्रेशन कैंप है वो लगा हुआ है, बट ये सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन कैंप DM ऑफिस के लिए है। कोई भी बेनिफिशियरी अगर वो एलिजिबल है तो अपने घर पे रह के भी वो अपना पूरा फॉर्म भर पाएगा और सभी डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड है तो उसको कहीं पे जाने की भी जरूरत नहीं है, वो घर बैठे ही कर पाएगा।
6: अब बात कॉमनवेल्थ गेम्स के, जहां पर आज भारतीय धुरंधरों की सोने पर नजर है। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने 8वां गोल्ड मेडल जीत लिया है। जैस्मिन लंबूर यानी विमेन्स बॉक्सिंग के 57 किलोग्राम, प्रीति पवार ने 54 किलोग्राम कैटेगरी और सोनम राणा ने पैरा शॉटपुट में गोल्ड जीता है।

0: कॉमनवेल्थ गेम्स में आज का दिन भारत के लिए सुपर सैटरडे रहा। अभी थोड़ी देर पहले भारत की मुक्केबाज प्रीति पवार ने 54 किलोग्राम वर्ग में कनाडा के स्कारलेट डेलगाडो के खिलाफ शानदार जीत हासिल कर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इसके फौरन बाद जैस्मीन ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीतने का गौरव हासिल किया। इन कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का यह 7वां स्वर्ण पदक था। इससे पहले पुरुषों के ट्रिपल जंप में भारत के प्रवीण ने सिल्वर और सिल्वा प्रभु ने ब्रॉन्ज जीता। जूडो में हर्ष सिंह ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भार वर्ग में सोना जीता, जबकि अस्मिता डे ने महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में देश के लिए गोल्ड और यामिन ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में सिल्वर मेडल जीता।
1: जब कल आपको पोडियम पर खड़े होने का मौका मिला और राष्ट्र का मजा, आई एम श्योर मतलब उससे ज्यादा खुशी के पल आपके लिए नहीं होंगे और देशवासियों के लिए भी, बट एज एथलीट आपकी जर्नी कैसी रही?
2: बहुत अच्छी रही सर, पूरे इतने देशों के सामने, मतलब मेरे इंडिया देश के, मतलब जो नेशनल एंथम बजाए और मेरे फ्लैग सबसे ऊपर, मतलब ऊपर गए, तो मेरे को बहुत ही अच्छा गर्व फील हुआ है सर।
0: जेवलिन थ्रो में कल देर रात हुए फाइनल में भारत के स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा ने रजत पदक और यशवीर सिंह ने कांस्य पदक जीता।
3: मुझे अच्छा लगा कि भाई ऐसे एशियन गेम्स में हुआ था कि जेनोरी और मैंने जीता था, और काफ़ी खुशी है कि यशवीर ने ऐसी जगह पे अपना पर्सनल बेस्ट किया जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और बहुत अच्छा लग रहा है कि हम पोडियम पे हैं। बिल्कुल हमेशा खुशी रहता है कि नेशनल एंथम बजे, पर ठीक है, मैंने भी अपना सीजन बेस्ट किया है और कम बैक ठीक हो रहा है, अभी बाकी कॉम्पिटिशन भी हैं, तो काफ़ी खुशी है।
0: ग्लासगो में भारतीय खिलाड़ी लगातार अपना जलवा बिखेर रहे हैं और तिरंगे की शान बढ़ा रहे हैं। आज तक ब्यूरो। अब रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक,
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी। लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा, प्यार से परो
5: इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
7: From the biggest names in sports talk to the biggest moments in sports, this is NBC Sports Radio. Get your daily football fix with Mike Florio. Spend your mornings with Dan Patrick and the Danettes. And dive deep with Dan Le Batard. Live, unfiltered, and always on, Monday through Friday. Then when the games are on, we've got you covered with live events from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
8: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर, तरक्की का ऑलराउंडर।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं?
4: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
5: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबा केसरी, हिंट बड़े आराम से।
2: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
3: Today at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests.
4: Nobody expected that he would test within 3 months of taking over as Prime Minister.
5: Two more tests were conducted simultaneously on 13th May 1998.
4: Secretly fooled some of the best CIA experts, and that became the incredible story about the bomb makers, which made cover of India Today.
6: जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिस कहानी के बहुत अच्छे परिणाम हैं और बहुत दुखद परिणाम हैं। भारत एक राजमहल है, समृद्ध है, सोने की चिड़िया है। गहरी बात है वो ये है कि इस राजमहल के चारों तरफ झोपड़ पट्टियां हैं, झुग्गियां हैं, चुनौती वाले क्षेत्र हैं। भारत आए अंग्रेज, यहाँ के लोगों को देखा उन्होंने, जब यहाँ के ग्रंथों को ट्रांसलेट करना शुरू किया, पढ़ा उन्होंने कि ब्राह्मण का जन्म मुंह से हुआ है। ये डिपार्टमेंट बनाया ही गया था शोषण के लिए। कौन सा? पुलिस। किसने बनाया था? कॉर्नवालिस ने। और पुलिस डिपार्टमेंट की खास बात यह है कि जब उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट भारत में बनाया, तब वो डिपार्टमेंट ब्रिटेन में नहीं था। ज्यूडिशियरी, मॉडर्न ज्यूडिशियरी उन्होंने अपने फायदे के लिए बनाया। अंग्रेजी कानून, अंग्रेजी जज। तुम कल्पना कर सकते हो, आधुनिक काल से पहले LGBT सड़क पर आकर प्रदर्शन करें, इनको तोप में बांध के उड़ा दिया होता।
7: तो क्या सिर्फ अब हिस्ट्री सिर्फ जो बाहर से लोग आए थे यहाँ पे शासन करने के लिए, उनको विलन के रूप में दिखा रहे हैं? या फिर
6: जो भी सरकार सत्ता में आती है वो शिक्षे का इस्तेमाल करती है अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने। वंदे मातरम पे बहस हो रही है, हर दिन मंदिर मस्जिद पे बहस हो रही है, मुसलमान पे बहस। ये संसद बनी किस लिए? औरंगजेब जो था भैया, डेली 200 किलो जनेऊ तोलता था। कितना? 200 किलो भी, मतलब डेली वो कम से कम 10,000 ब्राह्मणों को मारता था, हिंदुओं को। मैं देखता हूँ मुसलमानों को और हिंदुओं को, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ। पहले मैं सोचता था पुलिस वाले यहाँ लगा के पॉइंट ब्लैंक से क्यों मारते हैं, क्योंकि यहाँ ताला लगा हुआ है, तो इसीलिए मारते हैं कि यहाँ मारे तो अगले जन्म में खुला हुआ रहेगा।
8: आपको लगता है कि आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद देश फिर बट सकता है?
6: इस बात को मैं रिपीटेडली कह चुका हूँ, एक विस्फोट होगा बेटा।
9: लेकिन आपके पढ़ाने के तरीके मुझे एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट लगता है कि आप जनता को ही बोल देते हैं कि जनता बड़ी बेवकूफ़ है, और फिर आप कहते हैं कि हमारे देश का युवा पढ़ना नहीं चाहता है।

0: जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बारिश से पहाड़ धड़क रहे हैं। पानी के प्रहार से चट्टान टूट रही है और साथ ला रही है मुसीबत। पिछले 48 घंटे में जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में बारिश हुई और जब पानी पहाड़ों से नीचे उतरा तो अपने साथ कई बड़े बड़े बोल्डर पत्थर लेकर आया। ये बांदीपोरा है जहां भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हुआ और फिर कुछ जगहों पर फ्लैश फ्लड की घटना हुई। बांदीपोरा के केनूसा और सदरकोट इलाके में फ्लैश फ्लड की वजह से सड़कों पर सैलाब आ गया। बांदीपोरा में कई घर फ्लैश फ्लड की चपेट में आ गए। तेजी से पानी आया और सब कुछ अपने साथ बहा ले गया।
1: अरे पानी आ गया, भागो, अरे भागो।
0: भारी बारिश की वजह से अमरनाथ की गुफा के पास भी फ्लैश फ्लड आ गया। बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा के आसपास के इलाकों में पहले से मौसम खराब था। ऊंचाई वाले इलाकों में हुई अचानक बारिश के बाद पानी की तेज धारा सीढ़ियों के साथ नीचे की तरफ बहने लगी, जिससे अफरा तफरी मच गई।
2: कश्मीर के साथ साथ जम्मू के अधिकतर पहाड़ी इलाकों में कल शाम से तेज बारिशें हो रही है। कश्मीर में जहां एक तरफ अमरनाथ यात्रा के आसपास भारी बारिश और नदियों की जलधारा बढ़ने के साथ आज की अमरनाथ यात्रा स्थगित कर दी गई है, उसी तरह दक्षिणी और उत्तरी कश्मीर में भी जो है कई नदी नाले उफान पर हैं। सोपोर और बांडीपोरा में भी कई जगहों पर तेज बारिश और क्लाउड बर्स्ट के कारण नदियों में जल स्तर बढ़ गया है।
0: शोपिया में कई जगह बादल फटने की घटनाएं हुई। मूसलाधार बारिश से शोपिया में कई गांव में अचानक बाढ़ आ गई, जिसकी वजह से कई लोग अपने घरों में कैद हो गए। कड़ी मशक्कत के बाद एसडीआरएफ की टीमों ने लोगों को उनके घरों से बाहर निकाला और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए, चारों तरफ मलबा बिखरा है, पानी जिस ओर निकला सब कुछ बहा ले गया। अशफवानी के साथ मीर फरीद, श्रीनगर आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

जेन जी को संदेश के बाद पीएम मोदी ने की युवा शक्ति की बात। मैसूरू में कहा देश की तरक्की में इनका योगदान। छात्रों को 21वीं सदी के लिए तैयार कर रही है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। चढ़ावा चोरी को लेकर पप्पू यादव के प्रदर्शन पर बीजेपी और साधु संतों ने खोला मोर्चा। वाराणसी में पप्पू यादव, राहुल गांधी और अवधेश प्रसाद पर केस। दिल्ली में भी FIR की मांग।

में परिसीमन को लेकर केंद्र पर बरसे राहुल, कहा ये बीजेपी की बड़ी साजिश, तमिलनाडु के लोगों के साथ विश्वासघात। पंजाब कांग्रेस में घमासान जारी, संगरूर में प्रदेश अध्यक्ष मनिंग के सामने चन्नी समर्थकों की जमकर नारेबाजी, राज्य प्रभारी भूपेश बघेल की मौजूदगी में हंगामा। कॉमनवेल्थ गेम्स में आज भारत की महिला बॉक्सरों का कमाल, प्रीति पवार जैस्मिन लंबोरिया बने चैंपियन, भारत के खाते में कुल 8 गोल्ड।

0: नमस्कार, विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव ढोंडियाल। विशेष में आज बात बारिश और बाढ़ की। इस समय देश के कई हिस्सों पर मानसून सक्रिय है। कुछ राज्यों में भारी बारिश से फ्लैश फ्लड जैसे हालात हो गए। कहीं पर पहाड़ टूटा तो कहीं नदियां पुल के आर पार बहने लगी, ऊपर से बहने लगी। नवसारी, खेड़ा, भरूच में हालात खराब हैं। खेड़ा में तो कुछ जगहों पर 4 फीट से ज्यादा पानी भर गया। सबसे ज्यादा प्रभावित गुजरात, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर हैं। इन राज्यों में पिछले कई घंटों से मूसलाधार बारिश हुई, जिससे जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लग गए। प्रशासन और राहत बचाव की टीमें अलर्ट हैं। लोगों को हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिश शासन कर रहा है।
1: गुजरात में फिर मूसलाधार बरसात। नवसारी, सूरत, भरूच, आणंद में मुसीबत। नवसारी में पूर्णा नदी की लहरें डरा रही हैं। पानी सड़क के आर पार बह रहा है। खेड़ा की कॉलोनियां पानी में डूब गई हैं। घरों की दहलीज तक पानी भरा है। खेड़ा के नाडियाड में अस्पताल में पानी भरा। अस्पताल आने जाने के रास्ते पर 5 से 6 फीट तक जल भरा।
2: ये जो पूरा इलाका है, तो यहाँ पर 6

0: और बस्तियों के बीचों बीच बह रहे हैं।
1: जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बारिश से पहाड़ दरक रहे हैं। पानी के प्रहार से चट्टान टूट रही है और साथ ला रही है मुसीबत। पिछले 48 घंटे में जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में बारिश हुई और जब पानी पहाड़ों से नीचे उतरा तो अपने साथ कई बड़े बड़े बोल्डर पत्थर लेकर आया। ये बांदीपोरा है जहां भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हुआ और फिर कुछ जगहों पर फ्लैश फ्लड की घटना हुई। बांदीपोरा के केनूसा और सदरकोट इलाके में फ्लैश फ्लड की वजह से सड़कों पर सैलाब आ गया। बांदीपोरा में कई घर फ्लैश फ्लड की चपेट में आ गए। तेजी से पानी आया और सब कुछ अपने साथ बहा ले गया। भारी बारिश की वजह से अमरनाथ की गुफा के पास भी फ्लैश फ्लड आ गया। बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा के आसपास के इलाकों में पहले से मौसम खराब था। ऊंचाई वाले इलाकों में हुई अचानक बारिश के बाद पानी की तेज धारा सीढ़ियों के साथ नीचे की तरफ बहने लगी, जिससे अफरा तफरी मच गई।
2: कश्मीर के साथ साथ जम्मू के अधिकतर पहाड़ी इलाकों में कल शाम से तेज बारिशें हो रही है। कश्मीर में जहां एक तरफ अमरनाथ यात्रा के आसपास भारी बारिश और नदियों की जलधारा बढ़ने के साथ आज की अमरनाथ यात्रा स्थगित कर दी गई है, उसी तरह दक्षिणी और उत्तरी कश्मीर में भी जो है कई नदी नाले उफान पर हैं। सोपोर और बांडीपोरा में भी कई जगहों पर तेज बारिश और क्लाउड बर्स्ट के कारण नदियों में जल स्तर बढ़ गया है।
1: शोपिया में कई जगह बादल फटने की घटनाएं हुई। मूसलाधार बारिश से शोपिया में कई गांवों में अचानक बाढ़ आ गई, जिसकी वजह से कई लोग अपने घरों में कैद हो गए। कड़ी मशक्कत के बाद एसडीआरएफ की टीमों ने लोगों को उनके घरों से बाहर निकाला और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए, चारों तरफ मलबा बिखरा है, पानी जिस ओर निकला सब कुछ बहा ले गया। अशरफ वानी के साथ मीर फरीद, श्रीनगर आज तक।
0: और अब बात गुजरात की करेंगे, जहां पर एक बार फिर बारिश ने कोहराम मचाया है। बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात वहां पर दिखाई दे रहे हैं। और अभी कुछ दिन पहले साउथ गुजरात में बहुत ज्यादा जिले प्रभावित हुए थे, कई शहरों में बाढ़ आ गई थी और एक बार फिर ऐसे ही हालात बन गए। सूरत, नवसारी, डांग, खेड़ा, भरूच जैसे जिलों में हाल बेहाल है।

गुजरात में एक बार फिर से भारी बारिश के बाद कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं और फिर से दक्षिण गुजरात के ही जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। नवसारी और डांग जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण अंबिका और पूर्णा नदी उफान पर है। डांग के सुबीर तालुका में करीब 8 इंच बारिश दर्ज होने के बाद पूर्णा नदी समेत अन्य नदी नालों में बहुत ज्यादा पानी भर गया, तो पूर्णा नदी का जलस्तर बढ़ने से गोदड़िया पुल के ऊपर से पानी बहता दिखाई दे रहा है। यह हालात बहुत खतरनाक हैं। आसपास के इलाकों में बाढ़ की आशंका बढ़ गई। नवसारी में प्रशासन अलर्ट पर है क्योंकि पूर्णा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। नवसारी शहर में लगातार बारिश के कारण कई इलाकों में जल भराव की स्थिति बन गई। इधर भावनगर में भी हालात बिगड़ने लगे हैं। यहां जिले के पालीताना, जेसर, तलाजा, सीहोर, बगदाना, सोनगढ़, गोघा, अलंग और

0: अन्य इलाकों में बारिश हुई। पालीताना में भारी बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया। सूरत शहर में भी शुक्रवार तड़के से ही मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। लगातार हो रही तेज बारिश के कारण शहर के कई निचले हिस्सों में जलभराव की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई। शहर के कई निचले इलाकों में सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया। गुजरात के खेड़ा जिले की सभी तहसीलों में भी शुक्रवार को सुबह से ही मूसलाधार बारिश जारी रही। नादियाद में भारी तबाही हुई। पूरा नादियाद शहर जलमग्न हो चुका है। सड़कें समंदर बन चुकी हैं और निचले इलाकों में जलभराव से इलाके टापू में तब्दील हो गए। सिर्फ 6 घंटे में ही 133 से 191 मिलीमीटर की बारिश दर्ज की गई।
1: जिस तरह से दो दिन पूरे गुजरात में हाई अलर्ट जारी किया गया है, हम अभी खेड़ा जिले के नड़ियाद में है। नड़ियाद में अब तक तकरीबन 7 इंच से ज्यादा जो है वो बारिश दर्ज की गई है, जिसके चलते जो निचले इलाके हैं वो प्रभावित हुए हैं। निचले इलाके में जिस तरह से जल भरा हुआ है, प्रशासन पहले से अलर्ट था, जिसके चलते पूरी व्यवस्था है जो की गई है, जिसके यहाँ पर जिस तरह से निचले इलाके में अस्पतालें आई हुई है, अस्पताल में आने जाने के लिए दर्दी जो है उनके लिए जो ट्रैक्टर ट्रॉली की जो है वो व्यवस्था की गई है, जिससे लोगों को आसानी रहे। साथ ही प्रशासन ने पहले से ही अपील कर दी थी कि लोग काम के अलावा बाहर न निकले। साथ ही जिस तरह से पूरे जो हालात है देख सकते हैं, निचले इलाके में जल भरा हुआ है।
0: चिंता इस बात की है कि मौसम विभाग ने अभी भी बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। प्रशासन कह रहा है कि जब तक कोई बेहद जरूरी काम ना हो घर से बाहर ना निकले। उधर भरूच में भी बारिश का रेड अलर्ट है। आसमान से जैसे आफत बरस रही है। शुक्रवार की सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है। निचले इलाके और मार्गों को बारिश के पानी ने जलमग्न कर दिया। भरूच, अंकलेश्वर, नेत्रंग, हासौट, जगड़िया, वालिया तहसील पानी पानी हो गई। जिले में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ एक्टिव है।
2: रेड अलर्ट के चलते सुबह से ही भारी बारिश के कारण आसमान से आफत रूपी बारिश ने पूरे जिले को पानी से लबालब कर दिया है। पिछले 10 घंटों में सबसे ज़्यादा नेत्रंग तहसील में 10.5 इंच बारिश बरस चुकी है, जिसके कारण मुख्य मार्ग और सभी जगह पे फिलहाल पानी ही पानी नजर आ रहा है। जनजीवन और यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है।
0: गुजरात के नर्मदा जिले में भी बुरा हाल है। यहाँ इतनी बारिश हुई कि करजन डैम से 50,000 क्यूसेक से भी ज्यादा पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से बाढ़ के हालात पैदा हो गए। भारी बारिश के कारण नर्मदा जिले के 28 गांवों को अलर्ट किया गया और 50 से ज्यादा लोग सुरक्षित स्थान पर लाए गए हैं। जिले के गरुड़ेश्वर तहसील में 5 इंच जितनी बारिश की वजह से गाँव को जोड़ने वाले कई रास्ते टूट चुके हैं। छोटा उदयपुर में अश्विन नदी में फंसे एक युवक को एनडीआरएफ टीम ने बचाया। युवक अपनी जान जोखिम में डालकर 4 घंटे तक 1.5 फुट की दीवार पर बैठा रहा था। पानी बढ़ता रहा लेकिन टीम ने आखिरकार युवक को बचा लिया।
3: हवामान विभाग की जो आगाही थी उसके अनुसार नर्मदा और छोटा उदयपुर में मूसलाधार बारिश हुई। आप तस्वीरों में देख पा रहे ये जो करजन नदी है, करजन नदी उफान हुए है क्योंकि जो करजन डैम है वहां से 50,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। इसके कारण नदी का फ्लो काफी बढ़ चुका है। साथ में छोटादेवपुर जिले के अंदर जो अश्विनी नदी है वहां पे एक आदमी का रेस्क्यू किया गया था, जहां पे वो पानी में फंस गया था। नर्मदा और छोटादेवपुर जिले में भारी बारिश के कारण गांवों के अंदर जो नदियां उफान पे है और खास तौर पे जो आदिवासी इलाके हैं उनको रेस्क्यू करके बाहर लाया जा रहा है।
0: आज तक ब्यूरो।
4: और यही हाल महाराष्ट्र के भी कई जिलों का है। महाराष्ट्र का एक हिस्सा ऐसा रहा है जहां बारिश कम हुई थी, लेकिन अब इन जिलों में भी ठीक ठाक बारिश हो रही है। नांदेड़, जलगाम, अकोला, अमरावती जैसे जिलों में अच्छी बारिश है, किसान खुश भी हैं, लेकिन बहुत सी जगहों पर बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं।
0: ये महाराष्ट्र के नांदेड़ की तस्वीर है जहां भारी बारिश हुई, नदियां उफान पर हैं। यहां किनवट तहसील के कांचली गांव में इस बीच एक बड़ी घटना हो गई। 32 साल का ग्राम पंचायत सेवक राजू रेड्डी डंडेलू बाढ़ के पानी में बह गया। पुलिस, राजस्व विभाग और स्थानीय ग्रामीणों ने कई घंटों तक संयुक्त रूप से रेस्क्यू अभियान चलाया और तब जाकर इस युवक का शव बरामद हुआ। बताया जा रहा है कि ये शख्स बाइक से जा रहा था, तभी बाढ़ का पानी पुल पर आ गया और राजू बह गया। नांदेड़ जिले में गुरुवार से ही बहुत बारिश हो रही है। सभी तहसीलों में एवरेज 35 से 40 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। ये भी नांदेड़ की तस्वीरें हैं। यहाँ 73 मंडलों में अतिवृष्टि हुई। सबसे ज्यादा बुरा किनवट और माहूर तहसील में हुआ है। शहर से गांव तक तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है, तो बाढ़ से कई गांव का संपर्क टूट गया है। लोगों के घरों में, गलियों में, कस्बों में पानी घुस गया है। कई जगह सड़कें धस गईं, कई जगह बड़े गड्ढे हो गए जहां लोगों की गाड़ियां फंस गईं। नांदेड़ शहर में अचानक सड़क धंसने से एक कार गहरे गड्ढे में जा गिरी। कार चालक प्रोफेसर चंद्रशेखर येगड़े ने किसी तरह अपनी जान बचाई। प्रशासन भी अब अलर्ट मोड पर है और ये है जलगांव, जहां 50 से ज्यादा घंटे हो गए और लगातार बारिश हो रही है। इसकी वजह से हथनूर बांध के 36 गेट खोलने पड़े। डैम से एक साथ पानी छूटा तो आसपास के कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। इस डैम से 78,823 मीटर क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। ये डैम भूसावल तहसील में तापी नदी पर बना है। बारिश इतनी हो रही है कि डैम के 36 गेट खोलने पड़े। अब प्रशासन सतर्कता बरतने की अपील कर रहा है। उधर अकोला और अमरावती में भी पिछले 30 घंटों से लगातार मूसलाधार बारिश जारी है। नदियां उफान पर आ गईं, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए, कई गांव और घरों में पानी घुस गया। अमरावती के नांदगांव में मोखर नदी में अचानक बाढ़ आई, जिसमें 7 लोग फंस गए थे। जिला आपदा प्रबंधन की रेस्क्यू टीम ने करीब 30 मिनट के ऑपरेशन के बाद सुरक्षित बाहर निकाला। किसानों की हजारों हेक्टेयर में कपास, तुअर और सोयाबीन की फसलें पानी में डूब गईं। उधर अकोला के बालापुर में मन, महेश और भिकुंडी नदी उफान पर है। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और नदी से दूर रहने की अपील की है।
5: विदर्भ के पश्चिम इलाके में जो है, अमरावती डिवीजन में जो है, पिछले 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश के चलते जो है वो कई नदियां जो है उफान पर हुई है, कई नदियों का जलस्तर बढ़ा है। हम फिलहाल है अकोला के बालापुर तहसील के भीकुंड नदी पर, जहां आप देख सकते हो कि इसका जलस्तर जो है तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है।
0: आज तक ब्यूरो
4: विशेष में रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: नीट पेपर लीक पर छात्रों का प्रदर्शन, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और सियासत के बीच पीएम मोदी लगातार जेंजी से संवाद कर रहे हैं। नए कानून के तहत लगातार शिक्षा व्यवस्था में सुधार का भरोसा दे रहे हैं और अब इस कड़ी में पीएम मोदी ने जेंजी से संवाद में उस मुद्दे का जिक्र किया जिसने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पूरे देश को शर्मसार कर दिया। शुक्रवार देर रात पीएम मोदी एक बार फिर इंस्टाग्राम पर लाइव आए, जंतर मंतर पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर बात की और युवाओं की भाषा पर चिंता जताई।
1: जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया।
0: पीएम मोदी ने नई पीढ़ी की ऐसी भाषा पर दुख जताया, इसे समाज के लिए चिंताजनक बताया, सुधार की अपील की और गाली देने वाले छात्रों को माफ करने की बात कही।
1: हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं? लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं।
0: बीते 9 दिनों में छात्रों और पेपर लीक के मुद्दे पर पीएम का ये 5वां वीडियो संदेश है। एक बार फिर पीएम ने छात्रों से संयम, संवाद और सकारात्मक रास्ता अपनाने की अपील की।
1: मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है।
0: नीट पेपर लीक के बाद छात्रों को जबरदस्त गुस्सा था जिसका असर जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन में साफ दिखा। पुलिस छात्रों में झड़प के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई, लेकिन इस प्रदर्शन के बीच सरकार ने एक्शन में तेजी की। नया बिल आया, कानून बना, पेपर लीक रोकने के खाके तैयार हुए। अब पीएम मोदी उन छात्रों को सही दिशा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने आंदोलन के दौरान भाषा की सीमा पार की। आज तक ब्यूरो।

0: presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: sports all the time, right here on TuneIn. Catch live sports talk, expert analysis, and nonstop discussion from your favorite stations, like ESPN Radio.
1: Not missed out on one player that the Yankees wanted.
0: Big 12 Radio.
2: Today is Big 12 Insiders game day. We're breaking
0: and
2: down.
0: Talk sports.
3: I just can't see a turnaround in the way that we're going to perform and result.
0: And much more. Get your head in the game and never miss a minute of the action. Just search sports or ask your device to play your favorite sports talk station on TuneIn.
4: आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक वीडियो आया जिसमें फिर से वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि उनको गालियां दी गई, मां की गालियां दी गई। बिल्कुल नहीं देना चाहिए किसी की भी मां की गाली देना, इससे बड़ा अपराध कोई नहीं हो सकता। वाकई नहीं देना चाहिए। के साथ कहना चाहता हूं, हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, एक दिन मेरा मोबाइल अपने पास रखिए आप। एक दिन प्रधानमंत्री जी, सुबह से लेकर शाम तक मुझे मां की गालियों के कई फोन आपके समर्थक करते हैं। कोई कहता है इसको समझा लो, पेट्रोल से जलाकर इसको मार देंगे। कोई मां की गाली देता है, कोई बहन की गाली देता है। एक दिन मेरा फोन रखिए ना, निवेदन कर रहा हूं आपसे, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, शर्म आएगी आपको। कैसा समाज आपने बनाया प्रधानमंत्री जी, पूरे देश की मानसिकता को आपने दूषित कर दिया है।
5: देखिए प्रधानमंत्री जी का हृदय कितना बड़ा है, कल के उनके वीडियो संदेश में फिर से स्पष्ट हो गया। प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ बच्चों ने जंतर मंतर से बहुत ही गलत भाषा का प्रयोग किया, अभद्र भाषा का प्रयोग किया, गालियां दी प्रधानमंत्री जी को, मां तक की गालियां दी। लेकिन कहते हैं प्रधानमंत्री जी की यही बचपना होता है जब आप कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, और कोई दूसरा अभी शासक होता या प्रधानमंत्री होता तो कड़ी कार्रवाई कराता। भाई आपको याद है छात्र विद्यार्थियों के आंदोलन जब चल रहा था 74 में, तो 75 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी। लेकिन देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी का बड़ा हृदय और बच्चों के प्रति प्यार कि उन्होंने सबको माफ करते हुए कहा कि आइए बच्चों देश के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दें, देश के लिए विकास में अपना सहयोग दें और देश को और मजबूत बनाएं। गर्व है मुझे अपने प्रधानमंत्री।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

जेन जी को संदेश के बाद पीएम मोदी ने की युवा शक्ति की बात। मैसूरू में कहा, देश की तरक्की में इनका योगदान छात्रों को 21वीं सदी के लिए तैयार कर रही है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। चढ़ावा चोरी को लेकर पप्पू यादव के प्रदर्शन पर बीजेपी और साधु संतों ने खोला मोर्चा। वाराणसी में पप्पू, राहुल गांधी और अवधेश प्रसाद पर केस दर्ज। दिल्ली में भी एफआईआर की मांग। चेन्नई में परिसीमन को लेकर केंद्र पर बरसे राहुल, कहा यह बीजेपी की बड़ी साजिश, तमिलनाडु के लोगों के साथ विश्वासघात। पंजाब कांग्रेस में घमासान जारी, संगरूर में प्रदेश अध्यक्ष बड़िंग के सामने चन्नी समर्थकों की जमकर नारेबाजी, राज्य प्रभारी भूपेश बघेल की मौजूदगी में हंगामा। बाढ़ बारिश से आधे हिंदुस्तान में कोहराम, जम्मू कश्मीर में फिर फटा बादल, गुजरात के नवसारी, बड़ोदरा में सैलाब, असम में अब तक 82 की मौत।

एक दिन में आप कितने किलोमीटर चल सकते हैं? 10, 20, 25, पर अगर बिना रुके, बिना बैठे या बिना आराम किए, बिना कुछ भी खाए, नंगे पांव कंधे पर वजन उठाकर कितनी दूर तक आप चल सकते हैं? नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आज ये अविश्वसनीय सवाल आपसे पूछने की वजह है सावन के महीने की शुरुआत और सावन में कांवड़ की अद्भुत परंपरा। क्या आप जानते हैं कि देश के पूर्वी राज्यों में डाक बम का ऐसा प्रचलन है जहां एक भक्त 24 घंटे से कम समय में 105 किलोमीटर की यात्रा कंधे पर कांवड़ के साथ पूरी करता है, बिना रुके, बिना कुछ भी खाए, बिना सुस्ताए, अकेले। अलग अलग राज्यों में अलग अलग परंपराएं हैं, वो हम आपको बताएंगे और सावन के महीने में अपने साथ अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय कांवड़ यात्रा कराएंगे।

0: अलग अलग, अंदाज अलग अलग, शहर अलग अलग, परंपराएं अलग अलग, लेकिन मंजिल सबकी एक, महादेव। रास्ते आस्था के पवित्र पथ बन जाते हैं, भक्त खुद श्रद्धा का रूप बन जाते हैं। ये है सावन के महीने में भोले के भक्तों की कावड़ यात्रा, यानी दुनिया की सबसे बड़ी अद्भुत धार्मिक यात्रा, जिसके हर कदम पर कोई ना कोई अविश्वसनीय अकल्पनीय मान्यता है।
1: बाबा का असीम कृपा है हम लोगों को, 5 साल से आ रहे हैं लगातार।
2: बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, टेंशन फ्री लग रहा है, यहाँ किसी चीज का टेंशन नहीं है।
3: हम 350 किलोमीटर हरियाणा में जाएंगे, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, हरिद्वार से कावड़ उठा के।
0: अविश्वसनीय है, 24 घंटों के अंदर डाक बम कांवड़ यात्रियों का 105 किलोमीटर की यात्रा दौड़कर तय करना।
4: हम लोग लगभग 22 किलोमीटर आ चुके हैं।
5: हर की पौड़ी से हम कावड़ उठाए और बड़ेसर धाम सिक्कर, जो राजस्थान में मशहूर है बड़ेसर धाम, वहाँ पर हमारी कावड़ चढ़ेगी।
0: अकल्पनीय है, नंगे पैर सैकड़ों किलोमीटर कंधों पर कावड़ लेकर आस्था के नियमों के अनुसार चलना। लेकिन अद्भुत है, शिव भक्तों को शरीर के सहने की सीमाओं को तोड़ते हुए जलाभिषेक की तपस्या करते हुए देखना। कोई निकल पड़ा है महादेव का जलाभिषेक करने, दंडवत मुद्रा में सैकड़ों किलोमीटर लौटते हुए चलने के लिए। कोई निकल पड़ा है कावड़ को कंधे पर रखकर हजारों किलोमीटर तक बिना रुके, बिना आराम किए, बस चलते रहने के लिए। न कोई टिकट, न कोई तय आयोजन, लेकिन करोड़ों शिव भक्त निकल पड़ते हैं अद्भुत अनुशासन के साथ उस यात्रा पर, जो जितनी अद्भुत है उतनी ही चमत्कृत करने वाली थी।
6: आज से 10-12 साल पहले कावड़ लेने आए थे और जब से लेके जा रहे हैं, भोले बाबा की फुल कृपा जी।
7: और यहाँ पर आने से मेरी बहुत सी मनोकामना सिद्ध हुई है और मैं यही कामना करूंगा कि जो भी यहाँ भक्त आते हैं, मन से भाव से आए और जल अर्पण करें और बाबा का स्मरण करें, तो उसकी सारी मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण हो जाए।
0: नमः पार्वती पते। हम बताएंगे कि वो कौन थे जिन्होंने उठाई थी पहली कावड़। हम बताएंगे कि क्या है बाबा बैद्यनाथ में जलाभिषेक की अद्भुत महिमा। हम बताएंगे कि क्यों सावन में हर शिवालय महातीर्थ बन जाता है। हर हर महादेव। सबसे पहले सबसे अकल्पनीय परंपरा के बारे में बताते हैं जो बिहार झारखंड के क्षेत्र में प्रचलित है। यूं तो बाकी हिस्सों में भी डाक कांवड़ की परंपरा है जो 24 घंटे में पूरी करनी होती है, लेकिन वहां एक समूह यानी एक ग्रुप साथ रहता है। पर बिहार झारखंड में एक अकेला महादेव का भक्त, जिन्हें कहा जाता है डाक बम, ये भोले के वीवीआईपी भक्त होते हैं।

0: बाबा के बुलावे पर दौड़े चले जा रहे हैं। पांव में कंकड़ चुभे तो भी जय शिव शंकर, पांव में छाले पड़े को तब भी जय शिव शंकर। बिहार झारखंड के बीच सावन के महीने में आस्था की ये ऐसी अद्भुत तस्वीर है जो संसार में कहीं और नहीं मिलती। सुल्तानगंज से गंगा जल भरकर देवघर बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग पर जलाभिषेक करना है, वो भी 24 घंटों के भीतर। इस बीच 105 किलोमीटर की यात्रा तय करनी है, वो भी बिना रुके, न नींद न भूख न पल भर आराम, न दौड़ने की गति जरा भी धीमी। ये है विश्व की सबसे अनोखी भक्ति का अद्भुत अविश्वसनीय अकल्पनीय रूप, डाक बम। 24 घंटों के अंदर 105 किलोमीटर की यात्रा नंगे पांव तय करनी है। रास्ते में पड़ने वाली जलेबिया पहाड़ की खड़ी चढ़ाई भी हौसले तोड़ नहीं सकती। सुइया पहाड़ के सुई जैसे चुभने वाले नुकीले पत्थर पैरों को लहूलुहान तो कर सकते हैं, लेकिन महादेव के प्रति भक्ति के भाव को जरा भी डिगा नहीं सकते। इसी विश्वास के साथ डाक बम कांवड़िए ये असाधारण अकल्पनीय आध्यात्मिक यात्रा पूरी करते हैं।
1: डाक बम की विशेषता यही है कि जाकर के आपको सुल्तानगंज में जाह्नवी गंगा उत्तरवाहिनी से जल लेके 24 घंटे के अंदर बाबा बैद्यनाथ को जलार्पण करना है। ये बहुत ही कठिन यात्रा है, भूख पेशाब पैखाना सब कुछ रोकते हुए आपको वहां पहुंचना है, और जो यात्री सफलता पूर्वक इस कर्म को कर लेते हैं उनकी हर एक मनोकामना बाबा बैद्यनाथ पूरा करते हैं। बाबू ये महत्व है इसका, और ये सबसे संभव नहीं है। जाने का तो हजारों रोज जाते हैं डाक बम, लेकिन कुछ व्यक्ति ही, कुछ यात्री ही जाकर के सक्सेस हो पाते हैं।
0: कहा जाता है कि डाक बम के कांवड़िए यानी वो भक्त जिन्हें स्वयं महादेव बुलाते हैं, भक्त भगवान का संदेशा पाकर दौड़े चले जाते हैं और जलाभिषेक कर अपनी श्रद्धा अर्पण करते हैं। ये पूरी यात्रा अद्भुत धार्मिक मान्यताओं का विराट रूप है।
2: मन में जो आदमी अपना संकल्प करता है कि हमारी मनोकामना को भगवान पूर्ण कर दे, संकल्प भोलेनाथ पूर्ण कर दे, तब हम डाक जल चढ़ाएंगे। उनके माता पिताजी ने कबूल किया था कि हम डाक जल को हमारा पुत्र चढ़ाएगा, हम चढ़ाएंगे, हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए। तो भगवान भोलेनाथ उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, लोग डाक जल को प्रदान करते हैं, बाबा भोलेनाथ पर अर्पित करते हैं ले जा करके, और डाक जल देने से मन स्थिर हो जाता है।
0: डाक बम की कांवड़ यात्रा प्रारंभ होती है सुल्तानगंज में उत्तर वाहिनी गंगा के तट पर स्थापित अजगैबीनाथ प्राचीन मंदिर से और समाप्त होती है देवघर में बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग पर जलाभिषेक के साथ। अजगैबीनाथ मंदिर के बारे में कहा जाता है कि वो त्रेता युग के समय से है। अज का अर्थ अजन्मा, गैबी का अर्थ अदृश्य और नाथ का अर्थ स्वामी, यानी अनंत अविनाशी अदृश्य शिव का स्थान। जहाँ ये मंदिर है वहाँ गंगा उत्तर वाहिनी है। वाराणसी के अलावा सिर्फ यही एक स्थान है जहाँ गंगा उत्तर की ओर बहती है। भगवान शिव को उत्तर दिशा का स्वामी भी माना जाता है। सावन में भक्त इसीलिए सुल्तानगंज से ही गंगा जल भरते हैं, और भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में बिहार झारखंड में बाबा बैद्यनाथ धाम ही एकमात्र ज्योतिर्लिंग है, तो वही जल चढ़ाते हैं। डाक बम कांवड़ की मान्यताएं और संकल्प यदि अद्भुत लग रहे हैं तो आपको इसके अविश्वसनीय और अकल्पनीय पहलू से भी परिचित कराते हैं। खेलों में लंबी दूरी का जो मैराथन रेस होता है उसमें एक एथलीट को 42 किलोमीटर तक दौड़ लगानी होती है। खिलाड़ी रास्ते में एनर्जी ड्रिंक्स पी सकते हैं। वही एक डाक बम गंगा जल लेकर 105 किलोमीटर लगातार दौड़ता है। अगर वो रास्ते में कुछ खाएगा या पिएगा तो कांवड़ अशुद्ध हो जाएगा। रुकना, थकना, यहाँ तक कि शौच जाना भी मना है। और कांवड़ इंसान या जानवर किसी के शरीर को छू भी गया तो तपस्या बेकार। मुजफ्फरपुर की अब रिटायर्ड शिक्षिका कृष्णा बम ने लगभग 4 दशक तक डाक बम के रूप में जलाभिषेक किया। एक समय में वो एक लौती महिला होती थी जो 105 किलोमीटर की यात्रा करती थी, और वो भी केवल 17 से 18 घंटों में पूरा कर लिया करती थी, यानी हर घंटे करीब 6 किलोमीटर दौड़ते हुए वो चलती। अब वो 74 साल की हो चुकी हैं, स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं हैं, लेकिन डाक बम के रूप में शिव भक्ति को लेकर उनका उत्साह आज भी अद्भुत है।
3: से 24 तक सावन के प्रत्येक सोमवार 42 वर्षों तक 16 घंटे में सुल्तानगंज से बैद्यनाथ धाम डाक कामर के रूप में अनवरत चलकर बिना रुके हुए पैदल चढ़ाती रही हूँ। अभी भी मैं विल पावर से स्ट्रांग हूँ। शारीरिक रूप से दोनों घुटना तो टूट गया मेरा, यही रास्ते में ट्रेन में जाने में एक आदमी तोड़ा एक और रास्ते में, लेकिन बाबा की ऐसी कृपा है कि मैं उसी से चलती हूँ।
0: 24 घंटों के अंदर ही जलाभिषेक करने की बाध्यता के पीछे भक्तों का संकल्प होता है, जो अद्भुत हठ योग और तपस्या का रूप है। यदि कोई इस तय समय में जलाभिषेक न कर पाए तो उसका संकल्प टूट जाता है। भोले शंकर के भक्त किसी भी कीमत पर अपने संकल्प को टूटने नहीं देना चाहते, इसीलिए जल चढ़ाते समय बाकी भक्तों के लिए भले ही अलग व्यवस्था हो, लेकिन डाक बम के लिए एक VVIP रूट खुला होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं ये भगवान भोले के VVIP भक्त हैं।
4: डाक बम नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि वो 24 घंटा उनका पैर चलते रहना चाहिए। डाक बम का नियम है जैसे कि आप यहाँ से जल जो उठाइएगा, आपको जो पर्ची मिलता है, पर्ची के अनुसार अगर आप जल उठाते हैं तो वह 24 घंटा के अंदर जल आपको चढ़ाना है। अब पैर आपका कदम चलते रहे, पैर रुकना नहीं चाहिए। अगर आपका पैर रुक गया तो वह जल बेकुंठी हो जाएगा, वह डाक नहीं रहेगा। या 24 घंटा के बाद आप अगर देवघर पहुंचते हैं तो वह जल बेकुंठी हो गया, वह डाक जल नहीं रहा।
0: डाक कांवड़ लेकर भक्त देश के दूसरे हिस्सों में भी निकलते हैं, जैसे हरिद्वार से पलवल लगभग 250 किलोमीटर, हरिद्वार से नीमराना करीब 200 किलोमीटर, लेकिन बिहार झारखंड के डाक बम से अलग ये अकेले कांवड़ नहीं होते, बल्कि कांवड़ियों की पूरी टीम होती है जिसमें एक से अधिक कांवड़िए होते हैं। जब एक थक जाता है तो दूसरा उसे लेकर भागता है, टीम के बाकी कांवड़िए तब तक गाड़ी में सवार होकर आगे चलते हैं। पर ये भोले की भक्ति की शक्ति ही है कि इतनी लंबी दूरी तक उमस भरे मौसम में नियमों का पालन करते हुए डाक कांवड़ कठिन यात्रा पूरी कर पाते हैं। झारखंड के देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम में लाखों कांवड़िए जहां पहुंचते हैं, यहां की भी अद्भुत कहानी हम आपको सुनाते हैं। यहां ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ एक ही प्रांगण में है, यानी शिव और शक्ति एक साथ। यहां शिवजी का त्रिशूल नहीं, शिखर पर पंचशूल है। यह धाम अपने आप में अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय है।

0: प्रत्येक डाक बम की मंजिल है बाबा बैद्यनाथ धाम, जहां पहुंचने की इच्छा उनके रास्ते की हर बाधा को हर लेती है। अद्भुत है ऐसी आस्था जो भक्तों के कठिन व्रत के कारण उन्हें भी देव तुल्य बना देती है। झारखंड के देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम सिर्फ एक ज्योतिर्लिंग नहीं बल्कि ऐसी आध्यात्मिक भूमि है जहां हर पत्थर और हर जयकारे के पीछे हजारों साल पुरानी मान्यताएं हैं। विश्व में ये एकमात्र शिवधाम है जहां शिखर पर त्रिशूल नहीं बल्कि पंचशूल होता है। अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ है महादेव की यहां महिमा, जहां शिव के साथ शक्ति भी विराजमान है। अविश्वसनीय है यहां के प्रति श्रद्धालुओं की श्रद्धा, जिसने देवघर को महातीर्थ बना दिया। बाबा के दरबार में हमेशा भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन हर साल सावन के महीने में मंदिर की छटा ही कुछ और हो जाती है। लाखों कांवड़िए 100 किलोमीटर से अधिक की यात्रा पैदल चलकर गंगा जल से बाबा का अभिषेक करने पहुंचते हैं।
1: अमृत वाणी है शिवा शिवा शिवा शिवा हो।
2: गंगा जल लोग बहते हैं, उत्तर वाहिनी सुल्तानगंज से लेके चलते हैं, पांव पैदल इसको लेके बाबा बैद्यनाथ तक आते हैं, फिर इसका यहाँ संकल्प होता है, फिर जलाभिषेक शंकर जी के ऊपर किया जाता है। ये रावण के द्वारा लाए गए हैं और रावण ने ही सावन में पहला कांवर लाके यहाँ चढ़ाया हुआ था, इसी वजह से यहाँ का महत्व ज्यादा होता है। शिव के भक्तों में सबसे ऊपर है रावण, इसीलिए उनके नाम से रावणेश्वर बैद्यनाथ भी रखा गया है और सावन का जो महत्व है उन्हीं के द्वारा कांवर पहला लाके यहाँ चढ़ाया गया।
3: बाबा का मानता है कि जो मुराद मांगे वो सब पूरा होता है, बाबा देते हैं, सामर्थ्य दिए हैं, आते हैं हम लोग। बहुत अच्छा है, बाबा की नगरी है, बहुत सौभाग्यशाली लोग यहाँ पर आते हैं, हम लोग धन्य हैं, हम लोगों का बाबा हम लोग को बुलाए हैं और हम लोग इनके शरण में आए हुए हैं। बाबा हम लोग सारे लोगों की पूरे विश्व का कल्याण करे और हम लोग की मनोकामना पूर्ण करे, यही बाबा से बार बार निवेदन है।
0: बैद्यनाथ धाम की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि ये केवल 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक नहीं है बल्कि ये उन दुर्लभ तीर्थ में है जहां ज्योतिर्लिंग और आदि शक्तिपीठ एक ही परिसर में है।
4: ये ज्योतिर्लिंग के साथ साथ शक्तिपीठ भी है, यहाँ पे माता सती का यहाँ पे हृदय गिरा है, इसलिए इसको हृदयपीठ भी कहते हैं, शक्तिपीठ भी है।
0: एक ओर भगवान शिव, दूसरी ओर आदिशक्ति, यानी शिव और शक्ति एक साथ। भक्तों के लिए ये विशेष है कि शिव जी की पूजा के साथ शक्ति की आराधना भी हो जाती है, एक साथ भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद मिल जाता है।
4: पूरा बाबा धाम ही नहीं, सारा ज्योतिर्लिंग भारतवर्ष के सारे ज्योतिर्लिंग में एकदम शिवमय हुए लोग रहेंगे। और बाबा बैद्यनाथ जी से हम सभी तीर्थ पुरोहित यही मनाते हैं कि जो जो कामना लेके आप लोगों के दरबार में भगवान आते हैं, हमारे भक्त सारे, उनकी सारी मनोकामना आप पूर्ण करें और सबों को खुश रखें, आनंद में रखें, यही कामना के साथ हर हर महादेव, जय बाबा बैद्यनाथ।
5: बाबा बैद्यनाथ की नगरी में गिरुआ केसरिया कांवरिया पूरे मंदिर में मर चुके हैं, सुल्तानगंज से पैदल जाने लाने वाले भी पैदल जल लेके आ रहे हैं और जो वाहन से आते हैं वो भी अपने अपने गंतव्य स्थान से बाबा बैद्यनाथ की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। भीड़ भी प्रचंड है, भीड़ में भी कोई नमी नहीं है और रहना भी चाहिए, सावन का मेला है।
0: देवघर वो पवित्र स्थान है जहां माता सती का हृदय गिरा था।
5: माता सती का हृदय गिरा यहाँ पे, जो शक्तिपीठ है उसी जगह विष्णु भगवान ने लाकर उनको स्थापित किया यहाँ, इसीलिए शिव पार्वती का विशेष पूजन गठबंधन होता है।
0: बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग अन्य शिव धामों में से एक और मायने में अलग पहचान रखता है। हर शिव मंदिर के शिखर पर त्रिशूल होता है, लेकिन बाबा बैद्यनाथ धाम के शिखर पर त्रिशूल नहीं पंचशूल स्थापित है।
2: जो है ना ये पंचशूल ही सब जगह किया जाता है, यहाँ त्रिशूल नहीं है कहीं। इसका अर्थ है कि पांच कोस तक यहाँ कोई भी दुर्घटना नहीं घट सकता, जिस ये पंचशूल रक्षा करते हैं।
6: ये बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग ऐसा है जिसके शिखर के ऊपर में चंद्रकांत मणि लगाया गया है और मंदिर के ऊपर में जो गुंबद है उसमें अष्टकमल है, आठों देवी देवताओं के पूरक है। चंद्रकांत मणि से मिनटों मिनटों में जल की धारा बहती है जो डायरेक्ट बाबा के सर पर गिरती रहती है। यह प्राचीन काल से रावण के द्वारा ही तभी से लगाया गया है और अभी तक ये विराजमान है।
0: ये पांच नुकीले शूल पंच तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनसे इंसानी शरीर बना है। ये पांच तत्व हैं पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश और जल, और पंचशूल इंसानों के पंच विकारों को नष्ट करने का भी प्रतीक है, जिन्हें काम, क्रोध, लोभ, मोह और ईर्ष्या माना गया है।
3: बहुत अच्छा, हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, पर हर साल हम लोग आते हैं और बाबा बुलाएंगे तो हर साल आए, हमेशा जब तक जिंदा रहेंगे तब तक आएंगे, बाबा बुलाते रहेंगे। तो
7: बाबा जो भी मांगते हैं बाबा जो है सारी इच्छाएं हम लोगों की पूरी करता है। हम लोग हर साल यहाँ आते हैं और इस साल भी आए हैं। हम लोगों की आत्मा जो है आज पूजा करके तृप्त हो गई, हम लोगों को बाबा से जो है मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये बाबा की ही देन है कि वहाँ से हम लोगों को यहाँ खींच लाते हैं और हम लोग अपना पूजा पाठ करके जो है सालों भर खुश रहते हैं।
0: देवघर में बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग युगों पुराना है और तब से ही भक्तों के लिए तीर्थ है। कहा जाता है कि लंका के राजा रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की। अपने सिर एक एक करके भगवान शिव को अर्पित कर दिए। भक्ति से प्रसन्न होकर शिव स्वयं वैद्य बने यानी डॉक्टर, और उन्होंने रावण के सभी सर फिर से जोड़ दिए। तभी से भगवान शिव का एक नाम पड़ा वैद्यनाथ, यानी रोग हरने वाला, जीवन देने वाले महादेव। बाबा वैद्यनाथ देवघर में कैसे स्थापित हुए इसकी मान्यता भी अद्भुत है।
8: रावण भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे और एक बार ऐसी कथा मिलती है हमारे धर्म ग्रंथों में कि वो हिमालय जाकर के कठोर तप करते हैं और रावण को दशानन भी कहा जाता है, उनके 10 सिर थे, तो एक एक सिर काट करके शिव चरणों में अर्पित करते हैं। जब 10वां सिर रावण काटने लगते हैं तो भोलेनाथ प्रसन्न होकर के रावण के सामने आ जाते हैं और रावण से पूछते हैं कि बताओ आपकी क्या इच्छा है। तो रावण कहता है उनसे कि आप लंका चलिए, मैं आपको अपने स्थान लंका ले जाना चाहता हूँ। तो भगवान शिव मुस्कुराते हैं और कहते हैं ठीक है, हम चलेंगे, लेकिन ध्यान ये रखना कि ये जो हमारा स्वरूप है शिवलिंग जिसको तुम लंका ले जाना चाहते हो उसका नाम था कामना लिंग। तो कामना लिंग को रावण लंका ले जाना चाहता था, तो भगवान शिव ने कहा कि इसे कहीं जमीन पर रखना नहीं है, बस इस बात का ध्यान रखना। रावण ने कहा बिल्कुल प्रभु, कहीं नहीं रखेंगे। और रावण उस कामना लिंग को लेकर के चला। तब देवता परेशान हुए कि रावण तो भगवान शिव के स्वरूप को लेकर के जा रहा है लंका। तो उन्होंने भगवान विष्णु के सामने अपनी चिंता जताई, तो भगवान विष्णु ग्वाले का रूप धारण करके रावण को रास्ते पर मिले और प्रभु प्रेरणा से रावण को बहुत तेजी से लघु शंका आई, बहुत तीव्र। तो रावण ने ग्वाले के रूप में भगवान विष्णु को देखा और उनसे कहा कि थोड़े समय के लिए तुम ये शिवलिंग पकड़ लो, इसे जमीन पर मत रखना, मैं लघु शंका करता हूँ। तो रावण लघु शंका करने गया, भगवान विष्णु जो ग्वाले के रूप में थे उन्होंने शिवलिंग को रखा, लेकिन वो शिवलिंग बहुत भारी था और भगवान ने उसे जमीन पर रख दिया। और जब रावण लौट कर आया तो देखा भैया तुमने ये क्या कर दिया, बोले बहुत भारी था, मैं संभाल नहीं पाया। और वो शिवलिंग वहीं स्थापित हो गया, वही जो है बैद्यनाथ धाम है, आजकल झारखंड में वो स्थान है बैद्यनाथ धाम, और ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग है।
0: भक्तों को विश्वास है कि बैद्यनाथ धाम में शिवजी साक्षात रूप में विराजे हैं और वहां जलाभिषेक का पुण्य उनके हर कष्ट को दूर कर देगा। अब हम आपको समय में पीछे लिए चलते हैं और बताते हैं कि सड़कों पर एक महीने तक जो लाखों लोगों को कांवड़ यात्रा करते हुए आप देखते हैं, उसकी शुरुआत कब हुई थी? क्या कांवड़ यात्रा की शुरुआत भगवान परशुराम ने की थी, या इसका संबंध श्रवण कुमार की सेवा भावना से है, या फिर इसकी जड़ें समुद्र मंथन के समय से मानी जाती हैं? आखिर क्यों कांवड़ यात्रा को कोई पारंपरिक यात्रा नहीं बल्कि सनातन संस्कृति का जीवंत रूप माना गया है?

कांवड़ यात्रा कब शुरू हुई, ये यात्रा कितनी प्राचीन है, किसने उठाई थी पहली कांवड़, इन सवालों के जवाब कई प्रचलित मान्यताओं में मिलते हैं।

0: कहा जाता है पहला कांवड़िया रावण था और रावण ने हरिद्वार से जल भरकर बागपत जिले के पूरा महादेव मंदिर में शिवलिंग पर जलाभिषेक किया था। समुद्र मंथन का विष भगवान शिव ने पी लिया था तो विष के असर को कम करने के लिए रावण ने जल चढ़ाया था। एक दूसरी मान्यता के अनुसार भगवान परशुराम ने गढ़ मुक्तेश्वर से गंगा जल लाकर पूरा महादेव मंदिर में जलाभिषेक किया था तो उसके बाद से ही ये परंपरा बन गई जो अब तक शिव भक्तों द्वारा कायम।
1: भगवान परशुराम जो कि भगवान विष्णु के छठे नंबर के अवतार माने जाते हैं, उन्होंने आजकल जो उत्तर प्रदेश का बागपत का इलाका है वहाँ पूरा महादेव नाम का एक प्राचीन मंदिर है, उस मंदिर में गढ़ मुक्तेश्वर से जिसे आजकल ब्रज घाट भी कहते हैं वहाँ से जल ला करके गढ़ मुक्तेश्वर से जल ला करके पूरा महादेव को अर्पित किया था और कावड़ का प्रयोग किया था। तो इसलिए कुछ जो धर्म के जानकार हैं भगवान परशुराम को पहला कावड़िया मानते हैं।
0: यहाँ पूरा महादेव मंदिर का आध्यात्मिक महत्व भी समझा देते हैं। कहा जाता है कि जहाँ आज पूरा महादेव मंदिर है उसे कभी कजली वन कहा जाता था। कजली वन में भगवान परशुराम के पिता महर्षि जमदाग्नि और माता रेणुका रहती थी। बाद में भगवान परशुराम ने यहाँ शिवलिंग स्थापित किया और स्थान का नाम शिवपुरी रखा जो धीरे धीरे शिवपुरा और फिर सिर्फ पुरा रह गया। महादेव का मंदिर होने के कारण इसे पूरा महादेव कहा जाने लगा।

एक मान्यता ये भी है कि अयोध्या के राजा बनने के बाद श्री राम ने अपने चारों भाइयों के साथ सुल्तानगंज से जल लेकर देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम पर जलाभिषेक किया था, जिसके बाद से ये क्रम अनवरत जारी है।

0: कहीं कहीं ये भी वर्णन मिलता है कि श्रवण कुमार ने कांवड़ में अपने माता पिता को बिठाकर तीर्थ यात्रा की और इस दौरान जलाभिषेक भी किया। तब से ही कांवड़ और जलाभिषेक की परंपरा शुरू हुई।
1: श्रवण कुमार की जो कथा है वो बड़ी प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि त्रेता युग में श्रवण कुमार ने अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा कराई थी। उनके माता पिता की इच्छा थी कि वो हरिद्वार जाकर गंगा स्नान करें, तो श्रवण कुमार ने कांवड़ बनाई, एक तरफ माता को बिठाया, एक तरफ पिताजी को बिठाया और उन्हें हरिद्वार ले गए, गंगा स्नान कराया और लौटते समय वहाँ से गंगा जल लेकर के आए थे और फिर शिव मंदिर में अभिषेक किया था। तो श्रवण कुमार को भी कांवड़िए के रूप में देखा जाता है।
0: सामान्य तौर पर कांवड़िए गंगा नदी के करीब स्थित ज्योतिर्लिंग और प्रचलित मंदिरों में शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं। उत्तर भारत के लोग इस जल को मेरठ में पड़ने वाले मंदिरों जैसे मेरठ के ओघड़नाथ मंदिर, बागपत के पुरा महादेव मंदिर, गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मंदिर में चढ़ाते हैं। वहीं अवध क्षेत्र और पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग जल को बाराबंकी स्थित लोधेश्वर महादेव मंदिर, अयोध्या के क्षीरेश्वर महादेव मंदिर में चढ़ाते हैं। कांवड़ यात्रा में जलाभिषेक के लिए दो प्रमुख ज्योतिर्लिंगों का विशेष महत्व है, एक देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम, दूसरा काशी में बाबा विश्वनाथ धाम। झारखंड के दुमका में बाबा बासुकीनाथ मंदिर में भी कांवड़ियों का तांता लगा रहता है। कांवड़ियों का लक्ष्य एक होता है, भगवान शिव का जलाभिषेक, लेकिन जैसे उनके तरीके अलग अलग होते हैं उसी तरह कांवड़ भी अलग अलग तरह की होती है। ये अलग अलग तरह की कांवड़ अलग नियम और तपस्या का प्रतीक होती है और इसी के साथ जुड़ी होती है हर कांवड़िए की अलग कठिन साधना।

अद्भुत होता है वो दृश्य जब केसरिया बाना पहने हजारों लाखों शिव भक्त जयकारों के साथ सड़कों पर निकलते हैं। दूर से एक ही रंग में रंगे प्रतीत हो रहे कावड़ यात्री अलग अलग संकल्पों के साथ आगे बढ़ते हैं। अलग अलग संकल्प के कारण ही कावड़ के भी अलग अलग रूप नजर आते हैं। कावड़ रंग रूप आकार में कई तरह की हो सकती है, लेकिन कावड़ यात्रियों के संकल्प के अनुसार मुख्य रूप से ये चार तरह की होती है, जिनमें बिना रुके सीमित समय में जलाभिषेक वाली डाक कावड़ भी शामिल है। डाक कावड़ के अलावा एक होती है सामान्य कावड़। इसमें भक्त जल लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। इसमें कावड़ यात्री बीच में आराम भी कर सकते हैं और सीमित रूप से कहीं कहीं वाहन का प्रयोग भी करते हैं। हालांकि यात्रा का अधिकांश भाग पैदल ही तय करना होता है। इस कावड़ का सख्त नियम होता है कि इसे कभी भी जमीन पर नहीं रखा जाएगा। भक्तों को बारी बारी से इसे कंधों पर लेकर ही चलना होता है। जब कोई कावड़ यात्री आराम करता है तो उसका कोई साथी उसकी कावड़ को अपने कंधे पर लेकर चलने के अंदाज में हिलाता रहता है। बेहद कठिन और शरीर को पीड़ा देने वाली कावड़ होती है डांडी कावड़। इसमें कावड़ यात्री गंगा के तट से शिवालय तक दंड बैठक लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। साथी उनका जल लेकर साथ में चलते हैं। कई बार इसमें हफ्ते भर से अधिक समय भी लग जाता है। कावड़ यात्रा के कई अद्भुत पहलू ऐसे भी हैं जो सदियों पहले चलन में थे और कई श्रद्धालु आज भी उनका पालन करते हैं। राजस्थान के मारवाड़ी समाज के लोग या उनके पुरोहित गंगोत्री, यमुनोत्री और गोमुख तक पैदल जाते थे और इन पवित्र स्थलों से जल लेकर वापस लौटने के बाद जलाभिषेक करते थे। उन्हें भी कावड़ियां कहा जाता था। आज भी राजस्थान के चुरू, पाली, सीकर, अलवर जैसे क्षेत्रों में ये परंपरा जारी है। कावड़ यात्रा एक रूप से पूरे भारत को एक रूप में पिरोने का प्रतीक भी होती है। कई शिव भक्त उत्तराखंड के गोमुख से जल लेकर पैदल निकलते थे, जिन्हें कावड़ियां कहा जाता था। ये कावड़ यात्री उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक होते हुए तमिलनाडु में प्रवेश करते थे और रामेश्वरम द्वीप पर भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग पर जलाभिषेक के साथ उनकी आध्यात्मिक यात्रा समाप्त होती थी। इसमें 5 से 6 महीने लग जाते थे। आज भी कई शिव भक्त पूरे मनोभाव से इस तरह की कावड़ यात्रा करते हैं। सावन का महीना इतना पवित्र क्यों माना जाता है? पौराणिक इतिहास और परंपराएं हम आपको बता ही रहे हैं, पर नई पीढ़ी के कई सवाल होते हैं। ऐसा करना है तो क्यों करना है, नहीं करना है तो क्यों करना है? तो चलिए हम आपको इन सवालों के जवाब देने की भी कोशिश करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन को पवित्र और आध्यात्मिक ऊर्जा का महीना माना गया है।

0: पेशियों में दर्द, किडनी आदि पर बुरा असर अधिक होता है।
1: मांस और मदिरा तामसिक चीजें हैं, इनको सेवन करने से व्यक्ति का जो सत्व तत्व है वह कम होता है, और इसमें व्यक्ति को इस मास में सात्विक रह करके भगवान शिव का पूजन करना होता है, इसलिए इसमें मांस और मदिरा का सेवन वर्जित किया गया है।
2: जो मीट होता है वो डाइजेशन वाइज टफ होता है हमारे डाइजेशन के लिए, इसलिए उसको पहले हम लोग कुकर वगैरह में पकाते हैं, तो इस समय हमारे बॉडी का जो डाइजेस्टिव पावर होता है वो वीक होता है। वर्षा ऋतु में अग्नि हमारी कमजोर होती है। अल्कोहल को तो आयुर्वेद ने कहा है कि उसका सेवन नहीं करे तो अच्छा है, क्योंकि वर्षा के बाद शरद ऋतु आने वाली होती है और जो मध्य होती है वो अम्ल गुण युक्त होती है।
0: सावन में अधिकतर लोग दाढ़ी बाल नहीं कटवाते, तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? धार्मिक कारण ये है कि शिव भक्ति के लिए सांसारिक बनावट से दूर रहने के लिए इसे तपस्या की तरह समझा जाता है। भगवान शिव स्वयं जटाधारी हैं, तो लोग श्रद्धावश भी ऐसा करते हैं। वैज्ञानिक कारण ये है कि माना जाता है कि बारिश के महीने में फंगल इन्फेक्शन और त्वचा संबंधित बीमारियों का खतरा ज्यादा होता है। बाल प्राकृतिक अवरोध की तरह काम करते हैं।
1: चूंकि व्यक्ति पूरे श्रावण मास भर जो लोग व्रत करते हैं उनके लिए क्षौर कर्म वर्जित है, इसी कारण दाढ़ी बाल बनवाने के लिए लोक में परंपरा में उसका निषेध किया गया है।
2: हमारा वातावरण बहुत हॉट होता है और ह्यूमिड भी होता है, ये ऋतु फंगल ग्रो करने के लिए बहुत अच्छा रहता है, उनकी वृद्धि इसमें बहुत होती है, तेजी से वो स्थानांतरित भी होते हैं, तो इस समय तो इनका बढ़ना होता ही है। शरीर हमारा गीला रहता है, बाहर गर्मी रहती है, पसीने से हम गीले रहते हैं, तो सामान्यतः देखा भी जाता है कि फंगल इन्फेक्शन इस ऋतु में बढ़ते हैं।
0: कुछ लोग सावन भर प्याज और लहसुन का प्रयोग भी बंद कर देते हैं, उसकी वजह भी जान लीजिए। धार्मिक कारण यह है कि प्याज लहसुन को तामसिक और राजसी आहार में गिना जाता है, जो आलस और सुस्ती बढ़ाते हैं और जिसके सेवन से साधना और मन की एकाग्रता कम होती है। वैज्ञानिक कारण यह है कि पाचन पर अतिरिक्त भार न पड़े, क्योंकि इस मौसम में पेट अधिक संवेदनशील होता है।
3: सावन के महीने में प्याज लहसुन इसलिए परहेज किया जाता है क्योंकि यह तामसी आहार माना जाता है। मंत्र आदि का जो भी प्रयोग हम लोग करते हैं तो उसके में हमारी दुर्गंध आएगी, तो हमारी जो पूजा पाठ है वह सुगंधित है और आध्यात्मिक श्रेष्ठता के लिए मानी जाती है, तो तामसी आहार के रूप में प्याज लहसुन का प्रयोग होता है, तो इसलिए इनका प्रयोग नहीं करते।
2: चूंकि ये अम्ल और तीक्ष्ण होता है इसलिए अगली ऋतु में पित्त का प्रकोप होने वाला रहता है, इसलिए इसको संयमित मात्रा में हमको इस ऋतु में लेना चाहिए।
0: दही और कढ़ी जैसे आहार भी न खाने की सलाह सावन में दी जाती है। धार्मिक कारण यह है कि भगवान शिव को अर्पण किया जाता है, इसीलिए उसका प्रयोग सावन में आध्यात्मिक रूप से ही करना चाहिए। वैज्ञानिक कारण यह है कि बारिश के मौसम में दही और कढ़ी आदि से कफ और वात यानी वायु संबंधी रोग हो सकते हैं, जो शरीर में दर्द और गैस जैसी तकलीफ बढ़ाते हैं।
3: सावन के महीने में दूध, दही, कढ़ी का प्रयोग इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि सावन का महीना बैक्टीरिया भी उत्पन्न करता है। दूध सावन के महीने में शंकर जी को चढ़ता है, तो लोग भगवान भोलेनाथ के लिए भी वह प्रयोग करते हैं, तो इसमें भी वर्जित होता है। तो दोनों खंड देखा जाए, तामसिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक खंड, तो इसलिए इन सभी वस्तुओं का प्रयोग नहीं किया जाता है।
2: वर्षा ऋतु में दही अच्छी जमती नहीं, तो वर्षा ऋतु में जो दही हमको चाहिए वो स्वादु दही होनी चाहिए, पूरी अच्छी जमी होनी चाहिए, वो हमें नुकसान नहीं करती है। लेकिन जो मंद दही होती है या अत्याम्ल दही जिसमें खट्टापन बहुत होता है वो इस समय हमें नुकसान करती है।
0: सावन में शिव भक्त कठोर संकल्प लेकर निकलते हैं, ऐसे में वो स्वस्थ रहें और अपनी धार्मिक यात्रा पूरी कर सकें, इसको लेकर ही धार्मिक नियम बनाए गए हैं जिनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी शामिल है। इसीलिए सावन महीने में स्वच्छता और सात्विकता पर अधिक जोर दिया गया है। कांवड़ यात्रा के नियम भी बहुत कठोर होते हैं, इसमें नंगे पांव चलने से लेकर कांवड़ को जलाभिषेक से पहले जमीन पर न रखने तक का संकल्प होता है। समय के साथ साथ कई बातें बदल गई, पर कांवड़ का मतलब होता है अनुशासन, ईश्वर को पूर्णतः समर्पण,
4: और सम्मान।

0: कांवड़ यात्रा केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि संयम, आस्था और अनुशासन की परीक्षा भी है। इस यात्रा की पवित्रता बनाए रखने के लिए कुछ ऐसे नियमों का पालन बेहद जरूरी होता है, जो इस धार्मिक यात्रा को अद्भुत बनाते हैं। कांवड़ यात्रा का सबसे बड़ा नियम है कि जमीन पर कांवड़ नहीं रखी जाती। किसी भी परिस्थिति में कांवड़ को जमीन पर नहीं रखा जाएगा, और ये अद्भुत मान्यता सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि पवित्रता का प्रतीक है। जब कांवड़ यात्री विश्राम करते हैं, तब कांवड़ को किसी ऊंचे स्थान पर ही रखा जाता है, ताकि गंगा जल के पात्र अशुद्ध न हो।
1: एक संकल्प की सिद्धि है कि जिस तीर्थ के लिए कांवड़ को उठाया गया और जहां उसको जाना है, उस निमित्त मध्य में जहां उसको उठाने वाला शयन करता है, विश्राम करता है, उसको अपने साथ ही वो रखता है। स्थान पर रखते ही वह जो उसकी अभंगिता है, अर्थात जो निरंतरता है उसकी, उसमें भंग उसमें आ जाता है। इसलिए प्रयास किया जाता है कि उसका स्पर्श पृथ्वी पर ना हो।
0: कांवड़ यात्रा में नंगे पांव चलना न केवल परंपरा है, बल्कि ये आत्मनियंत्रण और तपस्या का प्रतीक है। यात्री गर्मी, बारिश, कांटे और पथरीले रास्तों के बावजूद बिना चप्पल जूते के चलते हैं, ये दिखाता है कि भक्ति में सुविधा नहीं, समर्पण आवश्यक है।
1: पूरी पृथ्वी ही, या जिस स्थान में हम चल रहे हैं, वो जलमय है, अर्थात चंद्रमय है, वो शिव का ही साक्षात स्वरूप है। तो श्रावण मास में पूरी प्रकृति ही शिवमय रहती है, इसलिए हमें पाद रक्षा का या ऐसे किसी भी अन्य साधन का प्रयोग अपनी धर्म यात्रा में नहीं करना चाहिए, ऐसा विधान है।
0: कांवड़ यात्री के लिए किसी भी तरह का नशा पूरी तरह से वर्जित है, क्योंकि भगवान शिव की पूजा शुद्ध मन और पवित्र आचरण से ही फलीभूत मानी गई है।
1: नशा या ये सभी जो उपकरण हैं, ये इंद्रियों को असंतुलित करते हैं। तो हमारे पंच तत्वों की जो संवेद इंद्रिय है, वो इंद्रिय अगर असंतुलित है तो उपासना में एकाग्र चित्तता नहीं हो सकती।
0: कांवड़ यात्रा का सबसे पवित्र तत्व लाया हुआ गंगा जल ही होता है। गंगा जल को जलाभिषेक से पहले कहीं भी अनुचित स्थान पर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कांवड़ यात्रा का अंतिम लक्ष्य भगवान शिव पर पवित्र जल चढ़ाना ही है। इसके अलावा कुछ और नियम है, जैसे कांवड़ यात्रा के बीच आप लघु शंका या शौच करते हैं तो गंगा जल से स्नान करके स्वयं को पवित्र करना होता है। अगर कांवड़ उठाने वाले व्यक्ति का स्वास्थ्य बीच में खराब हो जाए तो कोई और भी उसकी जगह कांवड़ उठा सकता है। कांवड़ यात्रा एक ऐसी अद्भुत यात्रा है जिसमें सहता शरीर है, लेकिन परीक्षा आत्मिक विश्वास की हो रही होती है। कांवड़ियों का मानना है कि कांवड़ वो ही उठाते हैं जिन्हें स्वयं शिव बुलाते हैं। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।

0: When it comes to your favorite podcasts, missing an episode isn't an option. Luckily, TuneIn's got you covered. Start by creating a free TuneIn account and keep everything synced across your devices. Then favorite the shows you love. We'll bring new episodes right to your homepage, so they're always easy to find. And with notifications turned on, you'll get a heads up when new episodes drop. Stay in the loop effortlessly.
1: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: Where the software engineer with a big idea meets the smart market analyst, meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
2: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
3: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद, लायन कश्मीर हनी।
2: असली शहद, असली स्वाद।
4: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
5: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
6: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
7: आगे आगे
8: उधर
7: करेक्ट करेक्ट
9: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
1: वेयर द सॉफ्टवेयर इंजीनियर मीट्स द कूल UI UX डिजाइनर टू क्रिएट द बिग ड्रीम। द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी।

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. In association with
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो.
2: पीएम मोदी के नए वीडियो संदेश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार देर रात एक बार फिर से जेन जी को बड़ा मैसेज दिया. रात तकरीबन 11 बजे के बाद पीएम मोदी इंस्टाग्राम पर लाइव आए, जहां उन्होंने अभद्र टिप्पणी करने वाले बच्चों को माफ करने की बात कही.

0: number one is India Floor.
1: 31 जुलाई की रात पीएम मोदी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट कर युवाओं को माफ कर दिया।
2: जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है।
1: हालांकि पीएम मोदी ने लड़कियों की भाषा पर हैरानी जताते हुए कहा कि जिस तरह कुछ बेटियों के मेरी माँ को गाली देते हुए वीडियो वायरल हुए उससे उन्हें कल्चरल शॉक लगा।
2: एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती है। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है।
1: हालांकि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और शिवसेना यूबीटी जैसे दल गाली देने वाले युवाओं को माफ कर देने वाली वीडियो पर भी हमलावर दिखे।
3: उनको ये पूछना चाहिए क्या इस देश के छात्र उनको माफ करेंगे? उनकी वजह से 35 दिन छात्रों को परेशान होना पड़ा, खुले छत के नीचे सोना पड़ा, लाठियां खानी पड़ी, पैलेट गन झेलनी पड़ी। प्रधानमंत्री जी को छात्र माफ करेंगे या नहीं, उनको देश के छात्रों से पूछना।
4: व्हाइट पद्धति ने पुरुष पोलिसांकडनं त्यांचे कपडे फाडले गेले, ज्या पद्धतीने तो व्हिडिओ मी पाहिला, एक ती मुलगी पुढे जाते आणि तो पोलीस पाठवून कसं तो मला बोलायला सुद्धा लाज वाटते। ज्या मुलांनी नीटच्या परीक्षेचा पेपर फुटला म्हणून आत्महत्या केली त्यांची पहिली माफी यांनी मागायला पाहिजे।
1: जहां बीजेपी कह रही है कि पीएम मोदी को 25 सालों में ना जाने कितनी गालियां दी गई फिर भी वो विचलित नहीं हुए, वहीं आम आदमी पार्टी बोली बीजेपी और पीएम मोदी को विक्टिम कार्ड खेलकर उसका सियासी फायदा उठाना बखूबी आता है।
5: देखो मोदी जी बहुत बड़े हृदय के व्यक्ति हैं और तभी शायद यहां तक पहुंचे हैं। और जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं पिछले 12 साल क्या बल्कि पिछले 25 साल में मोदी जी जब से मुख्यमंत्री रहे, प्रधानमंत्री रहे, जिस प्रकार से उन्होंने उनके ऊपर विपक्ष के द्वारा जो निजी हमले हुए, कभी उनको मौत का सौदागर कहा गया, कभी चौकीदार चोर है, कभी किस प्रकार से घृणित आरोप उनके ऊपर लगाए गए, निश्चित रूप से एक ये नई शुरुआत है। और मोदी जी ने जिस प्रकार का आह्वान किया है कि हम लोग देश के एक साथ लेकर देश को आगे बढ़े,
6: पूरे देश की मानसिकता को आपने दूषित कर दिया है। मैं कोई ट्वीट करता हूं उसके नीचे इतनी भद्दी भद्दी टिप्पणियां, लाखों गालियां। आज तक अगर मेरे सारे ट्वीट उठा लिए जाएं और उसके नीचे की गालियां उठा ली जाएं जो आपके समर्थक आपके लोगों ने दी हैं, लाखों लाख गालियां दी हैं, मां की बहन की गालियां। मेरी आदत नहीं है रोने धोने की, आपकी आदत है। आपको कुछ भी होता है आप उसको कैश कराने के चक्कर में लग जाते हैं।
1: फिलहाल पीएम मोदी के माफी वाले वीडियो पर सियासी महाभारत थमती नहीं दिख रही। आज तक ब्यूरो।
7: संसद में साधु के भेष में पप्पू यादव ने चंदा चोरी पर तंज वाला नाटक किया जिसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता शामिल हुए। अब पप्पू यादव के इस अभिनय पर संत समाज और हिंदू संगठन नाराज हैं, भड़के हुए, जिसे लेकर कई जगहों पर प्रदर्शन जारी है। ये गुस्सा है पप्पू यादव के उस तमाशे के खिलाफ जो संसद में उन्होंने साधु के भेष में किया। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं, जहां पप्पू यादव के पुतले फूंके जा रहे हैं, नारेबाजी की जा रही है।
8: हमारे समाज को, हमारे सनातन समाज को जो ये कर रहा है, हम माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि इसके ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1 के अंतर्गत मुकदमा कायम करके जेल भेजे और इनके खिलाफ जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो संसद की सदस्यता भी समाप्त होना चाहिए।
7: दिल्ली के जंतर मंतर में विश्व हिंदू परिषद ने पप्पू यादव को लेकर सद्बुद्धि हवन की।
9: तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर एक सांकेतिक सद्बुद्धि हवन जो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा यहाँ पर रखा गया, तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूंगा कि दिल्ली भर से जो संत लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हैं।
0: भोपाल में भी भारी संख्या में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, जहां पप्पू यादव के साथ राहुल गांधी और अखिलेश यादव का विरोध किया गया, पुतला जलाया गया।
10: लोग कई वर्षों तक राम मंदिर का विरोध करते रहे, सफल नहीं हो पाए। जब कोर्ट से सफल नहीं हुए तो लोकतंत्र के मंदिर के बाहर राम मंदिर को, राम जी को बदनाम करने की जिन्होंने कोशिश करी, चाहे राहुल गांधी हो, पप्पू यादव हो या अखिलेश यादव हो, इस प्रकार से ड्रामा करके राम जी को जिन्होंने बदनाम किया, ये उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया जा रहा है।
0: उधर दिल्ली के जहांगीरपुरी थाने में सांसद पप्पू यादव के खिलाफ शिकायत दी। वहीं वाराणसी में भी संत समाज की ओर से पप्पू यादव पर एक मुकदमा दर्ज कराया गया है।
11: इसमें बीजेपी को घेरने के कहां से आ गई? इसमें बीजेपी का गेरुआ वस्त्र पहनने करके बाबा बन के घूमती है बीजेपी। आप बीजेपी को घेरो ना, किसने मना किया? आप बीजेपी से सवाल करो, बीजेपी के विपक्ष में आप बैठ जाओ, आप तमाम जो चीजें हैं उन पर, क्योंकि इनके पास तो कोई मुद्दे बचे नहीं है, तो अब यही मुद्दे उल्टे सीधे बचे हैं कि संतों का अपमान करेंगे। इन लोगों को ही लगता है कि संत समाज बीजेपी का समर्थन करती है, पर सत्य यह है कि संत समाज उसी का समर्थन करती है जो राम का समर्थन करती है, जो कृष्ण का समर्थन करती है, जो सनातन धर्म की रक्षा करती है।
0: इस बीच पप्पू यादव ने हंगामे के बीच इंस्टा पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो उन्हीं कपड़ों में पूजा करते नजर आ रहे हैं। वहीं पूरे मामले में पप्पू यादव की सफाई भी आई है।
12: आपको नहीं लगता कि आपने कुछ गलत किया है इस पूरे?
13: गलत किया मतलब सनातन और मंदिर के सारे पैसे को लुटेरे को उजागर करना और उसके खिलाफ लड़ना गलत है, मंदिर की रक्षा करना गलत है, मंदिर के पैसे की रक्षा करना गलत है, देश के 100 करोड़ का जो आस्था है मंदिर के प्रति उसकी रक्षा करना गलत है, हनुमान जी को नचाना सही है, गुड्डी में राम को उड़ाना सही है।
0: बहरहाल संसद में चंदा चोरी पर पप्पू यादव के नाटक ने नया सियासी घमासान शुरू कर दिया है। आज तक ब्यूरो।
7: छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए आज तक।
14: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
15: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: Catch up on what's hot with TikTok Radio, curated by Stingray Music. Your destination for trending hits and must-see videos. Stay in the loop one viral moment at a time. TikTok Radio, now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.
1: आगे आगे
2: अरे उधर
1: उधर गया
2: करेक्ट करेक्ट
3: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। कि बचपन में गलतियां होती और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है और यही तो बचपना है। समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाना। एक गुमराह बच्चे उनको राह दिखाना हमारा काम। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं, समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है लेकिन कठिन कामों को करना, और इसलिए आओ मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़ो। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए खड़ा हूं, आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाए।
1: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। पेपर लीक के मुद्दे पर छात्र सड़कों पर निकले और ये सच है कि 20 जुलाई को जो आंदोलन देश ने देखा उसके बाद एक जबरदस्त दबाव सरकार पर भी बना। छात्र लगातार सड़कों पर उतरे थे, कॉकरोच जनता पार्टी और उनके प्रदर्शनकारी अलग थे, छात्र भी देश के कई हिस्सों से पहुंचे थे, राजनीतिक पार्टियां भी दबाव सरकार पर बना रही थी और आखिरकार 2-3 बड़े फैसले लिए गए हैं। एक तो नंदन निलेकड़ी के अध्यक्ष में एक हाई लेवल टास्क फोर्स बनाया गया है, दूसरी तरफ कानून को सख्त करके ज्यादा सजा का प्रावधान किया गया है, वहीं तीसरी तरफ सरकार छात्रों के साथ बातचीत करके झुकी और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। लेकिन इस पूरे आंदोलन में 3 बड़े सवाल हैं जो आज हम आज तक के मंच से उठाना चाहते हैं। पहला सवाल कि इस आंदोलन के बाद छात्रों को क्या मिला है, छात्रों को क्या हासिल हुआ है। दूसरा, इस आंदोलन के बाद अगर आप देखिए तो जेन जी जिसे कहा जा रहा है, जेन जी को लेकर जो छवि देश में बनी है उसका आधार क्या है? क्या उसको सिर्फ अपने अपने नैरेटिव, अपने अपने प्रोपोगंडा की नजर से देखा जाएगा या फिर इस बात में भी उसको मेरिट दिया जाएगा कि भाई वो निकला, खुद से निकला अपने लिए, उसमें राजनीतिक पार्टी या कोई भी पार्टी उसका श्रेय नहीं ले सकती। और तीसरा सबसे बड़ा सवाल कि इस आंदोलन के बाद जेन जी किसके साथ। इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आपको अपनी रिपोर्ट दिखाएं, पहले परिचय करा देते हैं क्योंकि आज हमने सोचा विषय बड़ा है और ये विषय सिर्फ एक महीना एक आंदोलन की बात नहीं है, इस देश की पूरी शिक्षा व्यवस्था में अगर बदलाव करना है तो उसके लिए एक लंबी लड़ाई लड़नी होगी और इसीलिए हमने आज हर उम्र के लोगों को यहां पर शामिल करने की कोशिश की है। सिद्धार्थ यादव प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, अजय उपाध्याय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ रामवी चंदेल प्रवक्ता है सीजेपी के, कॉकरोच जनता पार्टी के वो जुड़ गए हैं, मुबशर बदर खान जो कि छात्र हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के, आपका भी स्वागत है हमारे साथ, और हर्ष दुबे नीट की तैयारी करने वाले छात्र हमारे साथ जुड़े हैं, हर्ष स्वागत है आपका, ऋषभ नौटियाल छात्र है दिल्ली विश्वविद्यालय के, स्वागत है आपका, और ध्रुव शुक्ला पत्रकारिता के छात्र है, आपका भी स्वागत है इस पूरे मुद्दे पर। अब इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें जल्दी से आपको एक राउंड अप दिखा देते हैं कि अभी तक इस आंदोलन में क्या हुआ है, क्योंकि एक तरफ तो छात्रों पर ज्यादतियों की खबर आई, फिर पुलिस वालों के परिवार वाले भी सामने आए, उनके बच्चे आए, उन्होंने कहा हमारे पिता के सिर पर इतने टाके लगे हैं और उनको आज भी सोशल मीडिया पर विलन बनकर दिखाया जा रहा है, तो दोनों तरफ से अपनी अपनी बात कही जा रही है। एक रिपोर्ट कि क्या हुआ है, छात्र इस पर क्या सोच रहे हैं, फिर चर्चा की शुरुआत।
2: पेपर लीक के मुद्दे पर जेन जी का पारा हाई है, एक तरफ विपक्ष संसद से लेकर सड़क तक जेन जी के गुस्से को आवाज दे रहा है तो दूसरी तरफ सरकार कड़े कानून, टास्क फोर्स और डिजिटल संवाद के जरिए युवाओं को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। सवाल ये है कि आंदोलन की इस आंधी के बाद आखिर जेन जी खड़ा किसके साथ है, कौन है जो आज के युवा के दिल और दिमाग पर राज कर रहा है। सीजेपी के नेतृत्व में जब सड़कों पर प्रदर्शन हुआ तो उसमें पारंपरिक राजनीति से दूर रहने वाली जेन जी पीढ़ी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, यहीं से विपक्ष को एक बड़ा मौका मिला। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इस लड़ाई को सीधे प्रधानमंत्री आवास तक ले गए। संसद के भीतर से लेकर सड़क तक विपक्ष ने सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। विपक्षी नेताओं ने मंच संभाला, युवाओं की आवाज बनने और ये संदेश देने की कोशिश की कि वो जेन जी के सबसे बड़े हमदर्द हैं।
3: Every single university in India today has a vice chancellor from the RSS. Yes. Dharmendra Pradhan is a symbol. Your real enemy is the RSS. Keep it in mind. They are the people who are not letting you be students. They are the people who want you to be unbhakts.
2: लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी कम दिलचस्प नहीं है। जेन जी की ताकत का असर ये हुआ कि सरकार डिफेंसिव होने के बजाय सीधे एक्शन मोड में आ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे सिर्फ एक विरोध नहीं बल्कि देश के भविष्य से जुड़ा गंभीर मुद्दा माना। सरकार ने पेपर लीक पर रोक के लिए फास्ट ट्रैक सुनवाई वाला बिल संसद के दोनों सदनों से पास करा लिया। परीक्षा प्रणाली को सुधारने के लिए इंफोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलेखनी की अध्यक्षता में हाई पावर टास्क फोर्स का गठन किया। पीएम मोदी ने पारंपरिक तरीकों से हटकर इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स का सहारा लिया और जेन जी से सीधा संवाद स्थापित किया।
4: हम संसद में बिल लेकर के गए थे और जैसा मैंने आपको वादा किया था, संसद के दोनों सदनों ने, अधिकतम मान्य सांसदों ने विस्तार पूर्वक उससे चर्चा की है और दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है। अब विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में एक महत्वपूर्ण काम पूर्ण हुआ है।
2: यानी एक तरफ विपक्ष के आक्रामक तेवर हैं जो युवाओं के गुस्से को ऊर्जा दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ सरकार का पॉलिसी ड्रिवन और टेक फ्रेंडली अप्रोच है जो समाधान देने का दावा कर रहा है।
5: कब दिया जाएगा?
2: आज देश का जेन जी सिर्फ नारे नहीं सुन रहा बल्कि वो विपक्ष के तेवर और सरकार के एक्शन दोनों को बारीकी से तौल रहा है। सवाल अब भी यही है कि क्या विपक्ष का आंदोलन युवाओं के जज्बात को वोटों में बदल पाया है या फिर सरकार का संवाद जेन जी की उम्मीदों पर खरा उतरा है। इसीलिए आज राउंड टेबल में हम यही समझेंगे कि आंदोलन के बाद जेन जी किसके साथ।
1: चर्चा की शुरुआत करते हैं सिद्धार्थ यादव जी, सबसे पहले आप ही के साथ, क्योंकि मैं चाहती हूं कि आप दोनों, और चूंकि राजनीतिक पार्टी जो सबसे बड़ी इस वक्त देश में है, वहां से शुरुआत करते हैं। अपनी अपनी बात कहिए, जल्दी से कहिए, संक्षेप में कहिए, और ये जेन जी आप पर क्यों भरोसा करे? ये जो ट्रस्ट डेफिसिट आपकी सरकार के साथ हुआ सिद्धार्थ जी, वो बहुत आसानी से नहीं भरेगा।
6: अंजना जी, आपने सबसे पहला प्रश्न ये पूछा कि जेन जी किसके साथ, मैं उसका उत्तर देता हूं, जेन जी इस देश के साथ, और देश का युवा कभी भी देश की धारा से दूर जा करके या देश के खिलाफ कोई बात को कभी नहीं सोच सकता। निश्चित तौर पर देश में, देश की राजधानी में और कई हिस्सों में शिक्षा व्यवस्था को लेकर के आंदोलन भी हुआ, छात्र सड़कों पर भी आए, सरकार ने उनसे सरोकार भी किया, जो मांगे उनकी थी उसको पूरा भी किया, जो मांगा नहीं था उससे ज्यादा भी दिया। हाई पावर्ड कमेटी की कोई मांग नहीं थी वो भी दी, फास्ट ट्रैक कोर्ट की कोई मांग नहीं थी वो भी दी। सरकार पहले दिन से इस कोशिश में है, इस प्रयास में है कि हमारे जो देश की शिक्षा व्यवस्था है उसका मूलचूक परिवर्तन होना चाहिए। पर अंजना जी, मेरा आज एक, क्योंकि मैं खुद भी एक जेन जी हूं, एक चीज पर आपत्ति जरूर है। जो इस आंदोलन में जिस प्रकार की भाषा का भी प्रयोग किया गया, क्रैश लैंग्वेज को इस्तेमाल किया गया, जिस प्रकार से गालियां दी गई, ये हमारे देश के युवा का प्रतिबिंब नहीं बन सकता। दिस इज नॉट जेन जी। हमारे देश का युवा बहुत जिम्मेदारी के साथ अपनी बात को रखता है। जिन लोगों ने इस आंदोलन को आकर के कैप्चर करने की कोशिश करी और जेन जी समझ नहीं पाया और उनके आंदोलन को पॉलिटिसाइज कर दिया गया, उससे पॉलिटिकल पार्टियों ने मिल्कआउट करने की कोशिश करी अपने गेंस को, वो इतना दुर्भाग्यपूर्ण है। हमको गलत को गलत और सही को सही कहना ही जेन जी होता है। अगर 117 से ऊपर पुलिस वाले अंदर गए, अगर वो जख्मी हुए और हॉस्पिटल्स में भर्ती हुए, उसको गलत कहना भी बिल्कुल एक जेन जी की जिम्मेदारी है। कहीं भी इस देश के अंदर इस प्रकार के हिंसक आंदोलन का हम समर्थन नहीं कर सकते। सरकार स्वागत करती है, देश का युवा जब जब अपनी मांग को लेकर के आगे आएगा, जब जब कोई सुझाव कंस्ट्रक्टिव सुझाव देगा, राहुल गांधी की राह को छोड़ करके कि 45 मिनट तो संसद में बोलेंगे पर एक शब्द पेपर लीक पर, एक शब्द एजुकेशनल रिफॉर्म पर नहीं बोलेंगे, उस राह को छोड़ करके जब जब कंस्ट्रक्टिव रिफॉर्म पर आएगा देश की सरकार बाहें खोल करके उनका स्वागत करेगी और उन रिफॉर्म्स को लागू करेगी।
1: अजय जी, आप लोग कहां पर फिट हो रहे हैं इस पूरे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि उन्होंने कांग्रेस जनता पार्टी से प्रोटेस्ट खत्म करा लिया, सोनम वांगचुक जी भी आज भारतीय रेलवे की प्रशंसा कर रहे हैं, तो आप लोगों को क्या हासिल हुआ इससे?
5: सिद्धार्थ भाई ने बड़ी शुरुआत की है और अंत जो उन्होंने किया है उसी से मैं शुरू करना चाहता हूं। वाकई बहुत गंभीर हैं प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी, दो दिन से कहीं हाउस में दिखे नहीं, इतना गंभीर मामला था और हाउस में ही नहीं आ पाए। ये जेएनजी के लिए इतना समर्पण उनका है, वो समर्पण दिखा रात के 12 बजे जब वो एंगल खोल करके इंस्टाग्राम के लिए वो वीडियो बना रहे थे। वीडियो बनाने से सिर्फ बात नहीं बनेगी ना, फिर मैं कह रहा हूँ हमारे नेता ने भी कहा कि दिल बड़ा आपको करना होगा, सिर्फ वीडियो बड़ा करने से और रील बनाने से काम नहीं, और रियल सेंस में जेएनजी के लिए आपको क्या करना है ये जरूरी है। और जेएनजी का क्या, मैं तो कहता हूँ ओवरऑल युवा, जो युवा परेशान है, आप देखिए बेरोजगारी दर विगत वर्षों में क्या रहा है, पिछले साल इस साल में युवा बेरोजगारी दर जो है 13.8 पिछले साल था, इस बार 15 से 19 वर्ष के जो जेंजी हैं उनका बेरोजगारी दर का आलम देख लीजिए 20% आ गया है, बढ़ता जा रहा है। आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपने स्किल इंडिया का एक नारा जरूर दिया, वो नारा ही रह गया, नारा से नहीं होगा, आधार पर काम क्या हुआ। आपने अप्रेंटिसशिप की बात की, 5 करोड़ अप्रेंटिसशिप, प्रतिवर्ष 1 करोड़ देंगे, मात्र 661 लोगों को आपने अप्रेंटिसशिप दिया, युवा परेशान क्यों नहीं होगा, कैसे नहीं होगा? एग्जाम आप ठीक से नहीं करा पा रहे हैं, तारीख पर तारीख, वो उसके बाद में कानून पर कानून, अरे कानून बनाने से थोड़े होगा, कानून के साथ वो प्रावधान प्रक्रिया और उसके लिए प्रतिबद्धता चाहिए, यदि प्रतिबद्धता नहीं होगी तो जेएनजी भी समझ रहा है, जेएनजी का गार्जियन भी समझ रहा है और सब ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। ये लोग तो आपको एक टाइम में अधिकतर इसमें से आपको वोट दिए थे, आपके वोटर थे, वो परेशान हैं, उनको लगता है कि भाई हमारे भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, भविष्य के साथ मत कीजिए। दूसरी बात, जो पुलिस वाली बात आपने अभी कही है, बड़ा पुलिस का प्रवक्ता भी अभी देख रहा हूं कुछ दिन से भाजपा के लोग बन गए हैं, अरे भाई इतना छिया लेदर हो गया है ना, इतना सिसक सिसक के छुप छुप के रो रहे हैं प्रधानमंत्री जी, मजबूरी हो गई है उनकी, तो अब पेलेट गन कौन चलाया यही तो पूछ रहे हैं हम लोग, और इसकी जानकारी कैसे नहीं, अभी 8-10 दिन हो गए क्यों नहीं आई अभी तक, यदि इस पर कोई इंक्वायरी क्यों नहीं गठित हुई अभी तक, उन बच्चों के साथ जो बर्बरतापूर्ण व्यवहार हुआ उस पर क्यों नहीं अभी तक कार्रवाई हो रही है? इसलिए कह रहा हूं कि अमित शाह जी को इस्तीफा देना चाहिए।
1: सब जेंजी हैं, सब जेंजी हैं, हमारे जैसे जेन एक्स और ये सब पुराने लोग पता नहीं कहाँ से आपसे रिलेट करें, इसीलिए हमने सोचा कि आज आप लोगों का प्रतिनिधित्व हो। तो सबसे पहले राम जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ, आज आप लोग क्या समझ रहे हैं, क्या सरकार ने जो कदम उठाए हैं वो काफी हैं, और आप लोगों को क्या लगता है क्या होना चाहिए?
7: मैम, सरकार ने जो कदम उठाया है मैं उसके लिए थोड़ा सा थैंक यू तो बोलूंगा, कम से कम कुछ तो स्टेप लिया, बट ये डिमांड हमारी 2 साल पहले की थी। सरकार ने अगर ये स्टेप पहले लिया होता तो आज ये इतना एग्रेशन नहीं आया होता, और फास्ट ट्रैक कोर्ट जो बना रहे हैं और जो 10 करोड़ का जो फाइन लगाने वाले हैं और 7 साल की जो जेल है, ये बताते हैं, ये जो बनाया है ये बता रहे हैं कि आगे भी पेपर लीक होगा। इन्होंने पेपर लीक के पहले क्या होना चाहिए, पेपर लीक ना हो उसके लिए कुछ नहीं बनाया, पढ़ लीजिए। स्टूडेंट कमीशन की डिमांड हम कर रहे थे 2 साल पहले से, 27 जुलाई 2024 को जब ओआर में बच्चे डूब के मर गए थे तब से हम डिमांड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर अभी भी पटना में किसी सेंटर में गड़बड़ी हो जाए मैम, बताइए कौन सी बॉडी के पास में हम जाके कंप्लेंट डालें? पुलिस बात, जब पुलिस की बात आती है कि पुलिस ने क्या, मैम पुलिस का एग्रेशन सबसे पहले आया है, हमें बच्चों को रोका गया, अभी बिहार का एग्जांपल आप देख लीजिए, AK-47 से गोली मारी है, तो क्या बच्चों ने पहले गोली चलाई है? पुलिस ही अग्रेशन का जन्म देती है, सबसे पहले वो अग्रेशन दिखाते हैं, उसके बाद बच्चे गुस्से में आते हैं, फिर उसके बाद तोड़फोड़ कर। हम तो कभी भी जहां पर भी हिंसा होती है हम उसका समर्थन कभी नहीं करते, हमने शुरू से Day 1-6 से हमने यही बोला है कि हमारा प्रदर्शन, हमारा आंदोलन जो है पीसफुल होगा। आप बता दीजिए 20 तारीख से पहले एक पुलिस वालों से हमारी कोई झड़प हुई हो? पुलिस वालों ने तो हमारा खाना पीना पानी सब बंद कर दिया, फिर भी हम उनके पैर छू के बोल रहे थे कि पानी तो आने दो, जो वहाँ के टॉयलेट थे वहाँ के पानी नहीं होता था, तो बताइए क्या करें हम। और रही बात जिंजी की, मैम जिंजी एग्रेशन है, एग्रेशन के मतलब ये एग्रेशन तोड़फोड़ नहीं, एग्रेशन है उसके साथ में इनजस्टिस होने का। ये देखिए स्विफ्ट SSC का कैंसलेशन है मैम, कितने 540 सेंटर में एग्जाम कैंसिल होते हैं, और ये वो बच्चे हैं जो अपने अनाज को बेच के उस एग्जाम सेंटर में जाते हैं और वहां पे पता चलता है कि आपका एग्जाम कैंसिल हो गया है। कुछ सेंटर में ऐसे सेंटर हैं, ऑडिट नहीं करवाते हैं कि वहां पे सिर्फ 250 सीटें होती हैं एग्जाम सेंटर के लिए और बच्चे बुला लेते हैं 500।
8: आप क्या करते हैं?
7: जी मैं यूपीएससी एस्पिरेंट हूं।
8: अच्छा, यूपीएससी की तैयारी कर
7: जी। तो अभी
8: दिया है आपने पहले या अभी देने वाले?
7: मैं तीन बार इंटरव्यू दे चुका हूं।
8: अच्छा,
7: बहुत सोच समझ के बोल रहा हूं ये सारी चीजें, और ये कोई मैं खुद नहीं बनाया हूं। आप एसएससी उसमें आप पीआईबी के साइड में चले जाइए, चेयरमैन बोलते हैं कि
8: क्या है, मतलब आप खुद बताइए। अब अगर इस तरह से डेस्परेट स्टूडेंट्स हुए तब तो वो सड़क पे है ना। मैं एक सेकंड जवाब लूंगी, लेकिन मैं एक एक करके इधर से भी एक एक रिएक्शन लेना चाहती हूँ। अपने बारे में थोड़ा बताते हुए शुरुआत कीजिएगा। ध्रुव शुक्ला, आप पत्रकारिता के छात्र भी हैं, आप जेंजी भी हैं, लेकिन आपको लगता है कि ये कम से कम प्रोमिनेंस में इस तरह से ये मुद्दा इसीलिए आया ना क्योंकि पेपर लीक की खबर आई, उसके बाद आज तक ने भी शोज किए, देश भर से छात्रों को हमने जोड़ा, ये हुआ, लेकिन ऐसे दबाव में तो सरकार नहीं आई थी, इस आंदोलन के बाद ही आई है।
9: नमस्कार, मेरा नाम ध्रुव शुक्ला और मैं जर्नलिज्म का छात्र हूं। जैसे कि आपने बोला कि दबाव में नहीं आई थी, वहां पे खाली स्टूडेंट्स ही थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे। स्टूडेंट्स के साथ हूं, नीट का जो पेपर लीक हुआ, जितने भी पेपर लीक हुए वो गलत थे, सरकार को कड़े नियम बनाने चाहिए थे। पर कल एक नोटिफिकेशन जारी करी, उसमें से पता चला है कि लगभग 2873 मामले उनपे पहले से थे और वे ऐसे वैसे कोई उनपे करप्शन के या फिर कोई छोटी मोटी चीजों के मामले नहीं थे वहां पे, जो दंगाई थे, नॉट अ स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट्स का दंगा किया होता तो पता चलता कहीं ना कहीं। जो वहां पे दंगाई थे उनपे रेप, मर्डर, पॉक्सो, ऐसे कई मतलब बहुत जघन्य अब हो रहे हैं। और आपने कहा कि पुलिस ने उनके ऊपर एक्शन उठाया, लाठियां चलाई। अगर आप संसद की तरफ बढ़ रहे हैं, संसद में जो पार्लियामेंट में पार्लियामेंट्रियंस हैं, अगर उनकी तरफ आप बढ़ के अगर हमला कर रहे हैं, मैं स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा हूं, जो वहां पे दंगाई थे वो अगर बढ़ जाते हो और पार्लियामेंट पर अगर कोई हमला होता तो क्या वो देश की बहुत बड़ी बेइज्जती ना होती इंटरनेशनल स्टेज पे? क्या आप चाहते थे कि वो पार्लियामेंट के लिए गेट खोल दिया जाए, वो आए आराम से अंदर बैठ के चाय नाश्ता करें? क्या आप इस चीज का इंतजार कर रहे थे?
8: आप जवाब दीजिए। आपको लगता है कि ये सही है क्योंकि चैलेंज बहुत बड़ा था? अब ये भारत है ना, कोई ये नेपाल और ये सब देख तो है नहीं कि पार्लियामेंट तक जाने दिया जाए। ये जो उनका आर्ग्यूमेंट है क्या सही? और जिन पर आरोप है, जो हिस्ट्री शीटर है, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए?
10: जो हिस्ट्री शीटर है, पहली बात, इन्होंने ये सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले एलिगेशन लगाए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वहां पर जो थे स्टूडेंट्स थे, उसके अलावा अगर इस तरीके के लोग आते हैं तो उसके जिम्मेदार होम मिनिस्टर अमित शाह जी हैं, उनका उसके उनके ऊपर एक्शन लेंगे, ठीक है। लेकिन रही बात स्टूडेंट्स की, स्टूडेंट सिर्फ पार्लियामेंट तक जाना चाहते थे, उमर जाना चाहते थे, उनको जाने में क्या दिक्कत थी?
8: उमर खालिद,
10: जिस देश के लोग,
8: खालिद स्टूडेंट्स के साथ में था,
10: उमर
8: खालिद सपोर्टर किसका था?
10: किसका था?
8: और उसके सपोर्ट में बोल रहे थे लोग कि हम उमर खालिद के सपोर्टर हैं,
10: उसमें क्या गलत है?
8: भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह बोलने वाले, वो भारत के सपोर्टर।
10: डॉक्टर्ड वीडियो थी, बाद में कोर्ट का नोटिस आया था, आप अभी व्हाट्सएप पर अटके हुए हो, आप बाहर आइए उसे, वो डॉक्टर्ड वीडियो थी, उसमें बाद में बोला था, उसमें चाहे कन्हैया कुमार थे चाहे उमर खालिद थे, वो दोनों निर्दोष
7: थे। ये टॉपिक ही
11: नहीं, अभी तो मैं आंसर दे चल रहा है, तो ऐसे निर्दोष का सर्टिफिकेट, ये कौन सी यूनिवर्सिटी है?
7: नहीं,
11: अगर कोई कोर्ट में अंदर बंद है, इतना एक राष्ट्रीय चैनल पे, मतलब आपकी भावना का सम्मान, किसी को भी सपोर्ट कर रहे, मैं तो आपके बीच में दोनों में बोलूंगा, पर कोई कोर्ट मामला कोर्ट में चल रहा है और कोई दोषी है इतने समय से बेल तक नहीं हुई, उसको यहाँ सर्टिफिकेट कैसे मिल सकता है कि वो दोषी नहीं था?
10: दोषी कैसे कह दिया?
11: अगर अगर आप नारा तो छोड़िए,
10: जब तक
11: अगर आपने एक अवसर गुरु के लिए कार्यक्रम रखा,
10: आरोपी है,
11: वही एंटी
8: बारी बारी आप बच्चों की विजय, हर्ष दुबे बारी बारी, हाँ हर्ष दुबे, आप नीट की भी तैयारी करने वाले छात्र हैं, बारी बारी आप बोल चुके हैं ना, ये दोनों इंतजार कर रहे हैं, एक एक बार बोलने। हर्ष दुबे, आप ये बताइए कि नीट की आप तैयारी कर रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि ये प्रेशर सरकार पर जरूरी है? बार बार अगर पेपर लीक्स हो रहे हैं तो भाई ये सबके घरों को अफेक्ट करने वाली चीज है। हर्ष,
12: बिल्कुल मैम, अगर मैं सबसे क्वेश्चन कर रहा हूँ एक कि अगर हमारे देश में निगेटिव मार्क लाने वाला बच्चा डॉक्टर बनेगा तो क्या हम कभी हेल्थ सिस्टम को 140 नंबर से फर्स्ट नंबर पे ला पाएंगे? अब प्रश्न ये है क्यों वो निगेटिव नंबर लेके आया? क्योंकि हमने कहीं ना कहीं उसकी बेसिक एजुकेशन अच्छी नहीं करी। अगर हम उसको फर्स्ट से ट्वेल्थ तक अच्छे स्कूल में पढ़ाते तो क्या वो निगेटिव नंबर लेके आता? नहीं लेके आता। ऑब्वियस किसी को आ रहा हो पेपर में जाके, ऐसा थोड़ी जान के गलत करेगा। उसको कहीं ना कहीं हमने फर्स्ट से ट्वेल्थ तक पढ़ाया ही नहीं। अब पढ़ाने के लिए क्या प्रॉब्लम है? सब कहते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल खुले तो हैं, पढ़िए जाके वहां, बच्चे पढ़े जाके। अगर एक गांव के गरीब बच्चे को हम उसको 200, वो दिन भर कबाड़ा बीनता है, कबाड़ा बीन के कितना ही कमा लेता होगा, 200 रुपए। अगर उसको हम वो 200 रुपए दे दें उसको खाने के लिए और उसको किसी भी अच्छे से अच्छे स्कूल में फ्री पढ़ाई कराई जाए, प्राइवेट स्कूल में, तो वो अच्छा पढ़ जाएगा। वो बच्चा उसी स्कूल में पढ़ रहा है जिस स्कूल में डीएम के बच्चे पढ़ रहे हैं, उसी में पढ़ रहा है जिसमें विधायक का बच्चा पढ़ रहा है, वो सभी किस लिए पढ़ रहे हैं कि मेरा नीट पैशन है, और वो जो गरीब बच्चा है वो किस लिए पढ़ रहा है कि मेरी मुझे अपनी मम्मी की फटी साड़ी बदलनी है, मुझे अपने पापा के पैर में चप्पल देखनी है, वो इसलिए पढ़ेगा, वो इसलिए पढ़ेगा कि मुझे अपने घर के टपकते हुए हालात पता है कि घर में पानी टपक रहा है, डब्बे रख रहे हैं बच्चे वहां, वो इसलिए पढ़ेगा, वो देश के नहीं वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टरों में बनके तैयार होंगे, वो देश के नहीं वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ साइंटिस्ट बनके तैयार होंगे, इस विषय पर कब चर्चा करी जाएगी? प्रॉब्लम यह कि हम हमेशा चर्चा किस पे करते हैं कि कॉज क्या था कि नीट पेपर लीक हुआ, उसके चक्कर में क्या हुआ प्रोटेस्ट हुआ, प्रोटेस्ट से क्या हुआ लाठीचार्ज हुई, अब हमने कॉज था नीट पेपर लीक इसको तो डिबेट से साइड कर दिया, हम किस पर आगे लाठीचार्ज पर, और सारी डिबेट में जिस चैनल पर भी जा रहा हूं हर जगह सिर्फ डिबेट किस पर है लाठीचार्ज पर, रियल कॉज पे कोई बात क्यों नहीं कर रहा, रियल कॉज पे कहीं बात नहीं हो रही, मैं सारे डिबेट चैनल में जा रहा हूं हर जगह जा रहा हूं सिर्फ बात कहां हो रही कि आप बताइए लाठीचार्ज जो इसका आप समर्थन करती है, सपा समर्थन करती है, कांग्रेस समर्थन करती है, बीजेपी समर्थन करती है, इस तरीके की बात नहीं करके
8: देश सवाल मैंने ना पूछा है ना मैं चाहती हूं उस पर फोकस हो, तो मैं इसीलिए पूछ रही हूं कि छात्रों को क्या
12: मिला, वही छात्रों को कुछ नहीं मिला, छात्रों की बात करी नहीं गई, एक बच्चा जो है जो नीट की तैयारी करता है उसको क्या चाहिए कि मुझे एक गवर्नमेंट सीट मिल जाए,
8: बिल्कुल
12: अब गवर्नमेंट सीट मिलने के लिए क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहला काम है
8: प्राइवेट कॉलेज में होगा तो फीस ही नहीं दे पाएगा, बच्चा
12: नहीं दे पाएगा,
8: तो फीस ही नहीं दे पाएगा, इतने बच्चे एडमिशन नहीं ले पाते हैं इस वजह से,
12: 50%
8: ऐसी हालत है,
12: 50% अगर प्राइवेट कॉलेजेस की सीट गवर्नमेंट फीस पे कर दी जाए जैसा कि कई जगह है तो कई बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहां पर,
8: ठीक है ऋषभ आपका
12: यूजी की
7: माइनस मार्किंग कभी नहीं गई है
12: यूजी में, नहीं पीजी में माइनस मार्किंग,
7: पीजी में गई है, वो भी प्राइवेट कॉलेज
12: में बात कर रहा हूँ मैं,
7: प्राइवेट कॉलेज में,
12: लेकिन
7: और ऐसे कोर्स में गई है
12: हमें, हाँ तो ऐसे
7: कोर्स में गई है जो कोई कोर्स नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, ये भी आप खुद
12: क्यों बना कि हमें कट ऑफ निगेटिव सेट करनी पड़ रही है,
7: मैं यही कह रहा हूँ
12: निगेटिव कट ऑफ से तो बिल्कुल ही गलत बात
7: है,
12: मेरा ही फ्रेंड है उसके उसके फ्रेंड का एक नंबर आया और उसके फ्रेंड का दूसरे का 220 नंबर है, उसको वो सीट नहीं मिली, एक नंबर वाले को मिल गई,
7: सर आप पीजी के कैटेगरी
8: और ऋषभ नॉट
7: ऋषभ पीजी के हैं यूजी के
12: यूजी
7: यूजी के हैं,
12: हाँ
7: आप पीजी के बारे में नहीं जानते,
12: अच्छा मुझे पीजी के बारे में पता नहीं है
7: इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि 19 सब्जेक्ट होते हैं, 19 सब्जेक्ट में फिर उसके बाद
12: नीट के कितने एग्जाम होते हैं जरा बताइए,
7: किसके
12: नीट के कितने एग्जाम,
7: सिर्फ एक एग्जाम होता है,
12: तीन एग्जाम होते हैं
7: सिर्फ, नीट का एक एग्जाम,
12: नीट यूजी नीट पीजी नीट एसएस,
7: वो बस स्पेशलिटी, उसी की बात कर रहा हूँ नीट का,
12: नीट के तीन एग्जाम होते हैं,
7: नीट का सभी कोर्स अलग अलग चीज है, मास्टर का अलग है यूजी का अलग है, इसे मैंने बोला कि जिसकी बात आप कर रहे हो कि माइनस मार्किंग जा रही है,
12: निगेटिव मार्किंग पे मैं डॉक्टर क्यों बनाऊं,
7: माइनस मार्किंग माइनस
12: निगेटिव मार्किंग पर डॉक्टर नहीं बनने चाहिए,
7: अरे
12: डॉक्टर को हम पढ़ाना चाहिए,
7: कोर्स नहीं ले रहे,
12: शिक्षा पहुंचानी चाहिए, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि उसको पढ़ा नहीं रहे,
7: सर वो माइनस मार्किंग गई है,
12: अरे माइनस चलो यार एक नंबर लेके बच्चे को डॉक्टर
8: बनाएंगे, गवर्नमेंट कॉलेज की नहीं गई है, प्राइवेट कॉलेज की नहीं,
12: बिल्कुल तो उसको डॉक्टर हम क्यों बनाएंगे,
8: चलिए अब ऋषभ नौटियाल को बोलने,
12: जिनके पास पैसे तो वो डॉक्टर बन जाएंगे निगेटिव नंबर लाके,
7: क्योंकि
12: यही तो प्रॉब्लम है कि जो जिसके पास पैसे वो निगेटिव नंबर लाके डॉक्टर बन जाएगा, अभी आपने पॉइंट उठाया कि जिसके पास पैसा है तो वो देश में निगेटिव नंबर लाके भी डॉक्टर बन सकता है, वाह
7: प्राइवेट में कौन
12: जाता है, तरीका
7: प्राइवेट में कौन जाता है,
12: वर्ल्ड
7: कौन जाता है,
12: क्या तरीका है, प्राइवेट में कौन नहीं जाता है,
7: कौन जाता है,
12: प्राइवेट में इलाज कराता है मोस्ट ऑफ लोग,
7: तो प्राइवेट कॉलेज बंद करवा दीजिए,
12: बंद क्यों करा दे, हम पॉजिटिव नंबर लेकर आए ना, हम ऐसा क्यों नहीं हमारा कि प्राइवेट कॉलेज बंद करा देंगे, बंद कराने के लिए किसने बोला, अच्छा पढ़े ना, मतलब आप चाहे निगेटिव नंबर लाके बनता है डॉक्टर,
7: माइनस
12: नहीं कर रहा उसको पढ़ाइए, आप ये घबरे ना निगेटिव नंबर लाके मैं डॉक्टर बनाऊंगा, पैसा है तो मैं डॉक्टर बनाऊंगा, निगेटिव नंबर लाके
7: कैसे आए,
12: ऐसे देश का विकास कैसे होगा,
7: कैसे आए,
12: उसके आगे लिखेगा तो एमबीबीसी, अगर वो निगेटिव नंबर लेके आया उसने एमबीबीएस कर ली किसी प्राइवेट कॉलेज से, उसके आगे एमबीबीएस नहीं लिखेगा क्या, उसके आगे क्या मार्क्स लिखता है,
7: कोई जवाब दे दो,
12: उसके आगे कोई मार्क्स लिखता है, आप कहना क्या चाहते हैं,
7: 19 सब्जेक्ट है, 19 सब्जेक्ट वो बच्चा पढ़ के आया है, उस बच्चे के ऑलरेडी 72-76% हैं, ऐसा नहीं है कि वो पेपर, उन बच्चों ने उस कोर्स को नहीं एक्सेप्ट किया जिस कोर्स में माइनस मार्किंग गई है, पहले आप एक बार पढ़ लो, पढ़ने के बाद पता चलेगा एक्चुअली माइनस मार्किंग गई क्यों है, ये रिजर्वेशन जिसमें आप जा रहे हो वो नहीं है, ये कहानी कुछ और है, पहले पढ़ो आप,
8: बाद में अब आपके पास आ रहे हैं, क्या छात्रों को क्या मिला, एक बेसिक सवाल है, क्या आपको लगता है कि इससे उनका हल उनको मिला है वाकई, या फिर ये पॉलिटिक्स होकर इस पर पूरा ऐसे हो गया है?
13: देखिए सबसे मेन बात जो है इसमें छात्रों को कुछ नहीं मिला, क्योंकि देखिए मुद्दा शुरू हुआ था जो नीट एग्जाम के बाद जो बच्चों ने सुसाइड किए थे उसके बाद मुद्दा शुरू हुआ था मेन, पर यह मुद्दा कहाँ आकर रुका, यहाँ पर बात हुई कि नाम रहेगा अल्लाह का, यहाँ पर बात हुई कि अगर भारत अगर माता है तो उसका पिता कौन, उसका बाप कौन है, पिता भी नहीं कहा गया, उसका बाप कौन है, अगर यहाँ पर बात की गई कि जो अफजल गुरु, जो मैं स्लोगन की बात नहीं करूँगा, अगर यहाँ पर लोग क्रिटिसाइज करते हैं उस चीज़ को, अगर यहाँ पर उसके समर्थन में बात करते हैं, बट अगर ये नेट का मुद्दा है तो यहाँ पर आप इसका राजनीतिकरण क्यों कर रहे हैं, लोग अपना राजनीतिक चेहरा चमकाने के लिए, जो आज कांग्रेस सरकार आज उसके प्रधानमंत्री आवास का घेराव कर रही है, पहले इस प्रोटेस्ट में क्यों नहीं आई? जहां पर जब छात्रों के मुद्दे उठाए जा रहे थे तब वहां पर क्यों नहीं आई? लेकिन जब देखा गया कि अब वो हो गया है, लाठीचार्ज हो गया है, अब सरकार को हम घेर सकते हैं, उस समय वहां पर कांग्रेस सरकार के प्रवक्ता भी आए, काफी सारे इन्होंने उसके प्रधानमंत्री आवास का घेराव किया कि नहीं ये चीजें गलत हो रही है, ये चीजें गलत हो रही है। पर मेन मुद्दा वो है कि जो नेट प्रोटेस्ट मैं स्टार्टिंग में समर्थन कर रहा था सीजेपी का कि चलो भाई किसी ने छात्रों के लिए आवाज उठाई है, परंतु जब वहां पे देखा गया कि आप किसी भी एक चीज को नेट का मुद्दा रहने नहीं दे रहे हैं, आपने उसको एक धार्मिक मुद्दा बना दिया, आपने उसको एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया, और धार्मिक मुद्दा भी लोग आगे वहां पर सिर्फ एक वो है कि आप एक सनातन धर्म को आप टारगेट कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ। आप बात करते हैं सेक्युलरिज्म की, अगर आप सेक्युलर हैं तो आप हर धर्म के खिलाफ बोलिए मत, या फिर बोलना है तो सबके खिलाफ बोलिए। आप बात करते हैं कि सीता के पति का नाम लेकर नीता, मेरे को उसके प्रॉब्लम नहीं है, लोग मेरे से डिबेट करते हैं कि सीता के पति में प्रॉब्लम क्या है, सीता के पति है राम, मैं बिल्कुल बोलता हूँ सीता के पति है राम, और हमारे सनातन धर्म में जो भी देवी देवता है उससे पहले उसकी धर्म पत्नी का नाम लिया जाता है, चाहे वो गौरी शंकर हो चाहे वो राधे कृष्ण हो, सबसे पहले धर्म पत्नी का नाम लिया जाता है। लेकिन आप उस कॉन्टेस्ट में उसके बोल रहे हैं कि आप सीता का पति नीता का पति, इससे आप क्या वो करना चाहते हैं? आप सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं, आप वो चीजें वहां पर ला रहे हैं जो चीजें नहीं होनी चाहिए थी। आप अगर नेट का मुद्दा है, नेट पे आप सरकार का घेराव करिए। मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं करता, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, मैं छात्र हितों के लिए आगे आऊंगा जहां पर छात्र हितों का होगा।
8: ठीक है राम जी, इसका जवाब वो दे दें क्योंकि उनके मंच से ये सब बोला गया है।
7: पहली बात तो ये कि मेरा नाम खुद का राम है, और वहाँ पे हम लोग खड़े थे जब ये कौन थे, कुणाल समथिंग,
9: कुणाल कामरा,
7: उन्होंने बोला था, हमने उनको रोका भी था कि आप ऐसा नहीं स्टेटमेंट देंगे, बट उन्होंने क्लियरली बता देता हूँ, आप बता दीजिए उनमें से क्या रॉन्ग था, क्या सीता जी के पति नहीं है राम जी?
13: मैंने बोला
7: एक मिनट, एक
11: मिनट, मेरे को नहीं लगता इसको एंडोर्स करना चाहिए। आप शिक्षा की व्यवस्था पर बात करना चाहते हैं?
7: अगर आपको बुरा लगा, अगर आप मैं आपको
11: चैनल पे उसका
7: मैं राष्ट्रीय चैनल से बोल रहा हूँ, पहली बात ये
11: सपोर्ट करेंगे नहीं करना चाहिए।
7: सर मैं वही कह रहा
11: हूँ, सम्मान के साथ कह रहा हूँ, छोड़ इस बात,
7: अगर आपको बुरा
11: बात करिए
7: सर, अगर आपको बुरा
11: लगता है मुद्दा सीता के पति नीता के पति है क्या? शिक्षा में बात,
7: नीता के पति नहीं बोला गया सर।
11: अरे आप, अरे मैं कह रहा हूँ प्रभु, अगर आप हाथ जोड़ के कह रहा हूँ शिक्षा में बात क्यों नहीं करना चाह रहे
7: सर?
11: आप क्यों जाना चाहते हैं उस राह पे?
7: वो सर आप
11: वहां खड़े होकर 370 की बात करनी है, प्रभु राम की बात करनी है,
7: किसी ने नहीं,
11: अरे कैसे नहीं करी
7: नहीं?
11: आप जस्टिफाई कर रहे हैं अभी कह रहे हैं किसी ने नहीं करी।
7: सर
11: मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप शिक्षा पे बात करिए,
7: सीता के पति
11: टॉक अबाउट रिफॉर्म्स, टॉक अबाउट शिक्षा पे आप क्या चाहते हैं उस पे?
7: चलिए रिफॉर्म के बारे में बात करते हैं
11: प्लीज।
7: आप पहले बताइए 540 शिफ्ट कैंसिल हुई है एसएससी की, आपने क्या किया?
11: आपने ये उठाया विषय, मेरा बोलने का मौका नहीं आया, मैं बोलूंगा
7: अभी, आप बोलिए
11: उसके बाद। हाँ,
7: हमने स्टूडेंट कमीशन की डिमांड रखी, दो साल से रख रहे हैं, कंटिन्यू रख रहे हैं, कोई मिनिस्ट्री नहीं बची आपकी तरफ से, बीजेपी की किसी भी मिनिस्ट्री में आप जाके चेक कर लीजिए, हर मिनिस्ट्री में लेटर है स्टूडेंट कमीशन की, आपने क्या किया? यूपीएससी की एक फाइल है, ये फाइल, इसमें जितने ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट फेक बनवा के आए हैं, आपने इसके लिए क्या किया? आप बताइए, जवाब दीजिए मुझे।
11: ठीक, मैं उत्तर देता हूँ। कई बातें आई और खासकर कई छात्र बोले। सबसे पहले तो डिमांड्स को लेकर के बात हो रही है। मेरी तो इच्छा ऐसी थी कि डिमांड्स का चार्टर बहुत बड़ा होना चाहिए था जंतर मंतर पर डिमांड तीन ही दी गई थी, एक था रेजिग्नेशन, एक था कॉम्पनसेशन, एक था नो प्रोसिक्यूशन, तीन ही डिमांड थी। सरकार को कोई चार्टर, मेरी इच्छा थी और मैंने कुछ छात्रों को बोला भी था कि अगर वास्तव में बात कर रहे हैं तो एक बड़ा चार्टर आना चाहिए, पर सरकार को आपने तीन मांगे रखी, वो तो मांगी ली, जो आपने नहीं मांगा था सरकार ने दी हाई पावर्ड कमेटी। जैसे 2024 से पहले पूर्व इसरो चीफ के नेतृत्व में हमने राधाकृष्णन जी के नेतृत्व में कमिटी बनाई थी, आपने बोला आप कानून बना रहे हैं इसका मतलब यह है कि आप चाहते हैं पेपर लीक हो जाए और उसके बाद आप रोकेंगे। नहीं दोस्त, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कानून तो आपको बनाना पड़ेगा कि अगर कोई हिम्मत करे तो उसके साथ क्या हो, पर प्रिवेंशन, मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला था, आप मेरे को मौका दीजिए उसके बाद बोलिएगा, पर प्रिवेंशन के लिए राधाकृष्णन कमिटी हमने बनाई, प्रिवेंशन के लिए नंदन नीलकणी जी के अध्यक्षता में कमेटी हमने बनाई, उसका कॉम्पोजिशन ऐसा बनाया कि हर क्षेत्र के व्यक्ति को, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट, और नंदन नीलकणी जी भाजपा के नहीं है, 14 में कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़े थे, पर जब छात्रों की बात होगी तो सबको साथ लेकर के आना पड़ेगा, यह हमारा उद्देश्य था। अगर अगर बात होनी है शिक्षा व्यवस्था पर, अंजना जी मैं पूछता हूं कितनी सीटें थी नीट की 2014 में? नीट पर ही है ना पूरा आंदोलन, ओनली 50,000, 10 साल के अंदर 1,13,000 सीट्स एवरी ईयर, 10 साल में किसी सरकार ने अगर नीट की सीटें डबल करी हो तो मुझे बता दीजिए, 10 साल के अंदर अगर 16 से बढ़ाकर के 23 आईआईटी कर दियो तो मुझे बता दीजिए, अगर 13 से 21 आईआईएम कर दियो तो मुझे बता दीजिए, ट्रिपल आईटी 9 से बढ़ाकर 25 कर दियो तो मुझे बता दीजिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंपॉर्टेंस इंस्टीट्यूट को 75 से बढ़ाकर 150 कर दिया तो मुझे बता दीजिए, 10 साल में, अगर 10 साल में, और उसको छोड़ दीजिए 14 में जब हम आए शिक्षा का बजट था 8,224 करोड़, आज है 1.1 लाख करोड़, एक लाख करोड़ शिक्षा का बजट किसी सरकार ने भारत के इतिहास में क्रॉस किया हो तो उसको बता दीजिए, पर शिक्षा मुद्दा नहीं है
8: पर लीक
11: और शिक्षा
8: हुआ?
11: कभी मुद्दा नहीं था।
8: लीक हुआ, क्यों हुआ?
11: गलत हुआ।
8: और क्यों
11: लीक
8: लीक ओएसएम में मार्किंग में सीबीएसई में गड़बड़ी क्यों हुई?
11: मैं उसी का उत्तर,
8: अरे बच्चे परेशान हुए तब वो आए। एक सवाल मैं भी
11: पूछूं, बिल्कुल गलत हुआ
8: ओएसएम,
11: लीक हुआ बिल्कुल गलत हुआ ओएसएम,
8: सीबीएसई के बच्चों को जो दिक्कत थी उसकी जवाबदेही किसकी है?
11: पंजाब का भी गलत है, लीक कर्नाटक का भी गलत है, अभी झारखंड में हुआ वो गलत नहीं,
7: बिल्कुल है
11: क्या क्या तेलंगाना का गलत नहीं?
8: तो आप लोग तो प्रोटेस्ट नहीं कर रहे पंजाब में?
11: बताओ
7: जा रहे हैं
11: कब जा रहे हैं?
14: कांग्रेस करो, दोनों बच्चे
11: ने तो मना कर दिया, दीपके ने तो मना कर दिया,
7: हमने पूरा डिसाइड किया है।
11: क्या क्या
7: कौन जाए?
11: ब्रेकिंग दो,
7: दीपके
11: कब जा रहे हैं पंजाब? सीजेपी
7: सर
11: कब जाएंगे?
7: हमारी कमेटी पूरी रेडी हो रखी है, जहां जहां पर पेपर लीक होगा
11: आप डेट बताओ। जहां जहां नहीं, अभी फार्मेसी का पेपर लीक हुआ पंजाब के अंदर, अभी वहां के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा सीजेपी का मांग रही है अभी ब्रेकिंग।
7: सर अभी आप मुझे यूपी में पेपर लीक हुआ,
11: अरे भैया मैं पंजाब पूछ रहा हूँ, भाग रहे हैं आप?
7: मैं भाग नहीं रहा
11: हूँ। तो आप पंजाब का उत्तर दीजिए
7: सर मुझे,
11: पंजाब में कब जा रही है सीजेपी?
7: सर दो से तीन दिन रुक जाइए, बिल्कुल
11: दो से तीन दिन में अनाउंस करेगी,
7: बिल्कुल
11: ब्रेकिंग है। अगर नहीं करी तो ट्विटर पर टैग करके अभिजीत दीपके से लेकर के सौरभ दास तक को माफी मांगनी चाहिए।
7: नहीं
11: ये दोस्तियां नहीं हो सकती, हमारी आम आदमी पार्टी से दोस्ती अच्छी है तो पंजाब का छात्र दिखेगा नहीं,
7: लोग के लिए
11: कर्नाटक का दिखेगा नहीं, तेलंगाना का दिखेगा नहीं, ऐसे नहीं हो सकता।
7: अच्छा एक कमेटी पूछना
11: चाहता हूं,
7: एक कमेटी आज
11: नहीं हो सकता,
7: मैं कमेटी नाम
14: पूछूंगा, यहां कांग्रेस भी बैठी है,
7: एक कमेटी
11: डायरेक्ट,
14: अरे भाई
7: एक कमेटी आपने बनाई है 2015 में,
14: बात कर लीजिएगा जरा,
8: इनका वो बोलिए
14: बस जवाब जवाब देने दीजिए,
8: उसके बाद आ रही है बारी बारी फिर से
7: बसवन कमेटी,
11: इनके यहां भी कर्नाटक और तेलंगाना,
7: सर बसवन कमेटी का नाम
11: कर्नाटक,
7: सर मैं आपसे पूछ रहा हूं बसवन कमेटी का नाम,
14: देखिए चिल्ला मैं भी सकता हूं, मैं बोल नहीं रहा हूँ, इसका मतलब नहीं है,
8: बोलिए अजय जी, बोलिए
14: आप चिल्ला रहे हैं,
8: बोलिए अजय जी,
14: आपने आपने 10 साल की बहुत 10 साल की बात आपने बहुत अच्छी की है, 152 पेपर वाकई किसी सरकार में नहीं लिखे हुए 10 साल में, 1 लाख स्कूल प्राइमरी से लेकर और मिडिल स्कूल किसी भी सरकार में नहीं बंद हुए, इसका भी जवाबदेही आपको लेना चाहिए। शिक्षा के बजट की बात कर रहे हैं, शिक्षा का बजट जितना आपने दिया है और जो रेशियो होना चाहिए उस रेशियो को आप पुरानी सरकार का, मैं भाजपा की सरकार पुरानी अटल जी की सरकार का भी डेटा दे देता हूं, उनकी और मनमोहन सिंह जी की सरकार के डेटा देख लीजिएगा, परसेंटेज ऑफ कितना था और अब परसेंटेज कितना है,
8: आप ये आप कितना देख लीजिए,
14: छोड़ दीजिए,
8: हम
14: 2.6 थे आज 2.4 है आपका टोटल बजट का,
8: नहीं नहीं पेपर लीक कितना होता था?
14: ना, पेपर लीक का डाटा इनको देने दीजिए, हम और आप क्यों पूछ रहे हैं?
8: आपका है,
14: हमारा तो 152 इनका है, मेरे
11: अपना
14: पास
11: नहीं बताएंगे,
14: सजा 10 साल में सजा जीरो हुई, 10 साल में सजा, फिर बीच बीच में चिल्ला रहे हैं,
8: बारी बारी में बारी बीच में नहीं,
14: यदि आप लोग बीच में बोलिए,
8: बोलिए
14: जीरो सजा, सजा जीरो हुई, फास्ट ट्रैक कोर्ट वाकई बनाया था और इन्होंने एक कमेटी भी बनाई थी राधाकृष्णन कमेटी, 101 रिकमेंडेशन, यदि एक रिकमेंडेशन उसका माना हो तो आप बता दीजिए, फिर आपने बताया मैंने सुन लीजिए, जवाब दे दीजिएगा आप, उसके बाद
8: आपने
14: आपने सीबीआई से भी पिछले नीट एग्जाम का जब हुआ सीबीआई से आपने जांच कराई, संजीव मुखिया जो उसका मुख्य आरोपी है वो बरी हो गया, क्लीन चिट हो गया, क्लीन चिट देने का कितने लोग दोषी हुए, सजाए साजा किस कितने लोगों को मिली ये देख लीजिए, और अभी अभी ये 26 वाला अभी तो 4-5 दिन ही हुआ, आपके पास सीबीआई के वकील के पास समय नहीं था कि वो जा पाए और अपनी बात रख पाए इन बच्चों के भविष्य के लिए,
8: दो पॉइंट राधाकृष्णन कमेटी की कौन से रिकमेंडेशन को आपने लागू किया है,
14: सिर्फ
8: और दूसरा सीबीआई का लॉयर पहली हियरिंग में नहीं पहुंचता है क्या?
14: इतना सीरियस
8: आप कह रहे
11: संजीव
14: जी, बहुत
11: सबसे पहले तो पूछा राधाकृष्णन कमेटी का, 101 रिकमेंडेशंस आई थी, मोर देन 2/3 कंप्लीट हुई, उसमें जो रिकमेंडेशंस थी मैं उसी का बता रहा हूँ, जो रिकमेंडेशन थी उसमें सब एक साल में होनी भी नहीं थी, राधाकृष्णन कमेटी ने बोला फेज मैनर में आप इसको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराइए, सरकार ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी है अगले साल से नीट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी है, वो एक साल की रिकमेंडेशन है पहली बात। दूसरी बात संजीव मुखिया का पूछा, ये नहीं अब आप सेम वो काम क्यों कर रहे हैं, आप बूमर वाला काम क्यों कर रहे हैं, जेंजी वाला काम करिए, बीच में ना बोलिए, ऐसे ना करिए,
8: अब कंप्यूटर बेस करने के पहले एक सेकंड एक कमिटमेंट मुझे लेने दीजिए,
11: प्रश्न आसान है,
8: एक सेकंड, कंप्यूटर बेस करने के पहले पूरी तैयारी कर लीजिएगा, जो ओएसएम में हुआ है मार्किंग में ऐसा कुछ खेल ना हो जाए
11: अंजना जी, वरना इसीलिए क्योंकि तैयारी उसमें बहुत आवश्यक है और देश भर में सेंटर्स बन रहे इसीलिए समय लगेगा,
8: सेंटर्स चाहिए
11: और कंप्यूटर बेस नहीं कर सकते, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, इसीलिए, पर ये कौन समझाए इनको कौन, अभी देखिए राजनीति कितनी भारी होती है, इन्होंने बोला कितने स्कूल बंद हो गए, केंद्र कौन से स्कूल चलाता है, केवी ना वो दे पीएम श्री, बताइए कौन बंद हो गए? अरे एजुकेशन स्टेट का विषय भी है, कॉन्करेंट लिस्ट में राज्य सरकार स्कूल चला के बता दूं आपके राज्यों में कितने स्कूल बंद हुए, हिमाचल में कितने हुए, कर्नाटक में कितने हुए, तेलंगाना में कितने हुए? मुद्दा अगर ये होगा
8: फिर जेंसी को कम देंगे, जल्दी से पूरा कीजिए, जेंसी को बोलने दीजिए, जेंसी को बोलने दीजिए,
11: मैं बस अपनी बात खत्म। अगर आप लगातार राजनीति करने के लिए शिक्षा को औजार बना करके अपनी रोटी सेकेंगे, देश भर में आपको कोई पसंद नहीं कर रहा, आप सोचें कि इसमें से मैं निकाल लाऊंगा कुछ फायदा, तो ऐसा
8: नहीं करना
14: चाहिए।
11: जेंजी जी हमारे साथ है, तभी उड़ीसा जीते, आसाम जीते, बंगाल
8: जीते,
11: आप बना लीजिए 12 बजे,
8: बोलिए बोलिए बोलना पड़ता है, अरे नेताओं को चुप करना बहुत, अब आप लोगों को समझ में आ रहा है कितना मुश्किल काम है।

0: है कि जो हमारे देश में महिलाओं को बलात्कार होता है, लड़कियों को बलात्कार होता है, उसमें फास्ट एक कमिटी बनती है, रिपोर्ट बनती है, लेकिन आज तक कोई एक्शन हुआ? किसी को मतलब ये लगा महीने दो महीने में किसी को फांसी की सजा हुई?
1: इसका जवाब आप जरूर दीजिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के बाद, क्योंकि आप तो
0: देश में कितने रेप
1: सुप्रीम
0: होते
1: कोर्ट के लॉयर भी है सिद्धार्थ जी,
0: यूपी में हुए, उन्नाव में हुए,
1: क्या
0: आपने फांसी दी किसी को?
1: फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनने से फास्ट कन्विक्शन हो पाता नहीं होता है? बहुत लंबे मामले और निर्भया में भी हमने देखा,
0: जब आप देश की बहनों को, देश की महिलाओं को न्याय नहीं दिलवा सकते, नीट में क्या दिलवा रहे
2: हो? फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने से फास्ट कन्विक्शन नहीं, फास्टर कन्विक्शन होता है। और हमारे देश के कानून में आप किसी को भी, अब वो दोषी है या नहीं है मैं नहीं बोल रहा, मैं केवल कानूनी पेचगिदी से बोल रहा हूं, आप उसको एक महीने में दोषित नहीं कह सकते। आपको फास्ट ट्रैक कोर्ट के प्रोविजन में भी, अभी जो बिल है उसमें भी डालना पड़ेगा कि तीन महीने में उसको हाईकोर्ट में अपील का चांस है, आप उसका अपील का चांस नहीं ले सकते। पर फास्टर कन्विक्शन, अगर 2 करोड़ 4 करोड़ से ऊपर केसेस हमारे कोर्ट्स में लंबित है तो फास्ट ट्रैक कोर्ट की संख्या केवल 2 लाख है, इट्स द प्रायोरिटी। और सरकार छात्रों को यह प्रायोरिटी दे रही है, पहली बार किसी सरकार ने सोचा कि पेपर लीक इतना जघन्य अपराध है जैसा रेप है, कि छात्रों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, इसलिए उस पर आपको फास्ट
0: ट्रैक के साथ
2: हम छात्रों पर बात क्यों नहीं हुआ? हम राजनीति में छात्रों पर बात कर रहे हैं
3: सर,
2: हम छात्रों में।
3: मेरा क्वेश्चन है
1: शुक्ला जी,
3: मैं बस
1: जल्द
3: मेरा क्वेश्चन ये है कि सर हम लोग 20 तारीख तक बैठे रहे, हमने पार्लियामेंट का कॉल देने से पहले, सही बताइएगा, बीजेपी को होश नहीं था कि लॉ की जरूरत है? रातों रात 2 दिन में आपने लॉ बना दिया, जो कि हमारी स्टूडेंट कमीशन की आप जिसकी बात करें ना, 2 साल से पहले से मांग कर रहे थे आपके मिनिस्टर से, आप 2 दिन में बना दिया, और उसमें ये बताइए आप सिस्टम इंपावर कर रहे हैं या स्टूडेंट इंपावर कर रहे हैं? ये दोनों में
2: दोनों में आपने पूछा 20 दिन से बैठे थे आपको होश था या नहीं था?
3: जी
2: आपके नेता जब लैंड नहीं हुए थे ना, उससे पहले हमको होश था, उनने सोचा था पार्लियामेंट स्ट्रीट जाऊंगा परमिशन लूंगा, हमने उनको एयरपोर्ट पे परमिशन थमाई। आपका अधिकार है प्रोटेस्ट करना, आपको सुविधा दी, आपको कहा बैठिए और प्रोटेस्ट करिए, ये हम होश में थे या नहीं थे?
3: थैंक यू सर।
2: अरे हम तो आपको कह रहे हैं आप आइए, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा, ऐसा नहीं, मैं आपको बताता हूँ दोस्त, आप यूपीएससी का एस्पिरेंट है, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ाई हुई, अरे मेरा उत्तर भी सुनिए, आप यहाँ पर उत्तर भी सुनने आए, अगर
3: नहीं
2: किसी पर कोई एहसान, मैं छात्र आंदोलन में रहा हूँ 10 साल, स्टूडेंट एक्टिविस्ट रहा हूँ, 20 दिन अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर बैठा, हमने तो कभी नहीं बोला कि भारत के टुकड़े कर दो, क्यों बोलेंगे?
3: कौन बोला?
2: क्यों बोलेंगे? ये वर्दी वालों को हटा दो, हमने तो कभी नहीं बोला, हमने तो आप उसका उसका खंडन भी नहीं कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आप लोग ठीक है, पर वो लोग जो ऐसे नारे लगा रहे थे वो गलत थे, आप तो उनको भी नहीं बोल पा रहे,
3: बिल्कुल गलत
2: है, आप तो यहाँ पे प्रभु राम के लिए जो बात बोली गई उसको भी जस्टिफाई कर,
0: आपकी सरकार
2: है, आप होम मिनिस्टर हैं, आप दोनों बिल्कुल ठीक है, पर मैं कहता हूँ जिनने वो बोला था वो गलत थे, आप बोल के दिखाइए, सीजेपी का एक व्यक्ति नहीं बोल पा रहा जिनने हमारे मंचों से ऐसे नारे लगाए वो गलत थे, एक व्यक्ति नहीं बोल पा रहा, क्यों
3: सर?
2: मैं कहता हूँ आप लोग ठीक है, सीजेपी ठीक है, अरे दिपके भी ठीक है,
3: आप गलत,
2: पर आप लोग वहां जाकर के नहीं बोल पा रहे, ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी दोस्त, युवा है तो हमारी जिम्मेदारी भी है, अधिकार है तो हमारी ड्यूटी भी है,
1: सिर्फ नैरेटिव की लड़ाई होगी कि तुम्हारा नैरेटिव अलग, तुम्हारा नैरेटिव, देखिए देखिए एक सेकंड,
2: प्रभु आपके नाम से क्या हुआ?
3: नहीं,
2: आपके आचरण से होगा,
3: आचरण
2: लाइए ना,
3: तो
2: आपको आक्रोशित होना चाहिए था, गलत को गलत कहने में क्या गलत है?
3: बीजेपी बोलता गलत को गलत,
2: बीजेपी सही को सही,
3: सर
1: चले
3: बीजेपी अगर
1: शुक्ला जी बोलिए
3: एक पॉइंट,
1: ये जो इश्यू वो कह रहे हैं नैरेटिव की लड़ाई नहीं होनी चाहिए ना, कि भाई हमारा नैरेटिव छात्रों का, इसमें नैरेटिव कैसे अलग अलग हो जाएगा?
4: और आप छात्र हैं तो छात्र के हित की बात कीजिए, वो तो आप कर नहीं रहे हैं, आप तो भाजपा के
1: फिर ये शुरू
4: पूछना पड़ेगा,
5: अगर मैं भाजपा का खिलौना हूँ तो क्या वो कांग्रेस के खिलौने? क्या वो आम आदमी पार्टी के खिलौने? आपने मुझे तो बोल दिया, अब आप उधर भी बोलिए,
4: भाजपा की तरह नहीं, छात्र के हित में,
5: आप उधर भी बोलिए ना, मैं छात्र हित में बोल रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे दंगाइयों के चक्कर में
3: क्या काम
1: चलिए, बोलो बोलो बोलो बोलो बोलिए बोलिए, जेन जी को रोकना,
4: बोलिए छात्र के बारे में क्या,
1: हम लोग का जनरेशन थोड़ा
2: इनसे ना पूछ लीजिए,
1: बोलने दीजिए इनको,
2: ये जो लिख के देंगे वही बोलना, लिख के पूछ लीजिए और बता दीजिए,
4: अरे नहीं वो तो मैं जान रहा हूं,
3: ये लिख के
2: बोल दीजिए,
4: इसका जवाब दे लाए हैं, लिख के लाए हैं,
3: ये लिख के लाए
4: हैं,
3: इसका जवाब दे दो,
5: अरे आप जवाब न मांगो, पार्टी में गए थे कि नहीं गए थे ये बताओ,
3: कौन सी
5: पार्टी? जेपी में बाद में पार्टी हुई,
3: बिल्कुल गया था, सेलिब्रेट भी किया था, इसलिए गए थे क्योंकि
5: जिन बच्चों को वहां चोट लगी
3: पार्टी से बड़ी चोट हुई,
5: लेकिन पार्टी करने के समय ये नहीं कि वहां जाके बच्चों के साथ खड़े होते, अस्पताल जाके मिलते बच्चों से, पार्टी पहले कर।

0: कौन नहीं गया?
1: पार्टी में नहीं गए? पार्टी करनी चाहिए थी, करनी चाहिए थी पार्टी।
0: हमारी
1: बच्चे वहाँ पे अस्पताल में सड़ रहे हो, तुम पार्टी करोगे?
0: जिनजी का एक अलग नैरेटिव,
2: उसको जबरदस्ती लड़ाई मत कीजिए, पार्टी लड़ाई में इसको मत उलझाइए। वापस टॉपिक,
0: आप लोग कुछ भी बोलते रहते हो।
3: कि राइट टू एजुकेशन एक 2009 में एक बिल पास हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, तो उसके थ्रू सरकार को एक ऐसा नियम लाना चाहिए कि प्राइवेट स्कूल में भी अगर कोई गरीब का बच्चा कराना चाहे उसके लिए सरकार पूरी मुहैया करे। और दूसरी चीज, प्राइवेट स्कूल्स में आरटीई के लिए अलग से एक रिजर्व, मतलब बोल सकते हैं कि एडमिशन इतने बच्चों का, और वो रिजर्वेशन बेसिस पे ना हो प्लीज, कि अगर आप जनरल से हैं तो इतना इतना, वो ना हो। आप उनका कैलिबर देखिए, आप उनका एंट्रेंस एग्जाम लीजिए, और अगर ऐसा होता है तो उससे प्राइवेट स्कूल्स में भी अच्छी, मतलब बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल पाएगी।
1: ऋषभ,
4: छात्र हितों की तो यहाँ पर बात ही नहीं हो रही है। देखिए, आपका सीजेपी का मुद्दा था, लाठियां अभिजीत दीपके को लगी, लाठियां कहां पर चोट है अभिजीत दीपके को? विजेता दहिया को कहां? विजेता दहिया एनएसपी पे बर्गर खा रहा था उस टाइम, जिस टाइम छात्र लाठियां खा रहे उस पे जंतर में, उस पे प्रोटेस्ट में,
5: मतलब कह दिया इन्होंने, वो कार किया था उनको।
0: नहीं नहीं, मैंने यार, नहीं
4: देखिए सर, आपको आप बोल, आप सीजेपी के प्रवक्ता को जब स्टार्टिंग में जंतर मंतर की परमिशन मिली थी कि आप यहां पे प्रोटेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद आप प्रोटेस्ट के परमिशन लेके आप वहां पे बोल रहे हैं डेमोक्रेसी खतरे में। अगर डेमोक्रेसी खतरे में आपको एक दिन के प्रोटेस्ट की परमिशन मिली थी, आप 20 दिन तक जंतर मंतर में बैठे रहे, ठीक है, छात्र
0: करने के लिए परमिशन नहीं चाहिए होती।
4: आप छात्र देखिए, प्रोटेस्ट के लिए अगर आप किसी राष्ट्रीय स्मारक पे अगर प्रोटेस्ट का परमिशन चाहिए होती है,
0: पीसफुल कर सकते हैं।
4: नहीं नहीं नहीं,
0: कहां लिखा हुआ बताइए?
4: आप संसद में, आप संसद पे कूच कर रहे थे, आप उसके आपको परमिशन नहीं मिली थी, इसलिए जो प्रोटेस्ट के मुख्य चेहरे थे वहां पर दिखे नहीं। लाठियां किसने खाई? क्योंकि उन्हें पता था हमको परमिशन
0: नहीं मिली है। आप जो चश्मा लगा के देख रहे हैं ना, आपको
4: चश्मा आपने लगाया हुआ,
0: आपने
4: नहीं लगाया हुआ।
6: जैन जी की तरह बात नहीं कर रहे हैं, सरकार के प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं। आप जैन जी की तरह नहीं कर रहे, हमारा अधिकार है प्रोटेस्ट करना, परमिशन की जरूरत नहीं है।
4: अधिकार बिल्कुल है,
6: परमिशन की जरूरत नहीं है।
2: सवाल कुछ और है, आप लोग सवाल नहीं सुन रहे, वो कुछ और कह रहे
4: हैं। छात्र हितों के लिए प्रोटेस्ट है आपका अधिकार, किसी को राज देखिए। आप बोल रहे थे अभी, आपने मेरी जब बात काटी थी कि वहाँ पे हजारों सनातन थे, लाखों सनातन थे, लेकिन आपने मंच किसको दिया? आपने मंच उसको दिया जिसने सनातन का विरोध किया।
2: ठीक है, चलिए।
5: अच्छा,
2: अब आप हर्ष दुबे, आपका
7: जल्दी से कह रहे हैं कि वो प्रोटेस्ट जो है सुसाइड किया था बच्चों ने, इसलिए प्रोटेस्ट किया कि नीट के बच्चों ने सुसाइड किया, तो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट के बाद जीत मिलती है, किसी घर में मातम हो और उसको अगर न्याय मिल जाए तो उसके बाद हम पार्टियां नृत्य करके करेंगे। ये तो सुसाइड वाले बच्चों के लिए सही न्याय नहीं है। और किसी ने ये जानना चाहे सत्ता पक्षों प्रतिपक्षों सीजेपियों के बच्चे सुसाइड करते क्यों नीट के, किसी ने जानना चाहे बताइए क्यों करते हैं? नीट के बच्चा सुसाइड क्यों करता है?
0: बिकॉज पहला रीजन ये है कि सिस्टम इतना रिजिड है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है इस प्रिपरेशन के लिए। आपने इतना कंपटीशन करके रखा, सीट इतनी कम है, सरकार थी कि हमने इतनी सीट बढ़ाई। मैं कहता हूँ सर और कॉलेज खोल दीजिए,
7: आपके पास ये है।
0: फिफ्थ
7: नीट की तैयारी करता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बहुत कसके पढ़ता है, मोस्ट ऑफ टॉपर बच्चा करता है। अगर निकाल के देखेंगे तो बायो टॉप 10 में से 8 बच्चे बायोलॉजी टाइम ट्रेंड है ऐसा, तो वो बच्चा दिन रात लगाकर मेहनत करके तैयारी करता है, सीटें जितनी में ठीक है, उसके बाद उसका मान लो उस दिन मोमेंटम बिगड़ गया, नीट वाले पेपर दिन उसको एंजाइटी हो गई, नींद नहीं आई कि मुझे 3-4 साल की मेहनत सब सारी इसी में दिखानी है, और उस दिन उसको नींद नहीं आई, पेपर अच्छा नहीं गया, तो वो सोचता है कि कोई और एग्जाम दे दूंगा मैं, बट उसके पास कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें वो जा सके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ के। अब अगर अगर अगर उसके पास उस दिन मान लो बिगड़ गया तो क्या नीट का पेपर अगर 2 बार हो जाए तो उसको 2 ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कई एग्जाम में होता है, जैसे जेईई मेंस में होता है। इस टॉपिक पे किसी ने चर्चा करनी नहीं चाहिए भाई, नीट का एग्जाम 2 बार हो जाए, सीजीपी
2: वैलिड बात आप कह रहे हैं, वेरी वेरी
7: रेलेवेंट,
2: वेरी रेलेवेंट,
0: किसी ने
2: वेरी
0: रेलेवेंट
2: को हर्ष, बहुत अच्छी बात है हर्ष, आपने एक बात कही है और मुझे इस बात की खुशी है कि इस कार्यक्रम के जरिए ये सुझाव आया है। तो अगर सरकार के कान तक आप लोग सिद्धार्थ जी सुन रहे हो तो इसको सुनिए, क्योंकि नीट के जो एक सेकंड लगातार साथ मत बोलिए ना, मैं जब बोल रही हूँ थोड़ा सा हम लोग भी बोल रहे, खाली लड़ने थोड़ी आए हैं, उस बच्चे का अगर सुझाव है तो अच्छी बात है कि नीट के लिए जो मेडिकल के लिए जो बच्चे तैयारी करते हैं के पास कोई प्लान भी नहीं होता है। अब उसी में जितने होते मेडिकल में मिला, कुछ डेंटल ले लेते हैं, कुछ ये लेते हैं, लेकिन और क्या करियर ऑप्शंस है ये आप कह रहे हो, और भी ऐसे ऑप्शंस है ना बायोलॉजी लेने वाले बच्चों के पास, उस पर सोचना होगा। और उम्मीद करते हैं जो टास्क फोर्स बना है वो भी इस पर सोचे कि भाई और करियर ऑप्शंस क्या हो सकते हैं बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए, है ना।
7: वो बच्चा सोचता है मेरे पास अब कोई ऑप्शन ही नहीं है, मैंने तो पूरी पढ़ाई करी, अब जो भी एग्जाम देना चाहते हैं तो उसमें क्या है,
2: साइंटिस्ट रिसर्च साइंटिस्ट इस टाइप का कुछ करने का,
7: जीएस सिलेबस है, मैथ सिलेबस है, रीजनिंग सिलेबस है, और करंट अफेयर जो कि हमारा पार्टी नहीं रहा, तो अब हमें लगता है पूरी जितना भी मेहनत करी अभी तक अब तो वो सब बर्बाद। तो जब किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता तब वो सुसाइड पे जाता, जब 1 लाख बच्चों के दिमाग में सुसाइड का थॉट आता
2: है। छोटे-छोटे दो-दो लाइन का कमेंट जल्दी से, सुझाव जल्दी सुझाव बताइएगा इस बार।
5: जी सुझाव
2: सुझाव नंबर 1,
5: नितिन गडकरी जी, मैं थोड़ा आउट जा रहा हूँ, बात करते हैं कि हमारे जो रोड्स हैं
8: वो यूरोप की तरह है, लेकिन हम यूरोप की तरह एजुकेशन फ्री क्यों नहीं देते, हॉस्टल्स फ्री क्यों नहीं देते, क्योंकि जो हमारा रूरल जो इंडिया है वहाँ पे उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, पैसे नहीं है कि वो दिल्ली में अपने बच्चों को पढ़ा पाएं, यहाँ पे इतने पैसे दे पाएं, या फिर जो बाहर अकोमोडेशन है वो फिर वो दे पाएं रहने के लिए।
2: शिक्षा में बराबरी बहुत जरूरी है, और वो तभी आएगा जब उनके पास यूरोप की तरह
7: फ्री क्यों नहीं देते, एजुकेशन फ्री हटाएंगे, क्योंकि रिजर्वेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है।
2: अलग एक विषय उस पर अलग
0: बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के, रिफॉर्म ऐसा लाइए कि 25 साल तक बच्चों को रोड में उतरना ना पड़े सर, ये बहुत आपको सोचना जरूरत है।
2: सुझाव
0: सुझाव ये है कि आप स्टूडेंट कमीशन बनाइए, उसमें कड़े नियम रखिए, बच्चों को डायरेक्ट जो है कंप्लेंट करने का जो है पोर्टल बना दीजिए, और ये सिर्फ नीट के लिए नहीं, यूपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग
2: सब एग्जाम,
0: कोई एग्जाम। आपको क्या लगता है कि इस प्रोटेस में सिर्फ नीट वाले बच्चे पैसा आए थे क्या? हर बच्चा आया था, ये आक्रोश पूरे देश का था, ये आंदोलन पूरे देश।
2: चलिए चलिए आखिरी कमेंट
9: है। सच्चाई है कि ये जो पूरा प्रोसेस चला इसमें एक बात जरूर होनी चाहिए, चूंकि मैं प्रोफेसर हूँ, प्रवक्ता के साथ मेरे पढ़ने का पढ़ाने का काम है, तो बच्चों में जो आज फ्रस्ट्रेशन है, उनको नौकरी जो संख्या है कम है, और वाकई वो तैयारी वो योग्य हैं फिर भी उनको नहीं मिल रही है, तो सरकार को अल्टरनेटिव कुछ फिर सिस्टम डेवलप करना होगा, एग्जामिनेशन का भी एक कैलेंडर सिस्टम डेवलप करना होगा। हर बार ये दिक्कतें हो रही है, ये सामूहिकता में, इसके लिए कोई मैं नहीं कर रहा हूं कि ये एक सरकार करे दूसरी सरकारी, सभी को मिलकर के इस पर एक समाधान लाना चाहिए, और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप से अच्छा है कि बच्चों के भविष्य के लिए हम सोचें, उनका कल्याण होगा तभी देश का कल्याण होगा, देश तभी आगे बढ़ेगा जब हमारा जेन जी हमारा नया जनरेशन युवा आगे बढ़ेगा। युवा की बेरोजगारी पर प्रश्न जो है उसके कारण फ्रस्ट्रेशन में आत्महत्या पर जा रहा है, नौकरी संख्या बहुत हो गई है, व्यवस्था कम हो गई है, सिस्टम मजबूत की।
10: मैं बिल्कुल इस बात से कोई दोराय नहीं है कि मूलचूक परिवर्तन बहुत से विषयों में चाहिए और सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध है। हमें बहुत हमारे पास एक बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है और बड़ा यूनिक सोल्यूशन हमको लेके आना होगा। ये जितने प्रयास, और बहुत अच्छा उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा करिए 25 साल में ना हो, हमने तो वो किया जो 65 साल में नहीं हुआ था। पहली बार पेपर लीक पर कोई कानून आया, दूसरी बार अब उसको और स्ट्रिक्ट किया गया, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए गए, हाई पावर्ड कमिटी बनाई गई, ये शुरुआत है, और ये शुरुआत वहां तक जाएगी जहां तक हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था और सुदृढ़ ना हो जाए। शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने में जितने लोग यहां बैठे हैं अक्रॉस पार्टी लाइन अक्रॉस आइडियोलॉजीज, हम सबका स्वागत करते हैं, सबके सुझावों को।
2: लेकिन याद रखिएगा द बक स्टॉप्स हियर, सरकार आप है और जवाबदेही जिम्मेदारी भी आप ही की होगी, और जनता जेंजी आप ही से मांगेगी। इसी के साथ हमारी इस विशेष पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
12: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।
3: Where the software engineer meets the cool UI/UX designer to create the big dream. The world comes together at Sharda University.
2: जब बात हो फसलों के बेहतर पोषण की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का न्यूट्रिजन। न्यूट्रिजन संपूर्ण पोषण का वादा, फसल मिले ज्यादा ज्यादा और ज्यादा।
4: एक्सपेक्टेशन से बेटर प्लेसमेंट मिली है तुझे, अब सब सेट है ना?
5: सब सेट है, बस अब चाहिए एक सैलरी अकाउंट जो मैच करे मेरी लाइफस्टाइल से।
6: तो सोचना क्या है, मेरा अपना बैंक है ना।
4: मतलब
6: पंजाब नेशनल बैंक, जो दे तुम्हारी चॉइस का सैलरी अकाउंट नंबर, OTT सब्सक्रिप्शन, लाउंज एक्सेस एंड मेनी मोर बेनिफिट जो तुम्हारे लाइफस्टाइल को मैच करे।
5: वाओ दी, मैं कल ही बैंक जाता हूँ।
6: पर जाना क्यों है, सब ऑनलाइन ही हो जाता है। PNB, मेरा अपना बैंक।
2: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा सफलता का शंखनाद।
7: आगे आगे,
8: अरे उधर,
7: करेक्ट
9: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
2: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा। जीते हर बाजी।
10: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: इन एसोसिएशन विद
3: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
2: विमल बोलो जुबां केसरी। हिंट बड़े आराम से।
4: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी। वेयर आर यू?

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

जेंजी को संदेश के बाद पीएम मोदी ने की युवा शक्ति की बात। मैसूर में कहा, देश की तरक्की में योगदान, छात्रों को 21वीं सदी के लिए तैयार कर रही है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। चढ़ावा चोरी पर प्रदर्शन को लेकर पप्पू यादव की बड़ी मुश्किलें। बीजेपी और साधु संतों ने वाराणसी में दर्ज कराई एफआईआर। राहुल गांधी का भी नाम, कई शहरों में प्रदर्शन। परिसीमन को लेकर केंद्र पर भड़के राहुल। चेन्नई में कहा, ये बीजेपी की बड़ी साजिश, समर्थन करने वाले तमिलनाडु को धोखा दे रहे हैं। पंजाब कांग्रेस में घमासान जारी। संगरूर में प्रदेशाध्यक्ष बडिंग के सामने चने समर्थकों की नारेबाजी। राज्य प्रभारी भूपेश बघेल की मौजूदगी में हंगामा। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय महिला मुक्केबाजों का गोल्डन पंच। आज चार बॉक्सरों ने जीता गोल्ड। भारत के खाते में अब तक 10 स्वर्ण।

0: नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। आज वॉर रूम में देखिए कैसे पश्चिम एशिया से लेकर यूरोप तक युद्ध की नई लपटें एक साथ उठने लगी हैं। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता टकराव अब लाल सागर तक पहुंच चुका है और इसके साथ ही इस संघर्ष में सऊदी अरब की एंट्री हो गई है। इस पूरे समीकरण को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि आखिर क्षेत्रीय संघर्ष किस तरह वैश्विक संकट का रूप ले रहा है। वहीं रूस यूक्रेन युद्ध एक बार फिर बेहद खतरनाक मोड़ पर है। डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बाद जेलेंस्की के तेवर बदले हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या यूक्रेन युद्ध अब और बड़े विस्तार की ओर बढ़ रहा है, इसकी पूरी पड़ताल करेंगे। और साथ ही बात होगी पाकिस्तान की, जहां पीओजे के और बलूचिस्तान से सामने आ रही तस्वीरें पूरी दुनिया को झकझोर रही हैं, लेकिन दुनिया की चुप्पी कई सवाल भी खड़े कर रही है। इसी बीच एक सनसनीखेज खुफिया रिपोर्ट ने वॉशिंगटन से लेकर इस्लामाबाद तक हलचल मचा दी है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन से ईरान के लिए भेजे जा रहे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम और रॉकेट लॉन्चर्स की खेप पाकिस्तान के रास्ते जा रही है। शुरू करते हैं वॉर रूम में हर एक विश्लेषण।
1: पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में हालात और बिगड़ गए हैं। हिंसा और सुरक्षा बलों की कार्रवाई में कई लोगों की मौत, सैकड़ों घायल होने की खबर आ रही है। विरोध में इस्लामाबाद में प्रदर्शन भी हुआ है। बिगड़ती स्थिति पर चिंता जताते हुए ब्रिटेन के 50 से अधिक सांसदों ने ब्रिटेन के विदेश मंत्री को चिट्ठी लिखकर तुरंत तनाव कम करने और कूटनीतिक बातचीत के जरिए मानवाधिकारों की रक्षा की मांग भी की है।
0: पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हालिया हिंसा ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय रिपोर्ट्स और प्रदर्शनकारियों के दावों के अनुसार अपने अधिकारों की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे लोगों पर सुरक्षा बलों ने कार्रवाई की, जिसमें कई लोगों के मारे जाने की खबर है। पत्रकारों और सिविल सोसाइटी के लोग लगातार मदद और अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की अपील कर रहे हैं, लेकिन दुनिया की बड़ी ताकतें खामोश हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया अक्सर लोकतंत्र और मानवाधिकार पर खुलकर बोलती है, वो भी चुप है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनकी मांगें रोटी, बिजली, महंगाई और बुनियादी हक से जुड़ी हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान सरकार और उसके मंत्री आंदोलन के पीछे बाहरी हाथ होने का आरोप लगा रहे हैं। हालांकि इन आरोपों को लेकर पाकिस्तान के भीतर से भी सवाल उठ रहे हैं। उधर प्रदर्शनकारी साफ कह रहे हैं कि उनका आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती। ऐसे में पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ यह आंदोलन अब केवल एक प्रदर्शन नहीं है, बल्कि वहां के राजनीतिक और सामाजिक असंतोष की कहानी बयां कर रहा है।
1: पीओजे के यानी जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा जिस पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है, लेकिन अब जिस तरह की खबरें और तस्वीरें लगातार पीओजे के से बाहर आ रही हैं, वो गवाह है कि पीओजे के पाकिस्तान के हाथ से निकलता जा रहा है।
2: शर्म आनी चाहिए ऐसे मीडिया को, तो फैलाना था ऐसे मीडिया के ऊपर। यहाँ पे रियासत के अंदर कत्ल किए जा रहे लोग और हमारा पाकिस्तानी मीडिया झूठी खबरें चला रहा है।
1: चुनाव के नाम पर फर्जीवाड़ा,
3: ये प्रेजाइडिंग ऑफिसर जो है इनकी इंक्वायरी की जाए।
1: आजादी के नाम पर गुलामों से बदतर जिंदगी और जानवरों सी मौत। ये है पीओजे के
4: चाओ जी चाओ, तू चाहिए हो रहे हो चाहिए हो रहे हो।
5: हमारे बहुत सारे भाई जख्मी हो चुके हैं, अल्लाह की जात हमारे भाइयों की हिफाजत करे।
6: इंटरनेशनल मीडिया, भाई सारी दुनिया, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, हम मर गए हैं आप सब।
1: पाकिस्तानी हुकूमत तानाशाही से भी एक कदम आगे बढ़ गई है। कत्लेआम अब केवल एक तरह से पाकिस्तान के लिए सुरक्षा तंत्र का हिस्सा है। रावलकोट, मीरपुर, मुजफ्फराबाद, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ मौत का खेल खेला जा रहा है।
7: पाकिस्तान के तमाम मजलूमों में कहना चाहता हूँ, उस पार कश्मीर के लोगों से कहना चाहते हैं, ये वक्त है इस गुलामी के खिलाफ खड़े होने का, ये वक्त है सड़कों पे आने का।
1: इस्लामाबाद से लेकर तुर्की तक मुस्लिम उम्मत की बात करने वाले पाकिस्तान की हैवानियत इस बात से समझी जा सकती है कि पाकिस्तानी सेना ने मस्जिदों को भी नहीं बख्शा। मीरपुर की बिलाल मस्जिद के अंदर नमाजियों पर गोली चलाई गई, लोगों के साथ साथ इमाम इनायतुल्ला का भी कत्ल कर दिया गया।
8: अब तो ये आवाज आ रही है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। तो मुझे लगता है इस बार बहुत बदलाव है और इस बार लोग कह रहे हैं हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि पाकिस्तान ने 80 साल उनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया है, ह्यूमन राइट वायलेशन किए हैं, फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनको कुछ नहीं दिए हैं। जो 38 पॉइंट दे रखे हैं ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने, उस पर कोई भी इन्होंने कार्रवाई नहीं की, बल्कि ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को बैन कर दिया। पाकिस्तान के चार टुकड़े होंगे जो कि खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब, पीओजेके और गिलगित बाल्टिस्तान जो कि भारत का हिस्सा है, जो इलीगली ऑक्यूपाइड किया है पाकिस्तान ने, वो वापस भारत में आएगा।
1: पीओजेके ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी जेएएसी के नेता सरदार अमन कश्मीरी का आरोप है कि पाकिस्तानी फौज ने केवल 48 घंटों में 31 आम नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया।
9: जो पाकिस्तान की फोर्सेस हैं, उन्होंने बड़ी बेरहमाना अंदाज में, जालमाना अंदाज में 90 अवाम पे जो है गोलियां बरसाई, जदीद असला का इस्तेमाल किया गया और 90 अवाम पे जो है 20 के करीब हमारी कल शातें हुई और 400 से अबाव हमारे जो जख्मी उनको गोलियां लगी।
1: 5 जून से 28 जुलाई तक की रिपोर्ट के अनुसार पीओजेके में हालात बेहद गंभीर हैं। 75 लोगों की जान चली गई, 100 से ज्यादा लोग घायल हुए, 200 से ज्यादा अब भी लापता बताए जा रहे हैं और करीब 800 लोगों को गिरफ्तार किया गया।
10: हमारा यही पैगाम है कि जहां जहां पे भी हमारे कश्मीरी मौजूद हैं।
1: जेएएसी ने साफ ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तानी फौज के इस दमन चक्र के बावजूद उनका आंदोलन जारी रहेगा और वो इस लड़ाई को अंजाम तक पहुँचा कर ही दम लेंगे।
11: अवाम के टैक्स पैसों पे अयाशी करने वाले, सारी जिंदगी अपनी नस्लें पालने वाले हमारे पैसे पे, इनसे हम कहते हैं अगर अपने बाप के बेटे हो तो उधर ही रुकना, वहां से भागना नहीं, आप कश्मीर हाउस नहीं जाना, उधर ही रुकना, इंशाल्लाह ताला आएंगे, एक भी जिंदा रहा तो वो आएगा, उधर तक पहुंचेगा इंशाल्लाह ताला। अभी ये सफर शुरू हुआ है इंशाल्लाह ताला, अपने वतन पे अपना राज होगा, अपने वतन पे।
1: लेकिन हर बार की तरह इस बार भी पाकिस्तान अपनी नाकामी छिपाने के लिए भारत पर ही इल्जाम लगा रहा है
12: कि मैं इनको हिंदुस्तान के साथ जो है ना इन लोगों को ब्रैकेट करता हूँ, उसी जुमरे में इस्तेमाल इनको शुमार करता हूँ जिसमें हम हिंदुस्तान को दुश्मनों की सफ में देखते हैं, ये लोग भी पाकिस्तान दुश्मन।
1: अपने ही नागरिक जब रोटी, बिजली और बुनियादी हक की मांग करें और उन्हें दुश्मन या भारतीय एजेंट कह दिया जाए तो सवाल सरकार पर उठते ही हैं। लेकिन पाकिस्तान सरकार के इस नैरेटिव पर सबसे बड़ा सवाल किसी विदेशी मीडिया ने नहीं बल्कि पाकिस्तान के अपने पत्रकार शहजाद इकबाल ने उठाया।
13: इसको अब ये जोड़ा जा रहा है, कलदम करा दिया गया और उनके ताने बाने मिलते हैं भारत से या फंडिंग ले रहे हैं वो, तो मेरा हुकूमत से एक सवाल होता है बार बार कि इसका इल्म आपको कब हुआ, जब आपके डायलॉग जो है वो नाकाम हो गए उसके बाद आपको ये ख्याल आया? क्योंकि मैं अगर किसी से डायलॉग कर रहा हूं, मुझे पता है कि उसने पैसे लिए किसी भारतीय एजेंसी से या किसी और मुल्क से, तो मैं तो उनसे मुजाकरात ही नहीं करूंगा। तो आप फिर 2 साल तक मुजाकरात क्यों कर रहे थे उनसे? आप उनको वक्त बार बार क्यों दे रहे थे? आपने उनकी 36 डिमांड क्यों मानी? 38 डिमांड में से 36 क्यों मानी एक ऐसे ग्रुप की जो कि फॉरन फंडेड है? ये हुकूमत जवाब नहीं देती हमें, या तो बताए ना कि क्या मामला हुआ, 2 डिमांड रह गई तो फिर वो फॉरन फंडेड हो गए तो 36 क्यों मानी?
14: शेलिंग इसको आप छोड़ दें, हमें अपने शहर के अंदर दाखिल होने दें।
1: पाकिस्तानी मीडिया को पीओजेके की जमीनी हकीकत दिखाने से रोका जा रहा है, जब सरकार से सवाल पूछे जाते हैं तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता।
13: जो भी हो रहा है हमारे पास तो एग्जैक्ट रिपोर्ट्स भी नहीं आ रही हैं, क्योंकि आप और मैं उस पर बात नहीं कर सकते, इंटरनेट वहां पे बंद था काफी अरसे तक। क्या हम खुलकर इस पर रिपोर्ट कर सकते हैं, क्या इंटरनेट खुला हुआ है जो हम विजुअल्स देख सकें? नहीं देख सकते। तब ये तो वही वाली बात है ना कि शुतुरमुर्ग की तरह हम मुंह जमीन में डाल लें और हमें पता ही नहीं हो रहा कि बाकी कश्मीर में क्या हो।
1: एक तरफ पीओजेके में हिंसा और मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर सवाल उठ रहे हैं, दूसरी तरफ प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि रोटी बिजली और बुनियादी अधिकार मांगने पर उन्हें गोलियों से भून दिया जा रहा है। अब ये आंदोलन केवल मांगों का नहीं बल्कि अधिकार की लड़ाई बन चुका है।
0: अब रुख करते हैं पाकिस्तान के उस हिस्से का जो हाल में ही खुद को पाकिस्तान से आजाद घोषित कर चुका है। बात हो रही है बलूचिस्तान की। पाकिस्तान कह रहा है कि वो आतंकवाद के खिलाफ जंग लड़ रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस जंग की आड़ में बलूचिस्तान में आम लोगों पर भी कार्रवाई हो रही है? क्या आतंकवाद के नाम पर पूरे इलाके को सैन्य अभियान का अखाड़ा बना दिया गया है? और क्यों पाकिस्तान के अत्याचारों पर पश्चिमी मीडिया एकदम खामोश है?
1: बलूचिस्तान से जो खबर आ रही है वो और डरावनी। यहां पाक फौज ने बलूचिस्तान के मस्तूम इलाके में करीब 140 लोगों को आतंकी बताकर कत्ल कर दिया। पाक फौज की यह बर्बरतापूर्ण कार्रवाई 6 जुलाई को शुरू हुई। पाक फौज का दावा है कि उसके ऑपरेशन में आतंकियों के कई ठिकाने तबाह किए गए हैं और बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां हुई हैं। लेकिन कहानी का एक और पहलू है, पाकिस्तान फौज और उसके हुक्मरान नहीं चाहते कि उस पहलू की बात भी हो। बलूच संगठनों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का आरोप है कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर आम बलूच नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है। बलूच गांवों में छापेमारी, बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां और लगातार सैन्य कार्रवाई ने लोगों में डर का माहौल पैदा कर दिया।
15: बलूचिस्तान कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था, ना 1947 में था। कलात स्टेट होती थी, वहां के अपने हेड होते थे और बलूचिस्तान कई ट्राइबल्स उसमें बटा हुआ है और ये सारे अपने आप को एक इंडिपेंडेंट और सोवरेन यानी कि अपने इलाके में अपना राज चलाते थे और ये काफी हद तक माना जाता था। तो ये कभी भी पाकिस्तान के साथ अलाइन या उनके कल्चर में मिक्सअप नहीं हुए। तो इसीलिए बलोची हमेशा अपने आप को पाकिस्तान से अलग समझते रहे। उनके दिमाग में यही रहा कि हमारे यहाँ से जितने रिसोर्सेज हैं वो सारे के सारे यहाँ से एक्सप्लॉयट करके, चाहे वो गैस है, चाहे कॉपर है, चाहे कोई और है, वो सब गोल्ड है, वो सब पाकिस्तान में पंजाब और सिंध में भेजा जाता है और हमें उसका कोई भी हिस्सा या फायदा नहीं मिलता, इसलिए वो हम अंडर डेवलप्ड हैं। सबसे मेन उनका जो है यही है।
1: इस ऑपरेशन की शुरुआत उस हमले के बाद हुई जिसमें 9 पुलिसकर्मी मारे गए और 18 पुलिस कैडेट्स का पहले अपहरण किया गया, फिर उनकी हत्या कर दी गई। इसके बाद पाकिस्तानी सेना ने पूरे इलाके में अभियान तेज कर दिया। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस कार्रवाई में आतंकियों और आम नागरिकों के बीच फर्क किया जा रहा है? सवाल ये भी है कि जो पाकिस्तान भारत को लेकर इस तरह का प्रोपेगेंडा करता है वो आज अपने ही शहरियों को कत्ल क्यों कर रहा है? आखिर ऐसा क्या है जो पाकिस्तान को चाहिए बलूचिस्तान से? सारे सवालों का जवाब है सीपैक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। दुनिया देख रही है कैसे सीपैक के नाम पर बलूच जमीन को कब्रगाह बनाया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान को समझना होगा कि डंडे के जोर पर आजादी की आवाज को नहीं दबाया जा सकता।
15: देखो, सीपीईसी जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये इसका मेन मकसद जो चाइना का था वो था कि हम अपना जो रास्ता है, जो तेल का रास्ता है मोटे तौर पे, गल्फ जो जहाँ लड़ाई चल रही है आज की, वहां से मलक्का स्ट्रेट होते हुए पैसिफिक साउथ चाइना सी से होते हुए ये इनके पूर्वी तट पे चाइना के तेल उतरता है और वहां से उनके पश्चिमी बाउंड्री तक ले जाना, जिनजियांग है जहां, बहुत डिस्टेंस है और उसके बीच में कई जगह उनको डर लगता है, जैसे इंडियन ओशन में है, मलक्का में है, कि उनका ये चौक हो सकता है, जैसे आज चौक हुआ हुआ है, कोई भी लड़ाई में चौक हो जाएगा। तो एक अल्टरनेट रूट के लिए उन्होंने गवादार पोर्ट को डेवलप किया। प्रॉब्लम जो आ रही है इंटीरियर कनेक्टिविटी की आ रही है कि जो रास्ते से निकलते हैं वो सारा बलोचिस्तान है, और वो सारे रास्ते में बलोच आज तो BLA है, मजीद ब्रिगेड है, जो ये समझते हैं कि चाइनीज जो यहाँ पे हैं हमें एक्सप्लॉयट करने के लिए हैं, हमारे रिसोर्सेज ले जाने के लिए हैं, और सन्स ऑफ द सॉयल कि हम यहाँ के रहने वाले हैं, हमारे लिए कुछ नहीं है, और इसी वजह से चाइनीज बड़े फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं।
1: बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, यहाँ गैस, कोयला, तांबा और सोने का बहुत बड़ा भंडारण, लेकिन विडंबना देखिए, वहीं के लोग पाकिस्तान में सबसे गरीब हैं। इस बात को समझना है तो पहले हमें फैक्ट और पाकिस्तानी धोखे के नजरिए को समझना है। फैक्ट ये कि 1952 में वहां गैस मिली, लेकिन फायदा किसे हुआ? पाकिस्तानी पंजाब और सिंध को, क्योंकि यही दोनों पाकिस्तान की रूलिंग क्लास हैं, मतलब सरकार किसी की हो, सत्ता में यही जातियां होती हैं, यही क्षेत्र होते हैं। अब समझिए धोखे के एंगल को। 1973 के संविधान में ऐसी चालाकी की गई कि बलूचिस्तान को उसकी अपनी गैस की रॉयल्टी भी कौड़ियों के भाव मिलती है। विद्रोहियों का कहना है कि इस्लामाबाद और वहां की फौज उनके संसाधनों को लूट रही है, बलूचिस्तान को केवल एक कॉलोनी की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। आग में घी डालने का काम किया चीन ने, ग्वादर पोर्ट और सीपैक के नाम पर जो मेगा प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, बलोच लोग उन्हें अपनी बर्बादी का प्रतीक मानते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी जमीन पर चीन का कब्जा करवाया जा रहा है, और उन्हें बदले में क्या मिल रहा है? केवल मिलिट्री की पाबंदियां। इसीलिए विद्रोहियों ने सीधा चीन के प्रोजेक्ट्स और वहां के वर्कर्स को निशाना बनाना शुरू कर दिया। PUJK, खैबर पख्तूनवा, बलूचिस्तान, हर जगह पाकिस्तान घिर रहा है। अब तो उसके गृह मंत्री ने भी मान लिया है कि पाकिस्तान बर्बादी की ओर जा रहा है और हालात बहुत खराब है।
16: आप 10 साल बाद भी यहीं बैठे होंगे और इसी तरह तकरीर कर रहे होंगे और इसी तरह अपने मसले बयान कर रहे होंगे, इसने ऐसे का ऐसा रहना है, क्योंकि ये सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है, आप माने ना माने।
1: लेकिन सवाल है इस बर्बादी का जिम्मेदार कौन? सरकार उनकी, सेना उनकी, फिर इतने सालों में किया क्या? सबको मालूम है कि पाकिस्तान ने अपनी ऊर्जा आतंकवाद को पालने में लगाई, जबकि अपने देश के हालात बिगड़ते गए। अब यही सवाल पाकिस्तान की मीडिया भी उठा रही है कि जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग इतने साल आखिर करते क्या रहे?
17: मुल्क का निजाम जो है वो बिल्कुल तबाह हो चुका है, खत्म हो चुका है, अब ये निजाम नहीं चल सकता। तो भाई आप पिछले 1.5-2 साल से क्या कर रहे हैं? अगर ये निजाम खत्म हो चुका है तो आप घर जाएं, आप वजीर दाखला हैं, आपका जो अपना काम है वो तो आप कर नहीं रहे। लॉ एंड ऑर्डर की हालत देख लें मुल्क की क्या है, क्रिकेट बोर्ड की चेयरमैनी भी करनी है, फिर वजारत खारजा और सफारतकारी भी करनी है आपने, और फिर आके आप सूबों के ऊपर बात कर रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं सियासतदानों के और लोगों को कि जी छोटे सूबे बनाने बहुत जरूरी है, ये निजाम ऐसे नहीं चल सकता। आप किस हैसियत में ये बातें कर रहे हैं?
1: पाकिस्तान के रक्षा मंत्री खुलेआम संदेश दे रहे हैं कि जल्दी हाइब्रिड मॉडल से पाकिस्तान चलेगा।
18: ये हाइब्रिड सिस्टम जो है ये चीजें पॉसिबल करेगा, ये मुमकिनात में ये चीजें हाइब्रिड सिस्टम के जरिए आएंगी। ये PMLN या मैं या शिवाज शरीफ या कोई बंदा इसको अकेला सॉल्व नहीं करेगा। ये हाइब्रिड सिस्टम की सक्सेस, द ग्रेटेस्ट सक्सेस जो होगी ये होगी कि इस मुल्क में एक रोबस्ट सिस्टम लोकल गवर्नमेंट का हो, इसमें जो है वो सूबे जो है वो मल्टीपल जो है उनकी मल्टीप्लाई करें, ज्यादा हो, 15 हो, 12 हो, 20 हो, जितने भी हो, ये तो कंसेंसस से होगा ना। ये एक्सरसाइज इमीडिएटली शुरू हो जानी चाहिए और ये 4-5 महीने के अंदर ये एक्सरसाइज जो है ना ये खत्म हो जानी चाहिए। फिर ये जो एक नया निजाम आएगा जिसके अंदर जो है लोकल गवर्नमेंट जो है वो भी अपना एक वेट रखेगी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो भी अपना वेट रखेंगे और एडमिनिस्ट्रेटिवली।
1: मतलब साफ है पाकिस्तान में अघोषित तानाशाही की आहट सुनाई दे रही है, वजह भी साफ दिख रही है। POJK हो, खैबर पख्तूनवा हो, बलूचिस्तान या सिंध, लगभग हर इलाके में असंतोष बढ़ रहा है। ऐसे में हालात संभालने के बजाय सत्ता पर पकड़ मजबूत करने की कोशिशें तेज होती दिख रही हैं।
0: POJK और बलूचिस्तान में क्या चल रहा है, हम आपको अपने संवाददाता अशरफ वानी के पास लिए चलते हैं। अशरफ इकलौते पत्रकार हैं जो कि POJK का हाल अपनी आंखों से देख चुके हैं। क्या यह सिर्फ अशरफ कानून व्यवस्था का संकट है या पाकिस्तान के भीतर गहराता राजनीतिक और सुरक्षा का संकट?
19: बिल्कुल श्वेता, ये दरअसल गहराता राजनीतिक और सुरक्षा संकट पाकिस्तान के लिए शायद इतिहास में सबसे बड़ा। दरअसल पीओके की काफ़ी अहमियत है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी राजनीति के लिए। वो दशकों से कश्मीर के नाम पर पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर से ही राजनीति जो को साधते रहे, चाहे उनकी सुरक्षा व्यवस्था हो, क्योंकि नियंत्रण रेखा का अधिकतर इलाका जो है वो पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में ही लगा हुआ है भारत के साथ। तो उस बीच कहीं ना कहीं जो भारत का सालों से और दशकों से पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर को लेकर दलील थी, उसमें अब कहीं ना कहीं वजन आता जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में रहने वाले लोग अब खुद भारत सरकार और भारत से समर्थन मांग रहे हैं, जो पाकिस्तान और पाकिस्तानी सेना की चिंताएं बढ़ा रहा है।
0: अशरफ, अगर हम ऐसे समझना चाहें कि कोई भी देश नहीं चाहेगा कि उसका अवैध कब्जा कहीं से हट जाए, तो क्या वो सिर्फ फोर्स के जरिए, बल प्रयोग के जरिए हर आवाज को दबाना चाह रहा है, या फिर पीओजेके के इलाकों में वो अपना नियंत्रण छोड़ना नहीं चाहता और इसके कई आर्थिक कारण भी हैं?
19: दशकों से पाकिस्तान की एक पॉलिसी पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में रही थी, बांटो और आपस में उनको एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दो, लेकिन अब की बार वो जो एक रणनीति पाकिस्तान की है वो पूरी तरह से विफल हो रही है। और अब पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर, मीरपुर, मुजफ्फराबाद, रावलाकोट से ये प्रदर्शन जो है पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में जो है फैल रहे हैं, और जिस अंदाज से कल आह्वान दिया था, शुक्रवार को आह्वान दिया था पाकिस्तान की इस अवामी एक्शन कमेटी ने, उसका असर जिस अंदाज से इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी में देखने को मिला, और जिस अंदाज से अब जम्मू कश्मीर के इसी समय भी मुख्यमंत्री के साथ साथ अलगावादी नेता भी और हुर्रियत नेता भी जो हैं कहीं ना कहीं उनका मुद्दा जो पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में कश्मीर के रहने वाले लोग हैं उन के साथ खड़े हो रहे हैं, वो पाकिस्तान के लिए बहुत जो है मुश्किल होता जा रहा है।
0: क्या वहां पर जो लोग, वहां के जो पत्रकार हैं जो इस मुद्दे को रिपोर्ट कर रहे हैं, जो लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या वो चाह रहे हैं कि जो इंटरनेशनल जो प्रेस है, जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है, जो आमतौर पर बहुत सीख सबको देता है, वो इसको, इस मुद्दे को उठाए? क्या वो इस बात को लेकर चिंतित हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है वो खामोश क्यों है?
19: श्वेता, दरअसल हमने सदियों से और दशकों से देखा है कि मानव अधिकार को लेकर जिसकी ठेकेदारी ली है दुनिया में, वो अमेरिका ने ली है। अमेरिका ही दुनिया में ये तय करता है कौन मानव अधिकार का उल्लंघन करता है और कौन नहीं करता है अपने स्वार्थ के अनुसार। जहाँ पर उसके जो हित हो तो वहाँ पर वो मानव अधिकार की अनदेखी करता है, और जहाँ पर उसके हित ना हो, जहाँ पर उसकी दुश्मनी हो, वहाँ पर वो मानव अधिकार का जो है नगारा पीटता है। और यही कुछ हाल पाकिस्तान को लेकर भी है। पाकिस्तान को जिस अंदाज से अब की बार एक जो है एक दोस्ती का ढिंडूरा है अमेरिका के साथ, वो कहीं ना कहीं उन सभी मुद्दों पर जो है अनदेखी कर रहा है। और बाकी देश जितने भी वेस्ट के हैं, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे यूरोप के देश हो, वो अमेरिका के साथ ही हाहिया बनते हैं। इसराइल की सबसे बड़ी मिसाल है, गाजा में जेनोसाइड करने के बावजूद पूरी दुनिया एक तरफ और एक तरफ अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा है, तो वहाँ पर बेंजामिन नेतन्याहू का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और यही कारण है कि जिस अंदाज से अमेरिका की नज़दीकियाँ बढ़ी हैं पाकिस्तान के साथ, ना ही बलूचिस्तान के मानव अधिकार जो है अंतर्राष्ट्रीय मंचों को नजर आ रहे हैं, और ना ही पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर।
0: शुक्रिया अशरफ वानी, हमारे संवाददाता, ये जानकारी हमसे साझा करने के लिए। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन वॉर रूम में दुनिया के हर कोने में होती हलचल के साथ लौटेंगे बस इस ब्रेक के बाद।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
3: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
4: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
5: Where the software engineer meets the cool UI/UX designer to create the big dream. The world comes together at Sharda University.
6: His two biggest blunders have defined Indian politics since he responded to the Shahbano judgment.
7: He didn't quite understand the interplay between judiciary, society, Muslims, personal law. Shahbano was a disastrous decision.
6: That made the Hindus very angry. Then he made other mistakes with the unlocking of the doors at Ayodhya, the Shilanyas, and that's how the BJP rolled.
8: जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिस कहानी के बहुत अच्छे परिणाम हैं और बहुत दुखद परिणाम हैं। भारत एक राजमहल है, समृद्ध है, सोने की चिड़िया है। गहरी बात है वो ये है कि इस राजमहल के चारों तरफ झोपड़ पट्टियां हैं, झुग्गियां हैं, चुनौती वाले क्षेत्र हैं। भारत आए अंग्रेज, यहाँ के लोगों को देखा उन्होंने, जब यहाँ के ग्रंथों को ट्रांसलेट करना शुरू किया, पढ़ा उन्होंने कि ब्राह्मण का जन्म मुंह से हुआ है। ये डिपार्टमेंट बनाया ही गया था शोषण के लिए। कौन सा? पुलिस। किसने बनाया था? कॉर्नवालिस ने। और पुलिस डिपार्टमेंट की खास बात यह है कि जब उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट भारत में बनाया तब वो डिपार्टमेंट ब्रिटेन में नहीं था। जुडिशरी, मॉडर्न जुडिशरी उन्होंने अपने फायदे के लिए बनाया। अंग्रेजी कानून, अंग्रेजी जज। तुम कल्पना कर सकते हो आधुनिक काल से पहले LGBT सड़क पर आकर प्रदर्शन करें, इनको तोप में बांध के उड़ा दिया होता।
9: तो क्या सिर्फ अब हिस्ट्री सिर्फ जो बाहर से लोग आए थे यहाँ पे शासन करने के लिए उनको विलन के रूप में दिखा रहे हैं? या फिर
8: जो भी सरकार सत्ता में आती है वो शिक्षा का इस्तेमाल करती है अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने। वंदे मातरम पे बहस हो रही है, हर दिन मंदिर मस्जिद पे बहस हो रही है, मुसलमान पे बहस। ये संसद बनी किस लिए? औरंगजेब जो था भैया डेली 200 किलो जनेऊ तोलता था। कितना? 200 किलो भी, मतलब डेली वो कम से कम 10,000 ब्राह्मणों को मारता था, हिंदुओं को। मैं देखता हूँ मुसलमानों को और हिंदुओं को, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ। पहले मैं सोचता था पुलिस वाले यहाँ लगा के पॉइंट ब्लैंक से क्यों मारते हैं, क्योंकि यहाँ ताला लगा हुआ है, तो इसीलिए मारते हैं कि यहाँ मारे तो अगले जन्म में खुला हुआ रहेगा।
10: आपको लगता है कि आज से 5 साल बाद 10 साल बाद देश फिर बट सकता है?
8: इस बात को मैं रिपीटेडली कह चुका हूँ, एक विस्फोट होगा बेटा।
11: लेकिन आपके पढ़ाने के तरीके मुझे एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट लगता है कि आप जनता को ही बोल देते हैं कि जनता बड़ी बेवकूफ़ है, और फिर आप कहते हैं कि हमारे देश का युवा पढ़ना नहीं चाहता है।

गुजरात में आसमान से बरस रही आफत थमने का नाम नहीं ले रही। खेड़ा जिले में सिर्फ 16 घंटे में 13 इंच से ज्यादा बारिश ने पूरे इलाके को जलमग्न कर दिया। मुख्य बाजार और कई रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया है। घरों और दुकानों में पानी घुसने से कारोबार ठप पड़ गया और लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बारिश की सबसे दर्दनाक तस्वीर आनंद से सामने आई, जहां एसपी कार्यालय के सामने बारिश के पानी में खेल रहे 3 बच्चे तेज बहाव में बह गए। पुलिस और फायर ब्रिगेड ने तीनों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान मासूम की मौत हो गई। इस हादसे ने पूरे इलाके को गमगीन कर दिया। उधर नवसारी में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। नवसारी में हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सेना को अलर्ट पर रखा गया है। भरूच, सूरत, वडोदरा और भावनगर में भी लगातार बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। भरूच में कई सड़कें पानी में डूब गईं, जबकि सूरत और वडोदरा में जल भराव से जनजीवन प्रभावित है। एहतियात के तौर पर सूरत के स्कूल और कॉलेजों की छुट्टी कर दी गई है। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में भी कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी दी है। प्रशासन लोगों से निचले इलाकों, नदी नालों और जल भराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की अपील कर रहे हैं। फिलहाल गुजरात में बारिश राहत नहीं, बल्कि लगातार नई मुसीबत बनकर बरस रही है। आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

जयंती को संदेश के बाद पीएम मोदी ने की युवा शक्ति की बात। मैसूरू में कहा, देश की तरक्की में योगदान, छात्रों को 21वीं सदी के लिए तैयार कर रही है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। चढ़ावा चोरी पर प्रदर्शन को लेकर पप्पू यादव की बढ़ी मुश्किलें। बीजेपी और साधु संतों ने वाराणसी में दर्ज कराई एफआईआर, राहुल गांधी का भी नाम, कई शहरों में प्रदर्शन। परिसीमन को लेकर केंद्र पर भड़के राहुल, चेन्नई में कहा ये बीजेपी की बड़ी साजिश, समर्थन करने वाले तमिलनाडु को दे रहे हैं धोखा। पाकिस्तानी आतंकी संगठनों की हिट लिस्ट में सीएम शुभेंदु अधिकारी का नाम, बंगाल पुलिस का सनसनीखेज दावा, बर्धमान से हमीम मंडल की गिरफ्तारी के बाद खुलासा। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय महिला मुक्केबाजों का गोल्डन पंच, आज 5 बॉक्सर्स ने जीता गोल्ड, भारत के खाते में अब तक 11 स्वर्ण।

अमेरिका ईरान युद्ध से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। कुवैत में घुसे कई ईरानी ड्रोन और मिसाइलों को एयर डिफेंस ने मार गिराया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर बड़े सैन्य हमलों का संकेत दिया है। उधर तेहरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में दो और टैंकर्स उड़ाए और अमेरिका को चेतावनी भी दी है कि जंग भड़काई तो स्ट्रेट का रास्ता पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। गाजा में शांति के लिए हमास ने हथियार डालने की पुष्टि कर दी है। पश्चिम एशिया में जंग अब सिर्फ दो देशों के बीच नहीं रही बल्कि पूरा इलाका एक बार फिर बारूद के ढेर पर खड़ा है। अमेरिका ने ईरान पर बड़े पैमाने पर नए हवाई हमले किए। दावा है कि इन हमलों में ईरान के सैन्य कमांड सेंटर मिसाइल और ड्रोन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरानी मिसाइल हमलों के बाद राष्ट्रपति अमेरिका के जो हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी तरफ से साफ कहा गया कि अब अमेरिका की बारी है और उसके कुछ ही घंटों बाद अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के खिलाफ भारी कार्रवाई शुरू कर दी। इसी बीच इराक में ईरान समर्थित मिलिशिया पर अमेरिका और सऊदी अरब की संयुक्त कार्रवाई हुई जबकि मिस्र के बंदरगाह पर अमेरिकी स्वामित्व वाले गैस टैंकर में धमाके और आग लगने की घटना ने इस संघर्ष को एक नया मोर्चा दे दिया। अब सवाल केवल अमेरिका और ईरान का नहीं, इराक, जॉर्डन, सऊदी अरब, मिस्र, इन सारे देशों तक फैलता यह संघर्ष क्या पूरे पश्चिम एशिया को एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध की तरफ धकेल चुका है? क्या ईरान अपनी प्रॉक्सी ताकतों के जरिए जवाबी हमला और तेज करेगा?

0: पश्चिम एशिया में जंग एक बार फिर भड़क उठी। ये लड़ाई अमेरिका और ईरान की न होके इराक, जॉर्डन, सऊदी अरब और मिस्र को भी अपने लपेटे में ले रही है। अमेरिका ने ईरान पर अब तक के सबसे बड़े हवाई हमलों में से एक को अंजाम दिया है।
1: ईरान ने अपने आप एक तरह का इनिशिएटिव लिया कि अब तक तो रिटेलिएट कर रहे थे कि उनके ऊपर अटैक होंगे तब वो अटैक करेंगे, अब उन्होंने कई जगह इधर उधर शुरू कर दिया अटैक करने। जैसे सऊदी अरेबिया के ऊपर हूती से करवाया, हूती भी उनका ही एक एक्सटेंडेड आर्म कही है, और इजिप्ट के अंदर अटैक हुए जिसको वो कह रहे हैं, उनके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि इजिप्ट में हमने अटैक नहीं किया है, क्योंकि इस वक्त आप देखें तो सारी जगहों में एक्सपेंड हो गया है।
0: अमेरिकी सेंट्रल कमांड का दावा है कि इन हमलों में ईरान के सैन्य कमांड सेंटर, मिसाइल लॉन्च साइट, ड्रोन ठिकाने और तटीय निगरानी केंद्रों को निशाना बनाया गया।

0: को कि भाई अब आप तैयार रहिए दोबारा से लड़ाई करने के लिए, क्योंकि अगर हम यहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में रोक देंगे तो आपने वहां बाबल मंदब में या रेड सी में रोकना है सारा ट्रैफिक। अब आप सोच सकते हैं कि सारा मैरिटाइम ट्रैफिक अगर रुक जाए, ऑयल और गैस का जाना बंद हो जाए, खाने पीने की सब चीजों की, फर्टिलाइजर की खपत रुक जाए या वहां से आना जाना, तो उससे कितना बड़ा फर्क ग्लोबल कम्युनिटी को पड़ेगा।
1: वहीं ईरान क्षेत्र में अपने प्रॉक्सी संगठनों द्वारा अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है, जिस वजह से अब सऊदी उसके निशाने पर है। लेकिन इससे निपटने के लिए इराक का मोर्चा खोल दिया गया है। अमेरिका और सऊदी अरब ने इराक में ईरान समर्थित मिलिशिया ठिकानों पर संयुक्त कार्रवाई की। इस संघर्ष का एक नया मोर्चा खुला है मिस्र में। मिस्र के एक बंदरगाह पर दो जहाजों में धमाका हुआ, जिसमें एक अमेरिकी स्वामित्व वाला गैस टैंकर भी शामिल था। समुद्री सुरक्षा कंपनियों ने आशंका जताई कि ये ड्रोन हमला हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस घटना का जिक्र करते हुए ईरान पर निशाना साधा और कहा कि अमेरिका इसका जवाब देगा। अमेरिकी हमलों का जवाब ईरान भी लगातार दे रहा है। आईआरजीसी ने दावा किया है कि उसने जॉर्डन के अल अजराक एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर अमेरिका के 3 F-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमान तबाह कर दिए और 3 अन्य को भारी नुकसान पहुंचाया। आईआरजीसी का यह भी दावा है कि हमले में कई अमेरिकी सैन्य अधिकारी और तकनीकी कर्मचारी मारे गए। ईरान ने इन हमलों को केश्म आइलैंड पर हमले का जवाब बताया है। हालांकि अमेरिका ने इन दावों की पुष्टि नहीं की है और फिलहाल किसी स्वतंत्र स्रोत से भी इनकी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन इस पूरी कहानी में अब नए किरदार सामने आए हैं, चीन और पाकिस्तान। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि चीन की एक कंपनी के जरिए ईरान को आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम उपलब्ध कराने की कोशिश हो रही है। दावा है कि करीब 400 पोर्टेबल एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम ईरान पहुंचाए जा सकते हैं। रूट बताया जा रहा है चीन का उरुमिकी, वहां से पाकिस्तान और उसके बाद बलूचिस्तान के रास्ते ईरान। अगर ये दावे सही साबित होते हैं तो अमेरिका के लिए ये नई चुनौती होगी।
2: President Xi told you that China would not give or sell Iran any weapons. And there's a new report that Iran's about to get 400 rocket launchers from China going through Pakistan to Iran.
3: Well, that would be surprising. I mean, things like that happen, but that would be surprising. He told me very strongly he wouldn't partake, but he knows I'd be quite disappointed.
1: लेकिन अमेरिका इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। डोनाल्ड ट्रंप पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि अगर ईरान या उसके सहयोगी अमेरिकी हितों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो अमेरिका जवाब देगा। अब सवाल पाकिस्तान की भूमिका पर भी उठ रहे हैं। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में पहले भी आरोप लगाए जाते रहे हैं कि पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के तनाव के दौरान ईरानी सैन्य विमानों को अपने यहाँ जगह दी थी। आज की स्थिति यह है कि अमेरिका एक तरफ ईरान के सैन्य ढांचे को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है तो दूसरी तरफ ईरान के संभावित सहयोगियों को लेकर भी चिंता बढ़ रही है। अमेरिका की तरफ से जो तमाम बातें की जा रही हैं, उस सब के बीच बहुत सारे सवाल इस पूरे स्थिति को लेकर उठ रहे हैं कि युद्ध है, सीज फायर है या फिर क्या चल रहा है। सुमित चौधरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस समय। सुमित, ये बताइए कि अमेरिका जो जवाबी हमले कर रहा है, जो सेंटकॉम की तरफ से कई बार अचानक सोशल मीडिया पर लिख दिया जाता है कि हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं या फिर एक व्यवस्थित तरीके से वो उनकी सैनिक क्षमता को खत्म कर रहे हैं ईरान की?
4: श्वेता, अगर अभी के ताजा हमलों को देखें तो बार बार ऐसा लग रहा है कि टेस्टिंग दी वाटर्स हो रहा है, यानी वो बार बार ये देखना चाहते हैं कि ईरान की क्षमताएं क्या है या ईरान किस एक्सटेंट तक जा सकता है। अभी आपको याद होगा कि 12 से 13 दिन तक फिर दोबारा से मिलिट्री ऑपरेशन चलाए गए थे बहुत दिनों की सीज फायर के बाद, फिर एकदम से अमेरिका रुक गया। अमेरिका ने कहा कि हम ऑपरेशन नहीं करेंगे, हम लगातार बातचीत की टेबल पर जा रहे हैं। एकदम से हमने फिर देखा 48 घंटे के बाद फिर ऑपरेशन शुरू हो गए। वो इसलिए क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि ईरान अगर रिटेलिएट करना चाहे, क्या वो सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर रिटेलिएट कर सकता है या अमेरिका को नुकसान गल्फ ऑफ ओमान में पहुंचा सकता है, रेड सी में पहुंचा सकता है जहां पर हूती हमले कर रहे हैं, और यहां तक कि अब मेडिटेरियन सी तक भी इसका दायरा बढ़ चुका है। तो ये टेस्टिंग वाटर्स वाला जो फिनोमिना है वो अमेरिका इसलिए कर रहा है कि वो देखना चाहता है कि ईरान की जो मिसाइल की रेंज है वो किस एक्सटेंट तक जा सकती है, किस इलाके तक जा सकती है। और शायद इसी वजह से वो बार बार रह रहकर अपने अपने आप देखें कि वो अपनी रीडेवलपमेंट तो कर रहे हैं, रीअसाइनमेंट तो कर रहे हैं चीजों को, नई नई डेवलपमेंट, नई नई चीजों की आप कह सकते हैं एंगेजमेंट बढ़ा रहे हैं अपने वेपन्स की, लेकिन साथ साथ वो ये एक्सटेंड भी देख रहे हैं कि इनकी रेंज मिसाइलों की, इनकी ड्रोन की रेंज

0: किस कैपेसिटी की है?
1: दो चीजें बड़ी अजीब सी हैं। एक कि इसराइल का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल शून्य की तरह दिख रहा है, जीरो, वो भी मुझे लगता है एक स्ट्रैटेजी ही हम कह सकते हैं सुमित उसको। और इसके साथ ही जो अपने प्रॉक्सीज का इस्तेमाल ईरान कर रहा है, क्या उसी के जरिए वो अमेरिका को बेहतर जवाब देगा अभी?
0: बिल्कुल। और अगर अभी आप देखें, क्योंकि जो पिछले 24 घंटे में घटनाक्रम बदला उसने जरा एक कंसर्न पैदा कर दिया, क्योंकि अब इजिप्ट के पास भी कई जगहों पर ऑयल टैंकर्स को अटैक किया गया और वो भी पोर्ट के आसपास के इलाकों में। तो वो तमाम अटैक जो थे वो जॉर्डन को बाईपास करते हुए, इसराइल को बाईपास करते हुए इजिप्ट की तरफ अटैक किया। तो ये संदेह पैदा किया कि देखिए ईरान के पास वो स्ट्रैटेजी है कि वो मल्टीपल लोकेशंस पे कर सकता है। हूती भी लगातार रेड सी में बड़ा कंसर्न बने हुए, वो भी यूएस के टैंकर्स को अटैक कर रहे हैं, या यहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर भी तैनाती है। तो अगर आप तीनों स्टेट्स को देखें, तीनों जगहों पर देखें, तो इस समय ये एक्टिव वॉर फ्रंट के अंदर तब्दील हो गया। और आप मानिए कि ईरान सबसे बड़ी दिक्कत ना सिर्फ एक इलाके में पैदा कर रहा है, वो दुनिया भर की जो सप्लाई चेन है उनको प्रभावित कर रहा है।
1: पर अब सऊदी, जॉर्डन, मिस्र, ये सारे जिस तरीके से अब इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो अभी तक जो अमेरिका इजराइल यूएस अमेरिका इजराइल ईरान के बीच जो संघर्ष था, क्या अब यहीं पर इसी क्षेत्र में मल्टी नेशन का इन्वॉल्वमेंट सीधे तौर पर?
0: देखिए, दो तीन देशों को लेकर तो ईरान बहुत ज्यादा अलर्ट मोड पर या चेतावनियां दे चुका है, जो बहुत कड़ी। आईआरजीसी ने 24 घंटे में 3-4 बार अपनी एडवाइजरी, अपनी चेतावनी दी है, जिसमें सऊदी को लेकर इनडायरेक्टली उन्होंने आग्रह किया है या फिर चेतावनी दी है। इसके अलावा अगर आप देखें कि यूएई को लेकर भी, अभी जो इराक पर हमले हुए जिसमें सऊदी का इन्वॉल्वमेंट भी था, जिसमें कहा गया कि जो वो मिलिशिया जो ईरान को समर्थित थे उन पर अटैक किया गया, मुझे लगता है कि वो ईरान के लिए कंसर्न था कि अगर सऊदी मिलकर भी अटैक करता है इराक के ऊपर या ईरान के ऊपर, तो ऐसे में ईरान उसका रिस्पॉन्ड कैसे करेगा। इसीलिए इसके दायरे को बढ़ाया जा रहा। और अभी आप देखिए मौजूदा हालात में आईआरजीसी की तरफ से रीमाइनिंग का काम, माइनिंग को दोबारा से डिप्लॉय किया गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे, जो अमेरिका के लिए कंसर्न था। इसके अलावा आप देखिए कि रेड सी के अंदर हूती के पास लॉन्ग रेंज मिसाइल भेजी गई, और अगर इराक में वो हमले कर रहे हैं उसके पीछे का भी एक कारण है। ये कहा जा रहा है कि पिछले एक महीनों के अंदर इराक के मिलिशिया के पास भी वो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं जिनसे वो इजिप्ट, आप कह सकते हैं यूरोप तक को टारगेट कर सकते हैं या फिर यूरोप के कई इलाकों को अपनी जद में ले सकते हैं। शायद ये कंसर्न सऊदी के साथ साथ पूरे यूरोप और अमेरिका के लिए बना हुआ है।
1: तो एक चीज जो सब ये सोच रहे हैं ना कि युद्ध शायद कंट्रोल में है, अगर खत्म हो ना हो, लेकिन इस तरह की चीजें पूरी दुनिया को क्या संकेत दे रही है, जो अर्थव्यवस्था को अपनी संभालने की कोशिश कर रहा है?
0: देखिए, पूरी दुनिया के लिए तो एक बड़ा कड़ा संदेश है कि अमेरिका इस चीज को हैंडल नहीं कर पा रहा है। अमेरिका के साथ साथ इजराइल, देखिए अभी नेतन्याहू लगातार अमेरिका गए थे डोनाल्ड ट्रंप से मिले, और उसके तुरंत बाद हमने देखा ऑपरेशन की शुरुआत हो गई। तो ऐसा लग रहा है कि इजराइल ये बताने की कोशिश कर रहा है कि एक ही विकल्प है। नेतन्याहू की तरफ से एक इंटरव्यू में कहा गया कि तीन विकल्प हमारी तरफ से दोनों की तरफ से क्लियर हो गए। पहला ऑब्जेक्टिव था ब्लॉकेड को जारी रखा जाए, दूसरा था कि डील कर ली जाए, तीसरा था कि बड़े ऑपरेशंस किए जाए। और तीनों के अंदर एक ही ऑब्जेक्टिव है दोनों का, कि ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने से रोकना है। तो शायद इन तीनों ऑब्जेक्टिव के पीछे इजराइल की मंशा बहुत क्लियर है, वो चाहता है कि ये युद्ध चले ताकि वो अपने कम से कम ऑब्जेक्टिव को पूरा कर ले। इससे अमेरिका को क्या बर्डन झेलना पड़ेगा, यूरोप को या दुनिया को, उसको उसकी परवाह शायद दिखती नहीं है।
1: बहुत शुक्रिया सुमित इस पूरी जानकारी के लिए। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस का भीषण हमला हुआ है। वहां के मेयर के मुताबिक 9 लोगों की मौत इसमें हो गई है, 28 लोग घायल हो गए हैं। दूसरी तरफ उत्तर कोरिया ने नेटो पर युद्ध की तैयारी का आरोप लगाते हुए कहा कि यूरोप में 10,000 किलोमीटर लंबे ईंधन नेटवर्क का विस्तार गठजोड़ के आक्रामक इरादों को साफ करता है कि तैयारी जंग की है। रूस यूक्रेन युद्ध भी अब एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की के तेवर पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक हैं। यूक्रेन अब सिर्फ रूस की तेल रिफाइनरियों को निशाना नहीं बना रहा, बल्कि ईरान से जुड़े एक जहाज पर हमले ने इस युद्ध को पश्चिम एशिया के संघर्ष से जोड़ने की आशंका बढ़ा दी है। उधर रूस ने भी जवाबी कार्रवाई में यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई शहरों पर मिसाइलों की बारिश कर दी। ऐसे हमले जिनकी आशंका ज़ेलेंस्की पहले जता चुके थे। सवाल यह है कि क्या अब रूस यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया का संघर्ष एक दूसरे से जुड़ता जा रहा है? क्या ईरान, रूस और यूक्रेन के बीच बनता यह नया समीकरण दुनिया को एक और बड़े टकराव की ओर धकेल देगा?
2: रूस यूक्रेन युद्ध अब एक नए और ज्यादा खतरनाक फेज में जाता हुआ दिख रहा है। दोनों देश लगातार एक दूसरे के अहम शहरों और इंस्टॉलेशन को निशाना बना रहे हैं। ये केवल एक मोर्चे पर बढ़ती हुई जंग नहीं रह गई है, बल्कि अब इस जंग का दायरा भी लगातार फैलता नजर आ रहा है। यूक्रेन ने 27 जून को ईरान के मालवाहक जहाज को हमला करके नष्ट कर दिया। इस हमले के बाद ईरान जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दे चुका है।
3: ग्रुपिंग्स बनती आपको दिख रही हैं, यूक्रेन और वेस्ट और अरब कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज एक तरफ होती दिख रही हैं शायद कुछ, दूसरी तरफ ईरान और रशिया एक साथ होते दिख रहे हैं। उधर याद रखिए रशिया के साथ नॉर्थ कोरिया भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के सोल्जर्स रशियन के साथ युद्ध में एंगेज्ड है। तो समीकरण जो दुनिया के बन रहे हैं, एक बन रहे हैं जैसे वेस्टर्न आप मान लीजिए, दूसरा ये अगर बन रहा है जैसे रशिया ईरान का, ये एक अलग बन रहा है। इन सब के अलावा एक चाइना का भी तो समीकरण बन रहा है। अब चाइना का समीकरण कितना टाइट है ईरान के साथ कह नहीं सकते, बट चाइना का समीकरण रशिया के साथ तो काफी टाइट है। रशिया की सारी इकोनॉमी इस समय चाइना के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो समीकरण बदल रहे हैं और तीन अलग अलग कॉम्बिनेशंस पोटेंशियल दिख रहे हैं इस समय इसी रीजन में।
2: रूस ने भी हमलों की रफ्तार और तीव्रता दोनों बढ़ा दी है। कीव, लविव और कई दूसरे शहरों पर मिसाइलों और ड्रोन की भारी बारिश हुई। बीते कुछ दिनों में ही रूस ने बैलिस्टिक मिसाइलों के इस्तेमाल का नया रिकॉर्ड बना दिया। इन हमलों में यूक्रेन में कई लोगों की मौत हुई और दर्जनों घायल हुए। यही नहीं, एक रूसी क्रूज मिसाइल के पोलैंड के हवाई क्षेत्र में घुसने की खबर ने नाटो देशों की चिंता भी बढ़ा दी है। जेलेंस्की चेतावनी दे चुके हैं कि रूस बड़े पैमाने पर हमलों की तैयारी कर रहा है। उनका दावा है कि रूस नई सैन्य भर्ती कर रहा है और उत्तर कोरिया के हजारों सैनिकों को भी मोर्चे पर लाने की तैयारी है। उधर जमीन पर भी रूस लगातार बढ़त बनाने की कोशिश कर रहा है। रूसी सेना सुमी, खारकीव और दोनेत्स्क में आगे बढ़ रही है। वहीं यूक्रेन की सेना लगातार रूस की तेल रिफाइनरियों, ईंधन डिपो, बिजली घरों और सैन्य ठिकानों को निशाना बना रही है।
3: बेसिकली ये जो टकराव है ये हॉरिजॉन्टल रूप से फैल रहा है, राइट? क्योंकि अब जो ये अटैक हो रहे हैं ईरान के ऊपर यूक्रेन कर रहा है कैस्पियन सी में, जहां पर ईरान का इंटरेस्ट डायरेक्टली इफेक्ट हो रहा है। अब ईरान या तो वापस रिटेलिएट करे यूक्रेन के ऊपर, वो मुश्किल है उसके लिए क्योंकि दूर है और ड्रोन मिसाइल वगैरह इसके अभी काफी ओवर फ्लाइंग की प्रॉब्लम है। तो ईरान क्या करेगा, रशिया को और मदद कर सकता है ड्रोन्स देने में ताकि रशिया यूक्रेन के ऊपर और अटैक करे। और उधर यूक्रेन क्या कर रहा है, यूक्रेन अपनी एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी या सिस्टम्स या जो भी कुछ लाकर के गल्फ स्टेट्स को दे रहा है, वो भी तो युद्ध फैल ही रहा है ना। आपस में जितने भी प्लेयर्स इस रीजन में कॉन्फ्लिक्ट में हैं, ईरान की सप्लाई चेन हो वेपन्स की या एक्सपोर्ट्स की, रशिया की सप्लाई चेन हो वेपन्स की या रशियन एक्सपोर्ट्स, क्योंकि रशियन एक्सपोर्ट्स ब्लैक सी में फंस गए हैं, यूक्रेन उनको डोमिनेट कर रहा है। ये युद्ध का अब एक तरह से कहें डेफिनेटली फैल गया है और फैलने का चांस और ज्यादा बढ़ता दिखता है।
2: अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या रूस यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया का संघर्ष एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं? क्या रूस ईरान और यूक्रेन के बीच बनता ये नया समीकरण दुनिया को एक और बड़े टकराव की तरफ धकेल रहा है? क्योंकि अगर यह जंग सीमाओं से निकलकर नए देशों और नए मोर्चों तक फैलती है तो इसके असर पूरी दुनिया को भुगतने पड़ सकते हैं।
1: वॉर रूम में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: दिस इज द साउंड ऑफ लूसी स्टेइंग ऑन टॉप ऑफ हर स्पेंडिंग। यू सी, इवन दो शी इज बाइंग अ न्यू पेयर ऑफ जींस, शी नोज दैट इट फिट्स विद इन हर मंथली बजट बिकॉज़ वेल्स फार्गो विल सेंड एन अलर्ट इफ हर बैलेंस ड्रॉप्स बिलो हर सेट अमाउंट। यप, नथिंग गेट्स पास्ट लूसी और वेल्स फार्गो फॉर दैट मैटर। However you make money work, Wells Fargo can work with that.
7: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
8: Take it easy with Soft Hits. Soft Hits brings together relaxing pop favorites from the 70s, 80s, and 90s. Familiar songs, easy melodies, and a sound that lets you slow down. Perfect for stepping back and catching your breath. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Soft Hits to start listening now.

0: संसद परिसर में अयोध्या चंदा चोरी का मुद्दा विपक्ष ने नाटक का मंचन करके उठाया, जहां पप्पू यादव साधु के भेष में दान पेटी के साथ पहुंचे, जिसमें राहुल गांधी समेत विपक्ष के नेताओं ने सांकेतिक चंदा डाला, जिसके बाद पप्पू यादव दान पेटी लेकर भागने की कोशिश करते हैं, जहां उन्हें अयोध्या से आने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद पकड़ते हैं। पप्पू यादव के इस नाटक पर लोकसभा स्पीकर ने नाराजगी जताई, पप्पू यादव के आचरण को संसदीय भावना के खिलाफ बताया।
1: नहीं, वो तो स्पीकर साहब ने कह दिया कि ये रंग बदल बदल के कपड़े बदल बदल के प्रदर्शन करने का जगह नहीं है, थोड़ा सीरियसनेस दिखाना चाहिए। आप सांसद है तो सांसद की तरह व्यवहार करना चाहिए, कोई नाटक करने का जगह नहीं है, स्पीकर साहब ने कह दिया है, अलग से मुझे कहने का जरूरत नहीं है।
0: वहीं बीजेपी भी पूरे मामले को लेकर विपक्ष पर हमला कर रही है।
2: वो तो कालनेमी का वेश धारण करके आए थे और पूरे सदन ने इसकी निंदा की।
3: तो ये सवाल उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि त्रेता युग के राम को हमला है, राम राम जपियो रे सब माल हरपियो रे, आप भगवान के आस्था के साथ ही नहीं 154 करोड़ भारत के उस आस्था के साथ खिलवाड़ किए हैं जो राम के, जो राम को अपने जीवन में, कर्म में, चरित्र में, चिंतन में रखते हैं।
4: हमारे देश का, इन राजनीतिक पार्टियों का, कांग्रेस हो या सपा हो, जो वोट के खातिर सनातन को बदनाम करने का काम किया है, इसका बदला सनातन लेगा।
5: आपके माध्यम से देश का आम जनमानस देखे कि आखिर अयोध्या में क्या हुआ है। हम लोग तो विपक्ष के लोग हैं, जनता की आवाज उठाते हैं, जनता को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से अयोध्या में हुआ है, क्योंकि जो लोग मौके पे नहीं थे वो नहीं देख सकते, अब तो सीसीटीवी भी डिलीट हो गए हैं।
0: उधर संत समाज ने भी पप्पू यादव को लेकर सवाल खड़े किए हैं।
6: महामहिम राष्ट्रपति महोदया और लोकसभा अध्यक्ष दोनों से यह मांग करूंगा कि ऐसे सांसदों की संसद सदस्यता बर्खास्त होनी चाहिए।
7: इन्होंने अपराध किया है, इन्होंने पाप किया है। आप जरा बताइए कि जिन लोगों ने मंदिर में दान चोरी किया है, क्या वो भगवाधारी थे? वो तो आठो जेल गए, भगवा साधु तो थे नहीं। और यह आप जरा देखिए कितने दुर्भाग्य है। और हमें तो लगता है कि पूरे विपक्ष में एक और दो पप्पू नहीं है, पूरा विपक्ष ही पप्पू हो चुका है।
0: राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर समाजवादी पार्टी पिछले दो दिनों से दान पेटी के साथ प्रदर्शन कर रही है, जिसमें आज पप्पू यादव की एंट्री ने नया सियासी घमासान शुरू कर दिया। आज तक ब्यूरो।

0: Hey, sports fans, TuneIn is bringing you live games, nonstop sports talk, and coverage from every angle. Follow your teams all season long with live games and never miss a single highlight. Listen to stations like ESPN Radio.
1: Swing and a foul out of play off to the left.
0: Big 12 Radio.
2: Levitt's playing stronger back there. Oh, he found Tyson.
0: Talk Sport.
3: Yes, Talk Sport listeners, when we win tomorrow evening, oh, you're going to feel all right.
0: And more. Search sports to find the stations covering your teams.
4: सही क्या है, गलत क्या है, आज आप इस रिपोर्ट को देखिए, खुद बताइए। 100 पद की मान लीजिए सरकारी भर्ती निकली, 100 लोग चुने गए, 50 लोग को वेटिंग लिस्ट में डाला गया। चुने गए 100 लोगों में से अगर 30 ने नौकरी एक साल में छोड़ दी, तो वेटिंग लिस्ट वाले 50 में से उन्हें नौकरी देना सही है या फिर दोबारा जनता का पैसा खर्च करके पूरी भर्ती प्रक्रिया को फिर से करना सही? फैसला आप ही करिए और राजस्थान की भजन लाल शर्मा सरकार को इन युवाओं के प्रदर्शन की आवाज से आवाज मिलाकर जगाइए, जो बेरोजगार राजस्थान सरकार के मंत्रियों के घर धरना देने के बाद अब जयपुर के शहीद स्मारक पर बैठे। लेकिन सरकार तो इन्हें धरना देने के लिए भी एक दिन का ही मौका देती है। कपड़े खोलकर अपना दर्द बयां करने वाले ये वो बेरोजगार जो राजस्थान की सबसे बड़ी चपरासी भर्ती में कुछ पॉइंट से फाइनल लिस्ट से रह गए और वेटिंग लिस्ट में शामिल कर दिए गए। हुआ ये कि एमए, एमबीए, पीएचडी करने वाले जो बेरोजगार चपरासी भर्ती में चुने गए, वो ज्वाइन करने की बजाय दूसरी नौकरियों की तैयारी करने लगे। कई चयनित हुए लोग दूसरी नौकरियों का रिजल्ट आते ही चपरासी की नौकरी छोड़ने भी लग गए। ऐसे में प्रदर्शनकारियों की मांग है कि वेटिंग लिस्ट में आए लोगों को उन खाली पदों पर रख दिया जाए। लेकिन चुनौती ये कि सरकार का ही बनाया वेटिंग लिस्ट का नियम इस चपरासी भर्ती में लागू नहीं हो रहा। इस भर्ती का जिम्मा संभाल रहे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा है कि प्रयास किया था, बात नहीं बनी, टेक्निकल इश्यू है, सरकार भी चाहेगी लागू हो, प्रयास कर रहे हैं, आगे ईश्वर की मर्जी। लेकिन बेरोजगारों को भगवान के भरोसे छोड़ना कैसे सही माने, जबकि एक साल में खाली हुए पद पर वेटिंग लिस्ट से भर्ती देने के नियम पर सरकार ही अपनी वाहवाही करती है।
5: एक वर्ष के भीतर कर्मचारियों द्वारा पद त्यागने की स्थिति में उस पद की प्रतीक्षा सूची से भरा जाएगा।
4: बेरोजगारों के आंदोलन के बाद अब मंत्री कहते हैं सरकार कोशिश कर रही है।
6: मैंने उचित स्थान पर उस बात को पहुंचाया है, परीक्षण उसका किया जा रहा है, परीक्षण के बाद जो नियमों में प्रावधान है उसके अनुरूप चर्चा करके कुछ किया जा सकता है।
4: इस धरने में दिव्यांग भी है जो इशारों से अपनी बात कहते हैं। इनके इशारों को क्या सरकार तब सुनेगी जब बेरोजगारों की ऊंची आवाज और उनके नारे तक सरकार के कान में नहीं पहुंच पा रहे?
7: 54,000 में से करीब करीब 25,000 तक पद बेकार हो सकते हैं। ऐसे में सरकार वेटिंग रूल को लागू करे जिसकी घोषणा विधानसभा में की गई है और इन बेरोजगारों को राहत दे, क्योंकि छोटी नौकरियों में जो कम शिक्षित लोग हैं और जिनकी उम्र बीती जा रही है उन्हें नौकरी की ज्यादा जरूरत है। मगर ये कह रहे हैं कि तमाम मंत्रियों से मिलने के बावजूद अभी तक कोई रास्ता खुला नहीं है। कैमरा मनीष के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक।
8: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

जेनजी को संदेश के बाद पीएम मोदी ने की युवा शक्ति की बात। मैसूरु में कहा कि देश की तरक्की में योगदान, छात्रों को 21वीं सदी के लिए तैयार कर रही है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। चढ़ावा चोरी पर प्रदर्शन को लेकर पप्पू यादव की बड़ी मुश्किलें। बीजेपी और साधु संतों ने वाराणसी में दर्ज कराया FIR। राहुल गांधी का भी नाम, कई शहरों में प्रदर्शन। परिसीमन को लेकर केंद्र पर भड़के राहुल। चेन्नई में कहा यह बीजेपी की बड़ी साजिश, समर्थन करने वाले तमिलनाडु को धोखा दे रहे हैं। पाकिस्तानी आतंकी संगठनों की हिट लिस्ट में है सीएम शुभेंदु अधिकारी का नाम। बंगाल पुलिस का सनसनीखेज दावा। बर्धमान से हमीद मंडल की गिरफ्तारी के बाद खुलासा। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय महिला मुक्केबाजों का गोल्डन पांच। आज पांच बॉक्सरों ने जीता गोल्ड। भारत के खाते में अब तक 12 स्वर्ण।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी, स्वागत है आपका। जनरेशन यानी सिर्फ अलग अलग उम्र के लोग नहीं, बल्कि अलग अलग दौर की सोच, अलग अलग अनुभव और अलग अलग प्राथमिकताएं। किसी ने विश्व युद्ध के बाद बिखरती हुई दुनिया को फिर से बसते हुए देखा, किसी ने रेडियो से टेलीविजन तक का सफर तय किया, किसी ने इंटरनेट क्रांति को अपनी आंखों के सामने जन्म लेते हुए देखा, तो कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई के साथ बड़ा हो रहा है। तो आखिर हर जनरेशन की पहचान क्या है, उसके नाम कैसे पड़े और किस पीढ़ी ने अपने समय में दुनिया को सबसे अधिक बदलने की कोशिश की। आज कहानी अलग अलग जनरेशंस की।
1: धीरे धीरे आप देखेंगे सोच में, समझ में लोगों के परस्पर बदलाव आ रहे हैं। युवाओं में तो खासकर ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं।
2: पहले वाली पीढ़ी के अंदर जो भी कार्य किया जाता था बहुत ही सोच समझ के किया जाता है।
3: हमारे टाइम में हम बड़ों की इज्जत किया करते थे, बड़ों का रिगार्ड किया करते थे। जहाँ आप देखते हैं कि बड़ों का इतना सम्मान देना चाहिए, आजकल वो रिगार्ड ही नहीं है।
4: सभी लोगों के बहुत सारे अलग अलग पर्सपेक्टिव्स होते हैं। इंस्टाग्राम में इस पे कम फोकस करके थोड़ा अपने स्टडीज पे थोड़ा ज्यादा फोकस करो।
1: इस बदलते हुए तकनीक के दौर में आए दिन कुछ न कुछ नया चेंजेस हो रहे हैं।
5: वहाँ पर ऐसा दिखाई पड़ा कि ये जो बच्चे हैं ये अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को रिश्तों से ज्यादा या अपनी पिछली पीढ़ी से ज्यादा महत्व देते हैं।

अगर आप किसी बुजुर्ग अपने माता पिता और आज के किसी युवा को एक ही कमरे में बैठा दें तो सिर्फ दुनिया का फर्क नहीं दिखेगा, दुनिया को देखने का दृष्टिकोण भी अलग होगा, पसंद अलग होगी, भाषा अलग होगी, सपने अलग होंगे और संघर्ष भी अलग अलग। लेकिन ऐसा क्यों है? क्या वक्त इंसानों को बदलता है या इंसान वक्त को? खैर जो भी हो, लेकिन जानकार ये कहते हैं कि बदलती तकनीक के साथ इंसान भी बदल जाता है।

0: कुछ सालों में दुनिया बदलती है और उसके साथ बदल जाती है एक नई पीढ़ी।
1: युवा पीढ़ी में बदलाव,
2: क्या बदलाव?
1: धार्मिक विचार, धार्मिक परिवर्तन।
3: जो सोच है आज की पीढ़ी की वो बहुत ही ज्यादा फास्ट है। वो ये नहीं सोचती आज की पीढ़ी कि किस टाइम क्या डिसीजन लेना है, बहुत जल्दी डिसीजन ले लेती है।
4: हम जो भी काम करते हैं वो हमारी एक अलग से विचारधारा या पुरानी रीति रिवाजों के हिसाब से करते हैं। आज का जो यूथ है वो इनोवेशन के साथ काम करता है।
0: एक पीढ़ी जिसने युद्ध के बाद दुनिया को बसते देखा, एक पीढ़ी जिसने टेलीविजन के साथ सपने देखे।
5: हाँ, आज की पीढ़ी जिम्मेदार है, जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ती और अपने काम के प्रति रुचि रखती है।
6: आज की युवा पीढ़ी जागरूक ज्यादा है लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को जल्दी से निर्वाह नहीं कर पाती, वो जल्दी से पल्ला झटक लेती है।
7: हमारे टाइम में हम बड़ों की इज्जत किया करते थे, बड़ों का रिगार्ड किया करते थे। जहाँ हम देखते थे बड़ों का इतना सम्मान देना चाहिए, आजकल वो रिगार्ड ही नहीं है। आजकल बच्चे हमको तो अनपढ़ समझते हैं।
0: एक पीढ़ी जिसने इंटरनेट को जन्म लेते देखा।
8: मेरे हिसाब से ज़्यादातर तो समझ ही पाते हैं, एज जो मैंने लोगों को देखा है वो तो समझ ही पाते हैं। हाँ, शायद होंगे कोई, अभी मेरे को तो नहीं दिखता।
9: थोड़ा सा और समझ पाते हैं कि मतलब इनके लिए लाइफ कैसी होती है, लाइफस्टाइल कैसी होती है, इनकी सोच क्या है आजकल के बच्चों के। एंड हर साल जो बैच आते हैं उनसे बातचीत भी ज़्यादा रहती है टीचर्स की। पेरेंट्स के लिए आई थिंक थोड़ा सा और लाइक मतलब डिफिकल्टी रहती है, पर पेरेंट्स भी इसी टाइम से निकले हैं और बस एक ही मतलब ज़्यादा डिफरेंस है कि थोड़ा कल्चर का डिफरेंस है।
10: हमारी जनरेशन में ऑनलाइन है, सोशल मीडिया है, जिस वजह से वी आर एबल टू एक्सप्रेस मोर, एंड वो पार्ट आई फील पेरेंट्स इतना अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। आई मीन दे डू ट्राई, सम डू नॉट एट ऑल, बट वहाँ पे वो गैप रहता है।
11: टीचर से थोड़ा क्लोजनेस होता है, पेरेंट्स भी समझ तो पाते ही होंगे, वो भी तो हमारे जगह में थे एक टाइम में, बट आई थिंक हमेशा उनके पास चॉइस नहीं होता हमेशा पूरा अंडरस्टैंडिंग होने का, उन्हें भी हमारे तरफ हमारे बारे में केयर करना होता ना।
0: और एक पीढ़ी जिसने आँख खुलते ही दुनिया को मोबाइल की स्क्रीन पर पाया। आज हम उन्हें अलग अलग नामों से जानते हैं, बेबी बूमर्स, जेनरेशन एक्स, मिलेनियल्स, जेनरेशन जी और जेनरेशन अल्फा। लेकिन सवाल है, क्या ये सिर्फ नाम है या फिर हर नाम के पीछे छिपी है एक अलग सोच, एक अलग संघर्ष और एक अलग कहानी?
12: जनरेशन जो कि ना ट्रांजिशन आता है जनरेशन टू जनरेशन, मिक्सटर्न स्टर्नबर्ग है उसकी 2014 की स्टडी है, जब आप देखेंगे तो क्या होता है जब आर्थिक हालात बदलते हैं, सोशलाइजेशन जो सामाजिक परस्परता जो बदलती है, जब समाज बदलता है, टेक्नोलॉजी बदलती है, तो वैसे वैसे हमारे दिमाग में हमारे DNA सेम रहता है लेकिन जो इन्वायरमेंटल चेंजेस होने की वजह से हमारे व्यवहार में चेंजेज आते हैं, हमारे सोच में चेंजेज आता है, हमारे एक नज़रिए में बदलाव आता है। तो चूँकि अभी मैं मिलेनियल जनरेशन का हूँ, तो हमारे समय में जो चीज़ें पारस्परिक रही है जो एक वो अलग है बिल्कुल। जो मेरा बच्चे आएंगे, जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन आएंगी, वो डिजिटल वर्ल्ड के लोग हैं। उससे पहले देखेंगे तो तकनीक इस तरह से नहीं डेवलप हुई थी। तो जैसे जैसे हमारा समाज और टेक्नोलॉजी चेंजेस होती है वैसे वैसे हमारा माइंडसेट चेंज होता है और उसका एक पर्सनैलिटी पर चेंज दिखता है।
0: आखिर किसने तय किया कि कौन सी पीढ़ी किस नाम से जानी जाएगी? सवाल ये भी कि उम्र बदलने से जनरेशन बदल जाती है या वक्त, तकनीक, राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज मिलकर एक नई जनरेशन बनाते हैं।
13: ये हर जनरेशन के साथ होता है कि वो अपनी पिछली पीढ़ी से कुछ बातों में भिन्न होती है और इसमें सबसे बड़ा योगदान इस अंतर के पीछे जो होता है वो तकनीक का होता है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जाती है वैसे वैसे हम देखते हैं कि उसके साथ जो नई पीढ़ी आती है उसका इवोल्यूशन अलग तरीके से होता जाता है और इसी मामले में हम जो आज की जेंजी है उसको अपनी पिछली पीढ़ी से अलग देखते हैं। तो टेक्नोलॉजी की वजह से फिजिकल बॉर्डर्स के इररिस्पेक्टिव आज की जो पीढ़ी है वो पूरी दुनिया में अपने जो काउंटर पार्ट से उनके साथ कनेक्टेड है। जैसे हमारी पिछली पीढ़ी या हमारी पीढ़ी को यदि मैं देख लूं तो हम कुछ खरीदने से पहले 10 बार सोचते थे, लेकिन आज की आप पीढ़ी को देखेंगे, ये एक उदाहरण है, तो उनके लिए कुछ भी नई टेक्नोलॉजी का एक फोन ही खरीदना या बार बार बदलना कोई नई बात नहीं है।
0: कभी घर का सबसे कीमती सामान रेडियो हुआ करता था, फिर टेलीविजन आया, फिर कंप्यूटर, फिर इंटरनेट और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।

0: हर तकनीक ने सिर्फ मशीनें नहीं बदली, उसने इंसानों की सोच भी बदल दी।
1: सोशल मीडिया लाइक उनके जमाने में नहीं था, तो फिर ऑफ कोर्स एक न्यू टर्म है, तो अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी प्रॉब्लम्स आती है।
2: एक्चुअली इतना नहीं समझ पाते, बिकॉज वहाँ पे गैप आ जाता है, जनरेशनल गैप आ जाता है।
0: जिस पीढ़ी ने चिट्ठियां लिखी, उसके बच्चे ईमेल लिखने लगे, और उनके बच्चे अब 2 सेकंड की रील में पूरी कहानी कह देते हैं। लेकिन क्या सिर्फ तकनीक बदली है या रिश्तों की परिभाषा भी बदल गई? क्या आज की जनरेशन पहले से ज्यादा आजाद है या पहले से ज्यादा अकेली?
3: समाज, हमारी संस्कृति हमेशा से फैमिली ओरिएंटेड रही है, और इस फैमिली का विस्तार फिर एक गांव या कॉलोनी या मोहल्ले के रूप में हम होते हुए देखते थे, और फिर इसको हम राज्य स्तर पर और राष्ट्र स्तर पर लेकर के जाते थे। लेकिन आज की जो पीढ़ी है वो नई तकनीक यानी कि सोशल मीडिया और इंटरनेट के माध्यम से, और आज तब जबकि सबके पास एक मोबाइल फोन हाथ में होता है जिसने कैमरे की, संगीत के अलग अलग यंत्रों की या अलग अलग प्रकार के जो संवाद के माध्यम थे उनकी यूटिलिटी खत्म कर दी है, तो हर कोई इस मोबाइल में डूबा रहना पसंद करता है।
0: इतिहास कहता है हर जनरेशन अपने साथ एक नया सवाल लेकर आई, और कई बार एक नया आंदोलन भी।
1: मेरे पेरेंट्स थोड़े तो हैं कंजर्वेटिव, पर वो स्टिल धीरे धीरे मतलब मॉडर्नाइज हो रहे हैं, उनके भी विचार, उनके ओपिनियन। टीचर्स तो हमारे चिल हैं, वो हमारे फ्रेंड्स जैसे हैं, मम्मी पापा भी रिस्ट्रिक्ट नहीं करते सोशल मीडिया पर रहने से।
0: कभी युवाओं ने युद्ध का विरोध किया, कभी लोकतंत्र बचाने के लिए सड़कों पर उतरे, कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई, तो कभी जलवायु परिवर्तन, शिक्षा, पहचान और अधिकारों के लिए पूरी दुनिया को एक मंच पर खड़ा कर दिया। आंदोलनों का चेहरा भी जनरेशन के साथ बदलता चला गया। पहले नारे दीवारों पर लिखे जाते थे और अब हैशटैग ट्रेंड करते हैं।
4: अगर हम ऑनलाइन लिखेंगे, व्हाट्सएप पे तोड़ने लगेगा शायद, हमारा बच्चा वहां जाकर मोबाइल चला रहा है दिन भर।
0: सोशल मीडिया ने पहली बार किसी जनरेशन को दुनिया भर में एक साथ बोलने की ताकत दी है। आज कहानी में जानेंगे क्या आने वाले सालों में यही पीढ़ी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनेगी या सबसे बड़ी चुनौती, और क्या जनरेशन गैप अब पहले से ज्यादा गहरा हो चुका है या सिर्फ पहले से ज्यादा दिखाई देने लगा है। साथ ही जानेंगे कि बेबी बूमर से लेकर जनरेशन अल्फा तक हर जनरेशन की पहचान क्या है, इनके नाम कैसे पड़े, किस दौर ने किस पीढ़ी को गढ़ा, किस जनरेशन ने कौन से बड़े आंदोलन किए, और कैसे हर दौर के युवाओं ने अपने अपने तरीके से इतिहास की दिशा बदलने की कोशिश की। साथ ही समझेंगे क्या सचमुच हर नई पीढ़ी पिछली पीढ़ी से अलग होती है या हर पीढ़ी बस अपने समय का आईना होती है।
5: जेनरेशन जी को अक्सर डिजिटल नेटिव्स कहा जाता है। ये वो पीढ़ी है जिसने स्मार्टफोन को खिलौने की तरह, सोशल मीडिया को संवाद की तरह, इंटरनेट को अपनी दुनिया की तरह अपनाया है। लेकिन क्या यही तकनीक इस जेन जी, इस पीढ़ी की सबसे बड़ी शक्ति है या फिर सबसे बड़ी चुनौती? क्या सोशल मीडिया ने जेन जी को पहले से कहीं अधिक जागरूक बना दिया है या पहले से कहीं ज्यादा बेचैन? और क्या जेन जी सिर्फ रील्स और ट्रेंड्स की पीढ़ी है या फिर बदलाव की एक सबसे बुलंद आवाज?
0: अगर ये शब्द आपको समझ में आते हैं तो शायद आप जनरेशन जी का हिस्सा हैं या फिर उसके बेहद करीब।
6: तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं करने वाला हूँ भाई स्टारबक्स की सबसे सस्ती और सबसे महंगी कॉफी। भाई अंदर चलते हो,
7: इसको घबराना मत, सीट लेके बैठ जाओ, क्योंकि ये जो आइटम देख रहे हो ये कितने रुपए की है कमेंट करके बता दो, तुम्हारे साथ कितने की हो सकते हैं। 20 रुपए की बैठी होगी, ये बड़ा है तो 80 रुपए का होगा, 40-40 रुपए की दूंगी, बट नहीं, ये है 1480 रुपए की आइटम है भाई।
0: ये वो पीढ़ी है जिसके लिए रील बनाना, स्टोरी डालना, ब्लॉग रिकॉर्ड करना और हर पल को कंटेंट में बदल देना जिंदगी का हिस्सा है।
8: आजकल के चौंचले मेरी फ्रेंड ने रखी है ब्रेकअप पार्टी,
9: जिसके लिए मैं बन के जाऊंगी सुंदर सी, क्योंकि ब्रेकअप पार्टी उसकी है मेरी नहीं।
8: बहुत सारे प्रोडक्ट निकले हैं, ब्रश, क्लीनर, आईलैशेस, दो ड्रेस है, बट इसको बाद में खोलूंगी, पहले ये खोल लेते हैं। आई होप ये अच्छी निकली।
9: ऊंची दुकान, फीके पकवान।
0: आज खाना खाने से पहले कैमरा ऑन होता है।
10: आज मुझे तंदूरी मोमोज खिलाओ।
11: ये कौन से मोमो होते हैं?
10: होते हैं बाबा, इसके अलावा अफगानी मोमोज और मलाई मोमोज भी होते हैं, पर फिलहाल तुम तंदूरी मोमोज लेकर आओ।
11: रुको, पता करके आता हूँ। ये लो तंदूरी मोमोज।
10: वाओ, ये तो तंदूर में बने हैं, है ना टेस्टी? बहुत यम है।
0: घूमने जाने से पहले लोकेशन टैग होती है और कई बार घर वालों को फोन करने से पहले स्टोरी अपलोड हो जाती है।
10: तो मेरी ट्रेन थी चेन्नई सेंट्रल से और मैं वहीं पहुंच जाती हूं। और भाई यहां इतनी ज्यादा भीड़ थी कि क्या ही बताऊं। और आप सोच रहे होगे कि इतने सारे बैग लेके जा रही हूँ मैं? नहीं भाई, ये सब खाली है, उधर से सामान लेके जो आना है।
3: हमने जो जेंजी का एक आंदोलन देखा जंतर मंतर पे, और इसकी बहुत इसको क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है, और वाकई में ये देखना दुखद रहा कि अपने स्त्री अंगों की स्त्रियां, लड़कियां स्वयं गालियों के रूप में पेश कर रही थी। जिस तरह की भाषा का उन्होंने उपयोग किया, वो पिछली पीढ़ी या उनकी पिछली पीढ़ी ने कभी इस प्रकार की भाषा का उपयोग नहीं किया, भारतीय संस्कृति में, भारतीय समाज में हमने इस तरह से देखा नहीं, तो ये देखना दुखद रहा। लेकिन फिर वही बात आ जाती है, वहां पर ऐसा दिखाई पड़ा कि ये जो बच्चे हैं ये अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को रिश्तों से ज्यादा या अपनी पिछली पीढ़ी से ज्यादा महत्व देते हों, लेकिन हम इसे जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। ये हमारे देश की कुल आबादी का जो 22% हमारी युवा आबादी है उसके मुट्ठी भर बच्चे हैं।
0: ये सिर्फ इंटरनेट के शब्द नहीं है बल्कि जनरेशन जी की नई भाषा है। आज हर चीज कंटेंट है। कॉफी पीना भी कंटेंट, जिम जाना भी कंटेंट,
12: और जल्दी उठना क्यों जरूरी है? क्योंकि पूरे दिन का टाइम मैनेज करना होता है तो जल्दी उठना जरूरी है, फिर उसके बाद मैं वर्कआउट के लिए चले जाता हूँ।
0: कॉन्सर्ट में जाना भी कंटेंट।
13: बोल आई लव यू।
14: आई लव यू।
13: आपके घर वालों को दिखाऊंगा, शादी करेगी मुझसे?
14: नहीं,
13: आई लव यू वाली वीडियो दिखाऊंगा।
14: करेगी
13: ना?
15: ए फटाक वाले भैया, अरे फटाकवा खोल दे, ओ गर्लफ्रेंड को मैंने भगा के लेके जाई था, घर वाले पिछवा, जल्दी खोलना है, बहुत मरी है भैया।
0: यहाँ तक की दुख, ब्रेकअप और नौकरी मिलने की खुशी भी कंटेंट। इन्फ्लुएंसर आज कई फिल्मी सितारों जितना असर रखते हैं, लेकिन इसी तस्वीर का दूसरा पहलू भी है।
16: 2 लाख का फोन लेकर स्टोरियां लानी स्टार्ट कर देंगे, मैं यू ले लिया, मैंने वो ले लिया, मैंने 25 लाख का लोन ले रखा, मैंने कहीं स्टोरी पाई।
0: क्या ब्रांडेड कपड़े, महंगे गैजेट और वायरल होना आज आत्मविश्वास की नई परिभाषा बन चुके हैं? क्या लाइक्स और फॉलोअर्स पहचान का नया पैमाना बन गए हैं?
17: हम बात करते हैं तो एक ऐसा युवा है जो 24/7 डिजिटल वर्ल्ड में 90% पॉपुलेशन है जो डिजिटल एंगेजमेंट से, उनके वो उनको दुनिया भर की सारे नॉलेज इस प्लेटफॉर्म पे, गूगल पे, मोबाइल फ़ोन पे अवेलेबल है। तो इससे क्या होता है कि वो इतने ज़्यादा अपडेटेड हैं, नॉलेज है, तो उसमें गलत भी नॉलेज वो कई बार कंज्यूम कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनके आप मानसिकता में बदलाव देखेंगे। आज के समय में आप देखेंगे कि हर आदमी सोशल मीडिया पे, चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे वो आपका इंस्टाग्राम हो, लिंक्डइन हो, तो सारे इन्फॉर्मेशन लेने की वजह से धीरे धीरे उसके मानसिकता में चेंजेस आता है। लोग इससे मोटिवेट भी हो रहे हैं पॉजिटिवली, जैसे आप कुछ अच्छा कर रहे हैं तो एक मोटिवेशन भी आता है, उसके वजह से लोगों में एक एक, एक पॉजिटिविटी भी आती है, बट कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेशन और कुंठा भी पैदा कर रहा है, जिसकी वजह से धीरे धीरे आप देखेंगे सोच में, समझ में लोगों के परस्पर बदलाव आ रहे हैं। युवाओं में तो खासकर ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं।
0: लेकिन जनरेशन जी की पहचान सिर्फ डिजिटल लाइफस्टाइल नहीं है बल्कि डिजिटल एक्टिविज्म भी है। #MeToo आंदोलन ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन ने नस्लीय भेदभाव के खिलाफ करोड़ों लोगों को एकजुट किया। नेपाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं का आंदोलन सत्ता परिवर्तन की वजह बना। बांग्लादेश में छात्रों ने वर्षों पुरानी सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया। इंडोनेशिया, फिलीपींस, पेरू में भी युवाओं ने व्यवस्था के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। भारत में भी पेपर लीक को लेकर जनरेशन जी का आंदोलन सफल रहा। जब आंदोलन नई शक्ल ले रहे थे, उसी समय तकनीक भी नई रफ्तार पकड़ रही थी। 4G इंटरनेट, स्मार्टफोन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, रील्स, डिजिटल पेमेंट, ऑनलाइन एजुकेशन, क्लाउड टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब ने दुनिया को बदल दिया। अब खबर अखबार में आने से पहले फोन पर पहुंच जाती है। एक वीडियो कुछ मिनटों में करोड़ों लोगों तक पहुंच सकता है। एक पोस्ट सरकार से जवाब मांग सकती है। एक हैशटैग वैश्विक आंदोलन का चेहरा बन सकता है।
1: हाँ, मतलब सभी लोगों के बहुत सारे अलग अलग पर्सपेक्टिव्स होते हैं, बट कुछ चीज़ें हैं जो पेरेंट्स भी समझते हैं और आपको सपोर्ट भी करते हैं उस चीज़ में, बट कुछ चीज़ें वो नहीं भी समझते उतना, और टीचर्स भी लाइक कुछ चीज़ों में दे सपोर्ट, बट कुछ चीज़ें वो नहीं समझ पाते हैं, और सभी अपने अपने पर्सपेक्टिव्स तो बताते ही हैं।
18: जो हमारे खेल कूद वाले फॉर एग्जाम्पल ऐसे अट्रैक्शन के लिए अलग जैसे इंस्टा, वो उनको समझने में थोड़ा बेशक मुश्किल आती होगी, बट सिंस द वर्ल्ड इज इवॉल्विंग और टीचर्स भी अब समझ रहे हैं, पेरेंट्स भी समझ रहे हैं कि ये भी नेसेसिटी है।
1: ऑब्जेक्शन तो नहीं करते हाँ, बट ये जरूर कहते हैं कि थोड़ा कम, जैसे स्नैपचैट इंस्टाग्राम है, इस पे कम फोकस करके थोड़ा अपने स्टडीज पे थोड़ा ज्यादा फोकस करो।
0: जनरेशन जी सिर्फ डिजिटल दुनिया की पहली पीढ़ी नहीं है, बल्कि ये पहली ऐसी वैश्विक पीढ़ी है जिसने मोबाइल को आंदोलन का मंच, सोशल मीडिया को संगठन की ताकत और इंटरनेट को बदलाव का सबसे बड़ा हथियार बना दिया। रील्स और रील लाइफ के बीच जीने वाली यही पीढ़ी आज सत्ता से सवाल भी पूछ रही है, समाज को आईना भी दिखा रही है और आने वाले समय की राजनीति, अर्थव्यवस्था और संस्कृति की दिशा भी तय कर रही है।
5: ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। कहानी जनरेशन की। हर पीढ़ी अपने समय की उपज होती है और इसीलिए उनके सपने अलग होते हैं, उनकी चुनौतियां अलग होती हैं और दुनिया को देखने का उनका दृष्टिकोण भी अलग होता है। लेकिन क्या सिर्फ जन्म का वर्ष किसी जनरेशन की पहचान तय करता है? आइए जानते हैं कि किस तरह इतिहास की बड़ी घटनाएं, तकनीक, राजनीति और समाज ने मिलकर नई पीढ़ी को हर बार नया नाम दिया है।

कहीं हाथों में तिरंगा है, कहीं लोकतंत्र बचाने की तख्तियां, कहीं नस्ल भेद के खिलाफ गूंजते नारे, तो कहीं जलवायु परिवर्तन के लिए सड़क पर उतरे लाखों युवा। ये सिर्फ प्रदर्शन नहीं, ये इतिहास के वो मोड़ है जहां हर पीढ़ी ने दुनिया में बदलाव देखा भी और बदलाव लाया भी, किसी जनरेशन में ज्यादा, किसी में कम। 20वीं सदी की शुरुआत हुई, दुनिया पर यूरोपीय साम्राज्यों का राज बढ़ता ही जा रहा था। एशिया और अफ्रीका के दर्जनों देश गुलाम थे, पूरी दुनिया में वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। प्रथम विश्व युद्ध का अंत 1918 में हो गया, लेकिन इस दौर में कई ऐसे आविष्कार हुए जिसने दुनिया भर के लोगों की जिंदगी को आसान बना दिया था। रेडियो संचार की खोज हुई, आसमान में पहली बार विमान नजर आया, मॉडर्न फिजिक्स में क्रांति आई, सड़कों पर कार दौड़ने लगी। इस दौर में महिलाओं ने भी बराबरी की लड़ाई शुरू की, और वो भी पूरे यूरोप और अमेरिका में। ये वो वक्त था जब दुनिया भर में आजादी की लड़ाई भी जोर पकड़ने लगी थी। एशिया, अफ्रीका और यूरोप में करोड़ों लोग सड़कों पर थे। कोरिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, अफ्रीका के लोग आजादी की लड़ाई जीत भी रहे थे। दुनिया का नक्शा बदल रहा था। इस पीढ़ी ने दुनिया को सिखाया, अधिकार दिए नहीं जाते, हासिल किए जाते हैं। ये सिर्फ एक समय नहीं था, बल्कि इतिहास के सबसे उथल पुथल भरे दौरों में से एक था। इसी दौर में जन्मी पीढ़ी को कहा गया साइलेंट जनरेशन। इनका बचपन खेल के मैदानों में नहीं, बल्कि युद्ध, भय और आर्थिक संकट के साए में बीता था। 1929 में आई ग्रेट डिप्रेशन ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिला दी थी। यूरोप में फासीवाद और नाजीवाद का उभार हुआ। 1939 में शुरू हुए द्वितीय विश्व युद्ध ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था।

0: लेकिन ये दौर सिर्फ युद्ध का नहीं था, बड़े बदलाव का भी था। इस दौर में टेलीविजन युग की शुरुआत हुई, पेनिसिलिन की खोज हुई, लाखों सैनिकों और नागरिकों की जान बचाई गई, दुनिया ने रडार तकनीक को अपनाया, टेलीविजन प्रसारण की शुरुआत हुई और न्यूक्लियर फिशन के जरिए परमाणु ऊर्जा का मार्ग खुला। इतना ही नहीं, 1945 में परमाणु बम का आविष्कार हुआ, जिसके बाद युद्ध और वैश्विक राजनीति बदल गई। भारत जैसे कई देशों में आजादी की अंतिम लड़ाई का आगाज हो चुका। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ और दुनिया ने राहत की सांस ली, लाखों सैनिक घर लौटे, नए परिवार बसने लगे और अगले 18 सालों में जन्म दर में जबरदस्त उछाल आया। सिर्फ अमेरिका में ही इस दौरान करीब 7,60,00,000 बच्चों का जन्म हुआ। इसी बेबी बूम की वजह से इस पीढ़ी का नाम पड़ा बेबी बूमर्स।
1: पहले वाली पीढ़ी के अंदर जो भी कार्य किया जाता था बहुत ही सोच समझ के किया जाता है, आगे पीछे का अच्छा भला बुरा देखा जाता था, कहीं कोई वो तो नहीं हो रहा है, नुकसान तो नहीं हो रहा है, किसी की आसपास के लोगों पे इसका क्या फर्क पड़ेगा, आसपास के समाज के लोग क्या कहेंगे, तो सारी चीजों को पहले सोच समझ के डिसीजन लिया जाता था। आज की पीढ़ी में वो बात नहीं।
0: लेकिन ये सिर्फ बढ़ती आबादी का दौर नहीं था, ये दुनिया को बदल देने वाले आंदोलनों और क्रांतियों का दौर भी था। अमेरिका में सिविल राइट्स मूवमेंट ने नस्लीय भेदभाव के खिलाफ ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी, वियतनाम युद्ध के खिलाफ दुनिया भर के लाखों युवा सड़कों पर उतर आए, क्यूबा क्रांति ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा, चे ग्वेरा दुनिया भर के युवाओं के लिए विद्रोह और बदलाव का प्रतीक बन गए। इधर महिलाओं ने भी समान अधिकार, समान वेतन और बराबरी की आवाज बुलंद की, दुनिया भर में लैंगिक समानता पर बहस होने लगी। इसी दौर में डीएनए की संरचना का पता चला, पोलियो वैक्सीन ने लाखों बच्चों की जान बचाई, स्पुतनिक के साथ अंतरिक्ष युग की शुरुआत हुई, यूरी गागरिन अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले इंसान बने। यानी बेबी बूमर्स सिर्फ सबसे बड़ी आबादी वाली पीढ़ी नहीं थी, बल्कि वो पीढ़ी थी जिसने बराबरी के आंदोलन देखे, क्रांतियों को जन्म लेते देखा, विज्ञान को नई उड़ान दी और आधुनिक दुनिया की राजनीतिक, सामाजिक और तकनीकी दिशा बदल दी। ये वो दौर था जब दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई थी, एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ सोवियत संघ। शीत युद्ध अपने चरम पर था, परमाणु हथियारों की होड़ भी थी और तकनीक की दौड़ भी। इसी दौर में जन्मी पीढ़ी को कहा गया जेनरेशन एक्स।
2: करते थे बड़ों का रिगार्ड किया करते थे, जहां आप देखते हैं कि बड़ों का सम्मान देना चाहिए, आजकल वो रिगार्ड ही नहीं है। आजकल बच्चे हमको तो अनपढ़ समझते हैं, और जब से ये कंप्यूटर आया है, जो इंटरनेट या कंप्यूटर आया है, तब से बच्चे सोचते हैं कि हमारे पेरेंट्स हैं जो बड़े लोग हैं वो तो अनपढ़ हैं, हम ही पढ़े लिखे हैं।
3: अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ रहा है, जिम्मेदारियों से मुंह चुरा रहा है, बस यही बदलाव। और
0: ये वो पीढ़ी थी जिसने रेडियो से टेलीविजन और टाइपराइटर से कंप्यूटर तक का सफर अपनी आंखों के सामने देखा, इसलिए इन्हें अक्सर ब्रिज जनरेशन भी कहा जाता है, जिसने एनालॉग और डिजिटल दुनिया के बीच पुल का काम किया। लेकिन इस पीढ़ी की पहचान सिर्फ तकनीक नहीं बल्कि बदलाव की राजनीति की भी थी। दुनिया के बड़े आंदोलन, बर्लिन की दीवार गिर गई, पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी एक हो गए, पूर्वी यूरोप में एक एक कर कम्युनिस्ट सरकारें ठहरने लगी, शीत युद्ध के अंत की शुरुआत यहीं से हुई, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद विरोधी आंदोलन ने निर्णायक मोड़ लिया, चीन में अंतिम बार हजारों छात्र लोकतंत्र की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे, भारत में भी मंडल आयोग के बाद बड़ा छात्र आंदोलन हुआ। इधर समाज बदल रहा था, उधर तकनीक भी नई छलांग लगा रही थी, पर्सनल कंप्यूटर आम लोगों तक पहुंचने लगे, वीसीआर और रंगीन टेलीविजन घरों का हिस्सा बने, वीडियो गेम्स की शुरुआत हुई और मोबाइल फोन की पहली पीढ़ी दुनिया के सामने आई। इसी दौर ने आने वाली इंटरनेट क्रांति की नींव भी रख दी। यानी जेनरेशन एक्स ने सिर्फ दुनिया को बदलते नहीं देखा बल्कि दो युगों के बीच खड़े होकर बदलाव को अपनाया। ये वो पीढ़ी थी जिसने दुनिया को दो हिस्सों में जिया, एक बचपन बिना इंटरनेट के और जवानी इंटरनेट के साथ। इन्हें कहा गया मिलेनियल्स, क्योंकि ये वो पीढ़ी थी जिसने नई सहस्त्राब्दी यानी मिलेनियम के साथ युवावस्था में कदम रखा।
4: जेनरेशन बाय जेनरेशन जब सामाजिक बदलाव आता है, हर डिकेड्स में ना एक ट्रांजिशन का फेज होता है, समाज बदलता है, टेक्नोलॉजी बदलती है, इन्वायरमेंट बदलता है, तो कहीं ना कहीं जो मैं देख रहा हूँ इस बदलते हुए तकनीक के दौर में हर आए दिन कुछ ना कुछ नया चेंजेस हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो हमारी पहले की जो जनरेशन थी, जो अभी हम हैं और जो हमारी आने वाली जनरेशन है, उन सब में एक कहीं ना कहीं एक वो ट्रांजिशन और वो एक चेंजेस लगातार देखने को वजह से क्या होता है, कई बार एक्सेप्टेंस नहीं हो पाता है। जो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, हो सकता है सामने वाले ने उस तरीके से अलग युग में जन्म लिया है, तो वो उसकी उसका जो एक्सपीरियंसेस है वो बिल्कुल मेरे एक्सपीरियंसेस से हटके है। चूँकि चाइल्डहुड एक मेन रोल प्ले करता है किसी भी पर्सनैलिटी में, शुरू के एक से लेकर पाँच साल तक, जैसे सिगमंड फ्रॉयड कहते हैं।
0: ये वो दौर था जब घरों में पहली बार कंप्यूटर पहुंचे, इंटरनेट ने दस्तक दी, ईमेल ने चिट्ठियों की जगह लेनी शुरू की और मोबाइल फोन लोगों की जेब तक पहुंच गया। लेकिन इस पीढ़ी की पहचान सिर्फ तकनीक नहीं थी, बल्कि दुनिया भर में बदलाव की नई लहर भी थी। दुनिया के बड़े आंदोलन अरब स्प्रिंग ने ट्यूनेशिया, मिस्र, लीबिया, यमन और सीरिया समेत कई देशों में दशकों पुरानी सरकारों को चुनौती दी। कई शासक सत्ता से बाहर हुए, कई देशों में गृह युद्ध हुए। भारत में 2011 में अन्ना हजारे का भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन हुआ। इसी दौर में एलजीबीटी अधिकार आंदोलन भी तेज हुआ। दुनिया के कई देशों में समान लैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता मिली। जब सड़कों पर आंदोलन हो रहे थे, उसी समय तकनीक भी दुनिया को नई दिशा दे रही थी। वर्ल्ड वाइड वेब, गूगल, विकिपीडिया, फेसबुक, यूट्यूब, स्मार्टफोन और 3G इंटरनेट ने दुनिया को पहले से कहीं ज्यादा जोड़ दिया। अब जानकारी सिर्फ किताबों में नहीं, हथेली पर थी। यानी मिलेनियल्स वो पीढ़ी थी जिसने एनालॉग दुनिया को अलविदा कहा, डिजिटल दुनिया का स्वागत किया और पहली बार ये दिखाया कि एक ट्वीट, एक पोस्ट या एक ऑनलाइन अभियान भी लाखों लोगों को सड़क पर ला सकता है। यही पीढ़ी इंटरनेट क्रांति और जन आंदोलनों के नए दौर के बीच सबसे मजबूत कड़ी बनी। ये वो पीढ़ी है जिसने दुनिया को इंटरनेट पर नहीं खोजा, बल्कि इंटरनेट के साथ ही जन्म लिया। इन्हें कहा गया जनरेशन जी। ये पहली ऐसी पीढ़ी है जिसके लिए स्मार्टफोन कोई तकनीक नहीं, बल्कि जिंदगी का हिस्सा है। सोशल मीडिया, हाई स्पीड इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के शुरुआती दौर के साथ बढ़ी हुई इस पीढ़ी ने जानकारी का इंतजाम नहीं किया, बल्कि उसे अपनी उंगलियों पर पाया। लेकिन जनरेशन जी की पहचान सिर्फ डिजिटल दुनिया नहीं, बल्कि डिजिटल आंदोलन भी है। 4G इंटरनेट, स्मार्टफोन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, रील्स, क्लाउड टेक्नोलॉजी, AI, ऑनलाइन एजुकेशन और डिजिटल पेमेंट ने पूरी दुनिया की जीवन शैली बदल दी। अब एक हैशटैग कुछ ही मिनटों में करोड़ों लोगों तक पहुंच सकता है। यानी जनरेशन जी सिर्फ डिजिटल दुनिया की पहली पीढ़ी नहीं है, बल्कि ये पहली ऐसी वैश्विक पीढ़ी है जिसने मोबाइल को आंदोलन का मंच, सोशल मीडिया को संगठन की ताकत और इंटरनेट को बदलाव का सबसे बड़ा हथियार बना दिया है। 2010 के बाद एक ऐसी पीढ़ी दुनिया में आई जिसने न डायलअप इंटरनेट देखा, न कीपैड फोन, न टीवी के सामने रविवार की सुबह का इंतजार। इनके लिए दुनिया की शुरुआत ही टच स्क्रीन से हुई। इन्हें कहा जाता है जनरेशन अल्फा।
4: जो जेंजीज की जब हम बात करते हैं तो धैर्य इसलिए कम हुआ है, थोड़ा कमी तो आई है, क्योंकि जो आप सामने वाला दिमाग ना, जिसको हम प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, ये निर्णय लेने का काम करता है, डिसीजन मेकिंग जिसको हम कहते हैं, रीजनिंग, लाइफ में बैलेंस करना, या जो भी आप लाइफ में काम करते हैं, सोचते समझते हैं, वो सब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से होता है। अब इससे दिक्कत ये हो रहा है कि ये ज़्यादा मोबाइल कंज्यूम करने से, ज़्यादा स्क्रीन टाइम से होने की वजह से ये एक तरह से हमेशा स्टिमुलेटेड रहता है, इसकी डिसीजन क्षमता घटी है। इससे क्या हुआ, हमारा जो लिम्बिक सिस्टम होता है और जो एक एमिगडाला होता है वो इमोशन अराउज करने का काम करता है। तो जब हमेशा आप कंज्यूम करेंगे अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन, मोबाइल फ़ोन पे ज़्यादा रहेंगे, तो आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो होता है, सामने का जो दिमाग है, वो उसकी क्षमता, जो निर्णय लेने की क्षमता है, वो काफी स्टिमुलेट, काफी डिस्टर्ब हो गया है।
0: ये पहली ऐसी पीढ़ी है जो पूरी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट डिवाइस, क्लाउड टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन के दौर में पड़ी हो रही है। इनके लिए इंटरनेट कोई नई खोज नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। 2020 में आई कोविड-19 महामारी ने करोड़ों बच्चों को स्कूल से सीधे मोबाइल और लैपटॉप की स्क्रीन तक पहुंचा दिया। ऑनलाइन क्लास, वर्चुअल परीक्षा और डिजिटल पढ़ाई, यही इनका नया सामान्य बन गया। इसी दौर में चैट जीपीटी जैसे जेनरेटिव एआई टूल, रोबोटिक्स और मशीन लर्निंग ने पढ़ाई, काम और सोचने के तरीके को बदलना शुरू कर दिया। जनरेशन अल्फा अभी पूरी तरह वयस्क नहीं हुई है, इसलिए इसकी राजनीतिक पहचान अभी बन रही है, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले सालों में ये पीढ़ी एआई, जलवायु परिवर्तन, डेटा प्राइवेसी

0: लेकिन इस पीढ़ी की कहानी सिर्फ रील, ब्लॉग और वायरल वीडियो तक सीमित नहीं है। हैरानी की बात यह है कि जिस पीढ़ी पर दिन भर मोबाइल में खोए रहने का आरोप लगता है, वही पीढ़ी अब अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतर रही है। अब ये सिर्फ कंटेंट नहीं बना रही, बल्कि सिस्टम से सवाल भी पूछ रही है।
1: और हमारे 5 सालों से मैथ की टीचर नहीं है। हमारी स्कूल 2 साल पहले 12th तक हो चुकी है, लेकिन अभी तक एक भी लेक्चरर नहीं आया है। और हमें संस्कृत, विज्ञान और बहुत सारी 2-3 लेक्चरर भी चाहिए। और हमारे जल्द से जल्द टीचर लगाओ।
2: डिपोर्टेशन पे टीचर नहीं चाहिए हमें, हमारे परमानेंट टीचर चाहिए।
3: ये रोड जाम जब तक नहीं खुलेगा जब तक हमारी टीचर नहीं आती।
0: राजस्थान के अजमेर में सरवाड़ तहसील के सापला गांव की छात्राओं ने वो किया जिसकी उम्मीद शायद किसी ने नहीं की थी। स्कूल में शिक्षकों की कमी से परेशान छात्राओं ने पहले नारे लगाए, स्कूल पर ताला जड़ दिया और उसके बाद हाईवे तक जाम कर दिया। 2 साल पहले स्कूल को 12वीं तक अपग्रेड किया गया, लेकिन आज तक विषय विशेषज्ञ शिक्षक नहीं पहुँचे थे। गणित का स्थायी शिक्षक वर्षों से नहीं है, विज्ञान और संस्कृत के शिक्षक भी नहीं। बार बार शिकायत हुई, लेकिन जब सुनवाई नहीं हुई तो किताबें छोड़कर छात्राएं सड़क पर उतर आईं।
4: कल स्कूल बंद क्या था, जब तक हमें शिक्षक नहीं मिलेंगे तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। हमें शिक्षक मिलना ही चाहिए, ये हमारा हक है।
5: स्कूल में पिछले 4 सालों से शिक्षक की कमी है। हमें शिक्षक क्यों नहीं दिया जाता? हम पे ये अन्याय क्यों किया जाता है? हमें इसका उत्तर चाहिए आपसे।
0: ये सिर्फ राजस्थान की कहानी नहीं है, महाराष्ट्र के धाराशिव में भी तस्वीर लगभग ऐसी ही दिखी। यहाँ सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि उनके माता पिता भी धरने पर बैठ गए। स्कूल में वर्षों से शिक्षकों के पद खाली है, गणित और विज्ञान पढ़ाने वाला कोई नहीं। ऐसे में सवाल सिर्फ पढ़ाई का नहीं, पूरे भविष्य का है। तेलंगाना के एक सरकारी स्कूल में करीब 250 बच्चे पढ़ते हैं, उनमें 130 से ज्यादा छात्राएं हैं, लेकिन पूरे स्कूल में सिर्फ एक टॉयलेट। छात्र खुले में शौच जाते हैं, लेकिन छात्राओं को लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। यानी डिजिटल इंडिया के दौर में देश के कुछ स्कूल अभी भी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज कई बच्चे होमवर्क से पहले AI से सवाल पूछते हैं, लेकिन जेनरेशन अल्फा की कहानी सिर्फ तकनीक तक सीमित नहीं है। ये वही पीढ़ी है जो अपने अधिकारों के लिए बोलना भी सीख रही है। अभी ये पीढ़ी वोट नहीं देती, संसद में नहीं बैठती और सरकारें भी नहीं चलाती, लेकिन ये अपने सवालों से व्यवस्था को आईना जरूर दिखा रही है। यानी जेनरेशन अल्फा अभी इतिहास नहीं लिख रही, लेकिन इतिहास लिखने की तैयारी जरूर कर रही है।
6: कहानी में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

0: शुक्रवार को संसद में साधु के भेष में पप्पू यादव ने चंदा चोरी का तंज वाला नाटक किया, जिसमें समाजवादी पार्टी कांग्रेस के नेता शामिल हुए और अब पप्पू यादव के इस अभिनय पर संत समाज और हिंदू संगठन भड़के हुए, जिसे लेकर कई जगहों पर प्रदर्शन हुआ।
1: ये गुस्सा है पप्पू यादव के उस तमाशे के खिलाफ जो संसद में उन्होंने साधु के भेष में किया। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं, जहां पप्पू यादव के पुतले फूंके जा रहे हैं, नारेबाजी की जा रही है।
2: हमारे समाज को, हमारे सनातन समाज को जो ये कर रहा है, हम माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि इसके ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एक्ट के अंतर्गत मुकदमा कायम करके जेल भेजे और इनके खिलाफ जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, संसद की सदस्यता भी समाप्त होना चाहिए।
1: दिल्ली के जंतर मंतर में विश्व हिंदू परिषद ने पप्पू यादव को लेकर सद्बुद्धि हवन किया।
3: तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर एक सांकेतिक सद्बुद्धि हवन जो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा यहाँ पर रखा गया, तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूंगा कि दिल्ली भर से जो संत लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हैं।
1: भोपाल में भी भारी संख्या में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, जहाँ पप्पू यादव के साथ राहुल गांधी और अखिलेश यादव का विरोध किया गया, पुतला जलाया गया।
4: कई वर्षों तक राम मंदिर का विरोध करते रहे, सफल नहीं हो पाए। जब कोर्ट से सफल नहीं हुए तो लोकतंत्र के मंदिर के बाहर राम मंदिर को, राम जी को बदनाम करने की जिन्होंने कोशिश करी, चाहे राहुल गांधी हो, पप्पू यादव हो या अखिलेश यादव हो, इस प्रकार से ड्रामा करके राम जी को जिन्होंने बदनाम किया, ये उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया जा रहा है।
1: उधर दिल्ली के जहांगीरपुरी थाने में सांसद पप्पू यादव के खिलाफ शिकायत दी। वहीं वाराणसी में भी संत समाज की ओर से पप्पू यादव पर एक मुकदमा दर्ज कराया गया है।
5: इसमें बीजेपी को घेरने के कहां से आ गई? इसमें बीजेपी का गेरुआ वस्त्र पहनने करके बाबा बन के घूमती है बीजेपी। आप बीजेपी को घेरो ना, किसने मना किया? आप बीजेपी से सवाल करो, बीजेपी के विपक्ष में आप बैठ जाओ, आप तमाम जो चीजें हैं उन पर, क्योंकि इनके पास तो कोई मुद्दे बचे नहीं है, तो अब यही मुद्दे उल्टे सीधे बचे हैं कि संतों का अपमान करेंगे। इन लोगों को ही लगता है कि संत समाज बीजेपी का समर्थन करती है, पर सत्य यह है कि संत समाज उसी का समर्थन करती है जो राम का समर्थन करती है, जो कृष्ण का समर्थन करती है, जो सनातन धर्म की रक्षा करती है।
1: इस बीच पप्पू यादव ने हंगामे के बीच इंस्टा पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो उन्हीं कपड़ों में पूजा करते नजर आ रहे हैं। वहीं पूरे मामले में पप्पू यादव की सफाई भी आई है।
6: आपको नहीं लगता कि आपने कुछ गलत किया है इस पूरे?
7: मतलब सनातन और मंदिर के सारे पैसे को, लुटेरे को उजागर करना और उसके खिलाफ लड़ना गलत है, मंदिर की रक्षा करना गलत है, मंदिर के पैसे की रक्षा करना गलत है, देश के 100 करोड़ का जो आस्था है मंदिर के प्रति उसकी रक्षा करना गलत है, हनुमान जी को नचाना सही है, गुड्डी में राम को उड़ाना सही है।
1: बहरहाल संसद में चंदा चोरी पर पप्पू यादव के नाटक ने नया सियासी घमासान शुरू कर दिया है। आज तक ब्यूरो।
0: अब आज पीएम मोदी के नए वीडियो संदेश की। पीएम मोदी ने शुक्रवार देर रात एक बार फिर से जेन ज़ी को मैसेज दिया। रात तकरीबन 11 बजे के बाद पीएम मोदी इंस्टाग्राम पर लाइव आए, जहां उन्होंने अभद्र टिप्पणी करने वाले बच्चों को माफ करने की बात कही।

0: 31 जुलाई की रात पीएम मोदी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट कर युवाओं को माफ कर दिया।
1: जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है।
0: हालांकि पीएम मोदी ने लड़कियों की भाषा पर हैरानी जताते हुए कहा कि जिस तरह कुछ बेटियों के मेरी माँ को गाली देते हुए वीडियो वायरल हुए उससे उन्हें कल्चरल शॉक लगा।
1: एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है।
0: हालांकि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और शिवसेना यूबीटी जैसे दल गाली देने वाले युवाओं को माफ कर देने वाले वीडियो पर भी हमलावर दिखे।
2: उनको ये पूछना चाहिए क्या इस देश के छात्र उनको माफ करेंगे? उनकी वजह से 35 दिन छात्रों को परेशान होना पड़ा, खुले छत के नीचे सोना पड़ा, लाठियां खानी पड़ी, पैलेट गन झेलनी पड़ी। प्रधानमंत्री जी को छात्र माफ करेंगे या नहीं, उनको देश के छात्रों से पूछना।
3: वाइट पद्धति ने पुरुष पोलिसांकडनं त्यांचे कपडे फाडले गेले, ज्या पद्धतीने तो व्हिडिओ मी पाहिला, एक ती मुलगी पुढे जाते आणि तो पोलीस पाठवून कसं तो मला बोलायला सुद्धा लाज वाटते। ज्या मुलांनी नीटच्या परीक्षेचा पेपर फुटला म्हणून आत्महत्या केली त्यांची पहिली माफी यांनी मागायला पाहिजे।
0: जहां बीजेपी कह रही है कि पीएम मोदी को 25 सालों में न जाने कितनी गालियां दी गई फिर भी वो विचलित नहीं हुए, वहीं आम आदमी पार्टी बोली बीजेपी और पीएम मोदी को विक्टिम कार्ड खेलकर उसका सियासी फायदा उठाना बखूबी आता है।
4: देखो मोदी जी बहुत बड़े हृदय के व्यक्ति हैं और तभी शायद यहां तक पहुंचे हैं। और जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं पिछले 25 साल में मोदी जी जब से मुख्यमंत्री रहे, प्रधानमंत्री रहे, जिस प्रकार से उन्होंने उनके ऊपर विपक्ष के द्वारा जो निजी हमले हुए, कभी उनको मौत का सौदागर कहा गया, कभी चौकीदार चोर है, कभी किस प्रकार से घृणित आरोप उनके ऊपर लगाए गए, निश्चित रूप से एक ये नई शुरुआत है। और मोदी जी ने जिस प्रकार का आह्वान किया है कि हम लोग देश के एक साथ लेकर देश को आगे बढ़े,
5: पूरे देश की मानसिकता को आपने दूषित कर दिया है। मैं कोई ट्वीट करता हूं उसके नीचे इतनी भद्दी भद्दी टिप्पणियां, लाखों गालियां। आज तक अगर मेरे सारे ट्वीट उठा लिए जाएं और उसके नीचे की गालियां उठा ली जाएं जो आपके समर्थक आपके लोगों ने दी हैं, लाखों लाख गालियां दी हैं, माँ की बहन की गालियां। मेरी आदत नहीं है रोने धोने की, आपकी आदत है। आपको कुछ भी होता है आप उसको कैश कराने के चक्कर में लग जाते हैं।
0: फिलहाल पीएम मोदी के माफी वाले वीडियो पर सियासी महाभारत थमती नहीं दिख रही। आज तक ब्यूरो।
6: यूपी में बन रहे बटेश्वर कॉरिडोर की जिसके निर्माण में समाजवादी पार्टी ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया तो राजनीति गर्मा गई। बीजेपी ने हालांकि विपक्षी दलों पर पलटवार भी किया।
7: ये तस्वीरें आगरा में बन रहे बटेश्वर कॉरिडोर की है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इन तस्वीरों को साझा किया और कॉरिडोर के निर्माण में भारी अनियमितता, गड़बड़ी और भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया। साथ ही दावा ये भी किया कि शिकायतकर्ताओं को धमकाया जा रहा है।
8: समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने बटेश्वर महादेव का एक वीडियो जारी करके सोशल मीडिया पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी पर साफ तरीके से कहा है कि बिना बेस के निर्माण के पीवीसी वहां पर सीमेंटेड की जा रही है, यानी कि खामियों की बात की है।
7: यूपी में राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर पहले ही संग्राम जारी है। संसद तक इसे लेकर जंग छिड़ी है। इस बीच समाजवादी पार्टी ने धर्म आस्था से जुड़े एक और मुद्दे को उठाकर यूपी सरकार को घेरने की कोशिश की।
9: देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार वैसे तो ऊपर से लेकर नीचे तक जो भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, लेकिन अब इन्होंने भगवानों को भी नहीं छोड़ा, इन्होंने मंदिरों को भी नहीं छोड़ा। आज जिस तरीके से बटेश्वर कॉरिडोर में जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है, जिस तरीके से मिलावट हो रहा है, जिस तरीके से निर्माण में अनियमितता हो रही है, उसको माने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने अपने पोस्ट में दर्शाने का काम किया, वीडियो फुटेजेस के साथ उन्होंने दर्शाने का काम किया।
10: भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में पहले भ्रष्टाचार होता है और फिर शिकायतकर्ताओं को धमकाया जाता है। बटेश्वर कॉरिडोर में भी यही हो रहा है, राम मंदिर के निर्माण में भी यही हो रहा है, चंदा चोरी में भी यही हो रहा है, जिस तरीके से एक्सप्रेस वे धस रहे हैं उन सारी जगहों पर शिकायतकर्ताओं को धमकाया जा रहा है।
11: अखिलेश यादव जी की राजनीति अब केवल अफवाहों पर और आरोप पर तक सीमित रह गई है। बिना किसी ठोस प्रमाण के वे कुछ भी कहते रहते हैं। अगर उनके पास कोई ठोस प्रमाण है तो निश्चित रूप से जांच एजेंसी को दें। हमारी सरकार हर विषय पर जांच कराने के लिए तैयार है।
7: विपक्ष के हमलों और बीजेपी के पलटवार के बीच बटेश्वर कॉरिडोर पर नई राजनीति शुरू हो गई। एक और धार्मिक क्षेत्र को लेकर विपक्ष और बीजेपी अब आमने सामने आ गए हैं। आशीष श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
6: रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: जेन जी को संदेश के बाद पीएम मोदी ने की युवा शक्ति की बात। मैसूरू में कहा कि देश की तरक्की में योगदान छात्रों को 21वीं सदी के लिए तैयार कर रही है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। चढ़ावा चोरी पर प्रदर्शन को लेकर पप्पू यादव की बड़ी मुश्किलें। बीजेपी और साधु संतों ने वाराणसी में दर्ज कराया एफआईआर। राहुल गांधी का नाम भी, कई शहरों में प्रदर्शन। और सीमन को लेकर केंद्र पर भड़के राहुल। चेन्नई में कहा यह बीजेपी की बड़ी साजिश, समर्थन करने वाले तमिलनाडु को धोखा दे रहा है। पाकिस्तानी आतंकी संगठनों की हिट लिस्ट में सीएम शुभेंदु अधिकारी का नाम। बंगाल पुलिस का दावा, बर्दमान से हमीम मंडल की गिरफ्तारी के बाद खुलासा। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय महिला मुक्केबाजों का गोल्डन पंच। आज 5 बॉक्सरों ने जीता गोल्ड। भारत के खाते में अब तक 13 स्वर्ण।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की झोली में सोने की बरसात। शनिवार को महिला मुक्केबाजों ने जीते 5 गोल्ड मेडल। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की प्रीति पवार, जैस्मिन लेम्बोरिया और साक्षी चौधरी ने बॉक्सिंग में जीते गोल्ड। अलग अलग वर्ग में मिला सोना। भारत की प्रिया ने भी बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल पर जमाया कब्जा। 70 किलो वर्ग में अरुंधति चौधरी को स्वर्ण। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के खाते में अब तक 13 गोल्ड मेडल पदक। तालिका में चौथे नंबर पर भारत। गोल्ड मेडल जीतने पर पीएम मोदी ने सभी खिलाड़ियों को दी बधाई। अमित शाह ने भी पोस्ट करके शाबाशी दी। कर्नाटक मैसूरू में पीएम मोदी के रोड शो में उमड़ा सैलाब। पीएम मोदी बोले, मैसूरू से देश की सांस्कृतिक पहचान और परंपरा को इन्होंने संजो कर रखा। मैसूरू में ही पीएम मोदी ने श्री रामकृष्ण आश्रम में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन किया। मैसूरू में जेंजी को पीएम मोदी का संदेश, बोले कि छात्रों को 21वीं सदी के लिए तैयार कर रही है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। इससे पहले पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश को 18,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। भोगपुरम में नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन। भोगपुरम में आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने गाली देने वाले जेन जी को माफ करने पर पीएम मोदी की तारीफ की बताया, बड़े दिल वाला। चेन्नई पहुंचे राहुल गांधी का युवाओं से संवाद। पीएम के माफी वाले बयान पर बोले कि पीएम को छात्रों से माफी मांगनी चाहिए। कहा कि एक भी पीड़ित छात्र ने उन्होंने मुलाकात नहीं की। कांग्रेस सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने पीएम के माफ करने वाले बयान पर कहा कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ के लिए कौन मांगेगा माफी। शिवसेना यूबीडी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे का बयान कि छात्राओं से बदसुलूकी और लाठीचार्ज के लिए अमित शाह को भी माफी मांगनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का बयान, बीजेपी और पीएम मोदी को विक्टिम कार्ड खेलकर उसका सियासी फायदा उठाने की आदत है। चेन्नई में परिसीमन को लेकर केंद्र पर बरसे राहुल, कहा कि बीजेपी की बड़ी साजिश विश्वासघात। गृहमंत्री अमित शाह ने एनएसए अजीत डोभाल को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किया सम्मानित। डोभाल ने जताया आभार। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से की मुलाकात, अहम मुद्दों पर हुई बात। मीडिया से बातचीत से पहले कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके की बिगड़ी तबीयत और वॉमिटिंग के बाद घर लौटे। मुंबई में शिवसेना यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे का बयान, अयोध्या में दान की चोरी को लेकर बीजेपी को देश की जनता को जवाब देना चाहिए। संसद परिसर में संतों भगवान श्री राम के कथित अपमान के विरोध में भोपाल में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का प्रदर्शन। राहुल गांधी और पप्पू यादव के खिलाफ नारेबाजी। विवाद के बाद डैमेज कंट्रोल करते नजर आए सांसद पप्पू यादव। शिवलिंग की पूजा करते हुए वीडियो किया शेयर। कहा कि आस्था के नाम पर लूट चल रही है, उसी के प्रति विरोध था। चढ़ावा चोरी पर प्रदर्शन को लेकर पप्पू यादव की बड़ी मुश्किलें। बीजेपी और साधु संतों ने वाराणसी में दर्ज करवाई FIR। पटना में प्रशांत किशोर ने चुनाव आयोग से SSP कार्तिकेय शर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। चुनाव में धांधली क्या। बिहार के सीवान में छात्रों पर AK-47 गोलीबारी मामले में घायल छात्रों से मिलने के लिए पहुंचे कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गढ़ी और फैक्ट फाइंडिंग टीम ने भी हलचल जाना। पंजाब के संगरूर में कांग्रेस का पलटवार। भूपेश बघेल ने कार्यक्रम में हंगामे के लिए भगवंत मान सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। कहा कि दोषियों की जांच कर सख्त कार्रवाई। पंजाब कांग्रेस में बड़ी कलर। संगरूर में हर बूथ कांग्रेस मजबूत कैंपेन के तहत एक कार्यक्रम में चरणजीत सिंह चन्ने के समर्थकों ने नारे लगाए भूपेश बघेल के खिलाफ बिना नारेबाजी। यूपी के सहारनपुर में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कांवड़ियों की सेवा की, बोले कि सेवा हमारी संस्कृति की पहचान। पटना में JDU के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने कांग्रेस और RJD पर बोला हमला। बोले कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं और तेजस्वी का जनता से कोई सरोकार नहीं। प्रयागराज में राष्ट्रीय परिषद सेना ने संसद में भगवान राम के अपमान का आरोप लगाते हुए पप्पू यादव पर निशाना साधा। कहा कि पाखंडे। 2 दशक के बाद कार्यक्रम में कोलकाता पहुंचे लेखिका तस्लीमा नसरीन और सीएम शुभेंदु अधिकारी मौजूद रहे। यूपी के पीलीभीत में अवैध संबंधों और घरेलू कलह में पत्नी ने पति की हत्या की, नशीला पदार्थ पिलाकर गला दबाकर मार दिया। अलीगढ़ में हॉरर किलिंग में नाबालिग की हत्या का शक है, शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इंदौर में 2023 के एक मर्डर केस में 3 आरोपियों को उम्र कैद की सजा, प्रेमी संग मिलकर पत्नी ने हत्या की थी। बिहार के हाजीपुर में मामूली विवाद में 70 साल के बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी। लंबे समय से रास्ते को लेकर विवाद था। हरियाणा के सोनीपत में ज्वेलरी शॉप में दिन दहाड़े लूट में आंखों में मिर्च का पाउडर डालकर चांदी के गहने लेकर फरार 2 बदमाश। MP के इंदौर में एक महिला की पिटाई का वीडियो वायरल, सड़क पर हंगामा करने और महिला को पीटने वाला आरोपी गिरफ्तार। संभल में 24 बीघा सरकारी जमीन पर बुलडोजर चला हुआ कर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पूरी। अस्थायी अवैध निर्माण को हटाने के लिए प्रशासन ने 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया।
मेरठ में सरकारी बस अड्डे पर रिटायरमेंट पार्टी में महिला डांसर का वीडियो वायरल, बस ड्राइवर की विदाई पार्टी में सरकारी परिसर में आयोजन पर उठे सवाल। अमरावती में मूसलाधार बारिश ने 38,000 हेक्टेयर से ज्यादा की फसल डुबो दी है, 2 लोगों की मौत। उत्तराखंड की मसूरी में अवैध नमाज स्थल से हटाया गया अतिक्रमण, 200 साल पुराने कब्रिस्तान में बने नमाज स्थल पर बुलडोजर चला। जयपुर में नौकरी का झांसा देकर लाखों की ठगी करने वाले नेटवर्क का पर्दाफाश, फर्जी कॉल सेंटर से 11 लड़के लड़कियां गिरफ्तार। बिहार की मोतिहारी में एक शख्स की धारदार हथियार से हत्या, शुरुआती जांच में पारिवारिक विवाद में मर्डर का शक। मुजफ्फरपुर में दूध गर्म करते समय लगी आग, सिलेंडर ब्लास्ट से 4 घर राख। यूपी के हमीरपुर में महिला की हत्या में हैरान कर देने वाला खुलासा, बीमा के 44 लाख रुपए पाने के लिए हत्या की गई। हरदोई में डबल मर्डर केस में 3 नाबालिग समेत 5 आरोपियों पर शिकंजा, प्रेम प्रसंग से नाराजगी में वारदात को दिया अंजाम। बिहार के मोतिहारी में प्रेम प्रसंग में लड़के ने जान दे दी, पुल से नदी में छलांग लगाई, डूबने से मौत। महाराष्ट्र की गढ़चिरौली में सती नदी में डूबने से 3 मासूमों की मौत, नहाने के लिए गए 4 बच्चों में से 3 की जान चली गई। हरिद्वार में सड़क हादसे में 2 कांवड़ियों की मौत, हंगामे के बाद जाम लगा रहा। एमपी के खरगोन में उफनती नदी पार करने की कोशिश में 2 बाइक सवार डूब गए, एक दोस्त तैर करके किनारे में पहुंचा। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में जल नल योजना में बड़ा हादसा, पाइपलाइन की खुदाई के दौरान मजदूर जिंदा दफन, 4 दिन के बाद मिट्टी के अंदर शव। यूपी के मुजफ्फरनगर में 5 करोड़ की कावड़ की चर्चा, लग्जरी स्पोर्ट्स कार की डमी को महज 8 लाख में कावड़ का रूप दिया। हरियाणा के भिवानी में कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली बॉक्सर जैस्मिन लंगोरिया के घर में जश्न मना, मां बोली की बेटी ने देश का नाम रोशन किया। जल्द में डीएवी हार्ट रेलवे स्टेशन के पास में एक शख्स की ट्रेन की चपेट में आने से मौत, घटना सीसीटीवी में कैद। यूपी के चित्रकूट में स्कूली बच्चों से भरी हुई बस बेकाबू होकर पेड़ से जा टकराए, 15 बच्चों के साथ ड्राइवर और कंडक्टर घायल। एमपी के इंदौर में 6 दिन से लापता शख्स का शव पानी की टंकी से बरामद, तेज दुर्गंध आने के बाद खुलासा। यूक्रेनी राजधानी कीव और ओडेसा पर रूस का बड़ा हमला, 9 लोगों की मौत, 33 लोग घायल। ईरान पर हमलों को लेकर अमेरिकी प्रशासन में राजनीति को लेकर मतभेद है और मीडिया रिपोर्ट्स में दावा, ईरान पर हमले को लेकर अमेरिकी अधिकारियों के बीच में अलग अलग राय। कैलिफोर्निया के सैन डिएगो में F-35B लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जांच आ रही। गाजा के दीर अल बला में शनिवार रात इजरायली सेना का बड़ा हमला, अस्पताल के गोदाम को बनाया गया निशाना। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम ने मैनचेस्टर में प्रधानमंत्री कार्यालय की शुरुआत की, हफ्ते में कम से कम 1 दिन नंबर 10 नॉर्थ मैनचेस्टर कार्यालय में काम करेंगे। दक्षिण चीन सागर में बढ़ते तनाव के बीच में पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने शनिवार को वांगयान द्वीप में समुद्री और हवाई क्षेत्र में सैन्य अभ्यास किया। चीन के कई प्रांतों में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, कई शहरों में बिजली गुल है और लोग परेशान। ग्रीस में तेज हवाओं के कारण शनिवार को कई इलाकों में तेजी से जंगलों की आग फैलती चली गई। क्रोएशिया और सर्बिया के बीच में बासा को वो बत्रोवची सीमा चौकी पर ट्रैफिक जैम, लोग परेशान। मॉस्को की 10 साल से ज्यादा पुरानी सोवियत दौर की फैक्ट्री को बचाने का अभियान हुआ तेज, फैक्ट्री को संरक्षित करने वाली मांग पर 2 ऑनलाइन याचिकाओं पर 21,000 से ज्यादा लोगों ने हस्ताक्षर किए।

0: शुक्रवार को संसद में साधु के भेष में पप्पू यादव ने चंदा चोरी का वाला तंज वाला नाटक किया, जिसमें समाजवादी पार्टी कांग्रेस के नेता शामिल हुए और अब पप्पू यादव के इस अभिनय पर संत समाज और हिंदू संगठन बढ़के हुए, जिसे लेकर कई जगहों पर प्रदर्शन हुआ।
1: ये गुस्सा है पप्पू यादव के उस तमाशे के खिलाफ जो संसद में उन्होंने साधु के भेष में किया। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं, जहां पप्पू यादव के पुतले फूंके जा रहे हैं, नारेबाजी की जा रही है।
2: हमारे समाज को, हमारे सनातन समाज को जो कर रहा है, हम माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि इसके ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा कायम करके जेल भेजे और इनके खिलाफ जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, संसद की सदस्यता भी समाप्त होना चाहिए।
1: दिल्ली के जंतर मंतर में विश्व हिंदू परिषद ने पप्पू यादव को लेकर सद्बुद्धि हवन किया।
3: तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर एक सांकेतिक सद्बुद्धि हवन जो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा यहाँ पर रखा गया, तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूंगा कि दिल्ली भर से जो संत लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हैं।
1: भोपाल में भी भारी संख्या में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, जहाँ पप्पू यादव के साथ राहुल गांधी और अखिलेश यादव का विरोध किया गया, पुतला जलाया गया।
4: कई वर्षों तक राम मंदिर का विरोध करते रहे, सफल नहीं हो पाए। जब कोर्ट से सफल नहीं हुए तो लोकतंत्र के मंदिर के बाहर राम मंदिर को, राम जी को बदनाम करने की जिन्होंने कोशिश करी, चाहे राहुल गांधी हो, पप्पू यादव हो या अखिलेश यादव हो, इस प्रकार से ड्रामा करके राम जी को जिन्होंने बदनाम किया, ये उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया जा रहा है।
1: उधर दिल्ली के जहांगीरपुरी थाने में सांसद पप्पू यादव के खिलाफ शिकायत दी। वहीं वाराणसी में भी संत समाज की ओर से पप्पू यादव पर एक मुकदमा दर्ज कराया गया है।
5: इसमें बीजेपी को घेरने के कहां से आ गई? इसमें बीजेपी का गेरुआ वस्त्र पहनने करके बाबा बन के घूमती है बीजेपी। आप बीजेपी को घेरो ना, किसने मना किया? आप बीजेपी से सवाल करो, बीजेपी के विपक्ष में आप बैठ जाओ, आप तमाम जो चीजें हैं उन पर, क्योंकि इनके पास तो कोई मुद्दे बचे नहीं है। तो अब यही मुद्दे उल्टे सीधे बचे हैं कि संतों का अपमान करेंगे। इन लोगों को ही लगता है कि संत समाज बीजेपी का समर्थन करती है, पर सत्य यह है कि संत समाज उसी का समर्थन करती है जो राम का समर्थन करती है, जो कृष्ण का समर्थन करती है, जो सनातन धर्म की रक्षा करती है।
1: इस बीच पप्पू यादव ने हंगामे के बीच इंस्टा पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो उन्हीं कपड़ों में पूजा करते नजर आ रहे हैं। वहीं पूरे मामले में पप्पू यादव की सफाई भी आई है।
6: आपको नहीं लगता कि आपने कुछ गलत किया है इस पूरे?
7: मतलब सनातन और मंदिर के सारे पैसे को, लुटेरे को उजागर करना और उसके खिलाफ लड़ना गलत है। मंदिर की रक्षा करना गलत है, मंदिर के पैसे की रक्षा करना गलत है। देश के 100 करोड़ का जो आस्था है मंदिर के प्रति, उसकी रक्षा करना गलत है। हनुमान जी को नचाना सही है, गुड्डी में राम को उड़ाना सही है।
1: बहरहाल संसद में चंदा चोरी पर पप्पू यादव के नाटक ने नया सियासी घमासान शुरू कर दिया है। आज तक ब्यूरो।
0: अब आज पीएम मोदी के नए वीडियो संदेश की। पीएम मोदी ने शुक्रवार देर रात एक बार फिर से जेंजी को मैसेज दिया। रात तकरीबन 11 बजे के बाद पीएम मोदी इंस्टाग्राम पर लाइव आए, जहां उन्होंने अभद्र टिप्पणी करने वाले बच्चों को माफ करने की बात कही।

0: नंबर वन इज ही गेव गॉड। 31 जुलाई की रात पीएम मोदी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट कर युवाओं को माफ कर दिया।
1: जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है।
0: हालांकि पीएम मोदी ने लड़कियों की भाषा पर हैरानी जताते हुए कहा कि जिस तरह कुछ बेटियों के मेरी माँ को गाली देते हुए वीडियो वायरल हुए उससे उन्हें कल्चरल शॉक लगा।
1: एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है।
0: हालांकि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और शिवसेना यूबीटी जैसे दल गाली देने वाले युवाओं को माफ कर देने वाले वीडियो पर भी हमलावर दिखे।
2: उनको ये पूछना चाहिए क्या इस देश के छात्र उनको माफ करेंगे? उनकी वजह से 35 दिन छात्रों को परेशान होना पड़ा, खुले छत के नीचे सोना पड़ा, लाठियां खानी पड़ी, पैलेट गन झेलनी पड़ी। प्रधानमंत्री जी को छात्र माफ करेंगे या नहीं, उनको देश के छात्रों से पूछना।
3: व्हाइट पद्धति ने पुरुष पोलिसांकडनं त्यांचे कपडे फाडले गेले, ज्या पद्धतीने तो व्हिडिओ मी पाहिला, एक ती मुलगी पुढे जाते आणि तो पोलीस पाठवून कसं तो मला बोलायला सुद्धा लाज वाटते। ज्या मुलांनी नीटच्या परीक्षेचा पेपर फुटला म्हणून आत्महत्या केली त्यांची पहिली माफी यांनी मागायला पाहिजे।
0: जहां बीजेपी कह रही है कि पीएम मोदी को 25 सालों में न जाने कितनी गालियां दी गई फिर भी वो विचलित नहीं हुए, वहीं आम आदमी पार्टी बोली बीजेपी और पीएम मोदी को विक्टिम कार्ड खेलकर उसका सियासी फायदा उठाना बखूबी आता है।
4: देखो मोदी जी बहुत बड़े हृदय के व्यक्ति हैं और तभी शायद यहां तक पहुंचे हैं। और जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं पिछले 12 साल क्या बल्कि पिछले 25 साल में मोदी जी जब से मुख्यमंत्री रहे, प्रधानमंत्री रहे, जिस प्रकार से उन्होंने उनके ऊपर विपक्ष के द्वारा जो निजी हमले हुए, कभी उनको मौत का सौदागर कहा गया, कभी चौकीदार चोर है, कभी किस प्रकार से घृणित आरोप उनके ऊपर लगाए गए, निश्चित रूप से एक ये नई शुरुआत है। और मोदी जी ने जिस प्रकार का आह्वान किया है कि हम लोग देश के एक साथ लेकर देश को आगे बढ़े,
5: पूरे देश की मानसिकता को आपने दूषित कर दिया है। मैं कोई ट्वीट करता हूं उसके नीचे इतनी भद्दी भद्दी टिप्पणियां, लाखों गालियां। आज तक अगर मेरे सारे ट्वीट उठा लिए जाएं और उसके नीचे की गालियां उठा ली जाएं जो आपके समर्थक आपके लोगों ने दी हैं, लाखों लाख गालियां दी हैं, मां की बहन की गालियां। मेरी आदत नहीं है रोने धोने की, आपकी आदत है। आपको कुछ भी होता है आप उसको कैश कराने के चक्कर में लग जाते हैं।
0: फिलहाल पीएम मोदी के माफी वाले वीडियो पर सियासी महाभारत थमती नहीं दिख रही। आज तक ब्यूरो।
6: यूपी में बन रहे बटेश्वर कॉरिडोर की जिसके निर्माण में समाजवादी पार्टी ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया तो राजनीति गर्मा गई। बीजेपी ने हालांकि विपक्षी दलों पर पलटवार भी किया।
7: ये तस्वीरें आगरा में बन रहे बटेश्वर कॉरिडोर की है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इन तस्वीरों को साझा किया और कॉरिडोर के निर्माण में भारी अनियमितता, गड़बड़ी और भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया। साथ ही दावा ये भी किया कि शिकायतकर्ताओं को धमकाया जा रहा है।
8: समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने बटेश्वर महादेव का एक वीडियो जारी करके सोशल मीडिया पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी पर साफ तरीके से कहा है कि बिना बेस के निर्माण के पीवीसी वहां पर सीमेंटेड की जा रही है, यानी कि खामियों की बात की है।
7: यूपी में राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर पहले ही संग्राम जारी है। संसद तक इसे लेकर जंग छिड़ी है। इस बीच समाजवादी पार्टी ने धर्म आस्था से जुड़े एक और मुद्दे को उठाकर यूपी सरकार को घेरने की कोशिश की।
9: देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार वैसे तो ऊपर से लेकर के नीचे तक जो भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, लेकिन अब इन्होंने भगवानों को भी नहीं छोड़ा, इन्होंने मंदिरों को भी नहीं छोड़ा। आज जिस तरीके से बटेश्वर कॉरिडोर में जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है, जिस तरीके से मिलावट हो रहा है, जिस तरीके से निर्माण में अनियमितता हो रही है, उसको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने अपने पोस्ट में दर्शाने का काम किया, वीडियो फुटेजेस के साथ उन्होंने दर्शाने का काम किया।
10: भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में पहले भ्रष्टाचार होता है, फिर शिकायतकर्ताओं को धमकाया जाता है। बटेश्वर कॉरिडोर में भी यही हो रहा है, राम मंदिर के निर्माण में भी यही हो रहा है, चंदा चोरी में भी यही हो रहा है, जिस तरीके से एक्सप्रेस वे धस रहे हैं, उन सारी जगहों पर शिकायतकर्ताओं को तो धमकाया जा रहा है।
11: अखिलेश यादव जी की राजनीति अब केवल अफवाहों पर और आरोप पर तक सीमित रह गई है। बिना किसी ठोस प्रमाण के वे कुछ भी कहते रहते हैं। अगर उनके पास कोई ठोस प्रमाण है तो निश्चित रूप से जांच एजेंसी को दें। हमारी सरकार हर विषय पर जांच कराने के लिए तैयार है।
7: विपक्ष के हमलों और बीजेपी के पलटवार के बीच बटेश्वर कॉरिडोर पर नई राजनीति शुरू हो गई। एक और धार्मिक क्षेत्र को लेकर विपक्ष और बीजेपी अब आमने सामने आ गए हैं। आशीष श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
6: बात अब जम्मू कश्मीर की, जहां कुलगाम से बड़ी खबर आई है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम के केलाम इलाके में आतंकवादियों ने दो गैर कश्मीरी मजदूरों को गोली मार दी। आतंकी हमले में एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। दोनों ही मजदूर छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। इस हमले के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की और सर्च ऑपरेशन जारी है।
12: एक बार फिर जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने मजदूरों को टारगेट किया। एक बार फिर गैर कश्मीरी मजदूरों को निशाना बनाकर आतंकी हमला हुआ। ये वारदात कुलगाम के केल्लाम इलाके में हुई, जहां ईंट भट्टे पर काम करने वाले दो मजदूर आतंकी हमले में मारे गए।
13: रात में टारगेटेड अटैक हुआ, जहां जैसे आपने कहा, फिर एक बार नॉन लोकल जो लेबरर थे, यानी कि मजदूर थे, एक जो ईंटों का कारखाना होता है वहां काम करते थे, और तकरीबन 8:30 बजे बाइक पे जो है दो आतंकी उनके करीब आए और गोलियों की बौछार कर दी। दोनों जो हैं काफी गंभीर रूप से घायल हुए, लेकिन एक की मृत्यु जो है मौके पे हुई, दूसरा उसको इवैक्यूएट किया गया हॉस्पिटल, और अभी खबर मिली है कि श्रीनगर के जो शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है वहां उनकी जो है मौत हो गई है। तो दो लेबरर अब इसमें मारे गए हैं। सुरक्षा एजेंसीज ने इसके बाद जो है पूरे इलाके को घेर के जो एसओपी रहता है तलाशी अभियान शुरू किया है, लेकिन 4 साल के बाद ऐसी जो है घटना हुई है, नई नहीं है। जैसे आपने कहा, इससे पहले भी जो सॉफ्ट टारगेट्स हैं ये नॉन लोकल लेबरर्स, इनको टारगेट किया गया है।
12: वारदात की खबर मिलते ही सुरक्षा बल एक्शन में आए, पूरे इलाके की घेराबंदी दी और हमलावर आतंकियों की तलाश में चप्पे चप्पे की जांच शुरू हो गई। मजदूरों को टारगेट कर जम्मू कश्मीर में हुआ यह हमला इसलिए बेहद गंभीर और चिंताजनक है, क्योंकि ऐसी आतंकी वारदात करीब 4 साल बाद दोहराई गई है, जिसके बाद से सुरक्षा एजेंसियां भी काफी चौकन्ना हो गई है। आतंकी संगठन लश्कर से जुड़े संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF कुलगाम में हुए हमले की जिम्मेदारी ली है, जिससे साफ है कि इस हमले की साजिश सीमा पार से रची गई।
13: फिर एक बार जो लश्कर का शेडो है द रेजिस्टेंस फ्रंट, उन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली है, और साफ तौर पे इसके बाद सुरक्षा जो है काफी बढ़ा दी गई। हम श्रीनगर से यहाँ की तरफ आए, जगह जगह जो है चेक पॉइंट्स लगाए गए हैं, और यहाँ भी जैसे आप देख सकते हैं सुरक्षा बलों के जवान जो है नाकाबंदी लगाई हुई है। पुलिस है, CRPF है, जो भी गाड़ी यहां से जा रही है उसको चेक किया जा रहा है, और इंटेल बेस जो है सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन अभी जगह जगह चल रहा है। लेकिन साफ तौर पर ये चिंता का विषय है सुरक्षा एजेंसी के लिए, क्योंकि कोई ना कोई मॉड्यूल है, स्लीपर सेल है लश्कर का जो एक्टिवेट हो गया है, उनको साफ तौर पे उस तरफ से आदेश है कि आप एक्टिवेट हो जाइए, टारगेट्स को हिट कीजिए। और इससे पहले 2021-22 में एक सिलसिला चला था जहां कश्मीरी पंडित और नॉन लोकल लेबरर्स को टारगेट किया गया था, बिल्कुल इसी तरीके से ज्यादातर दक्षिणी कश्मीर में, और इस बार फिर एक बार ये सिलसिला जो है शुरू होता दिख रहा है।
12: जम्मू कश्मीर में जो दो मजदूर आतंकी हमले में मारे गए वो दोनों ही छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। छत्तीसगढ़ के CM विष्णु देव साय ने इसे कायराना हमला करार करते हुए मजदूरों की मौत पर शोक जताया है। उधर सुरक्षा बल लगातार आतंकियों की तलाश में लगे हैं, ताकि टारगेट किलिंग करने वाले आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। कुलगाम से मीर फरीद आज तक।
6: कुलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर स्थानीय लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया, वहीं मामले पर सियासत भी तेज है।

0: पाकिस्तान के इस गुस्ताखी का गुस्सा कश्मीर की आवाम पर नजर आ रहा है। स्थानीय लोगों ने मजदूरों की हत्या पर कैंडल जलाई तो ही पाकिस्तान का विरोध भी किया।
1: ये हमारी रियासत जम्मू कश्मीर को बदनाम करने के लिए जो एक अमन की फिजा यहाँ पे कायम हुई है, टूरिस्ट आज इतनी पूरी दुनिया से यहाँ पे आ रहे हैं, इतना अमन से इलेक्शन यहाँ पे हुए हैं, यहाँ पे एक अमन की बहुत बड़ी फिजा कायम हुई है, उसको बदनाम करने के लिए चंद अनासर जो हैं वो उस पार से यहाँ बदमनी फैलाना चाहते हैं और जम्मू कश्मीर के आवाम को बदनाम करना चाहते हैं।
0: उधर जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला हमले की निंदा कर रहे हैं तो महबूबा मुफ्ती सुरक्षा के इंतजामों पर सवाल खड़े कर रही हैं।
2: बाहर से जो लोग कश्मीर में काम करने आए थे, थोड़ी इज्जत की रोजी रोटी कमाने आए थे, उन बेगुनाह लोगों को इस तरह निशाना बनाया गया। इस हमले की जितनी निंदा की जाए कम है।
3: जो सिक्योरिटी है, जो यहाँ इतना सिक्योरिटी की वजह से लोगों को इतना अजाब है लोगों पे, उसके बावजूद ये इंसिडेंट्स होना मुझे लगता है कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में कोताही है।
0: इस हमले के बीच फारूक अब्दुल्ला के बयान ने घाटी की सियासत को गर्म कर दिया है। फारूक अब्दुल्ला ने शंका जताई कि आखिर कश्मीर में स्टेटहुड की मांग के समय ही हमला क्यों होता है।
4: मुझे नहीं पता ये क्यों उस वक्त होता है जब हम लोग स्टेटहुड मांग रहे होते हैं।
5: डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कुलगाम में हुए आतंकवादी हमला जिसमें दो मजदूरों को निशाना बनाया गया है, उस हमले को लेकर स्टेटहुड के साथ उस हमले को जोड़ा है। ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने दिया है, उन्हें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए।
0: एक ओर पाकिस्तान से पीओके नहीं संभल रहा तो दूसरी ओर घाटी में माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मजदूरों को निशाना बनाना बताता है कि आतंकी कितना बौखलाए हुए हैं।
6: मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ऐसी ही जो ईंटें यहाँ जहाँ बनती हैं, ईंटों का भट्ठा था और वहाँ वो काम कर रहे थे। 8:30 बजे का समय था जब बाहर काम के बाद वो लोग खड़े थे और जो मिलिटेंट हैं, दो उनकी संख्या बताई जाती है, बाइक पे आके काफी करीब से उन पे गोलियां चलाई, दोनों की इसमें मौत हो गई। और
7: हमारे बाबूजी ने कह रखा कि रोड पे जाना इसमें मना है, अपने बस यही रहना है।
6: अच्छा, बाहर नहीं घूमना?
7: बाहर नहीं घूमना, बस
6: खासकर शाम वाम के समय।
7: हाँ, शाम वाम समय
8: पहली बात हम लोग जाते ही नहीं है, ऑटो बंदे हम ऑटो बंदे शाम में घर में ही रहते
6: हैं, यही रहते हैं,
8: बस यही रहते
0: हैं। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ मीर फरीद, कुलगाम आज तक। बात अब गुजरात की करेंगे जहां एक बार फिर बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं और साउथ गुजरात के बहुत सारे जिले पहले प्रभावित हुए थे, कई शहरों में बाढ़ आई थी, अब एक बार फिर से हालात बहुत बुरे हैं। सूरत, नवसारी, डांग, खेड़ा, भरूच जिलों में हाल बेहाल है।

0: गुजरात में एक बार फिर से भारी बारिश के बाद कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं और फिर से दक्षिण गुजरात के ही जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। नवसारी और डांग जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण अंबिका और पूर्णा नदी उफान पर है। डांग के सुबीर तालुका में करीब 8 इंच बारिश दर्ज होने के बाद पूर्णा नदी समेत अन्य नदी नालों में बहुत ज्यादा पानी भर गया, तो पूर्णा नदी का जलस्तर बढ़ने से गोदड़िया पुल के ऊपर से पानी बहता दिखाई दे रहा है। ये हालात बहुत खतरनाक हैं। आसपास के इलाकों में बाढ़ की आशंका बढ़ गई। नवसारी में प्रशासन अलर्ट पर है क्योंकि पूर्णा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। नवसारी शहर में लगातार बारिश के कारण कई इलाकों में जल भराव की स्थिति बन गई। इधर भावनगर में भी हालात बिगड़ने लगे हैं। यहां जिले के पालीताना, जेसर, तलाजा, सीहोर, बगदाना, सोनगढ़, गोघा, अलंग और अन्य इलाकों में बारिश हुई। पालीताना में भारी बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया। सूरत शहर में भी शुक्रवार तड़के से ही मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। लगातार हो रही तेज बारिश के कारण शहर के कई निचले हिस्सों में जलभराव की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई। शहर के कई निचले इलाकों में सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया। गुजरात के खेड़ा जिले की सभी तहसीलों में भी शुक्रवार को सुबह से ही मूसलाधार बारिश जारी रही। नादियाद में भारी तबाही हुई। पूरा नादियाद शहर जलमग्न हो चुका है। सड़कें समंदर बन चुकी हैं और निचले इलाकों में जलभराव से इलाके टापू में तब्दील हो गए। सिर्फ 6 घंटे में ही 133 से 191 मिलीमीटर की बारिश दर्ज की गई।
1: जिस तरह से दो दिन पूरे गुजरात में हाई अलर्ट जारी किया गया है, हम अभी खेड़ा जिले के नड़ियाद में है। नड़ियाद में अब तक तकरीबन 7 इंच से ज्यादा जो है वो बारिश दर्ज की गई है, जिसके चलते जो निचले इलाके हैं वो प्रभावित हुए हैं। निचले इलाके में जिस तरह से जल भरा हुआ है, प्रशासन पहले से अलर्ट था, जिसके चलते पूरी व्यवस्था है जो की गई है, जिसके यहाँ पर जिस तरह से निचले इलाके में अस्पतालें आई हुई है, अस्पताल में आने जाने के लिए दर्दी जो है उनके लिए जो ट्रैक्टर ट्रॉली की जो है वो व्यवस्था की गई है, जिससे लोगों को आसानी रहे। साथ ही प्रशासन ने पहले से ही अपील कर दी थी कि लोग काम के अलावा बाहर न निकले। साथ ही जिस तरह से पूरे जो हालात है देख सकते हैं, निचले इलाके में जल भरा हुआ है।
0: चिंता इस बात की है कि मौसम विभाग ने अभी भी बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। प्रशासन कह रहा है कि जब तक कोई बेहद जरूरी काम ना हो घर से बाहर ना निकले। उधर भरूच में भी बारिश का रेड अलर्ट है। आसमान से जैसे आफत बरस रही है। शुक्रवार की सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है। निचले इलाके और मार्गों को बारिश के पानी ने जलमग्न कर दिया। भरूच, अंकलेश्वर, नेत्रंग, हासौट, झगड़िया, वालिया तहसील पानी पानी हो गई। जिले में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ एक्टिव है।
2: रेड अलर्ट के चलते सुबह से ही भारी बारिश के कारण आसमान से आफत रूपी बारिश ने पूरे जिले को पानी से लबालब कर दिया है। पिछले 10 घंटों में सबसे ज़्यादा नेत्रंग तहसील में 10.5 इंच बारिश बरस चुकी है, जिसके कारण मुख्य मार्ग और सभी जगह पे फिलहाल पानी ही पानी नजर आ रहा है। जनजीवन और यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है।
0: गुजरात के नर्मदा जिले में भी बुरा हाल है। यहाँ इतनी बारिश हुई कि करजन डैम से 50,000 क्यूसेक से भी ज्यादा पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से बाढ़ के हालात पैदा हो गए। भारी बारिश के कारण नर्मदा जिले के 28 गांवों को अलर्ट किया गया और 50 से ज्यादा लोग सुरक्षित स्थान पर लाए गए हैं। जिले के गरुड़ेश्वर तहसील में 5 इंच जितनी बारिश की वजह से गांवों को जोड़ने वाले कई रास्ते टूट चुके हैं। छोटा उदयपुर में अश्विन नदी में फंसे एक युवक को एनडीआरएफ टीम ने बचाया। युवक अपनी जान जोखिम में डालकर 4 घंटे तक 1.5 फुट की दीवार पर बैठा रहा था। पानी बढ़ता रहा लेकिन टीम ने आखिरकार युवक को बचा लिया।
3: हवामान विभाग की जो आगाही थी उसके अनुसार नर्मदा और छोटा उदयपुर में मूसलाधार बारिश हुई। आप तस्वीरों में देख पा रहे ये जो करजन नदी है, करजन नदी उफान हुए है क्योंकि जो करजन डैम है वहां से 50,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। इसके कारण नदी का फ्लो काफी बढ़ चुका है। साथ में छोटा उदयपुर जिले के अंदर जो अश्विनी नदी है वहां पे एक आदमी का रेस्क्यू किया गया था जहां पे वो पानी में फंस गया था। नर्मदा और छोटा उदयपुर जिले में भारी बारिश के कारण गांवों के अंदर जो नदियां उफान पे है और खास तौर पे जो आदिवासी इलाके हैं उनको रेस्क्यू करके बाहर लाया जा रहा है।
0: आज तक ब्यूरो
4: रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।

0: जेन जी को संदेश के बाद पीएम मोदी ने की युवा शक्ति की बात। मैसूरू में कहा कि देश की तरक्की में योगदान, छात्रों को 21वीं सदी के लिए तैयार कर रही है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। चढ़ावा चोरी पर प्रदर्शन को लेकर पप्पू यादव की बड़ी मुश्किलें। बीजेपी और साधु संतों ने वाराणसी में दर्ज कराया एफआईआर। राहुल गांधी का नाम भी, कई शहरों में प्रदर्शन। और इस सीमन को लेकर केंद्र पर भड़के राहुल। चेन्नई में कहा यह बीजेपी की बड़ी साजिश, समर्थन करने वाले तमिलनाडु को धोखा दे रहे हैं। पाकिस्तानी आतंकी संगठनों की हिट लिस्ट में सीएम शुभेंदु अधिकारी का नाम। बंगाल पुलिस का दावा, बर्दमान से हमीम मंडल की गिरफ्तारी के बाद खुलासा। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय महिला मुक्केबाजों का गोल्डन पंच। आज 5 बॉक्सरों ने जीता गोल्ड। भारत के खाते में अब तक 13 स्वर्ण। शुक्रवार को संसद में साधु के भेष में पप्पू यादव ने चंदा चोरी का वाला तंज वाला नाटक किया, जिसमें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के नेता शामिल हुए और अब पप्पू यादव के इस अभिनय पर संत समाज और हिंदू संगठन बढ़के हुए, जिसे लेकर कई जगहों पर प्रदर्शन हुआ। ये गुस्सा है पप्पू यादव के उस तमाशे के खिलाफ जो संसद में उन्होंने साधु के भेष में किया। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं, जहां पप्पू यादव के पुतले फूंके जा रहे हैं, नारेबाजी की जा रही है।
1: हमारे समाज को, हमारे सनातन समाज को जो कर रहा है, हम माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि इसके ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एक्ट के अंतर्गत मुकदमा कायम करके जेल भेजे और इनके खिलाफ जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, संसद की सदस्यता भी समाप्त होना चाहिए।
0: दिल्ली के जंतर मंतर में विश्व हिंदू परिषद ने पप्पू यादव को लेकर सद्बुद्धि हवन किया।
2: तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर एक सांकेतिक सद्बुद्धि हवन जो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा यहाँ पर रखा गया, तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूंगा कि दिल्ली भर से जो संत लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हैं।
0: भोपाल में भी भारी संख्या में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, जहाँ पप्पू यादव के साथ राहुल गांधी और अखिलेश यादव का विरोध किया गया, पुतला जलाया गया।
3: कई वर्षों तक राम मंदिर का विरोध करते रहे, सफल नहीं हो पाए। जब कोर्ट से सफल नहीं हुए तो लोकतंत्र के मंदिर के बाहर राम मंदिर को, राम जी को बदनाम करने की जिन्होंने कोशिश करी, चाहे राहुल गांधी हो, पप्पू यादव हो या अखिलेश यादव हो, इस प्रकार से ड्रामा करके राम जी को जिन्होंने बदनाम किया, ये उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया जा रहा है।
0: उधर दिल्ली के जहांगीरपुरी थाने में सांसद पप्पू यादव के खिलाफ शिकायत दी। वहीं वाराणसी में भी संत समाज की ओर से पप्पू यादव पर एक मुकदमा दर्ज कराया गया है।
4: इसमें बीजेपी को घेरने के कहां से आ गई? इसमें बीजेपी का गेरुआ वस्त्र पहनने करके बाबा बन के घूमती है बीजेपी। आप बीजेपी को घेरो ना, किसने मना किया? आप बीजेपी से सवाल करो, बीजेपी के विपक्ष में आप बैठ जाओ, आप तमाम जो चीजें हैं उन पर, क्योंकि इनके पास तो कोई मुद्दे बचे नहीं है। तो अब यही मुद्दे उल्टे सीधे बचे हैं कि संतों का अपमान करेंगे। इन लोगों को ही लगता है कि संत समाज बीजेपी का समर्थन करती है, पर सत्य यह है कि संत समाज उसी का समर्थन करती है जो राम का समर्थन करती है, जो कृष्ण का समर्थन करती है, जो सनातन धर्म की रक्षा करती है।
0: इस बीच पप्पू यादव ने हंगामे के बीच इंस्टा पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो उन्हीं कपड़ों में पूजा करते नजर आ रहे हैं। वहीं पूरे मामले में पप्पू यादव की सफाई भी आई है।
5: आपको नहीं लगता कि आपने कुछ गलत किया है इस पूरे?
6: मतलब सनातन और मंदिर के सारे पैसे को लुटेरे को उजागर करना और उसके खिलाफ लड़ना गलत है, मंदिर की रक्षा करना गलत है, मंदिर के पैसे की रक्षा करना गलत है, देश के 100 करोड़ का जो आस्था है मंदिर के प्रति उसकी रक्षा करना गलत है, हनुमान जी को नचाना सही है, गुड्डी में राम को उड़ाना सही है।
0: बहरहाल संसद में चंदा चोरी पर पप्पू यादव के नाटक ने नया सियासी घमासान शुरू कर दिया है। आज तक ब्यूरो।
7: अब आज पीएम मोदी के नए वीडियो संदेश की। पीएम मोदी ने शुक्रवार देर रात एक बार फिर से जेन जी को मैसेज दिया।
0: रात तकरीबन 11 बजे के बाद पीएम मोदी इंस्टाग्राम पर लाइव आए, जहां उन्होंने अभद्र टिप्पणी करने वाले बच्चों को माफ करने की बात कही।

0: नंबर वन इज ईके फोन। 31 जुलाई की रात पीएम मोदी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट कर युवाओं को माफ कर दिया।
1: जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है।
0: हालांकि पीएम मोदी ने लड़कियों की भाषा पर हैरानी जताते हुए कहा कि जिस तरह कुछ बेटियों के मेरी माँ को गाली देते हुए वीडियो वायरल हुए उससे उन्हें

0: गाली देने वाले युवाओं को माफ कर देने वाली वीडियो पर भी हमलावर दिखे।
1: उनको ये पूछना चाहिए क्या इस देश के छात्र उनको माफ करेंगे? उनकी वजह से 35 दिन छात्रों को परेशान होना पड़ा, खुले छत के नीचे सोना पड़ा, लाठियां खानी पड़ी, पैलेट गन झेलनी पड़ी। प्रधानमंत्री जी को छात्र माफ करेंगे या नहीं, उनको देश के छात्रों से पूछना।
2: वाइट पद्धति ने पुरुष पोलिसांकडनं त्यांचे कपडे फाडले गेले, ज्या पद्धतीने तो व्हिडिओ मी पाहिला, एक ती मुलगी पुढे जाते आणि तो पोलीस पाठवून कसं तो मला बोलायला सुद्धा लाज वाटते। ज्या मुलांनी नीटच्या परीक्षेचा पेपर फुटला म्हणून आत्महत्या केली, त्यांची पहिली माफी यांनी मागायला पाहिजे।
0: जहां बीजेपी कह रही है कि पीएम मोदी को 25 सालों में ना जाने कितनी गालियां दी गई, फिर भी वो विचलित नहीं हुए, वहीं आम आदमी पार्टी बोली बीजेपी और पीएम मोदी को विक्टिम कार्ड खेलकर उसका सियासी फायदा उठाना बखूबी आता है।
3: देखो, मोदी जी बहुत बड़े हृदय के व्यक्ति हैं और तभी शायद यहां तक पहुंचे हैं। और जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं पिछले 12 साल क्या बल्कि पिछले 25 साल में मोदी जी जब से मुख्यमंत्री रहे, प्रधानमंत्री रहे, जिस प्रकार से उन्होंने उनके ऊपर विपक्ष के द्वारा जो निजी हमले हुए, कभी उनको मौत का सौदागर कहा गया, कभी चौकीदार चोर है, कभी किस प्रकार से घृणित आरोप उनके ऊपर लगाए गए, निश्चित रूप से एक ये नई शुरुआत है। और मोदी जी ने जिस प्रकार का आह्वान किया है कि हम लोग देश के एक साथ लेकर देश को आगे बढ़े,
4: पूरे देश की मानसिकता को आपने दूषित कर दिया है। मैं कोई ट्वीट करता हूं उसके नीचे इतनी भद्दी भद्दी टिप्पणियां, लाखों गालियां। आज तक अगर मेरे सारे ट्वीट उठा लिए जाएं और उसके नीचे की गालियां उठा ली जाएं जो आपके समर्थक आपके लोगों ने दी हैं, लाखों लाख गालियां दी हैं, मां की बहन की गालियां। मेरी आदत नहीं है रोने धोने की, आपकी आदत है। आपको कुछ भी होता है आप उसको कैश कराने के चक्कर में लग जाते हैं।
0: फिलहाल पीएम मोदी के माफी वाले वीडियो पर सियासी महाभारत थमती नहीं दिख रही। आज तक ब्यूरो।
5: यूपी में बन रहे बटेश्वर कॉरिडोर की, जिसके निर्माण में समाजवादी पार्टी ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, तो राजनीति गर्मा गई। बीजेपी ने हालांकि विपक्षी दलों पर पलटवार भी किया।
6: ये तस्वीरें आगरा में बन रहे बटेश्वर कॉरिडोर की है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इन तस्वीरों को साझा किया और कॉरिडोर के निर्माण में भारी अनियमितता, गड़बड़ी और भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया। साथ ही दावा ये भी किया कि शिकायतकर्ताओं को धमकाया जा रहा है।
7: समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने बटेश्वर महादेव का एक वीडियो जारी करके सोशल मीडिया पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी पर साफ तरीके से कहा है कि बिना बेस के निर्माण के पीवीसी वहां पर सीमेंटेड की जा रही है, यानी कि खामियों की बात की है।
6: यूपी में राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर पहले ही संग्राम जारी है। संसद तक इसे लेकर जंग छिड़ी है। इस बीच समाजवादी पार्टी ने धर्म आस्था से जुड़े एक और मुद्दे को उठाकर यूपी सरकार को घेरने की कोशिश की।
8: देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार वैसे तो ऊपर से लेकर के नीचे तक जो भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, लेकिन अब इन्होंने भगवानों को भी नहीं छोड़ा, इन्होंने मंदिरों को भी नहीं छोड़ा। आज जिस तरीके से बटेश्वर कॉरिडोर में जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है, जिस तरीके से मिलावट हो रहा है, जिस तरीके से निर्माण में अनियमितता हो रही है, उसको माने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने अपने पोस्ट में दर्शाने का काम किया। वीडियो फुटेजेस के साथ उन्होंने दर्शाने का काम किया।
9: भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में पहले भ्रष्टाचार होता है, फिर शिकायतकर्ताओं को धमकाया जाता है। बटेश्वर कॉरिडोर में भी यही हो रहा है, राम मंदिर के निर्माण में भी यही हो रहा है, चंदा चोरी में भी यही हो रहा है। जिस तरीके से एक्सप्रेस वे धस रहे हैं, उन सारी जगहों पर शिकायतकर्ताओं को धमकाया जा रहा है।
10: अखिलेश यादव जी की राजनीति अब केवल अफवाहों पर और आरोप पर तक सीमित रह गई है। बिना किसी ठोस प्रमाण के वे कुछ भी कहते रहते हैं। अगर उनके पास कोई ठोस प्रमाण है तो निश्चित रूप से जांच एजेंसी को दें। हमारी सरकार हर विषय पर जांच कराने के लिए तैयार है।
6: विपक्ष के हमलों और बीजेपी के पलटवार के बीच बटेश्वर कॉरिडोर पर नई राजनीति शुरू हो गई। एक और धार्मिक क्षेत्र को लेकर विपक्ष और बीजेपी अब आमने सामने आ गए हैं। आशीष श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
5: बात अब जम्मू कश्मीर की, जहां कुलगाम से बड़ी खबर आई है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम के केलाम इलाके में आतंकवादियों ने दो गैर कश्मीरी मजदूरों को गोली मार दी। आतंकी हमले में एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। दोनों ही मजदूर छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। इस हमले के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की और

0: सर्च ऑपरेशन जारी है।
1: एक बार फिर जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने मजदूरों को टारगेट किया। एक बार फिर गैर कश्मीरी मजदूरों को निशाना बनाकर आतंकी हमला हुआ। ये वारदात कुलगाम के केल्लाम इलाके में हुई, जहां ईंट भट्टे पर काम करने वाले दो मजदूर आतंकी हमले में मारे गए।
2: रात में टारगेटेड अटैक हुआ, जहां जैसे आपने कहा, फिर एक बार नॉन लोकल जो लेबरर थे, यानी कि मजदूर थे, एक जो ईंटों का कारखाना होता है वहां काम करते थे, और तकरीबन 8:30 बजे बाइक पे जो है दो आतंकी उनके करीब आए और गोलियों की बौछार कर दी। दोनों जो हैं काफी गंभीर रूप से घायल हुए, लेकिन एक की मृत्यु जो है मौके पे हुई, दूसरा उसको इवैक्यूएट किया गया हॉस्पिटल, और अभी खबर मिली है कि श्रीनगर के जो शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है वहां उनकी जो है मौत हो गई है। तो दो लेबरर अब इसमें मारे गए हैं। सुरक्षा एजेंसीज ने इसके बाद जो है पूरे इलाके को घेर के जो एसओपी रहता है तलाशी अभियान शुरू किया है, लेकिन 4 साल के बाद ऐसी जो है घटना हुई है, नई नहीं है। जैसे आपने कहा, इससे पहले भी जो सॉफ्ट टारगेट्स हैं ये नॉन लोकल लेबरर्स, इनको टारगेट किया गया है।
1: वारदात की खबर मिलते ही सुरक्षा बल एक्शन में आए, पूरे इलाके की घेराबंदी दी और हमलावर आतंकियों की तलाश में चप्पे चप्पे की जांच शुरू हो गई। मजदूरों को टारगेट कर जम्मू कश्मीर में हुआ यह हमला इसलिए बेहद गंभीर और चिंताजनक है, क्योंकि ऐसी आतंकी वारदात करीब 4 साल बाद दोहराई गई है, जिसके बाद से सुरक्षा एजेंसियां भी काफी चौकन्ना हो गई हैं। आतंकी संगठन लश्कर से जुड़े संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF कुलगाम में हुए हमले की जिम्मेदारी ली है, जिससे साफ है कि इस हमले की साजिश सीमा पार से रची गई।
2: फिर एक बार जो लश्कर का शेडो है द रेजिस्टेंस फ्रंट, उन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली है, और साफ तौर पे इसके बाद सुरक्षा जो है काफी बढ़ा दी गई। हम श्रीनगर से यहाँ की तरफ आए, जगह जगह जो है चेक पॉइंट्स लगाए गए हैं, और यहाँ भी जैसे आप देख सकते हैं सुरक्षा बलों के जवान जो है नाकाबंदी लगाई हुई है, पुलिस है, CRPF है, जो भी गाड़ी यहां से जा रही है उसको चेक किया जा रहा है, और इंटेल बेस जो है सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन अभी जगह जगह चल रहा है। लेकिन साफ तौर पर ये चिंता का विषय है सुरक्षा एजेंसीज के लिए, क्योंकि कोई ना कोई मॉड्यूल है, स्लीपर सेल है लश्कर का जो एक्टिवेट हो गया है, उनको साफ तौर पे उस तरफ से आदेश है कि आप एक्टिवेट हो जाइए, टारगेट्स को हिट कीजिए। और इससे पहले 2021-22 में एक सिलसिला चला था जहां कश्मीरी पंडित और नॉन लोकल लेबरर्स को टारगेट किया गया था, बिल्कुल इसी तरीके से ज्यादातर दक्षिणी कश्मीर में, और इस बार फिर एक बार ये सिलसिला जो है शुरू होता दिख रहा है।
1: जम्मू कश्मीर में जो दो मजदूर आतंकी हमले में मारे गए वो दोनों ही छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। छत्तीसगढ़ के CM विष्णुदेव साय ने इसे कायराना हमला करार करते हुए मजदूरों की मौत पर शोक जताया है। उधर सुरक्षा बल लगातार आतंकियों की तलाश में लगे हैं, ताकि टारगेट किलिंग करने वाले आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। कुलगाम से मीर फरीद आज तक।
0: कुलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर स्थानीय लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया, वहीं मामले पर सियासत भी तेज है।

0: पाकिस्तान की इस गुस्ताखी का गुस्सा कश्मीर की आवाम पर नजर आ रहा है। स्थानीय लोगों ने मजदूरों की हत्या पर कैंडल जलाई तो ही पाकिस्तान का विरोध भी किया।
1: ये हमारी रियासत जम्मू कश्मीर को बदनाम करने के लिए जो एक अमन की फिजा यहाँ पे कायम हुई है, टूरिस्ट आज इतनी पूरी दुनिया से यहाँ पे आ रहे हैं, इतना अमन से इलेक्शन यहाँ पे हुए हैं, यहाँ पे एक अमन की बहुत बड़ी फिजा कायम हुई है, उसको बदनाम करने के लिए चंद अनासर जो हैं वो उस पार से यहाँ बदमनी फैलाना चाहते हैं और जम्मू कश्मीर के आवाम को बदनाम करना चाहते हैं।
0: उधर जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला हमले की निंदा कर रहे हैं तो महबूबा मुफ्ती सुरक्षा के इंतजामों पर सवाल खड़े कर रही हैं।
2: बाहर से जो लोग कश्मीर में काम करने आए थे, थोड़ी इज्जत की रोजी रोटी कमाने आए थे, उन बेगुनाह लोगों को इस तरह निशाना बनाया गया। इस हमले की जितनी निंदा की जाए कम है।
3: जो सिक्योरिटी है, जो यहाँ इतना सिक्योरिटी की वजह से लोगों को इतना अजाब है लोगों पे, उसके बावजूद ये इंसिडेंट्स होना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में कोताही है।
0: इस हमले के बीच फारूक अब्दुल्ला के बयान ने घाटी की सियासत को गर्म कर दिया है। फारूक अब्दुल्ला ने शंका जताई कि आखिर कश्मीर में स्टेटहुड की मांग के समय ही हमला क्यों होता है।
4: मुझे नहीं पता ये क्यों उस वक्त होता है जब हम लोग स्टेटहुड मांग रहे होते हैं।
5: डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कुलगाम में हुए आतंकवादी हमला जिसमें दो मजदूरों को निशाना बनाया गया है, उस हमले को लेकर स्टेटहुड के साथ उस हमले को जोड़ा है। ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने दिया है, उन्हें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए।
0: एक ओर पाकिस्तान से पीओके नहीं संभल रहा तो दूसरी ओर घाटी में माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मजदूरों को निशाना बनाना बताता है कि आतंकी कितना बौखलाए हुए हैं।
6: मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ऐसी ही जो ईंटें यहाँ जहाँ बनती हैं, ईंटों का भट्ठा था और वहाँ वो काम कर रहे थे। 8:30 बजे का समय था जब बाहर काम के बाद वो लोग खड़े थे और जो मिलिटेंट हैं, दो उनकी संख्या बताई जाती है, बाइक पे आके काफी करीब से उन पे गोलियां चलाई, दोनों की इसमें मौत हो गई। और
7: हमारे बाबूजी ने कह रखा कि रोड पे जाना इस समय मना है, अपने बस यहीं रहना है मरिया गंदम में।
6: अच्छा, बाहर नहीं घूमना?
7: बाहर नहीं घूमना बस,
6: खासकर शाम वाम के समय।
7: हाँ, शाम वाम समय।
8: पहली बात हम लोग जाती नहीं ऑटो बंदे, हम ऑटो बंदे शाम में घर में ही रहते हैं,
6: यहीं रहते हैं।
0: श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ मीर फरीद, कुलगाम आज तक। बात अब गुजरात की करेंगे जहां एक बार फिर बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं और साउथ गुजरात के बहुत सारे जिले पहले प्रभावित हुए थे, कई शहरों में बाढ़ आई थी, अब एक बार फिर से हालात बहुत बुरे हैं। सूरत, नवसारी, डांग, खेड़ा, भरूच जिलों में हाल बेहाल है।

0: गुजरात में एक बार फिर से भारी बारिश के बाद कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं और फिर से दक्षिण गुजरात के ही जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। नवसारी और डांग जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण अंबिका और पूर्णा नदी उफान पर है। डांग के सुबीर तालुका में करीब 8 इंच बारिश दर्ज होने के बाद पूर्णा नदी समेत अन्य नदी नालों में बहुत ज्यादा पानी भर गया, तो पूर्णा नदी का जलस्तर बढ़ने से गोदड़िया पुल के ऊपर से पानी बहता दिखाई दे रहा है। यह हालात बहुत खतरनाक हैं। आसपास के इलाकों में बाढ़ की आशंका बढ़ गई। नवसारी में प्रशासन अलर्ट पर है क्योंकि पूर्णा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। नवसारी शहर में लगातार बारिश के कारण कई इलाकों में जल भराव की स्थिति बन गई। इधर भावनगर में भी हालात बिगड़ने लगे हैं। यहां जिले के पालीताना, जेसर, तलाजा, सीहोर, बगदाना, सोनगढ़, गोघा, अलंग और अन्य इलाकों में बारिश हुई। पालीताना में भारी बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया। सूरत शहर में भी शुक्रवार तड़के से ही मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। लगातार हो रही तेज बारिश के कारण शहर के कई निचले हिस्सों में जलभराव की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई। शहर के कई निचले इलाकों में सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया। गुजरात के खेड़ा जिले की सभी तहसीलों में भी शुक्रवार को सुबह से ही मूसलाधार बारिश जारी रही। नादियाद में भारी तबाही हुई। पूरा नादियाद शहर जलमग्न हो चुका है। सड़कें समंदर बन चुकी हैं और निचले इलाकों में जलभराव से इलाके टापू में तब्दील हो गए। सिर्फ 6 घंटे में ही 133 से 191 मिलीमीटर की बारिश दर्ज की गई।
1: जिस तरह से दो दिन पूरे गुजरात में हाई अलर्ट जारी किया गया है, हम अभी खेड़ा जिले के नड़ियाद में है। नड़ियाद में अब तक तकरीबन 7 इंच से ज्यादा जो है वो बारिश दर्ज की गई है, जिसके चलते जो निचले इलाके हैं वो प्रभावित हुए हैं। निचले इलाके में जिस तरह से जल भरा हुआ है, प्रशासन पहले से अलर्ट था, जिसके चलते पूरी व्यवस्था है जो की गई है। यहाँ पर जिस तरह से निचले इलाके में अस्पतालें आई हुई, अस्पताल में आने जाने के लिए दर्दी जो है उनके लिए जो ट्रैक्टर ट्रॉली की जो है वो व्यवस्था की गई है, जिससे लोगों को आसानी रहे। साथ ही प्रशासन ने पहले से ही अपील कर दी थी कि लोग काम के अलावा बाहर न निकले। साथ ही जिस तरह से पूरे जो हालात है देख सकते हैं, निचले इलाके में जल भरा हुआ है।
0: चिंता इस बात की है कि मौसम विभाग ने अभी भी बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। प्रशासन कह रहा है कि जब तक कोई बेहद जरूरी काम ना हो घर से बाहर ना निकले। इधर भरूच में भी बारिश का रेड अलर्ट है। आसमान से जैसे आफत बरस रही है। शुक्रवार की सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है। निचले इलाके और मार्गों को बारिश के पानी ने जलमग्न कर दिया। भरूच, अंकलेश्वर, नेत्रंग, हासौट, जगड़िया, वालिया तहसील पानी पानी हो गई। जिले में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ एक्टिव है।
2: रेड अलर्ट के चलते सुबह से ही भारी बारिश के कारण आसमान से आफत रूपी बारिश ने पूरे जिले को पानी से लबालब कर दिया है। पिछले 10 घंटों में सबसे ज्यादा नेत्रंग तहसील में 10.5 इंच बारिश बरस चुकी है, जिसके कारण मुख्य मार्ग और सभी जगह पे फिलहाल पानी ही पानी नजर आ रहा है। जनजीवन और यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है।
0: गुजरात के नर्मदा जिले में भी बुरा हाल है। यहाँ इतनी बारिश हुई कि करजन डैम से 50,000 क्यूसेक से भी ज्यादा पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से बाढ़ के हालात पैदा हो गए। भारी बारिश के कारण नर्मदा जिले के 28 गांवों को अलर्ट किया गया और 50 से ज्यादा लोग सुरक्षित स्थान पर लाए गए हैं। जिले के गरुड़ेश्वर तहसील में 5 इंच जितनी बारिश की वजह से गांवों को जोड़ने वाले कई रास्ते टूट चुके हैं। छोटा उदयपुर में अश्विन नदी में फंसे एक युवक को एनडीआरएफ टीम ने बचाया। युवक अपनी जान जोखिम में डालकर 4 घंटे तक 1.5 फुट की दीवार पर बैठा रहा था। पानी बढ़ता रहा लेकिन टीम ने आखिरकार युवक को बचा लिया।
3: हवामान विभाग की जो आगाही थी उसके अनुसार नर्मदा और छोटा उदयपुर में मूसलाधार बारिश हुई। आप तस्वीरों में देख पा रहे ये जो करजन नदी है, करजन नदी उफान हुए है क्योंकि जो करजन डैम है वहां से 50,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। इसके कारण नदी का फ्लो काफी बढ़ चुका है। साथ में छोटा उदयपुर जिले के अंदर जो अश्विनी नदी है वहां पे एक आदमी का रेस्क्यू किया गया था जहां पे वो पानी में फंस गया था। नर्मदा और छोटा उदयपुर जिले में भारी बारिश के कारण गांवों के अंदर जो नदियां उफान पे है और खास तौर पे जो आदिवासी इलाके हैं उनको रेस्क्यू करके बाहर लाया जा रहा है।
0: आज तक ब्यूरो।
4: अब रुख करते हैं पश्चिम एशिया की तरफ जहां पर आखिर क्या हुआ कि अमेरिका अब इसराइल के साथ मिलकर ईरान पर बहुत बड़े हमले करने की तैयारियों में जुट गया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।

0: मिसाइलें एक बार फिर गरज रही है। मेल मुलाकातों की डोर एक बार फिर टूटती दिख रही है। अमेरिका ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों को बम बरसाकर ध्वस्त करने का दावा किया है। इसके अलावा ईरान के किशम इलाके की ये तस्वीरें भी अमेरिका के ताजा हमलों से हुई तबाही की गवाह हैं। रहायशी इलाके में मिसाइल के हमले से ये पूरा घर तबाह हो गया। धमाका इतना जबरदस्त था कि उससे काफी बड़ा गड्ढा भी हो गया। उधर ईरान भी जॉर्डन, बहरीन, कुवैत और मिस्र में अमेरिकी सैन्य बेस पर लगातार हमले कर रहा है। कुवैत पर उसने कई ड्रोन हमले किए, हालांकि कुवैत का दावा है कि इन्हें नाकाम कर दिया गया। इस बीच ओमान के तट के पास एक तेल टैंकर के बेहद करीब जोरदार धमाका हुआ है। हालांकि जहाज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन पूरे इलाके में अलर्ट जारी कर जांच शुरू कर दी गई है। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक यह हमला ओमान के खासाब से करीब 39 किलोमीटर दूर हुआ। लेकिन ट्रंप की मौजूदगी में हुई कैबिनेट की मीटिंग से जो खबरें आ रही हैं, वो ईरान की चिंता बढ़ाने वाली हैं। अमेरिकी मीडिया का दावा है कि अमेरिका और इजराइल ईरान के ऊर्जा ढांचे पर बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। आज या फिर कल ईरान के बिजली संयंत्रों और तेल रिफाइनरियों को बड़े पैमाने पर निशाना बनाया जा सकता है। ऐसे तमाम ठिकानों की सूची बना ली गई है। इस मीटिंग में ट्रंप बेहद गुस्से में थे। उनका साफ कहना था कि परमाणु हथियारों से जुड़ी डील के लिए घंटों खराब करने का कोई मतलब नहीं है।
1: We have great people talking. Marco's involved.
2: They're all involved. Talks aren't happening.
1: Very good people. We have the best people. But they'll make a deal. As an example, we'll talk about nuclear. And we'll be in there talking about nuclear for 7 hours. I say, why do you need 7? You can take 10 minutes. You have 5 minutes. You should solve it. But 7 hours. And then they'll go out. And I'll say, they discussed nuclear. And they'll go out and they'll say, we never discussed nuclear. And I say, why do they say that? All they do is make me angry.
0: तो क्या ईरान के इस रवैये से सीज फायर की संभावनाएं खत्म होती जा रही हैं? इस सवाल के जवाब में ट्रंप का साफ कहना था कि ईरान ने बातचीत को ईमानदारी से आगे नहीं बढ़ाया और भरोसा तोड़ा है।
1: And Iran now, Iran is doing very poorly. Just in case you read incorrect stories, they're doing very, very poorly. They're having a hard time. They've been very dishonest. They've been very dishonorable to deal with. But that makes no difference. They're doing very, very poorly.
3: Losing faith in them because they do lie and they do misrepresent.
0: इस अहम बैठक में जिस मूड में ट्रंप दिख रहे थे, उससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि इजराइल के साथ मिलकर अगले कुछ घंटों में अमेरिका ईरान पर ताबड़तोड़ हमले करने की तैयारी में जुटा है। ये हमले इस बार सिर्फ सैन्य ठिकानों पर नहीं होंगे, बल्कि अहम एनर्जी सेंटर तबाह किए जाएंगे। उधर ईरान ने दो टूक कह दिया है कि अगर अमेरिका ने एनर्जी सेंटरों पर हमले किए तो उसके सैन्य ठिकानों को तबाह करने में ईरान कोई कसर नहीं छोड़ेगा। आज तक ब्यूरो।
4: रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए। आप

0: जेनजी को संदेश के बाद पीएम मोदी ने की युवा शक्ति की बात। मैसूरू में कहा कि देश की तरक्की में योगदान छात्रों को 21वीं सदी के लिए तैयार कर रही है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। शराबा चोरी पर प्रदर्शन को लेकर पप्पू यादव की बड़ी मुश्किलें। बीजेपी और साधु संतों ने वाराणसी में दर्ज कराया एफआईआर। राहुल गांधी का नाम भी, कई शहरों में प्रदर्शन। और सीमन को लेकर केंद्र पर भड़के राहुल, चेन्नई में कहा ये बीजेपी की बड़ी साजिश, समर्थन करने वाले तमिलनाडु को धोखा दे रहा है। पाकिस्तानी आतंकी संगठनों की हिट लिस्ट में सीएम शुभेंदु अधिकारी का नाम, बंगाल पुलिस का दावा। बर्दमान से हमीम मंडल की गिरफ्तारी के बाद खुलासा। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय महिला मुक्केबाजों का गोल्डन पंच, आज 5 बॉक्सरों ने जीता गोल्ड। भारत के खाते में अब तक 13 स्वर्ण। शुक्रवार को संसद में साधु के भेष में पप्पू यादव ने चंदा चोरी का वाला तंज वाला नाटक किया, जिसमें समाजवादी पार्टी कांग्रेस के नेता शामिल हुए और अब पप्पू यादव के इस अभिनय पर संत समाज और हिंदू संगठन भड़के हुए, जिसे लेकर कई जगहों पर प्रदर्शन हुआ।
1: ये गुस्सा है पप्पू यादव के उस तमाशे के खिलाफ जो संसद में उन्होंने साधु के भेष में किया। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं, जहां पप्पू यादव के पुतले फूंके जा रहे हैं, नारेबाजी की जा रही है।
2: हमारे समाज को, हमारे सनातन समाज को जो ये कर रहा है, हम माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि इसके ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1 के अंतर्गत मुकदमा कायम करके जेल भेजे और इनके खिलाफ जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, संसद की सदस्यता भी समाप्त होना चाहिए।
1: दिल्ली के जंतर मंतर में विश्व हिंदू परिषद ने पप्पू यादव को लेकर सद्बुद्धि हवन किया।
3: तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर एक सांकेतिक सद्बुद्धि हवन जो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा यहाँ पर रखा गया, तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूंगा कि दिल्ली भर से जो संत लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हैं।
1: भोपाल में भी भारी संख्या में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, जहाँ पप्पू यादव के साथ राहुल गांधी और अखिलेश यादव का विरोध किया गया, पुतला जलाया गया।
4: कई वर्षों तक राम मंदिर का विरोध करते रहे, सफल नहीं हो पाए। जब कोर्ट से सफल नहीं हुए तो लोकतंत्र के मंदिर के बाहर राम मंदिर को, राम जी को बदनाम करने की जिन्होंने कोशिश करी, चाहे राहुल गांधी हो, पप्पू यादव हो या अखिलेश यादव हो, इस प्रकार से ड्रामा करके राम जी को जिन्होंने बदनाम किया, ये उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया जा रहा है।
1: उधर दिल्ली के जहांगीरपुरी थाने में सांसद पप्पू यादव के खिलाफ शिकायत दी। वहीं वाराणसी में भी संत समाज की ओर से पप्पू यादव पर एक मुकदमा दर्ज कराया गया है।
5: इसमें बीजेपी को घेरने के कहां से आ गई? इसमें बीजेपी का गेरुआ वस्त्र पहनने करके बाबा बन के घूमती है बीजेपी। आप बीजेपी को घेरो ना, किसने मना किया? आप बीजेपी से सवाल करो, बीजेपी के विपक्ष में आप बैठ जाओ, आप तमाम जो चीजें हैं उन पर, क्योंकि इनके पास तो कोई मुद्दे बचे नहीं है, तो अब यही मुद्दे उल्टे सीधे बचे हैं कि संतों का अपमान करेंगे। इन लोगों को ही लगता है कि संत समाज बीजेपी का समर्थन करती है, पर सत्य यह है कि संत समाज उसी का समर्थन करती है जो राम का समर्थन करती है, जो कृष्ण का समर्थन करती है, जो सनातन धर्म की रक्षा करती है।
1: इस बीच पप्पू यादव ने हंगामे के बीच इंस्टा पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो उन्हीं कपड़ों में पूजा करते नजर आ रहे हैं। वहीं पूरे मामले में पप्पू यादव की सफाई भी आई है।
6: आपको नहीं लगता कि आपने कुछ गलत किया है इस पूरे?
7: मतलब सनातन और मंदिर के सारे पैसे को, लुटेरे को उजागर करना और उसके खिलाफ लड़ना गलत है? मंदिर की रक्षा करना गलत है? मंदिर के पैसे की रक्षा करना गलत है? देश के 100 करोड़ का जो आस्था है मंदिर के प्रति, उसकी रक्षा करना गलत है? हनुमान जी को नचाना सही है, गुड्डी में राम को उड़ाना सही है?
1: बहरहाल संसद में चंदा चोरी पर पप्पू यादव के नाटक ने नया सियासी घमासान शुरू कर दिया है। आज तक ब्यूरो।
0: अब आज पीएम मोदी के नए वीडियो संदेश की। पीएम मोदी ने शुक्रवार देर रात एक बार फिर से जेन जी को मैसेज दिया। रात तकरीबन 11 बजे के बाद पीएम मोदी इंस्टाग्राम पर लाइव आए, जहां उन्होंने अभद्र टिप्पणी करने वाले बच्चों को माफ करने की बात कही।

0: पॉसिबिलिटी नंबर वन इज ही गेव द ऑर्डर।
1: 31 जुलाई की रात पीएम मोदी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट कर युवाओं को माफ कर दिया।
2: जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है।
1: हालांकि पीएम मोदी ने लड़कियों की भाषा पर हैरानी जताते हुए कहा कि जिस तरह कुछ बेटियों के मेरी माँ को गाली देते हुए वीडियो वायरल हुए उससे उन्हें कल्चरल शॉक लगा।
2: एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं, लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है।
1: हालांकि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और शिवसेना यूबीटी जैसे दल गाली देने वाले युवाओं को माफ कर देने वाले वीडियो पर भी हमलावर दिखे।
3: उनको ये पूछना चाहिए क्या इस देश के छात्र उनको माफ करेंगे? उनकी वजह से 35 दिन छात्रों को परेशान होना पड़ा, खुले छत के नीचे सोना पड़ा, लाठियां खानी पड़ी, पैलेट गन झेलनी पड़ी। प्रधानमंत्री जी को छात्र माफ करेंगे या नहीं, उनको देश के छात्रों से पूछना।
4: वाइट पद्धति ने पुरुष पोलिसांकडनं त्यांचे कपडे फाडले गेले, ज्या पद्धतीने तो व्हिडिओ मी पाहिला, एक ती मुलगी पुढे जाते आणि तो पोलीस पाठवून कसं तो मला बोलायला सुद्धा लाज वाटते। ज्या मुलांनी नीटच्या परीक्षेचा पेपर फुटला म्हणून आत्महत्या केली त्यांची पहिली माफी यांनी मागायला पाहिजे।
1: जहां बीजेपी कह रही है कि पीएम मोदी को 25 सालों में न जाने कितनी गालियां दी गई फिर भी वो विचलित नहीं हुए, वहीं आम आदमी पार्टी बोली बीजेपी और पीएम मोदी को विक्टिम कार्ड खेलकर उसका सियासी फायदा उठाना बखूबी आता है।
5: देखो मोदी जी बहुत बड़े हृदय के व्यक्ति हैं और तभी शायद यहां तक पहुंचे हैं। और जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं पिछले 25 साल में मोदी जी जब से मुख्यमंत्री रहे, प्रधानमंत्री रहे, जिस प्रकार से उन्होंने उनके ऊपर विपक्ष के द्वारा जो निजी हमले हुए, कभी उनको मौत का सौदागर कहा गया, कभी चौकीदार चोर है, कभी किस प्रकार से घृणित आरोप उनके ऊपर लगाए गए, निश्चित रूप से एक ये नई शुरुआत है। और मोदी जी ने जिस प्रकार का आह्वान किया है कि हम लोग देश के एक साथ लेकर देश को आगे बढ़े,
6: पूरे देश की मानसिकता को आपने दूषित कर दिया है। मैं कोई ट्वीट करता हूं उसके नीचे इतनी भद्दी भद्दी टिप्पणियां, लाखों गालियां। आज तक अगर मेरे सारे ट्वीट उठा लिए जाए और उसके नीचे की गालियां उठा ली जाए जो आपके समर्थक आपके लोगों ने दी है, लाखों लाख गालियां दी है, मां की बहन की गालियां। मेरी आदत नहीं है रोने धोने की, आपकी आदत है। आपको कुछ भी होता है आप उसको कैश कराने के चक्कर में लग जाते हैं।
1: फिलहाल पीएम मोदी के माफी वाले वीडियो पर सियासी महाभारत थमती नहीं दिख रही। आज तक ब्यूरो।
7: यूपी में बन रहे बटेश्वर कॉरिडोर की जिसके निर्माण में समाजवादी पार्टी ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया तो राजनीति गर्मा गई। बीजेपी ने हालांकि विपक्षी दलों पर पलटवार भी किया।
8: ये तस्वीरें आगरा में बन रहे बटेश्वर कॉरिडोर की है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इन तस्वीरों को साझा किया और कॉरिडोर के निर्माण में भारी अनियमितता, गड़बड़ी और भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया। साथ ही दावा ये भी किया कि शिकायतकर्ताओं को धमकाया जा रहा है।
9: समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने बटेश्वर महादेव का एक वीडियो जारी करके सोशल मीडिया पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी पर साफ तरीके से कहा है कि बिना बेस के निर्माण के पीवीसी वहां पर सीमेंटेड की जा रही है, यानी कि खामियों की बात की है।
8: यूपी में राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर पहले ही संग्राम जारी है। संसद तक इसे लेकर जंग छिड़ी है। इस बीच समाजवादी पार्टी ने धर्म आस्था से जुड़े एक और मुद्दे को उठाकर यूपी सरकार को घेरने की कोशिश की।
10: देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार वैसे तो ऊपर से लेकर के नीचे तक जो भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, लेकिन अब इन्होंने भगवानों को भी नहीं छोड़ा, इन्होंने मंदिरों को भी नहीं छोड़ा। आज जिस तरीके से बटेश्वर कॉरिडोर में जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है, जिस तरीके से मिलावट हो रहा है, जिस तरीके से निर्माण में अनियमितता हो रही है, उसको माने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने अपने पोस्ट में दर्शाने का काम किया, वीडियो फुटेजेस के साथ उन्होंने दर्शाने का काम किया।
11: भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में पहले भ्रष्टाचार होता है और फिर शिकायतकर्ताओं को धमकाया जाता है। बटेश्वर कॉरिडोर में भी यही हो रहा है, राम मंदिर के निर्माण में भी यही हो रहा है, चंदा चोरी में भी यही हो रहा है, जिस तरीके से एक्सप्रेस वे धस रहे हैं उन सारी जगहों पर शिकायतकर्ताओं को तो धमकाया जा रहा है।
12: अखिलेश यादव जी की राजनीति अब केवल अफवाहों पर और आरोप पर तक सीमित रह गई है। बिना किसी ठोस प्रमाण के वे कुछ भी कहते रहते हैं। अगर उनके पास कोई ठोस प्रमाण है तो निश्चित रूप से जांच एजेंसी को दें। हमारी सरकार हर विषय पर जांच कराने के लिए तैयार है।
8: विपक्ष के हमलों और बीजेपी के पलटवार के बीच बटेश्वर कॉरिडोर पर नई राजनीति शुरू हो गई। एक और धार्मिक क्षेत्र को लेकर विपक्ष और बीजेपी अब आमने सामने आ गए हैं। आशीष श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
7: बात अब जम्मू कश्मीर की, जहां कुलगाम से बड़ी खबर आई है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम के केलाम इलाके में आतंकवादियों ने दो गैर कश्मीरी मजदूरों को गोली मार दी। आतंकी हमले में एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। दोनों ही मजदूर छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। इस हमले के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की और सर्च ऑपरेशन जारी है।
13: एक बार फिर जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने मजदूरों को टारगेट किया। एक बार फिर गैर कश्मीरी मजदूरों को निशाना बनाकर आतंकी हमला हुआ। ये वारदात कुलगाम के केल्लाम इलाके में हुई, जहां ईंट भट्टे पर काम करने वाले दो मजदूर आतंकी हमले में मारे गए।
14: रात में ये टारगेटेड अटैक हुआ, जहां जैसे आपने कहा, फिर एक बार नॉन लोकल जो लेबरर थे, यानी कि मजदूर थे, एक जो ईंटों का कारखाना होता है वहां काम करते थे, और तकरीबन 8:30 बजे बाइक पे जो है दो आतंकी उनके करीब आए और गोलियों की बौछार कर दी। दोनों जो हैं काफी गंभीर रूप से घायल हुए, लेकिन एक की मृत्यु जो है मौके पे हुई, दूसरा उसको इवैक्यूएट किया गया हॉस्पिटल। और अभी खबर मिली है कि श्रीनगर के जो शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, वहां उनकी जो है मौत हो गई है। तो दो लेबरर अब इसमें मारे गए हैं। सुरक्षा एजेंसीज ने इसके बाद जो है पूरे इलाके को घेर के जो एसओपी रहता है तलाशी अभियान शुरू किया है, लेकिन 4 साल के बाद ऐसी जो है घटना हुई है, नई नहीं है। जैसे आपने कहा, इससे पहले भी जो सॉफ्ट टारगेट्स हैं ये नॉन लोकल लेबरर्स, इनको टारगेट किया गया है।
13: वारदात की खबर मिलते ही सुरक्षा बल एक्शन में आए, पूरे इलाके की घेराबंदी दी और हमलावर आतंकियों की तलाश में चप्पे चप्पे की जांच शुरू हो गई। मजदूरों को टारगेट कर जम्मू कश्मीर में हुआ यह हमला इसलिए बेहद गंभीर और चिंताजनक है, क्योंकि ऐसी आतंकी वारदात करीब 4 साल बाद दोहराई गई है, जिसके बाद से सुरक्षा एजेंसियां भी काफी चौकन्ना हो गई हैं। आतंकी संगठन लश्कर से जुड़े संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF कुलगाम में हुए हमले की जिम्मेदारी ली है, जिससे साफ है कि इस हमले की साजिश सीमा पार से रची गई।
14: फिर एक बार जो लश्कर का शेडो है द रेजिस्टेंस फ्रंट, उन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली है और साफ तौर पे इसके बाद सुरक्षा जो है काफी बढ़ा दी गई। हम श्रीनगर से यहाँ की तरफ आए, जगह जगह जो है चेक पॉइंट्स लगाए गए हैं और यहाँ भी जैसे आप देख सकते हैं सुरक्षा बलों के जवान जो है नाकाबंदी लगाई हुई है। पुलिस है, CRPF है, जो भी गाड़ी यहां से जा रही है उसको चेक किया जा रहा है और इंटेल बेस्ड जो है सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन अभी जगह जगह चल रहा है। लेकिन साफ तौर पे ये चिंता का विषय है सुरक्षा एजेंसीज के लिए, क्योंकि कोई ना कोई मॉड्यूल है, स्लीपर सेल है लश्कर का जो एक्टिवेट हो गया है, उनको साफ तौर पे उस तरफ से आदेश है कि आप एक्टिवेट हो जाइए, टारगेट्स को हिट कीजिए। और इससे पहले 2021-22 में एक सिलसिला चला था जहां कश्मीरी पंडित और नॉन लोकल लेबरर्स को टारगेट किया गया था, बिल्कुल इसी तरीके से ज्यादातर दक्षिणी कश्मीर में, और इस बार फिर एक बार यह सिलसिला जो है शुरू होता दिख रहा है।
13: जम्मू कश्मीर में जो दो मजदूर आतंकी हमले में मारे गए वो दोनों ही छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। छत्तीसगढ़ के CM विष्णुदेव साय ने इसे कायराना हमला करार करते हुए मजदूरों की मौत पर शोक जताया है। उधर सुरक्षा बल लगातार आतंकियों की तलाश में लगे हैं, ताकि टारगेट किलिंग करने वाले आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। कुलगाम से मीर फरीद आज तक।
7: कुलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर स्थानीय लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया, वहीं मामले पर सियासत भी तेज है।

0: पाकिस्तान के इस गुस्ताखी का गुस्सा कश्मीर की आवाम पर नजर आ रहा है। स्थानीय लोगों ने मजदूरों की हत्या पर कैंडल जलाई तो है पाकिस्तान का विरोध भी किया।
1: ये हमारी रियासत जम्मू कश्मीर को बदनाम करने के लिए जो एक अमन की फिजा यहाँ पे कायम हुई है, टूरिस्ट आज इतनी पूरी दुनिया से यहाँ पे आ रहे हैं, इतना अमन से इलेक्शन यहाँ पे हुए हैं, यहाँ पे एक अमन की बहुत बड़ी फिजा कायम हुई है, उसको बदनाम करने के लिए चंद अनासर जो हैं वो उस पार से यहाँ बदमनी फैलाना चाहते हैं और जम्मू कश्मीर के आवाम को बदनाम करना चाहते हैं।
0: उधर जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला हमले की निंदा कर रहे हैं तो महबूबा मुफ्ती सुरक्षा के इंतजामों पर सवाल खड़े कर रही हैं।
2: बाहर से जो लोग कश्मीर में काम करने आए थे, थोड़ी इज्जत की रोजी रोटी कमाने आए थे, उन बेगुनाह लोगों को इस तरह निशाना बनाया गया। इस हमले की जितनी निंदा की जाए कम है।
3: जो सिक्योरिटी है, जो यहाँ इतना सिक्योरिटी की वजह से लोगों को इतना अजाब है लोगों पे, उसके बावजूद ये इंसिडेंट्स होना मुझे लगता है कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में कोताही है।
0: इस हमले के बीच फारूक अब्दुल्ला के बयान ने घाटी की सियासत को गर्म कर दिया है। फारूक अब्दुल्ला ने शंका जताई कि आखिर कश्मीर में स्टेटहुड की मांग के समय ही हमला क्यों होता है।
4: मुझे नहीं पता ये क्यों उस वक्त होता है जब हम लोग स्टेटहुड मांग रहे होते हैं।
5: डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कुलगाम में हुए आतंकवादी हमला जिसमें दो मजदूरों को निशाना बनाया गया है, उस हमले को लेकर स्टेटहुड के साथ उस हमले को जोड़ा है। ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने दिया है, उन्हें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए।
0: एक ओर पाकिस्तान से पीओके नहीं संभल रहा तो दूसरी ओर घाटी में माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मजदूरों को निशाना बनाना बताता है कि आतंकी कितना बौखलाए हुए हैं।
6: मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ऐसी ही जो ईंटें यहाँ जहाँ बनती हैं, ईंटों का भट्ठा था और वहां वो काम कर रहे थे। 8:30 बजे का समय था जब बाहर काम के बाद वो लोग खड़े थे और जो मिलिटेंट हैं, दो उनकी संख्या बताई जाती है, बाइक पे आके काफी करीब से उन पे गोलियां चलाई, दोनों की इसमें मौत हो गई। और
7: हमारे बाबूजी ने कह रखा कि रोड पे जाना इस समय मना है, अपने बस यही रहना मरिया के अंदर में।
6: अच्छा, बाहर नहीं घूमना?
7: बाहर नहीं घूमना बस,
6: खासकर शाम वाम के समय।
7: हाँ, शाम वाम समय
8: पहली बात हम लोग जाते नहीं ऑटो बंदे, हम ऑटो बंदे शाम में घर में ही रहते
6: हैं, यही रहते हैं।
0: श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ मीर फरीद, कुलगाम आज तक। बात अब गुजरात की करेंगे जहां एक बार फिर बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं और साउथ गुजरात के बहुत सारे जिले पहले प्रभावित हुए थे, कई शहरों में बाढ़ आई थी, अब एक बार फिर से हालात बहुत बुरे हैं। सूरत, नवसारी, डांग, खेड़ा, भरूच जिलों में हाल बेहाल है।

0: गुजरात में एक बार फिर से भारी बारिश के बाद कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं और फिर से दक्षिण गुजरात के ही जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। नवसारी और डांग जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण अंबिका और पूर्णा नदी उफान पर है। डांग के सुबीर तालुका में करीब 8 इंच बारिश दर्ज होने के बाद पूर्णा नदी समेत अन्य नदी नालों में बहुत ज्यादा पानी भर गया, तो पूर्णा नदी का जलस्तर बढ़ने से गोदड़िया पुल के ऊपर से पानी बहता दिखाई दे रहा है। ये हालात बहुत खतरनाक हैं। आसपास के इलाकों में बाढ़ की आशंका बढ़ गई। नवसारी में प्रशासन अलर्ट पर है क्योंकि पूर्णा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। नवसारी शहर में लगातार बारिश के कारण कई इलाकों में जल भराव की स्थिति बन गई। इधर भावनगर में भी हालात बिगड़ने लगे हैं। यहां जिले के पालीताना, जेसर, तलाजा, सीहोर, बगदाना, सोनगढ़, गोघा, अलंग और अन्य इलाकों में बारिश हुई। पालीताना में भारी बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया। सूरत शहर में भी शुक्रवार तड़के से ही मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। लगातार हो रही तेज बारिश के कारण शहर के कई निचले हिस्सों में जलभराव की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई। शहर के कई निचले इलाकों में सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया। गुजरात के खेड़ा जिले की सभी तहसीलों में भी शुक्रवार को सुबह से ही मूसलाधार बारिश जारी रही। नादियाद में भारी तबाही हुई। पूरा नादियाद शहर जलमग्न हो चुका है। सड़कें समंदर बन चुकी हैं और निचले इलाकों में जलभराव से इलाके टापू में तब्दील हो गए। सिर्फ 6 घंटे में ही 133 से 191 मिलीमीटर की बारिश दर्ज की गई।
1: जिस तरह से 2 दिन पूरे गुजरात में हाई अलर्ट जारी किया गया है, हम अभी खेड़ा जिले के नड़ियाद में है। नड़ियाद में अब तक तकरीबन 7 इंच से ज्यादा जो है वो बारिश दर्ज की गई है, जिसके चलते जो निचले इलाके हैं वो प्रभावित हुए हैं। निचले इलाके में जिस तरह से जल भरा हुआ है, प्रशासन पहले से अलर्ट था, जिसके चलते पूरी व्यवस्था है जो की गई है, जिसके यहाँ पर जिस तरह से निचले इलाके में अस्पतालें आई हुई है, अस्पताल में आने जाने के लिए दर्दी जो है उनके लिए जो ट्रैक्टर ट्रॉली की जो है वो व्यवस्था की गई है, जिससे लोगों को आसानी रहे। साथ ही प्रशासन ने पहले से ही अपील कर दी थी कि लोग काम के अलावा बाहर न निकले। साथ ही जिस तरह से पूरे जो हालात है देख सकते हैं, निचले इलाके में जल भरा हुआ है।
0: चिंता इस बात की है कि मौसम विभाग ने अभी भी बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। प्रशासन कह रहा है कि जब तक कोई बेहद जरूरी काम ना हो घर से बाहर ना निकले। इधर भरूच में भी बारिश का रेड अलर्ट है। आसमान से जैसे आफत बरस रही है। शुक्रवार की सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है। निचले इलाके और मार्गों को बारिश के पानी ने जलमग्न कर दिया। भरूच, अंकलेश्वर, नेत्रंग, हासौट, झगड़िया, वालिया तहसील पानी पानी हो गई। जिले में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ एक्टिव है।
2: रेड अलर्ट के चलते सुबह से ही भारी बारिश के कारण आसमान से आफत रूपी बारिश ने पूरे जिले को पानी से लबालब कर दिया है। पिछले 10 घंटों में सबसे ज़्यादा नेत्रंग तहसील में 11.5 इंच बारिश बरस चुकी है, जिसके कारण मुख्य मार्ग और सभी जगह पे फिलहाल पानी ही पानी नजर आ रहा है। जनजीवन और यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है।
0: गुजरात के नर्मदा जिले में भी बुरा हाल है। यहाँ इतनी बारिश हुई कि करजन डैम से 50,000 क्यूसेक से भी ज्यादा पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से बाढ़ के हालात पैदा हो गए। भारी बारिश के कारण नर्मदा जिले के 28 गांवों को अलर्ट किया गया और 50 से ज्यादा लोग सुरक्षित स्थान पर लाए गए हैं। जिले के गरुड़ेश्वर तहसील में 5 इंच जितनी बारिश की वजह से गांवों को जोड़ने वाले कई रास्ते टूट चुके हैं। छोटा उदयपुर में अश्विन नदी में फंसे एक युवक को एनडीआरएफ टीम ने बचाया। युवक अपनी जान जोखिम में डालकर 4 घंटे तक 1.5 फुट की दीवार पर बैठा रहा था। पानी बढ़ता रहा लेकिन टीम ने आखिरकार युवक को बचा लिया।
3: हवामान विभाग की जो आगाही थी उसके अनुसार नर्मदा और छोटा दीपुर में मूसलाधार बारिश हुई। आप तस्वीरों में देख पा रहे ये जो करजन नदी है, करजन नदी उफान हुए है क्योंकि जो करजन डैम है वहां से 50,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। इसके कारण नदी का फ्लो काफी बढ़ चुका है। साथ में छोटा दीपुर जिले के अंदर जो अश्विनी नदी है वहां पे एक आदमी का रेस्क्यू किया गया था जहां पे वो पानी में फंस गया था। नर्मदा और छोटा दीपुर जिले में भारी बारिश के कारण गांवों के अंदर जो नदियां उफान पे है और खास तौर पे जो आदिवासी इलाके हैं उनको रेस्क्यू करके बाहर लाया जा रहा है।
0: आज तक ब्यूरो।
4: अब रुख करते हैं पश्चिम एशिया की तरफ जहां पर आखिर क्या हुआ कि अमेरिका अब इसराइल के साथ मिलकर ईरान पर बहुत बड़े हमले करने की तैयारियों में जुट गया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।

0: मिसाइलें एक बार फिर गरज रही हैं। मेल मुलाकातों की डोर एक बार फिर टूटती दिख रही है। अमेरिका ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों को बम बरसाकर ध्वस्त करने का दावा किया है। इसके अलावा ईरान के किशम इलाके की ये तस्वीरें भी अमेरिका के ताजा हमलों से हुई तबाही की गवाह हैं। रिहायशी इलाके में मिसाइल के हमले से ये पूरा घर तबाह हो गया। धमाका इतना जबरदस्त था कि उससे काफी बड़ा गड्ढा भी हो गया। उधर ईरान भी जॉर्डन, बहरीन, कुवैत और मिस्र में अमेरिकी सैन्य बेस पर लगातार हमले कर रहा है। कुवैत पर उसने कई ड्रोन हमले किए, हालांकि कुवैत का दावा है कि इन्हें नाकाम कर दिया गया। इस बीच ओमान के तट के पास एक तेल टैंकर के बेहद करीब जोरदार धमाका हुआ है। हालांकि जहाज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन पूरे इलाके में अलर्ट जारी कर जांच शुरू कर दी गई है। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक ये हमला ओमान के खासाब से करीब 39 किलोमीटर दूर हुआ। लेकिन ट्रंप की मौजूदगी में हुई कैबिनेट की मीटिंग से जो खबरें आ रही हैं, वो ईरान की चिंता बढ़ाने वाली हैं। अमेरिकी मीडिया का दावा है कि अमेरिका और इजराइल ईरान के ऊर्जा ढांचे पर बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। आज या फिर कल ईरान के बिजली संयंत्रों और तेल रिफाइनरियों को बड़े पैमाने पर निशाना बनाया जा सकता है। ऐसे तमाम ठिकानों की सूची बना ली गई है। इस मीटिंग में ट्रंप बेहद गुस्से में थे। उनका साफ कहना था कि परमाणु हथियारों से जुड़ी डील के लिए घंटों खराब करने का कोई मतलब नहीं है।
1: We have great people talking. Marco's involved.
2: They're all involved. Talks aren't happening.
1: Very good people. We have the best people. But they'll make a deal. As an example, we'll talk about nuclear. And we'll be in there talking about nuclear for 7 hours. I say, why do you need 7? You can take 10 minutes. You have 5 minutes. You should solve it. But 7 hours. And then they'll go out. And I'll say, they discuss nuclear. And they'll go out and they'll say, we never discussed nuclear. And I said, why do they say that? All they do is make me angry.
0: तो क्या ईरान के इस रवैये से सीज फायर की संभावनाएं खत्म होती जा रही हैं? इस सवाल के जवाब में ट्रंप का साफ कहना था कि ईरान ने बातचीत को ईमानदारी से आगे नहीं बढ़ाया और भरोसा तोड़ा है।
1: And Iran now. Iran is doing very poorly. Just in case you read incorrect stories, they're doing very, very poorly. They're having a hard time. They've been very dishonest. They've been very dishonorable to deal with. But that makes no difference. They're doing very, very poorly. Losing faith in them because they do lie and they do misrepresent.
0: इस अहम बैठक में जिस मूड में ट्रंप दिख रहे थे, उससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि इजराइल के साथ मिलकर अगले कुछ घंटों में अमेरिका ईरान पर ताबड़तोड़ हमले करने की तैयारी में जुटा है। ये हमले इस बार सिर्फ सैन्य ठिकानों पर नहीं होंगे, बल्कि अहम एनर्जी सेंटर तबाह किए जाएंगे। उधर ईरान ने दो टूक कह दिया है कि अगर अमेरिका ने एनर्जी सेंटरों पर हमले किए तो उसके सैन्य ठिकानों को तबाह करने में ईरान कोई कसर नहीं छोड़ेगा। आज तक ब्यूरो।
3: रुकने छोड़े से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए आज तक।

0: जेन जी को संदेश के बाद पीएम मोदी ने की युवा शक्ति की बात। मैसूरु में कहा कि देश की तरक्की में योगदान छात्रों को 21वीं सदी के लिए तैयार कर रही है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। चढ़ावा चोरी पर प्रदर्शन को लेकर पप्पू यादव की बड़ी मुश्किलें। बीजेपी और साधु संतों ने वाराणसी में दर्ज कराया एफआईआर। राहुल गांधी का नाम भी, कई शहरों में प्रदर्शन। और इस सीमन को लेकर केंद्र पर भड़के राहुल। चेन्नई में कहा यह बीजेपी की बड़ी साजिश, समर्थन करने वाले तमिलनाडु को धोखा दे रहा है। पाकिस्तानी आतंकी संगठनों की हिटलिस्ट में सीएम शुभेंदु अधिकारी का नाम, बंगाल पुलिस का दावा। बर्दमान से हमीम मंडल की गिरफ्तारी के बाद खुलासा। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय महिला मुक्केबाजों का गोल्डन पंच, आज 5 बॉक्सरों ने जीता गोल्ड। भारत के खाते में अब तक 13 स्वर्ण। शुक्रवार को संसद में साधु के भेष में पप्पू यादव ने चंदा चोरी का वाला तंज वाला नाटक किया, जिसमें समाजवादी पार्टी कांग्रेस के नेता शामिल हुए। और अब पप्पू यादव के इस अभिनय पर संत समाज और हिंदू संगठन बढ़के हुए, जिसे लेकर कई जगहों पर प्रदर्शन हुआ।
1: ये गुस्सा है पप्पू यादव के उस तमाशे के खिलाफ जो संसद में उन्होंने साधु के भेष में किया। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं, जहां पप्पू यादव के पुतले फूंके जा रहे हैं, नारेबाजी की जा रही है।
2: हमारे समाज को, हमारे सनातन समाज को जो कर रहा है, हम माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि इसके ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एक्ट के अंतर्गत मुकदमा कायम करके जेल भेजें और इनके खिलाफ जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, संसद की सदस्यता भी समाप्त होना चाहिए।
1: दिल्ली के जंतर मंतर में विश्व हिंदू परिषद ने पप्पू यादव को लेकर सद्बुद्धि हवन किया।
3: तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर एक सांकेतिक सद्बुद्धि हवन जो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा यहाँ पर रखा गया, तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूंगा कि दिल्ली भर से जो संत लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हैं।
1: भोपाल में भी भारी संख्या में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, जहाँ पप्पू यादव के साथ राहुल गांधी और अखिलेश यादव का विरोध किया गया, पुतला जलाया गया।
4: कई वर्षों तक राम मंदिर का विरोध करते रहे, सफल नहीं हो पाए। जब कोर्ट से सफल नहीं हुए तो लोकतंत्र के मंदिर के बाहर राम मंदिर को, राम जी को बदनाम करने की जिन्होंने कोशिश करी, चाहे राहुल गांधी हो, पप्पू यादव हो या अखिलेश यादव हो, इस प्रकार से ड्रामा करके राम जी को जिन्होंने बदनाम किया, ये उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया जा रहा है।
1: उधर दिल्ली के जहांगीरपुरी थाने में सांसद पप्पू यादव के खिलाफ शिकायत दी। वहीं वाराणसी में भी संत समाज की ओर से पप्पू यादव पर एक मुकदमा दर्ज कराया गया है।
5: इसमें बीजेपी को घेरने के कहां से आ गई? इसमें बीजेपी का गेरुआ वस्त्र पहनने करके बाबा बन के घूमती है बीजेपी। आप बीजेपी को घेरो ना, किसने मना किया? आप बीजेपी से सवाल करो, बीजेपी के विपक्ष में आप बैठ जाओ, आप तमाम जो चीजें हैं उन पर, क्योंकि इनके पास तो कोई मुद्दे बचे नहीं है, तो अब यही मुद्दे उल्टे सीधे बचे हैं कि संतों का अपमान करेंगे। इन लोगों को ही लगता है कि संत समाज बीजेपी का समर्थन करती है, पर सत्य यह है कि संत समाज उसी का समर्थन करती है जो राम का समर्थन करती है, जो कृष्ण का समर्थन करती है, जो सनातन धर्म की रक्षा करती है।
1: इस बीच पप्पू यादव ने हंगामे के बीच इंस्टा पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो उन्हीं कपड़ों में पूजा करते नजर आ रहे हैं। वहीं पूरे मामले में पप्पू यादव की सफाई भी आई है।
6: आपको नहीं लगता कि आपने कुछ गलत किया है इस पूरे?
7: मतलब सनातन और मंदिर के सारे पैसे को, लुटेरे को उजागर करना और उसके खिलाफ लड़ना गलत है, मंदिर की रक्षा करना गलत है, मंदिर के पैसे की रक्षा करना गलत है, देश के 100 करोड़ का जो आस्था है मंदिर के प्रति उसकी रक्षा करना गलत है, हनुमान जी को नचाना सही है, गुड्डी में राम को उड़ाना सही है।
1: बहरहाल संसद में चंदा चोरी पर पप्पू यादव के नाटक ने नया सियासी घमासान शुरू कर दिया है। आज तक ब्यूरो।
0: अब आज पीएम मोदी के नए वीडियो संदेश की। पीएम मोदी ने शुक्रवार देर रात एक बार फिर से जेन जी को मैसेज दिया। रात तकरीबन 11 बजे के बाद पीएम मोदी इंस्टाग्राम पर लाइव आए, जहां उन्होंने अभद्र टिप्पणी करने वाले बच्चों को माफ करने की बात कही।

0: 31 जुलाई की रात पीएम मोदी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट कर युवाओं को माफ कर दिया।
1: जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है।
0: हालांकि पीएम मोदी ने लड़कियों की भाषा पर हैरानी जताते हुए कहा कि जिस तरह कुछ बेटियों के मेरी माँ को गाली देते हुए वीडियो वायरल हुए उससे उन्हें कल्चरल शॉक लगा।
1: एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है।
0: हालांकि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और शिवसेना यूबीटी जैसे दल गाली देने वाले युवाओं को माफ कर देने वाले वीडियो पर भी हमलावर दिखे।
2: उनको ये पूछना चाहिए क्या इस देश के छात्र उनको माफ करेंगे? उनकी वजह से 35 दिन छात्रों को परेशान होना पड़ा, खुले छत के नीचे सोना पड़ा, लाठियां खानी पड़ी, पैलेट गन झेलनी पड़ी। प्रधानमंत्री जी को छात्र माफ करेंगे या नहीं, उनको देश के छात्रों से पूछना।
3: वाइट पद्धति ने पुरुष पोलिसांकडनं त्यांचे कपडे फाडले गेले, ज्या पद्धतीने तो व्हिडिओ मी पाहिला, एक ती मुलगी पुढे जाते आणि तो पोलीस पाठवून कसं तो मला बोलायला सुद्धा लाज वाटते। ज्या मुलांनी नीटच्या परीक्षेचा पेपर फुटला म्हणून आत्महत्या केली त्यांची पहिली माफी यांनी मागायला पाहिजे।
0: जहां बीजेपी कह रही है कि पीएम मोदी को 25 सालों में ना जाने कितनी

0: बोली, बीजेपी और पीएम मोदी को विक्टिम कार्ड खेलकर उसका सियासी फायदा उठाना बखूबी आता है।
1: देखो मोदी जी बहुत बड़े हृदय के व्यक्ति हैं और तभी शायद यहां तक पहुंचे हैं। और जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं पिछले 25 साल में मोदी जी जब से मुख्यमंत्री रहे, प्रधानमंत्री रहे, जिस प्रकार से उन्होंने उनके ऊपर विपक्ष के द्वारा जो निजी हमले हुए, कभी उनको मौत का सौदागर कहा गया, कभी चौकीदार चोर है, कभी किस प्रकार से घृणित आरोप उनके ऊपर लगाए गए, निश्चित रूप से एक ये नई शुरुआत है। और मोदी जी ने जिस प्रकार का आह्वान किया है कि हम लोग देश के एक साथ लेकर देश को आगे बढ़े,
2: पूरे देश की मानसिकता को आपने दूषित कर दिया है। मैं कोई ट्वीट करता हूं उसके नीचे इतनी भद्दी भद्दी टिप्पणियां, लाखों गालियां। आज तक अगर मेरे सारे ट्वीट उठा लिए जाएं और उसके नीचे की गालियां उठा ली जाएं जो आपके समर्थक आपके लोगों ने दी हैं, लाखों लाख गालियां दी हैं, मां की बहन की गालियां। मेरी आदत नहीं है रोने धोने की, आपकी आदत है। आपको कुछ भी होता है आप उसको कैश कराने के चक्कर में लग जाते हैं।
0: फिलहाल पीएम मोदी के माफी वाले वीडियो पर सियासी महाभारत थमती नहीं दिख रही। आज तक ब्यूरो।
3: यूपी में बन रहे बटेश्वर कॉरिडोर की, जिसके निर्माण में समाजवादी पार्टी ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, तो राजनीति गर्मा गई। बीजेपी ने हालांकि विपक्षी दलों पर पलटवार भी किया।
4: ये तस्वीरें आगरा में बन रहे बटेश्वर कॉरिडोर की है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इन तस्वीरों को साझा किया और कॉरिडोर के निर्माण में भारी अनियमितता, गड़बड़ी और भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया। साथ ही दावा ये भी किया कि शिकायतकर्ताओं को धमकाया जा रहा है।
5: समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने बटेश्वर महादेव का एक वीडियो जारी करके सोशल मीडिया पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी पर साफ तरीके से कहा है कि बिना बेस के निर्माण के पीवीसी वहां पर सीमेंटेड की जा रही है, यानी कि खामियों की बात की है।
4: यूपी में राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर पहले ही संग्राम जारी है। संसद तक इसे लेकर जंग छिड़ी है। इस बीच समाजवादी पार्टी ने धर्म आस्था से जुड़े एक और मुद्दे को उठाकर यूपी सरकार को घेरने की कोशिश की।
6: देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार वैसे तो ऊपर से लेकर नीचे तक जो भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, लेकिन अब इन्होंने भगवानों को भी नहीं छोड़ा, इन्होंने मंदिरों को भी नहीं छोड़ा। आज जिस तरीके से बटेश्वर कॉरिडोर में जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है, जिस तरीके से मिलावट हो रहा है, जिस तरीके से निर्माण में अनियमितता हो रही है, उसको माने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने अपने पोस्ट में दर्शाने का काम किया, वीडियो फुटेजेस के साथ उन्होंने दर्शाने का काम किया।
7: भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में पहले भ्रष्टाचार होता है और फिर शिकायतकर्ताओं को धमकाया जाता है। बटेश्वर कॉरिडोर में भी यही हो रहा है, राम मंदिर के निर्माण में भी यही हो रहा है, चंदा चोरी में भी यही हो रहा है। जिस तरीके से एक्सप्रेस वे धस रहे हैं, उन सारी जगहों पर शिकायतकर्ताओं को तो धमकाया जा रहा है।
8: अखिलेश यादव जी की राजनीति अब केवल अफवाहों पर और आरोप पर तक सीमित रह गई है। बिना किसी ठोस प्रमाण के वे कुछ भी कहते रहते हैं। अगर उनके पास कोई ठोस प्रमाण है तो निश्चित रूप से जांच एजेंसी को दें। हमारी सरकार हर विषय पर जांच कराने के लिए तैयार है।
4: विपक्ष के हमलों और बीजेपी के पलटवार के बीच बटेश्वर कॉरिडोर पर नई राजनीति शुरू हो गई। एक और धार्मिक क्षेत्र को लेकर विपक्ष और बीजेपी अब आमने सामने आ गए हैं। आशीष श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
3: बात अब जम्मू कश्मीर की, जहां कुलगाम से बड़ी खबर आई है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम के केलाम इलाके में आतंकवादियों ने दो गैर कश्मीरी मजदूरों को गोली मार दी। आतंकी हमले में एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। दोनों ही मजदूर छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। इस हमले के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की और सर्च ऑपरेशन जारी है।
9: एक बार फिर जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने मजदूरों को टारगेट किया। एक बार फिर गैर कश्मीरी मजदूरों को निशाना बनाकर आतंकी हमला हुआ। ये वारदात कुलगाम के केल्लाम इलाके में हुई, जहां ईंट भट्टे पर काम करने वाले दो मजदूर आतंकी हमले में मारे गए।
10: रात में टारगेटेड अटैक हुआ, जहां जैसे आपने कहा फिर एक बार नॉन लोकल जो लेबरर थे यानी कि मजदूर थे, एक जो ईंटों का कारखाना होता है वहां काम करते थे, और तकरीबन 8:30 बजे बाइक पे जो है दो आतंकी उनके करीब आए और गोलियों की बौछार कर दी। दोनों जो हैं काफी गंभीर रूप से घायल हुए, लेकिन एक की मृत्यु जो है मौके पे हुई, दूसरा

0: उसको इवैक्यूएट किया गया हॉस्पिटल, और अभी खबर मिली है कि श्रीनगर के जो शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है वहां उनकी जो है मौत हो गई है। तो दो लेबरर अब इसमें मारे गए हैं। सुरक्षा एजेंसीज ने इसके बाद जो है पूरे इलाके को घेर के जो एसओपी रहता है तलाशी अभियान शुरू किया है, लेकिन 4 साल के बाद ऐसी जो है घटना हुई है, नई नहीं है। जैसे आपने कहा इससे पहले भी जो सॉफ्ट टारगेट्स हैं ये नॉन लोकल लेबरर्स, इनको टारगेट किया गया है।
1: वारदात की खबर मिलते ही सुरक्षा बल एक्शन में आए, पूरे इलाके की घेराबंदी दी और हमलावर आतंकियों की तलाश में चप्पे चप्पे की जांच शुरू हो गई। मजदूरों को टारगेट कर जम्मू कश्मीर में हुआ यह हमला इसलिए बेहद गंभीर और चिंताजनक है क्योंकि ऐसी आतंकी वारदात करीब 4 साल बाद दोहराई गई है, जिसके बाद से सुरक्षा एजेंसियां भी काफी चौकन्ना हो गई है। आतंकी संगठन लश्कर से जुड़े संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF कुलगाम में हुए हमले की जिम्मेदारी ली है, जिससे साफ है कि इस हमले की साजिश सीमा पार से रची गई।
0: फिर एक बार जो लश्कर का शेडो है द रेजिस्टेंस फ्रंट, उन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली है और साफ तौर पे इसके बाद सुरक्षा जो है काफी बढ़ा दी गई। हम श्रीनगर से यहाँ की तरफ आए, जगह जगह जो है चेक पॉइंट्स लगाए गए हैं और यहाँ भी जैसे आप देख सकते हैं सुरक्षा बलों के जवान जो है नाकाबंदी लगाई हुई है। पुलिस है, CRPF है, जो भी गाड़ी यहां से जा रही है उसको चेक किया जा रहा है और इंटेल बेस जो है सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन अभी जगह जगह चल रहा है। लेकिन साफ तौर पर ये चिंता का विषय है सुरक्षा एजेंसी के लिए क्योंकि कोई ना कोई मॉड्यूल है, स्लीपर सेल है लश्कर का जो एक्टिवेट हो गया है, उनको साफ तौर पे उस तरफ से आदेश है कि आप एक्टिवेट हो जाइए, टारगेट्स को हिट कीजिए। और इससे पहले 2021-22 में एक सिलसिला चला था जहां कश्मीरी पंडित और नॉन लोकल लेबरर्स को टारगेट किया गया था बिल्कुल इसी तरीके से, ज्यादातर दक्षिणी कश्मीर में, और इस बार फिर एक बार ये सिलसिला जो है शुरू होता दिख रहा है।
1: जम्मू कश्मीर में जो दो मजदूर आतंकी हमले में मारे गए वो दोनों ही छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। छत्तीसगढ़ के CM विष्णुदेव साय ने इसे कायराना हमला करार करते हुए मजदूरों की मौत पर शोक जताया है। उधर सुरक्षा बल लगातार आतंकियों की तलाश में लगे हैं ताकि टारगेट किलिंग करने वाले आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। कुलगाम से मीर फरीद आज तक।
2: कुलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर स्थानीय लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया, वहीं मामले पर सियासत भी तेज है।

0: पाकिस्तान के इस गुस्ताखी का गुस्सा कश्मीर की आवाम पर नजर आ रहा है। स्थानीय लोगों ने मजदूरों की हत्या पर कैंडल जलाई तो ही पाकिस्तान का विरोध भी किया।
1: ये हमारी रियासत जम्मू कश्मीर को बदनाम करने के लिए जो एक अमन की फिजा यहाँ पे कायम हुई है, टूरिस्ट आज इतनी पूरी दुनिया से यहाँ पे आ रहे हैं, इतना अमन से इलेक्शन यहाँ पे हुए हैं, यहाँ पे एक अमन की बहुत बड़ी फिजा कायम हुई है, उसको बदनाम करने के लिए चंद अनासर जो हैं वो उस पार से यहाँ बदमनी फैलाना चाहते हैं और जम्मू कश्मीर के आवाम को बदनाम करना चाहते हैं।
0: उधर जम्मू कश्मीर के CM उमर अब्दुल्ला हमले की निंदा कर रहे हैं तो महबूबा मुफ्ती सुरक्षा के इंतजामों पर सवाल खड़े कर रही हैं।
2: बाहर से जो लोग कश्मीर में काम करने आए थे, थोड़ी इज्जत की रोजी रोटी कमाने आए थे, उन बेगुनाह लोगों को इस तरह निशाना बनाया गया। इस हमले की जितनी निंदा की जाए कम है।
3: जो सिक्योरिटी है, जो यहाँ इतना सिक्योरिटी की वजह से लोगों को इतना अजाब है लोगों पे, उसके बावजूद ये इंसिडेंट्स होना मुझे लगता है कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में कोताही है।
0: इस हमले के बीच फारूख अब्दुल्ला के बयान ने घाटी की सियासत को गर्म कर दिया है। फारूख अब्दुल्ला ने शंका जताई कि आखिर कश्मीर में स्टेटहुड की मांग के समय ही हमला क्यों होता है।
4: मुझे नहीं पता ये क्यों उस वक्त होता है जब हम लोग स्टेटहुड मांग रहे होते हैं।
5: डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कुलगाम में हुए आतंकवादी हमला जिसमें 2 मजदूरों को निशाना बनाया गया है, उस हमले को लेकर स्टेटहुड के साथ उस हमले को जोड़ा है, ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने दिया है, उन्हें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए।
0: एक ओर पाकिस्तान से POK नहीं संभल रहा तो दूसरी ओर घाटी में माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मजदूरों को निशाना बनाना बताता है कि आतंकी कितना बौखलाए हुए हैं।
6: मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ऐसी ही जो ईंटें यहाँ जहाँ बनती हैं, ईंटों का भट्टा था और वहां वो काम कर रहे थे। 8:30 का समय था जब बाहर काम के बाद वो लोग खड़े थे और जो मिलिटेंट हैं, 2 उनकी संख्या बताई जाती है, बाइक पे आके काफी करीब से उन पे गोलियां चलाई, दोनों की इसमें मौत हो गई। और
7: हमारे बाबूजी ने कह रखा कि रोड पे जाना इसमें मना है, अपने बस यहीं रहना है मरिया गंदम में।
6: अच्छा, बाहर नहीं घूमना?
7: बाहर नहीं घूमना बस,
6: खासकर शाम वाम के समय।
7: हाँ, शाम वाम समय
8: पहली बात हम लोग जाते ही नहीं है ऑटो बंदी। हम ऑटो बंदी शाम में घर में ही रहते हैं,
6: यहीं रहते हैं,
8: बस यहीं रहते
0: हैं। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ मीर फरीद, कुलगाम आज तक। बात अब गुजरात की करेंगे जहां एक बार फिर बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं और साउथ गुजरात के बहुत सारे जिले पहले प्रभावित हुए थे, कई शहरों में बाढ़ आई थी, अब एक बार फिर से हालात बहुत बुरे हैं। सूरत, नवसारी, डांग, खेड़ा, भरूच जिलों में हाल बेहाल है।

0: गुजरात में एक बार फिर से भारी बारिश के बाद कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं और फिर से दक्षिण गुजरात के ही जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। नवसारी और डांग जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण अंबिका और पूर्णा नदी उफान पर है। डांग के सुबीर तालुका में करीब 8 इंच बारिश दर्ज होने के बाद पूर्णा नदी समेत अन्य नदी नालों में बहुत ज्यादा पानी भर गया, तो पूर्णा नदी का जलस्तर बढ़ने से गोदड़िया पुल के ऊपर से पानी बहता दिखाई दे रहा है। ये हालात बहुत खतरनाक हैं। आसपास के इलाकों में बाढ़ की आशंका बढ़ गई। नवसारी में प्रशासन अलर्ट पर है क्योंकि पूर्णा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। नवसारी शहर में लगातार बारिश के कारण कई इलाकों में जल भराव की स्थिति बन गई। इधर भावनगर में भी हालात बिगड़ने लगे हैं। यहां जिले के पालीताना, जेसर, तलाजा, सीहोर, बगदाना, सोनगढ़, गोघा, अलंग और अन्य इलाकों में बारिश हुई। पालीताना में भारी बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया। सूरत शहर में भी शुक्रवार तड़के से ही मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। लगातार हो रही तेज बारिश के कारण शहर के कई निचले हिस्सों में जलभराव की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई। शहर के कई निचले इलाकों में सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया। गुजरात के खेड़ा जिले की सभी तहसीलों में भी शुक्रवार को सुबह से ही मूसलाधार बारिश जारी रही। नादियाद में भारी तबाही हुई। पूरा नादियाद शहर जलमग्न हो चुका है। सड़कें समंदर बन चुकी हैं और निचले इलाकों में जलभराव से इलाके टापू में तब्दील हो गए। सिर्फ 6 घंटे में ही 133 से 191 मिलीमीटर की बारिश दर्ज की गई।
1: जिस तरह से दो दिन पूरे गुजरात में हाई अलर्ट जारी किया गया है, हम अभी खेड़ा जिले के नड़ियाद में है। नड़ियाद में अब तक तकरीबन 7 इंच से ज्यादा जो है वो बारिश दर्ज की गई है, जिसके चलते जो निचले इलाके हैं वो प्रभावित हुए हैं। निचले इलाके में जिस तरह से जल भरा हुआ है, प्रशासन पहले से अलर्ट था, जिसके चलते पूरी व्यवस्था है जो की गई है। जिसके यहाँ पर जिस तरह से निचले इलाके में अस्पतालें आई हुई है, अस्पताल में आने जाने के लिए दर्दी जो है उनके लिए जो ट्रैक्टर ट्रॉली की जो है वो व्यवस्था की गई है, जिससे लोगों को आसानी रहे। साथ ही प्रशासन ने पहले से ही अपील कर दी थी कि लोग काम के अलावा बाहर न निकले। साथ ही जिस तरह से पूरे जो हालात है देख सकते हैं, निचले इलाके में जल भरा हुआ है।
0: चिंता इस बात की है कि मौसम विभाग ने अभी भी बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। प्रशासन कह रहा है कि जब तक कोई बेहद जरूरी काम ना हो घर से बाहर ना निकले। इधर भरूच में भी बारिश का रेड अलर्ट है। आसमान से जैसे आफत बरस रही है। शुक्रवार की सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है। निचले इलाके और मार्गों को बारिश के पानी ने जलमग्न कर दिया। भरूच, अंकलेश्वर, नेत्रंग, हासौट, झगड़िया, वालिया तहसील पानी पानी हो गई। जिले में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ एक्टिव है।
2: रेड अलर्ट के चलते सुबह से ही भारी बारिश के कारण आसमान से आफत रूपी बारिश ने पूरे जिले को पानी से लबालब कर दिया है। पिछले 10 घंटों में सबसे ज़्यादा नेत्रंग तहसील में 10.5 इंच बारिश बरस चुकी है, जिसके कारण मुख्य मार्ग और सभी जगह पे फिलहाल पानी ही पानी नजर आ रहा है। जनजीवन और यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है।
0: गुजरात के नर्मदा जिले में भी बुरा हाल है। यहाँ इतनी बारिश हुई कि करजन डैम से 50,000 क्यूसेक से भी ज्यादा पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से बाढ़ के हालात पैदा हो गए। भारी बारिश के कारण नर्मदा जिले के 28 गांवों को अलर्ट किया गया और 50 से ज्यादा लोग सुरक्षित स्थान पर लाए गए हैं। जिले के गरुड़ेश्वर तहसील में 5 इंच जितनी बारिश की वजह से गांवों को जोड़ने वाले कई रास्ते टूट चुके हैं। छोटा उदयपुर में अश्विन नदी में फंसे एक युवक को एनडीआरएफ टीम ने बचाया। युवक अपनी जान जोखिम में डालकर 4 घंटे तक 1.5 फुट की दीवार पर बैठा रहा था। पानी बढ़ता रहा लेकिन टीम ने आखिरकार युवक को बचा लिया।
3: हवामान विभाग की जो आगाही थी उसके अनुसार नर्मदा और छोटा उदयपुर में मूसलाधार बारिश हुई। आप तस्वीरों में देख पा रहे ये जो करजन नदी है, करजन नदी उफान हुए है क्योंकि जो करजन डैम है वहां से 50,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। इसके कारण नदी का फ्लो काफी बढ़ चुका है। साथ में छोटा उदयपुर जिले के अंदर जो अश्विनी नदी है वहां पे एक आदमी का रेस्क्यू किया गया था जहां पे वो पानी में फंस गया था। नर्मदा और छोटा उदयपुर जिले में भारी बारिश के कारण गांवों के अंदर जो नदियां उफान पे है और खास तौर पे जो आदिवासी इलाके हैं उनको रेस्क्यू करके बाहर लाया जा रहा है।
0: आज तक ब्यूरो।
4: अब रुख करते हैं पश्चिम एशिया की तरफ जहां पर आखिर क्या हुआ कि अमेरिका अब इसराइल के साथ मिलकर ईरान पर बहुत बड़े हमले करने की तैयारियों में जुट गया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।

0: मिसाइलें एक बार फिर गरज रही हैं। मेल मुलाकातों की डोर एक बार फिर टूटती दिख रही है। अमेरिका ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों को बम बरसाकर ध्वस्त करने का दावा किया है। इसके अलावा ईरान के किशम इलाके की ये तस्वीरें भी अमेरिका के ताजा हमलों से हुई तबाही की गवाह है। रहायशी इलाके में मिसाइल के हमले से ये पूरा घर तबाह हो गया। धमाका इतना जबरदस्त था कि उससे काफी बड़ा गड्ढा भी हो गया। उधर ईरान भी जॉर्डन, बहरीन, कुवैत और मिस्र में अमेरिकी सैन्य बेस पर लगातार हमले कर रहा है। कुवैत पर उसने कई ड्रोन हमले किए, हालांकि कुवैत का दावा है कि इन्हें नाकाम कर दिया गया। इस बीच ओमान के तट के पास एक तेल टैंकर के बेहद करीब जोरदार धमाका हुआ है। हालांकि जहाज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन पूरे इलाके में अलर्ट जारी कर जांच शुरू कर दी गई है। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक ये हमला ओमान के खासाब से करीब 39 किलोमीटर दूर हुआ। लेकिन ट्रंप की मौजूदगी में हुई कैबिनेट की मीटिंग से जो खबरें आ रही हैं, वो ईरान की चिंता बढ़ाने वाली हैं। अमेरिकी मीडिया का दावा है कि अमेरिका और इजराइल ईरान के ऊर्जा ढांचे पर बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। आज या फिर कल ईरान के बिजली संयंत्रों और तेल रिफाइनरियों को बड़े पैमाने पर निशाना बनाया जा सकता है। ऐसे तमाम ठिकानों की सूची बना ली गई है। इस मीटिंग में ट्रंप बेहद गुस्से में थे। उनका साफ कहना था कि परमाणु हथियारों से जुड़ी डील के लिए घंटों खराब करने का कोई मतलब नहीं है।
1: We have great people talking. Marco's involved.
2: They're all involved. Talks aren't happening.
1: Very good people. We have the best people. But they'll make a deal. As an example, we'll talk about nuclear. And we'll be in there talking about nuclear for 7 hours. I say, why do you need 7? You can take 10 minutes. You have 5 minutes. You should solve it. But 7 hours. And then they'll go out. And I'll say, they discuss nuclear. And they'll go out and they'll say, we never discussed nuclear. And I said, why do they say that? All they do is make me angry.
0: तो क्या ईरान के इस रवैये से सीज फायर की संभावनाएं खत्म होती जा रही हैं? इस सवाल के जवाब में ट्रंप का साफ कहना था कि ईरान ने बातचीत को ईमानदारी से आगे नहीं बढ़ाया और भरोसा तोड़ा है।
1: Iran now. Iran is doing very poorly. Just in case you read incorrect stories, they're doing very, very poorly. They're having a hard time. They've been very dishonest. They've been very dishonorable to deal with. But that makes no difference. They're doing very, very poorly.
3: Losing faith in them because they do lie and they do misrepresent.
0: इस अहम बैठक में जिस मूड में ट्रंप दिख रहे थे, उससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि इजराइल के साथ मिलकर अगले कुछ घंटों में अमेरिका ईरान पर ताबड़तोड़ हमले करने की तैयारी में जुटा है। ये हमले इस बार सिर्फ सैन्य ठिकानों पर नहीं होंगे, बल्कि अहम एनर्जी सेंटर तबाह किए जाएंगे। उधर ईरान ने दो टूक कह दिया है कि अगर अमेरिका ने एनर्जी सेंटरों पर हमले किए तो उसके सैन्य ठिकानों को तबाह करने में ईरान कोई कसर नहीं छोड़ेगा। आज तक ब्यूरो।
4: रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।

0: जेन जी को संदेश के बाद पीएम मोदी ने की युवा शक्ति की बात। मैसूरू में कहा कि देश की तरक्की में योगदान छात्रों को 21वीं सदी के लिए तैयार कर रही है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। चढ़ावा चोरी पर प्रदर्शन को लेकर पप्पू यादव की बड़ी मुश्किलें। बीजेपी और साधु संतों ने वाराणसी में दर्ज कराया एफआईआर। राहुल गांधी का नाम भी, कई शहरों में प्रदर्शन। और इस सीमन को लेकर केंद्र पर भड़के राहुल। चेन्नई में कहा यह बीजेपी की बड़ी साजिश, समर्थन करने वाले तमिलनाडु को धोखा दे रहा है। पाकिस्तानी आतंकी संगठनों की हिट लिस्ट में सीएम शुभेंदु अधिकारी का नाम। बंगाल पुलिस का दावा, बर्दमान से हमीम मंडल की गिरफ्तारी के बाद खुलासा। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय महिला मुक्केबाजों का गोल्डन पंच। आज 5 बॉक्सरों ने जीता गोल्ड। भारत के खाते में अब तक 13 स्वर्ण। शुक्रवार को संसद में साधु के भेष में पप्पू यादव ने चंदा चोरी का वाला तंज वाला नाटक किया, जिसमें समाजवादी पार्टी कांग्रेस के नेता शामिल हुए और अब पप्पू यादव के इस अभिनय पर संत समाज और हिंदू संगठन भड़के हुए, जिसे लेकर कई जगहों पर प्रदर्शन हुआ। ये गुस्सा है पप्पू यादव के उस तमाशे के खिलाफ जो संसद में उन्होंने साधु के भेष में किया। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, जहां पप्पू यादव के पुतले फूंके जा रहे हैं, नारेबाजी की जा रही है।
1: हमारे समाज को, हमारे सनातन समाज को जो ये कर रहा है, हम माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि इसके ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1 के अंतर्गत मुकदमा कायम करके जेल भेजे और इनके खिलाफ जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, संसद की सदस्यता भी समाप्त होना चाहिए।
0: दिल्ली के जंतर मंतर में विश्व हिंदू परिषद ने पप्पू यादव को लेकर सद्बुद्धि हवन किया।
2: तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर एक सांकेतिक सद्बुद्धि हवन जो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा यहाँ पर रखा गया, तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूंगा कि दिल्ली भर से जो संत लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हैं।
0: भोपाल में भी भारी संख्या में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, जहाँ पप्पू यादव के साथ राहुल गांधी और अखिलेश यादव का विरोध किया गया, पुतला जलाया गया।
3: कई वर्षों तक राम मंदिर का विरोध करते रहे, सफल नहीं हो पाए। जब कोर्ट से सफल नहीं हुए तो लोकतंत्र के मंदिर के बाहर राम मंदिर को, राम जी को बदनाम करने की जिन्होंने कोशिश करी, चाहे राहुल गांधी हो, पप्पू यादव हो या अखिलेश यादव हो, इस प्रकार से ड्रामा करके राम जी को जिन्होंने बदनाम किया, ये उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया जा रहा है।
0: उधर दिल्ली के जहांगीरपुरी थाने में सांसद पप्पू यादव के खिलाफ शिकायत दी। वहीं वाराणसी में भी संत समाज की ओर से पप्पू यादव पर एक मुकदमा दर्ज कराया गया है।
4: इसमें बीजेपी को घेरने के कहां से आ गई? इसमें बीजेपी का गेरुआ वस्त्र पहनने करके बाबा बन के घूमती है बीजेपी। आप बीजेपी को घेरो ना, किसने मना किया? आप बीजेपी से सवाल करो, बीजेपी के विपक्ष में आप बैठ जाओ, आप तमाम जो चीजें हैं उन पर, क्योंकि इनके पास तो कोई मुद्दे बचे नहीं है, तो अब यही मुद्दे उल्टे सीधे बचे हैं कि संतों का अपमान करेंगे। इन लोगों को ही लगता है कि संत समाज बीजेपी का समर्थन करती है, पर सत्य यह है कि संत समाज उसी का समर्थन करती है जो राम का समर्थन करती है, जो कृष्ण का समर्थन करती है, जो सनातन धर्म की रक्षा करती है।
0: इस बीच पप्पू यादव ने हंगामे के बीच इंस्टा पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो उन्हीं कपड़ों में पूजा करते नजर आ रहे हैं। वहीं पूरे मामले में पप्पू यादव की सफाई भी आई है।
5: आपको नहीं लगता कि आपने कुछ गलत किया है इस पूरे?
6: मतलब सनातन और मंदिर के सारे पैसे को लुटेरे को उजागर करना और उसके खिलाफ लड़ना गलत है, मंदिर की रक्षा करना गलत है, मंदिर के पैसे की रक्षा करना गलत है, देश के 100 करोड़ का जो आस्था है मंदिर के प्रति उसकी रक्षा करना गलत है, हनुमान जी को नचाना सही है, गुड्डी में राम को उड़ाना सही है।
0: बहरहाल संसद में चंदा चोरी पर पप्पू यादव के नाटक ने नया सियासी घमासान शुरू कर दिया है। आज तक ब्यूरो। अब आज पीएम मोदी के नए वीडियो संदेश की। पीएम मोदी ने शुक्रवार देर रात एक बार फिर से जेन जी को मैसेज दिया। रात तकरीबन 11 बजे के बाद पीएम मोदी इंस्टाग्राम पर लाइव आए, जहां उन्होंने अभद्र टिप्पणी करने वाले बच्चों को माफ करने की बात कही।

0: पॉसिबिलिटी नंबर वन इज ही गेव द ऑर्डर।
1: 31 जुलाई की रात पीएम मोदी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट कर युवाओं को माफ कर दिया।
2: जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है।
1: हालांकि पीएम मोदी ने लड़कियों की भाषा पर हैरानी जताते हुए कहा कि जिस तरह कुछ बेटियों के मेरी माँ को गाली देते हुए वीडियो वायरल हुए उससे उन्हें कल्चरल शॉक लगा।
2: एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं, लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है।
1: हालांकि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और शिवसेना यूबीटी जैसे दल गाली देने वाले युवाओं को माफ कर देने वाले वीडियो पर भी हमलावर दिखे।
3: उनको ये पूछना चाहिए क्या इस देश के छात्र उनको माफ करेंगे? उनकी वजह से 35 दिन छात्रों को परेशान होना पड़ा, खुले छत के नीचे सोना पड़ा, लाठियां खानी पड़ी, पैलेट गन झेलनी पड़ी। प्रधानमंत्री जी को छात्र माफ करेंगे या नहीं, उनको देश के छात्रों से पूछना।
4: वाइट पद्धति ने पुरुष पोलिसांकडनं त्यांचे कपडे फाडले गेले, ज्या पद्धतीने तो व्हिडिओ मी पाहिला, एक ती मुलगी पुढे जाते आणि तो पोलीस पाठवून कसं तो मला बोलायला सुद्धा लाज वाटते। ज्या मुलांनी नीटच्या परीक्षेचा पेपर फुटला म्हणून आत्महत्या केली त्यांची पहिली माफी यांनी मागायला पाहिजे।
1: जहां बीजेपी कह रही है कि पीएम मोदी को 25 सालों में ना जाने कितनी गालियां दी गई फिर भी वो विचलित नहीं हुए, वहीं आम आदमी पार्टी बोली बीजेपी और पीएम मोदी को विक्टिम कार्ड खेलकर उसका सियासी फायदा उठाना बखूबी आता है।
5: देखो मोदी जी बहुत बड़े हृदय के व्यक्ति हैं और तभी शायद यहां तक पहुंचे हैं। और जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं पिछले 12 साल क्या बल्कि पिछले 25 साल में मोदी जी जब से मुख्यमंत्री रहे, प्रधानमंत्री रहे, जिस प्रकार से उन्होंने उनके ऊपर विपक्ष के द्वारा जो निजी हमले हुए, कभी उनको मौत का सौदागर कहा गया, कभी चौकीदार चोर है, कभी किस प्रकार से घृणित आरोप उनके ऊपर लगाए गए, निश्चित रूप से एक ये नई शुरुआत है। और मोदी जी ने जिस प्रकार का आह्वान किया है कि हम लोग देश के एक साथ लेकर देश को आगे बढ़े,
6: पूरे देश की मानसिकता को आपने दूषित कर दिया है। मैं कोई ट्वीट करता हूं उसके नीचे इतनी भद्दी भद्दी टिप्पणियां, लाखों गालियां। आज तक अगर मेरे सारे ट्वीट उठा लिए जाएं और उसके नीचे की गालियां उठा ली जाएं जो आपके समर्थक आपके लोगों ने दी हैं, लाखों लाख गालियां दी हैं, माँ की बहन की गालियां। मेरी आदत नहीं है रोने धोने की, आपकी आदत है। आपको कुछ भी होता है आप उसको कैश कराने के चक्कर में लग जाते हैं।
1: फिलहाल पीएम मोदी के माफी वाले वीडियो पर सियासी महाभारत थमती नहीं दिख रही। आज तक ब्यूरो।
7: यूपी में बन रहे बटेश्वर कॉरिडोर की जिसके निर्माण में समाजवादी पार्टी ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया तो राजनीति गर्मा गई। बीजेपी ने हालांकि विपक्षी दलों पर पलटवार भी किया।
8: ये तस्वीरें आगरा में बन रहे बटेश्वर कॉरिडोर की है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इन तस्वीरों को साझा किया और कॉरिडोर के निर्माण में भारी अनियमितता, गड़बड़ी और भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया। साथ ही दावा ये भी किया कि शिकायतकर्ताओं को धमकाया जा रहा है।
9: समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने बटेश्वर महादेव का एक वीडियो जारी करके सोशल मीडिया पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी पर साफ तरीके से कहा है कि बिना बेस के निर्माण के पीवीसी वहां पर सीमेंटेड की जा रही है, यानी कि खामियों की बात की है।
8: यूपी में राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर पहले ही संग्राम जारी है। संसद तक इसे लेकर जंग छिड़ी है। इस बीच समाजवादी पार्टी ने धर्म आस्था से जुड़े एक और मुद्दे को उठाकर यूपी सरकार को घेरने की कोशिश की।
10: देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार वैसे तो ऊपर से लेकर नीचे तक जो भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, लेकिन अब इन्होंने भगवानों को भी नहीं छोड़ा, इन्होंने मंदिरों को भी नहीं छोड़ा। आज जिस तरीके से बटेश्वर कॉरिडोर में जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है, जिस तरीके से मिलावट हो रहा है, जिस तरीके से निर्माण में अनियमितता हो रही है, उसको माने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने अपने पोस्ट में दर्शाने का काम किया, वीडियो फुटेजेस के साथ उन्हें दर्शाने का काम किया।
11: भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में पहले भ्रष्टाचार होता है, फिर शिकायतकर्ताओं को धमकाया जाता है। बटेश्वर कॉरिडोर में भी यही हो रहा है, राम मंदिर के निर्माण में भी यही हो रहा है, चंदा चोरी में भी यही हो रहा है। जिस तरीके से एक्सप्रेस वे धस रहे हैं, उन सारी जगहों पर शिकायतकर्ताओं को तो धमकाया जा रहा है।
12: अखिलेश यादव जी की राजनीति अब केवल अफवाहों पर और आरोप पर तक सीमित रह गई है। बिना किसी ठोस प्रमाण के वे कुछ भी कहते रहते हैं। अगर उनके पास कोई ठोस प्रमाण है तो निश्चित रूप से जांच एजेंसी को दें। हमारी सरकार हर विषय पर जांच कराने के लिए तैयार है।
8: विपक्ष के हमलों और बीजेपी के पलटवार के बीच बटेश्वर कॉरिडोर पर नई राजनीति शुरू हो गई। एक और धार्मिक क्षेत्र को लेकर विपक्ष और बीजेपी अब आमने सामने आ गए हैं। आशीष श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
7: बात अब जम्मू कश्मीर की, जहां कुलगाम से बड़ी खबर आई है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम के केलाम इलाके में आतंकवादियों ने दो गैर कश्मीरी मजदूरों को गोली मार दी। आतंकी हमले में एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। दोनों ही मजदूर छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। इस हमले के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की और सर्च ऑपरेशन जारी है।
13: एक बार फिर जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने मजदूरों को टारगेट किया। एक बार फिर गैर कश्मीरी मजदूरों को निशाना बनाकर आतंकी हमला हुआ। ये वारदात कुलगाम के केल्लाम इलाके में हुई, जहां ईंट भट्टे पर काम करने वाले दो मजदूर आतंकी हमले में मारे गए।
14: रात में टारगेटेड अटैक हुआ, जहां जैसे अपने कहा फिर एक बार नॉन लोकल जो लेबरर थे, यानी कि मजदूर थे, एक जो ईंटों का कारखाना होता है वहां काम करते थे, और तकरीबन 8:30 बजे बाइक पे जो है दो आतंकी उनके करीब आए और गोलियों की बौछार कर दी। दोनों जो हैं काफी गंभीर रूप से घायल हुए, लेकिन एक की मृत्यु जो है मौके पे हुई, दूसरा उसको इवैक्यूएट किया गया हॉस्पिटल। और अभी खबर मिली है कि श्रीनगर के जो शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, वहां उनकी जो है मौत हो गई है। तो दो लेबरर अब इसमें मारे गए हैं। सुरक्षा एजेंसीज ने इसके बाद जो है पूरे इलाके को घेर के जो एसओपी रहता है तलाशी अभियान शुरू किया है, लेकिन 4 साल के बाद ऐसी जो है घटना हुई है, नई नहीं है। जैसे आपने कहा, इससे पहले भी जो सॉफ्ट टारगेट्स हैं ये नॉन लोकल लेबरर्स, इनको टारगेट किया गया है।
13: वारदात की खबर मिलते ही सुरक्षा बल एक्शन में आए, पूरे इलाके की घेराबंदी दी और हमलावर आतंकियों की तलाश में चप्पे चप्पे की जांच शुरू हो गई। मजदूरों को टारगेट कर जम्मू कश्मीर में हुआ यह हमला इसलिए बेहद गंभीर और चिंताजनक है, क्योंकि ऐसी आतंकी वारदात करीब 4 साल बाद दोहराई गई है, जिसके बाद से सुरक्षा एजेंसियां भी काफी चौकन्ना हो गई हैं। आतंकी संगठन लश्कर से जुड़े संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF कुलगाम में हुए हमले की जिम्मेदारी ली है, जिससे साफ है कि इस हमले की साजिश सीमा पार से रची गई।
14: फिर एक बार जो लश्कर का शेडो है द रेजिस्टेंस फ्रंट, उन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली है और साफ तौर पे इसके बाद सुरक्षा जो है काफी बढ़ा दी गई। हम श्रीनगर से यहाँ की तरफ आए, जगह जगह जो है चेक पॉइंट्स लगाए गए हैं और यहाँ भी जैसे आप देख सकते हैं सुरक्षा बलों के जवान जो है नाकाबंदी लगाई हुई है। पुलिस है, CRPF है, जो भी गाड़ी यहां से जा रही है उसको चेक किया जा रहा है और इंटेल बेस्ड जो है सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन अभी जगह जगह चल रहा है। लेकिन साफ तौर पर ये चिंता का विषय है सुरक्षा एजेंसी के लिए, क्योंकि कोई ना कोई मॉड्यूल है, स्लीपर सेल है लश्कर का जो एक्टिवेट हो गया है, उनको साफ तौर पे उस तरफ से आदेश है कि आप एक्टिवेट हो जाइए, टारगेट्स को हिट कीजिए। और इससे पहले 2021-22 में एक सिलसिला चला था जहां कश्मीरी पंडित और नॉन लोकल लेबरर्स को टारगेट किया गया था, बिल्कुल इसी तरीके से ज्यादातर दक्षिणी कश्मीर में, और इस बार फिर एक बार ये सिलसिला जो है शुरू होता दिख रहा है।
13: जम्मू कश्मीर में जो दो मजदूर आतंकी हमले में मारे गए, वो दोनों ही छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। छत्तीसगढ़ के CM विष्णुदेव साय ने इसे कायराना हमला करार करते हुए मजदूरों की मौत पर शोक जताया है। उधर सुरक्षा बल लगातार आतंकियों की तलाश में लगे हैं, ताकि टारगेट किलिंग करने वाले आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। कुलगाम से मीर फरीद आज तक।
7: कुलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर स्थानीय लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया, वहीं मामले पर सियासत भी तेज है।

0: पाकिस्तान की इस गुस्ताखी का गुस्सा कश्मीर की आवाम पर नजर आ रहा है। स्थानीय लोगों ने मजदूरों की हत्या पर कैंडल जलाई तो ही पाकिस्तान का विरोध भी किया।
1: ये हमारी रियासत जम्मू कश्मीर को बदनाम करने के लिए जो एक अमन की फिजा यहाँ पे कायम हुई है, टूरिस्ट आज इतनी पूरी दुनिया से यहाँ पे आ रहे हैं, इतना अमन से इलेक्शन यहाँ पे हुए हैं, यहाँ पे एक अमन की बहुत बड़ी फिजा कायम हुई है, उसको बदनाम करने के लिए चंद अनासर जो हैं वो उस पार से यहाँ बदमनी फैलाना चाहते हैं और जम्मू कश्मीर के आवाम को बदनाम करना चाहते हैं।
0: उधर जम्मू कश्मीर के CM उमर अब्दुल्ला हमले की निंदा कर रहे हैं तो महबूबा मुफ्ती सुरक्षा के इंतजामों पर सवाल खड़े कर रही हैं।
2: बाहर से जो लोग कश्मीर में काम करने आए थे, थोड़ी इज्जत की रोजी रोटी कमाने आए थे, उन बेगुनाह लोगों को इस तरह निशाना बनाया गया। इस हमले की जितनी निंदा की जाए कम है।
3: जो सिक्योरिटी है, जो यहाँ इतना सिक्योरिटी की वजह से लोगों को इतना अजाब है लोगों पे, उसके बावजूद ये इंसिडेंट्स होना मुझे लगता है कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में कोताही है।
0: इस हमले के बीच फारूख अब्दुल्ला के बयान ने घाटी की सियासत को गर्म कर दिया है। फारूख अब्दुल्ला ने शंका जताई कि आखिर कश्मीर में स्टेटहुड की मांग के समय ही हमला क्यों होता है।
4: मुझे नहीं पता ये क्यों उस वक्त होता है जब हम लोग स्टेटहुड मांग रहे होते हैं।
5: डॉक्टर फारूख अब्दुल्ला ने कुलगाम में हुए आतंकवादी हमला जिसमें 2 मजदूरों को निशाना बनाया गया है, उस हमले को लेकर स्टेटहुड के साथ उस हमले को जोड़ा है, ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने दिया है, उन्हें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए।
0: एक ओर पाकिस्तान से POK नहीं संभल रहा तो दूसरी ओर घाटी में माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मजदूरों को निशाना बनाना बताता है कि आतंकी कितना बौखलाए हुए हैं।
6: मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ऐसी ही जो ईंटें यहाँ जहाँ बनती हैं, ईंटों का भट्टा था और वहां वो काम कर रहे थे। 8:30 बजे का समय था जब बाहर काम के बाद वो लोग खड़े थे और जो मिलिटेंट हैं, 2 उनकी संख्या बताई जाती है, बाइक पे आके काफी करीब से उन पे गोलियां चलाई, दोनों की इसमें मौत हो गई। और
7: हमारे बाबूजी ने कह रखा कि रोड पे जाना इसमें मना है, अपने बस यहीं रहना है मरिया के अंदर में।
6: अच्छा, बाहर नहीं घूमना?
7: बाहर नहीं घूमना बस,
6: खासकर शाम वाम के समय।
7: हाँ, शाम वाम समय
8: पहली बात हम लोग जाते ही नहीं है ऑटो बंदे। हम ऑटो बंदे शाम में घर में ही रहते हैं,
6: यहीं रहते हैं,
8: बस यहीं रहते
0: हैं। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ मीर फरीद, कुलगाम आज तक। बात अब गुजरात की करेंगे जहां एक बार फिर बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं और साउथ गुजरात के बहुत सारे जिले पहले प्रभावित हुए थे, कई शहरों में बाढ़ आई थी, अब एक बार फिर से हालात बहुत बुरे हैं। सूरत, नवसारी, डांग, खेड़ा, भरूच जिलों में हाल बेहाल है।

0: गुजरात में एक बार फिर से भारी बारिश के बाद कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं और फिर से दक्षिण गुजरात के ही जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। नवसारी और डांग जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण अंबिका और पूर्णा नदी उफान पर है। डांग के सुबीर तालुका में करीब 8 इंच बारिश दर्ज होने के बाद पूर्णा नदी समेत अन्य नदी नालों में बहुत ज्यादा पानी भर गया, तो पूर्णा नदी का जलस्तर बढ़ने से गोदड़िया पुल के ऊपर से पानी बहता दिखाई दे रहा है। ये हालात बहुत खतरनाक हैं। आसपास के इलाकों में बाढ़ की आशंका बढ़ गई। नवसारी में प्रशासन अलर्ट पर है क्योंकि पूर्णा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। नवसारी शहर में लगातार बारिश के कारण कई इलाकों में जल भराव की स्थिति बन गई। इधर भावनगर में भी हालात बिगड़ने लगे हैं। यहां जिले के पालीताना, जेसर, तलाजा, सीहोर, बगदाना, सोनगढ़, गोघा, अलंग और अन्य इलाकों में बारिश हुई। पालीताना में भारी बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया। सूरत शहर में भी शुक्रवार तड़के से ही मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। लगातार हो रही तेज बारिश के कारण शहर के कई निचले हिस्सों में जलभराव की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई। शहर के कई निचले इलाकों में सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया। गुजरात के खेड़ा जिले की सभी तहसीलों में भी शुक्रवार को सुबह से ही मूसलाधार बारिश जारी रही। नादियाद में भारी तबाही हुई। पूरा नादियाद शहर जलमग्न हो चुका है। सड़कें समंदर बन चुकी हैं और निचले इलाकों में जलभराव से इलाके टापू में तब्दील हो गए। सिर्फ 6 घंटे में ही 133 से 191 मिलीमीटर की बारिश दर्ज की गई।
1: जिस तरह से दो दिन पूरे गुजरात में हाई अलर्ट जारी किया गया है, हम अभी खेड़ा जिले के नड़ियाद में है। नड़ियाद में अब तक तकरीबन 7 इंच से ज्यादा जो है वो बारिश दर्ज की गई है, जिसके चलते जो निचले इलाके हैं वो प्रभावित हुए हैं। निचले इलाके में जिस तरह से जल भरा हुआ है, प्रशासन पहले से अलर्ट था, जिसके चलते पूरी व्यवस्था है जो की गई है। यहाँ पर जिस तरह से निचले इलाके में अस्पतालें आई हुई, अस्पताल में आने जाने के लिए दर्दी जो है उनके लिए जो ट्रैक्टर ट्रॉली की जो है वो व्यवस्था की गई है, जिससे लोगों को आसानी रहे। साथ ही प्रशासन ने पहले से ही अपील कर दी थी कि लोग काम के अलावा बाहर न निकले। साथ ही जिस तरह से पूरे जो हालात है, देख सकते हैं निचले इलाके में जल भरा हुआ है।
0: चिंता इस बात की है कि मौसम विभाग ने अभी भी बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। प्रशासन कह रहा है कि जब तक कोई बेहद जरूरी काम ना हो, घर से बाहर ना निकले। इधर भरूच में भी बारिश का रेड अलर्ट है। आसमान से जैसे आफत बरस रही है। शुक्रवार की सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है। निचले इलाके और मार्गों को बारिश के पानी ने जलमग्न कर दिया। भरूच, अंकलेश्वर, नेत्रंग, हासौट, झगड़िया, वालिया तहसील पानी पानी हो गई। जिले में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ एक्टिव है।
2: रेड अलर्ट के चलते सुबह से ही भारी बारिश के कारण आसमान से आफत रूपी बारिश ने पूरे जिले को पानी से लबालब कर दिया है। पिछले 10 घंटों में सबसे ज़्यादा नेत्रंग तहसील में 10.5 इंच बारिश बरस चुकी है, जिसके कारण मुख्य मार्ग और सभी जगह पे फिलहाल पानी ही पानी नजर आ रहा है। जनजीवन और यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है।
0: गुजरात के नर्मदा जिले में भी बुरा हाल है। यहाँ इतनी बारिश हुई कि करजन डैम से 50,000 क्यूसेक से भी ज्यादा पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से बाढ़ के हालात पैदा हो गए। भारी बारिश के कारण नर्मदा जिले के 28 गांवों को अलर्ट किया गया और 50 से ज्यादा लोग सुरक्षित स्थान पर लाए गए हैं। जिले के गरुड़ेश्वर तहसील में 5 इंच जितनी बारिश की वजह से गांवों को जोड़ने वाले कई रास्ते टूट चुके हैं। छोटा उदयपुर में अश्विन नदी में फंसे एक युवक को एनडीआरएफ टीम ने बचाया। युवक अपनी जान जोखिम में डालकर 4 घंटे तक 1.5 फुट की दीवार पर बैठा रहा था। पानी बढ़ता रहा लेकिन टीम ने आखिरकार युवक को बचा लिया।
3: हवामान विभाग की जो आगाही थी उसके अनुसार नर्मदा और छोटा उदयपुर में मूसलाधार बारिश हुई। आप तस्वीरों में देख पा रहे ये जो करजन नदी है, करजन नदी उफान हुए है क्योंकि जो करजन डैम है वहां से 50,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। इसके कारण नदी का फ्लो काफी बढ़ चुका है। साथ में छोटा उदयपुर जिले के अंदर जो अश्विनी नदी है वहां पे एक आदमी का रेस्क्यू किया गया था जहां पे वो पानी में फंस गया था। नर्मदा और छोटा उदयपुर जिले में भारी बारिश के कारण गांवों के अंदर जो नदियां उफान पे है और खास तौर पे जो आदिवासी इलाके हैं उनको रेस्क्यू करके बाहर लाया जा रहा है।
0: आज तक ब्यूरो।
4: अब रुख करते हैं पश्चिम एशिया की तरफ जहां पर आखिर क्या हुआ कि अमेरिका अब इसराइल के साथ मिलकर ईरान पर बहुत बड़े हमले करने की तैयारियों में जुट गया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।

0: मिसाइलें एक बार फिर गरज रही हैं। मेल मुलाकातों की डोर एक बार फिर टूटती दिख रही है। अमेरिका ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों को बम बरसाकर ध्वस्त करने का दावा किया है। इसके अलावा ईरान के किशम इलाके की ये तस्वीरें भी अमेरिका के ताजा हमलों से हुई तबाही की गवाह हैं। रिहायशी इलाके में मिसाइल के हमले से ये पूरा घर तबाह हो गया। धमाका इतना जबरदस्त था कि उससे काफी बड़ा गड्ढा भी हो गया। उधर ईरान भी जॉर्डन, बहरीन, कुवैत और मिस्र में अमेरिकी सैन्य बेस पर लगातार हमले कर रहा है। कुवैत पर उसने कई ड्रोन हमले किए, हालांकि कुवैत का दावा है कि इन्हें नाकाम कर दिया गया। इस बीच ओमान के तट के पास एक तेल टैंकर के बेहद करीब जोरदार धमाका हुआ है। हालांकि जहाज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन पूरे इलाके में अलर्ट जारी कर जांच शुरू कर दी गई है। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक ये हमला ओमान के खासाब से करीब 39 किलोमीटर दूर हुआ। लेकिन ट्रंप की मौजूदगी में हुई कैबिनेट की मीटिंग से जो खबरें आ रही हैं, वो ईरान की चिंता बढ़ाने वाली हैं। अमेरिकी मीडिया का दावा है कि अमेरिका और इजराइल ईरान के ऊर्जा ढांचे पर बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। आज या फिर कल ईरान के बिजली संयंत्रों और तेल रिफाइनरियों को बड़े पैमाने पर निशाना बनाया जा सकता है। ऐसे तमाम ठिकानों की सूची बना ली गई है। इस मीटिंग में ट्रंप बेहद गुस्से में थे। उनका साफ कहना था कि परमाणु हथियारों से जुड़ी डील के लिए घंटों खराब करने का कोई मतलब नहीं है।
1: We have great people talking. Marco's involved.
2: They're all involved. Talks aren't happening.
1: Very good people. We have the best people. But they'll make a deal. As an example, we'll talk about nuclear. And we'll be in there talking about nuclear for 7 hours. I say, why do you need 7? You can take 10 minutes. You have 5 minutes. You should solve it. But 7 hours. And then they'll go out. And I'll say, they discuss nuclear. And they'll go out and they'll say, we never discussed nuclear. And I say, why do they say that? All they do is make me angry.
0: तो क्या ईरान के इस रवैये से सीज फायर की संभावनाएं खत्म होती जा रही हैं? इस सवाल के जवाब में ट्रंप का साफ कहना था कि ईरान ने बातचीत को ईमानदारी से आगे नहीं बढ़ाया और भरोसा तोड़ा है।
1: Iran now. Iran is doing very poorly. Just in case you read incorrect stories, they're doing very, very poorly. They're having a hard time. They've been very dishonest. They've been very dishonorable to deal with. But that makes no difference. They're doing very, very poorly. Losing faith in them because they do lie and they do misrepresent.
0: इस अहम बैठक में जिस मूड में ट्रंप दिख रहे थे, उससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि इजराइल के साथ मिलकर अगले कुछ घंटों में अमेरिका ईरान पर ताबड़तोड़ हमले करने की तैयारी में जुटा है। ये हमले इस बार सिर्फ सैन्य ठिकानों पर नहीं होंगे, बल्कि अहम एनर्जी सेंटर तबाह किए जाएंगे। उधर ईरान ने दो टूक कह दिया है कि अगर अमेरिका ने एनर्जी सेंटरों पर हमले किए तो उसके सैन्य ठिकानों को तबाह करने में ईरान कोई कसर नहीं छोड़ेगा। आज तक ब्यूरो।
3: रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।

0: जेनजी को संदेश के बाद पीएम मोदी ने की युवा शक्ति की बात। मैसूरू में कहा कि देश की तरक्की में योगदान छात्रों को 21वीं सदी के लिए तैयार कर रही है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। शराबा चोरी पर प्रदर्शन को लेकर पप्पू यादव की बड़ी मुश्किलें। बीजेपी और साधु संतों ने वाराणसी में दर्ज कराया एफआईआर। राहुल गांधी का नाम भी, कई शहरों में प्रदर्शन। और सीमन को लेकर केंद्र पर भड़के राहुल, चेन्नई में कहा ये बीजेपी की बड़ी साजिश, समर्थन करने वाले तमिलनाडु को धोखा दे रहा है। पाकिस्तानी आतंकी संगठनों की हिट लिस्ट में सीएम शुभेंदु अधिकारी का नाम, बंगाल पुलिस का दावा। बर्दमान से हमीम मंडल की गिरफ्तारी के बाद खुलासा। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय महिला मुक्केबाजों का गोल्डन पंच, आज 5 बॉक्सरों ने जीता गोल्ड। भारत के खाते में अब तक 13 स्वर्ण। शुक्रवार को संसद में साधु के भेष में पप्पू यादव ने चंदा चोरी का वाला तंज वाला नाटक किया, जिसमें समाजवादी पार्टी कांग्रेस के नेता शामिल हुए। और अब पप्पू यादव के इस अभिनय पर संत समाज और हिंदू संगठन भड़के हुए, जिसे लेकर कई जगहों पर प्रदर्शन हुआ।
1: ये गुस्सा है पप्पू यादव के उस तमाशे के खिलाफ जो संसद में उन्होंने साधु के भेष में किया। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं, जहां पप्पू यादव के पुतले फूंके जा रहे हैं, नारेबाजी की जा रही है।
2: हमारे समाज को, हमारे सनातन समाज को जो ये कर रहा है, हम माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि इसके ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1 के अंतर्गत मुकदमा कायम करके जेल भेजे और इनके खिलाफ जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, संसद की सदस्यता भी समाप्त होना चाहिए।
1: दिल्ली के जंतर मंतर में विश्व हिंदू परिषद ने पप्पू यादव को लेकर सद्बुद्धि हवन की।
3: तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर एक सांकेतिक सद्बुद्धि हवन जो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा यहाँ पर रखा गया, तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूंगा कि दिल्ली भर से जो संत लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हैं।
1: भोपाल में भी भारी संख्या में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, जहाँ पप्पू यादव के साथ राहुल गांधी और अखिलेश यादव का विरोध किया गया, पुतला जलाया गया।
4: कई वर्षों तक राम मंदिर का विरोध करते रहे, सफल नहीं हो पाए। जब कोर्ट से सफल नहीं हुए तो लोकतंत्र के मंदिर के बाहर राम मंदिर को, राम जी को बदनाम करने की जिन्होंने कोशिश करी, चाहे राहुल गांधी हो, पप्पू यादव हो या अखिलेश यादव हो, इस प्रकार से ड्रामा करके राम जी को जिन्होंने बदनाम किया, ये उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया जा रहा है।
1: उधर दिल्ली के जहांगीरपुरी थाने में सांसद पप्पू यादव के खिलाफ शिकायत दी। वहीं वाराणसी में भी संत समाज की ओर से पप्पू यादव पर एक मुकदमा दर्ज कराया गया।
5: इसमें बीजेपी को घेरने के कहां से आ गई? इसमें बीजेपी का गेरुआ वस्त्र पहनने करके बाबा बन के घूमती है बीजेपी। आप बीजेपी को घेरो ना, किसने मना किया? आप बीजेपी से सवाल करो, बीजेपी के विपक्ष में आप बैठ जाओ, आप तमाम जो चीजें हैं उन पर, क्योंकि इनके पास तो कोई मुद्दे बचे नहीं है, तो अब यही मुद्दे उल्टे सीधे बचे हैं कि संतों का अपमान करेंगे। इन लोगों को ही लगता है कि संत समाज बीजेपी का समर्थन करती है, पर सत्य यह है कि संत समाज उसी का समर्थन करती है जो राम का समर्थन करती है, जो कृष्ण का समर्थन करती है, जो सनातन धर्म की रक्षा करती है।
1: इस बीच पप्पू यादव ने हंगामे के बीच इंस्टा पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो उन्हीं कपड़ों में पूजा करते नजर आ रहे हैं। वहीं पूरे मामले में पप्पू यादव की सफाई भी आई है।
6: आपको नहीं लगता कि आपने कुछ गलत किया है इस पूरे?
7: मतलब सनातन और मंदिर के सारे पैसे को, लुटेरे को उजागर करना और उसके खिलाफ लड़ना गलत है, मंदिर की रक्षा करना गलत है, मंदिर के पैसे की रक्षा करना गलत है, देश के 100 करोड़ का जो आस्था है मंदिर के प्रति उसकी रक्षा करना गलत है, हनुमान जी को नचाना सही है, गुड्डी में राम को उड़ाना सही है।
1: बहरहाल संसद में चंदा चोरी पर पप्पू यादव के नाटक ने नया सियासी घमासान शुरू कर दिया है। आज तक ब्यूरो।
0: अब आज पीएम मोदी के नए वीडियो संदेश की। पीएम मोदी ने शुक्रवार देर रात एक बार फिर से जेन जी को मैसेज दिया। रात तकरीबन 11 बजे के बाद पीएम मोदी इंस्टाग्राम पर लाइव आए, जहां उन्होंने अभद्र टिप्पणी करने वाले बच्चों को माफ करने की बात कही।

0: number one is India Gone.
1: 31 जुलाई की रात पीएम मोदी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट कर युवाओं को माफ कर दिया।
2: जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है।
1: हालांकि पीएम मोदी ने लड़कियों की भाषा पर हैरानी जताते हुए कहा कि जिस तरह कुछ बेटियों के मेरी माँ को गाली देते हुए वीडियो वायरल हुए उससे उन्हें कल्चरल शॉक लगा।
2: एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती है। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है।
1: हालांकि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और शिवसेना यूबीटी जैसे दल गाली देने वाले युवाओं को माफ कर देने वाले वीडियो पर भी हमलावर दिखे।
3: उनको ये पूछना चाहिए क्या इस देश के छात्र उनको माफ करेंगे? उनकी वजह से 35 दिन छात्रों को परेशान होना पड़ा, खुले छत के नीचे सोना पड़ा, लाठियां खानी पड़ी, पैलेट गन झेलनी पड़ी। प्रधानमंत्री जी को छात्र माफ करेंगे या नहीं, उनको देश के छात्रों से पूछना।
4: व्हाइट पद्धति ने पुरुष पोलिसांकडनं त्यांचे कपडे फाडले गेले, ज्या पद्धतीने तो व्हिडिओ मी पाहिला, एक ती मुलगी पुढे जाते आणि तो पोलीस पाठवून कसं तो मला बोलायला सुद्धा लाज वाटते। ज्या मुलांनी नीटच्या परीक्षेचा पेपर फुटला म्हणून आत्महत्या केली त्यांची पहिली माफी यांनी मागायला पाहिजे।
1: जहां बीजेपी कह रही है कि पीएम मोदी को 25 सालों में ना जाने कितनी गालियां दी गई फिर भी वो विचलित नहीं हुए, वहीं आम आदमी पार्टी बोली बीजेपी और पीएम मोदी को विक्टिम कार्ड खेलकर उसका सियासी फायदा उठाना बखूबी आता है।
5: देखो मोदी जी बहुत बड़े हृदय के व्यक्ति हैं और तभी शायद यहां तक पहुंचे हैं। और जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं पिछले 12 साल क्या बल्कि पिछले 25 साल में मोदी जी जब से मुख्यमंत्री रहे, प्रधानमंत्री रहे, जिस प्रकार से उन्होंने उनके ऊपर विपक्ष के द्वारा जो निजी हमले हुए, कभी उनको मौत का सौदागर कहा गया, कभी चौकीदार चोर है, कभी किस प्रकार से घृणित आरोप उनके ऊपर लगाए गए, निश्चित रूप से एक ये नई शुरुआत है। और मोदी जी ने जिस प्रकार का आह्वान किया है कि हम लोग देश के एक साथ लेकर देश को आगे बढ़े,
6: पूरे देश की मानसिकता को आपने दूषित

0: लाखों लाख गालियां दी हैं, मां की बहन की गालियां। मेरी आदत नहीं है रोने धोने की, आपकी आदत है। आपको कुछ भी होता है आप उसको कैश कराने के चक्कर में लग जाते हैं।
1: फिलहाल पीएम मोदी के माफी वाले वीडियो पर सियासी महाभारत थमती नहीं दिख रही। आज तक ब्यूरो।
2: यूपी में बन रहे बटेश्वर कॉरिडोर की, जिसके निर्माण में समाजवादी पार्टी ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया तो राजनीति गर्मा गई। बीजेपी ने हालांकि विपक्षी दलों पर पलटवार भी किया।
3: ये तस्वीरें आगरा में बन रहे बटेश्वर कॉरिडोर की है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इन तस्वीरों को साझा किया और कॉरिडोर के निर्माण में भारी अनियमितता, गड़बड़ी और भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया। साथ ही दावा ये भी किया कि शिकायतकर्ताओं को धमकाया जा रहा है।
4: समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने बटेश्वर महादेव का एक वीडियो जारी करके सोशल मीडिया पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी पर साफ तरीके से कहा है कि बिना बेस के निर्माण के पीवीसी वहां पर सीमेंटेड की जा रही है, यानी कि खामियों की बात की है।
3: यूपी में राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर पहले ही संग्राम जारी है। संसद तक इसे लेकर जंग छिड़ी है। इस बीच समाजवादी पार्टी ने धर्म आस्था से जुड़े एक और मुद्दे को उठाकर यूपी सरकार को घेरने की कोशिश की।
5: देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार वैसे तो ऊपर से लेकर के नीचे तक जो भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, लेकिन अब इन्होंने भगवानों को भी नहीं छोड़ा, इन्होंने मंदिरों को भी नहीं छोड़ा। आज जिस तरीके से बटेश्वर कॉरिडोर में जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है, जिस तरीके से मिलावट हो रहा है, जिस तरीके से निर्माण में अनियमितता हो रही है, उसको माने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने अपने पोस्ट में दर्शाने का काम किया। वीडियो फुटेजेस के साथ उन्होंने दर्शाने का काम किया।
6: भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में पहले भ्रष्टाचार होता है, फिर शिकायतकर्ताओं को धमकाया जाता है। बटेश्वर कॉरिडोर में भी यही हो रहा है, राम मंदिर के निर्माण में भी यही हो रहा है, चंदा चोरी में भी यही हो रहा है। जिस तरीके से एक्सप्रेस वे धस रहे हैं, उन सारी जगहों पर शिकायतकर्ताओं को तो धमकाया जा रहा है।
7: अखिलेश यादव जी की राजनीति अब केवल अफवाहों पर और आरोप पर तक सीमित रह गई है। बिना किसी ठोस प्रमाण के वे कुछ भी कहते रहते हैं। अगर उनके पास कोई ठोस प्रमाण है तो निश्चित रूप से जांच एजेंसी को दें। हमारी सरकार हर विषय पर जांच कराने के लिए तैयार है।
3: विपक्ष के हमलों और बीजेपी के पलटवार के बीच बटेश्वर कॉरिडोर पर नई राजनीति शुरू हो गई। एक और धार्मिक क्षेत्र को लेकर विपक्ष और बीजेपी अब आमने सामने आ गए हैं। आशीष श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
2: बात अब जम्मू कश्मीर की, जहां कुलगाम से बड़ी खबर आई है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम के केलाम इलाके में आतंकवादियों ने दो गैर कश्मीरी मजदूरों को गोली मार दी। आतंकी हमले में एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। दोनों ही मजदूर छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। इस हमले के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की और सर्च ऑपरेशन जारी है।
8: एक बार फिर जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने मजदूरों को टारगेट किया। एक बार फिर गैर कश्मीरी मजदूरों को निशाना बनाकर आतंकी हमला हुआ। ये वारदात कुलगाम के केल्लाम इलाके में हुई, जहां ईंट भट्टे पर काम करने वाले दो मजदूर आतंकी हमले में मारे गए।
9: रात में टारगेटेड अटैक हुआ, जहां जैसे आपने कहा, फिर एक बार नॉन लोकल जो लेबरर थे, यानी कि मजदूर थे, एक जो ईंटों का कारखाना होता है वहां काम करते थे, और तकरीबन 8:30 बजे बाइक पे जो है दो आतंकी उनके करीब आए और गोलियों की बौछार कर दी। दोनों जो हैं काफी गंभीर रूप से घायल हुए, लेकिन एक की मृत्यु जो है मौके पे हुई, दूसरा उसको इवैक्यूएट किया गया हॉस्पिटल। और अभी खबर मिली है कि श्रीनगर के जो शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, वहां उनकी जो है मौत हो गई है। तो दो लेबरर अब इसमें मारे गए हैं। सुरक्षा एजेंसीज ने इसके बाद जो है पूरे इलाके को घेर के जो एसओपी रहता है तलाशी अभियान शुरू किया है, लेकिन 4 साल के बाद ऐसी जो है घटना हुई है, नई नहीं है। जैसे आपने कहा, इससे पहले भी जो सॉफ्ट टारगेट्स हैं ये नॉन लोकल लेबरर्स, इनको टारगेट किया गया है।
8: वारदात की खबर मिलते ही सुरक्षा बल एक्शन में आए, पूरे इलाके की घेराबंदी दी और हमलावर आतंकियों की तलाश में चप्पे चप्पे की जांच शुरू हो गई। मजदूरों को टारगेट कर जम्मू कश्मीर में हुआ यह हमला इसलिए बेहद गंभीर और चिंताजनक है, क्योंकि ऐसी आतंकी वारदात करीब 4 साल बाद दोहराई गई है, जिसके बाद से सुरक्षा एजेंसियां भी काफी चौकन्ना हो गई हैं। आतंकी संगठन लश्कर से जुड़े संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF कुलगाम में हुए हमले की जिम्मेदारी ली है, जिससे साफ है कि इस हमले की

0: साजिश सीमा पार से रची गई।
1: फिर एक बार जो लश्कर का शेडो है द रेजिस्टेंस फ्रंट, उन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली है और साफ तौर पे इसके बाद सुरक्षा जो है काफी बढ़ा दी गई। हम श्रीनगर से यहाँ की तरफ आए, जगह जगह जो है चेक पॉइंट्स लगाए गए हैं और यहाँ भी जैसे आप देख सकते हैं सुरक्षा बलों के जवान जो है नाकाबंदी लगाई हुई है। पुलिस है, CRPF है, जो भी गाड़ी यहां से जा रही है उसको चेक किया जा रहा है और इंटेल बेस्ड जो है सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन अभी जगह जगह चल रहा है। लेकिन साफ तौर पर ये चिंता का विषय है सुरक्षा एजेंसी के लिए, क्योंकि कोई ना कोई मॉड्यूल है, स्लीपर सेल है लश्कर का जो एक्टिवेट हो गया है, उनको साफ तौर पे उस तरफ से आदेश है कि आप एक्टिवेट हो जाइए, टारगेट्स को हिट कीजिए। और इससे पहले 2021-22 में एक सिलसिला चला था जहां कश्मीरी पंडित और नॉन लोकल लेबरर्स को टारगेट किया गया था, बिल्कुल इसी तरीके से ज्यादातर दक्षिणी कश्मीर में, और इस बार फिर एक बार यह सिलसिला जो है शुरू होता दिख रहा है।
0: जम्मू कश्मीर में जो दो मजदूर आतंकी हमले में मारे गए वो दोनों ही छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। छत्तीसगढ़ के CM विष्णुदेव साय ने इसे कायराना हमला करार करते हुए मजदूरों की मौत पर शोक जताया है। उधर सुरक्षा बल लगातार आतंकियों की तलाश में लगे हैं ताकि टारगेट किलिंग करने वाले आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। कुलगाम से मीर फरीद आज तक।
2: कुलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर स्थानीय लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया, वहीं मामले पर सियासत भी तेज है।

0: पाकिस्तान की इस गुस्ताखी का गुस्सा कश्मीर की आवाम पर नजर आ रहा है। स्थानीय लोगों ने मजदूरों की हत्या पर कैंडल जलाई तो है पाकिस्तान का विरोध भी किया।
1: ये हमारी रियासत जम्मू कश्मीर को बदनाम करने के लिए जो एक अमन की फिजा यहाँ पे कायम हुई है, टूरिस्ट आज इतनी पूरी दुनिया से यहाँ पे आ रहे हैं, इतना अमन से इलेक्शन यहाँ पे हुए हैं, यहाँ पे एक अमन की बहुत बड़ी फिजा कायम हुई है, उसको बदनाम करने के लिए चंद अनासर जो हैं वो उस पार से यहाँ बदमनी फैलाना चाहते हैं और जम्मू कश्मीर के आवाम को बदनाम करना चाहते हैं।
0: उधर जम्मू कश्मीर के CM उमर अब्दुल्ला हमले की निंदा कर रहे हैं तो महबूबा मुफ्ती सुरक्षा के इंतजामों पर सवाल खड़े कर रही हैं।
2: बाहर से जो लोग कश्मीर में काम करने आए थे, थोड़ी इज्जत की रोजी रोटी कमाने आए थे, उन बेगुनाह लोगों को इस तरह निशाना बनाया गया। इस हमले की जितनी निंदा की जाए कम है।
3: जो सिक्योरिटी है, जो यहाँ इतना सिक्योरिटी की वजह से लोगों को इतना अजाब है लोगों पे, उसके बावजूद ये इंसिडेंट्स होना मुझे लगता है कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में कोताही है।
0: इस हमले के बीच फारूक अब्दुल्ला के बयान ने घाटी की सियासत को गर्म कर दिया है। फारूक अब्दुल्ला ने शंका जताई कि आखिर कश्मीर में स्टेटहुड की मांग के समय ही हमला क्यों होता है।
4: मुझे नहीं पता ये क्यों उस वक्त होता है जब हम लोग स्टेटहुड मांग रहे होते हैं।
5: डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कुलगाम में हुए आतंकवादी हमला जिसमें 2 मजदूरों को निशाना बनाया गया है, उस हमले को लेकर स्टेटहुड के साथ उस हमले को जोड़ा है। ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने दिया है, उन्हें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए।
0: एक ओर पाकिस्तान से POK नहीं संभल रहा तो दूसरी ओर घाटी में माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मजदूरों को निशाना बनाना बताता है कि आतंकी कितना बौखलाए हुए हैं।
6: मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ऐसी ही जो ईंटें यहाँ जहाँ बनती हैं, ईंटों का भट्टा था और वहां वो काम कर रहे थे। 8:30 बजे का समय था जब बाहर काम के बाद वो लोग खड़े थे और जो मिलिटेंट हैं, 2 उनकी संख्या बताई जाती है, बाइक पे आके काफी करीब से उन पे गोलियां चलाई, दोनों की इसमें मौत हो गई। और
7: हमारे बाबूजी ने कह रखा कि रोड पे जाना इसमें मना है, अपने बस यहीं रहना है मरिया के अंदर में।
6: अच्छा, बाहर नहीं घूमना?
7: बाहर नहीं घूमना बस,
6: खासकर शाम वाम के समय।
7: हाँ, शाम वाम समय
8: पहली बात हम लोग जाते ही नहीं है ऑटो बंदे। हम ऑटो बंदे शाम में घर में ही रहते हैं,
6: यहीं रहते हैं,
8: बस यहीं रहते
0: हैं। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ मीर फरीद, कुलगाम आज तक। बात अब गुजरात की करेंगे जहां एक बार फिर बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं और साउथ गुजरात के बहुत सारे जिले पहले प्रभावित हुए थे, कई शहरों में बाढ़ आई थी, अब एक बार फिर से हालात बहुत बुरे हैं। सूरत, नवसारी, डांग, खेड़ा, भरूच जिलों में हाल बेहाल है।

0: गुजरात में एक बार फिर से भारी बारिश के बाद कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं और फिर से दक्षिण गुजरात के ही जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। नवसारी और डांग जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण अंबिका और पूर्णा नदी उफान पर है। डांग के सुबीर तालुका में करीब 8 इंच बारिश दर्ज होने के बाद पूर्णा नदी समेत अन्य नदी नालों में बहुत ज्यादा पानी भर गया, तो पूर्णा नदी का जलस्तर बढ़ने से गोदड़िया पुल के ऊपर से पानी बहता दिखाई दे रहा है। यह हालात बहुत खतरनाक हैं। आसपास के इलाकों में बाढ़ की आशंका बढ़ गई। नवसारी में प्रशासन अलर्ट पर है क्योंकि पूर्णा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। नवसारी शहर में लगातार बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई। इधर भावनगर में भी हालात बिगड़ने लगे हैं। यहां जिले के पालीताना, जेसर, तलाजा, सीहोर, बगदाना, सोनगढ़, गोघा, अलंग और अन्य इलाकों में बारिश हुई। पालीताना में भारी बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया। सूरत शहर में भी शुक्रवार तड़के से ही मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। लगातार हो रही तेज बारिश के कारण शहर के कई निचले हिस्सों में जलभराव की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई। शहर के कई निचले इलाकों में सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया। गुजरात के खेड़ा जिले की सभी तहसीलों में भी शुक्रवार को सुबह से ही मूसलाधार बारिश जारी रही। नादियाद में भारी तबाही हुई। पूरा नादियाद शहर जलमग्न हो चुका है। सड़कें समंदर बन चुकी हैं और निचले इलाकों में जलभराव से इलाके टापू में तब्दील हो गए। सिर्फ 6 घंटे में ही 133 से 191 मिलीमीटर की बारिश दर्ज की गई।
1: जिस तरह से दो दिन पूरे गुजरात में हाई अलर्ट जारी किया गया है, हम अभी खेड़ा जिले के नड़ियाद में है। नड़ियाद में अब तक तकरीबन 7 इंच से ज्यादा जो है वो बारिश दर्ज की गई है, जिसके चलते जो निचले इलाके हैं वो प्रभावित हुए हैं। निचले इलाके में जिस तरह से जल भरा हुआ है, प्रशासन पहले से अलर्ट था, जिसके चलते पूरी व्यवस्था है जो की गई है। यहाँ पर जिस तरह से निचले इलाके में अस्पतालें आई हुई है, अस्पताल में आने जाने के लिए दर्दी जो है उनके लिए जो ट्रैक्टर ट्रॉली की जो है वो व्यवस्था की गई है, जिससे लोगों को आसानी रहे। साथ ही प्रशासन ने पहले से ही अपील कर दी थी कि लोग काम के अलावा बाहर न निकले। साथ ही जिस तरह से पूरे जो हालात है देख सकते हैं, निचले इलाके में जल भरा हुआ है।
0: चिंता इस बात की है कि मौसम विभाग ने अभी भी बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। प्रशासन कह रहा है कि जब तक कोई बेहद जरूरी काम ना हो घर से बाहर ना निकले। इधर भरूच में भी बारिश का रेड अलर्ट है। आसमान से जैसे आफत बरस रही है। शुक्रवार की सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है। निचले इलाके और मार्गों को बारिश के पानी ने जलमग्न कर दिया। भरूच, अंकलेश्वर, नेत्रंग, हासौट, जगड़िया, वालिया तहसील पानी पानी हो गई। जिले में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ एक्टिव है।
2: रेड अलर्ट के चलते सुबह से ही भारी बारिश के कारण आसमान से आफत रूपी बारिश ने पूरे जिले को पानी से लबालब कर दिया है। पिछले 10 घंटों में सबसे ज़्यादा नेत्रंग तहसील में 10.5 इंच बारिश बरस चुकी है, जिसके कारण मुख्य मार्ग और सभी जगह पे फिलहाल पानी ही पानी नजर आ रहा है। जनजीवन और यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है।
0: गुजरात के नर्मदा जिले में भी बुरा हाल है। यहाँ इतनी बारिश हुई कि करजन डैम से 50,000 क्यूसेक से भी ज्यादा पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से बाढ़ के हालात पैदा हो गए। भारी बारिश के कारण नर्मदा जिले के 28 गांवों को अलर्ट किया गया और 50 से ज्यादा लोग सुरक्षित स्थान पर लाए गए हैं। जिले के गरुड़ेश्वर तहसील में 5 इंच जितनी बारिश की वजह से गांवों को जोड़ने वाले कई रास्ते टूट चुके हैं। छोटा उदयपुर में अश्विन नदी में फंसे एक युवक को एनडीआरएफ टीम ने बचाया। युवक अपनी जान जोखिम में डालकर 4 घंटे तक 1.5 फुट की दीवार पर बैठा रहा था। पानी बढ़ता रहा लेकिन टीम ने आखिरकार युवक को बचा लिया।
3: हवामान विभाग की जो आगाही थी उसके अनुसार नर्मदा और छोटा दीपुर में मूसलाधार बारिश हुई। आप तस्वीरों में देख पा रहे ये जो करजन नदी है, करजन नदी उफान हुए है क्योंकि जो करजन डैम है वहां से 50,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। इसके कारण नदी का फ्लो काफी बढ़ चुका है। साथ में छोटादेवपुर जिले के अंदर जो अश्विनी नदी है वहां पे एक आदमी का रेस्क्यू किया गया था जहां पे वो पानी में फंस गया था। नर्मदा और छोटादेवपुर जिले में भारी बारिश के कारण गांवों के अंदर जो नदियां उफान पे है और खास तौर पे जो आदिवासी इलाके हैं उनको रेस्क्यू करके बाहर लाया जा रहा है।
0: आज तक ब्यूरो
4: अब रुख करते हैं पश्चिम एशिया की तरफ जहां पर आखिर क्या हुआ कि अमेरिका अब इसराइल के साथ मिलकर ईरान पर बहुत बड़े हमले करने की तैयारियों में जुट गया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।

0: मिसाइलें एक बार फिर गरज रही है। मेल मुलाकातों की डोर एक बार फिर टूटती दिख रही है। अमेरिका ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों को बम बरसाकर ध्वस्त करने का दावा किया है। इसके अलावा ईरान के किशम इलाके की ये तस्वीरें भी अमेरिका के ताजा हमलों से हुई तबाही की गवाह हैं। रिहायशी इलाके में मिसाइल के हमले से ये पूरा घर तबाह हो गया। धमाका इतना जबरदस्त था कि उससे काफी बड़ा गड्ढा भी हो गया। उधर ईरान भी जॉर्डन, बहरीन, कुवैत और मिस्र में अमेरिकी सैन्य बेस पर लगातार हमले कर रहा है। कुवैत पर उसने कई ड्रोन हमले किए, हालांकि कुवैत का दावा है कि इन्हें नाकाम कर दिया गया। इस बीच ओमान के तट के पास एक तेल टैंकर के बेहद करीब जोरदार धमाका हुआ है। हालांकि जहाज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन पूरे इलाके में अलर्ट जारी कर जांच शुरू कर दी गई है। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक ये हमला ओमान के खासाब से करीब 39 किलोमीटर दूर हुआ। लेकिन ट्रंप की मौजूदगी में हुई कैबिनेट की मीटिंग से जो खबरें आ रही हैं, वो ईरान की चिंता बढ़ाने वाली हैं। अमेरिकी मीडिया का दावा है कि अमेरिका और इजराइल ईरान के ऊर्जा ढांचे पर बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। आज या फिर कल ईरान के बिजली संयंत्रों और तेल रिफाइनरियों को बड़े पैमाने पर निशाना बनाया जा सकता है। ऐसे तमाम ठिकानों की सूची बना ली गई है। इस मीटिंग में ट्रंप बेहद गुस्से में थे। उनका साफ कहना था कि परमाणु हथियारों से जुड़ी डील के लिए घंटों खराब करने का कोई मतलब नहीं है।
1: We have great people talking. Marco's involved.
2: They're all involved. Talks aren't happening.
1: Very good people. We have the best people. But they'll make a deal. As an example, we'll talk about nuclear. And we'll be in there talking about nuclear for 7 hours. I say, why do you need 7? You can take 10 minutes. You have 5 minutes. You should solve it. But 7 hours. And then they'll go out. And I'll say, they discuss nuclear. And they'll go out and they'll say, we never discussed nuclear. And I say, why do they say that? All they do is make me angry.
0: तो क्या ईरान के इस रवैये से सीज फायर की संभावनाएं खत्म होती जा रही हैं? इस सवाल के जवाब में ट्रंप का साफ कहना था कि ईरान ने बातचीत को ईमानदारी से आगे नहीं बढ़ाया और भरोसा तोड़ा है।
1: And Iran now, Iran is doing very poorly. Just in case you read incorrect stories, they're doing very, very poorly. They're having a hard time. They've been very dishonest. They've been very dishonorable to deal with. But that makes no difference. They're doing very, very poorly. Losing faith in them because they do lie and they do misrepresent.
0: इस अहम बैठक में जिस मूड में ट्रंप दिख रहे थे, उससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि इजराइल के साथ मिलकर अगले कुछ घंटों में अमेरिका ईरान पर ताबड़तोड़ हमले करने की तैयारी में जुटा है। ये हमले इस बार सिर्फ सैन्य ठिकानों पर नहीं होंगे, बल्कि अहम एनर्जी सेंटर तबाह किए जाएंगे। उधर ईरान ने दो टूक कह दिया है कि अगर अमेरिका ने एनर्जी सेंटरों पर हमले किए तो उसके सैन्य ठिकानों को तबाह करने में ईरान कोई कसर नहीं छोड़ेगा। आज तक ब्यूरो।
3: रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।

0: जेन जी को संदेश के बाद पीएम मोदी ने की युवा शक्ति की बात। मैसूरू में कहा कि देश की तरक्की में योगदान छात्रों को 21वीं सदी के लिए तैयार कर रही है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। चढ़ावा चोरी पर प्रदर्शन को लेकर पप्पू यादव की बड़ी मुश्किलें। बीजेपी और साधु संतों ने वाराणसी में दर्ज कराया एफआईआर। राहुल गांधी का नाम भी, कई शहरों में प्रदर्शन। और इस सीमन को लेकर केंद्र पर भड़के राहुल। चेन्नई में कहा यह बीजेपी की बड़ी साजिश, समर्थन करने वाले तमिलनाडु को धोखा दे रहा है। पाकिस्तानी आतंकी संगठनों की हिट लिस्ट में सीएम शुभेंदु अधिकारी का नाम। बंगाल पुलिस का दावा, बर्दमान से हमीम मंडल की गिरफ्तारी के बाद खुलासा। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय महिला मुक्केबाजों का गोल्डन पंच। आज 5 बॉक्सरों ने जीता गोल्ड। भारत के खाते में अब तक 13 स्वर्ण। शुक्रवार को संसद में साधु के भेष में पप्पू यादव ने चंदा चोरी का वाला तंज वाला नाटक किया, जिसमें समाजवादी पार्टी कांग्रेस के नेता शामिल हुए और अब पप्पू यादव के इस अभिनय पर संत समाज और हिंदू संगठन भड़के हुए, जिसे लेकर कई जगहों पर प्रदर्शन हुआ। ये गुस्सा है पप्पू यादव के उस तमाशे के खिलाफ जो संसद में उन्होंने साधु के भेष में किया। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, जहां पप्पू यादव के पुतले फूंके जा रहे हैं, नारेबाजी की जा रही है।
1: हमारे समाज को, हमारे सनातन समाज को जो कर रहा है, हम माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि इसके ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1 के अंतर्गत मुकदमा कायम करके जेल भेजे और इनके खिलाफ जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, संसद की सदस्यता भी समाप्त होना चाहिए।
0: दिल्ली के जंतर मंतर में विश्व हिंदू परिषद ने पप्पू यादव को लेकर सद्बुद्धि हवन की।
2: तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर एक सांकेतिक सद्बुद्धि हवन जो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा यहाँ पर रखा गया, तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूंगा कि दिल्ली भर से जो संत लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हैं।
0: भोपाल में भी भारी संख्या में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, जहाँ पप्पू यादव के साथ राहुल गांधी और अखिलेश यादव का विरोध किया गया, पुतला जलाया गया।
3: कई वर्षों तक राम मंदिर का विरोध करते रहे, सफल नहीं हो पाए। जब कोर्ट से सफल नहीं हुए तो लोकतंत्र के मंदिर के बाहर राम मंदिर को, राम जी को बदनाम करने की जिन्होंने कोशिश करी, चाहे राहुल गांधी हो, पप्पू यादव हो या अखिलेश यादव हो, इस प्रकार से ड्रामा करके राम जी को जिन्होंने बदनाम किया, ये उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया जा रहा है।
0: उधर दिल्ली के जहांगीरपुरी थाने में सांसद पप्पू यादव के खिलाफ शिकायत दी। वहीं वाराणसी में भी संत समाज की ओर से पप्पू यादव पर एक मुकदमा दर्ज कराया गया है।
4: इसमें बीजेपी को घेरने के कहां से आ गई? इसमें बीजेपी का गेरुआ वस्त्र पहनने करके बाबा बन के घूमती है बीजेपी। आप बीजेपी को घेरो ना, किसने मना किया? आप बीजेपी से सवाल करो, बीजेपी के विपक्ष में आप बैठ जाओ, आप तमाम जो चीजें हैं उन पर, क्योंकि इनके पास तो कोई मुद्दे बचे नहीं है, तो अब यही मुद्दे उल्टे सीधे बचे हैं कि संतों का अपमान करेंगे। इन लोगों को ही लगता है कि संत समाज बीजेपी का समर्थन करती है, पर सत्य यह है कि संत समाज उसी का समर्थन करती है जो राम का समर्थन करती है, जो कृष्ण का समर्थन करती है, जो सनातन धर्म की रक्षा करती है।
0: इस बीच पप्पू यादव ने हंगामे के बीच इंस्टा पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो उन्हीं कपड़ों में पूजा करते नजर आ रहे हैं। वहीं पूरे मामले में पप्पू यादव की सफाई भी आई है।
5: आपको नहीं लगता कि आपने कुछ गलत किया है इस पूरे?
6: मतलब सनातन और मंदिर के सारे पैसे को लुटेरे को उजागर करना और उसके खिलाफ लड़ना गलत है, मंदिर की रक्षा करना गलत है, मंदिर के पैसे की रक्षा करना गलत है, देश के 100 करोड़ का जो आस्था है मंदिर के प्रति उसकी रक्षा करना गलत है, हनुमान जी को नचाना सही है, गुड्डी में राम को उड़ाना सही है।
0: बहरहाल संसद में चंदा चोरी पर पप्पू यादव के नाटक ने नया सियासी घमासान शुरू कर दिया है। आज तक ब्यूरो।
7: अब आज पीएम मोदी के नए वीडियो संदेश की। पीएम मोदी ने शुक्रवार देर रात एक बार फिर से जेन जी को मैसेज दिया।
0: रात तकरीबन 11 बजे के बाद पीएम मोदी इंस्टाग्राम पर लाइव आए, जहां उन्होंने अभद्र टिप्पणी करने वाले बच्चों को माफ करने की बात कही।

0: नंबर वन इज़ गेम बॉल। 31 जुलाई की रात पीएम मोदी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट कर युवाओं को माफ कर दिया।
1: जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है।
0: हालांकि पीएम मोदी ने लड़कियों की भाषा पर हैरानी जताते हुए कहा कि जिस तरह कुछ बेटियों के मेरी माँ को गाली देते हुए वीडियो वायरल हुए उससे उन्हें कल्चरल शॉक लगा।
1: एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है।
0: हालांकि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और शिवसेना यूबीटी जैसे दल गाली देने वाले युवाओं को माफ कर देने वाले वीडियो पर भी हमलावर दिखे।
2: उनको ये पूछना चाहिए क्या इस देश के छात्र उनको माफ करेंगे? उनकी वजह से 35 दिन छात्रों को परेशान होना पड़ा, खुले छत के नीचे सोना पड़ा, लाठियां खानी पड़ी, पैलेट गन झेलनी पड़ी। प्रधानमंत्री जी को छात्र माफ करेंगे या नहीं, उनको देश के छात्रों से पूछना।
3: व्हाइट पद्धति ने पुरुष पोलिसांकडनं त्यांचे कपडे फाडले गेले, ज्या पद्धतीने तो व्हिडिओ मी पाहिला, एक ती मुलगी पुढे जाते आणि तो पोलीस पाठवून कसा तो मला बोलायला सुद्धा लाज वाटते। ज्या मुलांनी नीटच्या परीक्षेचा पेपर फुटला म्हणून आत्महत्या केली त्यांची पहिली माफी यांनी मागायला पाहिजे।
0: जहां बीजेपी कह रही है कि पीएम मोदी को 25 सालों में ना जाने कितनी गालियां दी गई फिर भी वो विचलित नहीं हुए, वहीं आम आदमी पार्टी बोली बीजेपी और पीएम मोदी को विक्टिम कार्ड खेलकर उसका सियासी फायदा उठाना बखूबी आता है।
4: देखो मोदी जी बहुत बड़े हृदय के व्यक्ति हैं और तभी शायद यहां तक पहुंचे हैं। और जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं पिछले 25 साल में मोदी जी जब से मुख्यमंत्री रहे, प्रधानमंत्री रहे, जिस प्रकार से उन्होंने उनके ऊपर विपक्ष के द्वारा जो निजी हमले हुए, कभी उनको मौत का सौदागर कहा गया, कभी चौकीदार चोर है, कभी किस प्रकार से घृणित आरोप उनके ऊपर लगाए गए, निश्चित रूप से एक ये नई शुरुआत है। और मोदी जी ने जिस प्रकार का आह्वान किया है कि हम लोग देश के एक साथ लेकर देश को आगे बढ़े,
5: पूरे देश की मानसिकता को आपने दूषित कर दिया है। मैं कोई ट्वीट करता हूं उसके नीचे इतनी भद्दी भद्दी टिप्पणियां, लाखों गालियां। आज तक अगर मेरे सारे ट्वीट उठा लिए जाएं और उसके नीचे की गालियां उठा ली जाएं जो आपके समर्थक आपके लोगों ने दी हैं, लाखों लाख गालियां दी हैं, माँ की बहन की गालियां। मेरी आदत नहीं है रोने धोने की, आपकी आदत है। आपको कुछ भी होता है आप उसको कैश कराने के चक्कर में लग जाते हैं।
0: फिलहाल पीएम मोदी के माफी वाले वीडियो पर सियासी महाभारत थमती नहीं दिख रही। आज तक ब्यूरो।
6: यूपी में बन रहे बटेश्वर कॉरिडोर की, जिसके निर्माण में समाजवादी पार्टी ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया तो राजनीति गर्मा गई। बीजेपी ने हालांकि विपक्षी दलों पर पलटवार भी किया।
7: ये तस्वीरें आगरा में बन रहे बटेश्वर कॉरिडोर की है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इन तस्वीरों को साझा किया और कॉरिडोर के निर्माण में भारी अनियमितता, गड़बड़ी और भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया। साथ ही दावा ये भी किया कि शिकायतकर्ताओं को धमकाया जा रहा है।
8: समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने बटेश्वर महादेव का एक वीडियो जारी करके सोशल मीडिया पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी पर साफ तरीके से कहा है कि बिना बेस के निर्माण के पीवीसी वहां पर सीमेंटेड की जा रही है, यानी कि खामियों की बात की है।
7: यूपी में राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर पहले ही संग्राम जारी है। संसद तक इसे लेकर जंग छिड़ी है। इस बीच समाजवादी पार्टी ने धर्म आस्था से जुड़े एक और मुद्दे को उठाकर यूपी सरकार को घेरने की कोशिश की।
9: देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार वैसे तो ऊपर से लेकर के नीचे तक जो भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, लेकिन अब इन्होंने भगवानों को भी नहीं छोड़ा, इन्होंने मंदिरों को भी नहीं छोड़ा। आज जिस तरीके से बटेश्वर कॉरिडोर में जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है, जिस तरीके से मिलावट हो रहा है, जिस तरीके से निर्माण में अनियमितता हो रही है, उसको माने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने अपने पोस्ट में दर्शाने का काम किया, वीडियो फुटेजेस के साथ उन्होंने दर्शाने का काम किया।
10: भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में पहले भ्रष्टाचार होता है और फिर शिकायतकर्ताओं को धमकाया जाता है। बटेश्वर कॉरिडोर में भी यही हो रहा है, राम मंदिर के निर्माण में भी यही हो रहा है, चंदा चोरी में भी यही हो रहा है। जिस तरीके से एक्सप्रेस वे धस रहे हैं, उन सारी जगहों पर शिकायतकर्ताओं को तो धमकाया जा रहा है।
11: अखिलेश यादव जी की राजनीति अब केवल अफवाहों पर और आरोप पर तक सीमित रह गई है। बिना किसी ठोस प्रमाण के वे कुछ भी कहते रहते हैं। अगर उनके पास कोई ठोस प्रमाण है तो निश्चित रूप से जांच एजेंसी को दें। हमारी सरकार हर विषय पर जांच कराने के लिए तैयार है।
7: विपक्ष के हमलों और बीजेपी के पलटवार के बीच बटेश्वर कॉरिडोर पर नई राजनीति शुरू हो गई। एक और धार्मिक क्षेत्र को लेकर विपक्ष और बीजेपी अब आमने सामने आ गए हैं। आशीष श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
6: बात अब जम्मू कश्मीर की, जहां कुलगाम से बड़ी खबर आई है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम के केलाम इलाके में आतंकवादियों ने दो गैर कश्मीरी मजदूरों को गोली मार दी। आतंकी हमले में एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। दोनों ही मजदूर छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। इस हमले के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की और सर्च ऑपरेशन जारी है।
12: एक बार फिर जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने मजदूरों को टारगेट किया। एक बार फिर गैर कश्मीरी मजदूरों को निशाना बनाकर आतंकी हमला हुआ। ये वारदात कुलगाम के केल्लाम इलाके में हुई, जहां ईंट भट्टे पर काम करने वाले दो मजदूर आतंकी हमले में मारे गए।
13: रात में टारगेटेड अटैक हुआ, जहां जैसे आपने कहा, फिर एक बार नॉन लोकल जो लेबरर थे, यानी कि मजदूर थे, एक जो ईंटों का कारखाना होता है वहां काम करते थे, और तकरीबन 8:30 बजे बाइक पे जो है दो आतंकी उनके करीब आए और गोलियों की बौछार कर दी। दोनों जो हैं काफी गंभीर रूप से घायल हुए, लेकिन एक की मृत्यु जो है मौके पे हुई, दूसरा उसको इवैक्यूएट किया गया हॉस्पिटल। और अभी खबर मिली है कि श्रीनगर के जो शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, वहां उनकी जो है मौत हो गई है। तो दो लेबरर अब इसमें मारे गए हैं। सुरक्षा एजेंसीज ने इसके बाद जो है पूरे इलाके को घेर के जो एसओपी रहता है तलाशी अभियान शुरू किया है, लेकिन 4 साल के बाद ऐसी जो है घटना हुई है, नई नहीं है। जैसे आपने कहा, इससे पहले भी जो सॉफ्ट टारगेट्स हैं ये नॉन लोकल लेबरर्स, इनको टारगेट किया गया है।
12: वारदात की खबर मिलते ही सुरक्षा बल एक्शन में आए, पूरे इलाके की घेराबंदी दी और हमलावर आतंकियों की तलाश में चप्पे चप्पे की जांच शुरू हो गई। मजदूरों को टारगेट कर जम्मू कश्मीर में हुआ यह हमला इसलिए बेहद गंभीर और चिंताजनक है, क्योंकि ऐसी आतंकी वारदात करीब 4 साल बाद दोहराई गई है, जिसके बाद से सुरक्षा एजेंसियां भी काफी चौकन्ना हो गई हैं। आतंकी संगठन लश्कर से जुड़े संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF कुलगाम में हुए हमले की जिम्मेदारी ली है, जिससे साफ है कि इस हमले की साजिश सीमा पार से रची गई।
13: फिर एक बार जो लश्कर का शेडो है द रेजिस्टेंस फ्रंट, उन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली है और साफ तौर पे इसके बाद सुरक्षा जो है काफी बढ़ा दी गई। हम श्रीनगर से यहाँ की तरफ आए, जगह जगह जो है चेक पॉइंट्स लगाए गए हैं और यहाँ भी जैसे आप देख सकते हैं सुरक्षा बलों के जवान जो है नाकाबंदी लगाई हुई है। पुलिस है, CRPF है, जो भी गाड़ी यहां से जा रही है उसको चेक किया जा रहा है और इंटेल बेस जो है सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन अभी जगह जगह चल रहा है। लेकिन साफ तौर पर ये चिंता का विषय है सुरक्षा एजेंसीज के लिए, क्योंकि कोई ना कोई मॉड्यूल है, स्लीपर सेल है लश्कर का जो एक्टिवेट हो गया है, उनको साफ तौर पे उस तरफ से आदेश है कि आप एक्टिवेट हो जाइए, टारगेट्स को हिट कीजिए। और इससे पहले 2021-22 में एक सिलसिला चला था जहां कश्मीरी पंडित और नॉन लोकल लेबरर्स को टारगेट किया गया था, बिल्कुल इसी तरीके से ज्यादातर दक्षिणी कश्मीर में, और इस बार फिर एक बार ये सिलसिला जो है शुरू होता दिख रहा है।
12: जम्मू कश्मीर में जो दो मजदूर आतंकी हमले में मारे गए, वो दोनों ही छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। छत्तीसगढ़ के CM विष्णुदेव साय ने इसे कायराना हमला करार करते हुए मजदूरों की मौत पर शोक जताया है। उधर सुरक्षा बल लगातार आतंकियों की तलाश में लगे हैं, ताकि टारगेट किलिंग करने वाले आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। कुलगाम से मीर फरीद आज तक।
6: कुलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर स्थानीय लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया, वहीं मामले पर सियासत भी तेज है।

0: पाकिस्तान के इस गुस्ताखी का गुस्सा कश्मीर की आवाम पर नजर आ रहा है। स्थानीय लोगों ने मजदूरों की हत्या पर कैंडल जलाई तो ही पाकिस्तान का विरोध भी किया।
1: ये हमारी रियासत जम्मू कश्मीर को बदनाम करने के लिए जो एक अमन की फिजा यहाँ पे कायम हुई है, टूरिस्ट आज इतनी पूरी दुनिया से यहाँ पे आ रहे हैं, इतना अमन से इलेक्शन यहाँ पे हुए हैं, यहाँ पे एक अमन की बहुत बड़ी फिजा कायम हुई है, उसको बदनाम करने के लिए चंद अनासर जो हैं वो उस पार से यहाँ बदमनी फैलाना चाहते हैं और जम्मू कश्मीर की आवाम को बदनाम करना चाहते हैं।
0: उधर जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला हमले की निंदा कर रहे हैं तो महबूबा मुफ्ती सुरक्षा के इंतजामों पर सवाल खड़े कर रही हैं।
2: बाहर से जो लोग कश्मीर में काम करने आए थे, थोड़ी इज्जत की रोजी रोटी कमाने आए थे, उन बेगुनाह लोगों को इस तरह निशाना बनाया गया। इस हमले की जितनी निंदा की जाए कम है।
3: जो सिक्योरिटी है, जो यहाँ इतना सिक्योरिटी की वजह से लोगों को इतना अजाब है लोगों पे, उसके बावजूद ये इंसिडेंट्स होना मुझे लगता है कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में कोताही है।
0: इस हमले के बीच फारूख अब्दुल्ला के बयान ने घाटी की सियासत को गर्म कर दिया है। फारूख अब्दुल्ला ने शंका जताई कि आखिर कश्मीर में स्टेटहुड की मांग के समय ही हमला क्यों होता है।
4: मुझे नहीं पता ये क्यों उस वक्त होता है जब हम लोग स्टेटहुड मांग रहे होते हैं।
5: डॉक्टर फारूख अब्दुल्ला ने कुलगाम में हुए आतंकवादी हमला जिसमें दो मजदूरों को निशाना बनाया गया है, उस हमले को लेकर स्टेटहुड के साथ उस हमले को जोड़ा है। ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने दिया है, उन्हें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए।
0: एक ओर पाकिस्तान से पीओके नहीं संभल रहा तो दूसरी ओर घाटी में माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मजदूरों को निशाना बनाना बताता है कि आतंकी कितना बौखलाए हुए हैं।
6: मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ऐसी ही जो ईंटें यहाँ जहाँ बनती हैं, ईंटों का भट्ठा था और वहां वो काम कर रहे थे। 8:30 बजे का समय था जब बाहर काम के बाद वो लोग खड़े थे और जो मिलिटेंट हैं, दो उनकी संख्या बताई जाती है, बाइक पे आके काफी करीब से उन पे गोलियां चलाई, दोनों की इसमें मौत हो गई। और
7: हमारे बाबूजी ने कह रखा कि रोड पे जाना इसमें मना है, अपने बस यहीं रहना है।
6: अच्छा, बाहर नहीं घूमना?
7: बाहर नहीं घूमना बस,
6: खासकर शाम वाम के समय।
7: शाम समय
8: पहली बात हम लोग जाते ही नहीं है ऑटो बंदी, हम ऑटो बंदी शाम में घर में ही रहते,
6: यहीं रहते हैं।
0: श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ मीर फरीद, कुलगाम आज तक। बात अब गुजरात की करेंगे जहां एक बार फिर बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं और साउथ गुजरात के बहुत सारे जिले पहले प्रभावित हुए थे, कई शहरों में बाढ़ आई थी, अब एक बार फिर से हालात बहुत बुरे हैं। सूरत, नवसारी, डांग, खेड़ा, भरूच जिलों में हाल बेहाल है।

0: गुजरात में एक बार फिर से भारी बारिश के बाद कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं और फिर से दक्षिण गुजरात के ही जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। नवसारी और डांग जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण अंबिका और पूर्णा नदी उफान पर है। डांग के सुबीर तालुका में करीब 8 इंच बारिश दर्ज होने के बाद पूर्णा नदी समेत अन्य नदी नालों में बहुत ज्यादा पानी भर गया, तो पूर्णा नदी का जलस्तर बढ़ने से गोदड़िया पुल के ऊपर से पानी बहता दिखाई दे रहा है। यह हालात बहुत खतरनाक हैं। आसपास के इलाकों में बाढ़ की आशंका बढ़ गई। नवसारी में प्रशासन अलर्ट पर है क्योंकि पूर्णा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। नवसारी शहर में लगातार बारिश के कारण कई इलाकों में जल भराव की स्थिति बन गई। इधर भावनगर में भी हालात बिगड़ने लगे हैं। यहां जिले के पालीताना, जेसर, तलाजा, सीहोर, बगदाना, सोनगढ़, गोघा, अलंग और अन्य इलाकों में बारिश हुई। पालीताना में भारी बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया। सूरत शहर में भी शुक्रवार तड़के से ही मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। लगातार हो रही तेज बारिश के कारण शहर के कई निचले हिस्सों में जलभराव की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई। शहर के कई निचले इलाकों में सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया। गुजरात के खेड़ा जिले की सभी तहसीलों में भी शुक्रवार को सुबह से ही मूसलाधार बारिश जारी रही। नादियाद में भारी तबाही हुई। पूरा नादियाद शहर जलमग्न हो चुका है। सड़कें समंदर बन चुकी हैं और निचले इलाकों में जलभराव से इलाके टापू में तब्दील हो गए। सिर्फ 6 घंटे में ही 133 से 191 मिलीमीटर की बारिश दर्ज की गई।
1: जिस तरह से दो दिन पूरे गुजरात में हाई अलर्ट जारी किया गया है, हम अभी खेड़ा जिले के नड़ियाद में है। नड़ियाद में अब तक तकरीबन 7 इंच से ज्यादा जो है वो बारिश दर्ज की गई है, जिसके चलते जो निचले इलाके हैं वो प्रभावित हुए हैं। निचले इलाके में जिस तरह से जल भरा हुआ है, प्रशासन पहले से अलर्ट था, जिसके चलते पूरी व्यवस्था है जो की गई है। जिसके यहाँ पर जिस तरह से निचले इलाके में अस्पतालें आई हुई है, अस्पताल में आने जाने के लिए दर्दी जो है उनके लिए जो ट्रैक्टर ट्रॉली की जो है वो व्यवस्था की गई है, जिससे लोगों को आसानी रहे। साथ ही प्रशासन ने पहले से ही अपील कर दी थी कि लोग काम के अलावा बाहर न निकले। साथ ही जिस तरह से पूरे जो हालात है देख सकते हैं, निचले इलाके में जल भरा हुआ है।
0: चिंता इस बात की है कि मौसम विभाग ने अभी भी बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। प्रशासन कह रहा है कि जब तक कोई बेहद जरूरी काम ना हो घर से बाहर ना निकले। इधर भरूच में भी बारिश का रेड अलर्ट है। आसमान से जैसे आफत बरस रही है। शुक्रवार की सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है। निचले इलाके और मार्गों को बारिश के पानी ने जलमग्न कर दिया। भरूच, अंकलेश्वर, नेत्रंग, हासौट, जगड़िया, वालिया तहसील पानी पानी हो गई। जिले में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ एक्टिव है।
2: रेड अलर्ट के चलते सुबह से ही भारी बारिश के कारण आसमान से आफत रूपी बारिश ने पूरे जिले को पानी से लबालब कर दिया है। पिछले 10 घंटों में सबसे ज़्यादा नेत्रंग तहसील में 10.5 इंच बारिश बरस चुकी है, जिसके कारण मुख्य मार्ग और सभी जगह पे फिलहाल पानी ही पानी नजर आ रहा है। जनजीवन और यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है।
0: गुजरात के नर्मदा जिले में भी बुरा हाल है। यहाँ इतनी बारिश हुई कि करजन डैम से 50,000 क्यूसेक से भी ज्यादा पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से बाढ़ के हालात पैदा हो गए। भारी बारिश के कारण नर्मदा जिले के 28 गांवों को अलर्ट किया गया और 50 से ज्यादा लोग सुरक्षित स्थान पर लाए गए हैं। जिले के गरुड़ेश्वर तहसील में 5 इंच जितनी बारिश की वजह से गांवों को जोड़ने वाले कई रास्ते टूट चुके हैं। छोटा उदयपुर में अश्विन नदी में फंसे एक युवक को एनडीआरएफ टीम ने बचाया। युवक अपनी जान जोखिम में डालकर 4 घंटे तक 1.5 फुट की दीवार पर बैठा रहा था। पानी बढ़ता रहा लेकिन टीम ने आखिरकार युवक को बचा लिया।
3: हवामान विभाग की जो आगाही थी उसके अनुसार नर्मदा और छोटा उदयपुर में मूसलाधार बारिश हुई। आप तस्वीरों में देख पा रहे ये जो करजन नदी है, करजन नदी उफान हुए है क्योंकि जो करजन डैम है वहां से 50,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। इसके कारण नदी का फ्लो काफी बढ़ चुका है। साथ में छोटा उदयपुर जिले के अंदर जो अश्विनी नदी है वहां पे एक आदमी का रेस्क्यू किया गया था जहां पे वो पानी में फंस गया था। नर्मदा और छोटा उदयपुर जिले में भारी बारिश के कारण गांवों के अंदर जो नदियां उफान पे है और खास तौर पे जो आदिवासी इलाके हैं उनको रेस्क्यू करके बाहर लाया जा रहा है।
0: आज तक ब्यूरो।
4: अब रुख करते हैं पश्चिम एशिया की तरफ जहां पर आखिर क्या हुआ कि अमेरिका अब इसराइल के साथ मिलकर ईरान पर बहुत बड़े हमले करने की तैयारियों में जुट गया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।

0: मिसाइलें एक बार फिर गरज रही हैं। मेल मुलाकातों की डोर एक बार फिर टूटती दिख रही है। अमेरिका ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों को बम बरसाकर ध्वस्त करने का दावा किया है। इसके अलावा ईरान के किशम इलाके की ये तस्वीरें भी अमेरिका के ताजा हमलों से हुई तबाही की गवाह हैं। रहायशी इलाके में मिसाइल के हमले से ये पूरा घर तबाह हो गया। धमाका इतना जबरदस्त था कि उससे काफी बड़ा गड्ढा भी हो गया। उधर ईरान भी जॉर्डन, बहरीन, कुवैत और मिस्र में अमेरिकी सैन्य बेस पर लगातार हमले कर रहा है। कुवैत पर उसने कई ड्रोन हमले किए, हालांकि कुवैत का दावा है कि इन्हें नाकाम कर दिया गया। इस बीच ओमान के तट के पास एक तेल टैंकर के बेहद करीब जोरदार धमाका हुआ है। हालांकि जहाज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन पूरे इलाके में अलर्ट जारी कर जांच शुरू कर दी गई है। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक यह हमला ओमान के खासाब से करीब 39 किलोमीटर दूर हुआ। लेकिन ट्रंप की मौजूदगी में हुई कैबिनेट की मीटिंग से जो खबरें आ रही हैं, वो ईरान की चिंता बढ़ाने वाली हैं। अमेरिकी मीडिया का दावा है कि अमेरिका और इजराइल ईरान के ऊर्जा ढांचे पर बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। आज या फिर कल ईरान के बिजली संयंत्रों और तेल रिफाइनरियों को बड़े पैमाने पर निशाना बनाया जा सकता है। ऐसे तमाम ठिकानों की सूची बना ली गई है। इस मीटिंग में ट्रंप बेहद गुस्से में थे। उनका साफ कहना था कि परमाणु हथियारों से जुड़ी डील के लिए घंटों खराब करने का कोई मतलब नहीं है।
1: We have great people talking. Marco's involved.
2: They're all involved. These talks aren't happening.
1: Very good people. We have the best people. But they'll make a deal. As an example, we'll. Very good people. We have the best people. But they'll make a deal. As an example, we'll talk about nuclear. And we'll be in there talking about nuclear for 7 hours. I say, why do you need 7? You can take 10 minutes. You have 5. And they'll say, we never discussed nuclear.
0: तो क्या ईरान के इस रवैये से सीज फायर की संभावनाएं खत्म होती जा रही हैं? इस सवाल के जवाब में ट्रंप का साफ कहना था कि ईरान ने बातचीत को ईमानदारी से आगे नहीं बढ़ाया और भरोसा तोड़ा है।
1: Iran is doing very poorly. Just in case you read incorrect stories, they're doing very, very poorly. They're having a hard time. They've been very dishonest. They've been very dishonorable to deal with. But that makes no difference. They're doing very, very poorly. I'm losing faith in them because they do lie and they do misrepresent.
0: इस अहम बैठक में जिस मूड में ट्रंप दिख रहे थे, उससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि इजराइल के साथ मिलकर अगले कुछ घंटों में अमेरिका ईरान पर ताबड़तोड़ हमले करने की तैयारी में जुटा है। ये हमले इस बार सिर्फ सैन्य ठिकानों पर नहीं होंगे, बल्कि अहम एनर्जी सेंटर तबाह किए जाएंगे। उधर ईरान ने दो टूक कह दिया है कि अगर अमेरिका ने एनर्जी सेंटरों पर हमले किए तो उसके सैन्य ठिकानों को तबाह करने में ईरान कोई कसर नहीं छोड़ेगा। आज तक ब्यूरो।
3: रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।

0: जेनजी को संदेश के बाद पीएम मोदी ने की युवा शक्ति की बात। मैसूरू में कहा कि देश की तरक्की में योगदान, छात्रों को 21वीं सदी के लिए तैयार कर रही है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। चढ़ावा चोरी पर प्रदर्शन को लेकर पप्पू यादव की बड़ी मुश्किलें। बीजेपी और साधु संतों ने वाराणसी में दर्ज कराया एफआईआर। राहुल गांधी का नाम भी, कई शहरों में प्रदर्शन। और इस सीमन को लेकर केंद्र पर भड़के राहुल। चेन्नई में कहा यह बीजेपी की बड़ी साजिश, समर्थन करने वाले तमिलनाडु को धोखा दे रहा है। पाकिस्तानी आतंकी संगठनों की हिट लिस्ट में सीएम शुभेंदु अधिकारी का नाम। बंगाल पुलिस का दावा, बर्दमान से हमीम मंडल की गिरफ्तारी के बाद खुलासा। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय महिला मुक्केबाजों का गोल्डन पंच। आज 5 बॉक्सरों ने जीता गोल्ड। भारत के खाते में अब तक 13 स्वर्ण। शुक्रवार को संसद में साधु के भेष में पप्पू यादव ने चंदा चोरी का वाला तंज वाला नाटक किया, जिसमें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के नेता शामिल हुए और अब पप्पू यादव के इस अभिनय पर संत समाज और हिंदू संगठन भड़के हुए, जिसे लेकर कई जगहों पर प्रदर्शन हुआ। ये गुस्सा है पप्पू यादव के उस तमाशे के खिलाफ जो संसद में उन्होंने साधु के भेष में किया। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, जहां पप्पू यादव के पुतले फूंके जा रहे हैं, नारेबाजी की जा रही है।
1: हमारे समाज को, हमारे सनातन समाज को जो ये कर रहा है, हम माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि इसके ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1 के अंतर्गत मुकदमा कायम करके जेल भेजे और इनके खिलाफ जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, संसद की सदस्यता भी समाप्त होना चाहिए।
0: दिल्ली के जंतर मंतर में विश्व हिंदू परिषद ने पप्पू यादव को लेकर सद्बुद्धि हवन किया।
2: तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर एक सांकेतिक सद्बुद्धि हवन जो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा यहाँ पर रखा गया, तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूंगा कि दिल्ली भर से जो संत लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हैं।
0: भोपाल में भी भारी संख्या में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, जहाँ पप्पू यादव के साथ राहुल गांधी और अखिलेश यादव का विरोध किया गया, पुतला जलाया गया।
3: कई वर्षों तक राम मंदिर का विरोध करते रहे, सफल नहीं हो पाए। जब कोर्ट से सफल नहीं हुए तो लोकतंत्र के मंदिर के बाहर राम मंदिर को, राम जी को बदनाम करने की जिन्होंने कोशिश करी, चाहे राहुल गांधी हो, पप्पू यादव हो या अखिलेश यादव हो, इस प्रकार से ड्रामा करके राम जी को जिन्होंने बदनाम किया, ये उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया जा रहा है।
0: उधर दिल्ली के जहांगीरपुरी थाने में सांसद पप्पू यादव के खिलाफ शिकायत दी। वहीं वाराणसी में भी संत समाज की ओर से पप्पू यादव पर एक मुकदमा दर्ज कराया गया है।
4: इसमें बीजेपी को घेरने के कहां से आ गई? इसमें बीजेपी का गेरुआ वस्त्र पहनने करके बाबा बन के घूमती है बीजेपी। आप बीजेपी को घेरो ना, किसने मना किया? आप बीजेपी से सवाल करो, बीजेपी के विपक्ष में आप बैठ जाओ, आप तमाम जो चीजें हैं उन पर, क्योंकि इनके पास तो कोई मुद्दे बचे नहीं है। तो अब यही मुद्दे उल्टे सीधे बचे हैं कि संतों का अपमान करेंगे। इन लोगों को ही लगता है कि संत समाज बीजेपी का समर्थन करती है, पर सत्य यह है कि संत समाज उसी का समर्थन करती है जो राम का समर्थन करती है, जो कृष्ण का समर्थन करती है, जो सनातन धर्म की रक्षा करती है।
0: इस बीच पप्पू यादव ने हंगामे के बीच इंस्टा पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो उन्हीं कपड़ों में पूजा करते नजर आ रहे हैं। वहीं पूरे मामले में पप्पू यादव की सफाई भी आई है।
5: आपको नहीं लगता कि आपने कुछ गलत किया है इस पूरे?
6: मतलब सनातन और मंदिर के सारे पैसे को, लुटेरे को उजागर करना और उसके खिलाफ लड़ना गलत है, मंदिर की रक्षा करना गलत है, मंदिर के पैसे की रक्षा करना गलत है, देश के 100 करोड़ का जो आस्था है मंदिर के प्रति उसकी रक्षा करना गलत है, हनुमान जी को नचाना सही है, गुड्डी में राम को उड़ाना सही है।
0: बहरहाल संसद में चंदा चोरी पर पप्पू यादव के नाटक ने नया सियासी घमासान शुरू कर दिया है। आज तक ब्यूरो।
7: अब आज पीएम मोदी के नए वीडियो संदेश की। पीएम मोदी ने शुक्रवार देर रात एक बार फिर से जेनजी को मैसेज दिया।
0: रात तकरीबन 11 बजे के बाद पीएम मोदी इंस्टाग्राम पर लाइव आए, जहां उन्होंने अभद्र टिप्पणी करने वाले बच्चों को माफ करने की बात कही।

0: 31 जुलाई की रात पीएम मोदी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट कर युवाओं को माफ कर दिया।
1: जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है।
0: हालांकि पीएम मोदी ने लड़कियों की भाषा पर हैरानी जताते हुए कहा कि जिस तरह कुछ बेटियों के मेरी माँ को गाली देते हुए वीडियो वायरल हुए उससे उन्हें कल्चरल शॉक लगा।
1: एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं, लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है।
0: हालांकि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और शिवसेना यूबीटी जैसे दल गाली देने वाले युवाओं को माफ कर देने वाले वीडियो पर भी हमलावर दिखे।
2: उनको ये पूछना चाहिए क्या इस देश के छात्र उनको माफ करेंगे? उनकी वजह से 35 दिन छात्रों को परेशान होना पड़ा, खुले छत के नीचे सोना पड़ा, लाठियां खानी पड़ी, पैलेट गन झेलनी पड़ी। प्रधानमंत्री जी को छात्र माफ करेंगे या नहीं, उनको देश के छात्रों से पूछना।
3: वाइट पद्धति ने पुरुष पोलिसांकडनं त्यांचे कपडे फाडले गेले, ज्या पद्धतीने तो व्हिडिओ मी पाहिला, एक ती मुलगी पुढे जाते आणि तो पोलीस पाठवून कसा तो मला बोलायला सुद्धा लाज वाटते। ज्या मुलांनी नीटच्या परीक्षेचा पेपर फुटला म्हणून आत्महत्या केली त्यांची पहिली माफी यांनी मागायला पाहिजे।
0: जहां बीजेपी कह रही है कि पीएम मोदी को 25 सालों में ना जाने कितनी गालियां दी गई फिर भी वो विचलित नहीं हुए, वहीं आम आदमी पार्टी बोली बीजेपी और पीएम मोदी को विक्टिम कार्ड खेलकर उसका सियासी फायदा उठाना बखूबी आता है।
4: देखो मोदी जी बहुत बड़े हृदय के व्यक्ति हैं और तभी शायद यहां तक पहुंचे हैं। और जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं पिछले 25 साल में मोदी जी जब से मुख्यमंत्री रहे, प्रधानमंत्री रहे, जिस प्रकार से उन्होंने उनके ऊपर विपक्ष के द्वारा जो निजी हमले हुए, कभी उनको मौत का सौदागर कहा गया, कभी चौकीदार चोर है, कभी किस प्रकार से घृणित आरोप उनके ऊपर लगाए गए, निश्चित रूप से एक ये नई शुरुआत है। और मोदी जी ने जिस प्रकार का आह्वान किया है कि हम लोग देश के एक साथ लेकर देश को आगे बढ़े,
5: पूरे देश की मानसिकता को आपने दूषित कर दिया है। मैं कोई ट्वीट करता हूं उसके नीचे इतनी भद्दी भद्दी टिप्पणियां, लाखों गालियां। आज तक अगर मेरे सारे ट्वीट उठा लिए जाएं और उसके नीचे की गालियां उठा ली जाएं जो आपके समर्थक आपके लोगों ने दी हैं, लाखों लाख गालियां दी हैं, माँ की बहन की गालियां। मेरी आदत नहीं है रोने धोने की, आपकी आदत है। आपको कुछ भी होता है आप उसको कैश कराने के चक्कर में लग जाते हैं।
0: फिलहाल पीएम मोदी के माफी वाले वीडियो पर सियासी महाभारत थमती नहीं दिख रही। आज तक ब्यूरो।
6: यूपी में बन रहे बटेश्वर कॉरिडोर की, जिसके निर्माण में समाजवादी पार्टी ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया तो राजनीति गर्मा गई। बीजेपी ने हालांकि विपक्षी दलों पर पलटवार भी किया।
7: ये तस्वीरें आगरा में बन रहे बटेश्वर कॉरिडोर की है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इन तस्वीरों को साझा किया और कॉरिडोर के निर्माण में भारी अनियमितता, गड़बड़ी और भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया। साथ ही दावा यह भी किया कि शिकायत

0: समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने बटेश्वर महादेव का एक वीडियो जारी करके सोशल मीडिया पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी पर साफ तरीके से कहा है कि बिना बेस के निर्माण के पीवीसी वहां पर सीमेंटेड की जा रही है, यानी कि खामियों की बात की है।
1: यूपी में राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर पहले ही संग्राम जारी है। संसद तक इसे लेकर जंग छिड़ी है। इस बीच समाजवादी पार्टी ने धर्म आस्था से जुड़े एक और मुद्दे को उठाकर यूपी सरकार को घेरने की कोशिश की।
2: देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार वैसे तो ऊपर से लेकर के नीचे तक जो भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, लेकिन अब इन्होंने भगवानों को भी नहीं छोड़ा, इन्होंने मंदिरों को भी नहीं छोड़ा। आज जिस तरीके से बटेश्वर कॉरिडोर में जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है, जिस तरीके से मिलावट हो रहा है, जिस तरीके से निर्माण में अनियमितता हो रही है, उसको माने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने अपने पोस्ट में दर्शाने का काम किया। वीडियो फुटेजेस के साथ उन्होंने दर्शाने का काम किया।
3: भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में पहले भ्रष्टाचार होता है, फिर शिकायतकर्ताओं को धमकाया जाता है। बटेश्वर कॉरिडोर में भी यही हो रहा है, राम मंदिर के निर्माण में भी यही हो रहा है, चंदा चोरी में भी यही हो रहा है। जिस तरीके से एक्सप्रेस वे धस रहे हैं, उन सारी जगहों पर शिकायतकर्ताओं को धमकाया जा रहा है।
4: अखिलेश यादव जी की राजनीति अब केवल अफवाहों पर और आरोप पर तक सीमित रह गई है। बिना किसी ठोस प्रमाण के वे कुछ भी कहते रहते हैं। अगर उनके पास कोई ठोस प्रमाण है तो निश्चित रूप से जांच एजेंसी को दें। हमारी सरकार हर विषय पर जांच कराने के लिए तैयार है।
1: विपक्ष के हमलों और बीजेपी के पलटवार के बीच बटेश्वर कॉरिडोर पर नई राजनीति शुरू हो गई। एक और धार्मिक क्षेत्र को लेकर विपक्ष और बीजेपी अब आमने सामने आ गए हैं। आशीष श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
5: बात अब जम्मू कश्मीर की, जहां कुलगाम से बड़ी खबर आई है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम के केलाम इलाके में आतंकवादियों ने दो गैर कश्मीरी मजदूरों को गोली मार दी। आतंकी हमले में एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। दोनों ही मजदूर छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। इस हमले के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की और सर्च ऑपरेशन जारी है।
6: एक बार फिर जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने मजदूरों को टारगेट किया। एक बार फिर गैर कश्मीरी मजदूरों को निशाना बनाकर आतंकी हमला हुआ। ये वारदात कुलगाम के केल्लाम इलाके में हुई, जहां ईंट भट्टे पर काम करने वाले दो मजदूर आतंकी हमले में मारे गए।
7: रात में ये टारगेटेड अटैक हुआ, जहां जैसे अपने कहा, फिर एक बार नॉन लोकल जो लेबरर थे, यानी कि मजदूर थे, एक जो ईंटों का कारखाना होता है वहां काम करते थे, और तकरीबन 8:30 बजे बाइक पे जो है दो आतंकी उनके करीब आए और गोलियों की बौछार कर दी। दोनों जो हैं काफी गंभीर रूप से घायल हुए, लेकिन एक की मृत्यु जो है मौके पे हुई, दूसरा उसको इवैक्यूएट किया गया हॉस्पिटल। और अभी खबर मिली है कि श्रीनगर के जो शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, वहां उनकी जो है मौत हो गई है। तो दो लेबरर अब इसमें मारे गए हैं। सुरक्षा एजेंसीज ने इसके बाद जो है पूरे इलाके को घेर के जो एसओपी रहता है तलाशी अभियान शुरू किया है, लेकिन 4 साल के बाद ऐसी जो है घटना हुई है, नई नहीं है। जैसे आपने कहा, इससे पहले भी जो सॉफ्ट टारगेट्स हैं ये नॉन लोकल लेबरर्स, इनको टारगेट किया गया है।
6: वारदात की खबर मिलते ही सुरक्षा बल एक्शन में आए, पूरे इलाके की घेराबंदी दी और हमलावर आतंकियों की तलाश में चप्पे चप्पे की जांच शुरू हो गई। मजदूरों को टारगेट कर जम्मू कश्मीर में हुआ यह हमला इसलिए बेहद गंभीर और चिंताजनक है, क्योंकि ऐसी आतंकी वारदात करीब 4 साल बाद दोहराई गई है, जिसके बाद से सुरक्षा एजेंसियां भी काफी चौकन्ना हो गई हैं। आतंकी संगठन लश्कर से जुड़े संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF कुलगाम में हुए हमले की जिम्मेदारी ली है, जिससे साफ है कि इस हमले की साजिश सीमा पार से रची गई।
7: फिर एक बार जो लश्कर का शेडो है द रेजिस्टेंस फ्रंट, उन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली है और साफ तौर पे इसके बाद सुरक्षा जो है काफी बढ़ा दी गई। हम श्रीनगर से यहाँ की तरफ आए, जगह जगह जो है चेक पॉइंट्स लगाए गए हैं और यहाँ भी जैसे आप देख सकते हैं सुरक्षा बलों के जवान जो है नाकाबंदी लगाई हुई है। पुलिस है, CRPF है, जो भी गाड़ी यहां से जा रही है उसको चेक किया जा रहा है और इंटेल बेस जो है सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन अभी जगह जगह चल रहा है। लेकिन साफ तौर पर ये चिंता का विषय है सुरक्षा एजेंसी के लिए, क्योंकि कोई ना कोई मॉड्यूल है, स्लीपर सेल है लश्कर का जो एक्टिवेट हो गया है, उनको साफ तौर पे उस तरफ से आदेश है कि आप एक्टिवेट हो जाइए, टारगेट्स को हिट कीजिए। और इससे पहले 2021-22 में एक सिलसिला चला था जहां कश्मीरी

0: पंडितों और नॉन लोकल लेबरर्स को टारगेट किया गया था, बिल्कुल इसी तरीके से ज्यादातर दक्षिणी कश्मीर में, और इस बार फिर एक बार ये सिलसिला जो है शुरू होता दिख रहा है।
1: जम्मू कश्मीर में जो दो मजदूर आतंकी हमले में मारे गए वो दोनों ही छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने इसे कायराना हमला करार करते हुए मजदूरों की मौत पर शोक जताया है। उधर सुरक्षा बल लगातार आतंकियों की तलाश में लगे हैं ताकि टारगेट किलिंग करने वाले आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। कुलगाम से मीर फरीद आज तक।
2: कुलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर स्थानीय लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया, वहीं मामले पर सियासत भी तेज है।
3: पाकिस्तान की इस गुस्ताखी का गुस्सा कश्मीर की आवाम पर नजर आ रहा है। स्थानीय लोगों ने मजदूरों की हत्या पर कैंडल जलाई तो ही पाकिस्तान का विरोध भी किया।
4: ये हमारी रियासत जम्मू कश्मीर को बदनाम करने के लिए जो एक अमन की फिजा यहाँ पे कायम हुई है, टूरिस्ट आज इतनी पूरी दुनिया से यहाँ पे आ रहे हैं, इतना अमन से इलेक्शन यहाँ पे हुए हैं, यहाँ पे एक अमन की बहुत बड़ी फिजा कायम हुई है, उसको बदनाम करने के लिए चंद अनासर जो हैं वो उस पार से यहाँ बदमनी फैलाना चाहते हैं और जम्मू कश्मीर के आवाम को बदनाम करना चाहते हैं।
3: उधर जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला हमले की निंदा कर रहे हैं तो महबूबा मुफ्ती सुरक्षा के इंतजामों पर सवाल खड़े कर रही हैं।
5: बाहर से जो लोग कश्मीर में काम करने आए थे, थोड़ी इज्जत की रोजी रोटी कमाने आए थे, उन बेगुनाह लोगों को इस तरह निशाना बनाया गया, इस हमले की जितनी निंदा की जाए कम है।
6: जो सिक्योरिटी है, जो यहाँ इतना सिक्योरिटी की वजह से लोगों को इतना अजाब है लोगों पे, उसके बावजूद ये इंसिडेंट्स होना मुझे लगता है कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में कोताही है।
3: इस हमले के बीच फारूक अब्दुल्ला के बयान ने घाटी की सियासत को गर्म कर दिया है। फारूक अब्दुल्ला ने शंका जताई कि आखिर कश्मीर में स्टेटहुड की मांग के समय ही हमला क्यों होता है।
7: मुझे नहीं पता ये क्यों उस वक्त होता है जब हम लोग स्टेटहुड मांग रहे होते हैं।
8: डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कुलगाम में हुए आतंकवादी हमला जिसमें दो मजदूरों को निशाना बनाया गया है, उस हमले को लेकर स्टेटहुड के साथ उस हमले को जोड़ा है, ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने दिया है, उन्हें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए।
3: एक ओर पाकिस्तान से पीओके नहीं संभल रहा तो दूसरी ओर घाटी में माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मजदूरों को निशाना बनाना बताता है कि आतंकी कितना बौखलाए हुए हैं।
9: मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ऐसी ही जो ईंटें यहाँ जहाँ बनती हैं, ईंटों का भट्ठा था और वहां वो काम कर रहे थे। 8:30 बजे का समय था जब बाहर काम के बाद वो लोग खड़े थे और जो मिलिटेंट हैं, दो उनकी संख्या बताई जाती है, बाइक पे आके काफी करीब से उन पे गोलियां चलाई, दोनों की इसमें मौत हो गई। और
10: हमारे बाबूजी ने कह रखा कि रोड पे जाना इस समय मना है, अपने बस यही रहना मरिया गंदम में।
9: अच्छा, बाहर नहीं घूमना?
10: बाहर नहीं घूमना बस,
9: खासकर शाम वाम के समय।
10: हाँ, शाम वाम समय।
11: पहली बात हम लोग जाती नहीं ऑटो बंदे, हम ऑटो बंदे शाम में घर में ही रहते
9: हैं, यही रहते हैं।
3: श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ मीर फरीद, कुलगाम आज तक।
2: बात अब गुजरात की करेंगे जहां एक बार फिर बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं और साउथ गुजरात के बहुत सारे जिले पहले प्रभावित हुए थे, कई शहरों में बाढ़ आई थी, अब एक बार फिर से हालात बहुत बुरे हैं। सूरत, नवसारी, डांग, खेड़ा, भरूच जिलों में हाल बेहाल है।

0: गुजरात में एक बार फिर से भारी बारिश के बाद कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं और फिर से दक्षिण गुजरात के ही जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। नवसारी और डांग जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण अंबिका और पूर्णा नदी उफान पर है। डांग के सुबीर तालुका में करीब 8 इंच बारिश दर्ज होने के बाद पूर्णा नदी समेत अन्य नदी नालों में बहुत ज्यादा पानी भर गया तो पूर्णा नदी का जलस्तर बढ़ने से गोदड़िया पुल के ऊपर से पानी बहता दिखाई दे रहा है। यह हालात बहुत खतरनाक हैं। आसपास के इलाकों में बाढ़ की आशंका बढ़ गई। नवसारी में प्रशासन अलर्ट पर है क्योंकि पूर्णा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। नवसारी शहर में लगातार बारिश के कारण कई इलाकों में जल भराव की स्थिति बन गई। इधर भावनगर में भी हालात बिगड़ने लगे हैं। यहां जिले के पालीताना, जेसर, तलाजा, सीहोर, बगदाना, सोनगढ़, गोघा, अलंग और अन्य इलाकों में बारिश हुई। पालीताना में भारी बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया। सूरत शहर में भी शुक्रवार तड़के से ही मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। लगातार हो रही तेज बारिश के कारण शहर के कई निचले हिस्सों में जलभराव की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई। शहर के कई निचले इलाकों में सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया। गुजरात के खेड़ा जिले की सभी तहसीलों में भी शुक्रवार को सुबह से ही मूसलाधार बारिश जारी रही। नदियाद में भारी तबाही हुई। पूरा नदियाद शहर जलमग्न हो चुका है। सड़कें समंदर बन चुकी हैं और निचले इलाकों में जलभराव से इलाके टापू में तब्दील हो गए। सिर्फ 6 घंटे में ही 133 से 191 मिलीमीटर की बारिश दर्ज की गई।
1: जिस तरह से दो दिन पूरे गुजरात में हाई अलर्ट जारी किया गया है, हम अभी खेड़ा जिले के नड़ियाद में है। नड़ियाद में अब तक तकरीबन 7 इंच से ज्यादा जो है वो बारिश दर्ज की गई है, जिसके चलते जो निचले इलाके हैं वो प्रभावित हुए हैं। निचले इलाके में जिस तरह से जल भरा हुआ है, प्रशासन पहले से अलर्ट था, जिसके चलते पूरी व्यवस्था है जो की गई है, जिसके यहाँ पर जिस तरह से निचले इलाके में अस्पतालें आई हुई, अस्पताल में आने जाने के लिए दर्दी जो है उनके लिए जो ट्रैक्टर ट्रॉली की जो है वो व्यवस्था की गई है, जिससे लोगों को आसानी रहे। साथ ही प्रशासन ने पहले से ही अपील कर दी थी कि लोग काम के अलावा बाहर न निकले। साथ ही जिस तरह से पूरे जो हालात है देख सकते हैं, निचले इलाके में जल भरा हुआ है।
0: चिंता इस बात की है कि मौसम विभाग ने अभी भी बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। प्रशासन कह रहा है कि जब तक कोई बेहद जरूरी काम ना हो घर से बाहर ना निकले। इधर भरूच में भी बारिश का रेड अलर्ट है। आसमान से जैसे आफत बरस रही है। शुक्रवार की सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है। निचले इलाके और मार्गों को बारिश के पानी ने जलमग्न कर दिया। भरूच, अंकलेश्वर, नेत्रंग, हासौट, जगड़िया, वालिया तहसील पानी पानी हो गई। जिले में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ एक्टिव है।
2: रेड अलर्ट के चलते सुबह से ही भारी बारिश के कारण आसमान से आफत रूपी बारिश ने पूरे जिले को पानी से लबालब कर दिया है। पिछले 10 घंटों में सबसे ज़्यादा नेत्रंग तहसील में 10.5 इंच बारिश बरस चुकी है, जिसके कारण मुख्य मार्ग और सभी जगह पे फिलहाल पानी ही पानी नज़र आ रहा है। जनजीवन और यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है।
0: गुजरात के नर्मदा जिले में भी बुरा हाल है। यहाँ इतनी बारिश हुई कि करजन डैम से 50,000 क्यूसेक से भी ज्यादा पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से बाढ़ के हालात पैदा हो गए। भारी बारिश के कारण नर्मदा जिले के 28 गांवों को अलर्ट किया गया और 50 से ज्यादा लोग सुरक्षित स्थान पर लाए गए हैं। जिले के गरुड़ेश्वर तहसील में 5 इंच जितनी बारिश की वजह से गांवों को जोड़ने वाले कई रास्ते टूट चुके हैं। छोटा उदयपुर में अश्विन नदी में फंसे एक युवक को एनडीआरएफ टीम ने बचाया। युवक अपनी जान जोखिम में डालकर 4 घंटे तक 1.5 फुट की दीवार पर बैठा रहा था। पानी बढ़ता रहा लेकिन टीम ने आखिरकार युवक को बचा लिया।
3: हवामान विभाग की जो आगाही थी उसके अनुसार नर्मदा और छोटा उदयपुर में मूसलाधार बारिश हुई। आप तस्वीरों में देख पा रहे ये जो करजन नदी है, करजन नदी उफान हुए है क्योंकि जो करजन डैम है वहां से 50,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। इसके कारण नदी का फ्लो काफी बढ़ चुका है। साथ में छोटा उदयपुर जिले के अंदर जो अश्विनी नदी है वहां पे एक आदमी का रेस्क्यू किया गया था जहां पे वो पानी में फंस गया था। नर्मदा और छोटा उदयपुर जिले में भारी बारिश के कारण गांवों के अंदर जो नदियां उफान पे है और खास तौर पे जो आदिवासी इलाके हैं उनको रेस्क्यू करके बाहर लाया जा रहा है।
0: आज तक ब्यूरो।
4: अब रुख करते हैं पश्चिम एशिया की तरफ जहां पर आखिर क्या हुआ कि अमेरिका अब इसराइल के साथ मिलकर ईरान पर बहुत बड़े हमले करने की तैयारियों में जुट गया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।

0: मिसाइलें एक बार फिर गरज रही हैं। मेल मुलाकातों की डोर एक बार फिर टूटती दिख रही है। अमेरिका ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों को बम बरसाकर ध्वस्त करने का दावा किया है। इसके अलावा ईरान के किशम इलाके की ये तस्वीरें भी अमेरिका के ताजा हमलों से हुई तबाही की गवाह हैं। रिहायशी इलाके में मिसाइल के हमले से ये पूरा घर तबाह हो गया। धमाका इतना जबरदस्त था कि उससे काफी बड़ा गड्ढा भी हो गया। उधर ईरान भी जॉर्डन, बहरीन, कुवैत और मिस्र में अमेरिकी सैन्य बेस पर लगातार हमले कर रहा है। कुवैत पर उसने कई ड्रोन हमले किए, हालांकि कुवैत का दावा है कि इन्हें नाकाम कर दिया गया। इस बीच ओमान के तट के पास एक तेल टैंकर के बेहद करीब जोरदार धमाका हुआ है। हालांकि जहाज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन पूरे इलाके में अलर्ट जारी कर जांच शुरू कर दी गई है। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक यह हमला ओमान के खासाब से करीब 39 किलोमीटर दूर हुआ। लेकिन ट्रंप की मौजूदगी में हुई कैबिनेट की मीटिंग से जो खबरें आ रही हैं, वो ईरान की चिंता बढ़ाने वाली हैं। अमेरिकी मीडिया का दावा है कि अमेरिका और इजराइल ईरान के ऊर्जा ढांचे पर बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। आज या फिर कल ईरान के बिजली संयंत्रों और तेल रिफाइनरियों को बड़े पैमाने पर निशाना बनाया जा सकता है। ऐसे तमाम ठिकानों की सूची बना ली गई है। इस मीटिंग में ट्रंप बेहद गुस्से में थे। उनका साफ कहना था कि परमाणु हथियारों से जुड़ी डील के लिए घंटों खराब करने का कोई मतलब नहीं है।
1: We have great people talking. Marco's involved.
2: They're all involved. Talks aren't happening.
1: Very good people. We have the best people. But they'll make a deal. As an example, we'll talk about nuclear. And we'll be in there talking about nuclear for 7 hours. I say, why do you need 7? You can take 10 minutes. You have 5 minutes. You should solve it. But 7 hours. And then they'll go out. And I'll say, they discuss nuclear. And they'll go out and they'll say, we never discussed nuclear. And I say, why do they say that? All they do is make me angry.
0: तो क्या ईरान के इस रवैये से सीज फायर की संभावनाएं खत्म होती जा रही हैं? इस सवाल के जवाब में ट्रंप का साफ कहना था कि ईरान ने बातचीत को ईमानदारी से आगे नहीं बढ़ाया और भरोसा तोड़ा है।
1: And Iran now, Iran is doing very poorly. Just in case you read incorrect stories, they're doing very, very poorly. They're having a hard time. They've been very dishonest. They've been very dishonorable to deal with. But that makes no difference. They're doing very, very poorly. Losing faith in them because they do lie and they do misrepresent.
0: इस अहम बैठक में जिस मूड में ट्रंप दिख रहे थे, उससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि इजराइल के साथ मिलकर अगले कुछ घंटों में अमेरिका ईरान पर ताबड़तोड़ हमले करने की तैयारी में जुटा है। ये हमले इस बार सिर्फ सैन्य ठिकानों पर नहीं होंगे, बल्कि अहम एनर्जी सेंटर तबाह किए जाएंगे। उधर ईरान ने दो टूक कह दिया है कि अगर अमेरिका ने एनर्जी सेंटरों पर हमले किए तो उसके सैन्य ठिकानों को तबाह करने में ईरान कोई कसर नहीं छोड़ेगा। आज तक ब्यूरो।
3: रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।

0: जेनजी को संदेश के बाद पीएम मोदी ने की युवा शक्ति की बात। मैसूरू में कहा कि देश की तरक्की में योगदान, छात्रों को 21वीं सदी के लिए तैयार कर रही है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। चढ़ावा चोरी पर प्रदर्शन को लेकर पप्पू यादव की बड़ी मुश्किलें। बीजेपी और साधु संतों ने वाराणसी में दर्ज कराया एफआईआर। राहुल गांधी का नाम भी, कई शहरों में प्रदर्शन। और सीमन को लेकर केंद्र पर भड़के राहुल, चेन्नई में कहा यह बीजेपी की बड़ी साजिश, समर्थन करने वाले तमिलनाडु को धोखा दे रहा है। पाकिस्तानी आतंकी संगठनों की हिट लिस्ट में सीएम शुभेंदु अधिकारी का नाम, बंगाल पुलिस का दावा। बर्दमान से हमीम मंडल की गिरफ्तारी के बाद खुलासा। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय महिला मुक्केबाजों का गोल्डन पंच, आज 5 बॉक्सरों ने जीता गोल्ड। भारत के खाते में अब तक 13 स्वर्ण। शुक्रवार को संसद में साधु के भेष में पप्पू यादव ने चंदा चोरी का वाला तंज वाला नाटक किया, जिसमें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के नेता शामिल हुए। और अब पप्पू यादव के इस अभिनय पर संत समाज और हिंदू संगठन भड़के हुए, जिसे लेकर कई जगहों पर प्रदर्शन हुआ।
1: ये गुस्सा है पप्पू यादव के उस तमाशे के खिलाफ जो संसद में उन्होंने साधु के भेष में किया। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं, जहां पप्पू यादव के पुतले फूंके जा रहे हैं, नारेबाजी की जा रही है।
2: हमारे समाज को, हमारे सनातन समाज को जो ये कर रहा है, हम माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि इसके ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1 के अंतर्गत मुकदमा कायम करके जेल भेजे और इनके खिलाफ जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, संसद की सदस्यता भी समाप्त होना चाहिए।
1: दिल्ली के जंतर मंतर में विश्व हिंदू परिषद ने पप्पू यादव को लेकर सद्बुद्धि हवन किया।
3: तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर एक सांकेतिक सद्बुद्धि हवन जो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा यहाँ पर रखा गया, तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूंगा कि दिल्ली भर से जो संत लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हैं।
1: भोपाल में भी भारी संख्या में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, जहाँ पप्पू यादव के साथ राहुल गांधी और अखिलेश यादव का विरोध किया गया, पुतला जलाया गया।
4: कई वर्षों तक राम मंदिर का विरोध करते रहे, सफल नहीं हो पाए। जब कोर्ट से सफल नहीं हुए तो लोकतंत्र के मंदिर के बाहर राम मंदिर को, राम जी को बदनाम करने की जिन्होंने कोशिश करी, चाहे राहुल गांधी हो, पप्पू यादव हो या अखिलेश यादव हो, इस प्रकार से ड्रामा करके राम जी को जिन्होंने बदनाम किया, ये उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया जा रहा है।
1: उधर दिल्ली के जहांगीरपुरी थाने में सांसद पप्पू यादव के खिलाफ शिकायत दी। वहीं वाराणसी में भी संत समाज की ओर से पप्पू यादव पर एक मुकदमा दर्ज कराया गया है।
5: इसमें बीजेपी को घेरने के कहां से आ गई? इसमें बीजेपी का गेरुआ वस्त्र पहनने करके बाबा बन के घूमती है बीजेपी। आप बीजेपी को घेरो ना, किसने मना किया? आप बीजेपी से सवाल करो, बीजेपी के विपक्ष में आप बैठ जाओ, आप तमाम जो चीजें हैं उन पर, क्योंकि इनके पास तो कोई मुद्दे बचे नहीं है, तो अब यही मुद्दे उल्टे सीधे बचे हैं कि संतों का अपमान करेंगे। इन लोगों को ही लगता है कि संत समाज बीजेपी का समर्थन करती है, पर सत्य यह है कि संत समाज उसी का समर्थन करती है जो राम का समर्थन करती है, जो कृष्ण का समर्थन करती है, जो सनातन धर्म की रक्षा करती है।
1: इस बीच पप्पू यादव ने हंगामे के बीच इंस्टा पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो उन्हीं कपड़ों में पूजा करते नजर आ रहे हैं। वहीं पूरे मामले में पप्पू यादव की सफाई भी आई है।
6: आपको नहीं लगता कि आपने कुछ गलत किया है इस पूरे?
7: मतलब सनातन और मंदिर के सारे पैसे को, लुटेरे को उजागर करना और उसके खिलाफ लड़ना गलत है, मंदिर की रक्षा करना गलत है, मंदिर के पैसे की रक्षा करना गलत है, देश के 100 करोड़ का जो आस्था है मंदिर के प्रति उसकी रक्षा करना गलत है, हनुमान जी को नचाना सही है, गुड्डी में राम को उड़ाना सही है।
1: बहरहाल संसद में चंदा चोरी पर पप्पू यादव के नाटक ने नया सियासी घमासान शुरू कर दिया है। आज तक ब्यूरो।
0: अब आज पीएम मोदी के नए वीडियो संदेश की। पीएम मोदी ने शुक्रवार देर रात एक बार फिर से जेन जी को मैसेज दिया। रात तकरीबन 11 बजे के बाद पीएम मोदी इंस्टाग्राम पर लाइव आए, जहां उन्होंने अभद्र टिप्पणी करने वाले बच्चों को माफ करने की बात कही।

0: पॉसिबिलिटी नंबर वन इज ही गेव द ऑर्डर।
1: 31 जुलाई की रात पीएम मोदी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट कर युवाओं को माफ कर दिया।
2: जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है।
1: हालांकि पीएम मोदी ने लड़कियों की भाषा पर हैरानी जताते हुए कहा कि जिस तरह कुछ बेटियों के मेरी माँ को गाली देते हुए वीडियो वायरल हुए उससे उन्हें कल्चरल शॉक लगा।
2: एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं, लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है।
1: हालांकि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और शिवसेना यूबीटी जैसे दल गाली देने वाले युवाओं को माफ कर देने वाले वीडियो पर भी हमलावर दिखे।
3: उनको ये पूछना चाहिए क्या इस देश के छात्र उनको माफ करेंगे? उनकी वजह से 35 दिन छात्रों को परेशान होना पड़ा, खुले छत के नीचे सोना पड़ा, लाठियां खानी पड़ी, पैलेट गन झेलनी पड़ी। प्रधानमंत्री जी को छात्र माफ करेंगे या नहीं, उनको देश के छात्रों से पूछना।
4: वाइट पद्धति ने पुरुष पोलिसांकडनं त्यांचे कपडे फाडले गेले, ज्या पद्धतीने तो व्हिडिओ मी पाहिला, एक ती मुलगी पुढे जाते आणि तो पोलीस पाठवून कसं तो मला बोलायला सुद्धा लाज वाटते। ज्या मुलांनी नीटच्या परीक्षेचा पेपर फुटला म्हणून आत्महत्या केली त्यांची पहिली माफी यांनी मागायला पाहिजे।
1: जहां बीजेपी कह रही है कि पीएम मोदी को 25 सालों में न जाने कितनी गालियां दी गई फिर भी वो विचलित नहीं हुए, वहीं आम आदमी पार्टी बोली बीजेपी और पीएम मोदी को विक्टिम कार्ड खेलकर उसका सियासी फायदा उठाना बखूबी आता है।
5: देखो मोदी जी बहुत बड़े हृदय के व्यक्ति हैं और तभी शायद यहां तक पहुंचे हैं। और जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं पिछले 25 साल में मोदी जी जब से मुख्यमंत्री रहे, प्रधानमंत्री रहे, जिस प्रकार से उन्होंने उनके ऊपर विपक्ष के द्वारा जो निजी हमले हुए, कभी उनको मौत का सौदागर कहा गया, कभी चौकीदार चोर है, कभी किस प्रकार से घृणित आरोप उनके ऊपर लगाए गए, निश्चित रूप से एक ये नई शुरुआत है। और मोदी जी ने जिस प्रकार का आह्वान किया है कि हम लोग देश के एक साथ लेकर देश को आगे बढ़े,
6: पूरे देश की मानसिकता को आपने दूषित कर दिया है। मैं कोई ट्वीट करता हूं उसके नीचे इतनी भद्दी भद्दी टिप्पणियां, लाखों गालियां। आज तक अगर मेरे सारे ट्वीट उठा लिए जाए और उसके नीचे की गालियां उठा ली जाए जो आपके समर्थक आपके लोगों ने दी है, लाखों लाख गालियां दी है, मां की बहन की गालियां। मेरी आदत नहीं है रोने धोने की, आपकी आदत है। आपको कुछ भी होता है आप उसको कैश कराने के चक्कर में लग जाते हैं।
1: फिलहाल पीएम मोदी के माफी वाले वीडियो पर सियासी महाभारत थमती नहीं दिख रही। आज तक ब्यूरो।
7: यूपी में बन रहे बटेश्वर कॉरिडोर की जिसके निर्माण में समाजवादी पार्टी ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया तो राजनीति गर्मा गई। बीजेपी ने हालांकि विपक्षी दलों पर पलटवार भी किया।
8: ये तस्वीरें आगरा में बन रहे बटेश्वर कॉरिडोर की है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इन तस्वीरों को साझा किया और कॉरिडोर के निर्माण में भारी अनियमितता, गड़बड़ी और भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया। साथ ही दावा ये भी किया कि शिकायतकर्ताओं को धमकाया जा रहा है।
9: समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने बटेश्वर महादेव का एक वीडियो जारी करके सोशल मीडिया पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी पर साफ तरीके से कहा है कि बिना बेस के निर्माण के पीवीसी वहां पर सीमेंटेड की जा रही है, यानी कि खामियों की बात की है।
8: यूपी में राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर पहले ही संग्राम जारी है। संसद तक इसे लेकर जंग छिड़ी है। इस बीच समाजवादी पार्टी ने धर्म आस्था से जुड़े एक और मुद्दे को उठाकर यूपी सरकार को घेरने की कोशिश की।
10: देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार वैसे तो ऊपर से लेकर नीचे तक जो भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, लेकिन अब इन्होंने भगवानों को भी नहीं छोड़ा, इन्होंने मंदिरों को भी नहीं छोड़ा। आज जिस तरीके से बटेश्वर कॉरिडोर में जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है, जिस तरीके से मिलावट हो रहा है, जिस तरीके से निर्माण में अनियमितता हो रही है, उसको माने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने अपने पोस्ट में दर्शाने का काम किया, वीडियो फुटेजेस के साथ उन्होंने दर्शाने का काम किया।
11: भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में पहले भ्रष्टाचार होता है, फिर शिकायतकर्ताओं को धमकाया जाता है। बटेश्वर कॉरिडोर में भी यही हो रहा है, राम मंदिर के निर्माण में भी यही हो रहा है, चंदा चोरी में भी यही हो रहा है। जिस तरीके से एक्सप्रेस वे धस रहे हैं, उन सारी जगहों पर शिकायतकर्ताओं को धमकाया जा रहा है।
12: अखिलेश यादव जी की राजनीति अब केवल अफवाहों पर और आरोप पर तक सीमित रह गई है। बिना किसी ठोस प्रमाण के वे कुछ भी कहते रहते हैं। अगर उनके पास कोई ठोस प्रमाण है तो निश्चित रूप से जांच एजेंसी को दें। हमारी सरकार हर विषय पर जांच कराने के लिए तैयार है।
8: विपक्ष के हमलों और बीजेपी के पलटवार के बीच बटेश्वर कॉरिडोर पर नई राजनीति शुरू हो गई। एक और धार्मिक क्षेत्र को लेकर विपक्ष और बीजेपी अब आमने सामने आ गए हैं। आशीष श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
7: बात अब जम्मू कश्मीर की, जहां कुलगाम से बड़ी खबर आई है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम के केलाम इलाके में आतंकवादियों ने दो गैर कश्मीरी मजदूरों को गोली मार दी। आतंकी हमले में एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। दोनों ही मजदूर छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। इस हमले के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की और सर्च ऑपरेशन जारी है।
13: एक बार फिर जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने मजदूरों को टारगेट किया। एक बार फिर गैर कश्मीरी मजदूरों को निशाना बनाकर आतंकी हमला हुआ। ये वारदात कुलगाम के केल्लाम इलाके में हुई, जहां ईंट भट्टे पर काम करने वाले दो मजदूर आतंकी हमले में मारे गए।
14: रात में ये टारगेटेड अटैक हुआ, जहां जैसे आपने कहा, फिर एक बार नॉन लोकल जो लेबरर थे, यानी कि मजदूर थे, एक जो ईंटों का कारखाना होता है वहां काम करते थे, और तकरीबन 8:30 बजे बाइक पे जो है दो आतंकी उनके करीब आए और गोलियों की बौछार कर दी। दोनों जो हैं काफी गंभीर रूप से घायल हुए, लेकिन एक की मृत्यु जो है मौके पे हुई, दूसरा उसको इवैक्यूएट किया गया हॉस्पिटल। और अभी खबर मिली है कि श्रीनगर के जो शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, वहां उनकी जो है मौत हो गई है। तो दो लेबरर अब इसमें मारे गए हैं। सुरक्षा एजेंसीज ने इसके बाद जो है पूरे इलाके को घेर के जो एसओपी रहता है तलाशी अभियान शुरू किया है, लेकिन 4 साल के बाद ऐसी जो है घटना हुई है, नई नहीं है। जैसे आपने कहा, इससे पहले भी जो सॉफ्ट टारगेट्स हैं ये नॉन लोकल लेबरर्स, इनको टारगेट किया गया है।
13: वारदात की खबर मिलते ही सुरक्षा बल एक्शन में आए, पूरे इलाके की घेराबंदी दी और हमलावर आतंकियों की तलाश में चप्पे चप्पे की जांच शुरू हो गई। मजदूरों को टारगेट कर जम्मू कश्मीर में हुआ यह हमला इसलिए बेहद गंभीर और चिंताजनक है, क्योंकि ऐसी आतंकी वारदात करीब 4 साल बाद दोहराई गई है, जिसके बाद से सुरक्षा एजेंसियां भी काफी चौकन्ना हो गई हैं। आतंकी संगठन लश्कर से जुड़े संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF कुलगाम में हुए हमले की जिम्मेदारी ली है, जिससे साफ है कि इस हमले की साजिश सीमा पार से रची गई।
14: फिर एक बार जो लश्कर का शेडो है द रेजिस्टेंस फ्रंट, उन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली है और साफ तौर पे इसके बाद सुरक्षा जो है काफी बढ़ा दी गई। हम श्रीनगर से यहाँ की तरफ आए, जगह जगह जो है चेक पॉइंट्स लगाए गए हैं और यहाँ भी जैसे आप देख सकते हैं सुरक्षा बलों के जवान जो है नाकाबंदी लगाई हुई है। पुलिस है, CRPF है, जो भी गाड़ी यहां से जा रही है उसको चेक किया जा रहा है और इंटेल बेस्ड जो है सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन अभी जगह जगह चल रहा है। लेकिन साफ तौर पर ये चिंता का विषय है सुरक्षा एजेंसी के लिए, क्योंकि कोई ना कोई मॉड्यूल है, स्लीपर सेल है लश्कर का जो एक्टिवेट हो गया है, उनको साफ तौर पे उस तरफ से आदेश है कि आप एक्टिवेट हो जाइए, टारगेट्स को हिट कीजिए। और इससे पहले 2021-22 में एक सिलसिला चला था जहां कश्मीरी पंडित और नॉन लोकल लेबरर्स को टारगेट किया गया था, बिल्कुल इसी तरीके से ज्यादातर दक्षिणी कश्मीर में, और इस बार फिर एक बार यह सिलसिला जो है शुरू होता दिख रहा है।
13: जम्मू कश्मीर में जो दो मजदूर आतंकी हमले में मारे गए, वो दोनों ही छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। छत्तीसगढ़ के CM विष्णुदेव साय ने इसे कायराना हमला करार करते हुए मजदूरों की मौत पर शोक जताया है। उधर सुरक्षा बल लगातार आतंकियों की तलाश में लगे हैं, ताकि टारगेट किलिंग करने वाले आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। कुलगाम से मीर फरीद आज तक।
7: कुलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर स्थानीय लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया, वहीं मामले पर सियासत भी तेज है।

0: पाकिस्तान के इस गुस्ताखी का गुस्सा कश्मीर की आवाम पर नजर आ रहा है। स्थानीय लोगों ने मजदूरों की हत्या पर कैंडल जलाई तो है पाकिस्तान का विरोध भी किया।
1: ये हमारी रियासत जम्मू कश्मीर को बदनाम करने के लिए जो एक अमन की फिजा यहाँ पे कायम हुई है, टूरिस्ट आज इतनी पूरी दुनिया से यहाँ पे आ रहे हैं, इतना अमन से इलेक्शन यहाँ पे हुए हैं, यहाँ पे एक अमन की बहुत बड़ी फिजा कायम हुई है, उसको बदनाम करने के लिए चंद अनासर जो हैं वो उस पार से यहाँ बदमनी फैलाना चाहते हैं और जम्मू कश्मीर के आवाम को बदनाम करना चाहते हैं।
0: उधर जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला हमले की निंदा कर रहे हैं तो महबूबा मुफ्ती सुरक्षा के इंतजामों पर सवाल खड़े कर रही हैं।
2: बाहर से जो लोग कश्मीर में काम करने आए थे, थोड़ी इज्जत की रोजी रोटी कमाने आए थे, उन बेगुनाह लोगों को इस तरह निशाना बनाया गया। इस हमले की जितनी निंदा की जाए कम है।
3: जो सिक्योरिटी है, जो यहाँ इतना सिक्योरिटी की वजह से लोगों को इतना अजाब है लोगों पे, उसके बावजूद ये इंसिडेंट्स होना मुझे लगता है कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में कोताही है।
0: इस हमले के बीच फारूक अब्दुल्ला के बयान ने घाटी की सियासत को गर्म कर दिया है। फारूक अब्दुल्ला ने शंका जताई कि आखिर कश्मीर में स्टेटहुड की मांग के समय ही हमला क्यों होता है।
4: मुझे नहीं पता ये क्यों उस वक्त होता है जब हम लोग स्टेटहुड मांग रहे होते हैं।
5: डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कुलगाम में हुए आतंकवादी हमला जिसमें दो मजदूरों को निशाना बनाया गया है, उस हमले को लेकर स्टेटहुड के साथ उस हमले को जोड़ा है। ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने दिया है, उन्हें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए।
0: एक ओर पाकिस्तान से पीओके नहीं संभल रहा तो दूसरी ओर घाटी में माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मजदूरों को निशाना बनाना बताता है कि आतंकी कितना बौखलाए हुए हैं।
6: मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ऐसी ही जो ईंटें यहाँ जहाँ बनती हैं, ईंटों का भट्ठा था और वहां वो काम कर रहे थे। 8:30 बजे का समय था जब बाहर काम के बाद वो लोग खड़े थे और जो मिलिटेंट हैं, दो उनकी संख्या बताई जाती है, बाइक पे आके काफी करीब से उन पे गोलियां चलाई, दोनों की इसमें मौत हो गई। और
7: हमारे बाबूजी ने कह रखा कि रोड पे जाना इस समय मना है, अपने बस यही रहना मरिया के अंदर में।
6: अच्छा, बाहर नहीं घूमना?
7: बाहर नहीं घूमना बस,
6: खासकर शाम वाम के समय।
7: हाँ, शाम वाम समय।
8: पहली बात, हम लोग जाती नहीं ऑटो बंदे, हम ऑटो बंदे शाम में घर में ही रहते
6: हैं, यही रहते हैं।
0: श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ मीर फरीद, कुलगाम आज तक। बात अब गुजरात की करेंगे जहां एक बार फिर बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं और साउथ गुजरात के बहुत सारे जिले पहले प्रभावित हुए थे, कई शहरों में बाढ़ आई थी, अब एक बार फिर से हालात बहुत बुरे हैं। सूरत, नवसारी, डांग, खेड़ा, भरूच जिलों में हाल बेहाल है।

0: गुजरात में एक बार फिर से भारी बारिश के बाद कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं और फिर से दक्षिण गुजरात के ही जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। नवसारी और डांग जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण अंबिका और पूर्णा नदी उफान पर है। डांग के सुबीर तालुका में करीब 8 इंच बारिश दर्ज होने के बाद पूर्णा नदी समेत अन्य नदी नालों में बहुत ज्यादा पानी भर गया, तो पूर्णा नदी का जलस्तर बढ़ने से गोदड़िया पुल के ऊपर से पानी बहता दिखाई दे रहा है। ये हालात बहुत खतरनाक हैं। आसपास के इलाकों में बाढ़ की आशंका बढ़ गई। नवसारी में प्रशासन अलर्ट पर है क्योंकि पूर्णा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। नवसारी शहर में लगातार बारिश के कारण कई इलाकों में जल भराव की स्थिति बन गई। इधर भावनगर में भी हालात बिगड़ने लगे हैं। यहां जिले के पालीताना, जेसर, तलाजा, सीहोर, बगदाना, सोनगढ़, गोघा, अलंग और अन्य इलाकों में बारिश हुई। पालीताना में भारी बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया। सूरत शहर में भी शुक्रवार तड़के से ही मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। लगातार हो रही तेज बारिश के कारण शहर के कई निचले हिस्सों में जलभराव की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई। शहर के कई निचले इलाकों में सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया। गुजरात के खेड़ा जिले की सभी तहसीलों में भी शुक्रवार को सुबह से ही मूसलाधार बारिश जारी रही। नादियाद में भारी तबाही हुई। पूरा नादियाद शहर जलमग्न हो चुका है। सड़कें समंदर बन चुकी हैं और निचले इलाकों में जलभराव से इलाके टापू में तब्दील हो गए। सिर्फ 6 घंटे में ही 133 से 191 मिलीमीटर की बारिश दर्ज की गई।
1: जिस तरह से दो दिन पूरे गुजरात में हाई अलर्ट जारी किया गया है, हम अभी खेड़ा जिले के नड़ियाद में है। नड़ियाद में अब तक तकरीबन 7 इंच से ज्यादा जो है वो बारिश दर्ज की गई है, जिसके चलते जो निचले इलाके हैं वो प्रभावित हुए हैं। निचले इलाके में जिस तरह से जल भरा हुआ है, प्रशासन पहले से अलर्ट था, जिसके चलते पूरी व्यवस्था है जो की गई है, जिसके यहाँ पर जिस तरह से निचले इलाके में अस्पतालें आई हुई है, अस्पताल में आने जाने के लिए दर्दी जो है उनके लिए जो ट्रैक्टर ट्रॉली की जो है वो व्यवस्था की गई है, जिससे लोगों को आसानी रहे। साथ ही प्रशासन ने पहले से ही अपील कर दी थी कि लोग काम के अलावा बाहर न निकले। साथ ही जिस तरह से पूरे जो हालात है देख सकते हैं, निचले इलाके में जल भरा हुआ है।
0: चिंता इस बात की है कि मौसम विभाग ने अभी भी बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। प्रशासन कह रहा है कि जब तक कोई बेहद जरूरी काम ना हो घर से बाहर ना निकले। उधर भरूच में भी बारिश का रेड अलर्ट है। आसमान से जैसे आफत बरस रही है। शुक्रवार की सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है। निचले इलाके और मार्गों को बारिश के पानी ने जलमग्न कर दिया। भरूच, अंकलेश्वर, नेत्रंग, हासौट, जगड़िया, वालिया तहसील पानी पानी हो गई। जिले में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ एक्टिव है।
2: रेड अलर्ट के चलते सुबह से ही भारी बारिश के कारण आसमान से आफत रूपी बारिश ने पूरे जिले को पानी से लबालब कर दिया है। पिछले 10 घंटों में सबसे ज़्यादा नेत्रंग तहसील में 10.5 इंच बारिश बरस चुकी है, जिसके कारण मुख्य मार्ग और सभी जगह पे फिलहाल पानी ही पानी नजर आ रहा है। जनजीवन और यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है।
0: गुजरात के नर्मदा जिले में भी बुरा हाल है। यहाँ इतनी बारिश हुई कि करजन डैम से 50,000 क्यूसेक से भी ज्यादा पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से बाढ़ के हालात पैदा हो गए। भारी बारिश के कारण नर्मदा जिले के 28 गांवों को अलर्ट किया गया और 50 से ज्यादा लोग सुरक्षित स्थान पर लाए गए हैं। जिले के गरुड़ेश्वर तहसील में 5 इंच जितनी बारिश की वजह से गांवों को जोड़ने वाले कई रास्ते टूट चुके हैं। छोटा उदयपुर में अश्विन नदी में फंसे एक युवक को एनडीआरएफ टीम ने बचाया। युवक अपनी जान जोखिम में डालकर 4 घंटे तक 1.5 फुट की दीवार पर बैठा रहा था। पानी बढ़ता रहा लेकिन टीम ने आखिरकार युवक को बचा लिया।
3: हवामान विभाग की जो आगाही थी उसके अनुसार नर्मदा और छोटा उदयपुर में मूसलाधार बारिश हुई। आप तस्वीरों में देख पा रहे ये जो करजन नदी है, करजन नदी उफान हुए है क्योंकि जो करजन डैम है वहां से 50,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। इसके कारण नदी का फ्लो काफी बढ़ चुका है। साथ में छोटा उदयपुर जिले के अंदर जो अश्विनी नदी है वहां पे एक आदमी का रेस्क्यू किया गया था जहां पे वो पानी में फंस गया था। नर्मदा और छोटा उदयपुर जिले में भारी बारिश के कारण गांवों के अंदर जो नदियां उफान पे है और खास तौर पे जो आदिवासी इलाके हैं उनको रेस्क्यू करके बाहर लाया जा रहा है।
0: आज तक ब्यूरो।
4: अब रुख करते हैं पश्चिम एशिया की तरफ जहां पर आखिर क्या हुआ कि अमेरिका अब इसराइल के साथ मिलकर ईरान पर बहुत बड़े हमले करने की तैयारियों में जुट गया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।

0: मिसाइलें एक बार फिर गरज रही हैं। मेल मुलाकातों की डोर एक बार फिर टूटती दिख रही है। अमेरिका ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों को बम बरसाकर ध्वस्त करने का दावा किया है। इसके अलावा ईरान के किशम इलाके की ये तस्वीरें भी अमेरिका के ताजा हमलों से हुई तबाही की गवाह हैं। रिहायशी इलाके में मिसाइल के हमले से ये पूरा घर तबाह हो गया। धमाका इतना जबरदस्त था कि उससे काफी बड़ा गड्ढा भी हो गया। उधर ईरान भी जॉर्डन, बहरीन, कुवैत और मिस्र में अमेरिकी सैन्य बेस पर लगातार हमले कर रहा है। कुवैत पर उसने कई ड्रोन हमले किए, हालांकि कुवैत का दावा है कि इन्हें नाकाम कर दिया गया। इस बीच ओमान के तट के पास एक तेल टैंकर के बेहद करीब जोरदार धमाका हुआ है। हालांकि जहाज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन पूरे इलाके में अलर्ट जारी कर जांच शुरू कर दी गई है। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक ये हमला ओमान के खासाब से करीब 39 किलोमीटर दूर हुआ। लेकिन ट्रंप की मौजूदगी में हुई कैबिनेट की मीटिंग से जो खबरें आ रही हैं, वो ईरान की चिंता बढ़ाने वाली हैं। अमेरिकी मीडिया का दावा है कि अमेरिका और इजराइल ईरान के ऊर्जा ढांचे पर बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। आज या फिर कल ईरान के बिजली संयंत्रों और तेल रिफाइनरियों को बड़े पैमाने पर निशाना बनाया जा सकता है। ऐसे तमाम ठिकानों की सूची बना ली गई है। इस मीटिंग में ट्रंप बेहद गुस्से में थे। उनका साफ कहना था कि परमाणु हथियारों से जुड़ी डील के लिए घंटों खराब करने का कोई मतलब नहीं है।
1: We have great people talking. Marco's involved.
2: They're all involved. Talks aren't happening.
1: Very good people. We have the best people. But they'll make a deal. As an example, we'll talk about nuclear. And we'll be in there talking about nuclear for 7 hours. I say, why do you need 7? You can take 10 minutes. You have 5 minutes. You should solve it. But 7 hours. And then they'll go out. And I'll say, they discuss nuclear. And they'll go out and they'll say, we never discussed nuclear. And I said, why do they say that? All they do is make me angry.
0: तो क्या ईरान के इस रवैये से सीज फायर की संभावनाएं खत्म होती जा रही हैं? इस सवाल के जवाब में ट्रंप का साफ कहना था कि ईरान ने बातचीत को ईमानदारी से आगे नहीं बढ़ाया और भरोसा तोड़ा है।
1: And Iran now. Iran is doing very poorly. Just in case you read incorrect stories, they're doing very, very poorly. They're having a hard time. They've been very dishonest. They've been very dishonorable to deal with. But that makes no difference. They're doing very, very poorly. Losing faith in them because they do lie and they do misrepresent.
0: इस अहम बैठक में जिस मूड में ट्रंप दिख रहे थे, उससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि इजराइल के साथ मिलकर अगले कुछ घंटों में अमेरिका ईरान पर ताबड़तोड़ हमले करने की तैयारी में जुटा है। ये हमले इस बार सिर्फ सैन्य ठिकानों पर नहीं होंगे, बल्कि अहम एनर्जी सेंटर तबाह किए जाएंगे। उधर ईरान ने दो टूक कह दिया है कि अगर अमेरिका ने एनर्जी सेंटरों पर हमले किए तो उसके सैन्य ठिकानों को तबाह करने में ईरान कोई कसर नहीं छोड़ेगा। आज तक ब्यूरो।
3: रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।

0: जेन जी को संदेश के बाद पीएम मोदी ने की युवा शक्ति की बात। मैसूरू में कहा कि देश की तरक्की में योगदान छात्रों को 21वीं सदी के लिए तैयार कर रही है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। शराबा चोरी पर प्रदर्शन को लेकर पप्पू यादव की बड़ी मुश्किलें। बीजेपी और साधु संतों ने वाराणसी में दर्ज कराया एफआईआर। राहुल गांधी का नाम भी, कई शहरों में प्रदर्शन। और सीमन को लेकर केंद्र पर भड़के राहुल। चेन्नई में कहा यह बीजेपी की बड़ी साजिश, समर्थन करने वाले तमिलनाडु को धोखा दे रहा है। पाकिस्तानी आतंकी संगठनों की हिट लिस्ट में सीएम शुभेंदु अधिकारी का नाम, बंगाल पुलिस का दावा। बर्दमान से हमीम मंडल की गिरफ्तारी के बाद खुलासा। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय महिला मुक्केबाजों का गोल्डन पंच, आज 5 बॉक्सरों ने जीता गोल्ड। भारत के खाते में अब तक 13 स्वर्ण। शुक्रवार को संसद में साधु के भेष में पप्पू यादव ने चंदा चोरी का वाला तंज वाला नाटक किया, जिसमें समाजवादी पार्टी कांग्रेस के नेता शामिल हुए और अब पप्पू यादव के इस अभिनय पर संत समाज और हिंदू संगठन भड़के हुए, जिसे लेकर कई जगहों पर प्रदर्शन हुआ।
1: ये गुस्सा है पप्पू यादव के उस तमाशे के खिलाफ जो संसद में उन्होंने साधु के भेष में किया। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं, जहां पप्पू यादव के पुतले फूंके जा रहे हैं, नारेबाजी की जा रही है।
2: हमारे समाज को, हमारे सनातन समाज को जो ये कर रहा है, हम माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि इसके ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1 के अंतर्गत मुकदमा कायम करके जेल भेजे और इनके खिलाफ जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, संसद की सदस्यता भी समाप्त होना चाहिए।
1: दिल्ली के जंतर मंतर में विश्व हिंदू परिषद ने पप्पू यादव को लेकर सद्बुद्धि हवन की।
3: तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर एक सांकेतिक सद्बुद्धि हवन जो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा यहाँ पर रखा गया, तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूंगा कि दिल्ली भर से जो संत लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हैं।
1: भोपाल में भी भारी संख्या में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, जहाँ पप्पू यादव के साथ राहुल गांधी और अखिलेश यादव का विरोध किया गया, पुतला जलाया गया।
4: कई वर्षों तक राम मंदिर का विरोध करते रहे, सफल नहीं हो पाए। जब कोर्ट से सफल नहीं हुए तो लोकतंत्र के मंदिर के बाहर राम मंदिर को, राम जी को बदनाम करने की जिन्होंने कोशिश करी, चाहे राहुल गांधी हो, पप्पू यादव हो या अखिलेश यादव हो, इस प्रकार से ड्रामा करके राम जी को जिन्होंने बदनाम किया, ये उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया जा रहा है।
1: उधर दिल्ली के जहांगीरपुरी थाने में सांसद पप्पू यादव के खिलाफ शिकायत दी। वहीं वाराणसी में भी संत समाज की ओर से पप्पू यादव पर एक मुकदमा दर्ज कराया गया है।
5: इसमें बीजेपी को घेरने के कहां से आ गई? इसमें बीजेपी का गेरुआ वस्त्र पहनने करके बाबा बन के घूमती है बीजेपी। आप बीजेपी को घेरो ना, किसने मना किया? आप बीजेपी से सवाल करो, बीजेपी के विपक्ष में आप बैठ जाओ, आप तमाम जो चीजें हैं उन पर, क्योंकि इनके पास तो कोई मुद्दे बचे नहीं है, तो अब यही मुद्दे उल्टे सीधे बचे हैं कि संतों का अपमान करेंगे। इन लोगों को ही लगता है कि संत समाज बीजेपी का समर्थन करती है, पर सत्य यह है कि संत समाज उसी का समर्थन करती है जो राम का समर्थन करती है, जो कृष्ण का समर्थन करती है, जो सनातन धर्म की रक्षा करती है।
1: इस बीच पप्पू यादव ने हंगामे के बीच इंस्टा पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो उन्हीं कपड़ों में पूजा करते नजर आ रहे हैं। वहीं पूरे मामले में पप्पू यादव की सफाई भी आई है।
6: आपको नहीं लगता कि आपने कुछ गलत किया है इस पूरे?
7: गलत किया मतलब सनातन और मंदिर के सारे पैसे को लुटेरे को उजागर करना और उसके खिलाफ लड़ना गलत है, मंदिर की रक्षा करना गलत है, मंदिर के पैसे की रक्षा करना गलत है, देश के 100 करोड़ का जो आस्था है मंदिर के प्रति उसकी रक्षा करना गलत है, हनुमान जी को नचाना सही है, गुड्डी में राम को उड़ाना सही है।
1: बहरहाल संसद में चंदा चोरी पर पप्पू यादव के नाटक ने नया सियासी घमासान शुरू कर दिया है। आज तक ब्यूरो।
0: अब आज पीएम मोदी के नए वीडियो संदेश की। पीएम मोदी ने शुक्रवार देर रात एक बार फिर से जेन जी को मैसेज दिया। रात तकरीबन 11 बजे के बाद पीएम मोदी इंस्टाग्राम पर लाइव आए, जहां उन्होंने अभद्र टिप्पणी करने वाले बच्चों को माफ करने की बात कही।

0: number one is India born.
1: 31 जुलाई की रात पीएम मोदी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट कर युवाओं को माफ कर दिया।
2: जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है।
1: हालांकि पीएम मोदी ने लड़कियों की भाषा पर हैरानी जताते हुए कहा कि जिस तरह कुछ बेटियों के मेरी माँ को गाली देते हुए वीडियो वायरल हुए उससे उन्हें कल्चरल शॉक लगा।
2: एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है।
1: हालांकि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और शिवसेना यूबीटी जैसे दल गाली देने वाले युवाओं को माफ कर देने वाली वीडियो पर भी हमलावर दिखे।
3: उनको ये पूछना चाहिए क्या इस देश के छात्र उनको माफ करेंगे? उनकी वजह से 35 दिन छात्रों को परेशान होना पड़ा, खुले छत के नीचे सोना पड़ा, लाठियां खानी पड़ी, पैलेट गन झेलनी पड़ी। प्रधानमंत्री जी को छात्र माफ करेंगे या नहीं, उनको देश के छात्रों से पूछना।
4: व्हाइट पद्धति ने पुरुष पोलिसांकडनं त्यांचे कपडे फाडले गेले, ज्या पद्धतीने तो व्हिडिओ मी पाहिला, एक ती मुलगी पुढे जाते आणि तो पोलीस पाठवून कसं तो मला बोलायला सुद्धा लाज वाटते। ज्या मुलांनी नीटच्या परीक्षेचा पेपर फुटला म्हणून आत्महत्या केली त्यांची पहिली माफी यांनी मागायला पाहिजे।
1: जहां बीजेपी कह रही है कि पीएम मोदी को 25 सालों में न जाने कितनी गालियां दी गई फिर भी वो विचलित नहीं हुए, वहीं आम आदमी पार्टी बोली बीजेपी और पीएम मोदी को विक्टिम कार्ड खेलकर उसका सियासी फायदा उठाना बखूबी आता है।
5: देखो मोदी जी बहुत बड़े हृदय के व्यक्ति हैं और तभी शायद यहां तक पहुंचे हैं। और जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं पिछले 12 साल क्या बल्कि पिछले 25 साल में मोदी जी जब से मुख्यमंत्री रहे, प्रधानमंत्री रहे, जिस प्रकार से उन्होंने उनके ऊपर विपक्ष के द्वारा जो निजी हमले हुए, कभी उनको मौत का सौदागर कहा गया, कभी चौकीदार चोर है, कभी किस प्रकार से घृणित आरोप उनके ऊपर लगाए गए, निश्चित रूप से एक ये नई शुरुआत है। और मोदी जी ने जिस प्रकार का आह्वान किया है कि हम लोग देश के एक साथ लेकर देश को आगे बढ़े,
6: पूरे देश की मानसिकता को आपने दूषित कर दिया है। मैं कोई ट्वीट करता हूं उसके नीचे इतनी भद्दी भद्दी टिप्पणियां, लाखों गालियां। आज तक अगर मेरे सारे ट्वीट उठा लिए जाएं और उसके नीचे की गालियां उठा ली जाएं जो आपके समर्थक आपके लोगों ने दी हैं, लाखों लाख गालियां दी हैं, माँ की बहन की गालियां। मेरी आदत नहीं है रोने धोने की, आपकी आदत है। आपको कुछ भी होता है आप उसको कैश कराने के चक्कर में लग जाते हैं।
1: फिलहाल पीएम मोदी के माफी वाले वीडियो पर सियासी महाभारत थमती नहीं दिख रही। आज तक ब्यूरो।
7: यूपी में बन रहे बटेश्वर कॉरिडोर की जिसके निर्माण में समाजवादी पार्टी ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया तो राजनीति गर्मा गई। बीजेपी ने हालांकि विपक्षी दलों पर पलटवार भी किया।
8: ये तस्वीरें आगरा में बन रहे बटेश्वर कॉरिडोर की है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इन तस्वीरों को साझा किया और कॉरिडोर के निर्माण में भारी अनियमितता, गड़बड़ी और भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया। साथ ही दावा यह भी किया कि शिकायतकर्ताओं को धमकाया जा रहा है।
9: समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने बटेश्वर महादेव का एक वीडियो जारी करके सोशल मीडिया पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी पर साफ तरीके से कहा है कि बिना बेस के निर्माण के पीवीसी वहां पर सीमेंटेड की जा रही है, यानी कि खामियों की बात की है।
8: यूपी में राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर पहले ही संग्राम जारी है। संसद तक इसे लेकर जंग छिड़ी है। इस बीच समाजवादी पार्टी ने धर्म आस्था से जुड़े एक और मुद्दे को उठाकर यूपी सरकार को घेरने की कोशिश की।
10: देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार वैसे तो ऊपर से लेकर नीचे तक जो भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, लेकिन अब

0: किया, वीडियो फुटेजेस के साथ उन्होंने दर्शाने का काम किया।
1: भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में पहले भ्रष्टाचार होता है और फिर शिकायतकर्ताओं को धमकाया जाता है। बटेश्वर कॉरिडोर में भी यही हो रहा है, राम मंदिर के निर्माण में भी यही हो रहा है, चंदा चोरी में भी यही हो रहा है, जिस तरीके से एक्सप्रेस वे धस रहे हैं उन सारी जगहों पर शिकायतकर्ताओं को धमकाया जा रहा है।
2: अखिलेश यादव जी की राजनीति अब केवल अफवाहों पर और आरोप पर तक सीमित रह गई है। बिना किसी ठोस प्रमाण के वे कुछ भी कहते रहते हैं। अगर उनके पास कोई ठोस प्रमाण है तो निश्चित रूप से जांच एजेंसी को दें। हमारी सरकार हर विषय पर जांच कराने के लिए तैयार है।
3: विपक्ष के हमलों और बीजेपी के पलटवार के बीच बटेश्वर कॉरिडोर पर नई राजनीति शुरू हो गई। एक और धार्मिक क्षेत्र को लेकर विपक्ष और बीजेपी अब आमने सामने आ गए हैं। आशीष श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
4: बात अब जम्मू कश्मीर की, जहां कुलगाम से बड़ी खबर आई है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम के केलाम इलाके में आतंकवादियों ने दो गैर कश्मीरी मजदूरों को गोली मार दी। आतंकी हमले में एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरे ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। दोनों ही मजदूर छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। इस हमले के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की और सर्च ऑपरेशन जारी है।
5: एक बार फिर जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने मजदूरों को टारगेट किया। एक बार फिर गैर कश्मीरी मजदूरों को निशाना बनाकर आतंकी हमला हुआ। ये वारदात कुलगाम के केल्लाम इलाके में हुई जहां ईंट भट्टे पर काम करने वाले दो मजदूर आतंकी हमले में मारे गए।
6: रात में ये टारगेटेड अटैक हुआ जहां, जैसे आपने कहा, फिर एक बार नॉन लोकल जो लेबरर थे यानी कि मजदूर थे, एक जो ईंटों का कारखाना होता है वहां काम करते थे, और तकरीबन 8:30 बजे बाइक पे जो है दो आतंकी उनके करीब आए और गोलियों की बौछार कर दी। दोनों जो हैं काफी गंभीर रूप से घायल हुए लेकिन एक की मृत्यु जो है मौके पे हुई, दूसरा उसको इवैक्यूएट किया गया हॉस्पिटल। और अभी खबर मिली है कि श्रीनगर के जो शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है वहां उनकी जो है मौत हो गई है। तो दो लेबरर अब इसमें मारे गए हैं। सुरक्षा एजेंसीज ने इसके बाद जो है पूरे इलाके को घेर के जो एसओपी रहता है तलाशी अभियान शुरू किया है लेकिन 4 साल के बाद ऐसी जो है घटना हुई है, नई नहीं है। जैसे आपने कहा, इससे पहले भी जो सॉफ्ट टारगेट्स हैं ये नॉन लोकल लेबरर्स, इनको टारगेट किया गया है।
5: वारदात की खबर मिलते ही सुरक्षा बल एक्शन में आए, पूरे इलाके की घेराबंदी दी और हमलावर आतंकियों की तलाश में चप्पे चप्पे की जांच शुरू हो गई। मजदूरों को टारगेट कर जम्मू कश्मीर में हुआ यह हमला इसलिए बेहद गंभीर और चिंताजनक है क्योंकि ऐसी आतंकी वारदात करीब 4 साल बाद दोहराई गई है जिसके बाद से सुरक्षा एजेंसियां भी काफी चौकन्ना हो गई हैं। आतंकी संगठन लश्कर से जुड़े संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF कुलगाम में हुए हमले की जिम्मेदारी ली है जिससे साफ है कि इस हमले की साजिश सीमा पार से रची गई।
6: फिर एक बार जो लश्कर का शेडो है द रेजिस्टेंस फ्रंट, उन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली है और साफ तौर पे इसके बाद सुरक्षा जो है काफी बढ़ा दी गई। हम श्रीनगर से यहाँ की तरफ आए, जगह जगह जो है चेक पॉइंट्स लगाए गए हैं और यहाँ भी जैसे आप देख सकते हैं सुरक्षा बलों के जवान जो है नाकाबंदी लगाई हुई है। पुलिस है, CRPF है, जो भी गाड़ी यहां से जा रही है उसको चेक किया जा रहा है और इंटेल बेस जो है सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन अभी जगह जगह चल रहा है। लेकिन साफ तौर पर ये चिंता का विषय है सुरक्षा एजेंसी के लिए क्योंकि कोई ना कोई मॉड्यूल है, स्लीपर सेल है लश्कर का जो एक्टिवेट हो गया है, उनको साफ तौर पे उस तरफ से आदेश है कि आप एक्टिवेट हो जाइए, टारगेट्स को हिट कीजिए। और इससे पहले 2021-22 में एक सिलसिला चला था जहां कश्मीरी पंडित और नॉन लोकल लेबरर्स को टारगेट किया गया था बिल्कुल इसी तरीके से, ज्यादातर दक्षिणी कश्मीर में, और इस बार फिर एक बार ये सिलसिला जो है शुरू होता दिख रहा है।
5: जम्मू कश्मीर में जो दो मजदूर आतंकी हमले में मारे गए वो दोनों ही छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। छत्तीसगढ़ के CM विष्णुदेव साय ने इसे कायराना हमला करार करते हुए मजदूरों की मौत पर शोक जताया है। उधर सुरक्षा बल लगातार आतंकियों की तलाश में लगे हैं ताकि टारगेट किलिंग करने वाले आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। कुलगाम से मीर फरीद आज तक।
4: कुलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर स्थानीय लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया, वहीं मामले पर सियासत भी तेज है।

0: पाकिस्तान के इस गुस्ताखी का गुस्सा कश्मीर की आवाम पर नजर आ रहा है। स्थानीय लोगों ने मजदूरों की हत्या पर कैंडल जलाई तो है पाकिस्तान का विरोध भी किया।
1: ये हमारी रियासत जम्मू कश्मीर को बदनाम करने के लिए जो एक अमन की फिजा यहाँ पे कायम हुई है, टूरिस्ट आज इतनी पूरी दुनिया से यहाँ पे आ रहे हैं, इतना अमन से इलेक्शन यहाँ पे हुए हैं, यहाँ पे एक अमन की बहुत बड़ी फिजा कायम हुई है, उसको बदनाम करने के लिए चंद अनासर जो हैं वो उस पार से यहाँ बदमनी फैलाना चाहते हैं और जम्मू कश्मीर के आवाम को बदनाम करना चाहते हैं।
0: उधर जम्मू कश्मीर के CM उमर अब्दुल्ला हमले की निंदा कर रहे हैं तो महबूबा मुफ्ती सुरक्षा के इंतजामों पर सवाल खड़े कर रही हैं।
2: बाहर से जो लोग कश्मीर में काम करने आए थे, थोड़ी इज्जत की रोजी रोटी कमाने आए थे, उन बेगुनाह लोगों को इस तरह निशाना बनाया गया। इस हमले की जितनी निंदा की जाए कम है।
3: जो सिक्योरिटी है, जो यहाँ इतना सिक्योरिटी की वजह से लोगों को इतना अजाब है लोगों पे, उसके बावजूद ये इंसिडेंट्स होना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में कोताही है।
0: इस हमले के बीच फारूक अब्दुल्ला के बयान ने घाटी की सियासत को गर्म कर दिया है। फारूक अब्दुल्ला ने शंका जताई कि आखिर कश्मीर में स्टेटहुड की मांग के समय ही हमला क्यों होता है।
4: मुझे नहीं पता ये क्यों उस वक्त होता है जब हम लोग स्टेटहुड मांग रहे होते हैं।
5: डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कुलगाम में हुए आतंकवादी हमला जिसमें 2 मजदूरों को निशाना बनाया गया है, उस हमले को लेकर स्टेटहुड के साथ उस हमले को जोड़ा है। ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने दिया है, उन्हें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए।
0: एक ओर पाकिस्तान से POK नहीं संभल रहा तो दूसरी ओर घाटी में माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मजदूरों को निशाना बनाना बताता है कि आतंकी कितना बौखलाए हुए हैं।
6: मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ऐसी ही जो ईंटें यहाँ जहाँ बनती हैं, ईंटों का भट्ठा था और वहाँ वो काम कर रहे थे। 8:30 का समय था जब बाहर काम के बाद वो लोग खड़े थे और जो मिलिटेंट हैं, 2 उनकी संख्या बताई जाती है, बाइक पे आके काफी करीब से उन पे गोलियां चलाई, दोनों की इसमें मौत हो गई। और
7: हमारे बाबूजी ने कह रखा कि रोड पे जाना इस समय मना है, अपने बस यहीं रहना है मरिया के अंदर में।
6: अच्छा, बाहर नहीं घूमना?
7: बाहर नहीं घूमना बस,
6: खासकर शाम वाम के समय।
7: हाँ, शाम वाम समय।
8: पहली बात हम लोग जाती नहीं है ऑटो बंदे, हम ऑटो बंदे शाम में घर में ही रहते
6: हैं, यही रहते हैं।
0: श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ मीर फरीद, कुलगाम आज तक। बात अब गुजरात की करेंगे जहां एक बार फिर बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं और साउथ गुजरात के बहुत सारे जिले पहले प्रभावित हुए थे, कई शहरों में बाढ़ आई थी, अब एक बार फिर से हालात बहुत बुरे हैं। सूरत, नवसारी, डांग, खेड़ा, भरूच जिलों में हाल बेहाल है।

0: गुजरात में एक बार फिर से भारी बारिश के बाद कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं और फिर से दक्षिण गुजरात के ही जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। नवसारी और डांग जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण अंबिका और पूर्णा नदी उफान पर है। डांग के सुबीर तालुका में करीब 8 इंच बारिश दर्ज होने के बाद पूर्णा नदी समेत अन्य नदी नालों में बहुत ज्यादा पानी भर गया, तो पूर्णा नदी का जलस्तर बढ़ने से गोदड़िया पुल के ऊपर से पानी बहता दिखाई दे रहा है। ये हालात बहुत खतरनाक हैं। आसपास के इलाकों में बाढ़ की आशंका बढ़ गई। नवसारी में प्रशासन अलर्ट पर है क्योंकि पूर्णा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। नवसारी शहर में लगातार बारिश के कारण कई इलाकों में जल भराव की स्थिति बन गई। इधर भावनगर में भी हालात बिगड़ने लगे हैं। यहां जिले के पालीताना, जेसर, तलाजा, सीहोर, बगदाना, सोनगढ़, गोघा, अलंग और अन्य इलाकों में बारिश हुई। पालीताना में भारी बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया। सूरत शहर में भी शुक्रवार तड़के से ही मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। लगातार हो रही तेज बारिश के कारण शहर के कई निचले हिस्सों में जलभराव की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई। शहर के कई निचले इलाकों में सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया। गुजरात के खेड़ा जिले की सभी तहसीलों में भी शुक्रवार को सुबह से ही मूसलाधार बारिश जारी रही। नादियाद में भारी तबाही हुई। पूरा नादियाद शहर जलमग्न हो चुका है। सड़कें समंदर बन चुकी हैं और निचले इलाकों में जलभराव से इलाके टापू में तब्दील हो गए। सिर्फ 6 घंटे में ही 133 से 191 मिलीमीटर की बारिश दर्ज की गई।
1: जिस तरह से दो दिन पूरे गुजरात में हाई अलर्ट जारी किया गया है, हम अभी खेड़ा जिले के नड़ियाद में है। नड़ियाद में अब तक तकरीबन 7 इंच से ज्यादा जो है वो बारिश दर्ज की गई है, जिसके चलते जो निचले इलाके हैं वो प्रभावित हुए हैं। निचले इलाके में जिस तरह से जल भरा हुआ है, प्रशासन पहले से अलर्ट था, जिसके चलते पूरी व्यवस्था है जो की गई है। यहाँ पर जिस तरह से निचले इलाके में अस्पतालें आई हुई, अस्पताल में आने जाने के लिए दर्दी जो है उनके लिए जो ट्रैक्टर ट्रॉली की जो है वो व्यवस्था की गई है, जिससे लोगों को आसानी रहे। साथ ही प्रशासन ने पहले से ही अपील कर दी थी कि लोग काम के अलावा बाहर न निकले। साथ ही जिस तरह से पूरे जो हालात है देख सकते हैं, निचले इलाके में जल भरा हुआ है।
0: चिंता इस बात की है कि मौसम विभाग ने अभी भी बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। प्रशासन कह रहा है कि जब तक कोई बेहद जरूरी काम ना हो घर से बाहर ना निकले। इधर भरूच में भी बारिश का रेड अलर्ट है। आसमान से जैसे आफत बरस रही है। शुक्रवार की सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है। निचले इलाके और मार्गों को बारिश के पानी ने जलमग्न कर दिया। भरूच, अंकलेश्वर, नेत्रंग, हासौट, जगड़िया, वालिया तहसील पानी पानी हो गई। जिले में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ एक्टिव है।
2: रेड अलर्ट के चलते सुबह से ही भारी बारिश के कारण आसमान से आफत रूपी बारिश ने पूरे जिले को पानी से लबालब कर दिया है। पिछले 10 घंटों में सबसे ज़्यादा नेत्रंग तहसील में 11.5 इंच बारिश बरस चुकी है, जिसके कारण मुख्य मार्ग और सभी जगह पे फिलहाल पानी ही पानी नज़र आ रहा है। जनजीवन और यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है।
0: गुजरात के नर्मदा जिले में भी बुरा हाल है। यहाँ इतनी बारिश हुई कि करजन डैम से 50,000 क्यूसेक से भी ज्यादा पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से बाढ़ के हालात पैदा हो गए। भारी बारिश के कारण नर्मदा जिले के 28 गांवों को अलर्ट किया गया और 50 से ज्यादा लोग सुरक्षित स्थान पर लाए गए हैं। जिले के गरुड़ेश्वर तहसील में 5 इंच जितनी बारिश की वजह से गांवों को जोड़ने वाले कई रास्ते टूट चुके हैं। छोटा उदयपुर में अश्विन नदी में फंसे एक युवक को एनडीआरएफ टीम ने बचाया। युवक अपनी जान जोखिम में डालकर 4 घंटे तक 1.5 फुट की दीवार पर बैठा रहा था। पानी बढ़ता रहा लेकिन टीम ने आखिरकार युवक को बचा लिया।
3: हवामान विभाग की जो आगाही थी उसके अनुसार नर्मदा और छोटा उदयपुर में मूसलाधार बारिश हुई। आप तस्वीरों में देख पा रहे ये जो करजन नदी है, करजन नदी उफान हुए है क्योंकि जो करजन डैम है वहां से 50,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। इसके कारण नदी का फ्लो काफी बढ़ चुका है। साथ में छोटा उदयपुर जिले के अंदर जो अश्विनी नदी है वहां पे एक आदमी का रेस्क्यू किया गया था जहां पे वो पानी में फंस गया था। नर्मदा और छोटा उदयपुर जिले में भारी बारिश के कारण गांवों के अंदर जो नदियां उफान पे है और खास तौर पे जो आदिवासी इलाके हैं उनको रेस्क्यू करके बाहर लाया जा रहा है।
0: आज तक ब्यूरो।
4: अब रुख करते हैं पश्चिम एशिया की तरफ जहां पर आखिर क्या हुआ कि अमेरिका अब इसराइल के साथ मिलकर ईरान पर बहुत बड़े हमले करने की तैयारियों में जुट गया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।

0: मिसाइलें एक बार फिर गरज रही हैं। मेल मुलाकातों की डोर एक बार फिर टूटती दिख रही है। अमेरिका ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों को बम बरसाकर ध्वस्त करने का दावा किया है। इसके अलावा ईरान के किशम इलाके की ये तस्वीरें भी अमेरिका के ताजा हमलों से हुई तबाही की गवाह हैं। रिहायशी इलाके में मिसाइल के हमले से ये पूरा घर तबाह हो गया। धमाका इतना जबरदस्त था कि उससे काफी बड़ा गड्ढा भी हो गया। उधर ईरान भी जॉर्डन, बहरीन, कुवैत और मिस्र में अमेरिकी सैन्य बेस पर लगातार हमले कर रहा है। कुवैत पर उसने कई ड्रोन हमले किए, हालांकि कुवैत का दावा है कि इन्हें नाकाम कर दिया गया। इस बीच ओमान के तट के पास एक तेल टैंकर के बेहद करीब जोरदार धमाका हुआ है। हालांकि जहाज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन पूरे इलाके में अलर्ट जारी कर जांच शुरू कर दी गई है। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक यह हमला ओमान के खासाब से करीब 39 किलोमीटर दूर हुआ। लेकिन ट्रंप की मौजूदगी में हुई कैबिनेट की मीटिंग से जो खबरें आ रही हैं, वो ईरान की चिंता बढ़ाने वाली हैं। अमेरिकी मीडिया का दावा है कि अमेरिका और इजराइल ईरान के ऊर्जा ढांचे पर बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। आज या फिर कल ईरान के बिजली संयंत्रों और तेल रिफाइनरियों को बड़े पैमाने पर निशाना बनाया जा सकता है। ऐसे तमाम ठिकानों की सूची बना ली गई है। इस मीटिंग में ट्रंप बेहद गुस्से में थे। उनका साफ कहना था कि परमाणु हथियारों से जुड़ी डील के लिए घंटों खराब करने का कोई मतलब नहीं है।
1: We have great people talking. Marco's involved.
2: They're all involved. Talks aren't happening.
1: Very good people. We have the best people. But they'll make a deal. As an example, we'll talk about nuclear. And we'll be in there talking about nuclear for 7 hours. I say, why do you need 7? You can take 10 minutes. You have 5 minutes. You should solve it. But 7 hours. And then they'll go out. And I'll say, they discuss nuclear. And they'll go out and they'll say, we never discussed nuclear.
0: तो क्या ईरान के इस रवैये से सीज फायर की संभावनाएं खत्म होती जा रही हैं? इस सवाल के जवाब में ट्रंप का साफ कहना था कि ईरान ने बातचीत को ईमानदारी से आगे नहीं बढ़ाया और भरोसा तोड़ा है।
1: Iran is doing very poorly. Just in case you read incorrect stories, they're doing very, very poorly. They're having a hard time. They've been very dishonest. They've been very dishonorable to deal with. But that makes no difference. They're doing very, very poorly. I'm losing faith in them because they do lie and they do misrepresent.
0: इस अहम बैठक में जिस मूड में ट्रंप दिख रहे थे, उससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि इजराइल के साथ मिलकर अगले कुछ घंटों में अमेरिका ईरान पर ताबड़तोड़ हमले करने की तैयारी में जुटा है। ये हमले इस बार सिर्फ सैन्य ठिकानों पर नहीं होंगे, बल्कि अहम एनर्जी सेंटर तबाह किए जाएंगे। उधर ईरान ने दो टूक कह दिया है कि अगर अमेरिका ने एनर्जी सेंटरों पर हमले किए तो उसके सैन्य ठिकानों को तबाह करने में ईरान कोई कसर नहीं छोड़ेगा। आज तक ब्यूरो।
3: रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।

0: जेन जी को संदेश के बाद पीएम मोदी ने की युवा शक्ति की बात। मैसूरू में कहा कि देश की तरक्की में योगदान छात्रों को 21वीं सदी के लिए तैयार कर रही है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। चढ़ावा चोरी पर प्रदर्शन को लेकर पप्पू यादव की बड़ी मुश्किलें। बीजेपी और साधु संतों ने वाराणसी में दर्ज कराया एफआईआर। राहुल गांधी का नाम भी, कई शहरों में प्रदर्शन। और सीमन को लेकर केंद्र पर भड़के राहुल, चेन्नई में कहा यह बीजेपी की बड़ी साजिश, समर्थन करने वाले तमिलनाडु को धोखा दे रहा है। पाकिस्तानी आतंकी संगठनों की हिट लिस्ट में सीएम शुभेंदु अधिकारी का नाम, बंगाल पुलिस का दावा। बर्दमान से हमीम मंडल की गिरफ्तारी के बाद खुलासा। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय महिला मुक्केबाजों का गोल्डन पंच, आज 5 बॉक्सरों ने जीता गोल्ड। भारत के खाते में अब तक 13 स्वर्ण। शुक्रवार को संसद में साधु के भेष में पप्पू यादव ने चंदा चोरी का वाला तंज वाला नाटक किया, जिसमें समाजवादी पार्टी कांग्रेस के नेता शामिल हुए और अब पप्पू यादव के इस अभिनय पर संत समाज और हिंदू संगठन भड़के हुए, जिसे लेकर कई जगहों पर प्रदर्शन हुआ।
1: ये गुस्सा है पप्पू यादव के उस तमाशे के खिलाफ जो संसद में उन्होंने साधु के भेष में किया। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं, जहां पप्पू यादव के पुतले फूंके जा रहे हैं, नारेबाजी की जा रही है।
2: हमारे समाज को, हमारे सनातन समाज को जो कर रहा है, हम माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि इसके ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1 के अंतर्गत मुकदमा कायम करके जेल भेजे और इनके खिलाफ जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, संसद की सदस्यता भी समाप्त होना चाहिए।
1: दिल्ली के जंतर मंतर में विश्व हिंदू परिषद ने पप्पू यादव को लेकर सद्बुद्धि हवन किया।
3: तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर एक सांकेतिक सद्बुद्धि हवन जो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा यहाँ पर रखा गया, तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूंगा कि दिल्ली भर से जो संत लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हैं।
1: भोपाल में भी भारी संख्या में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, जहाँ पप्पू यादव के साथ राहुल गांधी और अखिलेश यादव का विरोध किया गया, पुतला जलाया गया।
4: कई वर्षों तक राम मंदिर का विरोध करते रहे, सफल नहीं हो पाए। जब कोर्ट से सफल नहीं हुए तो लोकतंत्र के मंदिर के बाहर राम मंदिर को, राम जी को बदनाम करने की जिन्होंने कोशिश करी, चाहे राहुल गांधी हो, पप्पू यादव हो या अखिलेश यादव हो, इस प्रकार से ड्रामा करके राम जी को जिन्होंने बदनाम किया, ये उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया जा रहा है।
1: उधर दिल्ली के जहांगीरपुरी थाने में सांसद पप्पू यादव के खिलाफ शिकायत दी। वहीं वाराणसी में भी संत समाज की ओर से पप्पू यादव पर एक मुकदमा दर्ज कराया गया है।
5: इसमें बीजेपी को घेरने के कहां से आ गई? इसमें बीजेपी का गेरुआ वस्त्र पहनने करके बाबा बन के घूमती है बीजेपी। आप बीजेपी को घेरो ना, किसने मना किया? आप बीजेपी से सवाल करो, बीजेपी के विपक्ष में आप बैठ जाओ, आप तमाम जो चीजें हैं उन पर, क्योंकि इनके पास तो कोई मुद्दे बचे नहीं है, तो अब यही मुद्दे उल्टे सीधे बचे हैं कि संतों का अपमान करेंगे। इन लोगों को ही लगता है कि संत समाज बीजेपी का समर्थन करती है, पर सत्य यह है कि संत समाज उसी का समर्थन करती है जो राम का समर्थन करती है, जो कृष्ण का समर्थन करती है, जो सनातन धर्म की रक्षा करती है।
1: इस बीच पप्पू यादव ने हंगामे के बीच इंस्टा पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो उन्हीं कपड़ों में पूजा करते नजर आ रहे हैं। वहीं पूरे मामले में पप्पू यादव की सफाई भी आई है।
6: आपको नहीं लगता कि आपने कुछ गलत किया है इस पूरे?
7: मतलब सनातन और मंदिर के सारे पैसे को, लुटेरे को उजागर करना और उसके खिलाफ लड़ना गलत है, मंदिर की रक्षा करना गलत है, मंदिर के पैसे की रक्षा करना गलत है, देश के 100 करोड़ का जो आस्था है मंदिर के प्रति उसकी रक्षा करना गलत है, हनुमान जी को नचाना सही है, गुड्डी में राम को उड़ाना सही है।
1: बहरहाल संसद में चंदा चोरी पर पप्पू यादव के नाटक ने नया सियासी घमासान शुरू कर दिया है। आज तक ब्यूरो।
0: अब आज पीएम मोदी के नए वीडियो संदेश की। पीएम मोदी ने शुक्रवार देर रात एक बार फिर से जेन जी को मैसेज दिया। रात तकरीबन 11 बजे के बाद पीएम मोदी इंस्टाग्राम पर लाइव आए, जहां उन्होंने अभद्र टिप्पणी करने वाले बच्चों को माफ करने की बात कही।

0: 31 जुलाई की रात पीएम मोदी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट कर युवाओं को माफ कर दिया।
1: जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है।
0: हालांकि पीएम मोदी ने लड़कियों की भाषा पर हैरानी जताते हुए कहा कि जिस तरह कुछ बेटियों के मेरी माँ को गाली देते हुए वीडियो वायरल हुए उससे उन्हें कल्चरल शॉक लगा।
1: एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है।
0: हालांकि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और शिवसेना यूबीटी जैसे दल गाली देने वाले युवाओं को माफ कर देने वाले वीडियो पर भी हमलावर दिखे।
2: उनको ये पूछना चाहिए क्या इस देश के छात्र उनको माफ करेंगे? उनकी वजह से 35 दिन छात्रों को परेशान होना पड़ा, खुले छत के नीचे सोना पड़ा, लाठियां खानी पड़ी, पैलेट गन झेलनी पड़ी। प्रधानमंत्री जी को छात्र माफ करेंगे या नहीं, उनको देश के छात्रों से पूछना।
3: वाइट पद्धति ने पुरुष पोलिसांकडनं त्यांचे कपडे फाडले गेले, ज्या पद्धतीने तो व्हिडिओ मी पाहिला, एक ती मुलगी पुढे जाते आणि तो पोलीस पाठवून कसं तो मला बोलायला सुद्धा लाज वाटते। ज्या मुलांनी नीटच्या परीक्षेचा पेपर फुटला म्हणून आत्महत्या केली त्यांची पहिली माफी यांनी मागायला पाहिजे।
0: जहाँ बीजेपी कह रही है कि पीएम मोदी को 25 सालों में न जाने कितनी गालियां दी गई फिर भी वो विचलित नहीं हुए, वहीं आम आदमी पार्टी बोली बीजेपी और पीएम मोदी को विक्टिम कार्ड खेलकर उसका सियासी फायदा उठाना बखूबी आता है।
4: देखो मोदी जी बहुत बड़े हृदय के व्यक्ति हैं और तभी शायद यहाँ तक पहुंचे हैं। और जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं पिछले 25 साल में मोदी जी जब से मुख्यमंत्री रहे, प्रधानमंत्री रहे, जिस प्रकार से उन्होंने उनके ऊपर विपक्ष के द्वारा जो निजी हमले हुए, कभी उनको मौत का सौदागर कहा गया, कभी चौकीदार चोर है, कभी किस प्रकार से घृणित आरोप उनके ऊपर लगाए गए, निश्चित रूप से एक ये नई शुरुआत है। और मोदी जी ने जिस प्रकार का आह्वान किया है कि हम लोग देश के एक साथ लेकर देश को आगे बढ़े,
5: पूरे देश की मानसिकता को आपने दूषित कर दिया है। मैं कोई ट्वीट करता हूं उसके नीचे इतनी भद्दी भद्दी टिप्पणियां, लाखों गालियां। आज तक अगर मेरे सारे ट्वीट उठा लिए जाए और उसके नीचे की गालियां उठा ली जाए जो आपके समर्थक आपके लोगों ने दी है, लाखों लाख गालियां दी है, माँ की बहन की गालियां। मेरी आदत नहीं है रोने धोने की, आपकी आदत है। आपको कुछ भी होता है आप उसको कैश कराने के चक्कर में लग जाते हैं।
0: फिलहाल पीएम मोदी के माफी वाले वीडियो पर सियासी महाभारत थमती नहीं दिख रही। आज तक ब्यूरो।
6: यूपी में बन रहे बटेश्वर कॉरिडोर की जिसके निर्माण में समाजवादी पार्टी ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया तो राजनीति गर्मा गई। बीजेपी ने हालांकि विपक्षी दलों पर पलटवार भी किया।
7: ये तस्वीरें आगरा में बन रहे बटेश्वर कॉरिडोर की है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इन तस्वीरों को साझा किया और कॉरिडोर के निर्माण में भारी अनियमितता, गड़बड़ी और भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया। साथ ही दावा ये भी किया कि शिकायतकर्ताओं को धमकाया जा रहा है।
8: समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने बटेश्वर महादेव का एक वीडियो जारी करके सोशल मीडिया पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी पर साफ तरीके से कहा है कि बिना बेस के निर्माण के पीवीसी वहां पर सीमेंटेड की जा रही है, यानी कि खामियों की बात की है।
7: यूपी में राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर पहले ही संग्राम जारी है। संसद तक इसे लेकर जंग छिड़ी है। इस बीच समाजवादी पार्टी ने धर्म आस्था से जुड़े एक और मुद्दे को उठाकर यूपी सरकार को घेरने की कोशिश की।
9: देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार वैसे तो ऊपर से लेकर के नीचे तक जो भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, लेकिन अब इन्होंने भगवानों को भी नहीं छोड़ा, इन्होंने मंदिरों को भी नहीं छोड़ा। आज जिस तरीके से बटेश्वर कॉरिडोर में जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है, जिस तरीके से मिलावट हो रहा है, जिस तरीके से निर्माण में अनियमितता हो रही है, उसको माने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने अपने पोस्ट में दर्शाने का काम किया, वीडियो फुटेजेस के साथ उन्होंने दर्शाने का काम किया।
10: भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में पहले भ्रष्टाचार होता है, फिर शिकायतकर्ताओं को धमकाया जाता है। बटेश्वर कॉरिडोर में भी यही हो रहा है, राम मंदिर के निर्माण में भी यही हो रहा है, चंदा चोरी में भी यही हो रहा है, जिस तरीके से एक्सप्रेस वे धस रहे हैं, उन सारी जगहों पर शिकायतकर्ताओं को तो धमकाया जा रहा है।
11: अखिलेश यादव जी की राजनीति अब केवल अफवाहों पर और आरोप पर तक सीमित रह गई है। बिना किसी ठोस प्रमाण के वे कुछ भी कहते रहते हैं। अगर उनके पास कोई ठोस प्रमाण है तो निश्चित रूप से जांच एजेंसी को दें। हमारी सरकार हर विषय पर जांच कराने के लिए तैयार है।
7: विपक्ष के हमलों और बीजेपी के पलटवार के बीच बटेश्वर कॉरिडोर पर नई राजनीति शुरू हो गई। एक और धार्मिक क्षेत्र को लेकर विपक्ष और बीजेपी अब आमने सामने आ गए हैं। आशीष श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
6: बात अब जम्मू कश्मीर की, जहां कुलगाम से बड़ी खबर आई है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम के केलाम इलाके में आतंकवादियों ने दो गैर कश्मीरी मजदूरों को गोली मार दी। आतंकी हमले में एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। दोनों ही मजदूर छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। इस हमले के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की और सर्च ऑपरेशन जारी है।
12: एक बार फिर जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने मजदूरों को टारगेट किया। एक बार फिर गैर कश्मीरी मजदूरों को निशाना बनाकर आतंकी हमला हुआ। ये वारदात कुलगाम के केल्लाम इलाके में हुई, जहां ईंट भट्टे पर काम करने वाले दो मजदूर आतंकी हमले में मारे गए।
13: रात में ये टारगेटेड अटैक हुआ, जहां जैसे आपने कहा, फिर एक बार नॉन लोकल जो लेबरर थे, यानी कि मजदूर थे, एक जो ईंटों का कारखाना होता है वहां काम करते थे, और तकरीबन 8:30 बजे बाइक पे जो है दो आतंकी उनके करीब आए और गोलियों की बौछार कर दी। दोनों जो हैं काफी गंभीर रूप से घायल हुए, लेकिन एक की मृत्यु जो है मौके पे हुई, दूसरा उसको इवैक्यूएट किया गया हॉस्पिटल। और अभी खबर मिली है कि श्रीनगर के जो शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, वहां उनकी जो है मौत हो गई है। तो दो लेबरर अब इसमें मारे गए हैं। सुरक्षा एजेंसीज ने इसके बाद जो है पूरे इलाके को घेर के जो एसओपी रहता है तलाशी अभियान शुरू किया है, लेकिन 4 साल के बाद ऐसी जो है घटना हुई है, नई नहीं है। जैसे आपने कहा, इससे पहले भी जो सॉफ्ट टारगेट्स हैं ये नॉन लोकल लेबरर्स, इनको टारगेट किया गया है।
12: वारदात की खबर मिलते ही सुरक्षा बल एक्शन में आए, पूरे इलाके की घेराबंदी दी और हमलावर आतंकियों की तलाश में चप्पे चप्पे की जांच शुरू हो गई। मजदूरों को टारगेट कर जम्मू कश्मीर में हुआ यह हमला इसलिए बेहद गंभीर और चिंताजनक है, क्योंकि ऐसी आतंकी वारदात करीब 4 साल बाद दोहराई गई है, जिसके बाद से सुरक्षा एजेंसियां भी काफी चौकन्ना हो गई हैं। आतंकी संगठन लश्कर से जुड़े संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF कुलगाम में हुए हमले की जिम्मेदारी ली है, जिससे साफ है कि इस हमले की साजिश सीमा पार से रची गई।
13: फिर एक बार जो लश्कर का शेडो है द रेजिस्टेंस फ्रंट, उन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली है और साफ तौर पे इसके बाद सुरक्षा जो है काफी बढ़ा दी गई है। हम श्रीनगर से यहाँ की तरफ आए, जगह जगह जो है चेक पॉइंट्स लगाए गए हैं और यहाँ भी जैसे आप देख सकते हैं सुरक्षा बलों के जवान जो है नाकाबंदी लगाई हुई है। पुलिस है, CRPF है, जो भी गाड़ी यहां से जा रही है उसको चेक किया जा रहा है और इंटेल बेस्ड जो है सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन अभी जगह जगह चल रहा है। लेकिन साफ तौर पर ये चिंता का विषय है सुरक्षा एजेंसी के लिए, क्योंकि कोई ना कोई मॉड्यूल है, स्लीपर सेल है लश्कर का जो एक्टिवेट हो गया है, उनको साफ तौर पे उस तरफ से आदेश है कि आप एक्टिवेट हो जाइए, टारगेट्स को हिट कीजिए। और इससे पहले 2021-22 में एक सिलसिला चला था जहां कश्मीरी पंडित और नॉन लोकल लेबरर्स को टारगेट किया गया था, बिल्कुल इसी तरीके से ज्यादातर दक्षिणी कश्मीर में, और इस बार फिर एक बार यह सिलसिला जो है शुरू होता दिख रहा है।
12: जम्मू कश्मीर में जो दो मजदूर आतंकी हमले में मारे गए वो दोनों ही छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। छत्तीसगढ़ के CM विष्णुदेव साय ने इसे कायराना हमला करार करते हुए मजदूरों की मौत पर शोक जताया है। उधर सुरक्षा बल लगातार आतंकियों की तलाश में लगे हैं, ताकि टारगेट किलिंग करने वाले आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। कुलगाम से मीर फरीद आज तक।
6: कुलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर स्थानीय लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया, वहीं मामले पर सियासत भी तेज है।

0: पाकिस्तान के इस गुस्ताखे का गुस्सा कश्मीर की आवाम पर नजर आ रहा है। स्थानीय लोगों ने मजदूरों की हत्या पर कैंडल जलाई तो है पाकिस्तान का विरोध भी किया।
1: ये हमारी रियासत जम्मू कश्मीर को बदनाम करने के लिए जो एक अमन की फिजा यहाँ पे कायम हुई है, टूरिस्ट आज इतनी पूरी दुनिया से यहाँ पे आ रहे हैं, इतना अमन से इलेक्शन यहाँ पे हुए हैं, यहाँ पे एक अमन की बहुत बड़ी फिजा कायम हुई है, उसको बदनाम करने के लिए चंद अनासर जो हैं वो उस पार से यहाँ बदमनी फैलाना चाहते हैं और जम्मू कश्मीर के आवाम को बदनाम करना चाहते हैं।
0: उधर जम्मू कश्मीर के CM उमर अब्दुल्ला हमले की निंदा कर रहे हैं तो महबूबा मुफ्ती सुरक्षा के इंतजामों पर सवाल खड़े कर रही हैं।
2: बाहर से जो लोग कश्मीर में काम करने आए थे, थोड़ी इज्जत की रोजी रोटी कमाने आए थे, उन बेगुनाह लोगों को इस तरह निशाना बनाया गया। इस हमले की जितनी निंदा की जाए कम है।
3: जो सिक्योरिटी है, जो यहाँ इतना सिक्योरिटी की वजह से लोगों को इतना अजाब है लोगों पे, उसके बावजूद ये इंसिडेंट्स होना मुझे लगता है कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में कोताही है।
0: इस हमले के बीच फारूख अब्दुल्ला के बयान ने घाटी की सियासत को गर्म कर दिया है। फारूख अब्दुल्ला ने शंका जताई कि आखिर कश्मीर में स्टेटहुड की मांग के समय ही हमला क्यों होता है।
4: मुझे नहीं पता ये क्यों उस वक्त होता है जब हम लोग स्टेटहुड मांग रहे होते हैं।
5: डॉक्टर फारूख अब्दुल्ला ने कुलगाम में हुए आतंकवादी हमला जिसमें 2 मजदूरों को निशाना बनाया गया है, उस हमले को लेकर स्टेटहुड के साथ उस हमले को जोड़ा है। ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने दिया है, उन्हें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए।
0: एक ओर पाकिस्तान से POK नहीं संभल रहा तो दूसरी ओर घाटी में माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मजदूरों को निशाना बनाना बताता है कि आतंकी कितना बौखलाए हुए हैं।
6: मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ऐसी ही जो ईंटें यहाँ जहाँ बनती हैं, ईंटों का भट्टा था और वहाँ वो काम कर रहे थे। 8:30 बजे का समय था जब बाहर काम के बाद वो लोग खड़े थे और जो मिलिटेंट हैं, 2 उनकी संख्या बताई जाती है, बाइक पे आके काफी करीब से उन पे गोलियां चलाई, दोनों की इसमें मौत हो गई। और
7: हमारे बाबूजी ने कह रखा कि रोड पे जाना इस समय मना है, अपने बस यहीं रहना है मरिया के अंदर में।
6: अच्छा, बाहर नहीं घूमना?
7: बाहर नहीं घूमना बस,
6: खासकर शाम वाम के समय।
7: हाँ, शाम वाम समय
8: हम लोग जाते ही नहीं, ऑटो बंदे हम ऑटो बंदे शाम में घर में ही रहते,
6: यही रहते
0: हैं। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ मीर फरीद, कुलगाम आज तक। बात अब गुजरात की करेंगे जहां एक बार फिर बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं और साउथ गुजरात के बहुत सारे जिले पहले प्रभावित हुए थे, कई शहरों में बाढ़ आई थी, अब एक बार फिर से हालात बहुत बुरे हैं। सूरत, नवसारी, डांग, खेड़ा, भरूच जिलों में हाल बेहाल है।

0: गुजरात में एक बार फिर से भारी बारिश के बाद कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं और फिर से दक्षिण गुजरात के ही जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। नवसारी और डांग जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण अंबिका और पूर्णा नदी उफान पर है। डांग के सुबीर तालुका में करीब 8 इंच बारिश दर्ज होने के बाद पूर्णा नदी समेत अन्य नदी नालों में बहुत ज्यादा पानी भर गया, तो पूर्णा नदी का जलस्तर बढ़ने से गोदड़िया पुल के ऊपर से पानी बहता दिखाई दे रहा है। यह हालात बहुत खतरनाक हैं। आसपास के इलाकों में बाढ़ की आशंका बढ़ गई। नवसारी में प्रशासन अलर्ट पर है क्योंकि पूर्णा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। नवसारी शहर में लगातार बारिश के कारण कई इलाकों में जल भराव की स्थिति बन गई। इधर भावनगर में भी हालात बिगड़ने लगे हैं। यहां जिले के पालीताना, जेसर, तलाजा, सीहोर, बगदाना, सोनगढ़, गोघा, अलंग और अन्य इलाकों में बारिश हुई। पालीताना में भारी बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया। सूरत शहर में भी शुक्रवार तड़के से ही मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। लगातार हो रही तेज बारिश के कारण शहर के कई निचले हिस्सों में जलभराव की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई। शहर के कई निचले इलाकों में सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया। गुजरात के खेड़ा जिले की सभी तहसीलों में भी शुक्रवार को सुबह से ही मूसलाधार बारिश जारी रही। नदियाद में भारी तबाही हुई। पूरा नदियाद शहर जलमग्न हो चुका है। सड़कें समंदर बन चुकी हैं और निचले इलाकों में जलभराव से इलाके टापू में तब्दील हो गए। सिर्फ 6 घंटे में ही 133 से 191 मिलीमीटर की बारिश दर्ज की गई।
1: जिस तरह से दो दिन पूरे गुजरात में हाई अलर्ट जारी किया गया है, हम अभी खेड़ा जिले के नड़ियाद में है। नड़ियाद में अब तक तकरीबन 7 इंच से ज्यादा जो है वो बारिश दर्ज की गई है, जिसके चलते जो निचले इलाके हैं वो प्रभावित हुए हैं। निचले इलाके में जिस तरह से जल भरा हुआ है, प्रशासन पहले से अलर्ट था, जिसके चलते पूरी व्यवस्था है जो की गई है। जिसके यहाँ पर जिस तरह से निचले इलाके में अस्पतालें आई हुई, अस्पताल में आने जाने के लिए दर्दी जो है उनके लिए जो ट्रैक्टर ट्रॉली की जो है वो व्यवस्था की गई है, जिससे लोगों को आसानी रहे। साथ ही प्रशासन ने पहले से ही अपील कर दी थी कि लोग काम के अलावा बाहर न निकले। साथ ही जिस तरह से पूरे जो हालात है देख सकते हैं, निचले इलाके में जल भरा हुआ है।
0: चिंता इस बात की है कि मौसम विभाग ने अभी भी बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। प्रशासन कह रहा है कि जब तक कोई बेहद जरूरी काम ना हो घर से बाहर ना निकले। इधर भरूच में भी बारिश का रेड अलर्ट है। आसमान से जैसे आफत बरस रही है। शुक्रवार की सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है। निचले इलाके और मार्गों को बारिश के पानी ने जलमग्न कर दिया। भरूच, अंकलेश्वर, नेत्रंग, हासौट, जगड़िया, वालिया तहसील पानी पानी हो गई। जिले में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ एक्टिव है।
2: रेड अलर्ट के चलते सुबह से ही भारी बारिश के कारण आसमान से आफत रूपी बारिश ने पूरे जिले को पानी से लबालब कर दिया है। पिछले 10 घंटों में सबसे ज़्यादा नेत्रंग तहसील में 10.5 इंच बारिश बरस चुकी है, जिसके कारण मुख्य मार्ग और सभी जगह पे फिलहाल पानी ही पानी नज़र आ रहा है। जनजीवन और यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है।
0: गुजरात के नर्मदा जिले में भी बुरा हाल है। यहाँ इतनी बारिश हुई कि करजन डैम से 50,000 क्यूसेक से भी ज्यादा पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से बाढ़ के हालात पैदा हो गए। भारी बारिश के कारण नर्मदा जिले के 28 गांवों को अलर्ट किया गया और 50 से ज्यादा लोग सुरक्षित स्थान पर लाए गए हैं। जिले के गरुड़ेश्वर तहसील में 5 इंच जितनी बारिश की वजह से गांवों को जोड़ने वाले कई रास्ते टूट चुके हैं। छोटा उदयपुर में अश्विन नदी में फंसे एक युवक को एनडीआरएफ टीम ने बचाया। युवक अपनी जान जोखिम में डालकर 4 घंटे तक 1.5 फुट की दीवार पर बैठा रहा था। पानी बढ़ता रहा लेकिन टीम ने आखिरकार युवक को बचा लिया।
3: हवामान विभाग की जो आगाही थी उसके अनुसार नर्मदा और छोटा उदयपुर में मूसलाधार बारिश हुई। आप तस्वीरों में देख पा रहे ये जो करजन नदी है, करजन नदी उफान हुए है क्योंकि जो करजन डैम है वहां से 50,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। इसके कारण नदी का फ्लो काफी बढ़ चुका है। साथ में छोटा उदयपुर जिले के अंदर जो अश्विनी नदी है वहां पे एक आदमी का रेस्क्यू किया गया था जहां पे वो पानी में फंस गया था। नर्मदा और छोटा उदयपुर जिले में भारी बारिश के कारण गांवों के अंदर जो नदियां उफान पे है और खास तौर पे जो आदिवासी इलाके हैं उनको रेस्क्यू करके बाहर लाया जा रहा है।
0: आज तक ब्यूरो।
4: अब रुख करते हैं पश्चिम एशिया की तरफ जहां पर आखिर क्या हुआ कि अमेरिका अब इसराइल के साथ मिलकर ईरान पर बहुत बड़े हमले करने की तैयारियों में जुट गया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।

0: मिसाइलें एक बार फिर गरज रही हैं। मेल मुलाकातों की डोर एक बार फिर टूटती दिख रही है। अमेरिका ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों को बम बरसाकर ध्वस्त करने का दावा किया है। इसके अलावा ईरान के किशम इलाके की ये तस्वीरें भी अमेरिका के ताजा हमलों से हुई तबाही की गवाह हैं। रहायशी इलाके में मिसाइल के हमले से ये पूरा घर तबाह हो गया। धमाका इतना जबरदस्त था कि उससे काफी बड़ा गड्ढा भी हो गया। उधर ईरान भी जॉर्डन, बहरीन, कुवैत और मिस्र में अमेरिकी सैन्य बेस पर लगातार हमले कर रहा है। कुवैत पर उसने कई ड्रोन हमले किए, हालांकि कुवैत का दावा है कि इन्हें नाकाम कर दिया गया। इस बीच ओमान के तट के पास एक तेल टैंकर के बेहद करीब जोरदार धमाका हुआ है। हालांकि जहाज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन पूरे इलाके में अलर्ट जारी कर जांच शुरू कर दी गई है। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक ये हमला ओमान के खासाब से करीब 39 किलोमीटर दूर हुआ। लेकिन ट्रंप की मौजूदगी में हुई कैबिनेट की मीटिंग से जो खबरें आ रही हैं, वो ईरान की चिंता बढ़ाने वाली हैं। अमेरिकी मीडिया का दावा है कि अमेरिका और इजराइल ईरान के ऊर्जा ढांचे पर बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। आज या फिर कल ईरान के बिजली संयंत्रों और तेल रिफाइनरियों को बड़े पैमाने पर निशाना बनाया जा सकता है। ऐसे तमाम ठिकानों की सूची बना ली गई है। इस मीटिंग में ट्रंप बेहद गुस्से में थे। उनका साफ कहना था कि परमाणु हथियारों से जुड़ी डील के लिए घंटों खराब करने का कोई मतलब नहीं है।
1: We have great people talking. Marco's involved.
2: They're all involved. Talks aren't happening.
1: Very good people. We have the best people. But they'll make a deal. As an example, we'll talk about nuclear. And we'll be in there talking about nuclear for 7 hours. I say, why do you need 7? You can take 10 minutes. You have 5 minutes. You should solve it. But 7 hours. And then they'll go out. And I'll say, they discuss nuclear. And they'll go out and they'll say, we never discussed nuclear. And I said, why did they say that? All they do is make me angry.
0: तो क्या ईरान के इस रवैये से सीज फायर की संभावनाएं खत्म होती जा रही हैं? इस सवाल के जवाब में ट्रंप का साफ कहना था कि ईरान ने बातचीत को ईमानदारी से आगे नहीं बढ़ाया और भरोसा तोड़ा है।
1: And Iran now, Iran is doing very poorly. Just in case you read incorrect stories, they're doing very, very poorly. They're having a hard time. They've been very dishonest. They've been very dishonorable to deal with. But that makes no difference. They're doing very, very poorly. Losing faith in them because they do lie and they do misrepresent.
0: इस अहम बैठक में जिस मूड में ट्रंप दिख रहे थे, उससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि इजराइल के साथ मिलकर अगले कुछ घंटों में अमेरिका ईरान पर ताबड़तोड़ हमले करने की तैयारी में जुटा है। ये हमले इस बार सिर्फ सैन्य ठिकानों पर नहीं होंगे, बल्कि अहम एनर्जी सेंटर तबाह किए जाएंगे। उधर ईरान ने दो टूक कह दिया है कि अगर अमेरिका ने एनर्जी सेंटरों पर हमले किए तो उसके सैन्य ठिकानों को तबाह करने में ईरान कोई कसर नहीं छोड़ेगा। आज तक ब्यूरो।
3: रुकना छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज।

0: जेन जी को संदेश के बाद पीएम मोदी ने की युवा शक्ति की बात। मैसूरू में कहा कि देश की तरक्की में योगदान छात्रों को 21वीं सदी के लिए तैयार कर रही है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। चढ़ावा चोरी पर प्रदर्शन को लेकर पप्पू यादव की बड़ी मुश्किलें। बीजेपी और साधु संतों ने वाराणसी में दर्ज कराया एफआईआर। राहुल गांधी का नाम भी, कई शहरों में प्रदर्शन। और इस सीमन को लेकर केंद्र पर भड़के राहुल। चेन्नई में कहा यह बीजेपी की बड़ी साजिश, समर्थन करने वाले तमिलनाडु को धोखा दे रहा है। पाकिस्तानी आतंकी संगठनों की हिटलिस्ट में सीएम शुभेंदु अधिकारी का नाम, बंगाल पुलिस का दावा। बर्दमान से हमीम मंडल की गिरफ्तारी के बाद खुलासा। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय महिला मुक्केबाजों का गोल्डन पंच, आज 5 बॉक्सरों ने जीता गोल्ड। भारत के खाते में अब तक 13 स्वर्ण। शुक्रवार को संसद में साधु के भेष में पप्पू यादव ने चंदा चोरी का वाला तंज वाला नाटक किया, जिसमें समाजवादी पार्टी कांग्रेस के नेता शामिल हुए और अब पप्पू यादव के इस अभिनय पर संत समाज और हिंदू संगठन बढ़के हुए, जिसे लेकर कई जगहों पर प्रदर्शन हुआ। ये गुस्सा है पप्पू यादव के उस तमाशे के खिलाफ जो संसद में उन्होंने साधु के भेष में किया। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं, जहां पप्पू यादव के पुतले फूंके जा रहे हैं, नारेबाजी की जा रही है।
1: हमारे समाज को, हमारे सनातन समाज को जो कर रहा है, हम माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि इसके ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एक्ट के अंतर्गत मुकदमा कायम करके जेल भेजे और इनके खिलाफ जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो संसद की सदस्यता भी समाप्त होना चाहिए।
0: दिल्ली के जंतर मंतर में विश्व हिंदू परिषद ने पप्पू यादव को लेकर सद्बुद्धि हवन किया।
2: तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर एक सांकेतिक सद्बुद्धि हवन जो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा यहाँ पर रखा गया, तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूंगा कि दिल्ली भर से जो संत लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हैं।
0: भोपाल में भी भारी संख्या में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, जहाँ पप्पू यादव के साथ राहुल गांधी और अखिलेश यादव का विरोध किया गया, पुतला जलाया गया।
3: कई वर्षों तक राम मंदिर का विरोध करते रहे, सफल नहीं हो पाए। जब कोर्ट से सफल नहीं हुए तो लोकतंत्र के मंदिर के बाहर राम मंदिर को, राम जी को बदनाम करने की जिन्होंने कोशिश करी, चाहे राहुल गांधी हो, पप्पू यादव हो या अखिलेश यादव हो, इस प्रकार से ड्रामा करके राम जी को जिन्होंने बदनाम किया, ये उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया जा रहा है।
0: उधर दिल्ली के जहांगीरपुरी थाने में सांसद पप्पू यादव के खिलाफ शिकायत दी। वहीं वाराणसी में भी संत समाज की ओर से पप्पू यादव पर एक मुकदमा दर्ज कराया गया है।
4: इसमें बीजेपी को घेरने के कहां से आ गई? इसमें बीजेपी का गेरुआ वस्त्र पहनने करके बाबा बन के घूमती है बीजेपी। आप बीजेपी को घेरो ना, किसने मना किया? आप बीजेपी से सवाल करो, बीजेपी के विपक्ष में आप बैठ जाओ, आप तमाम जो चीजें हैं उन पर, क्योंकि इनके पास तो कोई मुद्दे बचे नहीं है, तो अब यही मुद्दे उल्टे सीधे बचे हैं कि संतों का अपमान करेंगे। इन लोगों को ही लगता है कि संत समाज बीजेपी का समर्थन करती है, पर सत्य यह है कि संत समाज उसी का समर्थन करती है जो राम का समर्थन करती है, जो कृष्ण का समर्थन करती है, जो सनातन धर्म की रक्षा करती है।
0: इस बीच पप्पू यादव ने हंगामे के बीच इंस्टा पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो उन्हीं कपड़ों में पूजा करते नजर आ रहे हैं। वहीं पूरे मामले में पप्पू यादव की सफाई भी आई है।
5: आपको नहीं लगता कि आपने कुछ गलत किया है इस पूरे?
6: मतलब सनातन और मंदिर के सारे पैसे को, लुटेरे को उजागर करना और उसके खिलाफ लड़ना गलत है, मंदिर की रक्षा करना गलत है, मंदिर के पैसे की रक्षा करना गलत है, देश के 100 करोड़ का जो आस्था है मंदिर के प्रति उसकी रक्षा करना गलत है, हनुमान जी को नचाना सही है, गुड्डी में राम को उड़ाना सही है।
0: बहरहाल संसद में चंदा चोरी पर पप्पू यादव के नाटक ने नया सियासी घमासान शुरू कर दिया है। आज तक ब्यूरो।
7: अब आज पीएम मोदी के नए वीडियो संदेश की। पीएम मोदी ने शुक्रवार देर रात एक बार फिर से जेन जी को मैसेज दिया।
0: रात तकरीबन 11 बजे के बाद पीएम मोदी इंस्टाग्राम पर लाइव आए, जहां उन्होंने अभद्र टिप्पणी करने वाले बच्चों को माफ करने की बात कही।

0: नंबर वन इज इंडियन गोवा।
1: 31 जुलाई की रात पीएम मोदी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट कर युवाओं को माफ कर दिया।
2: जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है,